0: नमस्कार, स्वागत है आपका सफल किसान में। मैं हूं अंटू सिंह। सफल किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से हम आप तक तो पहुंचाते हैं किसानों की सफलता की कहानियां। ये वो किसान हैं जो कि कृषि स्टार्टअप, पशुपालन या फिर खेती में नए नए प्रयोग करने के लिए जाने जाते हैं। आज के हमारे ऐसे ही सफल किसान हैं पवन कुमार कुशवाहा, जो कि वैसे तो विदेश में यानी ऑस्ट्रेलिया में एक अच्छी खासी नौकरी करते थे, लेकिन उनका मन था स्वदेश में और इसीलिए वापस वो भारत लौटे और कृषि के क्षेत्र में, पशुपालन के क्षेत्र में उन्होंने अपना हाथ आजमाया। हालांकि शुरुआती दौर में उन्हें काफी नुकसान भी झेलना पड़ा और यहाँ उनका मार्गदर्शन किया कृषि वैज्ञानिकों ने और उन्हें बताया कि कैसे वर्मी कंपोस्ट को अपनाकर वो इस राह में सफलता हासिल कर सकते हैं, अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। पवन कुमार कुशवाहा ने इन वैज्ञानिकों की सलाह पर काम किया, आगे बढ़े और आज बन गए हैं हमारे आज के सफल किसान।
1: उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है जिसकी अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित है। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का लगभग 65% भाग कृषि पर निर्भर है। इसी राज्य से हमारे सफल किसान पवन कुमार कुशवाहा भी आते हैं। कुशीनगर जिला मुख्य रूप से ऐतिहासिक स्थान के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। कुशीनगर एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल भी है। यहाँ विश्व भर के बौद्ध तीर्थ यात्री दर्शन के लिए आते हैं। बात करें खेती किसानी की तो यहाँ की मुख्य फसल गेहूं, धान, गन्ना आदि है। कुशीनगर के रहने वाले पवन कुमार कुशवाहा भी इन दिनों खेती किसानी में दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की कर रहे हैं। कैसे, तो चलिए जानते हैं इनकी सफलता की कहानी इन्हीं की जुबानी।
2: मैं एक इंटरनेशनल जॉब जो मैं ऑस्ट्रेलिया में करता था, तो वहाँ से प्रेरणा मिली कि जॉब के अलावा भी जो अपना पर्सनल इंटरेस्ट है, जो अपनी भविष्य की प्लानिंग है, उसके अकॉर्डिंग गांव में भी कुछ व्यवस्था डेवलप किया जाए, कुछ फैसिलिटी डेवलप की जाए। तो उसी सोच के तहत मैंने गांव में गौशाला का शुरुआत किया। गौशाला ज्यों ज्यों आगे बढ़ा, चूँकि यहाँ का इन्वायरमेंट ऐसा है कि चूँकि शहर से दूर हम लोग काम कर रहे हैं, तो किसी वजह से मार्केट जो गौशाले का जो होना चाहिए दूध का जो डिस्ट्रीब्यूशन, वो प्रॉपर हो नहीं पाया, जिसके वजह से मेरा जो बिजनेस था गौशाला वाला थोड़ा सा नुकसान में रहा। तभी उस समय कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से हमको कुछ सहयोग मिला और जो गाय के गोबर से जो पैसे का इनकम किया सकता है, तो कुछ टेक्नोलॉजी कि गाय के गोबर का उपयोग कैसे किया जाए, स्पेशली बायोगैस में और उसका जो वर्मी कंपोस्टिंग जो होता है उसमें, तो वो कृषि विज्ञान केंद्र के जितने भी साइंटिस्ट लोग हैं उनके माध्यम से मुझे ये तरीका या टेक्नोलॉजी मिली, उन लोगों ने सिखाया और फिर मैंने वर्मी कंपोस्टिंग और बायोगैस का यूज़ गाय के गोबर से कैसे किया जाता है उसको शुरुआत किया।
1: पवन कुमार का प्रयास है कि खेती किसानी के अंतर्गत जितनी भी सुविधाएं होती हैं, वो सारी सुविधाएं इनके फार्म में ही उपलब्ध हों। इसी सोच के साथ पवन जी ने शुरुआती दौर में एक छोटे से गौशाला का निर्माण किया। अभी पवन अपने फार्म में गाय, बकरी, मुर्गी एवं मछली का पालन करते हैं। पवन ने कृषि विज्ञान केंद्र से परामर्श लेकर एक छोटी सी वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगाकर नई शुरुआत की। वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए इन्हें बाहर से रॉ मटेरियल लाने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि पशुओं के अवशेषों को प्रयोग में लेकर वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं। इससे इन्हें काफी फायदा होता है, लेकिन एक सवाल मन में ये भी आता है, वर्मी कंपोस्ट की मार्केटिंग को लेकर। तो चलिए मार्केटिंग के बारे में जानते हैं हमारे सफल किसान पवन जी से ही।
2: 2012 में मैं वर्मी कंपोस्टिंग किया, धीरे धीरे धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से जो मार्केटिंग भी हुआ, क्योंकि जागरूक जो किसानों को करना होता है, उनके साइंटिस्ट जो भी हैं उनके माध्यम से किसान लोगों को जागरूकता मिलती है कि कम से कम अपने वर्मी कंपोस्ट का खेत में उपयोग करके जो जैविकता है खेती बाड़ी का वो बढ़ाया जाए। तो जो जो समय बढ़ता रहा वैसे वैसे मेरा मार्केटिंग भी डेवलप करता रहा, मैं प्रोडक्शन भी होता रहा। शुरुआत में गाय के गोबर से रहा, लेकिन जैसे जैसे उत्पादन की डिमांड जाते आती गई तो मेरे लिए चैलेंज था कि भाई उतना गाय, उतना मेरे पास गोबर का प्रोडक्शन था नहीं, तो फिर कृषि विज्ञान केंद्र के साइंटिस्ट लोगों के माध्यम से जो फसल अवशेष के माध्यम से कैसे वर्मी कंपोस्टिंग किया जाता है, फिर उसकी टेक्नोलॉजी प्राप्त हुई, फिर उसके बाद से जो भी अन्य पशुओं के जो अवशेष हैं जैसे बकरी की मैगनी या मुर्गी का जो वेस्ट होता है, मलमूत्र होता है, उसके माध्यम से कैसे वर्मी कंपोस्टिंग किया जाता है, उसकी टेक्नोलॉजी मुझे प्राप्त हुई, उन लोगों के माध्यम से सीखा मैंने। और आज मेरा वर्मी कंपोस्टिंग का जो रॉ मटेरियल है वो गाय का गोबर भी है, बकरी का जो मैगनी है वो भी है, मुर्गी का खाद भी है, पुआल भी है। वर्मी कंपोस्टिंग का जो रॉ मटेरियल है वो गाय का गोबर भी है, बकरी का जो मैगनी है वो भी है, मुर्गी का खाद भी है, पुआल भी है, भूसा भी है, जो कुछ भी मतलब नेचुरली हमारे पास उपलब्ध है सबका मैं वर्मी कंपोस्टिंग करता हूँ और सक्सेसफुली उसका मार्केटिंग भी करता हूँ। हमारे से लगभग कुशीनगर और आसपास के जितने भी जिले हैं उस सारे जो किसान हैं जो जुड़े हुए हैं, लगभग मोर देन 1000 किसान मेरे पास जुड़े हुए हैं जो वर्मी कंपोस्टिंग का जो उपयोग कर रहे हैं, वर्मी कंपोस्ट खाद लेके अपने जमीन की जैविकता बढ़ा रहे हैं, उत्पादन बढ़ा रहे हैं और एक इकोनॉमिकल तरीके से खेती कर रहे हैं।
1: वर्मी कंपोस्ट एक ऐसी प्रणाली है जिसे खेती किसानी के लिए बेहद ही फायदेमंद माना जाता है। जैविक खाद मूल रूप से एक व्यवस्थित कीट पोषण प्रक्रिया है जिसमें मिट्टी के भीतर विद्यमान अन्य जैविक पदार्थों का अवशोषण कर मिट्टी को उपजाऊ बनाया जाता है। जैविक खाद विधि से बहुत कम समय में सामान्य तापक्रम के अंतर्गत अच्छी गुणवत्ता वाली खाद तैयार की जा सकती है जिसमें केचुओं की समुचित प्रजातियों का उपयोग होता है। इसमें केचुओं की आंतों में विद्यमान सेलुलाज तथा माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलकर निगले हुए जैविक पदार्थों का बड़ी तेजी से विघटन करते हैं। ये केचुए अपनी पाचन क्रिया और जैव पदार्थों के संयुक्त मिश्रण के प्रभाव से एक अपशिष्ट पदार्थ बाहर छोड़ते हैं जिसे वर्मी कंपोस्टिंग कहा जाता है। किसान पवन का मानना है कि अगर सही रखरखाव के साथ केचुए को रखा जाए तो वर्मी कंपोस्ट के लिए फायदा होता है। इस बारे में पवन क्या बताते हैं सुनिए।
2: बेसिकली जैसे आप देख रहे हैं कि ये केचुआ कितना हेल्दी है और यही मौसम है जिसमें केचुआ प्रजनन करके अपने बच्चे पैदा करते हैं, इनको जाड़ा बड़ा पसंद है। तो जैसे ही जाड़े का मौसम बीतता है उसके बाद से ये लोग अपना प्रजनन करके अपने अंडे का उत्पादन करता है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो अंडा है ये अंडा लगभग मैच्योर होने की स्थिति में है और इस अंडे में से 5 से 7 बहुत पतले पतले केचुए निकलेंगे और फिर उसके बाद से धीरे धीरे खाना खा के अपने आप को डेवलप करेंगे। तो इनकी जो जनरेशन होती है, पैदावार होती है, वो तो बहुत शानदार होती है। और लेकिन चूंकि यही एक बहुत नाजुक होते हैं, ये तो जल्दी मरते भी हैं दूसरे कारणों से, लेकिन यह है कि अगर उचित रख रखाव किया जाए, उचित इन लोगों का माहौल दिया जाए तो केचुओं की संख्या दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ती है और बहुत शानदार उत्पादन करते हैं ये केचुए, खाद भी बनाते हैं, खुद भी डेवलप करते हैं ये।
1: केचुआ बहुत अधिक मात्रा में खाना खाने वाले होते हैं, वे बायोडिग्रेडेबल पदार्थ का अक्षरण करते हैं और उसका कुछ भाग अपशिष्ट पदार्थ या वर्मी कंपोस्टिंग के रूप में बाहर छोड़ते हैं। पोषक तत्वों से युक्त वर्मी कास्टिंग पौधों के लिए एक पौष्टिक खाद है। यह कृमि खाद पोषक तत्वों की आपूर्ति एवं पौधों में हार्मोन्स को बढ़ाने के अलावा मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार लाता है जिससे मिट्टी द्वारा पानी और पोषक तत्व धारण करने की क्षमता में वृद्धि होती है।
0: इसी के साथ ही सफल किसान में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो वर्मी कंपोस्ट यानी केचुआ खाद के बारे में और विस्तृत जानकारी आप तक पहुँचाएंगे। कहीं मत जाएगा, देखते हैं सफल किसान।
3: खो गया इंतजाम। किसका?

0: गुड्डी की फीस का।
1: दिखा।
0: 20,000 का लोन तुरंत।
1: पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है?
0: लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर।
1: हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
2: RBI कहता है,
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
4: ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं सफल किसान। आज के सफल किसान में हम आप तक कहानी पहुंचा रहे हैं पवन कुमार कुशवाहा की, यानी उनकी सफलता की कहानी। कैसे उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की नौकरी छोड़ी और भारत लौटे और यहां पर अब वो वर्मी कंपोस्ट के क्षेत्र में अपनी पहचान बना चुके हैं। आइए एक बार फिर से रुख करते हैं पवन कुमार कुशवाहा का और जानते हैं वर्मी कंपोस्ट के तमाम पहलुओं के बारे में।
5: वर्मी कंपोस्ट एक प्राकृतिक उत्पादन प्रक्रिया है जो कीटाणुओं के सहयोग से जैविक अपशिष्टों को कंपोस्ट बनाने का काम करती है। यह एक पर्यावरण सौहार्दपूर्ण प्रक्रिया है जो कृषि उत्पादन को बढ़ावा देती है और जलवायु परिवर्तन से लड़ने में मदद करती है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में पवन कुमार कुशवाहा ने वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगाई जो सिर्फ पवन को ही नहीं बल्कि आसपास के किसानों के लिए भी फायदेमंद साबित हो रहा है। सफल किसान पवन का मानना है कि मिट्टी की सेहत के लिए रासायनिक खाद को छोड़कर ज्यादा से ज्यादा जैविक खाद का प्रयोग करना चाहिए, जिससे मिट्टी की उर्वरता काफी अच्छी होगी और फसल भी अच्छी होगी। इनका मानना है कि मिट्टी की सेहत को सुधारने के लिए केचुआ काफी उपयोगी है। अगर मिट्टी स्वस्थ है तो हम स्वस्थ हैं।
6: इतने सालों से मैं ये वर्मी कंपोस्टिंग कर रहा हूँ, धरती माँ की सेवा कर रहा हूँ। जो मुझे अनुभव मिला है उस अनुभव के आधार पर मैं इतना तो कह सकता हूँ कि अगर मिट्टी का स्वास्थ्य सुधारना है तो सबसे बढ़िया जो साधन है वो ये केचुआ है। इससे बेहतर कोई संसाधन नहीं है केचुए के अलावा जो मिट्टी के स्वास्थ्य को सुधार सके। अगर मिट्टी स्वस्थ है तो हम स्वस्थ हैं। इसलिए कम से कम इस केचुए के महत्व को पहचाना जाए। हम ये कहते हैं कि केचुआ गाय का पूरक है। अगर गाय जमीन के ऊपर भगवान के रूप में है तो जमीन के नीचे ये केचुआ भगवान के रूप में है। अगर केचुआ जब तक जिंदा है तब तक धरती माँ स्वस्थ है और हम लोग को स्वस्थ रखने के लिए जो भी अनाज आएगा, जो भी वहां से उत्पादन आएगा, हम लोग खाएंगे, स्वस्थ रहेंगे।
5: अधिक पैदावार की चाहत में किसान खेतों में रासायनिक खाद की मात्रा बढ़ा रहे हैं, लेकिन इन रासायनिक खाद से पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर पड़ रहा है। यह सामान्य तौर पर होने वाली खेती से अलग है और इसमें जैविक खाद का ही प्रयोग किया जाता है। इसी वजह से जैविक खेती में वर्मी कंपोस्ट का काफी महत्वपूर्ण स्थान है। इसका उपयोग तब और आसान हो जाता है जब पशुपालन के साथ किसान खेती करते हैं। हमारे सफल किसान पवन का मानना है कि अगर किसान वर्म फार्मिंग पर ध्यान दें तो इससे मिट्टी की सेहत में सुधार के साथ किसान की आय में भी वृद्धि होगी।
6: तो अमेरिका जैसे कंट्री में जो लोग थोड़ा जागरूक हैं तो वो लोग वर्म फार्मिंग करते हैं और वही वर्म्स जाके मिट्टी में डालते हैं और लगातार, क्योंकि मिट्टी में भी इनका प्रोडक्शन होता रहता है, तो 3 से 4 साल में 5 साल में जो मिट्टी जो बीमार हो चुकी होती है ना, बंजर हो चुकी होती है, वो दोबारा का उसमें जीवन आ जाता है, जान आ जाता है और दोबारा सजीव हो जाती है। और जब मिट्टी सजीव हो गई तो वहां पे ऑटोमेटिकली जो वातावरण का जो पेड़ पौधा है, जो इकोसिस्टम है, वो खुद ब खुद अपने आप सुचारू रूप से अपने नेचुरल वे में काम करने लगता है और पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम है डेवलप हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है। तो इसलिए वर्म फार्मिंग भी एक कंसेप्ट है जो अपने भारत में लोगों को जानना चाहिए, करना चाहिए।
5: पवन कुमार कुशवाहा अपने गांव में ही पशुपालन के साथ साथ खेती भी कर रहे हैं और वर्मी कंपोस्ट यूनिट भी लगाए हुए हैं। इनका मानना है कि गांव में खेतीबाड़ी आपसी सहयोग से की जाए तो काफी फायदा होता है और इससे आय में वृद्धि के साथ साथ गांव का भी विकास होगा। पवन के पशुपालन करने की मुख्य वजह है कि ये पशुओं के अपशिष्ट का इस्तेमाल कर लेते हैं। पवन ने अपने फार्म में वर्मीवास, गोबर और गोमूत्र को इकट्ठा करने के लिए अलग अलग टैंक लगाए हैं। पवन जीवामृत बनाने के लिए गोबर, गौमूत्र, बेसन, प्याज का रस, डीकम्पोजर, नीम का पत्ता, मिर्च, लहसुन इत्यादि का प्रयोग करते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि जीवामृत बनाने के लिए इन्हें बाजार से कुछ भी लाने की जरूरत नहीं पड़ती।
6: अपने खेती बाड़ी सिस्टम में हम लोग कहते हैं कि लिक्विड फर्टिलाइजर का भी इस्तेमाल करना चाहिए एज ए टॉनिक। तो लिक्विड फर्टिलाइजर चूंकि एक तो रासायनिक भी मार्केट में उपलब्ध है, लेकिन है क्या कि गांव का जो इकोसिस्टम है, गांव का जो परिवेश है, उसमें चूंकि गांव के लोग गांव के ही अगर हेल्प करेंगे तो कुछ गांव के लोगों का विकास होगा। तो हम चूंकि गांव में ही रह के ये जो पशुपालन है, चाहे ये जो खाद का जो काम है, वर्मी कंपोस्टिंग है, मैं वो कर रहा हूँ, तो जो मेरे पास जितने भी पशु हैं, तो पशु का जितना भी अवशेष है, चाहे वो मल के रूप में हो चाहे मूत्र के रूप में हो, मैं उसका उपयोग जीवामृत बनाने में चाहे लिक्विड फर्टिलाइजर बनाने में कर रहा हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो भी मेरे पास वर्मी वास आ रहा है वो यहाँ पे टैंक में इकट्ठा हो रहा है, जो गौमूत्र आ रहा है वो बगल के टैंक में इकट्ठा हो रहा है, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, जैसे कि वर्मी वास, गौमूत्र से हम जीवामृत डेवलप कर रहे हैं, जिसमें कि इसमें जो गुड़ बनाने का जो अवशेष होता है, जैसे बदर मैया हम लोग अपने भोजपुरी में बोलते हैं, वो है, बेसन है, इसमें प्याज का रस है, इसमें डिकम्पोजर भी डाले हैं, उसमें नीम का भी पत्ता डाले हैं, उसमें प्याज मिर्चा भी है, लहसुन भी है, जो सुरती का डंटल होता है वो डाले हैं, मतलब जो भी इजिली उपलब्ध है अपने गाँव समाज में, जो अपने बाग बगीचे में, सबका उपयोग करके जो जीवामृत बनाया गया है, जो अपने फसलों के जड़ों पे भी दिया जाता है, और साथ में किसी किसान को अगर स्प्रे करना हो तो एक लीटर में 5 लीटर पानी मिला के वो अपने फूल पत्ती पे चाहे पेड़ पौधे पे स्प्रे करे, बहुत शानदार रिजल्ट मिलता है। मतलब कि कुल मिला के ये पौधे का अमृत है, इसलिए इसको हम लोग अपने भाषा में जीवामृत बोलते हैं। तो हम लोग सब डेवलप कर रहे हैं यहाँ पे, और इजिली किसानों के लिए बहुत ही उचित दाम पे उपलब्ध है अपने किसानों के लिए, गाँव समाज के लिए।
5: अगर वर्मी कल्चर को पूर्ण रूप से अपनाया जाए तो खेती के लिए काफी मददगार साबित होगा। वर्मी कल्चर में पौधे और मिट्टी की उर्वरता में सुधार करने का एक लाभकारी तरीका है। वर्मी कल्चर मुख्य रूप से कीड़ों के प्रजनन पर ध्यान केंद्रित करता है, ताकि उनकी आबादी बढ़ाई जा सके। फिर फसलों की वृद्धि और विकास को बढ़ावा देने के लिए वर्मी कंपोस्ट तैयार किया जाता है।
4: इसी के साथ ही सफल किसान में यह वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम आपको बताएंगे कि कैसे पवन कुमार कुशवाहा ने इंटीग्रेटेड फार्मिंग को भी अपनाया है। जानेंगे इसके बारे में भी छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाएगा, देखते रहें सफल किसान।

0: ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सफल किसान। आइए एक बार फिर से रुख करते हैं पवन कुमार के फार्म का, जहां पर वो एकीकृत कृषि प्रणाली को भी अपनाते हैं। जी हाँ, एक ऐसी विधि, एक ऐसा तरीका है कृषि का जिसमें तमाम घटकों को साथ लेकर हमारे किसान आगे बढ़ सकते हैं और अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। कैसे की जाती है एकीकृत कृषि और कैसे इंटीग्रेटेड फार्मिंग से पवन कुमार कुशवाहा को लाभ हो रहा है, आइए जानते हैं विस्तार से।
1: एकीकृत कृषि प्रणाली या इंटीग्रेटेड फार्मिंग, इसमें दो या इससे अधिक उद्यमों का एकीकरण शामिल होता है। इसमें किसान की अधिकतम जरूरतों को पूरा करने के लिए संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग किया जाता है। इससे उत्पादकता में वृद्धि, कृषि अपशिष्टों का कुशल पुनर्चक्रण, संसाधनों का बेहतर उपयोग और रोजगार पैदा होते हैं। इसमें जोखिम कम होने के साथ स्थिरता भी सुनिश्चित होती है। एकीकृत कृषि प्रणाली का उद्देश्य संबंधित उद्यमों के साथ फसलों की गहनता और विविधीकरण के आधार पर प्रति क्षेत्र प्रति समय उपज को अधिकतम करना है। इसके अलावा यह पोषक तत्व पुनर्चक्रण सुनिश्चित करती है। तालाबों में मछलियों के साथ बत्तख या मुर्गी पालन के अलावा तालाबों के किनारे या तालाबों के ऊपर में पशुओं द्वारा तालाब का निरंतर जैविक निषेचन किया जाता है। इस प्रकार पशु और चारा अपशिष्ट के लाभदायक उपयोग से पशुधन, कृषि और मछली पालन की दक्षता बढ़ जाती है। ऐसे में किसान कई उद्यमों से एक साथ कम लागत में अधिकतम उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं।
2: जैसे आप देख रहे हैं, ये एक इंटीग्रेटेड सिस्टम डेवलप किया गया है जिसमें मुर्गा पालन और मछली पालन एक साथ करने का प्रयास किया जा रहा है। कहते हैं कि पशुपालन में अगर एक का वेस्ट मटेरियल दूसरे के लिए अगर रॉ मटेरियल फीड के रूप में काम आ जाए तो आपका इफिशेंसी या जो प्रॉफिटेबिलिटी होती है वो इंक्रीज कर जाता है। तो यहाँ पे मुर्गा पालन प्लस मछली पालन एक साथ ये हो रहा है। जैसे कि नीचे पोखरा है, पॉन्ड है, और ऊपर हमारा कड़कनाथ मुर्गी फार्म है जिसमें जो साइज है उसमें 100-150 मुर्गियाँ आराम से रह लेती हैं। तो दिन में चूंकि हमारा जो ये मुर्गियां हैं बाहर चरती हैं, क्योंकि उनको नेचुरल फीड मिलता है, साथ में धूप की भी आवश्यकता पड़ती है मुर्गियों को, तो वहां पे जाके अपना धूप सेकते हैं, खाना खाती हैं, दिन भर बाहर रहती हैं। लेकिन जैसे होता है रात में वो अपने आप चली आती हैं और रात भर यही करती हैं। तो रात भर जो वो बीट करती हैं तो वो मुर्गियों मछलियों के लिए वो फीड का काम करता है। लेकिन इसमें एक समस्या ये रहती है कि अगर 5 से 6 दिन लगातार अगर पानी को चेंज न किया जाए तो पानी गंदा हो जाता है और मछलियां मरने लगती हैं। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि रात में छोटा सा 1 घंटे के लिए हम लोग पानी चला देते हैं कि पानी का सर्कुलेशन हो जाए। इसका जो पानी का ओवरफ्लो होता है बगल में जो हमारा पॉन्ड है बड़ा वाला, वहां चला जाता है। तो इस तरीके से हमारा कभी भी पानी गंदा नहीं होता, मछलियों के अनुकूल रहता है।
1: पवन कुमार कुशवाहा अलग अलग देशों में नौकरी कर चुके हैं लेकिन नौकरी रास नहीं आई। कहते हैं ना कि मन में अगर दृढ़ इच्छा शक्ति हो कुछ करने की तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अपने साथ दूसरे किसानों को भी प्रेरित कर आज पवन आसपास के लोगों को भी फायदा कर रहे हैं। पवन का कहना है कि आज की युवा पीढ़ी नौकरी के पीछे भाग रही है, जबकि हम ठान लें तो नौकरी करने की बजाय नौकरी देने वाले बन सकते हैं। पवन आज की युवा पीढ़ी के लिए क्या कुछ संदेश दे रहे हैं, सुनिए।
2: मेरा एक जो खुद का अनुभव है मैं शेयर कर रहा हूँ। मैं भी जॉब करता था, अभी ऑस्ट्रेलिया में जॉब किया, चाइना में जॉब किया। वहाँ पे कुछ ऐसी कंडीशंस थी कि नहीं कहते हैं कि भाई मन नहीं लगता था, जो मातृभूमि में अपना जो एक प्यार होता है ना वो खींच के लाता ही लाता है वापस। तो मेरा जॉब करने के साथ प्रयास था कि कुछ ऐसा सिस्टम डेवलप किया जाए कि जो आफ्टर जॉब मतलब रिटायरमेंट के समय में भी अपना कुछ रोजी रोटी के संसाधन डेवलप हो। तो उसी के सिलसिले में जॉब के साथ मैंने ये डेवलप किया। तो लगभग मेरा 15 साल का ये अनुभव है।
1: कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारी लगातार किसानों के हित के लिए काम करते हैं। बात करें एकीकृत कृषि की तो इसे बढ़ावा देने के लिए अधिकारी किसानों को हमेशा जागरूक करते रहते हैं। एकीकृत कृषि प्रणाली में रसायन की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती। इस कृषि प्रणाली में मुर्गी पालन के अपशिष्टों को बत्तख और मछली को आहार के रूप में उपयोग दिया जाता है। गोबर का इस्तेमाल खाद के लिए किया जाता है और खेतों में पोषक तत्वों की आपूर्ति की जाती है। इसके अलावा गोमूत्र और नीम के अर्क को खेत में कीटनाशक के रूप में छिड़का जा सकता है। अनाज और इसके भूसे का उपयोग मुर्गी एवं गाय के आहार तथा चावल के भूसे को गाय के चारे के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। पोल्ट्री की बेडिंग सामग्री का उपयोग खाद में भी किया जा सकता है। तालाब में जलकुंभी की तरह जलीय खरपतवार का उपयोग वर्मी कंपोस्ट में बेडिंग सामग्री के रूप में किया जा सकता है।
3: आज बढ़ती आबादी को देखते हुए रोजगार की संभावनाएं कम हो चुकी हैं और जो छोटी होती जा रही है, तो ऐसे में हम यही सलाह देना चाहेंगे कि किसान भाई जो एकीकृत कृषि है, एकीकृत कृषि को बढ़ावा दें। इसमें बहुत सारी फसलें हैं, तालाब है, पशुपालन है, मुर्गी पालन है, बकरी पालन है। इन सबको एक संग्रहित एरिया में, संरक्षित एरिया में, छोटे से एरिया में आप कर सकते हैं। क्योंकि जिस तरह से रासायनिक खादों का, उर्वरकों का, कीटनाशकों का प्रयोग खेतीबाड़ी में हो रहा है, इससे हमारी जो जमीन है वो इन रसायनों से के दुष्प्रभाव से दूषित हो रही है, प्रदूषित हो रही है। इससे उत्पन्न होने वाले अनाज दूषित हो रहे हैं जिसको हम भोजन में ले रहे हैं, और इसको लेने से हमारी इम्यूनिटी, जो हमारी शक्ति है, वो क्षीण होती जा रही है। तो अगर हम अपने खेतों में एकीकृत रूप से खेती करें, तो इसमें इंटीग्रेशन के रूप में अगर खेती करें, तो जिन खेतों में हम रसायनों का प्रयोग कर रहे थे वहाँ पर हम अपने जो एकीकृत खेती हमारी है, जहाँ पर कि हम पशुपालन भी कर रहे हैं, मुर्गी पालन कर रहे हैं, बकरी पालन कर रहे हैं, इनके खाद का जो इनका वेस्ट है इनको सड़ा गला करके अच्छे से खेतों में प्रयोग करेंगे, उस खेतों का जो प्रयोग करेंगे जिस खेत में, उसमें निश्चित ही तौर से जो रासायनिक उर्वरकों की डिमांड है वो कम हो जाएगी, उसमें रोग व्याधियां कम आएंगी और फसल का जो उत्पाद होगा वह बहुत ही अच्छा होगा, रसायन मुक्त होगा।
1: पवन कुमार कुशवाहा एकीकृत प्रणाली को संयमित तरीके से कर रहे हैं और इससे इन्हें काफी फायदा हो रहा है। इन्होंने केचुए के महत्व को समझा और वर्मी कंपोस्ट की यूनिट लगाई। अभी इनके साथ करीब 1000 किसान जुड़े हुए हैं। आसपास के किसान इनके फार्म में बने जैविक खाद का प्रयोग करते हैं। जैविक खाद की मार्केटिंग के लिए कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारी काफी मदद करते हैं। इनकी इस सफलता को देख आसपास के किसान इनसे प्रेरित होकर सलाह भी लेने आते हैं।
0: तो ये था हमारा आज का सफल किसान, जिसमें आपने जाना कि पवन कुमार कुशवाहा ने कैसे सफलता हासिल की। हालांकि वो विदेश में नौकरी कर रहे थे, लेकिन उन्होंने स्वदेश को ही चुना और वो भी वर्मी कंपोस्ट का क्षेत्र। आशा करते हैं कि उनकी सफलता की कहानी से आपको भी जरूर प्रेरणा मिलेगी। अगर आपके कोई सुझाव है या फिर आप चाहते हैं किसी किसान की सफलता की कहानी हम कार्यक्रम में आपके लिए लेकर आए, तो आप हमें ईमेल करें, पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है safalkisandd@gmail.com। पत्र लिखने के लिए हमारा पता नोट कर लें। हमारा पता है सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आपकी ईमेल्स, आपके पत्रों का हमें इंतजार रहेगा। सफलता की कुछ ऐसे ही प्रेरणादायी कहानियों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।

0: आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति विश्लेषण।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम विश्लेषण के नए अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं जागृति शर्मा। श्रोताओं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 6 अगस्त को भारत की राष्ट्रीय एकीकृत योजना गोबरधन कंप्रेस्ड बायोगैस यानी CBG को मंजूरी दे दी है। कुल 23,771 करोड़ रुपए के परिव्यय वाली ये योजना देश के जैविक कचरे और कृषि अवशेषों को स्वच्छ ऊर्जा, ग्रामीण समृद्धि और आर्थिक विकास के अवसर में बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में जानेंगे कि गोबरधन योजना की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, ये भारत की ऊर्जा सुरक्षा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को किस तरह मजबूत कर सकती है, किसानों और ग्रामीण उद्यमियों के लिए इसके क्या अवसर हैं, और कचरे से कंचन तथा आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में ये पहल कितनी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। श्रोताओं, भारत दुनिया की प्रमुख और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। आर्थिक विकास की रफ्तार बढ़ने के साथ देश की ऊर्जा आवश्यकताएं भी लगातार बढ़ रही हैं। लेकिन प्राकृतिक गैस की जरूरत का लगभग 50% हिस्सा भारत अभी आयात के माध्यम से पूरा करता है। हाल के वैश्विक भू राजनीतिक घटनाक्रमों और ऊर्जा आपूर्ति में सामने आई चुनौतियों ने ये स्पष्ट किया है कि किसी भी देश के लिए घरेलू ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाना कितना महत्वपूर्ण है। भारत के LNG आयात का एक बड़ा हिस्सा समुद्री मार्गों से होकर आता है। ऐसे में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में किसी भी तरह का व्यवधान ऊर्जा सुरक्षा को प्रभावित कर सकता है। यही कारण है कि भारत लगातार ऐसे स्वदेशी और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा दे रहा है जो आयात पर निर्भरता कम करने के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण और ग्रामीण विकास को भी गति दे सके। इसी सोच को आगे बढ़ाती है गोबरधन योजना। गोबरधन का पूरा नाम है गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन। वर्ष 2018 में इसे स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य पशुओं के गोबर, रसोई के जैविक कचरे, कृषि अवशेषों और बाजार से निकलने वाले जैविक कचरे को बायोगैस और जैविक खाद में बदलना था। अब इस पहल को एक व्यापक राष्ट्रीय CBG कार्यक्रम के रूप में आगे बढ़ाया गया है। पहले CBG इकोसिस्टम विभिन्न मंत्रालयों के दायरे में था। बेहतर समन्वय और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अब पूरी योजना को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत एकीकृत किया गया है। आइए अब विस्तार से समझते हैं कि इस योजना की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं और ये CBG क्षेत्र को किस प्रकार नई गति देने वाली है।
2: गोबरधन योजना का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य देश में कंप्रेस्ड बायोगैस के उत्पादन को बड़े पैमाने पर बढ़ाना है। इसके लिए योजना में पूरी CBG मूल्य श्रृंखला को मजबूत करने पर ध्यान दिया गया है। योजना के तहत सबसे पहले CBG उत्पादकों के लिए निश्चित बाजार और खरीद का भरोसा सुनिश्चित किया जाएगा। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन यानी CGD संस्थाओं के माध्यम से CBG की खरीद को बढ़ावा दिया जाएगा। योजना का दूसरा महत्वपूर्ण घटक है स्थिर CBG मूल्य निर्धारण। इसके तहत सरकार ने 2,110 रुपए प्रति MMBTU की कीमत तय की है, जो लगभग 105 रुपए प्रति किलोग्राम CBG के बराबर है। न्यूनतम 10 वर्षों की अवधि वाला यह मूल्य ढांचा उत्पादकों को राजस्व की स्थिरता प्रदान करने और नई परियोजनाओं में निवेश को प्रोत्साहित करने में मदद करेगा। तीसरे घटक के रूप में पात्र ग्रीन फील्ड CBG परियोजनाओं को स्थापित क्षमता के आधार पर प्रति टन प्रतिदिन 2 करोड़ रुपए तक की पूंजीगत सहायता दी जाएगी। उत्पादन क्षमता बढ़ाने वाले ब्राउन फील्ड परियोजनाएं भी इसके दायरे में आ जाएंगी। चौथा महत्वपूर्ण क्षेत्र है पाइपलाइन अवसंरचना। CBG संयंत्रों को ट्रक पाइपलाइन और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से जोड़ने के लिए आवश्यक पाइपलाइन अवसंरचना को सहायता दी जाएगी। इससे परिवहन लागत कम होगी और CBG के लिए बाजार तक पहुंच आसान होगी। पांचवें घटक के तहत पात्र MSME आधारित CBG परियोजनाओं को संस्थागत वित्त उपलब्ध कराने के लिए ऋण गारंटी तंत्र विकसित किया जाएगा। इसके तहत ऋण पर 85% तक ऋण गारंटी कवर उपलब्ध कराया जा सकेगा। छठा घटक है CBG इकोसिस्टम चैलेंज फंड। इसके माध्यम से जिला स्तर पर कच्चे माल का आकलन और मैपिंग, कच्चा माल एकत्रीकरण, तकनीक सुधार, जैविक खाद का मूल्य संवर्धन, क्षमता निर्माण और जागरूकता जैसे कार्यों को बढ़ावा दिया जाएगा।
1: श्रोताओं, गोबरधन योजना का महत्व केवल स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन तक सीमित नहीं है। इसका सीधा संबंध किसानों की आय, ग्रामीण रोजगार, कचरा प्रबंधन और स्थानीय अर्थव्यवस्था से भी है। हर सीबीजी संयंत्र के पास कृषि अवशेष, पशुओं का गोबर और अन्य जैविक कचरा कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जा सकता है। इससे गाँव में कचरे के बेहतर प्रबंधन के साथ साथ कच्चा माल एकत्र करने, परिवहन, संयंत्र संचालन और जैविक खाद के उत्पादन जैसे क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा होंगे। सीबीजी उत्पादन के साथ निकलने वाले जैविक उर्वरक भी कृषि क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है। सरकार पहले से ही फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मेन्योर, लिक्विड फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मेन्योर और फॉस्फेट रिच ऑर्गेनिक मेन्योर जैसे जैविक उर्वरकों को बढ़ावा दे रही है। इससे एक ऐसी चक्रीय जैव अर्थव्यवस्था विकसित हो सकती है जिसमें खेतों से निकलने वाला अवशेष कचरा नहीं बल्कि आर्थिक संसाधन बन जाए और सीबीजी संयंत्रों से प्राप्त जैविक खाद वापस कृषि क्षेत्र में उपयोग हो। यानी गोबरधन का मूल विचार है कचरे को संसाधन में बदलना, संसाधन को ऊर्जा में बदलना और ऊर्जा को आर्थिक विकास का माध्यम बनाना। श्रोताओं, गोबरधन योजना के जरिए भारत अपने विशाल जैविक संसाधनों को ऊर्जा सुरक्षा के साथ जोड़ने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद इस पहल के बारे में केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी जानकारी दी।
3: कंप्रेस्ड बायोगैस सीबीजी, इसका प्रोडक्शन एक डेकेड के अंदर 10 गुना बढ़ाने का टारगेट, करीब 5 MMSCMD प्रोडक्शन के लेवल तक पहुंचाने का इसमें टारगेट लिया गया है। अगर इसको हम एनवायरमेंटल पॉइंट से देखें तो दिस विल सेव अबाउट 40 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, करीब 75,000 करोड़ रुपीस नेशनल जीडीपी को ऐड होगा और अबाउट 1.5 लाख जॉब्स विल बी क्रिएटेड बाय दिस प्रोग्राम।
1: श्रोताओं, गोबरधन योजना की रूपरेखा और इसके प्रमुख घटकों को समझने के बाद अब ये जानना भी जरूरी है कि भारत की दीर्घकालिक ऊर्जा रणनीति में सीबीजी को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जा रहा है। आइए विस्तार से समझते हैं कि गोबरधन भारत की ऊर्जा सुरक्षा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को किस प्रकार प्रभावित कर सकता है।
2: भारत के गांवों में बड़ी मात्रा में कृषि अवशेष, पशु अपशिष्ट और अन्य जैविक संसाधन उपलब्ध हैं। यदि इन संसाधनों को संगठित तरीके से एकत्र कर सीबीजी संयंत्रों तक पहुंचाए जाए तो किसानों और स्थानीय उद्यमियों के लिए अतिरिक्त आय के अवसर पैदा हो सकते हैं। सीबीजी संयंत्र केवल ऊर्जा का उत्पादन नहीं करेगा बल्कि अपने आसपास एक स्थानीय आर्थिक चक्र भी तैयार करेगा जो कच्चे माल का संग्रह, परिवहन, प्रसंस्करण, गैस उत्पादन और जैविक खाद का निर्माण करेगा। इस तरह गोबरधन ग्रामीण भारत को केवल ऊर्जा का उपभोक्ता नहीं बल्कि ऊर्जा का उत्पादक और ऊर्जा सुरक्षा का भागीदार बनाने की क्षमता रखता है। पर्यावरण की दृष्टि से भी ये पहल महत्वपूर्ण है। कृषि अवशेषों और जैविक कचरे के वैज्ञानिक उपयोग से खुले में कचरा जलाने और लैंडफिल में जैविक कचरे के जाने को कम किया जा सकता है। इससे ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भी कमी आएगी।
1: श्रोताओं, गोबरधन योजना के तहत पहले से चल रहे प्रयासों को भी अब राष्ट्रीय स्तर पर एकीकृत रूप दिया जा रहा है। बायोगैस एकत्रीकरण मशीनरी योजना के तहत सीबीजी उत्पादकों को कच्चा माल एकत्र करने के लिए आवश्यक उपकरण खरीदने में सहायता दी जा रही है। वहीं जैविक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए बाजार विकास सहायता योजना के अंतर्गत सहायता दी जा रही है। श्रोताओं, गोबरधन योजना के तहत देश में सीबीजी क्षेत्र में हो रहे प्रगति के भी उत्साहजनक हैं। 6 अगस्त 2026 तक गोबरधन के एकीकृत पंजीकरण पोर्टल पर देश भर में 1908 सीबीजी और बायो सीएनजी संयंत्र पंजीकृत किए जा चुके हैं। इनमें 217 संयंत्र चालू हो चुके हैं और लगभग 0.4 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर प्रतिदिन गैस का उत्पादन कर रहे हैं जबकि 339 संयंत्र निर्माणाधीन है। श्रोताओं, गोबरधन भारत की उस विकास यात्रा का हिस्सा है जिसमें आर्थिक प्रगति और पर्यावरण संरक्षण को एक दूसरे का विकल्प नहीं बल्कि एक दूसरे का पूरक बनाया जा रहा है। कचरे से ऊर्जा, ऊर्जा से रोजगार और रोजगार से ग्रामीण समृद्धि, यही चक्रीय जैव अर्थव्यवस्था का आधार बन सकता है। गोबरधन योजना कचरे से कंचन, आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत के संकल्प को धरातल पर उतारने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसी के साथ कार्यक्रम विश्लेषण में आज के लिए बस इतना ही। इस कार्यक्रम को तैयार किया है हमारे सहयोगी उत्पल ने, प्रस्तुति सहायक अक्षत ममगाई। नमस्कार।

वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत वतन का राग कार्यक्रम में आज हम चर्चा कर रहे हैं धरती आबा बिरसा मुंडा के साथ साथ मध्य प्रदेश के जनजातीय महानायकों का।

आजादी की यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्र वंदना के विविध स्वर जन गर्जे, अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के

निशान बिखरे पड़े हैं। ये निशान उस जनजातीय समाज के हैं जो सदियों से अपने वनों पर्वतों संग जीते रहे हैं, जो सदियों से अपनी नदियों हवाओं संग बहते रहे हैं। समय की धारा उनके ऊपर से बहती रही, लेकिन वो समय के साथ बह नहीं गए। अपने समय को, अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति, अपनी आस्थाओं को जीते हुए वो बने रहे अपने संसार में और बचाए रहे अपना संसार। ऐसे अनेक जनजातीय महानायक हुए हैं जिन्होंने अपनी भूमि, अपने धर्म, अपनी संस्कृति के लिए, भारत की स्वाधीनता के लिए अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया। ऐसे ही महानायक थे धरती आबा बिरसा मुंडा, जो आज भी अपने लोगों के बीच एक गुरु, एक इष्ट देव की तरह पूजनीय हैं। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर सन 1875 को रांची जिले के उलिहातू नामक स्थान में हुआ था। उनके पिता का नाम सुगना मुंडा और माता का नाम करनी मुंडा था। चाईबासा के जर्मन मिशन स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने के लिए उन्हें धर्मांतरण करना पड़ा। शिक्षा के दौरान ही उन्होंने जनजातीय समाज के साथ होने वाले अन्याय और शोषण को महसूस किया और उनके भीतर का लोहा धधकने लगा। उन्होंने आनंद पांडे के सानिध्य में रामायण, महाभारत, गीता जैसे धर्म ग्रंथों का अध्ययन कर एकांतवास में कठिन साधना की तथा भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार में वो जुट गए। एक महात्मा तथा समाज सुधारक के रूप में दूर दूर तक उनकी ख्याति फैल गई। उनके अनगिनत शिष्य हो गए। सन 1893-94 में सिंहभूम और मानभूम के आसपास की भूमि को अंग्रेजों ने अपने अधिकार में लेकर मुंडा वनवासियों पर अत्याचार शुरू कर दिया। ऐसे समय में बिरसा मुंडा ने प्रतिरोध का स्वर बुलंद किया। अपने जल, जंगल और जमीन पर अपनी दावेदारी के लिए संपूर्ण मुंडा जनजाति संगठित हो गई। बिरसा मुंडा गिरफ्तार कर लिए गए। 2 साल की सजा काटकर जब वो लौटे तो तूफान बनकर उन्होंने गुप्त सभाएं की। सशस्त्र क्रांति की तैयारी का निर्देश देते हुए उन्होंने नारा दिया, अबुआ दिशोम रे, अबुआ राज। अपनी धरती हो और उस पर अपना राज हो। इस तरह बिरसा मुंडा ने उलगुलान क्रांति की शुरुआत की। उलगुलान यानी असीम कोलाहल। सन 1899 में क्रिसमस के समय 7,000 लोग एकत्रित हुए और क्रांति की घोषणा कर दी गई। 5 जनवरी सन 1900 तक मुंडा जनजाति ने हथियार उठा लिए। अनगिनत पुलिस के जवान मारे गए। करीब 100 इमारतों में आग लगा दी गई और अबुआ देशों यानी स्वराज कायम होने की घोषणा कर दी गई। अंग्रेजों ने उनसे लड़ने के लिए सेना भेजी और बिरसा मुंडा को पकड़वाने के लिए 500 रुपए के इनाम की घोषणा की। 9 जनवरी सन 1900 को डोम्बार पहाड़ी पर अंग्रेजों से लड़ते हुए सैकड़ों मुंडाओं ने शहादत दी। 3 मार्च सन 1900 को एक गद्दार की सूचना पर बिरसा मुंडा को चक्रधरपुर के जंगल से गिरफ्तार कर रांची जेल भेज दिया गया। जेल में उन्होंने कठोर यातनाएं सही और मात्र 25 साल की उम्र में 9 जून सन 1900 को रांची जेल में ही उनका निधन हो गया। लेकिन बिरसा मुंडा के संदेश ने जैसे वनांचलों के संघर्ष को एक नई ऊर्जा से भर दिया और राष्ट्र को जागृत कर दिया। वो जैसे ये कहते हुए विदा हुए कि मैं केवल देह नहीं, मैं जंगल का पुश्तैनी दावेदार हूं। पुश्तें और उनके दावे मरते नहीं, मैं भी मर नहीं सकता। मुझे कोई भी जंगलों से बेदखल नहीं कर सकता। उलगुलान, उलगुलान, उलगुलान।

देश धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए बिरसा मुंडा ने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। 15 नवंबर उनकी जयंती जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाई जाती है। आज भी बिहार, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के जनजातीय समाज में उन्हें भगवान की तरह पूजा जाता है। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के ग्राम डगडौआ में बिरसा मुंडा की प्रतिमा स्थल पर जनसामान्य बड़ी श्रद्धा से एकत्रित होकर उन्हें नमन करता है। मध्य प्रदेश में भी ऐसे अनेक जनजातीय महानायक हुए हैं जिन्होंने भारत के स्वाधीनता संग्राम में मुगल और ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह का बिगुल बजाया। मंडला से लेकर नरसिंहपुर, सागर, दमोह, जबलपुर, भोपाल और सिवनी सहित 52 गढ़ों में राज्य का विस्तार करने वाले पहले गोंड राजा संग्राम शाह ने गोंडवाना को अप्रतिम वैभव प्रदान किया था। इसी गोंड राजवंश की यशोगाथा में रानी दुर्गावती से लेकर शंकर शाह और रघुनाथ शाह के बलिदान की कहानी भी शामिल है। महाकौशल क्षेत्र में गढ़ा मंडला की वीरांगना रानी दुर्गावती ने अपने पति राजा दलपत शाह के निधन के बाद 15 वर्षों तक अपनी प्रजा का पालन किया, राज्य को समृद्ध किया। उन्होंने अनेक जलस्रोतों का निर्माण करवाया, साथ ही गांव-गांव में जलस्रोतों के निर्माण को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से उन्होंने ये घोषणा की कि अपने खेतों में तालाब बनवाने वाले किसानों से कर नहीं लिया जाएगा। इस तरह उनके साम्राज्य में जनसामान्य द्वारा अनगिनत तालाबों का निर्माण हुआ। अपनी मातृभूमि की रक्षा हेतु मुगलों से युद्ध करते हुए रानी दुर्गावती ने आत्मोत्सर्ग किया। जब अंग्रेजों ने इन जल स्रोतों पर योजना बनाकर कब्जा कर लिया और इन पर कर लगाना शुरू किया, तब गोंडवाना में विद्रोह की चिंगारी भड़क उठी। उत्तर में विंध्याचल से लेकर दक्षिण पश्चिम में सह्याद्री के पश्चिमी घाट तक भील जनजाति का निवास स्थान था, जहां अंग्रेजों के दमन और शोषण का लंबा सिलसिला चला। परिणाम स्वरूप भीलों ने त्रयंबक जी के नेतृत्व में शस्त्र उठा लिए। सन 1817 में खानदेश के भीलों का विद्रोह हुआ। इस पर बंबई प्रेसिडेंसी के एल्फिंगस्टन ने लिखा, त्रयंबक और उसके दो भतीजे गोंडाजी दंगल और महीपा दंगल खानदेश के विद्रोही नेता हैं। खानदेश पर अंग्रेजों ने सन 1818 में कब्जा कर लिया, लेकिन भील रुके नहीं। उन्होंने सन 1819 में पुनः क्रांति कर पहाड़ी क्षेत्रों की विभिन्न चौकियों पर कब्जा कर लिया। ये संघर्ष लंबा चला। एक भील नेता शहीद होता तो दूसरा मोर्चा संभाल लेता। सतमाला पहाड़ी के भील सरदार चील नायक को पकड़कर फांसी दे दी गई। भील नायक दशरथ ने सन 1820 में मोर्चा संभाला तो हिरिया नायक के नेतृत्व में भीलों ने सन 1822 में अंग्रेजी राज को चुनौती दी। कर्नल रॉबिन्सन ने सन 1823 में बड़ी सेना लेकर भीलों के क्षेत्र में प्रवेश किया और 2 वर्ष तक भीलों की हत्या करता रहा। बस्तियों में आग लगा दी गई, लेकिन इस अग्नि से विद्रोह की आग और भड़क उठी। सन 1824 में त्रयंबक जी के भतीजे गोंडाजी दंगलिया ने भीलों को पुनः एकत्र कर विप्लव किया। वहीं सन 1826 में दांग सरदारों और लोहारा के भीलों ने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने भील सेना की स्थापना कर इस क्रांति को दबाने का प्रयास किया, लेकिन इसके बाद भी भीलों का आक्रोश खत्म नहीं हुआ। सन 1831 में धार के भीलों ने संघर्ष शुरू किया तो उधर सन 1846 में मालवा के भीलों ने क्रांति कर दी। खानदेश के भीलों ने सन 1852 में प्रबल संघर्ष किया और फिर सन 1857 में भगोजी नायक तथा काजर सिंह के साथ साथ कई भील और भिलाला नायकों ने अपने असंख्य भील साथियों को लेकर अंग्रेजों से युद्ध किया। सन 1857 में मुक्ति संग्राम की चिंगारी जब उत्तर भारत से होती हुई मध्य भारत पहुंची, तब मालवा निमाड़ के जनजातीय महानायकों ने भी मोर्चा संभाला। टंटिया भील, भीमा नायक, खाजिया नायक, सीताराम कंवर, रघुनाथ सिंह मंडलोई आदि ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष का गौरवपूर्ण इतिहास रचा।

भील जननायकों में निमाड़ क्षेत्र के टंटिया भील ने अंग्रेजों से जमकर लोहा लिया। वो अंग्रेजों को लूटते और गरीबों में धन बांटते थे। वो हवा की तरह आते और सहायता प्रदान कर अगले मोर्चे की ओर चल पड़ते। वो अनेक स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रयदाता भी थे। उन्होंने तात्या टोपे से गुरिल्ला युद्ध का प्रशिक्षण भी प्राप्त किया था। उन्हें पकड़ना आसान नहीं था। छल बल से अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर फांसी पर लटका दिया। निमाड़ अंचल के ही भीमा और खाजिया नायक अत्यंत वीर थे। सन 1857 की क्रांति के समय भीमा नायक ने ब्रिटिश सत्ता की नींव हिलाकर रख दी थी। भीमा नायक बड़वानी रियासत के पंचमोहली गांव के रहने वाले थे। अंग्रेजों ने खानदेश भील कोर पलटन को उनके पीछे लगा दिया था, लेकिन वो उन्हें पकड़ नहीं सकी। भीमा नायक अपने साथियों मुवासिया नायक, रेवलिया नायक और 10,000 क्रांतिकारियों के साथ डटे रहे। इस संघर्ष में भीमा नायक की मां सुरसी ने भी एक क्रांतिकारी टोली का नेतृत्व किया था। एक गद्दार की सूचना पर घने जंगल में सोते हुए भीमा नायक को गिरफ्तार कर लिया गया। उधर सेंधवा घाट के खाजिया नायक ने अंग्रेजी राज को नकारते हुए अंग्रेजों की नौकरी छोड़ी और बड़वानी क्षेत्र में भीलों के स्वतंत्रता संग्राम की कमान संभाली थी। भीमा नायक और खाजिया नायक तात्या टोपे के संपर्क में थे। अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध करते हुए खाजिया नायक के 1500 साथी शहीद हुए और उन्हें भी छल से पकड़कर फांसी पर लटका दिया गया। इसी कड़ी में सीताराम कंवर और रघुनाथ सिंह मंडलोई ने भिलाला क्रांति की कमान संभाली और 3,000 क्रांतिकारियों का संगठित दल बनाकर अंग्रेजों पर आक्रमण किया। अकबरपुर क्षेत्र में सीताराम कंवर ने तीव्र हमले किए। उन्हें पकड़ने के लिए 500 रुपए के इनाम की घोषणा भी हुई। ब्रिटिश सेना से बंड नामक स्थान पर युद्ध करते हुए वे शहीद हो गए। रघुनाथ सिंह मंडलोई टांडा बरोड़ के भिलाला नायक थे। अपने अभियान के बाद वो अक्सर बीजागढ़ में ठहरते थे। यहीं उन्हें अंग्रेजों ने बातचीत के लिए आने का संदेश भेजा और जब वो बातचीत के लिए पहुंचे तो गिरफ्तार कर लिए गए। इस तरह भीमा नायक और खाजिया नायक की जलाई क्रांति की मशाल को लेकर अनगिनत भील और भिलाला क्रांतिवीर अपनी भूमि की अस्मिता के लिए शहीद

विश्व इतिहास में बलिदान का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया जबलपुर अंचल के गोंड राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह ने, जो वीरांगना रानी दुर्गावती के वंशज थे। 1857 की क्रांति में उन्होंने जबलपुर क्षेत्र का नेतृत्व किया था। अंग्रेजों के प्रबल विरोधी और अनन्य देवी भक्त राजा शंकर शाह वेश बदलकर जगह जगह जाते और सबको क्रांति के लिए एकजुट करते। जबलपुर की 52वीं रेजिमेंट के सिपाही भी राजा शंकर शाह के घर आते जाते थे। यहीं मुहर्रम के दिन छावनी पर आक्रमण करने की योजना बनाई गई। इसकी सूचना अंग्रेजों तक पहुंचा दी गई। राजा के घर की तलाशी ली गई। इसमें क्रांति संगठन के दस्तावेजों के साथ साथ राजा शंकर शाह द्वारा लिखित देवी को संबोधित एक ऐसी कविता प्राप्त हुई जिसमें अंग्रेजी सत्ता के विनाश की कामना की गई थी। इसे बड़ा आधार मानते हुए दोनों क्रांतिवीर पिता पुत्र को तोप से उड़ाने की सजा दी गई। जबलपुर में एजेंसी हाउस के सामने फांसी परेड हुई। जनसैलाब उमड़ पड़ा था। दोनों का चेहरा वीरता से चमक रहा था। अंत समय भी उनकी जुबान पर वही कविता थी।

तोप की आवाज गूंज उठी। उत्तेजित भीड़ चीत्कार उठी। राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह शहीद हो गए। मध्य प्रदेश के जनजातीय नायकों के बलिदान का एक और अध्याय लिखा छिंदवाड़ा जिले के भोई जनजाति के अमरवीरों ने। बादल भोई ने 1923 में तामिया तहसील में एक सभा का आयोजन किया। उनके जोशीले भाषण से उनके अनगिनत साथी अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो गए। 4000 लोगों के साथ उन्होंने छिंदवाड़ा में अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया। अंग्रेज बौखला गए। उन्होंने 21 अगस्त सन 1930 को बादल भोई को गिरफ्तार कर लिया। कारावास में ही बादल भोई की मृत्यु हो गई। इस तरह बादल भोई ने सहरा भोई, अमरू भोई, इमरत भोई, लोटिया भोई, टापुरु भोई और झंका भोई जैसे जनजातीय क्रांति वीरों के आत्म बलिदान की परंपरा को आगे बढ़ाया। गांधी जी के नमक सत्याग्रह से प्रेरित होकर बैतूल के घोड़ा डोंगरी क्षेत्र में जनजातीय समाज ने जंगल सत्याग्रह किया था। अनगिनत लोग शहीद हुए, लाठियां खाई, जेल यातनाएं सही, लेकिन टस से मस नहीं हुए। इसी क्रम में सिवनी के पास टूरिया सत्याग्रह सन 1930 को हुआ। चंदन बगीचे में घास काटकर सांकेतिक विरोध जताने पहुंचे लोगों पर गोलियां चला दी गईं। घटना स्थल पर ही मुड्डेबाई, रेनोबाई, देमोबाई और बिरजू भोई शहीद हो गए। टूरिया में गोलीकांड के बाद भी पुलिस की बर्बरता नहीं रुकी। ग्रामवासियों को वृक्षों से बांधकर कोड़ों से मारा गया। इसके बाद तो जंगल सत्याग्रह दावानल बनकर प्रांत भर में छा गया। इस तरह अपने धर्म, अपनी भूमि, अपने जीवन मूल्यों और अपने देश के स्वाभिमान के लिए मध्य प्रदेश के इन जनजातीय नायकों ने अपना सर्वस्व बलिदान कर स्वतंत्रता संघर्ष को जारी रखा, जो भारत की आजादी के बाद ही थमा। नमन ऐसे अमर क्रांति वीरों को।

आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। मार्गदर्शन श्री शिवशेखर शुक्ल, समन्वय श्री संजय यादव और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

0: Surgióme.
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार संजीव चोपड़ा, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं मनोज पाठक।
2: नमस्कार। कोयला और खान मंत्री श्री जी किशन रेड्डी ने 10 अगस्त 2026 को लोकसभा में खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इसका उद्देश्य क्या है, किस रूप में यह भारतवर्ष में विभिन्न प्रांतों में आने वाले खनन क्षेत्र की जमीन पर अपना असर डालेगा, इसके विनियमन पर नया परिवर्तन क्या होगा, इसी विषय पर हम मुख्य रूप से आज के कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए आमंत्रित हैं वरिष्ठ पत्रकार संजीव चोपड़ा। संजीव जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
3: जी धन्यवाद।
2: सबसे पहले तो संजीव जी, हम यही समझना चाहेंगे कि वर्तमान संशोधन विधेयक का मुख्य उद्देश्य क्या है और पहले से यह किस रूप में अलग है।
3: जी, ये जो माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2026 का लेके आए हैं, ये जो 1957 का एक्ट है, द माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट, उसको अमेंड करने के लिए है। और प्राइमरीली इससे एक चीज सबसे बड़ी जो इसका मायने है कि जो मिनरल्स और माइंस जो है हमारे देश में डिफरेंट पार्ट्स में, वो सेंटर अपने कंट्रोल में ले रही है इस अमेंडमेंट के थ्रू, कि स्टेट्स जो हैं, जिस स्टेट में भी है, तो स्टेट्स अपनी तरफ से टैक्सेस, लेवीज या सेस कोई किसी तरह का नहीं लगा सकती। एनी जो भी कोई मिनरल रिच लैंड है, वो सेंटर अपने कंट्रोल में लेगी और निर्धारित करेगी कि ये कंडीशंस हैं स्टेट्स के लिए या माइनर के लिए, तो वो कंडीशंस ही एप्लीकेबल होंगी। स्टेट्स अपनी तरफ से कोई टैक्स या लेवी इसके ऊपर नहीं लगा सकता। इसकी बैकग्राउंड मैं बताता हूं कि माइनिंग इंडस्ट्री बहुत अनकॉम्पिटेटिव हो गई थी। उसके दो रीजन हैं, एक कि अगर माइनिंग हमारे देश में नहीं हो रही तो इंपोर्ट करेंगे, अगर यहाँ टैक्स महंगा पड़ रहा है, देश के अंदर से माइनिंग अगर करेंगे वो महंगी पड़ रही है तो विदेश से सस्ती मिल सकती है तो वो करेंगे, इम्पोजिशन ऑफ टैक्स ज्यादा अगर लगा हो, किसी स्टेट ने ज्यादा लगाया हो। ऐसे कुछ एग्जांपल्स आए हैं जो माइनिंग इंडस्ट्री सेंटर को अपील किया है कि माइनिंग अनरिम्यूनरेटिव होती जा रही है, कुछ स्टेट्स हैं जो एडिशनल लेवी लगाई जा रही है, तो उसको रोकने के लिए स्टेट ने कि माइनिंग इंडस्ट्री में प्रॉफिटेबिलिटी बनी रहे और जो रिसोर्सेज हैं, मिनरल्स और माइंस के रिसोर्सेज हैं जो पूरे देश के, वो पूरे देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल हो और यूनिफॉर्मिटी हो, टैक्सेस की भी यूनिफॉर्मिटी हो और रिसोर्सेज भी पूरे यूनिफॉर्मली इस्तेमाल हो पूरे देश के लिए। तो इस संदर्भ में ये अमेंडमेंट लेके आए हैं। तो लोकसभा में ये 10 अगस्त को जी किशन रेड्डी जी, जो कोल एंड माइन मिनिस्टर हैं, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था बिल, वो आज पारित हो गया है और राज्यसभा में शायद ये कल आएगा।
2: यहाँ पर हम ये समझना चाहेंगे कि कुछ क्षेत्र राज्य के विषय हुआ करते हैं, कुछ केंद्र के हुआ करते हैं और कुछ दोनों के बीच के हुआ करते हैं, तो यह जो कदम उठाना पड़ा, हालांकि आपने उसका थोड़ा स्पष्ट किया, लेकिन थोड़े से उदाहरण के साथ हम समझना चाहेंगे कि विभिन्न खनिज बहुल जो प्रांत रहे, वहां किस रूप में कर को लेकर एक रूपता नहीं थी, जिससे कि खनन उद्योग से संबंधित पार्टियों को अपना पक्ष रखना पड़ा कि हमें खनन विस्तारीकरण के लिए या कह लें एक रूपता के लिए अपनी जो लागत है उसे घटाने के लिए समाधान चाहिए।
3: जी, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, जैसे कुछ स्टेट्स झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, ये कुछ स्टेट्स हैं जो आसपास हैं, नेबरिंग स्टेट्स हैं।
2: जी, जी।
3: तो यहाँ पे कुछ खनन होते हैं, हर स्टेट में होते हैं, फॉर एग्जांपल कोयला है, तो अगर डिफरेंट स्टेट्स डिफरेंट पार्टीज की है और हर स्टेट अपने अपनी तरफ से लेवी लगा रही है, किसी ने 500 पर टन लगा दिया है, किसी एक पदार्थ पे किसी ने 1000 पर टन लगा दिया है, अपने अपनी सहूलत के हिसाब से लगाया, तो डिस्पैरिटी हो रही थी टैक्स की, एक स्टेट में एक खनन सस्ता मिल रहा है, दूसरी स्टेट में महंगा मिल रहा है, तीसरी स्टेट में जो माइनिंग कर रहे हैं माइनर्स हैं उनको मुश्किल आ रही थी कि यूनिफॉर्मिटी नहीं थी टैक्सेस की, तो इसीलिए उन्होंने अपील की सेंटर को। और सबसे बड़ा कि प्रॉफिटेबिलिटी अफेक्ट हो रही थी माइनिंग सेक्टर की, कि उस पर एडिशनल लेवी जब स्टेट लगाती थी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हायर हो रही थी और जी, इसी संदर्भ में उन्होंने अपील की सेंटर को और सेंटर ने ये अख्तियार अपने पास लिए।
2: यहाँ पर यदि ये हम समझना चाहें कि श्रोताओं के नजरिए से कि राज्य अपने आवश्यकताओं के लिए राजस्व प्राप्ति के लिए अपने हिसाब से शुल्क लगा रही थी या लगाती है, यहाँ पर जब केंद्र अपने अनुसार जमीन भी चिन्हित करेगी, उसको नोटिफाई भी करेगी और उसके बाद लेवी भी करेगी, तो राज्यों के हित की रक्षा किस तरह हो पाएगी?
3: यही कुछ पार्टीज यही अपोज कर रहे हैं कि ये फेडरलिज्म के खिलाफ है ये बिल, क्योंकि स्टेट्स को अख्तियार है कि अपनी स्टेट में जो मिनरल मिलता है उसके ऊपर अपनी लेवी लगा सके। तो अगर जिस स्टेट में लेवी मिल रहा है, जहां से रिकवर किया जा रहा है
2: जी,
3: उस स्टेट को कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, वहां के लोगों को बेनिफिट नहीं हो रहा, एक्सेप्ट कि नौकरियां लोकल मिल रही हैं, कि लोकल पीपल को नौकरियां मिल रही हैं।
2: जी, जी, जी।
3: लेकिन जो पदार्थ वहां से निकल रहा है उस स्टेट के नीचे है खनन पदार्थ, तो उस स्टेट को उसका कोई बेनिफिट नहीं, उसके ऊपर टैक्स भी नहीं, तो सारा कुछ सेंटर ले जाएगा। सेंटर जो आपको स्टेट को देगा उतना ही स्टेट को मिल सकेगा। लेकिन सेंटर का नजरिया ये है कि अगर किसी एक स्टेट में मिनरल है, माइनो मिनरल है, वो पूरे देश के लिए उसका इस्तेमाल होना चाहिए, पूरी देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए उसका इस्तेमाल होना चाहिए और टैक्सेशन जो है यूनिफॉर्म होना चाहिए।
2: बिल्कुल।
3: तो सेंटर इसको कह रही है कि हम डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे किसी एक स्टेट के साथ, सबके साथ बराबर टैक्स होना चाहिए। तो अपनी कंडीशंस जो पहले ले करेंगे, ये नहीं कि स्टेट को टैक्स मिलेगा नहीं, उसमें से कुछ मिलेगा नहीं, सारा सेंटर ले जाएगा।
2: बिल्कुल,
3: पहले कंडीशंस ले होंगी, उसी कंडीशंस के मुताबिक चलेगा। तो मैं आपको एग्जांपल जैसे देता हूं कि जैसे लाइमस्टोन है, लाइमस्टोन झारखंड में भी होता है, तमिलनाडु में भी होता है, कुछ और स्टेट्स में भी है। तो लाइमस्टोन के ऊपर झारखंड में 40 रुपए पर टन का लेवी लगाया गया था, टैक्स लगाया गया था, और तमिलनाडु में 250 रुपए का टैक्स लगाया गया था। तो जो साउथ में कोई कंज्यूमर है या माइनिंग कर रहा है उसको महंगा पड़ रहा है, ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा है, झारखंड में कम देना पड़ रहा है। तो ये डिस्पैरिटी को भी खत्म करने के लिए ये यूनिफॉर्मिटी लाना बहुत जरूरी था।
2: नटसेल में समझे तो यह राज्यों का जो अधिकार था उसमें एक रूपता लाने के उद्देश्य से मुख्य रूप से यह अधिकार केंद्र ने अपने पास इस संशोधन के माध्यम से लिया है। यदि हम ये समझना चाहें कि देश की खनिज सुरक्षा प्राप्त करने और आयात पर निर्भरता कम करने में यह जो व्यापक उद्देश्य हमारा है खनिज उत्खनन का, उसे कैसे पूरा करेगा, क्या लग रहा है आपको?
3: यही मैं बता रहा था कि सपोज टैक्स इतना हैवी लग गया किसी एक मिनरल के ऊपर,
2: जी
3: मिनरल रिसोर्सेज बड़े लिमिटेड हैं, तो अगर एक स्टेट बहुत हैवी टैक्स लगा देती है तो विदेश से उसका इंपोर्ट सस्ता हो रहा है।
2: जी,
3: कोई
2: जी।
3: और कंट्री है जिसके ऊपर टैक्स बहुत कम है और जहां मिनरल्स ज्यादा हैं, तो इंपोर्ट होगा, तो जिससे हमारा फॉरेन रिजर्व्स भी जाएंगे और रेवेन्यू दूसरे देश में जाएगा, कि अपने देश में रहने की जगह दूसरे देश में जाएगा। और आत्मनिर्भरता भी जरूरी है कि देश आत्मनिर्भर हो और विकसित भारत 2047 तक बने, इस उद्देश्य को लाते हुए कि जो रिसोर्सेज हमारे देश के अंदर हैं वो देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के काम आए।
2: जी जी।
3: और इसीलिए ये यूनिफॉर्मिटी जरूरी थी।
2: यहाँ पर यदि हम कर व्यवस्था को लेकर समझना चाहे कि राज्य द्वारा लेवी यानी पहले ली गई होगी या कुछ कंपनियों का बाकी होगा, उसको लेकर इस विधेयक में क्या कहा गया है?
3: जी, इस विधेयक में एक सेक्शन 9D एक एडिशनल ऐड किया है, जो अमेंडमेंट है उसमें ये कहता है कि जो कर आपने किसी स्टेट ने अगर लगाया हुआ था और पहले अदा कर दिया, स्टेट ने रिकवर कर लिया वो, तो उसका रिफंड नहीं होगा। ये अमेंडमेंट जब एक बारी जो बिल है, ये प्रपोज लेजिस्लेशन एक बारी जब एक्ट बन जाएगा, उसके बाद वो स्टेट किसी भी माइनर को या वापस रिफंड नहीं होगा। लेकिन अगर किसी ने ये कर नहीं दिया अभी तक, जब तक कि ये एक्ट इम्प्लीमेंट नहीं होता, तो उस डेट के बाद वो स्टेट रिकवर नहीं कर सकती उस टैक्स को।
2: अच्छा।
3: पुरानी डेट से कि ये आपका बकाया है, ये हमें दीजिए। तो ये अमेंडमेंट भी एक लाया गया है इसमें कि ये खत्म करने के लिए कि रिकवरी पुराने टैक्स की नहीं कर सकते और जो दिया हुआ टैक्स की रिफंड नहीं होगा।
2: अच्छा, वहां की जमीन को परिभाषित करने का भी कोई प्रावधान किया गया है नए विधेयक में?
3: जी, वो तो सेंटर ने लिया ही है, यही तो मेन है कि सेंटर ही डिसाइड करेगा कि कोई भी लैंड जो मिनरल रिच है, जहां पे मिनरल्स हैं, वो सेंटर उसको अख्तियार करेगा और उसका कंट्रोल सेंटर लेगा, और उसमें मिनरल्स जो निकलेंगे, उसकी जो माइनिंग के लिए लीज देनी है, जो लाइसेंसेस देने हैं, वो सब सेंटर करेगा, स्टेट्स का कंट्रोल उसके ऊपर नहीं,
2: अलग हो जाएगा। यहां यदि हम ये समझना चाहें कि नए विधेयक से निजी क्षेत्र किस रूप में आकर्षित होगा और अपना निवेश लेकर आएगा, क्या भविष्य दिखा रहा यह विधेयक?
3: जी, इस विधेयक से क्योंकि यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी, तो पूरे देश में कहीं पे भी माइनिंग करनी हो तो इसमें इन्वेस्टमेंट और लगेगी, माइनिंग सेक्टर के लिए प्रॉफिटेबल हो जाएगा क्योंकि स्टेट्स अब एडिशनल लेवी नहीं लगा सकते, तो माइनिंग विल बिकम मोर प्रॉफिटेबल। इससे माइनिंग इंडस्ट्री में और इन्वेस्टमेंट आएगी, कुछ फॉरेन इन्वेस्टर भी आ सकते हैं कि हमारे देश में खनन पदार्थ तो बहुत है लेकिन माइनिंग में उतना इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो इस विधेयक से स्टेट्स को इन्वेस्टमेंट और आने का स्कोप है और माइनिंग सेक्टर में।
2: यहाँ पर यदि हम थोड़ी सी चर्चा को अपना आगे बढ़ाएं और ये समझना चाहें कि जो पुराना विधेयक था उससे यह निश्चित रूप से थोड़ा सा अलग है, राज्यों के अधिकार थोड़े सिमट जाएंगे और खनन के क्षेत्र में केंद्र के पास पूरी शक्तियां आ जाएंगी, जमीन परिभाषित करने से लेकर इसके नियमन तक की। यहां पर पर्यावरण की चिंताओं को इस विधेयक में या पुराने विधेयक में किस रूप में आंका गया है और कैसे उन चिंताओं का समाधान किया जाएगा, क्योंकि जो ग्लोबल वार्मिंग का हम असर देख रहे हैं और खनन क्षेत्र में जो उद्योगपति हैं उनकी चिंताओं को देख रहे हैं, तो दोनों का संतुलन कैसे बनाया गया है?
3: अब तो सेंटर के अंडर आ गया, तो एनवायरमेंट भी सेंटर के अंडर ही है।
2: जी जी,
3: तो अब सेंटर डिसाइड करेगी कि कोई इलीगल खनन ना हो, इलीगल माइनिंग ना हो उस एरिया में, तो सेंटर लाइसेंसेस देगी। जब लैंड ईयरमार्क हो गया, सेंटर के कंट्रोल में आ गया, सेंटर उसके ऊपर माइनिंग लाइसेंसेस इशू करेगा और टैक्स और लेवी डिसाइड करेगा कितना देना है।
2: जी,
3: तो एनवायरमेंट भी वही देखेगा कि इलीगल क्वारिंग ना हो, ये ना हो, लेकिन एक चैलेंज जरूर है कि अभी भी क्योंकि सेंटर ने वो लैंड को तो अपने कंट्रोल में ले लिया लेकिन है तो स्टेट में,
2: बिल्कुल,
3: और वेयर विद ऑल सारा स्टेट्स का है, जो एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो पुलिस फोर्स है जो एनफोर्स करेगी लॉ को, वो तो स्टेट में ही है। तो इस एक्ट से जब तक की माइनिंग लाइसेंस नहीं दिया जाता तब तक इलीगल माइनिंग और क्वारिंग का ये चैलेंज जरूर रहेगा।
2: यदि आपने लाइसेंस की चर्चा की तो हम समझना चाहेंगे इस विधेयक के दायरे से थोड़ा सा आगे निकलकर कि खनन के क्षेत्र में जो ई नीलामी की प्रक्रिया शुरू हुई और सब कुछ पारदर्शी बनाने की कवायद हुई, उससे कितना लाभ वस्तुतः पहुंचा है अभी तक?
3: जी बिल्कुल, स्टेट को रेवेन्यू जनरेट करने के लिए अब ई ऑक्शन होता है। माइंस किसी भी क्षेत्र की हो, किसी भी मिनरल को माइनिंग के लिए अब ई ऑक्शन होता है। तो अलॉटमेंट जो थी वो खत्म कर दी, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, करप्शन कि किसी को मेरा रिश्तेदार है, मेरा ये क्लोज है, या किसी ने कोई एक्सट्रैनियस कंसिडरेशंस करके किसी को माइनर लाइसेंस दे दिया, माइनिंग लाइसेंस, तो अब वो सब खत्म हो गया है।
2: जी,
3: और
2: जी,
3: स्टेट को रेवेन्यू, आपने अगर देखा होगा, लैक्स ऑफ क्रोर्स एडिशनल रेवेन्यू मिला है थ्रू ई ऑक्शन। और जितने भी लाइसेंसेस हैं, बाहर से कोई आएगा, देश से, विदेश से, जहां से भी जो भी कंपनी उसमें अप्लाई करेगी, उसको जो ज्यादा रेवेन्यू देगा उसको मिल जाएगा लाइसेंस।
2: बिल्कुल,
3: तो अब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व या प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट या जो अलॉटमेंट की प्रक्रिया है वो खत्म ही कर दी है।
2: यानी बाबूशाही की जो बीच की प्रक्रिया थी वो अब यानी घट गई नहीं बल्कि खत्म हो गई है। यहां फिर एक कैप्टिव माइंस को लेकर सवाल पूछना चाहूंगा कि कैप्टिव माइंस के लिए क्या नए निर्देश नए विधेयक में रखे गए हैं, उनको लेकर कोई दृष्टि दी गई है इसमें?
3: नहीं, इस विधेयक में सिर्फ एक अमेंडमेंट ये है, प्राइमरीली दो चीजों के लिए, कि स्टेट्स एडिशनल टैक्स नहीं लगा सकता और जो मिनरल रिच लैंड है वो सेंटर के अख्तियार में आ जाएंगे।
2: जी,
3: ये प्राइमरीली इसका स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव इसका यही है। और एक नया सेक्शन मैंने आपको बताया कि वो जो पुराना टैक्स रिफंड नहीं होगा और नया रिकवर नहीं कर सकते पुराना टैक्स।
2: हाँ, कुल मिलाकर यदि आने वाले भविष्य को देखते हुए हम समझें तो खनन उद्योग के लिए यह कितना सहायक होगा, किस रूप में आकलन करते हैं आप?
3: जी बिल्कुल, जैसे भारत विकसित भारत की तरफ 2047 की तरफ बढ़ रहा है, तो आत्मनिर्भरता मिनरल सेक्टर में हमारी बढ़ रही है। और ये जो अमेंडमेंट लेके आए हैं इससे इस लिहाज से नहीं देखना चाहिए जैसे कुछ ऑपोजिशन देख रही है कि हमारे राइट्स ले लिए, हम लेवी नहीं कर सकते टैक्स, इस लिहाज से नहीं देखना चाहिए, बल्कि नेशनल डेवलपमेंट गोल के लिहाज से देखना चाहिए कि इससे क्या है कि माइनिंग सेक्टर में एक तो रिसोर्सेज ज्यादा लगेंगे, माइनिंग प्रॉपरली होगी, रेगुलेटेड होगी बाय वन एजेंसी विच इज द सेंट्रल गवर्नमेंट, और वैसे भी ई ऑक्शन करते हैं तो कोई इसमें प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट का कोई स्कोप नहीं है, तो सारा कुछ मॉनिटरिंग इसकी प्रॉपर होगी और इन्वेस्टमेंट इस सेक्टर में और बढ़ेगा।
2: कुल मिलाकर श्रोताओं, नया विधेयक देश की तरक्की के लिए उपयोगी साबित होगा, इसी नजरिए से इसका प्रावधान किया गया है और आने वाले दिनों में प्रत्यक्ष लाभ निश्चित रूप से हम देखेंगे। आप सभी श्रोताओं की ओर से हम अपने विशेषज्ञ संजीव जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।
3: जी बहुत धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार संजीव चोपड़ा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे मनोज पाठक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
0: सुर्खियों में

आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो। रीड इंडिया समुदाय के सहयोग के द्वारा समुदाय के विकास के लिए कार्य करता है। रीड इंडिया ग्रामीण समुदायों में स्थायी सामाजिक परिवर्तन हेतु शिक्षा, उद्यम और सामाजिक विकास के क्षेत्र में कार्य करता है। आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो।

0: ज्ञानवाणी लखनऊ प्रस्तुत करता है कार्यक्रम जीवी ऑनलाइन।
1: स्वागत है हमारे सभी श्रोताओं का एफएम 105.6 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी ज्ञानवाणी लखनऊ पर, और आज मैं ज्योत्सना हूं आपके साथ लेकर आपका अपना फोन इन कार्यक्रम बात बतेगी। श्रोताओं, युग परिवर्तन के साथ विचारों के मापदंड ही नहीं बदलते बल्कि रीति और नीतियां भी करवट ले जाती हैं। एक समय था जब स्त्रियों के विषय में कहा जाता था, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। लेकिन श्रोताओं, आज का युग ऐसा नहीं है। विधि की ये कैसी विडंबना है कि एक ही वृक्ष पर लगे दो पुष्पों में से जो एक अधिक सुरभित और सुरम्य होता है उसको अभिशाप समझ लिया जाता है, वहीं दूसरी ओर दूसरे को कष्टमय होते हुए भी वरदान। पुत्र के जन्म पर घर में तवे ढोलक और नपीरी बजने लगती है, लेकिन वहीं जब एक कन्या का जन्म होता है तो माता पिता के चेहरे पर उदासी की छाया क्यों छा जाती है। आज इन्हीं सब प्रश्नों को अपने मन में रखते हुए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है रीड इंडिया की कंट्री डायरेक्टर डॉक्टर गीता मेहरोत्रा को, और साथ ही साथ हमारे साथ हैं इग्नू के असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर कीर्ति विक्रम सिंह जी। तो मैम, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपनी ज्ञानवाणी के स्टूडियो में। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे ज्ञानवाणी के स्टूडियो में। और अपने श्रोताओं को एक बार हम अपना विषय फिर से बता दें, हमारा आज का विषय है महिला सशक्तिकरण। तो अगर आप इस विषय से संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हैं तो हमें फोन कॉल कर सकते हैं। हमारे फोन इन नंबर्स हैं 0522-2987-847 यानी 0522-2987-847। और मैम, आज हम बात कर रहे हैं महिला सशक्तिकरण पर। तो सबसे पहला जो हमारा प्रश्न आपसे है वो ये है कि महिला सशक्तिकरण क्या है।
2: महिला सशक्तिकरण की अगर हम बात करें तो ये कोई साइंस नहीं है, ये कोई फॉर्मूला नहीं लगता है महिला सशक्तिकरण का नापदंड करने के लिए। ये सबसे बड़ी बात जो इसके पीछे है, और मैं बहुत बार इस बात के ऊपर चर्चा भी करती हूँ कि ये हमारा अपनी सोच है, अपना एटीट्यूड है जो हमारे बिहेवियर में बदल जाता है, और हम अपने बिहेवियर को थोपने की कोशिश करते हैं समाज पे। तो अगर हमारी सोच बदल जाए, हमारा एटीट्यूड बदल जाए, हमारे एक्शंस बदल जाएं और हमारा बिहेवियर बदल जाए तो हम इक्विटी की बात कर सकते हैं, हम बराबरी की बात कर सकते हैं, हम महिलाओं को उतना ही दर्जा दे सकते हैं जितना हम पुरुषों को देते हैं।
1: बिल्कुल मैम, बहुत अच्छी बात। और मैम, जैसा कि हम महिलाओं को ढेर सारे नाम देते हैं, देवी, सती, सीता, दुर्गा, है ना, न जाने कितने सारे नाम दिए गए हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि वर्तमान परिवेश में ये कहाँ तक चरितार्थ होता है?
2: माने तो भगवान, नहीं माने तो मिट्टी, है ना।
1: बिल्कुल,
2: ये तो हम बचपन से ही सुनते आए हैं। तो मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी कि अगर इंसान को दूसरे इंसान की इज्जत करनी आ जाए और उसकी रिस्पेक्ट करनी आ जाए तो ये जो अंतर है महिला और पुरुष में ये एकदम खत्म हो जाएगा।
1: बिल्कुल मैम, और जैसे प्राचीन काल में तो महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी और महिलाएं शास्त्रार्थ भी करती थी, हर क्षेत्र में वो थी, लेकिन वर्तमान समय में महिलाओं की स्थिति कह सकते हैं कि उसमें बहुत अंतर अब आ गया है, तो ऐसा क्यों हुआ है?
2: देखिए, मैं यहाँ पे पॉलिटिक्स की बात भी नहीं करूंगी और बहुत रिसर्च की बात भी नहीं करूंगी। जो हम कहते हैं कि प्राचीन काल में स्त्रियों के हाथ में शस्त्र थे, या जैसे झांसी की रानी की बात करें या कुछ और महिलाओं की बात करें, पर आप देखिए कि मदर टेरेसा भी थी। मदर टेरेसा के हाथ में कोई शस्त्र नहीं थे, पर मदर टेरेसा ने साइलेंटली कैसे औरतों को सपोर्ट किया और अपने कार्यक्रम करते हुए दिखाया, अपने जीवन की पूरी रचना के बारे में लोगों को बताते हुए बताया कि एक महिला भी इस लेवल तक पहुंच सकती है। तो मैं उसमें कहूंगी कि महिलाओं को अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है और अगर रास्ते में कोई रुकावट नहीं आती तो स्काई इज द लिमिट फॉर अ वुमेन, बहुत ऊंचा उठ सकती हैं वो। और अगर परिवार उनको सपोर्ट करे तो समाज भी कहीं पीछे हट जाता है।
1: बिल्कुल मैम। और लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि हमें महिला सशक्तिकरण जैसे दिवस मनाने की जरूरत पड़ी?
2: महिला सशक्तिकरण का दिवस इसलिए मनाया जाता है कि हम अपने समाज को बार बार बार बार रिमाइंड करें कि जो आपका इक्वल पार्टनर है, हकदार है इस समाज का, उनका राइट है अपनी जिंदगी जीने का, अपना इवन जन्म लेने का, जिंदगी जीने का, माँ बाप से उतना ही प्यार लेने का जितना हम बेटों को करते हैं, उनको भी उतनी ही एजुकेशन चाहिए जितना हम बेटों को देते हैं, उनको भी उतने अधिकार चाहिए। अगर मैं यहाँ पे रिसर्च की बात करती हूँ तो आज का युग जो है वो टेक्नोलॉजी का युग है, टेक्नोलॉजी का युग है और महिलाओं को वो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती हैं। और आप देखिए अभी समय में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी, इंजीनियरिंग भी कर रही हैं और बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिनमें वो काम करती हैं, पर स्टिल अगर हम रूरल इंडिया की बात करें तो 48% जो हमारा पोर्शन है महिलाओं का, उसमें से मैं कहूंगी कि 40% भी उस लेवल तक नहीं है जो फुल्ली एजुकेटेड है और टेक्नोलॉजी में आगे अपने कदम बढ़ा रही हैं। तो ये जो फर्क हम देख रहे हैं आधुनिक समाज में और पिछड़े समाज में, इस गैप को भरने की जरूरत है। और जब हम महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं और अगर हम इस गैप को नहीं समझेंगे, ये जो इतनी बड़ी विनम्रता हमारे सामने आके खड़ी हुई है कि हम जब भी वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो हम खाली शहरों की बात करते हैं, हम गांव को भूल जाते हैं। और गांव में अगर महिला से आप चर्चा करें तो आपको पता चलेगा कि उसके अंदर कितनी शक्ति है, कितनी उसकी सोच बड़ी है, पर उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। तो जब हम महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं और दिवस मनाने की बात कर रहे हैं, सिर्फ एक रिमाइंडर देने की जरूरत है समाज को कि उन महिलाओं की तरफ भी देखिए जिनको कुछ अपॉर्चुनिटीज ही नहीं मिलती हैं। तो सोच और अपॉर्चुनिटी का आपस में बहुत गहरा तालमेल है, इस तालमेल को समझने की जरूरत है।
1: और मैम, महिला सशक्तिकरण में शिक्षा की क्या भूमिका है?
2: ये आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। और शिक्षा अपने में ही एक संपूर्ण, मैं बोलूंगी कि एक टॉपिक है, और सशक्तिकरण एक अलग है। हम कहते हैं कि महिला पढ़ जाएगी तो वो एम्पावर्ड हो जाएगी, पर यह बात नहीं है। बहुत सारी महिलाएं पढ़ के भी अपने परिवार में बहुत ही डिफरेंस महसूस करती हैं। और जब हम चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात करते हैं, जहां पे हम देखते हैं कि सेक्स रेशियो महिलाओं की बच्चों की जो गर्ल चाइल्ड है उसकी बहुत कम है, और 2011 के जो आंकड़े हैं, आज हमारा वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है और मैं आंकड़ों के ऊपर अभी थोड़ी सी बात करना चाह रही हूं कि जो हमारे देश में अलर्ट हुआ था कि 2011 में जब हमारी सेंसस हुआ और हमें पता चला कि चाइल्ड सेक्स रेशियो हमारा, जो गर्ल चाइल्ड सेक्स रेशियो है, वो बहुत ही डाउन है। और बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हमारे सामने आए थे जैसे हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात एंड देवर अदर स्टेट्स आल्सो, पर उसमें क्यों गिरा हमारा सेक्स रेशियो? क्योंकि ये अर्बन एरिया में जो बहुत ही सक्षम थे, पैसे वाले थे और पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने एबॉर्शन अपना एक राइट समझ लिया था, जो बहुत ही गलत था। इसीलिए चाइल्ड सेक्स एबॉर्शन पे भी सरकार ने कानून बनाया था। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये जो गैप है ये पढ़ाई की वजह से आया। पढ़े लिखे लोगों ने भी बहुत सारे ऐसे ब्लंडर्स किए हैं जिसमें लड़कियों की जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ही कम हो गई, और उनको वो राइट भी नहीं मिला कि वो इस समाज में अपना जीवन व्यतीत कर सके, और उनके पैदा होने से पहले ही उनको एबॉर्शन से खत्म कर दिया गया।
1: बिल्कुल। और जैसा कि हमारे साथ सर भी हैं, तो सर हम आपसे जानना चाहेंगे इग्नू से जुड़ी हुई कुछ जानकारी कि इग्नू का एडमिशन सत्र कब से शुरू हो रहा है?
3: जी मैडम, इग्नू के अगर हम जुलाई 2021 सेशन की बात करें तो एट प्रेजेंट हमारे एडमिशन इस साइकिल के लिए ओपन है, और जिन लर्नर्स को इग्नू से यूजी प्रोग्राम, पीजी प्रोग्राम, सर्टिफिकेट या डिप्लोमा प्रोग्राम ज्वाइन करना हो तो उनके पास अवसर है कि वो 15 जुलाई तक ऑनलाइन मोड से फॉर्म्स भर सकते हैं। जो विश्वविद्यालय का लिंक है एडमिशन का, वो विश्वविद्यालय की वेबसाइट पे है। तो कोई भी स्टूडेंट अगर उसको कोई प्रोफेशनल कोर्स करना है या अपनी स्किल्स को बढ़ाना है, नॉलेज को अपग्रेड करना है, तो वो इग्नू के प्रोग्राम्स को ज्वाइन कर सकता है। और अभी बहुत सारे नए प्रोग्राम्स विश्वविद्यालय ने लॉन्च किए हैं, जैसे एमए इन उर्दू, एमए इन ज्योतिष और जेंडर एंड डेवलपमेंट स्टडीज पे तमाम कोर्सेज लॉन्च हुए हैं। फिर डेवलपमेंटल स्टडीज पे पीजी डिप्लोमा इग्नू ऑफर कर रहा है। सीएसआर में इग्नू कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में नया कोर्स हमारा लॉन्च हुआ है डिप्लोमा लेवल पे, और उर्दू लैंग्वेज में पीजी हम लोगों ने लॉन्च किया है। तो तमाम ऐसे कोर्सेज हैं जो मैं समझता हूं कि लर्नर्स के लिए काफी यूजफुल साबित होंगे, और जो डिस्टेंस मोड में अभी तक नहीं ऑफर हो रहे थे उनको विश्वविद्यालय डिस्टेंस मोड में ऑफर कर रहा है। कुछ पाठ्यक्रम हमारे खास तौर से सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स जो हैं वो ऑनलाइन मोड में भी इस समय ऑफर हो रहे हैं। तो जिन लर्नर्स के पास समस्या है कि वो डिस्टेंस से भी नहीं कर पाते हैं, वो ये चाहते हैं कि हम घर बैठे अपनी पढ़ाई करें अपने स्मार्टफोन को यूज करते हुए, अपने लैपटॉप्स को यूज करते हुए, तो उनके लिए ऑनलाइन कोर्सेज जो इग्नू के हैं वो काफी अच्छा ऑप्शन है। तो मुझे लगता है कि लर्नर्स को समय नहीं गंवाना चाहिए और एडमिशन के लिए जो लिंक हमारा खुला है उसमें उसका लाभ उठाना चाहिए और अपना एडमिशन लेना चाहिए।
1: बिल्कुल सर, और टर्म एंड एग्जामिनेशंस जो कोविड की वजह से पोस्टपोन हो गए थे
3: जी,
1: तो उसके बारे में सर?
3: जी, टर्म एंड एग्जामिनेशन हमारा जो कोविड की वजह से पोस्टपोन हो गया था वो 3 अगस्त से शुरू होने वाला है। तो जो फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनको इस एग्जाम में बैठने का अवसर मिलेगा।
1: बिल्कुल सर, बहुत अच्छी जानकारी। और मैम, हम बात कर रहे थे महिला सशक्तिकरण की, तो इसमें आपने बताया कि शिक्षा की क्या भूमिका है, अब इसमें परिवार का क्या योगदान होता है?
2: सबसे बड़ा योगदान परिवार का है, और उससे बड़ा योगदान है कि जो मैरिड कपल है, हस्बैंड एंड वाइफ, और एक हस्बैंड को स्टैंड लेना है कि अगर फर्स्ट ऑफ ऑल बैन क्यों हुआ कि हमें स्क्रीनिंग नहीं करानी बच्चे की कि वो लड़की है या लड़का, जो सेक्स सेलेक्टिव स्क्रीनिंग है वो भी नहीं करानी, अबॉर्शन भी नहीं कराने, और जब परिवार में जो बड़े बुजुर्ग हैं अगर उनकी सोच अभी नहीं बदली है, तो एक हस्बैंड और वाइफ मिलके अगर स्टैंड लेते हैं तो ये बहुत बड़ा स्टैंड है माइंडसेट को चेंज करने का। क्योंकि हम बहुत सारे अपनी लाइफ में ऐसे डिसीजंस होते हैं जो हस्बैंड वाइफ मिलके डिसाइड करते हैं कि नहीं, हमें अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है और हमें ये स्टेप्स लेने हैं, तो क्यों नहीं इस संदर्भ में भी। और जब शिक्षा की बात है तो अब बहुत समय बदल गया है, बहुत परिवारों की सोच बदल गई है, यंग कपल्स की सोच बदल गई है। वो डिफरेंस है जो लड़की और लड़के की शिक्षा में, अभी मुझे शहरों में तो इतना नजर नहीं आता है, पर हाँ उसका बहुत बुरा हाल है गांवों में। गांवों में अगर हमने अभी भी इस चीज को नहीं पकड़ा और नहीं शिक्षा की तरफ पेरेंट्स की सोच बदली, तो ये गैप इतना ज्यादा बढ़ जाएगा। क्योंकि अब टेक्नोलॉजी के आने से, टेक्नोलॉजी उनके लिए एक ड्रीम है, एक सपना है, उसको हाथ से छूना भी उनके लिए बहुत दूर की बात है, और टेक्नोलॉजी को यूज करना, तो आई थिंक मैं इसके बारे में पिछले 15 साल से चर्चा कर रही हूं, और अभी भी वो गैप एक ड्रॉप इन द ओशन की लेवल पे फिल हुआ है, और उसमें भी ड्रॉप का जो साइज है वो डिफाइन करना मेरे लिए इतना मुश्किल है कि जस्ट अ सिंपल ड्रॉप। तो अगेन आई वुड से कि ये सब माइंडसेट की बात है, और जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं वो अपने पैरों पे खड़ी हैं आज, और अपने पैरों पे खड़े होके जब उनको मौका मिलता है कि वो अपने आप को इतना सक्षम समझती हैं कि वो अपने परिवार की देखभाल कर सकती हैं, और उनके जो हस्बैंड्स हैं वो भी इस बात को समझते हैं, तो द ओनली थिंग इज दैट कि कैसे हम जो एक्सपीरियंसेस हैं, देखिए पीयर लर्निंग भी बहुत बड़ी एजुकेशन है हमारे देश में, और अगर एक महिला अपने एक्सपीरियंसेस दूसरी महिला के सामने शेयर करती है कि कैसे उसने अपने बच्चों की देखभाल की और अपने गर्ल चाइल्ड को उन्होंने हायर एजुकेशन दी और उसको हायर एजुकेशन का ये मतलब नहीं है कि ट्वेल्थ पास करा दी, हायर एजुकेशन की पोस्ट ग्रेजुएशन, इंजीनियरिंग, डॉक्टर, तो ये सोच आस्ता आस्ता शहरों में तो बहुत सीख आ रही है, पर गांवों में सोच है, सपना है, पर उस सपना को पूरा करने के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो यहां तक तो हम पहुंच गए हैं।
1: बहुत अच्छी बात। और जैसे आपने कहा कि गांव में अपॉर्चुनिटीज नहीं है, तो इसी तरह महिला सशक्तिकरण में स्किल डेवलपमेंट के लिए कुछ आप बताइए।
2: बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम सरकार भी चला रही है जहां पे वो स्किल डेवलपमेंट की बात करती है, और गुड़गांव में तो मैंने एक यूनिवर्सिटी भी देखी है जिस यूनिवर्सिटी का नाम ही स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी है, और इग्नू जैसे भी ऐसे बहुत सारे और भी इंस्टीट्यूशंस हैं जो स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं। और अगर मेरा आप एक्सपीरियंस जाने तो जिस संस्था की मैं कंट्री डायरेक्टर हूं, रीट इंडिया, हमने 30,000 से ज्यादा औरतों को सक्षम बनाया है लाइवलीहुड ट्रेनिंग पे, जो वो आज अपने पैरों पे खड़ी हो सकें। और इससे आज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के दिन मैं ये जो भी श्रोता इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं उनको बताना चाह रही हूं कि लड़कियां, क्योंकि ये महिलाओं के लिए कार्यक्रम था, और मैं दावे से इस बात को कह सकती हूं कि 30,000 औरतों को अगर हमने सक्षम बनाया है तो 15,000 औरतें तो अपने पैरों पे आज खड़ी हैं, जिनका डिले इन मैरिज भी हुआ है। अभी 25 साल की लड़कियों ने भी शादी करने की थोड़ी सी रोक लगाई है, अपने पेरेंट्स का माइंडसेट चेंज किया है, क्योंकि पहले हमने अपनी जिंदगी में कुछ करके दिखाना है, अपने पैरों पे खड़ा होना है, तभी हम शादी करेंगे। तो डिले इन मैरिज इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द फर्टिलिटी ऑफ अ वुमेन, कि वो बच्चे नेचुरली सोच बनेगी कि कम पैदा करने हैं, और इतना प्रेशर नहीं होगा कि अगर कम बच्चे करने हैं, और लड़की भी चाहिए और लड़का भी चाहिए एक बैलेंस्ड परिवार के लिए, तो ये सोच अपने आप बदल जाएगी। तो शिक्षा का और रिलेशन जो है, जब हम एम्पावरमेंट का करते हैं तो इस तरह से हमें उनको कंपेयर करना है और लोगों को समझाना है।
1: बिल्कुल मैम। और जैसे कि भारतीय समाज में स्त्रियों की जो घटती संख्या है इस समय, उसके क्या दुष्परिणाम है?
2: देखिए, हमारे यहाँ पे हर 10 साल के बाद सेंसस होता है, तो 2011 का जो सेंसस था उन्होंने हमारे सामने अलार्म खड़ा किया कि सेक्स रेशियो में बहुत डिफरेंस आ रहा है। और अभी 2021 में सेंसस होना चाहिए, और मुझे नहीं पता कि कोविड की वजह से सरकार इसको कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, पर चाहे सेंसस हो या ना हो, सरकार को नॉन गैर सरकारी संस्थाओं का साथ देकर लोगों का माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है, जहां पे हम कहें कि लड़की भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितना लड़का। और मैं हरियाणा में रहती हूं, हालांकि मैं पैदा और पढ़ी और बड़ी तो दिल्ली में हुई हूं, पर आज के समय मैं हरियाणा में रहती हूं, और हरियाणा में अभी भी सोच बदलने की बहुत बहुत जरूरत है, और उत्तर प्रदेश और हरियाणा में कोई ज्यादा फर्क नहीं है।
1: बिल्कुल मैम।

0: कंजर्वेटिव माइंड है और लोग सोचते हैं कि नहीं, हमारे लिए बेटा इम्पोर्टेंट है और पहले ये चीज है। लड़की बहुत ज्यादा एजुकेटेड है लेकिन उसके ऊपर मेंटल प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो ऐसी सिचुएशन में एक लड़की को या एक स्त्री को क्या करना चाहिए?
1: मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको मैं दोबारा से ये रिट्रेट कर दूं बात, क्योंकि शिक्षा का अपना महत्व है और जब हम सशक्तिकरण की बात करते हैं और हम उस एज ग्रुप को लेते हैं जो 35 to 55 है महिलाओं का, या हम 40 से 65 तक की महिलाओं की बात करते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में एम्पावरमेंट का मतलब भी नहीं समझा, उनको जो महिला सशक्तिकरण है उसके बारे में किसी ने बात भी नहीं करी, और ये मैं रूरल एरियाज की बात कर रही हूं, तो उस संदर्भ में मैं कह रही हूं कि अगर हम उनको इस बात के उनके साथ बैठ के इस बात की चर्चा करें, और वो तो अब स्कूल भी नहीं गई हैं, एजुकेटेड ही नहीं है, तो मेरा ये कहने का मतलब है जो वर्ग एजुकेटेड नहीं है उनके साथ हम कैसे उनका माइंडसेट बदलें कि महिला को उतना ही दर्जा अपने परिवार में देना है जितना हम पुरुष को दे रहे हैं, तो वो चीज बातचीत करने पे आएगी, पीयर लर्निंग पे आएगी, और समाज में जब हम एक दूसरे को समझाने की कोशिश करेंगे तभी आएगी। और यहाँ पे गैर सरकारी संस्थाएं बहुत ज्यादा काम कर रही हैं गांव में जाके लोगों के माइंडसेट चेंज करने के लिए। जहां पे मैं शिक्षा की बात कर रही हूँ, जब शिक्षा बहुत जरूरी है, ये तो मैं नहीं कह रही हूँ कि शिक्षा जरूरी नहीं है, पर शिक्षा अभी जो हमारी यंग जनरेशन आ रही है, जो आप कह रहे हैं कि चाइल्ड सेक्स रेशियो पढ़े लिखे लोग नहीं करते हैं, उसमें मैंने बोला कि वो भी करते हैं, पर जो माइंडसेट वुमेन एम्पावरमेंट की बात है वो एजुकेशन का उसका डायरेक्ट लिंक है, वो तो है ही है, तभी समाज बदलेगा। पर हमारा समाज बटा हुआ है जहाँ पे 70% ऑफ, और हमारा जो पॉपुलेशन है अभी यूथ है, क्योंकि हम डेमोग्राफिक ट्रांजिशन से निकल रहे हैं, जहां पे 65% यूथ है और हमारी 70% पॉपुलेशन गांवों में रह रही है, और जब तक हम यूथ का माइंडसेट चेंज नहीं करेंगे, यूथ को एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज नहीं देंगे, यूथ के बिहेवियर में चेंज नहीं लाएंगे, तभी हमारा ये जो गैप है महिला सशक्तिकरण का ये कम नहीं होगा।
2: जी मैम, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी, और आपकी जानकारी के माध्यम से हमारे श्रोता लाभान्वित हुए और उन्होंने ये समझा कि हमें एक बैलेंस्ड अप्रोच की आवश्यकता है, चाहे वो शिक्षा की अगर हम बात करें तो शिक्षा भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है, जागरूकता की बात करें तो जागरूकता भी इम्पॉर्टेंट है, और इसी तरह हमें समाज को भी सशक्त बनाना पड़ेगा, समाज में ये मैसेज देना पड़ेगा कि महिलाएं इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं और उनके भी अपने अधिकार हैं, खासतौर से अगर हम रूरल सोसाइटी की बात करते हैं, और हमें उनके अधिकारों के प्रति जागरूक होना पड़ेगा। और जहां तक रीड इंडिया के विषय में मैं जानता हूं, तो रीड इंडिया की जो अप्रोच है वो काफी मैं समझता हूं कि एक बैलेंस्ड अप्रोच है, जिसमें आप विभिन्न आयामों पर काम कर रहे हैं और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए प्रयासरत हैं, तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट आयाम रीड का जो है, रीड महिलाओं जहां भी महिलाओं से रिलेटेड सेंटर्स हैं या स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज करा रहा है, वहां पर लाइफ स्किल्स की चर्चा जरूर होती है, लाइफ स्किल्स के बारे में महिलाओं को बताया जाता है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, तो मैं चाहता हूं कि श्रोताओं को आप बताएं कि लाइफ स्किल्स क्या हैं और उनका हमारे जीवन में क्या महत्व है।
1: लाइफ स्किल्स तो एक जीवन को व्यतीत करने की शिक्षा है, और जब हम आम जिंदगी में, ये जो आपने आज महिला सशक्तिकरण की बात करी है या एजुकेशन की बात करी है, ये लाइफ स्किल्स के एक आई शुड से दैट एक कॉइन के दो साइड्स हैं। हम एजुकेट तो कर देते हैं, एकेडमिक एजुकेशन दे देते हैं, पर बच्चों को कभी लाइफ स्किल्स के बारे में नहीं सिखाते हैं। जो संस्कार हैं, जो वैल्यूज हैं, वो उनको फैमिली से मिलती हैं, और फैमिली अगर उन संस्कारों को, उन कल्चर को पीछे ही छोड़ देती है, तो वो लाइफ स्किल्स की बात समझते नहीं हैं दूर दूर तक। तो आज हमारे देश में जहां पे कल्चर इतना रिच है, आप कह रहे हैं कि औरतों के हाथ में शस्त्र थे और हमारी हिस्ट्री ये कहती है,
2: शस्त्र दोनों
1: थे, और अभी हमारी हिस्ट्री ये कह रही है, और पर आज के टाइम पे अगर हमारा कल्चर ही हमारी वैल्यू सिस्टम बनता है और वैल्यू सिस्टम ही हमारी लाइफ स्किल्स बनती है, तो कहीं ना कहीं हम अपने कल्चर को पीछे छोड़ते आ रहे हैं, अपनी लाइफ स्किल्स

0: को भूलते आ रहे हैं, तो आज स्कूल्स में कॉलेजेस में क्यों हमें जरूरत पड़ रही है कि हम लाइफ स्किल्स के बारे में बात करें। और लाइफ स्किल्स क्या है, आपको होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सनालिटी क्या होती है उसके बारे में जानना भी बहुत जरूरी है। और वो जानना, होलिस्टिक डेवलपमेंट कोई साइंस नहीं है, उसके पीछे लाइफ की जिंदगी को, अपनी जिंदगी को कैसे जीना है उसकी शिक्षा दी जाती है। कैसे माँ बाप की इज्जत करनी है, कैसे एक महिला की इज्जत करनी है, कैसे अपनी बहन की इज्जत करनी है, कैसे अपनी पहचान बनानी है सोसाइटी में, कैसे अपने आप को सक्षम बनाना है शिक्षा के द्वारा और स्किल्स के द्वारा कि आप अपनी लाइफ को अच्छे से जी सकें। और इसके संदर्भ में मैं एक युवा पीढ़ी को ये भी मैसेज देना चाहूंगी कि उड़ान भरना तो बहुत आसान है, पर उड़ान की अगर डोर मजबूत नहीं है तो गिरना उससे भी आसान है
1: जी,
0: तो
1: सही।
0: इस चीज को अपनी जिंदगी की उड़ान संभाल के चलने से, संभाल के उड़ने से, वैल्यू सिस्टम से, स्किल से अगर हम चलें तो मुझे लगता है कि हम अपने देश को सोने की चिड़िया कहने में बहुत दूर नहीं रहेंगे।
1: जी मैम, बहुत अच्छी बात कही आपने। और इस समय भारत सरकार इस विषय पे काम कर भी रही है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में वैल्यू बेस्ड एजुकेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है और बहुत ही मतलब प्राइमरी सेक्शन से ही वैल्यू बेस्ड एजुकेशन इम्पार्ट करने की बात है। और मैं समझता हूं कि आगामी एकेडमिक सत्र से ये चीजें शुरू भी हो जाएंगी, तो ये बहुत शुभ संकेत है। मुझे लगता है कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी होगी उसके मन में ये सारी चीजें नहीं होंगी और महिलाओं को वो समान मतलब बराबर का दर्जा देगी। मैडम, आपकी ऑर्गेनाइजेशन फील्ड पे काम करती है, आपने महिलाओं को विभिन्न तरह की ट्रेनिंग्स दिलाई, उनको लाइफ स्किल्स के विषय में अवगत कराया है, और खास तौर से आपका जो मॉडल है रीड का, कम्युनिटी लाइब्रेरी रिसोर्स सेंटर का, तो वो भी एक ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट को फोकस करता है। तो मैम, मैं कुछ जानना चाहूंगा आपसे कि जो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट है महिलाओं का, कहीं ना कहीं ये ट्रेनिंग्स जो आप लोग दिलवाते हैं या सरकार दिलवा रही है, कहीं ना कहीं बहुत यूजफुल साबित होती है। तो आप अपने कुछ एक्सपीरियंस ऐसे शेयर करना चाहेंगी जहां पर आपने कुछ ट्रेनिंग्स ऐसी दिलवाई और महिलाओं ने समाज में एक अच्छा काम किया, अपना एंटरप्राइज शुरू किया, तो इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं।
0: जो रीड का मॉडल है, हम एक गांव में जाते हैं, बात करते हैं, सीधा कम्युनिटी के साथ बात करते हैं और कहते हैं कि रीड आपके लिए किताबें लेकर आ रहा है, कंप्यूटर्स लेकर आ रहा है, आपकी महिलाओं को कुछ स्किल्स की ट्रेनिंग देना चाह रहा है, क्या आप हमारी बात से सहमत हैं? तो हम यहां पे एक कम्युनिटी लाइब्रेरी एंड रिसोर्स सेंटर बना देते हैं। जो लोग संस्कारी हैं और इसके वैल्यू समझते हैं, विजनरी हैं, वो हमें कहते हैं ये हमारा घर खाली पड़ा है, आप इसमें बना दीजिए। और यहाँ पे हम सारे समाज को बुला के, जो हमारे गांव के लोग हैं, वो यहाँ पे आके सेंटर को चलाएंगे, लाइब्रेरी को चलाएंगे। तो ये प्रयास मैंने 2007 में शुरू किया था और आज 2021 है, अभी तक तो मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा है। मैं जिस गांव में जाती हूँ उस गांव में मुझे बहुत ही सहानुभूति कह लीजिए या इज्जत कह लीजिए या रिस्पेक्ट कह लीजिए, वो मिलता है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं यहाँ पे एग्जांपल भी देना चाहूंगी, रिटायर्ड पुलिस कमिश्नर हैं हरियाणा के, उन्होंने जब देखा कि मैं मेवात में काम कर रही हूँ और मैंने 2012 में या 2013 में उनको बुलाया एक हमारी लाइब्रेरी को इनॉग्रेट करने के लिए, तो उन्होंने तब से मुझे बोला कि मेरी हवेली खाली पड़ी है मेहंदीपुर गांव में, हरियाणा में, झज्जर में, तो आप उसको सेंटर बना दीजिए। और 2014 से उस हवेली में हम काम कर रहे हैं। तो जो विजनरी लोग हैं, जिनको पता है कि हाँ, अगर समाज ने हमें कुछ दिया है तो हमें, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम समाज को कुछ वापस करें, तो वो लोग बहुत आगे बढ़कर आते हैं। और जहां तक कीर्ति जी आपने पूछा है कि महिलाओं ने कुछ किया है या नहीं किया, तो उत्तर प्रदेश का ही मैं एग्जांपल देती हूँ। हम एक कार्यक्रम चलाते हैं जो हम कहते हैं इम्बाइबिंग ग्रास वुमेन लीडर्स फ्रॉम द ग्रास रूट्स, वो हर हफ्ते हमारा कार्यक्रम आता है। आज भी 4 से 5 था, हमने महाराष्ट्र की एक लड़की को उस कार्यक्रम में बुलाया था, और यूपी से पिछले हफ्ते और उससे पिछले हफ्ते में दो महिलाओं को हमने प्रोग्राम में बुलाया था, और एक लड़की जो मुस्लिम लड़की है, फर्रा उसका नाम है, और आज वो 25 साल की है और वो कहती है मैंने अभी भी शादी नहीं करनी है। इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट, जहां वो 16 साल की थी, उसके पेरेंट्स शादी करना चाह रहे थे उसकी, आज वो 10वीं पास होने के बाद उसने कहा कि मैं ये कम्युनिटी लाइब्रेरी को चलाऊंगी और अपने गांव वालों को शिक्षित करूंगी, और उसने एक प्री स्कूल भी चलाया जिसमें 300 से ज्यादा छोटे बच्चे पढ़ते हैं, और सेंटर भी चलाती हैं जिसमें महिलाएं सिलाई सीखती हैं, ब्यूटी एंड वेलनेस का कार्यक्रम करती हैं, कंप्यूटर्स सीखते हैं बच्चे, और प्रोफेशनल कोर्सेस भी करते हैं। और जब पिछले हफ्ते मैं उससे चर्चा कर रही थी तो उसने कहा कि मैंने अपनी कमाई से अपने माँ बाप के लिए घर भी बनाया है, क्योंकि मुझे मेरे पेरेंट्स कहते थे, जो समाज के लोग थे, कहते थे कि आप अपनी बेटी की शादी नहीं कर रहे हैं, तो हमारा घर इतना टूटा फूटा था कि हम रात को सोते थे तो पानी छत से गिरता था। तो मैंने अपने माँ बाप को समझाया कि आपका अगर दामाद घर में आएगा और पानी गिरेगा छत से तो आपकी क्या इज्जत रहेगी। आज आपकी बेटी इतनी सक्षम है कि आपको घर बना के दे रही है, और कल को मैं शादी करती हूँ और दामाद आएगा तो आपको इज्जत की नजर से देखेगा। तो पहले मैं खुद सक्षम हूं, फिर मैंने अपने परिवार को सक्षम किया, फिर मैंने अपने छोटे बहन भाइयों को सक्षम किया, आज मैं शादी के लायक हूं और मैं शादी कर सकती हूं।
1: बहुत अच्छी बात मैम आपने बताई, और ये जो आपने एग्जाम्पल दिया, मैं समझता हूं कि हमारे युवा साथी इस कार्यक्रम को सुन रहे होंगे, तमाम महिलाएं सुन रही होंगी, तो उनके लिए भी बहुत मोटिवेटिंग रहेगा ये। हाँ, और मैडम इसी क्रम में मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जैसे आपने कुछ सक्सेस स्टोरीज हमसे शेयर करी, आपने कमिश्नर साहब का एग्जाम्पल बताया, तो ये मॉडल रेप्लीकेट करें और महिलाओं के जो अधिकार हैं या महिलाओं से रिलेटेड जो तमाम सरकार द्वारा कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं या आपका ऑर्गेनाइजेशन जो कार्यक्रम चला रहा है वो जनमानस तक पहुंचे, इसके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए?
0: हम ये जितनी भी महिलाओं के प्रति स्कीम्स हैं
1: जी,
0: हम सारा अपने सेंटर के थ्रू महिलाओं को इन्फॉर्मेशन देते हैं। मैं वाद का एक एग्जांपल देती हूं कि महिलाएं तो खुद इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, उनके बच्चों की हायर शिक्षा के लिए सरकार पैसा देती है, और 70 महिलाओं के अकाउंट में वो पैसे डाले कि वो अपने बच्चों को हायर एजुकेशन दें, और 70 से ज्यादा महिलाओं को सिलाई मशीन लेके दी सरकार के पैसे से कि वो अपने घर का कार्यक्रम चलाएं, और बहुत सारे ऐसे महिलाओं को पैसा भी दिया गया कि वो अपने बेटियों की शादी करें। तो स्कीम बताना एक बात है, पर स्कीम को प्रैक्टिकली लागू करके उनको बेनिफिट दिलाना ये अलग बात है। और बेनिफिट कौन दिलाएगा? वो समाज में जो लीडर्स हैं वो ही दिला सकते हैं। अगर हम सरकार के अगेंस्ट ही चलते रहेंगे तो हम कैसे महिलाओं को सक्षम बनाएंगे और कैसे हम उन तक ये जो कार्यक्रम है लेके जाएंगे? तो बहुत सारी ऐसी गैर सरकारी संस्थाएं हैं जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और मैं कहती हूं आज का ये युग है, आप सरकार जो भी कर रही है अच्छा कर रही है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस भी अच्छा कर रही हैं, बट आज का समय हमें फिर हिस्ट्री रिपीट कर रहा है। हमें एक गांव में एक पुरुष और एक महिला की जान पहचान, जो जान पहचान है उनकी पूरे गांव के साथ होनी चाहिए, और गांव की जान पहचान एक परिवार के साथ होनी चाहिए। अगर वो उनके साथ खड़े हैं, उनकी सहानुभूति उनके साथ है और उनको सक्षम बनाते हैं, यही एक मैसेज है आज के युग में सक्षमता की बात करने का। कोई भी इंडिविजुअल लीडर, कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ये रोल प्ले नहीं कर सकती है उस हद तक जहां हम पहुंचना चाहते हैं। हम इतनी स्कीम्स लॉन्च कर रहे हैं, पर जो ज्ञानी हैं, जिनको नॉलेज है, जिनको टेक्नोलॉजी आती है, वो हैंड टू हैंड अपनी कम्युनिटी में, अपने समुदाय में उनका हाथ पकड़ के चलें, तभी इंडिया प्रोग्रेस कर सकता है।
1: जी मैम, और इस क्षेत्र में भी मैं समझता हूँ कि सरकार काफी काम कर रही है। डिजिटल इंडिया की जो रूपरेखा है वो कहीं ना कहीं आपके इस विजन को सपोर्ट करती है। मैम, इसी क्रम में ये जानना चाहूंगा मैम कि जैसे अभी कोविड का समय आया और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं थे, मगर उन्होंने वेबिनार्स आयोजित करनी शुरू कर दी, ऑनलाइन ट्रेनिंग्स आयोजित करनी शुरू कर दी, जूम ऐप और तमाम बहुत सारी एप्स ऐसी हुई जिसका ऊपर यूज करना शुरू कर दिया गया, तो टेक्नोलॉजी का कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट बहुत बढ़ा और बहुत अच्छे से यूज किया जाने लगा। तो मैम, रूरल डेवलपमेंट के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी और उपयोगी कैसे साबित हो सकती है हम सभी लोगों के लिए, इसकी जानकारी हमें दो।
0: पांच चीजें हैं जो मैं पिछले बहुत सारे सालों से ये बोलती हूं सबको। एक तो एक्सेसिबिलिटी इज अ बिग गैप, क्योंकि एक्सेस नहीं होगा टेक्नोलॉजी को तो वो समझेंगे कैसे। फोन खरीदने के लिए भी अगर पैसे नहीं है तो हम कैसे बात करेंगे कि हम टेक्नोलॉजी को लेके जा रहे हैं गांव में, और शहरों में तो लोगों के पास पांच पांच फोन है बिकॉज दे कैन अफोर्ड। और अफोर्डेबिलिटी दूसरी बात है कि पैसा होना चाहिए खरीदने के लिए। तीसरी बात है एडेप्टेबिलिटी, जो हम पॉपुलेशन के वर्ग को अगर हम डिवाइड करें, यूथ के पास फोन है पर 30-40 उम्र से लेके 60 साल की उम्र तक टेक्नोलॉजी को यूज करना भी आना चाहिए। मैं यहाँ पे अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बताऊंगी। मैं मलेशिया की कम्युनिटी लाइब्रेरीज में गई थी जहाँ पे ओल्ड पॉपुलेशन के लिए अलग से एक सेक्शन है, जहाँ पे वो ओल्ड पॉपुलेशन आती है, उनको टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता पर वो सीखना चाहते हैं, और वहां पे टाइम डेडिकेटेड किया हुआ है कि आप 2 घंटे आइए, हम आपकी क्लास लेंगे, आपको टेक्नोलॉजी के बारे में ज्ञान देंगे और कैसे मोबाइल को यूज करना है, कैसे मोबाइल बैंकिंग को यूज करना है, ये सारी जानकारी भी हम उनको देंगे। तो कौन कर रहा है ये? लर्नेड पीपल आर डिवोटिंग देयर टाइम कि वो दूसरे लोगों को सिखाएं। तो टेक्नोलॉजी की लर्निंग भी एक बहुत बड़ी बात है इसमें। और पांचवा जो पॉइंट है जो मैं यहां पे सबसे जरूरी कहना चाहूंगी, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, एडेप्टेबिलिटी, लर्निंग स्किल्स और उसकी कॉन्टिन्यूटी। उसकी कॉन्टिन्यूटी भी बहुत जरूरी है। टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट चेंज हो रही है कि पिछली टेक्नोलॉजी को सीखते ही वो डिप्लीट हो जाती है, और जब नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, क्योंकि इट्स अ मार्केट ट्रेंड, अगर हम मार्केट ट्रेंड को अलग कर लें और सिखाने की कला को अलग कर लें तो मुझे लगता है कि जो मैंने 5 पॉइंट्स यहां पे बताया हम उनको बहुत अच्छे से लागू कर सकते हैं।
2: बिल्कुल मैम, बहुत ही अच्छी आपने हमारे श्रोताओं को जानकारी दी। और क्योंकि आज हम महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं तो क्या उससे जुड़े कुछ कानून हैं ऐसे जो आप हमारे श्रोताओं को बताएं? और जैसा कि समय भी है बहुत कम रह गया है, तो एक बार अपने श्रोताओं को हम पुनः बता दें कि आज हम बात कर रहे हैं महिला सशक्तिकरण पर, और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर गीता मल्होत्रा को। तो श्रोताओं, ये कार्यक्रम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनिए, और अब तक जितने भी श्रोताओं ने सुना होगा वो अवश्य ही बहुत ही लाभान्वित हुए होंगे। तो अब
1: मैं, आपने जो सवाल पूछा उसमें एक छोटी सी चीज ऐड करना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि अगर जैसे अगर अपने प्रदेश सरकार की हम बात करते हैं तो महिलाओं के लिए जो यूपी पुलिस है उसने काफी काम किए हैं, जैसे क्राइम अगेंस्ट वुमेन जो विंग है महिलाओं के लिए तमाम हेल्पलाइंस उन्होंने लॉन्च करी है, डायल 112, विमेन पावर लाइन 1090, तो इस तरह की हेल्पलाइंस हर स्टेट में है। तो अगर महिला इन हेल्पलाइंस को यूज करती है तो मैं समझता हूं कहीं भी जो क्राइम है उनके अगेंस्ट वो अगर हो रहा है या नहीं, मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि ऐसी स्थिति बन रही है, तो ये हेल्पलाइंस कहीं ना कहीं उनके लिए उपयोगी साबित होंगी। और जो लीगल लिटरेसी की बात कर रही हैं आप या कानून से रिलेटेड जो भी सवाल आपने पूछा, तो मैं समझता हूं बहुत कम समय में इसका जवाब दे पाना मुश्किल है, तो वो लोग इस हेल्पलाइन से अगर हेल्प लेते हैं तो उनकी जो कानून के प्रति जो जिज्ञासा है या जानकारी वो करना चाहते हैं उनको जरूर मदद मिलेगी।
2: बिल्कुल सर, बहुत ही अच्छी आपने बात बताई।
0: ज्योत्सना जी, जब आपने कानून की बात करी है तो मैं एक मैसेज देना चाहूंगी।
2: जी मैम,
0: हम कानून की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं? मैंने सबसे पहले कार्यक्रम में ये बोला है कि हमारा एटीट्यूड, हमारी सोच, एक महिला रात के 10 बजे के बाद सड़क पे अपने आप को सुरक्षित नहीं समझती है। क्यों? कौन है समुदाय कौन बना रहा है, एक महिला और एक पुरुष? अगर पुरुष की सोच ठीक है तो महिला को डर की बात नहीं है। तो हमें सबसे पहले अपनी सोच बदलनी है, हमने समुदाय में ऐसी सुरक्षा लानी है महिलाओं के लिए कि उनको कानून की जरूरत ही नहीं पड़े। अगर हम कानून के पीछे भागते रहेंगे तो हम कानूनी शिक्षा के बारे में ही जानकारी दे पाएंगे, जो लाइफ स्किल्स हैं, जो हमने वैल्यू सिस्टम की बात करी है, जो कल्चर की बात करी है। मुझे लगता है कि मदर इज द फर्स्ट टीचर ऑफ ए चाइल्ड, और जो शिक्षा शुरू होती है वो परिवार से शुरू होती है। और अगर हम अपने बच्चों को ये सिखा दें कि एक लड़की और लड़का समान है, और अगर आपको समाज में इसका कहीं पे ये नजर आता है कि रिलेशनशिप क्या है, अगर उसको संभाल के आगे चलना है, तो उतनी नॉलेज तो पेरेंट्स भी दे सकते हैं।
2: बिल्कुल मैम, बहुत ही अच्छी आपने बात कही, और कुल मिला के बस यही है कि अगर हमें सशक्त होना है तो शिक्षित होना जरूरी है, लेकिन उसके साथ ही साथ जरूरी है कि हमारे अंदर मानवीय मूल्यों का संचार हो, हमारे अंदर सभी सद्गुणों का संचार हो। और जैसा कि कहा, माँ पहली पाठशाला होती है बच्चों की, तो बिल्कुल ये एक माँ की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों में अच्छे संस्कार डालें। और सर, जैसा कि हम आज वीमेन एम्पावरमेंट पे बात कर रहे हैं, तो इसमें इग्नू का क्या रोल है, इसके बारे में आप हमारे श्रोताओं को कुछ
1: जी इस, क्योंकि समय कम बचा है तो मैं बहुत संक्षेप में आपको बताना चाहूंगा। ये जानकारी मैं खास तौर से अपने लर्नर्स को देना चाहूंगा जिन्हें एडमिशन लेना है, जो ऑलरेडी जिन्होंने एडमिशन ले रखा है। जैसा कि डॉक्टर गीता जी ने भी अपने फीडबैक के दौरान, अपने सेशन के दौरान बताया कि सबसे जरूरी है कि महिलाओं को उनके विषय में जो भी कदम उठाए गए हैं उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो विश्वविद्यालय का भी ये प्रयास है कि जो भारत सरकार या राज्य सरकार जो महिलाओं को तमाम सहूलियतें दे रही हैं, तमाम योजनाएं उनके बेटरमेंट के लिए लागू हो रही हैं, उनके विषय में हम लोग बताएं। तो इसके लिए हम लोग तमाम अवेयरनेस कार्यक्रम आयोजित करते हैं, उसमें ग्रामीण महिलाओं को सबसे पहले हम लोग कोशिश करते हैं कि वो इग्नू के कार्यक्रमों में जुड़ें। इसके लिए हम लोग कम्युनिटी मीटिंग्स आयोजित करते हैं, और वहां पर हम लोग जो वहां उस समुदाय के जो नॉलेजेबल्स हैं, जो लीडर्स हैं, उनको आमंत्रित करते हैं, और उनके द्वारा ये मैसेज देने का प्रयास किया जाता है कि शिक्षा एक बहुत इम्पॉर्टेंट टूल है जिससे जो है सोशल डेवलपमेंट किया जा सकता है, महिलाओं का उत्थान हो सकता है, महिला पुरुष मिलजुल के देश की उन्नति में, देश की प्रोग्रेस में समान रूप से भागीदार हो सकते हैं। तो ये हम लोग बताते हैं, और उसके बाद जो इग्नू द्वारा जो महिलाओं से संबंधित जो कोर्सेज लॉन्च किए गए हैं, जो उनके स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज हमारे जो महिलाओं के लिए यूजफुल हैं, उनके बारे में जानकारी दी जाती है, और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए जो जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज इग्नू फ्री ऑफ कॉस्ट संचालित कर रहा है उसके विषय में जानकारी दी जाती है। और मैं समझता हूं 50-60% केसेज में लोग कन्विंस होते हैं और एडमिशन लेते हैं। महिलाओं के लिए हम लोगों ने स्पेसिफिक सेंटर्स भी बना रखे हैं जहां पर केवल महिलाएं ही पढ़ाई करती हैं, और उनसे संबंधित कोर्सेज लॉन्च किए गए हैं जिससे उनका अध्ययन और जो उनके नॉलेज का लेवल है हम लोग उसको बढ़ा सकें। और जो वर्क प्लेस पे महिलाएं काम कर रही हैं, जो हमारी विमेन स्टूडेंट्स हैं, उनको सहूलियत मिले। तो जो भारत सरकार ने जो गाइडलाइंस इस समय इम्प्लीमेंट कर रखी है, इग्नू उसको पूरा फॉलो करता है, वैसे ही सारे कानून जो है हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं अपने क्षेत्रीय केंद्र के माध्यम से। तो ओवरऑल मैं ये कहना चाहता हूं कि हम लोगों का ये प्रयास है कि महिलाओं को हम लोग ज्यादा से ज्यादा अवसर प्रदान करें जैसे कि वो शिक्षित हो सकें और सशक्त हो सकें।
2: बिल्कुल सर, आपने आज बहुत ही अच्छी जानकारी दी, और मैम हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे कि आपने अपना कीमती समय निकाला और आप हमारे स्टूडियो में आई, हमारे श्रोताओं को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: मैं आपके कार्यक्रम का बहुत बहुत आई शुड से कि थैंक्स टू यू एंड डॉक्टर कीर्ति की जिन्होंने मुझे बुलाया, और मैं वैसे तो गुड़गांव में रहती हूँ, आज मैं लखनऊ में थी तो एक अपॉर्चुनिटी थी मेरे लिए अपनी बात कहने की। और मुझे लगता है कि जितने भी श्रोता इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, जो भी मैंने छोटी बात बोली अगर उसका अमल करेंगे तो मुझे लगता है कि इसका रिजल्ट उनको जरूर मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बिल्कुल मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो श्रोताओं, आज जो बात निकलकर सामने आई है वो यही है कि शिक्षा हमारे जीवन में सबसे बड़ा हथियार है। तो अगर आप शिक्षित होते हैं, जीवन में आगे बढ़ते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन उन सब के साथ जैसा कि मैम ने बताया मानवीय गुणों का होना बहुत जरूरी है। तो अपने बच्चों में ये संस्कार आप बचपन से डेवलप करिए कि बच्चे सुबह उठते ही करें सबसे पहले अपने ईश्वर का ध्यान, साथ ही साथ बड़ों का सम्मान करें और अपने बच्चों को एक अच्छा और नेक और सच्चा इंसान बनाएं, तो जीवन में हम सब प्रगति की ओर जरूर अग्रसर होंगे। और इसी के साथ इस प्रोग्राम को यहीं पे वाइंड अप करने की अनुमति दीजिए अपनी दोस्त ज्योत्सना को, लेकिन सुनते रहिए ज्ञानवाणी लखनऊ FM 105.6 MHz की फ्रीक्वेंसी पर, जहां कार्यक्रमों का सिलसिला रहेगा जारी रात्रि 10 बजे तक।

0: आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति विश्लेषण।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम विश्लेषण के नए अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं कनकलता। श्रोताओं, भारत की समृद्ध हथकरघा परंपरा, बुनकरों की अद्भुत कला और उनके अमूल्य योगदान को सम्मानित करते हुए आज देश 12वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मना रहा है। नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज वर्ष 2025 के 3 संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और 19 राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर 4 स्मारक डाक टिकट जारी किए गए, 2 विशेष प्रकाशनों का विमोचन हुआ और पुरस्कार विजेता उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। आज के कार्यक्रम में जानेंगे कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का महत्व क्या है, इस वर्ष दिए गए पुरस्कार क्यों विशेष हैं, सरकार हथकरघा क्षेत्र को किस प्रकार सशक्त बना रही है और ये क्षेत्र भारत की अर्थव्यवस्था, संस्कृति तथा ग्रामीण आजीविका के लिए कितना महत्वपूर्ण है। श्रोताओं, भारत की हथकरघा परंपरा हजारों वर्ष पुरानी है। सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर आज तक भारतीय बुनकरों ने अपनी कला, कौशल और रचनात्मकता से दुनिया में अलग पहचान बनाई है। हर वर्ष 7 अगस्त को मनाया जाने वाला राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 1905 के स्वदेशी आंदोलन की याद दिलाता है, जिसने भारतीय उत्पादों और विशेष रूप से हथकरघा उद्योग को नई ऊर्जा दी थी। वर्ष 2015 से इस दिवस को राष्ट्र स्तर पर मनाया जा रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों से भारत की समृद्ध हथकरघा परंपराओं को बढ़ावा देने का आह्वान किया है।
2: मैं आज आग्रह करता हूं, 7 अगस्त हैंडलूम डे होगा, हमने उत्साह और उमंग के साथ हैंडलूम डे मनाना है। हमारा काम है आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, हमारे इन छोटे गरीब परिवारों को भी आर्थिक रूप से समृद्ध कर, आइए हम स्वयं हैंडलूम से कुछ न कुछ खरीदे, उसका एक वीडियो बनाए और देश और दुनिया में उस वीडियो को प्रचारित करें, ताकि हमारे बुनकर भाई बहनों के सामर्थ्य का परिचय दुनिया को भी हो।
1: आज भारत का हथकरघा क्षेत्र केवल सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक ही नहीं, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मजबूत आधार भी है। देश में 35 लाख से अधिक बुनकर और संबद्ध श्रमिक इस क्षेत्र से जुड़े हैं, जिनमें 72% से अधिक महिलाएं हैं। ये क्षेत्र लाखों परिवारों की आजीविका का आधार होने के साथ साथ पर्यावरण अनुकूल और टिकाऊ उत्पादन का भी उत्कृष्ट उदाहरण है। हथकरघा क्षेत्र के विकास, सरकार के विभिन्न पहलों और भविष्य की संभावनाओं पर विकास आयुक्त हथकरघा डॉक्टर एम बीना ने आकाशवाणी संवाददाता उत्पल कुमार से विशेष बातचीत की, आइए सुनते हैं।
3: डॉक्टर बीना, सरकार ने हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए क्या प्रमुख कदम उठाए हैं और अब तक इसकी मुख्य उपलब्धियां क्या रही है?
4: भारत के हथकरघा क्षेत्र के विकास के लिए नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया जा रहा है, तो इसके तहत हमारा अप्रोच है क्लस्टर बेस्ड डेवलपमेंट, क्योंकि वीवर्स जो हैं ज्यादातर एक ही इलाके में रहते हैं, तो उस पूरे इलाके को एक क्लस्टर आइडेंटिफाई करके वहाँ पर विकासशील कार्यक्रम और योजनाएं हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो उसमें 2 तरह की योजनाएं हैं, एक तो है स्मॉल क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, जहाँ 500 लगभग वीवर्स जहाँ रहते हैं, तो वहाँ पे हम ये योजना चलाते हैं, 2 करोड़ तक उसका हम सहायता देते हैं। इसमें हम लूम्स, सोलर लाइटिंग, वर्कशेड वगैरह का हम सपोर्ट देते हैं। इसके अलावा क्लस्टर में जो एक क्लस्टर डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव होगा, जब तक ये क्लस्टर कार्यक्रम चलाया जाएगा, और एक क्लस्टर डिजाइनर भी रहेगा, ताकि वीवर्स को नए डिजाइन से भी वो उनको अवगत किया जाएगा। दूसरा, हमारे मेगा क्लस्टर्स, माने जो बड़े क्लस्टर्स हैं, जहां 10,000 से ऊपर वीवर्स है, तो वहां पे मेगा क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, तो 30 करोड़ तक उसका हम असिस्टेंस देते हैं, वो राज्यों के साझेदारी से ये कार्यक्रम चलाया जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे सपोर्ट हैं, जैसे कि स्किलिंग सपोर्ट, देखो वीवर को नए वीविंग टेक्निक्स के बारे में, नए डिजाइन्स के बारे में वगैरह के लिए हम समर स्कीम के तहत उनको ट्रेनिंग दिया जाता है, और उनको डिजाइन सपोर्ट, प्रोडक्ट नया करने के लिए भी उनको सपोर्ट देने के लिए डिजाइन रिसोर्स सेंटर्स भी बनाया गया है।
3: हथकरघा बुनकरों की आजीविका में सुधार लाने में सरकार की कौन सी योजनाएं सबसे अधिक प्रभावी रही है?
4: बुनकर की आय को बढ़ाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है उनका जो रॉ मटेरियल है, सूता जो है, उसमें हम सब्सिडी देते हैं। तो अगर आप नेचुरल फाइबर जैसे कि कॉटन हो गया, लिनन हो गया, या फिर सिल्क हो गया, या वूल हो गया, तो उसमें हम 15% हम प्राइस सब्सिडी देते हैं, और जो भी अगर इसके अलावा जो नॉट नेचुरल फाइबर्स है उनके लिए हम ट्रांसपोर्ट सब्सिडी भी देते हैं। तो इस तरह से रॉ मटेरियल का कॉस्ट में हम कमी लेके आते हैं। दूसरा, वीवर को मुद्रा लोन का भी फैसिलिटी है, और जब प्रोडक्ट बन जाए तब उनको वीवर को चाहिए मार्केटिंग सपोर्ट। तो उसके लिए जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर और नेशनल स्तर पर बुनकर मेले लगाए जाते हैं।
3: डॉक्टर बीना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: श्रोताओं, राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार केवल उत्कृष्ट बुनाई के लिए नहीं बल्कि नवाचार, डिजाइन विकास, विपणन, स्टार्टअप, उत्पादक कंपनियों और पारंपरिक शिल्प के संरक्षण जैसे विविध क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए भी दिए जाते हैं। संत कबीर हथकरघा पुरस्कार देश का सर्वोच्च सम्मान है जो जीवन भर के उत्कृष्ट योगदान और पारंपरिक बुनाई को संरक्षित रखने वाले बुनकरों को दिया जाता है। वहीं राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार उन बुनकरों और अन्य हितधारकों को सम्मानित करता है जिन्होंने परंपरा और आधुनिक तकनीक के संतुलित प्रयोग से गुणवत्ता और रचनात्मकता का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया है। इस वर्ष के पुरस्कार विजेताओं में जम्मू कश्मीर के मंजूर अहमद हाजाम और फैयाज अहमद वानी भी शामिल हैं, जिन्हें चंदर कानी शॉल की उत्कृष्ट बुनाई के लिए राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आइए सुनते हैं पुरस्कार मिलने के बाद उन्होंने क्या कहा।
5: मैं फयाज अहमद वानी और मेरे साथ है मंजूर अहमद हजाम। हम कानी हमा बड़गाम के रहने वाले हैं। हम बहुत ही खुश हैं और अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करते हैं, और ये लम्हा हमारे लिए इज्जत और फख्र का दिन है, और हम ये अवार्ड उन कानी हमा के बुजुर्गों को डेडिकेट करते हैं जिन्होंने इस फन को नस्ल दर नस्ल हम तक पहुँचाया। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी शुक्रगुजार है कि उन्होंने हमारे गांव टूरिज्म विलेज और हैंडलूम विलेज करार देकर करोड़ों रुपयों की मावनत की। हम उनके भी बहुत ही आभारी हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जिसने हमें इस एजाज से नवाजा।
1: इसी तरह ओडिशा के प्रफुल्ल कुमार साहू को पारंपरिक जगतपुर साड़ी की उत्कृष्ट बुनाई के लिए राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान किया गया। पुरस्कार मिलने के बाद उन्होंने भी आकाशवाणी से अपने अनुभव साझा किए।
6: मैं प्रफुल्ल कुमार साहू फ्रॉम ओडिशा जगतसिंहपुर। आज मेरे लिए बहुत गर्व और भावुकता का क्षण है। मुझे 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर माननीय राष्ट्रपति जी के करकमलों से नेशनल हैंडलूम अवार्ड प्राप्त करने के सौभाग्य मिला है। यह सम्मान सिर्फ मेरा नहीं बल्कि ओडिशा के जगतसिंहपुर जिलों के सभी बुनाकर और हमारी समृद्ध हथकरघा परम्परा का सम्मान है। मैं भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स डेवलपमेंट कमिश्नर हैंडलूम, ओडिशा सरकार, वीवर सर्विस सेंटर, नेताजी तंतुबाय सहयोग समिति के सदस्य, बॉयनिकाओं और सभ्य संस्थाओं दिल से आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने हम जैसे बुनकर को प्रोत्साहन दिया। मैं इसे सम्मान को अपने परिवार, अपने गुरुजन और सभी साथी बुनकर को समर्पित करता हूं।
1: श्रोताओं, इन पुरस्कार विजेताओं की बातें ये बताती हैं कि भारतीय हथकरघा केवल एक व्यवसाय नहीं बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही सांस्कृतिक विरासत है जिसे आज भी पूरे समर्पण के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में भारतीय हथकरघा क्षेत्र ने तेजी से नए आयाम हासिल किए हैं। वर्ष 2025-26 में भारत का हथकरघा निर्यात लगभग 1,331 करोड़ रुपए रहा। संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, ब्रिटेन और स्पेन जैसे देश इसके प्रमुख बाजार हैं। सरकार ने हाल के वर्षों में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। 36 हस्तशिल्प वस्तुओं पर GST घटाकर 5% किया गया, हथकरघा क्लस्टरों के आधुनिकीकरण पर जोर दिया गया, राष्ट्रीय फाइबर योजना तथा राष्ट्रीय हथकरघा एवं हस्तशिल्प कार्यक्रम जैसी नई पहलें शुरू की गयी। डिजाइन, नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए हैंडलूम हैकाथॉन 2026 जैसी पहलें भी की जा रही हैं। भारत की हथकरघा परंपरा केवल अतीत की धरोहर नहीं बल्कि भविष्य की संभावनाओं से भी जुड़ी हुई है। आज भारतीय हथकरघा फैशन, डिजाइन, निर्यात, डिजिटल विपणन और सतत विकास के क्षेत्र में नई पहचान बना रहा है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस हमें उन लाखों बुनकरों के श्रम, समर्पण और सृजनशीलता का सम्मान करने का अवसर देता है जिनके हाथों से भारत की सांस्कृतिक पहचान दुनिया तक पहुँचती है। इसी के साथ कार्यक्रम विश्लेषण में आज के लिए बस इतना ही। इस कार्यक्रम को तैयार किया हमारे सहयोगी उत्पल कुमार ने, तकनीकी सहयोग अरुण दीप का था। नमस्कार।

हाँ जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन, यू आर ऑल वेलकम इन टुडे सेशन। तो आज का जो सेशन है, मतलब अभी हमारा 12th नंबर सेशन था, जैसे देखिए अभी तक के सेशंस में हम करियर से रिलेटेड काफी कोर्सेज के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, कई स्ट्रीम्स के बारे में हमने डिस्कस किया है, और मेरे हिसाब से कई स्ट्रीम्स आपको ऐसी नई भी पता चली होंगी अभी, जो शायद पहले आपको नहीं पता हूं, या कई स्ट्रीम्स के बारे में आपको ज्यादा जानकारी मिली होगी, जो हो सकता है आपको आगे अपना करियर बनाने में काफी हेल्पफुल रहे। आज के सेशन में हम जो बात करेंगे कि 10th के बाद जो वोकेशनल कोर्सेज होते हैं, जिसे हम पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कहते हैं, उनमें क्या क्या स्कोप रहता है, किस किस टाइप के डिप्लोमाज होते हैं। आप सब जानते हैं, आप जहां भी रहते हैं, जिस भी एरिया में आप हैं, तो आपके आसपास में काफी पॉलिटेक्निक कॉलेजेस होते हैं जो डिप्लोमा ऑफर करते हैं 10th क्लास के बाद में। ये जो 10th क्लास के बाद में डिप्लोमा होता है, आपका 3 ईयर का डिप्लोमा होता है, और इक्वलेंट टू 12th माना जाता है। मतलब आप देखेंगे कहीं भी 12th के बेस पे कोई भी वैकेंसी निकलती है, कुछ भी एडमिशन अगर 12th के बेस पे है, तो वहां लिखा होता है क्लास 12th और 3 ईयर पॉलिटेक्निक डिप्लोमा। तो ये जो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा होता है, आपका एक तरह से 12th के इक्वलेंट होता है। तो जो लोग 10th के बाद, मतलब एक तरह से ये डिसाइड नहीं कर पाते कि उन्हें किस स्ट्रीम में जाना है, या वो आगे कॉमर्स, आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल क्या लें, तो वो क्या करते हैं कि 10th के बाद वो डिप्लोमा में एडमिशन ले लेते हैं जो 3 ईयर का रहता है, विच इज इक्वलेंट टू क्लास 12th। अब डिप्लोमा की जो फिलोसफी थी, ये एक तरह से वोकेशनल कोर्सेज का कॉन्सेप्ट था, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि आपको कुछ टेक्निकल नो हाउ प्रोवाइड की जाए, जिस भी स्ट्रीम में आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, आपने उस फील्ड में डिप्लोमा किया, और उसके बाद आप लोअर लेवल से स्टार्ट कर सकते हैं। जनरली देखा गया है कि आप डिप्लोमा करते हैं तो आपको जो जॉब मिलती है, वो हम ये कह सकते हैं जैसे A to D क्लास में अगर हम जॉब्स को डिवाइड करें, तो सी कैटेगरी की जॉब्स आपको मिलती हैं, और वही अगर आपने बीटेक किया हुआ है तो आपकी जॉब जो है वो आपकी बी कैटेगरी की हो जाती है। जैसे आप किसी भी फैक्ट्री में देखिए, वर्कशॉप में, या इतनी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से, आज मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर भी कहां कहां वैकेंसीज निकलती हैं, ठीक है। आप इंटरनेट पे सर्च करके देखिए, आज ही मैं सर्च कर रहा था इंटरनेट के ऊपर कि डिप्लोमाज, मतलब वैकेंसीज आफ्टर डिप्लोमा, तो मतलब थाउजेंड्स ऑफ वैकेंसीज आर देयर जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में निकलती हैं, या प्राइवेट कंपनीज है, प्राइवेट फैक्ट्रीज आप देखेंगे एनसीआर एरिया के अंदर, गुड़गांवा के अंदर इतनी सारी वर्कशॉप्स है, फैक्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज है, तो वहां पर डिप्लोमाज की जॉब काफी निकलती है, ठीक है। थोड़ा सा लाइन हार्डवर्किंग होता है आपको, मतलब बिल्कुल लोअर लेवल से स्टार्ट करना रहता है, और धीरे धीरे धीरे धीरे आपका लेवल इंप्रूव होता है इन टर्म्स ऑफ सैलरी। तो ये हमारा आज का ऑब्जेक्टिव रहेगा वोकेशनल कोर्सेज के बारे में। तो लेट अस स्टार्ट विद इट। थोड़ा हम ये समझें कि वोकेशनल कोर्सेज बेसिकली क्या होते हैं, थोड़ा सा उसकी थ्योरी के बारे में बताऊंगा आपको पहले, फिर हम बात करेंगे कि कौन कौन से कोर्सेज होते हैं 10th के बाद। मैंने आपको पहले ही बताया कि 10th के बाद कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, या हम ये कह सकते हैं कि हमारे पेरेंटल, जो हमारे फैमिली जो है, वो ज्यादा फाइनेंशियली हमें सपोर्ट नहीं कर सकते, तो उनका कहना ये होता है भी 2-3 सालों में आप कोई ऐसा टेक्निकल कोर्स कर लीजिए, जिसके बाद उसको यूज करके आप अपना कोई छोटा मोटा काम स्टार्ट कर सकते हैं, या कहीं पर आप अपनी जॉब स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमारे पेरेंट्स का एक एम सा होता है कि 2-3 साल कुछ आपको एजुकेशन प्रोवाइड कर दी, और उसके बाद फिर आप अपना कुछ काम करना स्टार्ट कर सकें। तो वोकेशनल कोर्सेज एक तरह से करियर स्टार्ट करने का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, इट इज अर्ली बिगिनिंग, ठीक है। मतलब वही अगर हम पहले 12th करें, फिर हम बीटेक करें 4 साल की, और फिर उसके बाद एमटेक करें, तो वो एक बहुत लॉन्ग प्रोसेस होता है। वही डिप्लोमा कोर्सेज में हमें बहुत जल्दी, मतलब 3 साल का डिप्लोमा आपने किया और उसके बाद आपको जॉब मिल जाती है प्राइवेट सेक्टर में, काफी गवर्नमेंट सेक्टर में भी काफी वैकेंसीज आती हैं डिप्लोमाज की, गवर्नमेंट PSUs में भी काफी वैकेंसीज आती हैं। आप उसके बाद इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं, वो भी मैं बात करूंगा आज के इस सेशन में कि उसका क्या प्रोसीजर रहता है। तो वोकेशनल कोर्सेज बेसिकली क्या होते हैं, वोकेशनल कोर्सेज ना स्पेसिफिक कोर्सेज होते हैं। आपने एक तरह से हैंडीक्राफ्ट में डिप्लोमा करना है, ब्यूटिशियन में डिप्लोमा करना है, ठीक है, इस तरह से मतलब बहुत स्ट्रीम है। अभी हम जनरली जो मानते हैं कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स, ये 5-6 स्ट्रीम की हम बात करते हैं,
बट अगर आप इनडेप्थ में जाओगे तो वोकेशनल कोर्सेज में काफी ज्यादा स्ट्रीम्स अवेलेबल होती है। कई जो गवर्नमेंट कॉलेजेस ऐसे हैं जहां पर स्ट्रीम ही बहुत कम होती है, पर वो तो जैसे भी आप जहां भी अप्लाई करेंगे, बाकी काफी ज्यादा स्ट्रीम्स होती है वोकेशनल कोर्सेज के अंदर, और उसमें आपको थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी दिया जाता है। ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि 3 ईयर स्पेंड करने के बाद में आप कहीं ना कहीं अपना वर्क करने की स्टेज में आए, आप अपना करियर स्टार्ट कर पाए डिप्लोमा करने के बाद में। तो जैसे पॉलिटेक्निक्स को हम कहते हैं बेसिकली दैट इज वोकेशनल कोर्स, तो पहली चीज की 10th क्लास के बाद आप एडमिशन ले सकते हैं और ये इक्विवेलेंट टू 12th क्लास होता है, तो इसका मतलब 3 साल में आपकी 12th भी हो जाती है और प्लस में आपका टेक्निकल एजुकेशन भी आप सीख जाते हैं जिस स्ट्रीम में आप अपना काम करना चाहें। इसके कई सारे किन किन स्ट्रीम में ये रहता है आप देखेंगे, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में, हेल्थ केयर में, ऑटोमोबाइल्स में, एनिमेशन में, फैशन एंड टेक्सटाइल में, मतलब इतनी स्ट्रीम्स हैं वोकेशनल कोर्सेज के अंदर। यस, टीचिंग में है, ब्यूटी कल्चर में है, तो ये सारी ट्रेनिंग जो है ना वोकेशनल में आती है। आप देखते हैं जैसे रीड के ऊपर भी एक तरह से हम ये कहेंगे, जैसे आप स्टिचिंग, जैसे बहुत आप में से लेडीज ऐसी हैं जो स्टिचिंग का कोर्स करती हैं, एक टाइप से जो ब्यूटिशियन का लेवल करती हैं, तो वही चीज आप ऐसे मतलब जो यहाँ रहता है वो इसे इनफॉर्मल एजुकेशन, ठीक है, मतलब उसका आपने सीखा और उसको आपने डायरेक्ट फिर इम्प्लीमेंट किया, अपना काम स्टार्ट किया। एक होता है कि 10th के बाद आपने फॉर्मली कोर्स में एडमिशन लिया, 2 या 3 साल का आपने कोर्स किया, ठीक है। तो ये मतलब इतनी सारी स्ट्रीम्स हैं कि आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपना करियर चूज कर सकते हैं, ठीक है। बस थोड़ा सा जो लोग पॉलिटेक्निक में जाने से जो बचते हैं, या जी हम ये कहें कि काफी लोग ऐसे भी हैं आपको मिलेंगे जो आपको ये कहेंगे कि पॉलिटेक्निक के बाद जॉब अपॉर्चुनिटी कम होती है, जॉब अपॉर्चुनिटीज तो है बट आपको मतलब कुछ साल मेहनत करनी रहती है, क्योंकि आपको बहुत अच्छे लेवल से एंट्री नहीं होती, एक तरह से बिल्कुल एलिमेंट्री लेवल से आप किसी इंडस्ट्री में एंटर करते हैं और धीरे धीरे 2-4-5 साल मेहनत करने के बाद में फिर आप एक अच्छे लेवल पे पहुंच पाते हैं, एक हैंडसम सी सैलरी आपकी हो जाती है, बट स्टार्टिंग में आपको 2-4 साल हार्डवर्क करना रहता है क्योंकि एज भी आपकी कम है ना। अभी 10th के बाद आपने 3 साल का डिप्लोमा किया, मतलब 20-21 साल के आसपास आपकी एज है, तो 20-21 ईयर्स के अंदर आपने अपना जॉब स्टार्ट किया और 4-5 सालों में आप जब आपकी एज 25 ईयर्स तक होती है तो आप एक ठीक ठाक सैलरी पे पहुंच जाते हैं, अगर आपने स्टार्टिंग आपकी ठीक ठाक हो गई है तो, राइट। तो ये एक सारे एडवांटेजेस हैं डिप्लोमा कोर्सेज के। अब देखिए किन किन फील्ड्स में है, थोड़ा मैं टाइम जो है वो इस बात पे स्पेंड करूंगा कि किन किन फील्ड्स में है। थोड़ा सा डिप्लोमा की दिक्कत क्या है कि जैसे आप कोई हरियाणा से बिलोंग करता है, कोई आप में से उत्तराखंड से है, कोई उत्तर प्रदेश से है, तो हमारे आसपास जो डिप्लोमा कॉलेजेस है, जो पॉलिटेक्निक कॉलेजेस होते हैं, कुछ कॉलेजेस में उतने कोर्सेज अवेलेबल नहीं होते, एक स्पेसिफिक से कोर्स अवेलेबल है। एक बहुत बड़ी हमारे कॉलेजेस की प्रॉब्लम क्या रहती है कि कॉलेजेस में प्लेसमेंट की फैसिलिटी ज्यादा नहीं होती, मतलब जितने डिप्लोमा कॉलेजेस हैं वहां प्लेसमेंट पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। तो अगर उस चीज को थोड़ा एक तरह से ध्यान दिया जाए तो बच्चों की अगर वहीं से ही प्लेसमेंट होनी स्टार्ट हो जाए तो डिप्लोमा कोर्सेज भी काफी मार्केट में वेटेज ले के आ सकते हैं। तो जैसे पहले हम बात करेंगे कि हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट कोर्सेज, ठीक है, ये भी आपके डिप्लोमा के अंदर आते हैं, वोकेशनल कोर्सेज होते हैं। ये बेसिकली होटल से डील करते हैं या ऐसा इंडस्ट्री जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री जिसे हम कहते हैं, इसमें आपका डिप्लोमा होता है फूड एंड बेवरेज सर्विस के अंदर। अब ये फूड एंड बेवरेज सर्विस जो है, जैसे जितनी भी आपकी सॉफ्ट ड्रिंक्स है, जैसे जो कोल्ड ड्रिंक जिसे हम कहते हैं, कोका कोला है, कोक है, तो आप अगर यहां से डिप्लोमा करते हैं तो उसमें जॉब आपको मिल जाती है एज ए फूड एनालिस्ट की, ठीक है, इस तरह की जॉब्स रहती हैं। डिप्लोमा इन बेकरी एंड कन्फेक्शनरी होता है, जैसे आप सोच के देखिए गुड़गावा में या एनसीआर के अंदर अगर आप बेकरी का प्रोडक्ट जो बनाना सीखना चाहते हैं तो उसकी क्लासेज के काफी ज्यादा फीस चार्ज की जाती है प्राइवेट के अंदर, ठीक है, मतलब आपको बेकरी और जो कन्फेक्शनरी की आइटम्स होती है काफी ज्यादा हैवी फीस चार्ज की जाती है सिखाने के लिए, केक बनाना सिखाना और प्रोफेशनली काम करना। अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है 3 साल का बेकरी के अंदर तो उसके बाद आप अपनी बेकरी ओपन कर सकते हैं। और स्मॉल स्केल पे आप देखिए आज के टाइम के अंदर
जो बेकरीज हैं बहुत थोड़ी इन्वेस्टमेंट से, देखिए ये वो चीजें हैं बेसिकली जो वोकेशनल कोर्सेज का कॉन्सेप्ट ही यही था कि आप लो इन्वेस्टमेंट से अपना काम स्टार्ट कर सके, ठीक है। जैसे अगर आपने बेकरी में कोर्स किया हुआ है तो आप बहुत ही लो इन्वेस्टमेंट से अपनी बेकरी ओपन कर सकते हैं, ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए होती, राइट। डिप्लोमा 3 साल का होता है, जितने भी डिप्लोमा होते हैं ना, देखिए 10th क्लास के बाद में जो डिप्लोमा कोर्सेज है वो सभी 3 साल के होते हैं, ठीक है, कि जो डिप्लोमा होल्डर है वो 12th के इक्विवेलेंट है, तो 3 साल का डिप्लोमा रहता है। क्वेश्चन था जैसे मैंने आंसर किया उसका, हाँ जी मैं बात कर रहा था बेटे बेकरी एंड कन्फेक्शनरी का, तो आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। आप देखिए आज के समय में केक्स की इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा हो चुकी है, मेरे हिसाब से कोई विरला ही घर ऐसा होगा जिसमें बर्थडे सेलिब्रेशन किया जाता है बिना केक, ठीक है, छोटे छोटे बच्चा, ठीक है, तो वो मतलब अगर अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है या फैमिली में कोई भी फंक्शन है, एनिवर्सरी है किसी की, तो केक तो बहुत छोटा, मतलब केक तो एक आप मान के चलिए असेंशियल आइटम है, ठीक है। आप अपने आसपास में भी देखेंगे काफी बेकरीज होती हैं, तो अगर आपने प्रोफेशनली तरीके से कोर्स किया हुआ है तो आप उसको काम कर सकते हैं। डिप्लोमा की एज लिमिट जो है वो मतलब 22 से 23 साल तक है, मतलब जैसे आपकी 10th जो है ना 17 ईयर में हो जाती है, ऑलमोस्ट 17 नहीं तो 18 में हो जाती है, तो उसके बाद 4-5 साल तक आप डिप्लोमा में एडमिशन ले सकते हैं। गैप ईयर के लिए आपको सर्टिफिकेट देना होता है, एक एफिडेविट आपको देना होता है कि ये जो गैप आपका है इसमें आपने कुछ किया है। ऐसे ही फूड प्रोडक्शन में क्राफ्ट कोर्स है, आप देखिए रीड के सेंटर्स पे भी कई सेंटर्स पे ऐसी एक्टिविटी की गई है, जैसे जहां पर फूड प्रोडक्शन से रिलेटेड, फूड मतलब एक तो हम खाना बनाते हैं एट अवर होम, ठीक है, एक हम प्रोफेशनल कुकिंग करते हैं, प्रोफेशनल कुकिंग मतलब हमें 50 लोगों का खाना बनाना है, 100 लोगों का खाना बनाना है। मैंने देखा है पीछे कई सेंटर्स के ऊपर, जैसे आपका एक तरह का जो कुमासपुर सेंटर है, कई सेंटर्स में इस तरह की ट्रेनिंग भी हुई है। तो जो डिप्लोमा की एज जो है वो आपकी मिनिमम 17 है, मैक्सिमम जैसे मैंने आपको बताया 4 से 5 साल है, बट भाईपाल जी ने आंसर किया कि 24 साल तक आप डिप्लोमा कर सकते हैं, तो 17 से 24 साल तक एज है इसमें, ठीक है। फिर डिप्लोमा इन कुकरी है, हाउस कीपिंग है, रेस्टोरेंट एंड काउंटर सर्विस है, होटल रिसेप्शन है, हॉस्पिटैलिटी ऑपरेशन मैनेजमेंट है। आप देखिए जैसे अगर आपको होटल इंडस्ट्री में काम करना है तो उसमें एक ऑप्शन तो क्या रहता है कि 12th के बाद आप होटल मैनेजमेंट करिए, कोर्स करिए, ठीक है, वो आपका 3 साल का कोर्स रहता है BSc इन होटल मैनेजमेंट। उनका भी हम एक अलग से क्लास लेंगे कि जिसमें मैं होटल मैनेजमेंट, फैशन डिजाइनिंग का भी हमने एक अलग से सेशन प्लान किया हुआ है। तो एक तरीका तो क्या रहता है कि पहले आपने 12th किया और 12th के बाद में आपने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया, 3 साल का आपका कोर्स रहता है, BSc इन होटल मैनेजमेंट होती है। सेकेंड ऑप्शन क्या रहता है कि आपने डिप्लोमा किया 3 साल का 10th के बाद, और हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के किसी भी कोर्स में जिसमें आपका इंटरेस्ट है, तो वो करने के बाद आप उस इंडस्ट्री में काम स्टार्ट कर सकते हैं। आप देखिए आपके आसपास में इतने होटल्स ओपन होते हैं, काफी रेस्टोरेंट्स हैं, तो उन रेस्टोरेंट्स में जो लोग काम करते हैं, पहले तो क्या होता था कि जो एक तरह से जो वेटर है या जो कुक है वो कोई भी एरा गेरा रख लिया जाता था, बट आज के समय में आप देखेंगे जैसे ही होटल का लेवल ज्यादा बढ़ता जाता है तो दे ऑल्सो नीड सम प्रोफेशनल पीपल, ऐसा लोग, ऐसे लोग जिनको उसके बारे में पता हो। तो एक ये हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट का भी स्कोप है और इसमें भी सोचा जा सकता है डिप्लोमा करने का अगर आप इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो इसके बाद सेकंड आता है इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, मतलब जो हमारे एक तरह से जो टेक्निकल हम कहें जिसको, कि ज्यादातर बच्चे जिस लाइन में जाके डिप्लोमा करते हैं, मैक्सिमम आप देखेंगे जब जहां भी हम वोकेशनल कोर्सेज या पॉलिटेक्निक डिप्लोमा की बात करेंगे तो मैक्सिमम बच्चे जो है वो इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा करते हैं, ठीक है, जिसमें आर्किटेक्चरल असिस्टेंटशिप होता है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में जॉब जल्दी मिल जाती है। आप देखेंगे इंडिया में इतनी कार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, ट्रक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, ठीक है, जहां पर आपको अगर आपने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया हुआ है तो आपको मतलब जॉब मिल जाती है इजिली, स्टार्टिंग लेवल से आपकी एंट्री होती है किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, फिर आप धीरे धीरे अपना करियर बना सकते हैं। केमिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होता है, सिविल इंजीनियरिंग में होता है, सिविल इंजीनियरिंग में तो गवर्नमेंट जॉब्स भी काफी निकलती हैं अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो, रेलवेज में पीछे हमने बात किया था, जैसे रेलवेज में तो डिप्लोमाज की वैकेंसी ज्यादा आती है,
जैसे आपको ध्यान हो मैंने अभी पीछे एक सेशन लिया था कि जॉब अपॉर्चुनिटीज इन रेलवे, भी जो हमारा रेलवे डिपार्टमेंट है उसमें अगर आपको नौकरी चाहिए तो उसके लिए क्या क्या ऑप्शन रहते हैं। तो रेलवे में जो भी हमारी टेक्निकल पोस्ट है, ठीक है, उन टेक्निकल पोस्ट में काफी पोस्ट ऐसी हैं जो डायरेक्ट आपसे डिप्लोमा मांगती है। तो उसमें अगर आपने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, मतलब ये सारी स्ट्रीम्स हैं, इनमें इंजीनियरिंग भी होती है, इन सब में आप बीटेक भी कर सकते हैं। पर अगर आपने डिप्लोमा भी किया हुआ इसके अंदर 3-3 साल का, अब तेरी समस्या थोड़ी ये रहती है, मैं आपको बताऊं एक्चुअल रूट कोज क्या है, दिक्कत कहां पर है। दिक्कत सारी यहां पर है कि हमारे इंडिया में वोकेशनल कोर्सेज या हम डिप्लोमा को कहें, इनको इतना सीरियसली नहीं लिया जाता, ठीक है। उसके पीछे कारण क्या है कि इतना सीरियसली नहीं लेते, जो कॉलेज में टीचर्स हैं वो भी इतना ज्यादा ध्यान नहीं देते, और दूसरा बच्चे भी नॉन सीरियस एटीट्यूड इसमें रखते हैं। अगर आप किसी अच्छे पॉलिटेक्निक से 3 साल का डिप्लोमा करते हैं, 3 ईयर बहुत बड़ा टाइम होता है, तो जिस भी फील्ड में आप डिप्लोमा करेंगे उस फील्ड में आपको एक अच्छा नॉलेज हो जाता है, अच्छा अवेयर हो जाते हैं उस फील्ड से रिलेटेड, आपको उस फील्ड से रिलेटेड जितने भी टेक्निकल नॉलेज काम करने में चाहिए उतना टेक्निकल नॉलेज आपको मिल जाता है। आप देखेंगे, जैसे मैं आपको एक चीज और ऐड करूं यहां पर, काफी बच्चे ऐसे हैं जो दे गो फॉर आईटीआई, वो क्या करते हैं आईटीआई भी करते हैं, ठीक है। अब वही चीज है, देखिए जो आईटीआई है वो डिप्लोमा से भी लो लेवल में काउंट किया जाता है। मतलब ये 3 आपकी लेयर्स हैं। फर्स्ट लेयर जैसे सबसे लो लेवल पे अगर हम बात करें तो आईटीआई आता है, सेकेंड लेवल पे आपके डिप्लोमाज होते हैं, पॉलिटेक्निक डिप्लोमाज होते हैं, और थर्ड लेवल पे आपका बीटेक होता है। तो एक तरह से ये तीनों ही टेक्निकल एजुकेशन की लेयर्स हैं, राइट। तो आप अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से जो भी करना चाहें, ठीक है, वो आप उसमें कर सकते हैं, राइट। तो जैसे इसमें ये सारी फील्ड्स में आप अपना डिप्लोमा कर सकते हैं कि जिस भी फील्ड में आपका इंटरेस्ट हो, और उसके बाद अगर आप उसी में अपना करियर बनाना चाहें आगे फर्दर, आप उसमें इंजीनियरिंग करना चाहें तो फिर अपना इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं। बाकी मैं आपको बताऊं स्टेट वाइज, जैसे हरियाणा की हम बात करें चाहे हम यूपी की बात करें, तो आपका जो बिजली बोर्ड डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, या टाउन एंड प्लानिंग का डिपार्टमेंट है, या काफी डिपार्टमेंट्स हैं वहां पर डिप्लोमा होल्डर की वैकेंसीज आती है। आपका जो बिजली बोर्ड डिपार्टमेंट है वहां पर डिप्लोमा होल्डर्स की, जिन्होंने इलेक्ट्रिकल्स में किया हुआ है, उनकी काफी वैकेंसी आती है। आपके जो एक तरह से टाउन प्लानिंग है उनमें सिविल इंजीनियरिंग की काफी वैकेंसीज आती है अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है, ठीक है। तो मतलब ये डिपेंड करता है कि आपने किस स्ट्रीम में डिप्लोमा किया है। लैक ऑफ अवेयरनेस के कारण, देखो जनरली क्या होता है, मैंने देखा बहुत बच्चों से मिलते हैं जिन्होंने डिप्लोमा किया और बाद में दे से भी डिप्लोमा करने का कोई फायदा नहीं हुआ, ठीक है। वो क्या होता है कि वो बाहर जॉब से अप्लाई नहीं कर पाते ज्यादा, मतलब लैक ऑफ अवेयरनेस के कारण उन्हें पता ही नहीं चल पाता कि कहाँ वैकेंसी निकली हुई है, कॉलेज उसमें सपोर्ट नहीं करता प्लेसमेंट के अंदर, तो जिस कारण फिर वो दे फील कि डिप्लोमा का कोई ज्यादा यूज नहीं हुआ। बट काफी बच्चे ऐसे भी हैं एनसीआर एरिया में स्पेशली, जो डिप्लोमा करने के बाद में एक ठीक ठाक कंपनी में जिनकी सेटलमेंट हो जाती है और एक अच्छा लेवल पे धीरे धीरे पहुंच जाते हैं। इसके साथ साथ और भी काफी फील्ड्स हैं जिसमें डिप्लोमा होता है, ट्रैवल एंड टूरिज्म में है, इंग्लिश कम्युनिकेशन एंड पर्सनल दैट इज प्रेजेंटेशन स्किल्स में, टेक्सटाइल डिजाइनिंग में, फैशन डिजाइनिंग है, हेयर एंड स्किन केयर में। आप देखते हैं आजकल VLCC का नाम आप सबको पता ही होगा, VLCC एक तरह से आपका जो ब्यूटिशियन से रिलेटेड कोर्सेज कराते हैं, ठीक है, या उसमें आपका हेयर या जो स्किन केयर के कोर्सेज रहते हैं, तो वो एक तरह से प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। बट वहीं गवर्नमेंट सेक्टर में भी ये इनसे रिलेटेड डिप्लोमाज होते हैं, ब्यूटिशियन का डिप्लोमा है, इवेंट मैनेजमेंट है, ऑफिस मैनेजमेंट है, हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट है, कॉस्मेटिक एंड लाइफ प्रोडक्ट डिजाइनिंग है, कैटरिंग मैनेजमेंट है। तो मतलब इट्स अ वेरी वाइड एरिया, ठीक है, मतलब बहुत बड़ा स्कोप है, काफी ज्यादा इसमें स्ट्रीम्स हैं, ठीक है, ज्यादा स्ट्रीम्स हैं, इसलिए आप अपना फ्यूचर बिल्डअप कर सकते हैं अगर आपने किसी भी कोर्स में डिप्लोमा किया है। बट स्टार्टिंग में थोड़ी मेहनत रिक्वायर्ड होती है इसके अंदर, क्योंकि इमीडिएट रिजल्ट नहीं मिलता, इमीडिएट बहुत अच्छी जॉब्स नहीं है डिप्लोमा में। डिप्लोमा करने के बाद कुछ टाइम आपको मेहनत करनी रहती है, तभी आप अच्छी जॉब ले सकते हैं।
अब क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। देखो डिप्लोमा तो आपने कर लिया, डिप्लोमा करने के बाद क्या क्या चीजें आप कर सकते हैं, जैसे मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल आपको देता हूँ। वेब डेवलपर का आप काम कर सकते हैं। वेब डेवलपर मतलब जो एक टाइप से जो आप लोग की जो वेबसाइट्स होते हैं जो डेवलप करते हैं, अगर आपने कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा किया हुआ है और उसके बाद आपने किसी प्राइवेट कॉलेज से साल डेढ़ साल का कोई कोर्स भी किया है थोड़ा लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने में, तो वेब एज ए डेवलपमेंट आप कर सकते हैं। साइट जो बनती है वो आप बन सकते हैं बना। जो डेटा एनालिस्ट का काम होता है, ब्यूटिशियन का आप अपना काम कर सकते हैं। आप देखो मैं काफी रीड के कई सेंटर्स पे मैं एज ए लास्ट ईयर मैंने कई सेंटर्स आपके देखे जहां पर क्या होता है कि एक टाइप से ब्यूटिशियन का कोर्स करवाया जाता है, ठीक है, और ब्यूटिशियन का कोर्स में भी आपके लेवल्स हैं लेवल वन लेवल टू, और जब आप एडवांस कोर्स कर लेते हैं तो उसके बाद मोटिवेट किया जाता है फीमेल्स को कि आप अपना ब्यूटी पार्लर खोलें। कई जगह पर मैंने देखा है कि काफी सक्सेसफुल ब्यूटी पार्लर भी है। मैं जैसे रामपुर की बात करूंगा, रामपुर में मैं गया था पीछे हो गया मुझे साल सवा साल, तो वहां पर जैसे भी हमने जैसे विमेन एंटरप्रेन्योरशिप पे काम किया था, तो वहां पर काफी एग्जांपल्स ऐसे थे जिन्होंने रीड के सेंटर के थ्रू ब्यूटिशियन का कोर्स किया और ब्यूटिशियन का कोर्स करने के बाद फिर उन्होंने अपना जो पार्लर ओपन किया और काफी पार्लर उसमें ऐसे हैं जो सक्सेसफुली काम कर रहे हैं। ऐसे ही एक टाइप से जो कुमासपुर में भी ऐसा चल रहा था आपका माने, मतलब काफी सेंटर्स पे ये कोर्सेज चलते हैं। तो मतलब वही चीज है कि वहां पर हम जो इनफॉर्मल कोर्स आपको दे रहे हैं वही अगर आपने 10th के बाद एक 3 साल का डिप्लोमा किया हुआ है तो एक तरह को हम कह सकते हैं ये फॉर्मल एजुकेशन है आपकी, तो ये चीजें आप सारी कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये आजकल जैसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, ये भी एक बहुत फ्यूचर का एक तरह से हम ये कह सकते हैं द करियर। SEO बेसिकली क्या होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है कि आप देखते हैं आजकल लोग YouTube के थ्रू Facebook के थ्रू अपने चैनल्स बनाते हैं या काफी एक्टिविटी करते हैं ताकि उनको वहां से इनकम आनी स्टार्ट हो जाए, ठीक है, तो लोग साइट्स बनाते हैं और ये चाहते हैं कि जब सर्च किया जाए तो उनका साइट सबसे ऊपर आए, उनका नाम सबसे ऊपर आए। तो ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है, इसका एक कोर्स होता है, अगर आपने ये किया हुआ है SEO का कोर्स किया हुआ है तो फिर आप एज ए SEO पर्सन काम कर सकते हैं कंपनीज के लिए। हेयर ड्रेसर का भी काम रहता है, आपका ग्राफिक डिजाइनर है, सोशल मीडिया मैनेजर है, शेफ है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, मतलब इट्स अ वेरी वाइड स्ट्रीम। मैं आपको बताऊं जो अगर हम कई और कंट्रीज को कंपेयर करें, USA की बात करें, UK की बात करें, तो वहां पे अर्ली एज से ही टेक्निकल एजुकेशन पे ज्यादा जोर दिया जाता है, जबकि हमारे इंडिया में अलग है। हमारे इंडिया में टेक्निकल एजुकेशन का भी ज्यादा रोल नहीं है, अभी इतना ज्यादा मतलब क्रेज नहीं है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में काम किया गया है, थोड़ा सा उसमें कहा गया है कि वोकेशनल कोर्सेज पे ज्यादा फोकस करना चाहिए इंस्टेड ऑफ एकेडमिक कोर्सेज, क्योंकि वोकेशनल कोर्सेज के बाद आप बहुत जल्दी सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, मतलब बहुत जल्दी आप इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, अपना कुछ काम कर सकते हैं आप।

से हम कह सकते हैं कि दैट इज अ साइकोलॉजी, हमारा सोच ये है, जबकि गवर्नमेंट के पास इतनी जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं होती है, तो हमें खुद कुछ भी कोर्स, कोई भी टेक्निकल स्किल लेने के बाद में हमें अपने लेवल पे मेहनत करनी चाहिए और खुद भी हम अपने पैरों पे खड़ा हों, और उसके साथ साथ हमने कुछ लोगों को अपने साथ में एम्प्लॉय भी करा, उनको भी हमने जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करी। तो ये एक तरह से मतलब ये सारी करियर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होती हैं, जो अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो आप एक तरह से अपना काम कर सकते हैं, बहुत जल्दी आप सेल्फ इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब आपको किसी की नौकरी करने की नीड नहीं है, आप थोड़ी सी मेहनत करके अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो डिप्लोमा के बाद एक ये काम हो सकता है, एंटरप्रेन्योरशिप जो आपका डेवलपमेंट है वो काफी उसको हेल्प मिलती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो गवर्नमेंट जॉब्स है, ऐसा नहीं कि मतलब प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स हैं, एक तरह से काफी गवर्नमेंट जॉब्स भी निकलती हैं डिप्लोमा होल्डर्स के लिए, ठीक है। मैंने पिछले जैसे अभी अक्टूबर और सितंबर की मैंने काफी जॉब्स निकाल के हमें शो करता हूँ किन किन कंपनीज में, किन किन ऑर्गेनाइजेशन में जॉब मिलती है या गवर्नमेंट जॉब्स मिलती है। देखिए आप सब जानते हैं कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होता है, मतलब एक तरह से जो गवर्नमेंट की कंपनीज होती हैं, जिसमें सेल या आपकी स्टील की कंपनी है, भेल है, BHEL, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड है, बेल है, गेल है, IOCL है, मतलब पेट्रोलियम कंपनीज है, HPCL है, ONGC को तो सब जानते ही है कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन जो है, तो मतलब ये सारी जो है ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, ठीक है। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जिनके इंडिया में कई कई जगह पर काफी बड़े बड़े प्लांट हैं, ठीक है। अब उन प्लांट्स में क्योंकि जब टेक्निकल काम होगा तो टेक्निकल लोग चाहिए काम करने के लिए, और टेक्निकल लोग जो काम करने के लिए चाहिए होते हैं उसमें प्राइमरी दो तरह के टेक्निकल लोग चाहिए होते हैं। पहले तो वो जो हायर क्वालिफिकेशंस के हैं, हायर क्वालिफिकेशंस का मतलब क्या है, जिन्होंने बीटेक किया हुआ है, ठीक है। सेकंड जो एक तरह से जो मिडिल लेवल जो एम्प्लॉयज होते हैं वो चाहिए होते हैं, जिसमें डिप्लोमा होल्डर्स को काफी एक तरह से उनकी डिमांड रहती है। तो इसमें डिप्लोमा होल्डर्स को जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी मिलती है या टेक्नीशियन की वैकेंसी मिलती है। आप देखिए कहीं भी JEE की वैकेंसी निकलती है ना जूनियर इंजीनियर की, क्योंकि जो डिप्लोमा होल्डर एक तरह से जूनियर इंजीनियर ही है, टेलीकॉम डिपार्टमेंट में, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में, जहां भी JEE की वैकेंसी निकलती है, जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी निकलती है, वो बेसिकली डिप्लोमा होल्डर्स के लिए होती है। तो वहां पर आप कर सकते हैं। हाँ सर, जो बीटेक में हाँ उनको अगर उसमें जाना है तो फिर गेट क्वालिफाई करना पड़ेगा, ये आपने सही यहां बताया, मैं भी इसको बाद में पूरे उसमें डिस्कस करूंगा एक तरह से, कि अगर जो बीटेक वालों को अगर इनमें जाना है, इन PSU में जाना है, तो गेट एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद ही जा सकते हैं, पर डिप्लोमा होल्डर्स में जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज डिप्लोमा करने के बाद ही उन्हें मिल जाती है। देखिए ये स्ट्रीम्स है सारी, एग्रीकल्चर में भी डिप्लोमा होता है, ऑटोमोबाइल्स है, केमिकल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस है, तो ये अलग अलग वैकेंसीज के स्ट्रीम्स हैं। होटल मैनेजमेंट में है, मैरीन इंजीनियरिंग में है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस में है, तो मतलब ये इतनी स्ट्रीम्स में इतने अगर आपने इन स्ट्रीम्स में डिप्लोमा किया हुआ है तो इनकी वैकेंसीज आती रहती हैं टाइम टू टाइम। ये मैंने कुछ पिछले कुछ टाइम की वैकेंसीज का मैं एक चेक कर रहा था, अभी इसमें हम देखेंगे तो सबसे ज्यादा कंप्यूटर साइंस में वैकेंसी आई हुई है, राइट। तो ये सभी वैकेंसीज जो है वो अलग अलग कंपनीज में है, जैसे ये मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, जैसे CMPDI है, ये अभी 29 सितंबर को वैकेंसी निकली है इसके अंदर, CMPDI, सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो ये इसलिए आपको मैं यहां बता रहा हूं कि इसमें जो वैकेंसीज आती है ना, अलग अलग पूरे इंडिया में PSU फैली हुई है। आप देखेंगे हमारे इंडिया में काफी बहुत बड़ी बड़ी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं या बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, कंपनीज हैं, पर इसमें थोड़ा ये रहता है कि या तो हमारा घर ऐसी जगह पे हो जो मतलब जहां पर इंडस्ट्रियल एरिया है, क्योंकि जॉब तो वहां मिलेगी। जैसे मैं आपको बताऊं, आप में से जो लोग रामपुर के पास हैं, उत्तराखंड से जैसे हैं, तो आप जैसे उत्तराखंड से हल्द्वानी की तरफ जाएंगे तो वहां पर अब काफी बड़ा इंडस्ट्रियल वो है, मतलब एक तरह से जो लाल कुआं है, पंत नजर है, वो जो बेल्ट है, तो वहां काफी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आई हुई हैं, मतलब वहां जॉब इजिली मिल जाती है। हाँ, दैट इज द रुद्रपुर। और वहीं अगर आप इधर आए अपना

0: एनसीआर एरिया में आते हैं, अगर आप गुड़गावा की बात करते हैं तो जैसे आपका मानेसर है, तो यहाँ पर काफी इंडस्ट्रीज हैं, तो बहुत इजीली डिप्लोमा होल्डर्स को जॉब्स मिल जाती है। या फिर अलग अलग प्लेसेस पर, जैसे कुछ स्टेट वाइज भी वैकेंसी निकलती हैं। जैसे देखो आप इसमें देखेंगे जो सेकंड पोस्ट है, हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की 1661 जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की वैकेंसी आई है, ठीक है, जो फ्रेशर्स के लिए है, जिसमें फिक्स किया होता है कि आपका ऑफिस एंड मैनेजमेंट में डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से मतलब वैकेंसीज काफी होती हैं। थोड़ा सा आप ये कह सकते हैं कि अवेयरनेस आपके अंदर होनी चाहिए, आपके पास में लिंक्स के सोर्सेज होने चाहिए भी, कहां से आपको पता चल पाए कि किस किस फील्ड की वैकेंसी कहां से आई हुई है। आजकल तो इंटरनेट के थ्रू आप घर बैठे ही पता कर सकते हैं। और मैं आपको यहाँ पर एक चीज और ऐड करूं कि आप में से जो लोग ऑलरेडी डिप्लोमा होल्डर है या कोई आगे डिप्लोमा करने की अभी सोच रहा है, तो टेक्निकल एजुकेशन के साथ साथ जो भी आपने 3 साल का जिस भी स्ट्रीम में आपने डिप्लोमा किया, तो टेक्निकल एजुकेशन के साथ साथ आप थोड़ा सा एजुकेशन अपने आप को इंटरनेट नो हाउ, जिसे हम कहते हैं कि अभी अगर हम इंटरनेट नो हाउ की बात करें तो हमें सभी को फेसबुक यूट्यूब तो सबको पता है, सभी लोग उसे यूज भी करते हैं, ठीक है, पर हम में से बहुत कम लोग ऐसे हैं जो गूगल अलर्ट यूज करते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपको जॉब्स के बारे में पता करना है, वैसे तो काफी एक तरह से साइट्स भी हैं जो आपको एक टाइप से जो भी गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब्स निकलती हैं वो आपको वहां से इंफॉर्मेशन मिल जाती है। फिर भी अगर आपको एक स्पेसिफिक जॉब चाहिए, जैसे आपने डिप्लोमा किया हुआ है, डिप्लोमा होल्डर से रिलेटेड आपको जॉब्स के बारे में पता करना है, तो आपने गूगल अलर्ट के अंदर जॉब्स आफ्टर डिप्लोमा डाल दिया, तो उसमें क्या रहता है कि एवरी डे पूरे इंडिया के अंदर किसी भी पेपर में, किसी भी वेबसाइट के ऊपर, गूगल पे किसी वेबसाइट के ऊपर अगर डिप्लोमा के बाद की जॉब निकली है ना, तो उसका एक तरह से आपको लिंक मिल जाता है, तो वहां से आप सर्च आउट कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि वैकेंसीज काफी ज्यादा है, बस ये है कि थोड़ा सा एरिया फर्क पड़ जाता है कि आप अगर एनसीआर में रह रहे हैं और आपकी जॉब निकली है वो आपकी बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में है, कहीं महाराष्ट्र में है, तो हम अप्लाई नहीं कर पाते, ठीक है, तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। अदरवाइज हम अगर डिप्लोमा होल्डर्स की बात करें तो 12th, 10th के बाद में 3 साल कोर्स करने के बाद जॉब लेना कोई ज्यादा मुश्किल की बात नहीं है, और एक तरह से गवर्नमेंट सेक्टर में भी वैकेंसीज रहती है। पर एक प्रॉब्लम और भी है कि गवर्नमेंट सेक्टर में जो वैकेंसीज है उसके बाद एग्जाम होता है आपका, एग्जाम मतलब दे टेक द टेस्ट, और टेस्ट में जो आता है वो बेसिकली क्या रहता है कि एक तो आपका जो भी जिस फील्ड में आपने डिप्लोमा किया हुआ है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस भी फील्ड में आपने डिप्लोमा किया हुआ है उस फील्ड के बारे में नॉलेज आपको अच्छी हो, आपने अच्छे ढंग से पढ़ाई कर रखी हो, और उसके साथ साथ जो सेकेंड पेपर आपका रहता है उसमें जनरल रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, जो बेसिक आपके सब्जेक्ट होते हैं जो किसी भी गवर्नमेंट जॉब में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, तो वो भी आपको थोड़ा बहुत तैयार करना रहता है जो आपको हेल्प करते हैं जॉब लेने के लिए। ये और भी ये आप देखेंगे सभी अक्टूबर मंथ की वैकेंसीज हैं। आप देखिए ये 7th अक्टूबर, 6th अक्टूबर, 5 अक्टूबर, मतलब ये सारी वैकेंसीज जो है ये बेसिकली डिप्लोमा होल्डर्स के लिए है, ठीक है। कहीं पर 500 वैकेंसीज है, कहीं 42 है, कहीं 21 है, कहीं 36 है, राइट, किसी में एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, कोई फ्रेशर के लिए है, ठीक है। और जनरली आप देखेंगे जितने भी यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशंस मैंने लिखी हैं, सभी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो आपकी पीएसयू या गवर्नमेंट सेक्टर की ऑर्गेनाइजेशन, मैंने किसी प्राइवेट का नाम नहीं लिखा है इसके अंदर, ये बताने के लिए आपको कि गवर्नमेंट में भी डिप्लोमाज की काफी ज्यादा वैकेंसी आती है, बशर्ते अगर हम उसमें थोड़ा सा अवेयर हो उनके बारे में, ठीक है, और अवेयर होने के साथ साथ हम अप्लाई भी करें, क्योंकि बहुत बच्चों की प्रॉब्लम क्या रहती है कि वो अप्लाई नहीं करते जॉब्स के लिए। आप मतलब मैं हम कई बच्चों को जानते हैं कि उनका एम तो है भी मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, बट उनसे पूछे अगर भाई कहाँ का फॉर्म अप्लाई किया, कहता जी मैंने तो कभी फॉर्म ही अप्लाई नहीं किया, फिर फॉर्म अप्लाई करता है तो वो तैयारी नहीं करता। तो मतलब ये सारी चीजें मैटर करती हैं कि अवेयरनेस होना भी, एप्लीकेशन ऑफ द फॉर्म भी, उसके बाद प्रिपरेशन करना भी, मतलब एवरीथिंग प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। अब ये तो मैंने आपको ऑलमोस्ट सारी बातें आपको समझा दी भी क्या क्या डिप्लोमा में रहता है, और कुछ चीजें और भी हैं, जैसे जो अगर आप डिप्लोमा करते हैं तो उसमें आप प्रोफेशनल स्किल साथ साथ सीख जाते हैं, ठीक है भाई। आपने जो टेक्निकल जो भी आपने ट्रेनिंग किया, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग किया, ठीक है, और वो टेक्निकल स्किल आपने सीख लिया तो जॉब लेने में आसानी रहती है। स्किल्ड एम्प्लॉयज की डिमांड हमेशा से रही है इंडिया में स्पेशली, और आप देखेंगे भी आने वाले टाइम में तो स्कोप और ज्यादा बढ़ेगा। जैसे आपने सुना होगा अभी कोविड के बाद में, जैसे ये कोरोना का अटैक हुआ कोविड-19 के बाद में, वर्ल्ड वाइड चाइना को माना गया भी इसके पीछे, जो एक तरह से चाइना वाज रेस्पॉन्सिबल। और स्टार्टिंग में तो यू हैव हर्ड इन टू द न्यूज, जैसे काफी वर्ल्ड में काफी कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने ये अनाउंसमेंट किया था कि हम चाइना में जितने भी इंडस्ट्रीज हैं वहां से हम अपनी इंडस्ट्रीज को चेंज करेंगे, ठीक है। जैसे जिसमें जापान था, यूएसए था, फ्रांस था, तो वो मतलब वो चाइना से, दे आर नॉट हैप्पी विद चाइना, ठीक है। अब देखिए वहां से इंडस्ट्री अगर निकल के इंडिया में आती है, आप देखेंगे इंडिया ने उसमें फिर काफी इनिशिएटिव लिया और एक तरह से ऑफर भी किया भी आप इंडस्ट्रीज इंडिया में लगाइए, यहां पर आपको ये टैक्स इंसेंटिव दिया जाएगा, ये बेनिफिट दिया जाएगा, तो ये काफी ज्यादा बातें चल रही हैं। तो अगर इतनी इंडस्ट्रीज इंडिया में आएंगी तो आप सोच के देखिए भी उनमें काम करने वाले लोग भी तो चाहिए ना, और काम करने वाले लोग जो होते हैं वो ज्यादातर टेक्निकल लोगों की डिमांड होती है, और टेक्निकल लोगों में तो फिर जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं वही आपके सामने रहते हैं, ठीक है। तो ये एक हम ये कह सकते हैं कि फ्यूचर में अच्छा साइन है कि अगर जितनी ज्यादा इंडस्ट्रीज इंडिया में आएंगी, जितना प्रोडक्शन एक्टिविटी यहां पर होगा उतना ही डिप्लोमा होल्डर्स को जॉब मिलेगी, ठीक है। तो मतलब ये सारी चीजें मैटर करती हैं। दूसरा एक बहुत बड़ी बात और भी है कि जैसे आपके मेट्रो कॉरपोरेशन है, मैं आपको बताता हूं जो DMRC है, जो दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन है, हजारों लोग ऐसे हैं, हजारों एम्प्लॉयज ऐसे हैं DMRC के अंदर जो जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पे काम करते हैं DMRC में। और उसके लिए अगर हम क्वालिफिकेशंस की बात करें तो ओनली उसके अंदर क्या कहा गया है कि आपने डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास में 10th के बाद। काफी वैकेंसीज निकलती है। अब तो देखो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि सैचुरेशन आ चुका है क्योंकि DMRC ऑलरेडी काफी रिक्रूटमेंट कर चुका है, बट स्टार्टिंग में जब नया नया ये कॉरपोरेशन आपका बना था उसमें जब नई नई वैकेंसीज निकलनी स्टार्ट हुई थी तो बहुत बच्चे ऐसे थे जो DMRC के अंदर लग गए, जिन्होंने थोड़ा बहुत मेहनत किया था और डिप्लोमाज किए हुए थे। और ऐसी अब हर स्टेट में आगे जो मेट्रो एक्सपेंड हो रही है तो जितनी ज्यादा एक्सपेंड होगी उतना ही जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं लोगों के लिए। फिर एक और बहुत बड़ी चीज है कि डिप्लोमा करने के बाद अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहें तो उसमें भी आपको लेटरल एंट्री मिल जाती है, ठीक है। मतलब क्या है कि देखो वैसे तो बीटेक आपकी 4 साल की होती है, ठीक है, अगर आप 12th के बाद करते हैं तो अगर आपने 12th-10th के बाद डिप्लोमा किया है 3 साल का तो उसमें भी आपको डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल जाता है, तो 1 साल आपका बच जाता है। तो आप ये कह सकते हैं कि वो इक्वलेंटी हो जाता है, किसी बच्चे ने 10th क्लास के बाद में पहले डिप्लोमा किया फिर उसने बीटेक में एडमिशन लिया, या आपने पहले 12th किया फिर आपने बीटेक में एडमिशन लिया, तो टोटल टाइम स्पेंडिंग जो है वो ऑलमोस्ट इक्वली रहेगी आपकी, वो आपका 1 साल वेस्ट नहीं जाएगा, उसमें एडजस्ट हो जाएगा। हर स्टेट इस तरह का लेटरल एंट्री का अपना अलग अलग एग्जाम लेता है। जैसे हरियाणा के जो बच्चे हैं वो लीड का एग्जाम देते हैं, LEET, लेटरल एंट्री इंजीनियरिंग टेस्ट होता है आपका, लीट का पेपर होता है, हर स्टेट का एग्जाम होता है, उसमें जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं तो वो अपना एक टाइप से जो लेटरल एंट्री का एग्जाम लेते हैं, ठीक है। तो उसमें फिर क्या होता है कि आपको वो पेपर पास करना होता है डिप्लोमा के बाद में, और फिर आपका डायरेक्टली सेकेंड ईयर में एडमिशन हो जाता है, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा स्कोप हो जाता है, भी आपको टेक्निकल नॉलेज भी आपने सीखा 3 साल के अंदर, अगर आपका उस फील्ड में करियर बनाने का इंटरेस्ट है, हाई से हम लीड कहते हैं लेटरल एंट्री एंट्रेंस टेस्ट, तो अगर आप उस फील्ड में आगे फ्यूचर में और टेक्निकल नॉलेज लेना चाहते हैं तो आप उसी फील्ड के अंदर बीटेक कर सकते हैं और आपका कोई ईयर भी वेस्ट नहीं होगा, तो सेम उसमें आप अपनी इंजीनियरिंग करके अपना करियर आगे लेके जा सकते हैं। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो पहले डिप्लोमा करते हैं फिर 2 साल जॉब करते हैं, ठीक है, उसके बाद दे टेक एडमिशन इन द बीटेक, राइट। तो ये एक अच्छी आपके लिए वो हो जाता है भी, आपकी हायर क्वालिफिकेशन भी हो गया और आपको इंडस्ट्री के बारे में पता भी चला, आपने इंडस्ट्री में काम भी किया, टेक्निकल एक्सपीरियंस भी आपका हुआ, तो ये भी एक स्कोप रहता है। और हर स्टेट में पेपर होता है, मैंने तो हरियाणा का आपको बताया, जैसे लीट का पेपर है, ऐसे ही डीटीई केरला के अंदर होता है, वो मतलब एग्जाम का नाम अलग अलग है, बाकी पेपर जो है एग्जाम जो है वो हर स्टेट में होता है लेटरल एंट्री के लिए, तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं लेटरल एंट्री की स्कीम के अंदर। ठीक है, तो ये आज का हमारा सेशन था, मैंने काफी चीजें आपको बताई इससे रिलेटेड, या एक दो चीजें मैं और भी ऐड करूंगा कि जैसे मैं पीएसयू की बात कर रहा था, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की, जिसमें आपको मैंने ओएनजीसी गेल इन सब के बारे में बताया। देखिए उनमें क्या होता है ओएनजीसी में गेल में कि अगर आपको वैसे जॉब लेनी है इंजीनियर की तो बीटेक आप करते हैं तो बीटेक के बाद फिर आपको गेट का एग्जाम क्वालिफाई करना रहता है। ठीक है, और वही अगर आपको जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी अप्लाई करनी है तो जूनियर इंजीनियर की काफी वैकेंसीज निकलती हैं, जिसमें आपको एक आपके फील्ड से रिलेटेड टेक्निकल नो हाउ से रिलेटेड आपने एग्जाम देना है, और उसके बाद फिर आपको अपना जो थोड़ा बहुत मैथ रीजनिंग का पेपर रहता है तो वो आप उसे दे सकते हैं। तो स्कोप इज वेरी वाइड, थोड़ा सा पॉजिटिव एटीट्यूड लेके, क्योंकि अगर हम वर्ल्ड वाइड कंपेयर करते हैं तो डिप्लोमा कोर्सेज को काफी वेटेज दिया जाता है। और मैं एक चीज और यहाँ पर ऐड करूं कि अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो आप बाहर भी जा सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री के अंदर सबसे ज्यादा जो डिमांड है वो उन लोगों की है जो टेक्निकल काम कर सके, मतलब टेक्निकल मतलब जिसको हम लोअर टेक्निकल कहते हैं, जैसे आप अपने यहाँ पर जो फिटर का काम होता है, ठीक है, मतलब ऐसे काम, क्योंकि बाहर की कंट्रीज में वहां के जो लोग हैं वो मतलब दे यू कैन से दैट दे हैव सो मच मनी, या हम ये कह सकते हैं कि वो छोटे काम नहीं करते। जबकि इंडिया से अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है किसी भी फील्ड के अंदर तो आप फॉरेन में जाके भी अपना एक ऐसे करियर स्टार्ट कर सकते हैं उसमें, और आपको वहां पे जॉब्स मिल जाती है। ठीक है, तो मतलब स्कोप इज वाइड, थोड़ा सा पॉजिटिव लेके आपने इस चीज को करना है। ठीक है, तो ये आज मैंने आपको अपनी ओर से बताया है। इसके अंदर एक चीज और ऐड करूं, जैसे फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा होता है, अब फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो लोग डिप्लोमा करते हैं तो उसका भी काफी स्कोप है। अब देखिए आज इतनी इंडस्ट्रीज ओपन हो चुकी है फूड जो फूड से एसोसिएटेड है, तो मतलब स्कोप काफी रहता है, थोड़ा सा पॉजिटिविटी लेके आपको इसमें काम करने की जरूरत रहती है। ठीक है, तो दिस इज फ्रॉम माय साइड, बाकी आपकी कोई क्वेरी है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, कुछ ऐड करना चाहते हैं तो आप फ्रीली पूछ सकते हैं, हम उस पर डिस्कस करें।
1: हाँ दिनेश जी, इसमें है ना दो तीन पॉइंट ऐड था। टेंथ के पास, टेंथ पास करके जैसे कि फुटवेयर टेक्नोलॉजी जैसे कि आगरा में है, टेंथ पास
0: जी, सर, जी, है, बिल्कुल सर।
1: और आप जिस तरह ज्वेलरी मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी जैसे पुणे में है, आपको ऑलरेडी चेन्नई में भी है, जैसे ज्वेलरी पर भी आपको डिप्लोमा करना चाहता है उसका भी है। अपना सबसे बड़ी बात है, शायद किसी को पता हो या नहीं भी हो, जो हमारे पूरे भारतवर्ष में जो है टेंथ पास करके 5 इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स होती है, वो जो टेंथ पास करके भी लड़के अप्लाई करते हैं प्लस टू करके भी, जैसे इंडो डेनिश टूल रूम और इंडो जर्मन टूल रूम, इंडिया और डेनमार्क के कोलेब्रेशन से कॉलेज बनी हुई है, जमशेदपुर में है, और एक है इंडो जर्मन टूल रूम, इंडिया और जर्मनी के कोलेब्रेशन से कॉलेज बनी हुई है, वो है इंदौर में। ये दोनों टेंथ पास करके या प्लस टू पास आउट करके, टेंथ पास करके जाएंगे तो 5 इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स है, प्लस टू करके जाएंगे तो 4 इयर्स का इंटीग्रेटेड कोर्स है, इसके लिमिटेड सीट होते हैं। तो ये लोग अप्रैल में भी अप्लाई कर सकते हैं, उनका मेन एग्जाम होता है और जुलाई से सेशन स्टार्ट होता है।
0: तो मतलब ये सारा बात यह है कि वोकेशनल कोर्सेज में स्कोप काफी है। ठीक है, वो एक आप मतलब इसमें आप ये कह सकते हैं कि बहुत छोटी एज में आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब अपना आपने जॉब स्टार्ट कर दिया और उसके बाद फिर आप धीरे धीरे उसमें यू कैन गेट प्रमोशंस, और अगर आप अपना भी काम करना चाहें तो इसमें लो इन्वेस्टमेंट पे अपना काम भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये काफी वाइड एरिया होता है।
1: गोल्फ कंट्री में भी सर आपने बताया भी है, जैसे साउथ अफ्रीका हुआ, गोल्फ कंट्री में भी काफी डिमांड होती है डिप्लोमा के।
0: गोल्फ कंट्री में बहुत डिमांड,
1: बहुत बहुत सर। मेरा है कि वो स्टेट वाइज जो एनटीपीसी है, जैसे कि स्टेट वाइज जहाँ पे इनकी ये मतलब कॉर्पोरेट ऑफिस होती है, इंटरनल वो लोग शायद आईटीआई वालों को या अदरवाइज लेकर के डिप्लोमा वाले को भी वो लोग हायर करते हैं क्या, जैसे जैसे उनका ऑल ओवर इंडिया का एग्जाम नहीं होकर के जो कंडक्ट जो जहाँ पे इनकी ऑफिस है, जैसे कि चित्रकूट में उसका एनटीपीसी का है, फिर उसके बाद यहाँ दादरी में एनटीपीसी, तो ये लोग इंटरनल भी शायद निकालते हैं।
0: क्या है सर कि वैसे तो जितने भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जिसमें एनटीपीसी भी है, नेशनल थर्मल पावर है, तो इनका तो प्रोसेस ये होता है सर कि ये अपनी दो तरह की जॉब्स निकालते हैं, एक तो सर जो परमानेंट बेसिस पे निकालते हैं और सेकंड वो जो एडहॉक बेसिस पे लगाते हैं। जो तो एडहॉक बेसिस पे लगाते हैं वो तो ये इंटरनल सोर्सेज से या कहीं से भी कर लेते हैं, बट जो परमानेंट पोस्ट निकालेंगे ना, परमानेंट पोस्ट में तो इनको नोटिफिकेशन निकालना पड़ता है और उसके लिए एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। मतलब जो एक तरह से जो परमानेंट पोस्ट रहती है वहां तो एक प्रॉपर प्रोसेस से ही वो काम चलता है, उसका टेस्ट भी लेते हैं ये लोग, सारी चीजें करते हैं। हाँ ये है कि कई बार कुछ पोस्ट ऐसी होती है जो आपकी एडवोक इन नेचर होती है, एक साल की, दो साल की, या जो टेम्परेरी पोस्ट होती है, तो वहां तो ये इंटरनल सोर्सेज से कहीं से भी कुछ ना कुछ कर जाते हैं। बट एक्चुअल जो जो आपके परमानेंट जॉब्स हैं, जिसको हम जूनियर इंजीनियर की जॉब कहते हैं इसके अंदर, तो वो तो एक प्रॉपर प्रोसेस से निकालते हैं।
1: बहुत सारा स्कोप है, टेंथ पास करने के बाद, आईटीआई करने के बाद या पॉलिटेक्निक, बहुत सारे स्कोप है। थैंक यू दिनेश जी।
2: आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति विश्लेषण। नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम विश्लेषण के नए अंक में आप सभी का स्वागत। मैं हूं विशाल शर्मा। श्रोताओं, भारत में सेमीकंडक्टर उद्योग को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण पहल की गई है। स्टार्टअप पॉलिसी फोरम ने द सेमिकॉन कंसोर्टियम की शुरुआत की है। ये सेमीकंडक्टर क्षेत्र से जुड़े स्टार्टअप निवेशकों और वैश्विक कंपनियों को एक मंच पर लाने का प्रयास है। ये पहल ऐसे समय में हुई है जब सरकार ने हाल ही में सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15 जुलाई को 1,27,500 करोड़ रुपए के कुल बजट के साथ सेमीकंडक्टर डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को विकसित करने के लिए इस मिशन को मंजूरी दी। आज के कार्यक्रम में जानेंगे कि सेमीकॉन 2.0 भारत के सेमीकंडक्टर क्षेत्र में क्या बदलाव ला सकता है, मैन्युफैक्चरिंग और वैश्विक निवेश पर इसका क्या असर होगा, और सेमीकंडक्टर का बढ़ता क्षेत्र भारत की अर्थव्यवस्था और रणनीतिक क्षमता के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। श्रोताओं, भारत में सेमीकंडक्टर क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए सरकार ने वर्ष 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की शुरुआत की थी। अब पहले चरण से मिली गति को आगे बढ़ाते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अगले चरण यानी सेमीकॉन 2.0 को मंजूरी दी है। आइए अब समझते हैं कि सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भारत की अब तक की यात्रा कैसी रही है और सेमीकॉन 2.0 इस यात्रा को किस तरह आगे बढ़ाएगा।
3: सेमीकॉन 2.0 के तहत पूरे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को विकसित करने के लिए 6 प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान दिया जा रहा है। पहला क्षेत्र है डिजाइन। देश में 100 से अधिक स्टार्टअप चिप डिजाइन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इन स्टार्टअप के जरिए रणनीतिक और व्यावसायिक उपयोग वाले उत्पादों के लिए जरूरी डिजाइन और तकनीक विकसित की जा रही है। दूसरा क्षेत्र है मशीन और सामग्री। सेमीकंडक्टर बनाने के लिए जरूरी मशीनों, सामग्री, रसायनों और गैसों के निर्माण तथा इनके क्षेत्र में रिसर्च और डेवलपमेंट करने वाली कंपनियों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। इससे सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए जरूरी आधार तैयार होगा और देश में प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग को भी बढ़ावा मिलेगा। तीसरा क्षेत्र है और अधिक फैब स्थापित करना। फैब यानी फैब्रिकेशन प्लांट वह विशेष संयंत्र है जहां सिलिकॉन वेफर पर बेहद छोटे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट तैयार किए जाते हैं और उनसे सेमीकंडक्टर चिप बनाई जाती है। भारत में पहली फैब के 2028 में शुरू होने की उम्मीद है। चौथा क्षेत्र है ATMP और OSAT उद्योग को और मजबूत करना। भारत में ATMP यानी सेमीकंडक्टर पैकेजिंग और टेस्टिंग से जुड़े संयंत्रों में हो रहे काम के बाद दुनिया भारत को ऐसे संयंत्रों के लिए एक वैकल्पिक स्थान के रूप में देख रही है। सेमीकॉन 2.0 के तहत इस क्षेत्र को और बढ़ावा दिया जाएगा और उन्नत ATMP तकनीकों को भारत लाने पर जोर रहेगा। पांचवा क्षेत्र है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। छठा क्षेत्र है टैलेंट डेवलपमेंट। सेमीकंडक्टर क्षेत्र के लिए कुशल लोगों की जरूरत को देखते हुए देश में 315 विश्वविद्यालयों में छात्रों को आधुनिक EDA टूल्स की मदद से चिप डिजाइन की ट्रेनिंग दी जा रही है। अब तक करीब 68,000 छात्रों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। श्रोताओं, अगर सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम के पहले चरण की बात करें तो अब तक 12 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को मंजूरी दी गई है। इनमें कुल 1,64,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश शामिल है। इन 12 स्वीकृत प्रस्तावों में से 3 कंपनियों ने व्यावसायिक उत्पादन शुरू कर दिया है जबकि एक और कंपनी के जल्दी ही उत्पादन शुरू करने की उम्मीद है। डिजाइन के क्षेत्र में भी पहले चरण के तहत स्टार्टअप और MSME की 24 सेमीकंडक्टर डिजाइन परियोजनाओं को वित्तीय सहायता के लिए मंजूरी दी गई है।
2: श्रोताओं, सेमिकॉन 1.0 के तहत भारत ने सेमीकंडक्टर क्षेत्र में एक मजबूत आधार तैयार किया। अब सेमिकॉन 2.0 के साथ इस यात्रा को अगले चरण में ले जाने की तैयारी है। पहले चरण से दूसरे चरण तक भारत की सेमीकंडक्टर यात्रा में क्या बदलाव आया है, इसे समझने के लिए आकाशवाणी समाचार ने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक चांडक से विशेष बातचीत की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
4: फेज वन में हमारा क्रेडिबिलिटी बन गया है और फेज टू में आउटकम जो होगा हमारा उससे हम कैपेबिलिटी बिल्डअप करेंगे और इस पॉलिसी में पूरा एंड टू एंड इकोसिस्टम बनेगा, जो फाउंड्री मैन्युफैक्चरिंग है, पैकेजिंग है जिसे एटीएम भी कहा जाता है, डिजाइन है, आरएनडी भी किया जाएगा इसमें, और साथ में मशीनरी और मटेरियल्स कहेंगे हम, उसमें करीबन 200 से 250 प्रकार के केमिकल्स, गैसेज और मटेरियल्स की जरूरत पड़ती है और इक्विपमेंट की, उसको भी फोकस किया जाएगा। उसके लिए भी 30% का गवर्नमेंट ने सब्सिडी तय किया है जिससे वो काम भी इंडिया में बना जाएगा। हमें अब सिर्फ चिप बनाने की बात है, लेकिन चिप बनाने के लिए और इसके डिजाइन के लिए जो भी कौशल विकास और सप्लाई चेन है उस पर ध्यान देना जरूरी है। इस इनिशिएटिव से देश में अधिक मूल्य संवर्धन होगा, इकोनॉमिक वैल्यू ऐड होगी, देश में आयात की निर्भरता भी बहुत कम होगी। मैं अगर नंबर की बात करूं यहां पर, हमारा 2030 में करीबन $100 बिलियन का सेमीकंडक्टर कंजम्पशन होगा।
2: श्रोताओं, सेमिकॉन 2.0 में पूरे इकोसिस्टम के विकास के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग और वैश्विक निवेश पर भी विशेष जोर दिया गया है। भारत को सेमीकंडक्टर निर्माण के वैश्विक केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में इन प्रयासों का क्या महत्व है, इस पर अशोक चांडक ने विस्तार से बात की।
4: अगर हमें मैन्युफैक्चरिंग करना है तो अंतरराष्ट्रीय सहयोग बहुत जरूरी है, इसके बिना ये होगा नहीं। हमारे पास प्रोसेस टेक्नोलॉजी नहीं है, नथिंग रॉन्ग, नहीं है तो नहीं है, उसको ला सकते हैं। तो इसलिए भारत केवल जो आर्थिक प्रोत्साहन है, जिसे हम बोलेंगे कि इकोनॉमिक बेनिफिट, ये दे रहा है, बल्कि उसके साथ साथ में भारत की जो स्टेबल पॉलिसीज और कुशल मानव संसाधन टैलेंट और जो हमारा घरेलू बाजार है, डोमेस्टिक मार्केट, ये काफी तेजी से विकसित हो रहा है और इसीलिए ये सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का पूरा टोटल है, इसे हम बना रहे हैं और ये जब बनेगा तभी भारत में अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां इंटरेस्ट बताएंगी और वो निवेश करेंगी। हमारे पहले चरण में जो सेमिकॉन फेज वन में कुछ इंटरनेशनल कंपनियों ने ऑलरेडी कोलैबोरेशन किया है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की है, और मैं और एक कहना चाहूंगा, एक हम इवेंट करते हैं सेमिकॉन इंडिया जो कि अभी सितंबर में आ रहा है, इसमें हम काफी प्रमोशन करते हैं और विदेशी कंपनियां आती है। इस साल भी सेमिकॉन इंडिया में करीबन 300 विदेशी कंपनियां आएंगी।
2: श्रोताओं, सेमीकंडक्टर को अक्सर केवल मोबाइल फोन, कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन आज सेमीकंडक्टर आधुनिक अर्थव्यवस्था के लगभग हर महत्वपूर्ण क्षेत्र का आधार बन चुके हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, रक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाओं और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। आइए विस्तार से समझते हैं कि आखिर सेमीकंडक्टर उद्योग इतना महत्वपूर्ण क्यों है और हमारे सामने क्या चुनौतियां हैं।
3: अनुमान है कि 2035 तक वैश्विक सेमीकंडक्टर बाजार $1.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का हो सकता है। वहीं भारत का सेमीकंडक्टर बाजार 2035 तक करीब $200 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। लेकिन भारत के सामने एक बड़ी चुनौती भी है। देश में सेमीकंडक्टर की मौजूदा खपत का करीब 90 से 95% हिस्सा आयात से पूरा होता है। इसका मतलब है कि घरेलू मांग तेजी से बढ़ रही है, लेकिन उसे पूरा करने की हमारी अपनी क्षमता अभी सीमित है। भारत की आयात निर्भरता का एक सीधा आर्थिक असर विदेशी मुद्रा पर भी पड़ता है। वित्त वर्ष 2017 से वित्त वर्ष 2025 के बीच भारत ने महत्वपूर्ण सेमीकंडक्टर उत्पादों के आयात पर करीब $150 बिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च किए। इसी अवधि में सेमीकंडक्टर उत्पादों के आयात में सालाना औसतन 23% की दर से बढ़ोतरी हुई। अगर ये गति बनी रहती है तो 2035 तक सालाना आयात लागत 240 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच सकती है। इसलिए भारत के लिए घरेलू सेमीकंडक्टर क्षमता विकसित करना केवल आयात कम करने का सवाल नहीं है, ये देश के इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को मजबूत करने, विदेशी मुद्रा बचाने और महत्वपूर्ण क्षेत्रों को सप्लाई में होने वाले व्यवधान से बचाने की दिशा में भी एक बड़ा कदम है। आज की आधुनिक रक्षा प्रणालियां भी सेमीकंडक्टर पर काफी हद तक निर्भर है। मिसाइल, ड्रोन, रडार, लड़ाकू विमान, नौसैनिक प्रणालियां और सुरक्षित संचार व्यवस्था, इन सभी में सेमीकंडक्टर आधारित इलेक्ट्रॉनिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
2: श्रोताओं, भारत ने अब सेमीकंडक्टर क्षेत्र में अपनी आगे की दिशा तय करना शुरू कर दिया है। 2035 तक भारत का लक्ष्य सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन को 120 से 150 बिलियन अमरीकी डॉलर का बनाना है और इसी अवधि में 35 से 50 प्रतिशत तक चिप सेल्फ सफिशियंसी हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। इस तरह देखें तो सेमीकंडक्टर क्षेत्र में भारत की कोशिश केवल अपनी जरूरत पूरी करने की नहीं है, लक्ष्य एक ऐसा मजबूत इकोसिस्टम तैयार करना है जो घरेलू जरूरतों को पूरा करे, वैश्विक सप्लाई चेन में भारत की भूमिका बढ़ाए और सेमीकंडक्टर को आर्थिक विकास, तकनीकी क्षमता और रणनीतिक आत्मनिर्भरता का आधार बनाए। आज के विश्लेषण में बस इतना ही। नमस्कार। इस कार्यक्रम को तैयार किया अनिकेत ने, प्रस्तुति सहायक दानिश जैदी।

नमस्कार श्रोताओं, मैं डॉक्टर निधि गुलाटी रीड इंडिया लखनऊ से आपके साथ आपके लिए कुछ सिखाने और सीखने के लिए ये कार्यक्रम आओ सीखे के अंतर्गत आप तक लाया गया है। श्रोताओं, जैसे कि हम जानते हैं बारिश का मौसम आ गया है जिसको हम मानसून सीजन कहते हैं। इसमें हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, क्या क्या स्वच्छता रखनी चाहिए, क्या क्या साफ सफाई रखनी चाहिए, उसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। मॉनसून स्थिर पानी, मच्छरों और रोग के साथ कई संभव स्वास्थ्य चुनौतियां ला सकता है। मॉनसून क्या है, चलिए जानते हैं। मॉनसून या बरसात का मौसम मौसम की मिजाज में एक ऋतु संबंधी बदलाव है जो समुद्र से भूमि पर गर्मी, नम हवा एक निरंतर अवधि के लिए वर्षा की उच्च अवधि बनाता है। गर्मियों के मॉनसून या बरसात के मौसम आमतौर पर बड़े पैमाने पर मूसलाधार बारिश के साथ आता है। आइए जानते हैं कि मॉनसून या बरसात का मौसम हमारे स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करता है। मॉनसून या बरसात का मौसम आमतौर पर स्वास्थ्य चुनौतियां लाता है। बरसात होने पर हमने कई जगहों पे देखा है कि पानी जो है वो रुक जाता है, नालियों में, हमारे घर के बाहर। इससे क्या होता है कि मच्छरों का प्रभाव ज्यादा बढ़ जाता है और मलेरिया और डेंगू जैसे बुखार फैलने की संभावना बढ़ जाती है। हमने ये भी देखा है कि बरसात के मौसम में पेट संबंधी बीमारियां भी होती है कि अगर हम ताज़ा भोजन नहीं खाते हैं, बासी भोजन खाते हैं, तो हमारे पेट में दर्द होता है और हमें दस्त लगने की भी शंका हो सकती है। बरसात के मौसम में खांसी, जुकाम और फ्लू जैसे बीमारियां भी हमें लग सकती हैं।

श्रोताओं, कहीं ना कहीं हम सबके मन में होता है कि हम इन मॉनसून से या बारिश के मौसम से कैसे स्वस्थ रह सकते हैं। आइए जानते हैं कि बरसात के मौसम में मच्छरों से हमें कैसे बचना चाहिए। मच्छर से बचने वाली क्रीम लगाएं। मच्छरों को अपने वातावरण से बाहर रखने के लिए घर में कॉइल जलाएं। वातावरण को साफ रखें। अपने आसपास घर के कोई पानी जमा होने ना दें। ये सुनिश्चित करें कि मच्छर प्रजनन ना हो सके तो स्थिर पानी को जमा ना होने दें, जैसे कि रूम कूलर, कोई भी कंटेनर पानी का या आपका फूलदान, इसमें पानी जमा ना होने दें। अगर उसमें पानी जमा होता है तो मच्छर वहाँ पर उत्पन्न होंगे। अगर हम अपने घर के आसपास की सफाई रखेंगे और पानी नहीं जमा होने देंगे तो मच्छर उत्पन्न नहीं होंगे। श्रोताओं, अब जानते हैं कि भोजन और पाय पदार्थ के साथ हमें क्या ध्यान रखना चाहिए। अच्छी तरह से पका हुआ भोजन खाना चाहिए। कच्चे उत्पाद जैसे कि सलाद या फल को भी हम अच्छी तरह से पानी में धोएं। कोशिश कर हल्के गुनगुने पानी में हम सब्जियों को धोएं। इस समय हमें बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वह हानिकारक बैक्टीरिया अधिक से अधिक होते हैं। खुद को अच्छी तरह से स्वच्छ और सुरक्षित पीने का पानी के साथ हाइड्रेट रखें, मतलब कि आपको साफ और सुरक्षित पानी पीना है। और इस दौरान हमारे शरीर में डिहाइड्रेशन होने की बहुत संभावना होती है, क्योंकि हम अपना पानी का इंटेक कम कर देते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि हमें दिन में कम से कम 10 से 12 ग्लास पानी पीना है। श्रोताओं, आप जानते हैं कि हम अपने आप को कैसे स्वच्छ या साफ रख सकते हैं। अगर हम घर के बाहर जा रहे हैं तो हमारे हाथ में छाता होना चाहिए या रेनकोट होना चाहिए, ताकि हम बारिश से बच सकें और सूखे रह सकें। कीचड़ में चलने से बचें, क्योंकि हमारे पैरों के नाखूनों में ये फंगल इन्फेक्शन पैदा कर सकता है। खुद को सूखा रखें और गंदे पानी से बचें, क्योंकि इनमें हानिकारक कीटाणु होते हैं। अच्छे से हाथ धोएं शौचालय जाने के बाद और खाना खाने से पहले, और खाना खाने के बाद अच्छे से साबुन से हाथ धोने चाहिए। ये हर दिन महत्वपूर्ण है। यह मॉनसून के दौरान वायरस और बैक्टीरिया के प्रयास से निपटने के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। अगर आप बारिश में भीग जाते हैं तो घर आकर अपने आप को भी साबुन से धोएं। अपने कपड़ों को डिटॉल और डिटर्जेंट में भिगोकर रखें। अपने आप को सुखाने के बाद कोई भी टैल्कम पाउडर अपने शरीर पर लगाएं। इससे हम अपने आप को फंगल इन्फेक्शन से बचा सकते हैं। श्रोताओं, अपने साथ अपने घर की साफ सफाई का भी हमें ध्यान रखना है। घर को साफ रखना है। घर के आसपास कोई पानी जमा ना होने देना है। घर में डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन से, जैसे कि डेटॉल हो गया या सेवलॉन हो गया, उसको पानी में डालकर पोछा लगाना है। घर की सफाई करनी है, ताकि हमारे घर में कोई भी मच्छर उत्पन्न ना हो और हमारे घर में कोई भी इन्फेक्शन ना आ पाए। खासकर उन जगहों पे जहाँ पर भोजन रखा है, और हमें भोजन और पानी को ढककर रखना चाहिए, जिससे कोई भी मच्छर या मक्खी उसके अंदर जाकर इन्फेक्शन ना पैदा कर सके, कोई भी आपकी पेट संबंधी बीमारियां ना हो पाए। श्रोताओं, इस मौसम में हमें अपना और अपने घर वालों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये कार्यक्रम अच्छा लगे और आप इन सारी बातों का ध्यान रखकर अपने आप को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकें। मेरा आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।

आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो। रीड इंडिया समुदाय के सहयोग के द्वारा समुदाय के विकास के लिए कार्य करता है। रीड इंडिया ग्रामीण समुदायों में स्थायी सामाजिक परिवर्तन हेतु शिक्षा, उद्यम और सामाजिक विकास के क्षेत्र में कार्य करता है। आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो।

റീഡ് ഇന്ത്യ മാനെ റൂറൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഗ്രാമീൺ ശിക്ഷ എവം വികാസ് ഹമാരാ കാം തോ ലൈബ്രറീസ് ബനാന ഹെ ഓർ ആജ് കെ സമയ മേ ജോ ചർച്ച ഹോ രഹി ഹെ ലൈബ്രറീസ് ഖാലി കിതാബ് പഢ്നേ കെ ലിയേ നഹീ ഹെ ലൈബ്രറീസ് ഏക് ഐസീ ജഗഹ ഹെ ജഹാൻ ഹം ബഹുത് കുഛ് അപ്നേ ലിയേ ഭി കർ സക്തേ ഹെ ഓർ സമുദായ കെ ലിയേ ഭി കർ സക്തേ ഹെ മാനെ പഢേ തോ ഹം അപ്നേ ബച്ചോ കോ ഭി പഢായേ ഹം ബഡോ കോ ഭി പഢായേ ഹം ഛോട്ടേ ബച്ചോ കെ സാഥ് ഭി ആക്ടിവിറ്റീസ് കരേ കി കിതാബ് ക്യാ ചീസ് ഹെ ഓർ കിതാബ് ഉൻകെ ജീവൻ മേ ക്യാ മഹത്വ രഖതി ഹെ പർ ഡ്യൂറിംഗ് ദ ജർണി ഇസ് സമയ കെ സാഥ് സാഥ് ഹംനേ യേ സോചാ കി ഹമേ മഹിലാഓ കെ ലിയേ ഭി കുഛ കാര്യക്രമ കർനേ ചാഹിയേ അഗർ മഹില അപ്നേ ആപ് കോ നിഖാർ സക്തി ഹെ അപ്നേ ആപ് കോ സക്ഷം ബനാ സക്തി ഹെ ഓർ ജിമ്മേദാരി അപ്നേ ഷോൾഡർസ് പേ ലേ സക്തി ഹെ കി അപ്നേ ബച്ചോ കാ വികാസ് കൈസേ കർനാ ഹെ വോ ഭി റീഡ് ഇന്ത്യ അപ്നേ കമ്മ്യൂണിറ്റി ലൈബ്രറീസ് ഓർ റിസോർസ് സെന്റർസ് മേ കർതി ഹെ ഹംനേ ഔരതോ കെ ലിയേ ബഹുത് ഹി അച്ഛേ അച്ഛേ കാര്യക്രമ കിയേ ജൈസേ സിലായി സിഖാനാ ബ്യൂട്ടി പാർലർ കി ട്രേനിംഗ് ദേനാ ഓർ ഭി ബഹുത് സാരി ഐസീ ട്രേനിംഗ്സ് ഹെ ജോ ഹം അപ്നേ സെന്റർസ് മേ കർതേ ഹെ പർ ഉസ്കാ जो आउटकम है जो हम समझ रहे हैं कि एक महिला इतनी सक्षम हो जाए कि वो अपने परिवार की भी सोच बदल सके अपनी भी सोच बदल सके और अपने बच्चों को एक मकाम तक लेके जा सके। इसी दौरान हमने पिछले 3 सालों में उनको बहुत सारी ऐसी स्किल्स दी जिससे वो अपना बिजनेस भी शुरू कर सकती हैं और हम उनको रेगुलरली ट्रेस भी करते हैं ट्रेस इन द सेंस कि हम उनसे बातचीत भी करते हैं कि वो अपने बिजनेस के बारे में क्या सोच रही हैं अपना बिजनेस कैसे आगे लेके जा सकती हैं और इसी दौरान हमने ये सोचा कि हम क्यों इतने बड़े बड़े बीबीए और एमबीए की बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो हम इतने पैसे कहाँ से लाएं कि हम इन महिलाओं को बोलें कि ये कोर्सेज ज्वाइन कर लो। तो रीड इंडिया ने क्या किया, अपने प्रपोजल में ये सारे एपिसोड्स लिख दिए। मैं इनको एपिसोड्स ही कहूंगी, मॉड्यूल्स नहीं कहूंगी, क्योंकि ये एपिसोड्स उनके जीवन में बहुत सा बदलाव ला सकते हैं, उनको एक उद्योग क्या है उसके बारे में ज्ञान दे सकते हैं और उद्योग करने के लिए उनको क्या क्या सीखना है वो भी ट्रेनिंग्स हम देने के लिए तैयार हैं। और हम महिलाओं को बोलते हैं, यंग लड़कियों को बोलते हैं जो बीए कर चुकी हैं या 12वीं पास कर चुकी हैं, वो अपना नाम आके रीड इंडिया की लाइब्रेरी एंड रिसोर्स सेंटर में लिखवाएं और हम बिल्कुल तैयार हैं उनको इनके ऊपर ट्रेनिंग देने के लिए। और आगे आने वाले समय में अगर नौकरी नहीं भी मिलती है तो अगर वो अपना एक लघु उद्योग शुरू कर लेती है और अपने परिवार की देखभाल अच्छे ढंग से कर लेती है और अपने हस्बैंड के साथ अपने परिवार के साथ कंधे से कंधा मिला के अपने परिवार को आगे लेके जाती है अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सकती है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज उनकी जिंदगी में क्या हो सकती है। तो श्रोताओं, मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि आप रीड इंडिया के मिशन को समझें, रीड इंडिया की लाइब्रेरी के बारे में जानें और जितना भी आप अपने आप को सक्षम कर सकते हैं रीड इंडिया के सेंटर पे आके अपना नाम लिखवाएं। धन्यवाद।

0: मैंने आज से 500-600 साल पहले एनवायरमेंट को साफ रखने के लिए बोला था, जब पवन गुरु पानी पिता माता तर्थ महत, अपनी माता पर कुछ गंदगी फैले तो सबसे बुरा इंसान हम से कोई नहीं। शर्म का कम है कूड़ा फैलाना, इज्जत मान का कम है कूड़ा संभालना, और लोग कूड़ा फैलाने से शर्म नहीं करते, सफाई करने से शर्म करते।
1: ये है पंजाब पुलिस के रिटायर्ड DIG इंदरजीत सिंह सिद्धू, जिन्हें चंडीगढ़ के लोग रोज सड़कों की खुद सफाई करते देखते हैं। 6 जून 1938 को पंजाब के संगरूर जिले के एक फौजी परिवार में जन्मे इंदरजीत सिंह सिद्धू को विरासत में मिले थे देश प्रेम और अनुशासन। एक मेधावी छात्र रहे इंदरजीत सिंह सिद्धू 1961 में पंजाब पुलिस में शामिल हो गए। अपनी कर्तव्य निष्ठा एवं निस्वार्थ सेवा से इन्होंने राष्ट्रपति पुलिस मेडल भी प्राप्त किया। ये जहाँ भी जाते सफाई की जिम्मेदारी सहजता से अपने कंधों पर ले लेते।
2: तो शादियों में जाना तो कभी वो डिस्पोजेबल कप्स में लोग बस पीपी के ऐसे ही फेंक देते थे, यूजुअली उसको बोलते थे कि इसको उठा के डस्टबिन में फेंको, भाई यहाँ पे क्यों रखा है। दैट इज हिज नेचर, शुरू से ऐसे ही है।
1: 1996 में सेवानिवृत्ति के बाद इंदरजीत सिंह सिद्धू चंडीगढ़ आ गए। इंदरजीत सिंह सिद्धू ने देखा कि एक समय में देश का सबसे सुनियोजित माना जाने वाला शहर स्वच्छता में भारत के सर्वोच्च 10 शहरों में भी नहीं गिना जा रहा है। उनके लिए ये बेहद खेदपूर्ण था, क्योंकि उन्होंने चंडीगढ़ में घर नहीं बनाया था, उन्होंने चंडीगढ़ को घर बनाया था। इंदरजीत सिंह सिद्धू ने बेझिझक रास्तों की गंदगी को अकेले ही नियमित रूप से साफ करना शुरू कर दिया।
0: धीरे धीरे यह बात बढ़ती गई, कूड़ा उठाने के लिए ज्यादा टाइम लगा लिया, शहर के लिए कम। अल्टीमेटली हुआ कि मैंने शहर तो बिल्कुल बंद कर दी, सिर्फ कूड़ा उठाना याद रह गया।
1: एक रिटायर्ड DIG को सड़कों पर खुद सफाई करते देखना लोगों को अटपटा लगा, किसी ने उपहास किया तो कोई चौंक गया।
2: मेरे दोस्त हैं अभी आते हैं मिलने के लिए, तो वो कहते हैं कि अगर हम तुम्हारे नेबरहुड में ना हो तो हम तो इधर ही फेंक दें। अब हमें जो लगता है कि आपके फादर उठा रहे हैं, तो हम इधर फेंकते नहीं।
1: इन्हें कूड़ा उठाते देख हाथों में दस्ताने पहनने की सलाह देने तो कई आए, मगर हाथ बटाने के लिए कोई नहीं आया। पर ये बिना किसी दिखावे या हिचकिचाहट के सफाई को अपना कर्तव्य समझ कर करते रहे हैं।
0: मैं ये सड़कें और ये पार्क, ये पब्लिक प्लेसेस साफ करने की कोशिश करता हूँ, ताकि बाकी लोग भी देख लें कि भाई ये खाली हाथ से काम कर रहा है, हम भी लग जाएं इनके साथ और पब्लिक प्लेसेस को साफ कर दें।
2: लेकिन जब पद्मश्री मिला है तो वही लोग जो मुझे बोलते थे कि ये क्या कर रहा है, या व्हाट इज योर डैड डूइंग, उनका एटीट्यूड में चेंज मैंने देखा। मैं आई एम रियली प्राउड ऑफ हिम।
1: सरदार इंदरजीत सिंह सिद्धू, पद्मश्री 2026, कोटि कोटि नमस्कार। सुर्खियों में
3: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 से भारत के विनिर्माण क्षेत्र को मिलती नई मजबूती पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक AK भट्टाचार्य, कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं सोनू सूद।
4: संसद ने आज कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया। इस विधेयक में भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, आयकर अधिनियम 2025 और वित्त अधिनियम 2026 में संशोधन कर हमारे डिजिटल भुगतान प्रणाली के मजबूतीकरण, व्यापार की सुगमता बढ़ाने और निवेश एवं विनिर्माण को गति देने वाले अहम प्रावधान शामिल हैं। इस विधेयक के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं आर्थिक विश्लेषक मिस्टर AK भट्टाचार्य। मिस्टर भट्टाचार्य, आपका बहुत बहुत स्वागत आकाशवाणी में।
5: नमस्कार, धन्यवाद।
4: मिस्टर भट्टाचार्य, ये जो एक लैंडमार्क बिल आया है, कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026, इसके महत्व को आप कैसे देखते हैं और आपके अनुसार इसमें सबसे प्रमुख की टेकअवेज जैसे हम कहते हैं क्या है?
5: इसमें जो विदेशी जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं, जो वो विनिवेश करते हैं इस देश में, पर्टिकुलरली जो सरकारी जो सिक्योरिटीज जो हैं, उसमें जो निवेश करने से उनको टैक्स का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी था, जो बर्डन था, उसको उठा लिया गया है। आपको ये मालूम होगा कि करीबन जून 2026 में जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सरकार ने एक साथ मिलकर हमारी जो देश की जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को और भी सुदृढ़ करने के लिए बहुत सारे कदम उठाए थे, क्योंकि वेस्ट एशिया में जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था उसमें हमारी जो फॉरेन एक्सचेंज लाइबिलिटीज जो है वो बढ़ने की आशंका लोग जता रहे थे, उस समय सरकार ने और आरबीआई ने मिलकर तय किया था कि किस तरह से हमारे देश की जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं वो हमारे देश में इन्वेस्ट कर सकें और इन्वेस्टमेंट की अट्रैक्टिवनेस जो है उसको बढ़ावा दें। मैं समझता हूँ कि पहला जो प्रधान जो इसका जो टेकअवे है, जिसे आपने कहा, वो है कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं वो पहले क्या करते थे, अगर वो सरकारी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते थे, उनका जो इंटरेस्ट जो आय होता था उसके ऊपर इनकम टैक्स लगता था। और अगर मान लीजिए वही फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को और कहीं बेचे या कैपिटल गेन्स को बुक करें, तो उसमें भी उनको कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ता था। और इनकम टैक्स इंटरेस्ट का जो रेट था वो 20% था, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स का टैक्स था 30%, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का टैक्स था 12.5%। इस विधेयक से सरकार ने यह ऐलान तय कर लिया है कि 1 अप्रैल 2026 से अब ये फाइनेंशियल फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स को ऐसी ना इंटरेस्ट इनकम के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, यानी 20% टैक्स माफ हो जाएगी, और कैपिटल गेन्स टैक्स जो है वो लॉन्ग टर्म में 12.5% और शॉर्ट टर्म में 30%, ये भी टैक्स माफ हो जाएगी। उससे सरकार का मानना यह है कि ये जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं वो सरकारी सिक्योरिटीज में थोड़ा और बहुत पैसा लगाए, और जिससे कि लगाने से हमारी जो देश की जो बैलेंस ऑफ पेमेंट स्थिति है वो और भी मजबूत हो जाए।
4: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने राज्यसभा में बताया कि ये विधेयक मौजूदा डेटा सेंटर्स के विस्तार में और विदेशी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स को बढ़ावा देने में सहायक होगा। इससे बड़े स्तर पर विस्तार होगा और भारत में हाइपर स्केल डेटा सेंटर्स स्थापित होंगे।
6: ऑफ प्रोविजंस प्रोवाइडिंग एग्जेम्पशन टू अ फॉरेन कंपनी प्रोक्योरिंग डेटा सर्विसेज फ्रॉम अ स्पेसिफाइड डेटा सेंटर and this exemption is provided up to the year ending 31st March 2047. Long-term certainty so that investments come. These are big-ticket investments. They have to come with a certainty which can be provided to them. The outcome that I'm expecting is to provide ease of doing business for companies, providing cloud services by way of procuring data center services in India. The amendment is also expected to enable much larger ecosystem again of Indian data centers providing data center services to a foreign company. The reform will enable AI data cities in India and is expected to bring in significant investments for AI data cities in India. There is an apprehension that this is only for foreign companies. These kind of exemptions are not going to be available for Indian companies. It's not true at all, sir. I want to explain how. This will enable, sir, current data centers to expand their footprints and services for foreign cloud service providers.
4: दूसरा एक जो पहलू जिस पर हम आपकी राय चाहेंगे, बल्कि हम आपसे ही चाहेंगे कि आप हमें थोड़ा विस्तार में समझाएं कि जो यूपीआई हमारा जो डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम है उसको सस्टेनेबल बनाने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए, जो लॉन्ग टर्म व्यू के साथ जो उसके रेवेन्यू मॉडल में कुछ बदलाव करने के लिए जो एनेबलिंग प्रोविजन आया है उसके बारे में बताएं, और जो एक स्पष्टीकरण भी आया है सरकार का जिसमें उन्होंने कहा है कि यूजर्स के लिए अभी भी यूपीआई का इस्तेमाल मुफ्त ही बना रहेगा, स्मॉल मर्चेंट्स के लिए भी, तो इसके बारे में क्या प्रोविजन है और ये स्पष्टीकरण क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं।
5: कानून में एक प्रोविजन का एक परिवर्तन किया गया है। वो है कि जो हमारे देश में जब 2007 में ये जो एक कानून बनी थी पेमेंट्स एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट 2007
4: जी,
5: उसके जरिए से हमारे देश में पिछले 10 साल और 12 साल से यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के जरिए बहुत सारे पेमेंट का इंटरेक्शन होता है और डिजिटल पेमेंट होता है ऑलमोस्ट रियल टाइम में। जैसे हम बात कर रहे हैं वो पैसा मेरे से आपके पास चला जाएगा या मेरे से कोई मर्चेंट में चला जाएगा और ये मोबाइल फ्रेंडली सिस्टम था यूपीआई। तो इसका जब 2020 जनवरी में सरकार ने ये तय किया कि इस डिजिटल पेमेंट की और भी उसको जनप्रिय बनाने के लिए उन्होंने जो एक मर्चेंट डिस्काउंट रेट होता है कि जो मर्चेंट जब पैसा लेता है तब उसको कुछ सर्विस चार्जेस देनी पड़ती है, वो करीबन 0.5% होता है, कभी 0.3% होता है, बहुत ही कम होता है, पर तब भी एक जो मर्चेंट डिस्काउंट रेट होता है वो सरकार ने उसका विलय कर दिया। उन्होंने कहा कि जिससे कि लोग और भी डिजिटल पेमेंट को वो अपनाएं, जिससे कि जो टेक्नोलॉजी का और भी प्रभुत व्यवहार भी हो, इसलिए किया था। पर पिछले 5 साल में स्थिति सामान्य हुई है और इसकी जनप्रियता इतनी बढ़ गई है कि यूपीआई की पेमेंट करीबन महीने में 29 लाख करोड़ की होती है
4: जी।
5: तो सरकार ने ये सोचा कि इसका कॉस्ट भी बढ़ रहा है, इसका टेक्नोलॉजी का भी जो इम्पैक्ट होता है उसका भी कॉस्ट बढ़ रहा है, तो सरकार एक सब्सिडी देती है, करीबन 1500 करोड़ की सब्सिडी भी देती है। तो सरकार ने ये सोचा कि इसको हम क्यों ना कानूनी तौर से एक ऐसा एक प्रावधान लाए जिससे कि जो नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो ये यूपीआई को चलाती है उसके पास ये पावर रहे कि जब उसको जरूरत होगी वो ये मर्चेंट डिस्काउंट रेट को इन्फोर्स कर सकता है। पर सरकार ने यह भी ऐलान कर दिया इसके साथ साथ कि ये जो इंडिविजुअल से इंडिविजुअल की जो ट्रांजैक्शन होगी उसमें कोई मर्चेंट डिस्काउंट रेट नहीं लगेगा, और जो भी डिस्काउंट रेट आएगा लगेगा वो मर्चेंट और इंडिविजुअल के बाद उसमें भी थ्रेशोल्ड होंगी। जैसे मान लीजिए 1 करोड़ के ऊपर ज्यादा बिजनेस है तो उसमें लगेगा। इससे ऐसा होगा कि टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट होगी, साइबर फ्रॉड की चेक्स एंड बैलेंसेस आएंगी
4: जी।
5: और मैं समझता हूँ कि इसमें इंडिविजुअल और जो छोटे व्यापारी जैसे खोमचे वाला है या सब्जी वाला है उसको पेमेंट करने में, क्योंकि वो तो इंडिविजुअल से इंडिविजुअल पेमेंट होती है, उसमें कोई बाधा नहीं पहुंचेगी। तो ये MDR का जो इंट्रोडक्शन, ये अगर आप देखें कि लॉन्ग टर्म दृष्टिकोण से ये काफी हमारी जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम को और भी सुदृढ़ करेगा, ये भी देखेगा कि इंडिविजुअल को कोई असुविधा ना हो। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा एक कानूनी परिवर्तन है। इसमें नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की एक कमेटी है, वो कमेटी उसको देखेगी कब किस तरह से मर्चेंट डिस्काउंट रेट की लागू होगी, पर ये रेट कभी भी इंडिविजुअल से इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन के ऊपर लागू नहीं होगी।
4: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने संसद में बोलते हुए स्पष्ट किया कि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल भुगतान पर कोई शुल्क नहीं लगाया जाएगा और छोटे मर्चेंट्स पर भी कोई शुल्क नहीं लगाया जाएगा।
6: विल कंस्यूमर्स पे एनी UPI चार्ज? नो, UPI हैज रिमेन्ड फ्री फॉर कंस्यूमर्स सिंस इट्स लॉन्च एंड एवरी इंडियन विल कंटिन्यू टू मेक इंस्टेंट डिजिटल पेमेंट विदाउट पेइंग अ ट्रांजैक्शन चार्ज। चाय वाले के ऊपर, सब्जी वाले के ऊपर, टेले वाले के ऊपर, पटरी वाले के ऊपर MDR चार्ज नहीं लगेगी। छोटे मर्चेंट्स और किराना स्टोर्स हमारे इंक्लूसिव फाइनेंशियल स्कीम्स और सरकार के ये बहुत बड़ा कमिटमेंट है फाइनेंशियल इंक्लूजन का, स्मॉल मर्चेंट्स रिमेन सेंट्रल टू UPI's इंक्लूसिव ग्रोथ, उनके ऊपर हम कोई MDR लगाने वाले नहीं है। एनी फ्यूचर MDR विल अप्लाई ओनली टू अ लिमिटेड कैटेगरी ऑफ मर्चेंट ट्रांजैक्शंस अबाउ अ सर्टन प्रिस्क्राइब्ड हाई थ्रेशोल्ड।
4: मिस्टर भट्टाचार्य, एक और एस्पेक्ट जो मेक इन इंडिया को एनकरेज करने के लिए कुछ सेक्टर्स को खास प्रावधान उनके लिए लाए गए हैं, अगर हम सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर की बात करें जिसमें हमने पिछले दशक में बहुत प्रगति देखी है, मोबाइल फोन्स एक जैसे पोस्टर बॉय है इस प्रगति के, उसके बारे में आप हमें बता सकते हैं कि किस तरह के प्रावधान हैं इस विधेयक में?
5: जैसे विदेशी जो कंपनियां हैं जब वो कोई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट या कोई कैपिटल गुड्स जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में काम में आएगा जैसे कि मान लीजिए जो मोबाइल फोन की कंपनियां जो यहाँ पे मोबाइल फोन बनाती हैं और आज हम बहुत सारे मोबाइल फोन एक्सपोर्ट भी करते हैं, वो मोबाइल फोन बनाने में जो टूल इक्विपमेंट टूलिंग्स की यंत्र जो आते हैं उसकी जरूरत होती है, उसके सप्लाई में जो सप्लाई होती है उनका जो टैक्स जो होता है वो टैक्स उनको टैक्स हॉलीडे दिया गया है, जिससे कि करीबन 15 साल का मतलब अप्रैल 1, 2026 से मार्च 2041 तक उनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इससे मैं समझता हूँ कि जो इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जैसे इलेक्ट्रॉनिक और भी इक्विपमेंट जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं वो बाहर से कैपिटल गुड्स और टूल्स ला सकते हैं और जो कंपनीज उनको सप्लाई करेंगी उनके ऊपर कोई टैक्स का कोई इन्फोर्समेंट नहीं होगा। ये एक बहुत बड़ा एक बढ़ावा हमारे इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर की एक्सपोर्ट्स के ऊपर भी है और डोमेस्टिक प्रोडक्शन के ऊपर भी है।
4: एक और जो सेक्टर जिसका मेंशन है ग्लोबल रफ डायमंड ट्रेड को भारत में आकर्षित करने का, ये क्या पहलू है और इस पर क्या प्रमुख प्रावधान इस विधेयक में लाया गया है?
5: देखिए ये बताया गया है नए कानून में कि जो रफ डायमंड्स जब कोई कंपनी बेच

0: इम्पोर्टेंट रिलैक्सेशन दिया गया है, उसके साथ साथ और एक बड़ा रिलैक्सेशन दिया गया है वो डेटा सेंटर के ऊपर है। वो डेटा सेंटर में क्या है कि जो फॉरेन कंपनियां जो अपनी इंडियन डेटा सेंटर से जो सर्विस सप्लाई करेंगी उसके ऊपर उनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो मैं पूरी ओर से अगर देखूं कि इन्वेस्टमेंट जो क्लाइमेट जो है वो टैक्स के हिसाब से देखेंगे तो उसमें काफी रिलैक्सेशन आई है, उसमें क्लैरिटी आई है और एक स्टेबिलिटी भी आई है।
1: मिस्टर भट्टाचार्य, बहुआयामी और व्यापक रूप से हमारे देश को आकर्षक निवेश गंतव्य बनाने और हमारे देश की विनिर्माण को मेक इन इंडिया मुहिम को गति देने वाले विभिन्न प्रावधान जो हैं इस नए कानून के, उन पर प्रकाश डालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 से भारत के विनिर्माण क्षेत्र को मिलती नई मजबूती पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक एके भट्टाचार्य। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
3: सुर्खियों में

नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द ठाट पर, जहां हम आपको बताते हैं प्राकृतिक औषधियों और जड़ी बूटियों के फायदों के बारे में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी चमत्कारी औषधीय पौधे की जो देखने में सुंदर तो है ही, लेकिन इसके स्वास्थ्य लाभ भी कमाल के हैं। हम बात कर रहे हैं कैथारेंस रोजियस यानी सदाबहार के बारे में। तो चलिए जानते हैं इसके फायदे और उपयोग। दोस्तों जानते हैं कैथारेंथस रोजियस क्या है। व्हाट इज कैथारेंथस रोजियस? दोस्तों कैथारेंथस रोजियस, जिसे हम आम भाषा में सदाबहार कहते हैं, एक छोटा सा झाड़ीदार पौधा है जिसकी फूल गुलाबी, सफेद और बैंगनी रंग में खिलते हैं। ये मुख्य रूप से मेडागास्कर का मूल निवासी है, लेकिन अब भारत समेत दुनिया भर में उगाया जाता है। अब जानते हैं आयुर्वेद और औषधीय उपयोग या मेडिसिनल यूजेज इन आयुर्वेदा। दोस्तों सदाबहार सिर्फ सजावटी पौधा ही नहीं, बल्कि आयुर्वेद, होम्योपैथी और एलोपैथी में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके पत्ते, फूल और जड़ें कई बीमारियों के इलाज में काम आती हैं। अब जानते हैं स्वास्थ्य लाभ या हेल्थ बेनिफिट्स। सदाबहार की पत्तियों में ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। इसे पानी में उबालकर पीने से डायबिटीज पेशेंट्स को फायदा होता है। कैंसर के इलाज में सहायक, हेल्प्स इन कैंसर ट्रीटमेंट। इसमें विनब्लास्टीन और विनक्रिस्टीन नामक यौगिक होते हैं जो कैंसर कोशिकाओं की वृद्धि को रोकने में मदद करते हैं। इसका उपयोग मुख्य रूप से ल्यूकेमिया और लिम्फोमा जैसी बीमारियों के इलाज में किया जाता है। हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है, कंट्रोल्स हाई ब्लड प्रेशर। अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो इस पौधे की पत्तियों को उबालकर पीने से आपको लाभ हो सकता है। यह हृदय स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा है। त्वचा रोगों में लाभकारी, बेनिफिशियल फॉर स्किन डिजीजेस। सदाबहार के पत्तों का पेस्ट बनाकर त्वचा पर लगाने से मुहासे, खुजली और फंगल इन्फेक्शन में राहत मिलती है। ये एक बेहतरीन प्राकृतिक स्किन ट्रीटमेंट है। घाव भरने में मदद करता है, हेल्प्स इन वूंड हीलिंग। इस पौधे का रस एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है और घाव को जल्दी भरने में मदद करता है। अब जानते हैं सावधानियां, प्रिकॉशंस। दोस्तों सदाबहार का उपयोग औषधीय रूप से करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। इसे अधिक मात्रा में न लें क्योंकि यह विषैला भी हो सकता है। कोई भी घरेलू उपचार अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। प्रेग्नेंट और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को इसका सेवन नहीं करना चाहिए। दोस्तों इसके फूल गुलाबी, लाल, सफेद और बैंगनी रंग के होते हैं। कैथारेंथस रोजियस के बारे में कुछ और रोचक तथ्य। कैथारेंथस शब्द की

उत्पत्ति ग्रीक से हुई है जिसका अर्थ है शुद्ध फूल। रोजस का अर्थ है लाल। इस पौधे में लगभग 130 एल्कलॉइड होते हैं। विंका एल्कलॉइड का एक मुख्य स्रोत है। इसे पहले विंका रोसिया के नाम से जाना जाता था। रूपात्मक विशेषताएं, कैथेरेंथस रोजस एक बारहमासी छोटा शाक या उपझाड़ी जिसकी ऊंचाई 90 सेंटीमीटर तक होती है। तना सीधा, ढीला, लचीली लंबी शाखाओं वाला, बैंगनी या हल्का हरा होता है। पत्तियां सरल, फूली हुई, विपरीत, अग्रस्थलीय, डंठल युक्त, अंडाकार, अंडाकार, आयताकार, 4 से 10 गुना, 2 से 4 सेंटीमीटर चिकनी, रोमिल, आधार नुकीला या क्यूनिट, शीर्ष कुंज शीर्षाकार तथा पार्श्व तंत्रिकाएं 10 से 12 जोड़ी होती है। डंठल 1 से 5 सेंटीमीटर लंबा होता है। पुष्प विशेषताएं, पुष्पक्रम पीछे की ओर या कक्षीय या अंतिम सायम या एकल युग्मित और लघु डंठल नुमा होता है। फूल का रंग गुलाबी, सफेद तथा नलीदार होता है। पराग कोशों के क्षेत्र में फूला हुआ कोरोला ट्यूब का गला रोयनदार होता है। पुंकेसर में 5 पुंकेसर होते हैं जो कोरोला ट्यूब में शामिल होते हैं। तंतु बहुत छोटे अधिवृक्कीय होते हैं। पराग कोश वर्तिकाग्र के ऊपर एक शंकु जैसी संरचना बनाते हैं। जयांग में 2 अंडप होते हैं जो नीचे की ओर स्वतंत्र होते हैं लेकिन वर्तिका क्षेत्र में संयुक्त होते हैं। अंडाशय 2 होते हैं, स्वतंत्र और एकल शैली, डंबल कलंक के साथ। निषेचन के बाद अंडप अलग हो जाते हैं और 2 फल बनाते हैं जो लंबी रोमों की एक जोड़ी बनाते हैं। बीज छोटे आकार के व काले रंग के होते हैं। 1000 बीजों का भार 1.2 ग्राम होता है। तो दोस्तों, यह था कैथारेंस रोजियस यानी सदाबहार के फायदे और उपयोग के बारे में हमारा वीडियो।

0: 나니 까리비아로 같이 황이 파리디아오 Little sing song not toy
1: पर्वतों की गायकों की ला श्रीमती कोकिला लेक टीपी पद्मश्री 2026 कार्बी अंगलोंग असम का एक सुंदर गांव जहां रहता है कार्बी समुदाय और पोकिला लेक टीपी। घुमंतू कलाकारों के परिवार में जन्मी पोकिला को कार्बी संगीत न सिर्फ विरासत में मिला बल्कि उन्होंने उसे जिया। बचपन से ही उनकी असाधारण प्रतिभा झलकने लगी थी। संगीत के इस स्वरूप से गहरे जुड़ाव ने उन्हें महसूस कराया कि ये विरासत संकट में है। कार्बी संगीत केवल बुजुर्गों तक सीमित था।
2: उन दिनों कार्बी गीत तो थे पर लोगों को उन्हें पेश करने का ज्यादा मौका नहीं मिलता था।
1: बाधाएं अनेक थी, लगातार निर्धनता की छाया थी और परंपरा ने महिलाओं को सार्वजनिक मंचों से दूर रखा। वर्षों तक पोकिला पृष्ठभूमि में रही, लुप्त होती कला की मौन प्रहरी बनकर, किंतु उनकी आवाज एक दायरे में नहीं बंध सकती थी। बंधन तोड़कर उन्होंने चर्च में अपना मंच पाया, समविचारी लोगों को साथ लिया और महिलाओं को साहस देकर अपने साथ जोड़। वे दुर्गम इलाकों में घूमी, बुजुर्गों से मिलकर लुप्त होती कला का दस्तावेजीकरण किया।
2: आप गीत के बोल लिखिए, उन्हें धुन में डालिए, हम हर संभव मदद करते थे और अपने सांगरी म्यूजिक सोसाइटी के माध्यम से हमने इन गीतों को पेश किया।
1: स्थानीय आकाशवाणी केंद्र के प्रसारणों से लेकर अपने पहले कैसेट कांधोन के साहस भरे निर्माण तक उन्होंने कार्बी आत्मा को राष्ट्रीय ताने बाने में पिरोना शुरू किया। महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब जुबिन गर्ग के साथ उन्होंने अपनी कला प्रदर्शित की। आधुनिक ऊर्जा के साथ प्राचीन मंत्रों को पेश करके नई पीढ़ी को आकर्षित किया। 50 वर्ष, 300 गीत, उन्होंने कार्बी संगीत को पहाड़ियों से निकालकर लोगों के हृदय तक पहुंचाया। आज पोकिला कार्बी संगीत की कुल माता है, लेखक, मार्गदर्शक और प्रस्तुति द्वारा अतीत सहेज कर सुनिश्चित कर रही है कि कार्बी आंगलोंग की महिलाएं अपना भविष्य स्वयं स्वरबद्ध करें।
2: मुझे आशा है कि हमारा कार्बी आंगलोंग और प्रगति करेगा। कार्बी आंगलोंग की महिलाएं भी हर क्षेत्र में आगे बढ़े, यही मेरा सपना है।
1: श्रीमती पोकिला लेक टीपी, पद्मश्री 2026, कोटि कोटि नमन।
3: आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति विश्लेषण।
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम विश्लेषण के नए अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका अरोड़ा। श्रोताओं, किसी भी देश के विकास की मजबूत नींव उसके इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी होती है। सड़कें, रेलवे, हवाई अड्डे, बंदरगाह, पुल, सुरंगें, मेट्रो, पानी और आवास, ये सभी सुविधाएं लोगों के जीवन को आसान बनाने के साथ साथ अर्थव्यवस्था को भी गति देती हैं। पिछले 12 वर्ष में भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बड़ा बदलाव आया है। आज के कार्यक्रम में जानेंगे कि भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह बदल रहा है, रेलवे और सड़कों से लेकर हवाई और समुद्री संपर्क तक क्या विस्तार हुआ है और किस तरह अब इंफ्रास्ट्रक्चर को उद्योग, लॉजिस्टिक्स, आवास और रोजमर्रा की जरूरतों से जोड़ा जा रहा है। श्रोताओं, सबसे पहले बात करते हैं रेलवे की। भारतीय रेलवे तेज, सुरक्षित और आधुनिक यात्रा व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। रेलवे का बजट वित्त वर्ष 2014-15 के 32,000 करोड़ रुपए से बढ़कर वित्त वर्ष 2026-27 में 2,78,000 करोड़ रुपए हो गया है। रेलवे विद्युतीकरण में भी बड़ा बदलाव आया है। 2014 से पहले लगभग 20% रेल नेटवर्क का विद्युतीकरण हुआ था, जो जुलाई 2026 तक बढ़कर 99.2 6% हो गया। देश में 162 वंदे भारत, 2 वंदे भारत स्लीपर और 72 अमृत भारत सेवाएं चल रही हैं। वहीं जुलाई 2026 तक 2633 किलोमीटर पर कवच वर्जन 4.0 लागू किया जा चुका है। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर 508 किलोमीटर के रूट पर विकसित किया जा रहा है। इसकी डिजाइन स्पीड 350 किलोमीटर प्रति घंटा है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत चुने गए 1340 स्टेशनों में से 18 जुलाई 2026 तक 261 स्टेशनों का पुनः विकास पूरा हो चुका है। जुलाई 2026 में देश में बनी पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन भी लॉन्च की गई। श्रोताओं, अब रुख करते हैं उन सड़कों की ओर जो देश के विभिन्न हिस्सों को आपस में जोड़ते हुए विकास और संपर्क को नई गति दे रही हैं। पुल और सुरंगें भी इस बदलाव की अहम कड़ी हैं। आइए इस रिपोर्ट के जरिए समझते हैं।
5: भारत का कुल सड़क नेटवर्क 63.73 लाख किलोमीटर लंबा है और ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई में लगभग 61% की बढ़ोतरी हुई है। वित्त वर्ष 2014 में ये लंबाई 91,287 किलोमीटर थी, जो मार्च 2026 तक बढ़कर 1,46,572 किलोमीटर हो गई। 4 लेन और उससे ज्यादा लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई भी 2014 के 18,371 किलोमीटर से बढ़कर 45,516 किलोमीटर हो गई। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 2000 से 2014 के दौरान 3.86 लाख किलोमीटर सड़कें बनी, जबकि 2014 से 2026 के दौरान ये लंबाई बढ़कर 4.11 लाख किलोमीटर हो गई। सितंबर 2024 से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का चौथा चरण शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य 2029 तक 25,000 ऐसी बस्तियों को सड़क संपर्क देना है जहां अभी सड़क नहीं पहुंची है। भारतमाला योजना के तहत 31 मार्च 2026 तक 22,590 किलोमीटर सड़कों का निर्माण पूरा हो चुका है। 2025 में बना चिनाब ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज है। ये चिनाब नदी से 359 मीटर ऊपर बना है और इसकी लंबाई 1,315 मीटर है। इसी तरह अंजी खड ब्रिज जम्मू कश्मीर में भारत का पहला केबल स्टेड रेलवे ब्रिज है। पंबन ब्रिज भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज है। ये रामेश्वरम को मुख्य भूमि से जोड़ता है। इसकी लंबाई 2.07 किलोमीटर है और इसमें 72.5 मीटर का वर्टिकल लिफ्ट स्पैन है। जम्मू कश्मीर में 12 किलोमीटर लंबी सोनमर्ग सुरंग हर मौसम में आवाजाही की सुविधा देती है। 2024 में 2.32 किलोमीटर लंबे सुदर्शन सेतु ने गुजरात में ओखा को बेट द्वारका से जोड़ा। 2020 में बनी 9.09 किलोमीटर लंबी अटल टनल 10,000 फुट से ज्यादा ऊंचाई पर बनी दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। ये मनाली और लाहौल स्पीति को जोड़ती है। वहीं 2017 में बनी 9 किलोमीटर लंबी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल जम्मू और श्रीनगर के बीच हर मौसम में खुली रहती है और यात्रा का समय लगभग 2 घंटे कम करती है।
4: श्रोताओं, अब बात करते हैं हवाई संपर्क की। 15 जुलाई 2026 तक उड़ान योजना ने 679 रूटों के जरिए 95 हवाई अड्डों, हेलीपोर्ट और वाटर एयरड्रोम को जोड़ा है। इससे 1,68,00,000 से ज्यादा यात्रियों को फायदा हुआ है। 2014 में देश में 74 चालू हवाई अड्डे थे, जिनकी संख्या जुलाई 2026 में बढ़कर 165 हो गई। 2014 के बाद 25 ग्रीन फील्ड हवाई अड्डों को मंजूरी दी गई है। क्षेत्रीय हवाई संपर्क को और मजबूत करने के लिए मार्च 2026 में संशोधित उड़ान को मंजूरी दी गई। इसके तहत 100 नए हवाई अड्डे और 200 आधुनिक हेलीपैड बनाने की योजना है। श्रोताओं, अब शहरों में परिवहन की बात करें तो मेट्रो नेटवर्क का भी तेजी से विस्तार हुआ है। देश का मेट्रो नेटवर्क 2014 के 248 किलोमीटर से बढ़कर 2026 में 1155 किलोमीटर से ज्यादा हो गया है। मेट्रो कनेक्टिविटी वाले शहरों की संख्या 5 से बढ़कर 26 हो गई है और रोजाना यात्रियों की संख्या 1,15,00,000 से ज्यादा है। 2024 में कोलकाता ने भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो टनल शुरू की, वहीं कोच्चि ने भारत का पहला वाटर मेट्रो सिस्टम शुरू किया। अब बात समुद्री इंफ्रास्ट्रक्चर की। बड़े बंदरगाहों की कार्गो संभालने की क्षमता 2014 के 873 MMTPA से लगभग दोगुनी होकर 2026 में 1728 MMTPA हो गई है। बंदरगाहों पर जहाजों के टर्न अराउंड समय में भी सुधार हुआ है, ये 94 घंटों से घटकर 2025-26 में 48.8 घंटे रह गया। राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या 2014 के 5 से बढ़कर 2026 में 111 हो गई। भारत 2025 में दुनिया का नंबर 1 जहाज रिसाइकलिंग देश भी बन गया। श्रोताओं, अब इस रिपोर्ट के जरिए समझते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के उस महत्वपूर्ण पहलू को जो सड़कों, रेलवे और बंदरगाहों को उद्योग तथा व्यापार से जोड़ते हुए देश की लॉजिस्टिक्स व्यवस्था और औद्योगिक क्षमता को मजबूत करता है।
3: पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान ने 3291 से ज्यादा डेटा लेयर्स का इस्तेमाल करके 58 मंत्रालयों और विभागों में एकीकृत इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग की है। 11 अगस्त 2026 तक नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप के जरिए लगभग 18,66,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली 396 इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं का मूल्यांकन किया गया। इनमें से 256 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई और 198 परियोजनाओं पर काम चल रहा है। 7 औद्योगिक कॉरिडोर में 20 औद्योगिक स्मार्ट सिटीज को भी मंजूरी दी गई है। मार्च 2026 में 100 नए प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क विकसित करने के लिए भव्य योजना को भी स्वीकृति प्रदान की गई। 24 जुलाई 2026 को 3030 करोड़ रुपए के बजट के साथ भव्य रसायन योजना को मंजूरी दी गई। विनिर्माण इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए 7 प्रधानमंत्री मित्र पार्क्स का भी प्रस्ताव रखा गया है। श्रोताओं, जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण इलाकों में नल से जल पाने वाले घरों की संख्या 2019 में 3,23,00,000 थी, जो 10 अगस्त 2026 तक बढ़कर लगभग 15,91,00,000 हो गई। मार्च 2026 में जल जीवन मिशन 2.0 को मंजूरी दी गई। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 12 अगस्त 2026 तक 99,25,000 घर बनकर तैयार हो चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत लगभग 96% घर महिलाओं को आवंटित किए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत मंजूर किए गए 3,91,00,000 घरों में से 12 अगस्त 2026 तक 3,13,00,000 घर बनकर तैयार हो चुके हैं। 2019 में शुरू किए गए स्वामी फंड के जरिए जून 2026 तक 63,000 से ज्यादा घर उपलब्ध कराए गए, जिससे लगभग 2,52,000 लोगों को फायदा हुआ। स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत मार्च 2026 तक 7,790 परियोजनाएं पूरी की जा चुकी हैं।
4: श्रोताओं, अगर पूरे परिदृश्य को एक साथ देखें तो यही बदलते भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर की नई तस्वीर है। सड़कों से आगे बढ़ता हुआ बेहतर कनेक्टिविटी, मजबूत क्षमता और एकीकृत विकास की ओर बढ़ता भारत। इसी के साथ कार्यक्रम विश्लेषण में आज के लिए बस इतना ही। इस कार्यक्रम को तैयार किया है हमारे सहयोगी उत्पल कुमार ने, प्रस्तुति सहायक अरुण दीप। नमस्कार।
6: अरंडी चौड़े पत्तों का छोटे कद वाला पौधा होता है, जो प्राकृतिक रूप में जन्म लेता है। यह पौधा भारत में आम पाया जाता है। इसके बीजों से तेल निकाला जाता है, जो औषधीय रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके पत्ते भी औषधीय रूप में बहुत काम आते हैं। यहाँ अरंडी के पत्ते, बीज और तेल से जुड़े फायदे बताए जा रहे हैं, जिसे अपनाकर आप कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। अरंडी की जड़ 20 ग्राम को 400 मिलीलीटर पानी में पकाएं। जब यह 100 मिलीलीटर शेष बचे तो इसे पिलाने से त्वचा संबंधी रोगों में लाभ होता है। अरंडी के तेल की मालिश करते रहने से शरीर के किसी भी अंग की त्वचा फटने का कष्ट दूर होता है। ऐसे बच्चे जिनके सिर पर बाल नहीं उगते हो या बहुत कम हो, या ऐसे पुरुष स्त्री जिनकी पलकों व भौहों पर बहुत कम बाल हो, तो उन्हें अरंडी के तेल की मालिश नियमित रूप से सोते समय करना चाहिए। इससे कुछ ही सप्ताह में सुंदर, घने, लंबे, काले बाल उगने लग जाएंगे। सिर पर अरंडी के तेल की मालिश करने से सिर दर्द की परेशानी दूर होती है। अरंडी की जड़ को पानी में पीसकर माथे पर लगाने से भी सिर दर्द में राहत मिलती है। अरंडी का तेल थोड़े से चूने में फेंटकर आग से जले घावों पर लगाने से वे शीघ्र भर जाते हैं। अरंडी के पत्तों के रस में बराबर की मात्रा में सरसों का तेल फेंटकर लगाने से भी यही लाभ मिलता है। यदि मल त्यागने में कठिनाई का अनुभव हो तो अरंडी के तेल को दूध के साथ देने से लाभ होता है। अरंडी का तेल गर्म पानी के साथ देना चाहिए या फिर अरंडी का रस शहद में मिलाकर बच्चों को पिलाना चाहिए। इससे बच्चों के पेट के कीड़े नष्ट हो जाते हैं। अरंडी के पत्तों का रस रोजाना 2 से 3 बार बच्चे की गुदा में लगाने से बच्चों के पेट के कीड़े मर जाते हैं। अरंडी के तेल में कपूर का चूर्ण मिलाकर दिन में 2 बार नियमित रूप से मसूड़ों की मालिश करते रहने से पायरिया रोग में आराम मिलता है। पत्ते पर थोड़ा चूना लगाकर तिल पर बार बार घिसने से तिल निकल जाता है। अरंडी के तेल में कपड़ा भिगोकर मस्से पर बांधने से मस्से मिट जाते हैं। अरंडी का तेल लगाने से जख्म भी भर जाते हैं और इसको मस्सों पर लगाने से मस्सा ढीला होकर गिर जाता है। अरंडी के तेल को सुबह और शाम 1 से 2 बूंद हल्के हाथ से मस्से पर मलने से 1 से 2 महीनों में मस्से गिर जाते हैं। अरंडी के बीज की मींगी को दूध में पीसकर रोगी को पिलाने से गर्दन और कमर दोनों जगह का दर्द चला जाता है। 10 ग्राम एरंड की जड़ को छाछ के साथ पीसकर पिलाने से उल्टी और दस्त बंद हो जाते हैं। अरंडी के पत्तों का क्षार 3 ग्राम तेल एवं गुड़ आदि को बराबर मात्रा में मिलाकर चाटने से खांसी दूर हो जाती है। अरंडी के तेल की 10 बूंदों को रात को सोते समय पानी में मिलाकर सेवन करने से कब्ज की बीमारी में लाभ होता है। एरंड का तेल 30 ग्राम को गर्म दूध में मिश्री के साथ पीने से कब्ज दूर हो जाता है। 1 कप दूध में 2 चम्मच एरंड का तेल मिलाकर सोते समय पिलाएं। इससे पेट की कब्ज नष्ट हो जाती है। चोट लगकर खून आने लगे, घाव हो तो एरंड का तेल लगाकर पट्टी बांधने से लाभ होता है। एरंड के पत्ते पर तिल का तेल लगाकर गर्म करके बांधने से चोट से सूजन एवं दर्द में लाभ होता है। एरंड के पत्ते पर सरसों और हल्दी गर्म करके मोच वाले स्थान पर लगाएं और पत्ते को उस पर रखकर पट्टी बांध दें। अरंड के बीज की गिरी 10 ग्राम काले तिल 10 ग्राम दूध में पीसकर हल्का गर्म करके मोच पर बांध दें। अरंडी के तेल की 2 चम्मच मात्रा को गर्म दूध में मिलाकर सेवन करने से लाभ होता है। जय हिंद।
3: आकाशवाणी समाचार से

0: का प्रभाग की प्रस्तुति विश्लेषण।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम विश्लेषण के नए अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं कनकलता। आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 की, जिसका उद्देश्य देश की न्यायाधिकरण प्रणाली को अधिक स्वतंत्र, पारदर्शी, प्रभावी और पेशेवर बनाना है। न्यायाधिकरण एक ऐसा विशेष संस्थान है जहां कर, बिजली, दूरसंचार, कंपनी कानून, पर्यावरण, उपभोक्ता मामलों और प्रशासन जैसे विशेष विषयों से जुड़े विवादों का निपटारा किया जाता है। हाल ही में संसद ने न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 पारित किया है। ये विधेयक न्यायाधिकरणों में नियुक्ति, कार्यकाल, प्रशासन और निगरानी से जुड़ी व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव प्रस्तावित करता है। श्रोताओं, इस विधेयक की सबसे महत्वपूर्ण बात है राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग की स्थापना। इस आयोग में न्यायपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इसका उद्देश्य नियुक्ति प्रक्रिया में कार्यपालिका के विवेकाधिकार को कम करना और न्यायाधिकरणों की स्वतंत्रता को मजबूत करना है। आज के कार्यक्रम में हम समझेंगे कि न्यायाधिकरण क्या होते हैं, वर्तमान व्यवस्था में क्या चुनौतियां हैं, नए विधेयक में क्या बदलाव प्रस्तावित किए गए हैं और इससे न्यायाधिकरणों की स्वतंत्रता तथा कामकाज पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। साथ ही हम जानेंगे कि ये विधेयक आम लोगों को तेज और प्रभावी न्याय दिलाने की दिशा में किस प्रकार मददगार हो सकता है। श्रोताओं, आइए सबसे पहले जानते हैं कि न्यायाधिकरण सुधार की जरूरत क्यों महसूस की गई और नए विधेयक में क्या प्रावधान किए गए हैं।
2: न्यायाधिकरणों का गठन ऐसे मामलों के निपटारे के लिए किया जाता है जिनमें किसी विशेष क्षेत्र की विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। देश में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, राष्ट्रीय हरित अधिकरण, सशस्त्र बल न्यायाधिकरण, आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण, ऋण वसूली न्यायाधिकरण, विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण और दूर संचार विवाद निपटान एवं अपीलीय न्यायाधिकरण जैसे कई संस्थान काम कर रहे हैं। न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 के दायरे में 16 न्यायाधिकरणों, अपीलीय न्यायाधिकरणों और प्राधिकरणों को शामिल किया गया है। इनमें केंद्रीय और राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण, रेलवे दावा न्यायाधिकरण, प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण, राष्ट्रीय हरित अधिकरण, राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण और राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग जैसे प्रमुख संस्थान शामिल हैं। अब सवाल है कि इन न्यायाधिकरणों में सुधार की आवश्यकता क्यों महसूस की गई? न्यायाधिकरणों की नियुक्तियों और प्रशासन से जुड़ी व्यवस्था को लेकर लंबे समय से स्वतंत्रता, पारदर्शिता और कार्यपालिका के प्रभाव जैसे सवाल उठते रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने भी विभिन्न मामलों में न्यायाधिकरणों की स्वतंत्रता और नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर महत्वपूर्ण सिद्धांत निर्धारित किए हैं। इसी संदर्भ में न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 में न्यायाधिकरण सुधार अधिनियम 2021 को निरस्त करने और एक नई संस्थागत व्यवस्था बनाने का प्रस्ताव किया गया है। इस नई व्यवस्था का केंद्र होगा राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग यानी NTC।
3: आइए सुनते हैं इस बारे में और जानकारी के लिए वरिष्ठ पत्रकार अदिति टंडन को।
4: सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जैसा कि आपने कहा, एक नेशनल ट्राइब्यूनल्स कमीशन का गठन किया जाएगा। वो जो कमीशन है वो तय करेगी जो यूनिफॉर्मिटी अपॉइंटमेंट्स में होती है, जो चेयरपर्सन्स हैं, 16 ट्राइब्यूनल्स हैं हमारे देश में, उसके चेयरपर्सन्स और उसके मेंबर्स की समय अवधि की कितनी सीमा होनी चाहिए, अलग अलग जगहों में अलग अलग है। अब इस मसौदे में ये प्रपोज किया गया है कि चेयरपर्सन का जो टर्म है वो 5 साल का होना चाहिए और या फिर वो 70 साल की उम्र तक होने चाहिए और जो बाकी लोग हैं वो 67 ईयर्स तक होने चाहिए जो मेंबर्स हैं। ये जो नेशनल ट्राइब्यूनल्स कमीशन का गठन किया गया है, अब ये कमीशन चेयरपर्सन को सिलेक्ट करेगा। एक सर्च और सिलेक्शन कमेटी बनेगी जिसमें एक्सपर्ट्स होंगे और कमीशन को ये भी हक होगा कि वो एक्सपर्ट्स को इंक्लूड करें, एम्पैनल करें इस सर्च और सिलेक्शन कमेटी में। उससे क्या होगा कि एक वाइड रेंजिंग कंसल्टेशन और एक वाइड रेंजिंग प्रोसेस के बाद अच्छे और जो बहुत ही एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उन्हीं को चेयरपर्सन के लिए सिलेक्ट किया जाएगा।
2: आयोग के अध्यक्ष के रूप में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रह चुके व्यक्ति की नियुक्ति का प्रावधान है। इसके अलावा आयोग में 2 न्यायिक और 2 तकनीकी सदस्य होंगे। तकनीकी सदस्यों के लिए लोक प्रशासन, वित्त, कानून, लेखा, बैंकिंग, प्रबंधन या प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में कम से कम 25 वर्ष के अनुभव का प्रावधान है। आयोग का मुख्य कार्य केवल नियुक्तियां करना नहीं होगा, ये न्यायाधिकरणों के कामकाज की निगरानी करेगा, सदस्यों के खिलाफ शिकायतों की जांच की निगरानी करेगा और वार्षिक रिपोर्ट भी तैयार करेगा। इसके साथ ही राष्ट्रीय न्यायाधिकरण डेटा ग्रिड विकसित करने का भी प्रस्ताव है। इसमें 16 न्यायाधिकरणों से जुड़े मामलों की जानकारी उपलब्ध होगी।
1: श्रोताओ, किसी भी न्याय व्यवस्था के लिए स्वतंत्रता के साथ जवाबदेही भी जरूरी होती है। इसी संतुलन को ध्यान में रखते हुए विधेयक में न्यायपालिका की भूमिका मजबूत करने के साथ साथ निगरानी और रिपोर्टिंग की व्यवस्था भी प्रस्तावित की गई है। आइए अब अगले रिपोर्ट में जानते हैं कि नई व्यवस्था से न्यायाधिकरणों के कामकाज में क्या बदलाव आएंगे।
5: न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 में न्यायाधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति के लिए खोज तथा चयन समितियों का प्रावधान किया गया है। इन समितियों में न्यायिक और तकनीकी विशेषज्ञ शामिल होंगे। न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के चयन के लिए राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग के अध्यक्ष, आयोग के एक तकनीकी सदस्य, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, केंद्र सरकार के एक सचिव और दो विशेषज्ञों को शामिल करने का प्रावधान है। न्यायाधिकरण के सदस्यों के चयन के लिए भी इसी तरह की व्यवस्था होगी, जिसमें आयोग के एक न्यायिक सदस्य को समिति का अध्यक्ष बनाया जाएगा। समिति प्रत्येक रिक्त पद के लिए एक उपयुक्त उम्मीदवार और एक अतिरिक्त उम्मीदवार की प्रतीक्षा सूची की अनुशंसा करेगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि समिति की सिफारिशें 3 दिन के भीतर केंद्र सरकार को भेजी जाएंगी और केंद्र सरकार को अनुशंसा पर 3 महीने के कार्रवाई करनी होगी। इससे नियुक्ति प्रक्रिया को समयबद्ध बनाने में मदद मिल सकती है। विधेयक में कार्यकाल को लेकर भी स्पष्ट व्यवस्था की गई है। राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक जो पहले हो रहेगा, वहीं न्यायाधिकरण के सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष या 67 वर्ष की आयु तक जो पहले हो रहेगा। कुछ परिस्थितियों में पुनः नियुक्ति का भी प्रावधान है। विधेयक में नया सचिवालय स्थापित करने का भी प्रस्ताव है। ये सचिवालय आयोग को प्रशासनिक सहायता देगा, विशेषज्ञों का पैनल तैयार करेगा, चयन समितियों की सिफारिशों को आगे भेजेगा और आयोग की वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा। इसके अलावा न्यायाधिकरणों को अधिक वित्तीय और प्रशासनिक स्वायत्तता देने का भी प्रयास किया गया है। हर न्यायाधिकरण अपनी वित्तीय, मानव संसाधन और आधारभूत सुविधाओं से जुड़ी जरूरतों का आकलन करेगा। इन जरूरतों को आयोग का सचिवालय एकत्र करेगा और आयोग एक निश्चित व्यवस्था के आधार पर उनका मूल्यांकन करेगा। वित्तीय पारदर्शिता के लिए आयोग के खातों का भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक यानी CAG द्वारा ऑडिट किए जाने का प्रावधान है। ऑडिट रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों के सामने रखी जाएगी।
1: श्रोता, न्यायाधिकरणों में विशेषज्ञता और तेजी से विवादों का समाधान महत्वपूर्ण होता है। ऐसे में नई व्यवस्था का अंतिम उद्देश्य यही है कि लोगों को प्रभावी और समय पर न्याय मिल सके तथा न्यायाधिकरणों में नियुक्तियां और उनका कामकाज अधिक पारदर्शी तरीके से हो। न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 भारत की न्यायाधिकरण प्रणाली को अधिक स्वतंत्र, पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग के माध्यम से नियुक्ति प्रक्रिया में न्यायपालिका की भूमिका मजबूत करने, विशेषज्ञता को महत्व देने और कार्यपालिका के विवेकाधिकार को सीमित करने का प्रयास किया गया है। साथ ही कार्य निष्पादन की समीक्षा, शिकायतों की निगरानी, डेटा ग्रिड, समयबद्ध नियुक्तियां और CAG ऑडिट जैसी व्यवस्थाएं जवाबदेही और पारदर्शिता को मजबूत कर सकती हैं। आम नागरिक के लिए किसी भी न्याय व्यवस्था की सफलता इस बात से तय होती है कि उसे न्याय कितनी जल्दी, कितनी निष्पक्षता से और कितनी आसानी से मिलता है। ऐसे में न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 का व्यापक उद्देश्य एक ऐसी व्यवस्था तैयार करना है जो स्वतंत्र भी हो, विशेषज्ञ भी हो और जनता के प्रति जवाबदेह भी हो। आज के विश्लेषण में बस इतना ही। इस कार्यक्रम को तैयार किया है हमारे सहयोगी उत्पल कुमार ने, तकनीकी सहयोग अलका सिंह। नमस्कार।

नमस्कार, आज का टॉपिक है मकोई और उसके बेनिफिट। दोस्तों, मकोई ब्लैक नाइट और नाइट शेड काकमाची और भटकोइया पिलपोटन भी कहते हैं। ये छोटा सा पौधा है जो भारतवर्ष के छाया युक्त स्थानों में हमेशा पाया जाता है। मकोई में पूरे वर्ष फूल और फल देखे जा सकते हैं। मकोई में शाखा युक्त 1.5 फुट तक ऊंची तथा शाखाओं पर उभरी हुई रेखाएं होती हैं। इसके पत्ते हरे, अंडाकार या आयताकार, दंतुर या खंडित, 2 से 3 इंच लंबे, 1.5 इंच तक चौड़े होते हैं। फूल छोटे, सफेद वर्ण, रंग, बहिकक्षीय फूल दंडों पर 3 से 8 के गुच्छों में नीचे झुके होते हैं। मकोई का फल छोटे, चिकना गोलाकार, अपरिक्व अवस्था में हरे रंग के और पकने पर नीले या बैंगनी रंग के, कभी कभी पीले या लाल होते हैं। बीज छोटे, चिकने, पीले रंग के बैंगन के बीजों की तरह होते हैं, परंतु बैंगन के बीजों से बहुत छोटे होते हैं। पकने पर फल मीठे लगते हैं। दोस्तों, अब बताता हूँ कि मकोई किन किन बीमारियों में फायदेमंद है। मकोई पंचांग, जड़, तना, पत्ता, फूल और फल के काढ़े का सेवन गठिया का दर्द, सूजन, खांसी, घाव, पेट फूलने, अपच, मूत्र रोग में फायदा पहुँचाता है। कान दर्द, हिचकी, जुकाम, आंखों के रोग, उल्टी और शारीरिक कमजोरी में भी लाभ होता है। इसके पत्ते एवं फल का सेवन से पेट का अल्सर ठीक होता है। इसके बीज भ्रम, बार बार प्यास लगने, सूजन और त्वचा रोग में फायदेमंद है। मकोई की प्रकृति डायूरेटिक होती है। अगर आपको कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि किसी कारणवश आपको रात में नींद नहीं आती या फिर काफी डर लगने लगता है, तो मकोई का सेवन करना नियमित रूप से शुरू कर लें। इससे आपको चिंता आदि कम करने में भी राहत मिलती है। इसमें चिकित्सीय गुण होते हैं जो ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने में मदद करते हैं। मकोई में फाइटोकेमिकल्स होते हैं और साथ में ही एंटीमाइक्रोबियल गुण होते हैं, जिससे यूटीआई बार बार नहीं होता है। मकोई का सेवन करने से वेजिनल सेक्रेशन और यूरिन आउटपुट में इजाफा होता है। इससे शरीर के अंदर मौजूद सारे बैक्टीरिया बाहर आने में मदद होती है, जिस कारण सारे बैक्टीरिया और टॉक्सिन्स फ्लश आउट हो जाते हैं और अगली बार यूटीआई होने का रिस्क भी कम हो जाता है। दोस्तों, अब बताता हूँ कि किस रोग में कैसे प्रयोग करें। मकोई के पत्ते, पान का पत्ते तथा हल्दी से पेस्ट बना लें। इसका लेप करने से पुराने घाव, चोट लगने से होने वाले घाव, रोम छिद्र की सूजन, मवाद वाले घाव, दाद, खाज, हर्पीज आदि, एंथेक्स आदि में लाभ होता है। मकोई के पके फल को मधु के साथ सेवन करें। इससे टीबी की बीमारी में फायदा होता है। मकोई फलों को पीसकर सुखा लें। इसे गर्म करके लेप के रूप में लगाएं। इससे शरीर के सभी अंगों में होने वाले सूजन में लाभ होता है। मकोई के सेवन से हमारी किडनी हेल्दी रहती है। अगर किसी को बार बार पेशाब आने की समस्या हो, किडनी एरिया में सूजन की समस्या हो, तो मकोई का रस या मकोई से बहुत अधिक लाभ होता है। ये फाइबर से भरपूर फल होता है, इसीलिए पेट को साफ रखने में मददगार होता है। मकोई फल खाने के साथ साथ 10 से 15 मिलीग्राम मकोई के अर्क को रोज पिलाने से किडनी में सूजन, किडनी के दर्द तथा किडनी रोगों आदि बीमारी में लाभ मिलता है। आजकल कैंसर की समस्या एक चिंता का विषय बन चुकी है। मकोई के फल में कैंसर रोधी गुण होते हैं। मकोई कैंसर सेल्स के डेवलपमेंट को रोकता है। ये ट्यूमर के निर्माण को रोकने के लिए भी लाभकारी बताया जाता है। हाई ब्लड प्रेशर की समस्या में मकोई का सेवन प्रभावी हो सकता है। इसमें हाइपोग्लाइसेमिक इंडेक्स होते हैं, जो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करके डायबिटीज को मैनेज करने के लिए जाने जाते हैं। हाई कोलेस्ट्रॉल के कारण कई घातक स्वास्थ्य समस्याएं होने का खतरा बढ़ जाता है। मकोई से ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है और कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी नियंत्रित रहता है, जिससे हार्ट स्ट्रोक और हार्ट डिजीज का खतरा कम हो जाता है। पीरियड क्रैम्प्स में महिलाओं को दर्द और ऐंठन का सामना करना पड़ता है, जो बहुत असहनीय होता है। ऐसे में वह पेन किलर्स का सहारा लेती है। दर्द निवारक दवाइयों पर निर्भर होने की जगह आप इस शक्तिशाली जड़ी बूटी का इस्तेमाल कर सकती है, खासकर मकोई बेल। मकोई फल में ब्लैक नाइट शेड होते हैं, जिनमें एंटीपायरेटिक एजेंट मिलते हैं, जिनको पेन किलर में उपयोग किया जाता है। यह जल्दी दर्द में राहत दे सकते हैं। लीवर तथा तिल्ली के रोगों के लिए मकोई स्वरस, भूमि आंवला स्वरस यथा पुनर्नवा स्वरस का सेवन अति उत्तम अकाट्य उपचार है। तो दोस्तों, है ना मकोई फायदेमंद आपके और हम सबके लिए

0: वो खिलाड़ी जिसने जानवरों की भलाई की राह चुनी, डॉक्टर पुण्यमूर्ति नटेशन, पद्मश्री 2026। तंजावुर जिले के एक सुंदर गांव बल्लम में 1960 के दशक में एक युवा लड़का किसान परिवार में पला बढ़ा। उसे खेल बहुत पसंद थे। उसका सपना एथलेटिक्स और हॉकी का स्टार खिलाड़ी बनना था। वो अपने परिवार में कॉलेज जाने वाले पहले व्यक्ति थे। वो अपने दादा के बहुत प्रिय थे।
1: कॉलेज की पढ़ाई के लिए जब मैं अपने दादाजी के पास आशीर्वाद लेने गया तो उन्होंने कहा, कुछ ऐसा सीखो जो किसानों के काम आए। वह मेरी जिंदगी का निर्णायक मोड़ था। तब मैं सिर्फ बीएससी एग्रीकल्चर के बारे में जानता था, मुझे वेटनरी साइंस की जानकारी नहीं थी। मेरे दोस्त और सहपाठी वीर पांडियन ने मुझे वेटनरी साइंस से परिचित कराया।
0: युवा पुण्यमूर्ति 70 के दशक के मध्य में मद्रास वेटरनरी कॉलेज पहुंचे। वो न केवल पढ़ाई में होशियार थे बल्कि वो लगातार 2 साल तक कॉलेज एथलेटिक्स चैंपियन भी रहे। कुछ वर्षों बाद वे इरोड के कृषि विज्ञान केंद्र में कार्यरत हुए। वहीं एक घटना ने उनकी सोच को नई दिशा दी।
1: मैं इरोड में एक युगल द्वारा चलाए जा रहे पोल्ट्री फार्म पर गया। मुर्गियां स्वस्थ दिख रही थी, अच्छा खा रही थी, फिर भी अंडे नहीं दे पा रही थी। रिकॉर्ड से पता चला कि उन्हें कॉक्सिडियोसिस यानी परजीवी रोग के लिए सल्फानामाइड दवा 10 हफ्ते तक दी गई थी। इसका दीर्घकालीन असर उनके प्रजनन पर पड़ा और वे अंडे नहीं दे पाई। अगर हमें भविष्य के लिए एंटीबायोटिक्स बचानी है तो उनका समझदारी से उपयोग करना चाहिए या फिर उनके विकल्प खोजने होंगे। मुझे ये एहसास हुआ।
0: पौधों के औषधीय गुणों की मदद से डॉक्टर पुण्यमूर्ति ने पशु रोगों के उपचार और रोकथाम में औषधीय पौधों का उपयोग किया। इस प्रकार उन्होंने एथनो वेटरिनरी को विकसित और प्रमाणित किया, प्राकृतिक तत्वों पर आधारित पशु चिकित्सा पद्धति।
1: पशुपालकों के लिए मास्टाइटिस एक गंभीर बीमारी है। इसके उपचार के लिए 1 चम्मच एलोवेरा, 2 मुट्ठी हल्दी और थोड़ा सा चूना मिलाकर दवाओं के बिना सफल उपचार किया जा सकता है। ये पारंपरिक सिद्ध आधारित इलाज के असर को दिखाता है।
0: उनके इलाज से लाखों गायों और किसानों को फायदा हुआ। उन्होंने जानवरों की 34 बीमारियों के लिए 5 आसान इलाज विकसित किए।
1: एक जिम्मेदार पशु चिकित्सक के रूप में जितना जरूरी स्वस्थ दूध, अंडे और मांस मुहैया कराना है, उतना ही जरूरी गायों का स्वस्थ गोबर और मूत्र भी है, ताकि मिट्टी का स्वास्थ्य बना रहे। भविष्य के लिए एंटीबायोटिक्स को बचाए रखना भी जरूरी है, जो हम एथनोवेटनरी चिकित्सा के जरिए कर रहे हैं।
0: डॉक्टर पुण्यमूर्ति की सभी खोजें सबके लिए निशुल्क हैं। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने उनके काम को लाखों किसान तक पहुंचाया, जिससे उन्हें बहुत फायदा मिला।
1: मैं दिल से खिलाड़ी हूं, इसलिए अपने काम से पूरा प्यार करता हूं।
0: डॉक्टर पुण्यमूर्ति नटेशन, पद्मश्री 2026।
2: वैसे तो आप जान ही गए होंगे हम जेवर से आए हैं। मेरा नाम प्रिया है और मैं बस थोड़ी सी 2-3 लाइन बोलूंगी कि पहले मैं इसी सेंटर में स्टूडेंट थी और अब मैं पार्लर की ट्रेनर हूँ। और पार्लर की जॉब करने के साथ साथ मैं घर पे भी पार्लर का काम करती हूँ। इसीलिए मैं सभी को, इन सभी टीम को मतलब धन्यवाद बोलना चाहूंगी। इनकी वजह से मेरी इनकम डबल हो चुकी है और शादी के बाद कहते हैं सरनेम बदल जाता है। मुझे हस्बैंड के नाम से जाना जाता था लेकिन अब मुझे देख के सब ये बोलते हैं, वो देखो प्रिया के हस्बैंड जा रहे हैं। तो थैंक यू।
3: परिवर्तन की शांत लहर, श्री मोहन नागर, पद्मश्री 2026। कुछ लोग बदलाव की बातें करते हैं और कुछ लोग बदलाव लाते हैं। मध्य प्रदेश के श्री मोहन नागर जी को प्रकृति और पानी से प्रेम संस्कार में मिले थे।
4: हमने अपने काम की शुरुआत शिक्षा के माध्यम से की। भारत भारती के माध्यम से 500 गांवों में एकल विद्यालय प्रारंभ किए।
3: पर असल समस्या और थी।
5: जमीन बेकार हो गई थी, खेती बंद हो गई, लोग गांव छोड़ रहे थे।
4: पदयात्रा के समय अध्ययन किया तो ध्यान में आया कि दिवाली के समय पानी की बहुत समस्या हो जाती है और लोग पलायन कर जाते हैं। पर्याप्त बारिश होने के बाद भी कुएं, बावड़ी, तालाब और स्टार्ट डैम की कमी के कारण अधिकांश पानी बह जाता था।
3: श्री मोहन नागर जी ने नदी नालों में बहते पानी को रोकने का एक अनोखा रास्ता निकाला।
4: हमने सीमेंट की खाली बोरियों में रेत भर के नदी नालों में बोरी बंधान बनाए, जिसके कारण पानी की समस्या कम हुई और पलायन बंद हुआ।
3: इसके बाद बारी थी जमीन के जल स्तर को बढ़ाने की।
4: हमने गंगा अवतरण अभियान के माध्यम से जन भागीदारी से सोना घाटी की पहाड़ी पर 8,000 कंटू टेंच बनाए और 32,000 पौधे लगा करके ताप्ती उपन उगाए, जिसके कारण उस क्षेत्र का भूजल स्तर बढ़ गया। लैंड माफिया, रेत माफिया, इसका हमको विरोध का सामना करना पड़ा। हमने अपने काम को नहीं रोका, हमने लोगों का विश्वास जीता और धीरे धीरे जो हमारे विरोधी थे वो भी हमारे सहयोगी बन गए।
3: प्रकृति और पानी बचा के मोहन जी ने वर्तमान बचाया और अब उनका लक्ष्य था एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करना।
4: भारत भारती विद्यालय के माध्यम से हम बच्चों को शिक्षा देकर आने वाले कल के लिए एक संस्कारी, प्रतिभाशाली और उत्कृष्ट नेतृत्व क्षमता वाले युवा तैयार करते हैं। हमने बाचा गांव को ग्रामवासियों के सहयोग से एक आदर्श ग्राम के रूप में विकसित किया है। बाचा गांव शांति, प्रगति और समृद्धि का प्रतीक बन गया है।
3: लेकिन अनगिनत बदलाव लाने वाले श्री मोहन नागर जी की एक चीज कभी नहीं बदली, उनके परिवार का अटूट भरोसा। मोहन जी को कई सम्मान मिले पर उनका असली सम्मान तो भरे हुए तालाब, लहराते पहाड़ और मुस्कुराते चेहरे हैं।
4: पानी बचाना एक काम नहीं या वचन है आने वाली पीढ़ियों से, क्योंकि जल है तो कल है।
3: श्री मोहन नागर, पद्मश्री 2026।
6: सुर्खियों में
7: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए एमएसएमई विकास संशोधन विधेयक 2026 के प्रमुख प्रावधानों और उनके महत्व पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक दिलीप चिनॉय। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं सोनू सूद।
8: राज्यसभा ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक का उद्देश्य 20 वर्ष पुराने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 में संशोधन कर भुगतान प्रणाली में विलंब दूर करना और विवाद समाधान प्रक्रिया को सरल बनाना है। इस विधेयक के महत्व और विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालने के लिए आज हमारे साथ हैं आर्थिक विश्लेषक दिलीप चिनॉय। दिलीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत आकाशवाणी में।
9: धन्यवाद।
8: दिलीप जी, ये जो बिल आया है सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026, इसके महत्व को आप कैसे आंकते हैं पूरे एमएसएमई सेक्टर में मजबूती बढ़ाने के लिए? और इसी संदर्भ में अगर आप हमें ये भी बता सकें कि जो एमएसएमई सेक्टर है उसका हमारे अर्थव्यवस्था के लिए क्या महत्व है?
9: धन्यवाद। अगर आप देखें तो पहले वो करीब 31% जो है देश के जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता है। दूसरा अगर आप देखें तो 48.5% एक्सपोर्ट्स में कंट्रीब्यूट करता है। तीसरा अगर आप देखें तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी अगर देखें खास तौर में तो 35.4% जो मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट है वो भी एमएसएमई सेक्टर के द्वारा एक शेयर है। और सबसे ज्यादा एक लगभग 40 करोड़ व्यक्ति एमएसएमई में एम्प्लॉयड है और ये एम्प्लॉयमेंट का एक बहुत बड़ा श्रेय है। ये एग्रीकल्चर के बाद सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है इंडियन इकोनॉमी में। तो अगर संक्षेप में बताऊं कि इकोनॉमी में क्या है, ये चार आंकड़े हैं, जीडीपी का 31%, मैन्युफैक्चरिंग में जो है और 39.6% करोड़ एम्प्लॉयमेंट, ये अगर आप देखें, और 48.5% एक्सपोर्ट्स, तो ये आंकड़े हैं।
8: तो इसलिए इसको रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है हमारी।
9: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट प्लेयर है इंडियन इकोनॉमी में। और आपने इसी जुड़ा हुआ सवाल था कि ये जो बिल लाया गया है और जो राज्यसभा ने भी इसको पास किया है, इसकी क्या महत्वपूर्ण है इस पूरे होल सेक्टर में। तो जो एमएसएमई सेक्टर में सबसे बड़ी दिक्कत है, जो हर एमएसएमई एंटरप्रेन्योर बेशक गवर्नमेंट के साथ मीटिंग्स में करें या कुछ भी करें, वो है डिलेड पेमेंट। तो ये डिलेड पेमेंट के लिए कई साल पहले उन्होंने एक इलेक्ट्रॉनिक बिल डिस्काउंटिंग सिस्टम किया था, ट्रेड रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक डिस्काउंटिंग सिस्टम, उसको हम ट्रेड्स प्लेटफॉर्म करते हैं। उस प्लेटफॉर्म में उन्होंने पहले तो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन करना पड़ा। अभी उन्होंने जो भी कंपनी 250 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर में है वो वहां पे रजिस्टर करना जरूरी है, और जितने भी एमएसएमईज के जो बिल्स हैं, जो उनके सप्लाईज हैं, वो बिल्स जो एमएसएमईज उस इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पे डिस्काउंट कर सकते हैं। यानी कि अगर आप एक लार्ज कंपनी है और मैंने आपको 1000 रूपये का सामान दिया है तो मैं 1000 रूपये का बिल अपलोड करूंगा और उसके बदले थोड़ा से पैसे वो ट्रेड प्लेटफॉर्म रखेगा, बाकी मुझे कर देगा, तो मेरा वर्किंग कैपिटल ब्लॉक नहीं होगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है ट्रेड प्लेटफॉर्म का, और इसके अंतर्गत जो ये जो बिल में जो संशोधन लाए गए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है।
8: तो जैसे आपने कहा कि कोई भी एमएसएमई होता है उनके लिए जो पेमेंट समय पर मिलना बहुत जरूरी होता है, लिक्विडिटी उनकी जो फ्लो बना रहे वो बहुत जरूरी होता है। सो आपको लगता है कि जो ये नया अमेंडमेंट बिल आया है, ये पुराने जो एक्ट था 2006 का 20 वर्ष पुराना, उसमें जो बदलता परिवेश है उसके मुताबिक संशोधन करके लिक्विडिटी फ्लो को ज्यादा स्मूथ करेगा?
9: बिल्कुल सही है जो आप कह रहे हैं। देखिए, एक तो पहला जो है ट्रेड्स प्लेटफॉर्म है, इस बिल का जो सारा जो फोकस है ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पे है और सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडर पब्लिक एंटरप्राइजेस पे है। ट्रेड्स अभी प्लेटफॉर्म ही एक नया ही प्लेटफॉर्म है, उसमें लगभग 3.5 लाख करोड़ का एनुअल टर्नओवर होता है। उसमें जो है वो एमएसएमई का ट्रांजैक्शन का छोटा सा हिस्सा है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो अगर आप देखें तो ये डिलेड पेमेंट्स जो एमएसएमई को कैपिटल ब्लॉक करता था उसको एड्रेस करता है, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते थे, वो मार्केट से पैसा लेते थे हाई इंटरेस्ट रेट पे। और सबसे बड़ा जो संशोधन आया है इस बिल में, वो जो अगर डिस्प्यूट हो जाता था तो वो नॉर्मल कोर्ट के प्रोसेस में सालों लगते थे एक लीगल प्रोटेक्शन के लिए, तो चार जो है, और कैश फ्लो का जो पूरा परिस्थिति पैदा हो जाती थी क्योंकि पेमेंट्स ब्लॉक हो जाते थे, तो इन चार चीजों को सॉल्व करने में एक ये बहुत बड़ा कदम है।
8: तो जैसे आपने कहा कि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन यानी कि कोई भी विवाद है उसका समाधान, उसमें बहुत समय लगता था, तो अब जो टाइम बाउंड उन्होंने बताया है, साइकिल बताई है कि पहले मध्यस्थता होगी, मीडिएशन होगी जो 90 दिन के अंदर खत्म होनी है, अगर वो सक्सेसफुल नहीं होती तो 30 दिन में अपील मैक्सिमम, और फिर 90 दिन में आर्बिट्रेशन। तो ये थोड़ा सा हमें बताएं कि ये जो तीन स्टेजेस हैं ये किस तरह से एक जो कॉमन एमएसएमई ओनर है, एक मान लीजिए एक माइक्रो एंटरप्राइज का ओनर है, वो कैसे इन स्टेजेस को समझे?
9: तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्टिंक्शन है, और अगर आप देखें तो कोई लीगल डिस्प्यूट होता है तो सबसे कम जो खर्चा होता है और सबसे कम टाइम में जो रेजोल्यूशन हो सकता है वो मीडिएशन द्वारा, और वो एक उसमें लॉयर्स की जरूरत नहीं है, आप आपस में बैठ करके एक मीडिएटर के द्वारा बैठ करके आप अग्री कर सकते हैं। और अगर आप दोनों ने मीडिएशन अग्रीमेंट को अग्री कर दिया,
8: कोर्ट से बाहर,
9: कोर्ट से बाहर, मीडिएशन सेंटर्स कोर्ट्स के साथ भी लगे हुए हैं, जैसे अगर दिल्ली में तो हर कोर्ट के साथ लगा हुआ है, तो वो मीडिएशन अग्रीमेंट अगर साइन करते हैं तो वो एक लीगली बाइंडिंग डॉक्यूमेंट हो जाता है। अगर जो लार्ज और कॉम्प्लिकेटेड केसेस होते हैं, कई लोग सोचते हैं कि मीडिएशन में नहीं होगा, तो जो आर्बिट्रेशन है, और उन्होंने नया आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन एक्ट लेके आए थे, उसको मीडिएशन एक्ट के अंदर ही एक आर्बिट्रेशन एक्ट है और एक मीडिएशन एक्ट है। तो आर्बिट्रेशन में क्या होता है कि अगर आप दोनों के बीच में डिस्प्यूट है तो आप ज्वाइंटली एक आर्बिट्रेटर या तीन आर्बिट्रेटर, डिपेंड करता है, उसको अपॉइंट कर देते हैं। लेकिन आर्बिट्रेशन जो है एक कोर्ट के द्वारा फंक्शन करता है, लेकिन एविडेंस रूल और सिविल प्रोसीजर कोड वगैरह अप्लाई नहीं करते हैं, तो सिंप्लीफाइड सिस्टम है, लेकिन वो एक जजमेंट है और वो जजमेंट बाइंडिंग है, उसको अपील करना मुश्किल, अगर कोई प्रोसीजरल गैप है या नॉर्मली कोर्ट्स इंटरफेयर नहीं करते हैं। तो इसके जो तीन जो आंकड़े बोले थे, पहले तो मीडिएशन, अगर मीडिएशन ना हो तो फिर आप आर्बिट्रेशन में जाएंगे, तो आर्बिट्रेशन जो है ये बिल कहता है कि 30 दिन के अंतर्गत ही आर्बिट्रेशन शुरू हो जाना चाहिए, और अगर आर्बिट्रेशन शुरू हो गया, जब आर्बिट्रेशन शुरू हो गया 90 डे में उसका अवार्ड आना चाहिए। तो यानी कि 120 या 6 महीने में, और मीडिएशन के 2 महीने लगा लो तो 8 महीने में कुछ ना कुछ इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। अगर आप नॉर्मल कमर्शियल कोर्ट में भी जाएं तो 8 महीने में या 6 महीने में आपके 2 तारीख मिलेंगे और कुछ ज्यादा कुछ होगा नहीं। तो ये सालों चलते थे अर्ली डिस्प्यूट, तो ये एक बहुत ही बड़ा कदम है और टाइम की बचत है, सबसे ज्यादा बचत टाइम है। और नॉर्मल केसेस में तो अजर्नमेंट्स होते हैं, कुछ होता है, नॉर्मली मीडिएशन और आर्बिट्रेशन में अजर्नमेंट्स नहीं होते।
8: सो इस तरह से जो आप कह रहे हैं कि एकदम टाइम बाउंड कर दिया है कि इतने समय में समाप्त होना ही होना है विवाद और उसका कुछ निर्णय निकलना है, सो ये बहुत ही क्रांतिकारी बदलाव है। बिकॉज नॉर्मली जैसा आप कह रहे हैं कि कई बार बहुत लंबे चलते हैं केसेस, आगे बढ़ते जाते हैं, सो इसको आप इस अमेंडमेंट बिल का एक बहुत बड़ा एक पहलू कहेंगे?
9: हाँ, वो तो एक बड़ा पहलू है, लेकिन एक इसके बाद एक बहुत ही और छुपा हुआ एक पहलू है। ये उन्हें बिल ने ये कहा है कि आप इसको ऑनलाइन मीडिएशन या ऑनलाइन आर्बिट्रेशन और डिजिटल प्रोसेसेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप अगर 2 घंटे लगाते थे आर्बिट्रेशन सेंटर पहुंचने में या कुछ, वो आपका टाइम बच जाता है। और इससे अच्छा है कि अगर 6 महीने से ज्यादा आपका केस पेंडिंग है तो 50% अवार्ड अमाउंट जो है वो एमएसएमई को मिलना चाहिए। तो ये पूरा एक सिंप्लीफाई कर दिया है और एक प्रोसेस बना दिया है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का एक ये बहुत ही बड़ा पहलू है।
8: सो ऐसा लगता है जैसे कि अभी तक जो आपने पहलू डिस्कस किए हैं कि ये एमएसएमई फ्रेंडली अमेंडमेंट बिल है, ताकि एक कोलैबोरेटिव आपको लगता है अप्रोच लिया है सरकार ने?
9: बिल्कुल कोलैबोरेटिव अप्रोच लिया है, एमएसएमई फ्रेंडली अप्रोच है, लेकिन आप एमएसएमई की भूमिका जो देश की इकोनॉमी में है इतनी बड़ी है कि इकोनॉमी फ्रेंडली एक बिल है। और इसमें उन्होंने एक अच्छी चीज भी की है जो खासतौर लोग ध्यान ही देते
8: जी।
9: पहले अगर आपको एमएसएमई की डेफिनेशन अमेंड करनी होती थी ना, तो आपको एक्ट में अमेंड करनी चाहिए। इस बिल में उन्होंने बोला कि एक्ट के बाहर आप उसको अमेंड कर सकते हैं, तो एक बहुत बड़ा फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई है।
8: सो ये फ्लेक्सिबिलिटी की जो आप बात करें वो बहुत जरूरी भी है। जैसा हम जानते हैं कि आजकल जो हमारा पूरा वातावरण है खासकर टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत तेजी से बदल रहा है, सो जरूरत अनुसार जो एक फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर इंट्रोड्यूस की गई है वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट पहलू कहेंगे आप?
9: बिल्कुल सही। तो अगर देखें तो पहला जो है लिक्विडिटी इम्प्रूव होगा, दूसरा जो एमएसएमईज के पैसे हैं उनको बहुत जल्दी मिलेंगे, तीसरा अगर उनको पेमेंट मिलेंगे तो बैंक के ऊपर डिपेंडेंस कम होगा, चौथा तो बेटर वर्किंग कैपिटल जो मैंने आपको कहा था। और जो अभी जो है एमएसएमईज में लोग काम करने से थोड़े से हिचकिचाते थे क्योंकि ये डिलेड पेमेंट्स के सैलरी टाइम पे नहीं मिलते थे, रॉ मटेरियल्स नहीं मिलते, जीएसटी में डिफॉल्ट हो जाता था, और ये पूरा लोअर कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस हो जाएगा। और न्याय का ये एक फास्टर रूट है क्योंकि ये स्ट्रिक्ट टाइमलाइंस जो अनसर्टेनिटी निकाल देती है, और सप्लायर्स जो है उनका कॉन्फिडेंस होगा कि लार्जर सेंट्रल पब्लिक अंडरटेकिंग्स सप्लाई करे और लार्जर कंपनीज सप्लाई करे, तो ये एक इसका बहुत इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव था।
8: और एक डीक्रिमिनलाइजेशन के ऊपर भी सरकार ने हमेशा, वर्तमान सरकार ने बल दिया है, सो यहाँ पर जो प्रावधान लाए गए हैं ग्रेडेड सिस्टम ऑफ वार्निंग्स एंड मॉनेटरी पेनल्टीज, आपको लगता है कि ये भी जो डर का एक, अभी आपने डर शब्द यूज किया, वो कम होता है और ज्यादा एक फ्रेंडली एनवायरमेंट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलता है?
9: डीक्रिमिनलाइजेशन का एक पहलू बहुत आगे पहले से चल रहा था, जनविश्वास 1.0 और जनविश्वास 2.0 हमने उस पर भी चर्चा की थी।
8: बिल्कुल।
9: तो अगर आप देखें तो इसमें जो है डीक्रिमिनलाइजेशन हुआ है, बट वो ऐसे इसमें मेंशन नहीं है, लेकिन टाइम फ्रेम और नॉन पेनल्टीज और वार्निंग्स जो लार्जर कंपनीज के लिए है वो एक है। तो इसमें जो वो इम्पोर्टेंट सिग्नल जो क्या है ना, सबसे पहला है कॉन्ट्रैक्ट ऑनर करना चाहिए। अगर आपने किसी सप्लायर ने माल बेचा है और आप उसको पैसा देना, आप प्लीज उसको पैसा दीजिए क्योंकि एमएसएमई होगा। दूसरा है कि डिले तो अब अनएक्सेप्टेबल है, आपको पेमेंट करना पड़ेगा इस टाइम में, ठीक है, पहले ये नहीं था। और तीसरा है जो एमएसएमईज का जो कमर्शियल जस्टिस है वो एक टाइम बाउंड होना चाहिए, श्योर होना चाहिए, अश्योर्ड होना चाहिए, और मिनिमम इनकन्वीनियंस से डिजिटल मीडिएशन, डिजिटल आर्बिट्रेशन। तो ये अगर आप 3 इम्पोर्टेंट चीजें इस बिल को ले जाएं, और जो एमएसएमई के डेफिनेशन में ही फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है।
8: तो डिजिटलाइजेशन की जो आप बात कर रहे हैं वो रजिस्ट्रेशन जो करने होती है एमएसएमईज को, उसमें भी वो उनको सहूलियत होगी, अब एक इंसेंटिवाइज होंगे कि और एमएसएमईज भी उभर के आए, एक आपको लगता है कि ग्रोथ ऑफ एमएसएमईज या स्केलिंग अप जो है एमएसएमईज की उसको भी बढ़ावा मिलेगा?
9: पहले जो है अगर आप देखें तो एमएसएमईज का जो डेफिनेशन बढ़ा गया है, पहले लोग छोटा रहते थे और छोटा से ग्रो करने से हेजिटेट करते थे क्योंकि कंप्लायंस ज्यादा है, तो वो डेफिनेशन चेंज करने का एक बहुत बड़ा ग्रोथ पैटर्न है। दूसरा जो आपने कहा था कि आप पूरा जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और एमएसएमईज बिजनेस नहीं कर सकते थे, और एमएसएमई को कहां रजिस्टर करें, तो एक उद्यम पोर्टल रजिस्टर किया था, अभी उसमें 8.9 करोड़ लगभग एमएसएमईज रजिस्टर्ड है। और अभी कंपनीज एक्ट में भी अगर आप देखें, आप लार्ज कंपनी और मैं, आप एमएसएमई आपके साथ रजिस्टर्ड हूं तो आपको एक सर्टिफिकेट देना पड़ता है कि हमारे पास ड्यूज नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तीसरा जो आप देखें तो जेम गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म है, उसमें एमएसएमई SMEs बिजनेस कर सकते हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स और गवर्नमेंट परचेसेस में। ट्रेड ई फाइनेंसिंग के लिए ट्रेड्स है, तो ये अलग अलग ई प्लेटफॉर्म अगर वहां देखें तो ई नैम भी है, अलग अलग प्लेटफॉर्म जो है ONDC भी आ रहा है। तो डिजिटल इकोनॉमी और सबसे बड़ा जो फायदा है MSMEs के लिए UPI है और जो हमारा फाइनेंशियल स्टैक है, तो डिजिटली MSMEs को काफी अच्छा होना चाहिए। और अब AI आ रहा है तो गवर्नमेंट ने MSMEs के लिए AI के भी काफी एक सुविधा की है, तो वो डिजिटली अवेयर रहे और डिजिटली उसको यूज कर सके।
8: सो MSMEs जो सेक्टर है उसका बहुत बड़ा ग्रोथ हुआ है पिछले 12 वर्षों में। आपको लगता है कि ये जो विकसित भारत का हमारा जो लक्ष्य है 2047 तक, उसमें

0: सेक्टर के लिए स्टेप वाइज प्रोग्रेस कर रही है और ये जो अभी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स पे है शायद ये आगे जाके स्टेट अंडरटेकिंग्स पे लागू करे और दूसरे कॉन्ट्रैक्ट्स पे लागू करे, तो ये स्टेप वाइज एक इंटीग्रेशन और एक डेवलपमेंट है, ये बहुत अच्छा कदम है।
1: दिलीप जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका एमएसएमई इकोसिस्टम के लिए जो एक बहुत बड़ा घटनाक्रम हुआ है उसके विभिन्न पहलुओं पर हमसे बात करने के लिए।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे एमएसएमई विकास संशोधन विधेयक 2026 के प्रमुख प्रावधानों और उनके महत्व पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक दिलीप चिनॉय। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: सुर्खियों में
4: DD किसान बदलते भारत की शान।

मधुमक्खी पालन, जी हाँ, एक ऐसा व्यवसाय है जिससे हमारे किसानों को कई तरह के लाभ होते हैं। एक तो ये कि जो उनकी फसलें हैं उनमें परागण बेहतर होता है और अच्छी फसल प्राप्त होती है। दूसरा ये कि मधुमक्खी पालन से उन्हें शहद बेचकर लाभ होता है। इसके अलावा कई और भी उत्पाद होते हैं जिनकी बाजार में अच्छी मांग होती है, उनसे भी हमारे किसान आय अर्जित कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि कैसे हमारे किसान मधुमक्खी पालन की शुरुआत कर सकते हैं और व्यवसायिक दृष्टि से आज के समय में इसकी क्या उपयोगिता है।

0: शहद एक प्राचीन पदार्थ है, बल्कि पत्थरों के बसेरों और जंगलों में रहने वाले लोगों ने जिस मीठे पदार्थ को पहली बार चखा वो शहद ही था। बाद में जब दुनिया ने इसके फायदों के बारे में जाना तो मधुमक्खियों को बाकायदा पालना शुरू किया। आज खेतों के बीच कुछ पेटियां रखकर इन्हें पालने का चलन बढ़ता जा रहा है। मधुमक्खियां सिर्फ शहद ही नहीं देती, बल्कि इनसे मोम, रॉयल जेली, पोपोलिस यानी रालाभ, परागकण और डंक विष भी प्राप्त होता है। ये सभी चीजें इंसान की सेहत के लिए बहुत ही मुफीद हैं। भारत में प्राकृतिक और वनस्पति खेती दोनों में मधुमक्खी पालन को विकसित करने की काफी क्षमता है। यहाँ करीब लगभग 500 तरह के फूलों वाले पौधे पराग और मकरंद के स्रोत हैं। शहद की किस्म इस बात पर निर्भर करती है कि मधुमक्खियों ने उसे किस फूल से चूसा है। जैसे सरसों का शहद, नीलगिरी शहद, लीची शहद, सूरजमुखी शहद, करंज का शहद, मल्टीफ्लोरा, हिमालयी शहद, बबूल शहद, जंगली वनस्पति शहद, मल्टी और मोनोफ्लोरा शहद। भारत में मधुमक्खियों के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। हमारे किसानों ने इनका लाभ भी उठाया है। 1953 के दौरान देश में केवल 230 मधुमक्खी पालक थे, जिनके पास बक्सों में लगभग 800 कॉलोनियां थीं। तब शहद का उत्पादन बहुत कम था। आज यहां लगभग 25 लाख कॉलोनियां और 2.5 लाख पालक हैं। जंगलों से शहद इकट्ठा करने वाले इनसे अलग हैं। हम इस समय दुनिया में लगभग 83 देशों को शहद का निर्यात कर रहे हैं, बल्कि 2022-23 के दौरान देश से लगभग 80,000 टन का निर्यात किया गया। भारत में जितना भी शहद होता है उसका आधा निर्यात कर दिया जाता है। फसल उत्पादन में भी मधुमक्खियों का बहुत बड़ा योगदान है। हम सब जानते हैं कि शहद की तलाश में ये एक फूल से दूसरे फूल पर मंडराती हैं। इस तरह जाने अनजाने ये परागण का काम करती हैं। विशेषज्ञों की माने तो इस तरह के परागण से उपज में 25% तक बढ़ोतरी हो सकती है। यही वजह है कि बहुत से किसान मधुमक्खी पालकों के बक्से अपने खेतों में रखवाते हैं और बदले में उन्हें कुछ रकम भी देते हैं।
1: इसी के साथ ही कृषि दर्शन में यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कृषि स्टार्टअप की। कहीं मत जाइएगा, देखते रहे कृषि दर्शन।
2: भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस।

0: देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।
1: खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा।
0: इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी।
2: कृषि स्टार्टअप कृषि दर्शन का वो सेगमेंट है जिसमें हम आपकी मुलाकात करवाते हैं उन किसानों से जिन्होंने चुनौतियों के सामने ना झुकते हुए कृषि के क्षेत्र में कुछ नया किया, कामयाबी हासिल की। इन्होंने नई तकनीक को अपनाया और साथ ही सरकार की योजनाओं का भी भरपूर लाभ लिया। आइए जानते हैं कि आप भी कैसे इनके जीवन से कुछ न कुछ सीख सकते हैं। तो देखते हैं कृषि स्टार्टअप में आज के किसान की कहानी।
3: गर्दन तक पानी में डूबा ये शख्स कभी भारतीय वायुसेना का हिस्सा हुआ करता था। 2003 में इन्होंने नौकरी को अलविदा कहा और अपना कारोबार शुरू किया। जिस काम में भी हाथ डाला, कामयाबी ने कदम चूमे। फिर एक दिन ये रांची विश्वविद्यालय में मछली विभाग के संपर्क में आए। यहीं पर इनके जहन में मछली पालने का ख्याल आया। इसके बाद इन्होंने आगरा में जमीन लीज पर ली और काम शुरू कर दिया। ये बात 2016 की है। बाद में इन्हें मछली पालन से जुड़ी कई सरकारी योजनाओं के बारे में भी पता चला। इन्हीं योजनाओं का लाभ उठाकर इन्होंने सरकार से अनुदान हासिल किया। इनकी मेहनत जल्द ही रंग ले आई और अगले ही साल यानी 2017 में इन्हें आगरा मंडल में मछली उत्पादन का पुरस्कार मिल गया।
4: मछली पालन में पहले भारतीय वायुसेना की नौकरी 2003 में छोड़ने के बाद कई अन्य व्यवसाय किया करने के बाद सब में अच्छा हुआ। उसके बाद जब हम झारखंड में रांची में किसी का यूनिवर्सिटी में कार्यरत थे, वहां पे हम मत्स्य विभाग के, भारत सरकार और झारखंड सरकार के मत्स्य विभाग के टच में आए और वहां जो मछली पालन हमने देखा, तो वहां देखने के बाद जब हम अपने आप को फिर वापस आगरा में सेटल किए तो हमने आगरा में जमीन को लीज पे लेके मछली पालन 2016 में स्टार्ट किया। मछली पालन एक ऐसा व्यवसाय है जो अब भारत सरकार के जो किसानों की आय दोगुनी करने का जो प्लान है उसमें ये बहुत बड़ा सहायक सिद्ध होता साबित हो रहा है। मछली पालन के साथ साथ मैं किसानों से यह भी सुझाव दूंगा कि इसके साथ वो अपने डेयरी और पोल्ट्री को भी बढ़ावा दें जिससे कि उनका ये आय में वृद्धि हो। 2016 में जब मैं आगरा आया, आगरा मत्स्य विभाग से हमें भारतीय सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं के बारे संबंध में पता लगा, हमें काफी सहयोग मिला। उनके सहयोग के वजह से हमें कुछ गवर्नमेंट के द्वारा अनुदान भी दी गई। उसके बाद जब 2017 में जो हमने प्रोडक्शन करके दिया, उस प्रोडक्शन के आधार पे 2017 में हमें फर्स्ट प्राइज आगरा मंडल के लिए दिया गया था, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन के लिए मछली में। उसके बाद से 2020 में जब मैं कृषि विज्ञान केंद्र बिचपुरी के संपर्क में आया तो वहां हमें और अपने कामों में सहयोग बहुत ज्यादा मिला। उनके वहां जाने से हमें पशुपालन से संबंधित जानकारी भी काफी मिली और उन्होंने यह बताया कि यदि आप पशुपालन भी साथ में करते हैं तो मछलियों के जो फीड की समस्या है, जो हम मार्केट पे डिपेंड रहते हैं, उससे हमें हटके जो पशुपालन में गाय के गोबर होंगे, उस गोबर को भी हम डायरेक्ट मछली के फीड के रूप में प्लैंकटन क्रिएट करने के लिए उपयोग में ला सकते हैं। और उसके साथ साथ यदि उस गोबर का हम अगर वर्मी कंपोस्ट जैविक खाद बनाते हैं तो जैविक खाद को हम खेतों में यूज करते हैं और उसमें जो केचुआ का प्रोडक्शन होता है उस केचुआ को हम तालाब में भी डाल सकते हैं। इस तरह से 2020 के बाद कृषि विज्ञान केंद्र बिचपुरी के सहयोग से और उनकी मदद से या उनके गाइडलाइन के तहत हमारी ये जो मछली पालन का व्यवसाय है बढ़ता जा रहा है।
3: आनंद कुमार गिर और साहिवाल किस्म की देसी गायें पाल रही हैं और गोबर को मछलियों के आहार के रूप में इस्तेमाल कर रही हैं। अब इनका इरादा गोबर से कंपोस्ट बनाने का है। कंपोस्ट से दो फायदे होंगे, पहला तो ये कि खेतों के लिए प्राकृतिक खाद मिल जाएगी और दूसरे मछलियों के लिए पर्याप्त मात्रा में केंचुए। मछलियों को बढ़ावा के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है और केंचुए में काफी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है।
2: तो ये था हमारा आज का कृषि स्टार्टअप। इसी के साथ ही यहाँ वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे फार्मिंग इंडिया की। कहीं मत जाएगा, देखते रहे कृषि दर्शन।
0: आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से एक वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की।
1: इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है।
0: एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है।
5: लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो।
0: राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है।
6: ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರ್ತವಾದಂತಹ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ.
0: ರಾಜಸ್ಥಾನ ಕೆ ಲಾಭಾರ್ಥಿ ಶ್ರೀ ದಿನೇಶ್ ಭಟ್ಟರ್ ನೇ ಜೀರೆ ಕಿ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಲಗಾಕರ್ ಆಸ್ ಪಾಸ್ ಕೆ ಗ್ರಾಮೀಣೋ ಕೋ ಆತ್ಮ ನಿರ್ಭರತಾ ಪ್ರದಾನ್ ಕಿ ಹೈ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಕೆ ಲಾಭಾರ್ಥಿ ಶ್ರೀ ಅನೂಪ್ ಕುಮಾರ್ ಮೊಹತಾ ನೇ ವೇರ್ ಹೌಸ್ ಬನಾಕರ್ ಅನ್ನ ಭಂಡಾರಣ ಕೋ ಸುನಿಶ್ಚಿತ್ ಕಿಯಾ ಹೈ. आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं।

0: नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, मैं हूं आपका एआई एंकर क्रिश। आज हम बात कर रहे हैं बासमती धान की उन खास किस्मों की जो कम पानी में भी शानदार पैदावार देती हैं। मौजूदा समय में जल संकट और सिंचाई लागत बढ़ने के कारण किसानों के लिए ऐसी किस्मों को अपनाना न सिर्फ जरूरी हो गया है बल्कि लाभदायक भी। ऐसी ही कुछ प्रमुख किस्में हैं पूसा बासमती 1121, पूसा बासमती 1509, स्वर्ण शुष्क पूसा बासमती 1121, 140 से 145 दिनों में पककर तैयार होती है और इसकी उपज 40 से 45 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक होती है। इसका दाना लंबा पतला होता है और इसमें सुगंध भी बेहतरीन होती है। यह किस्म कम पानी वाले क्षेत्रों में भी अच्छा उत्पादन देती है। पूसा बासमती 1509 सबसे जल्दी पकने वाली किस्म है जो सिर्फ 120 दिनों में तैयार हो जाती है। इसकी खासियत है कि इसमें 3 से 4 बार कम सिंचाई की जरूरत होती है और यह 33% तक पानी बचाती है। वहीं स्वर्ण शुष्क 110 से 115 दिनों में पकती है और 40 से 45 क्विंटल तक उपज देती है। यह किस्म रोग प्रतिरोधक होती है और कम पानी में भी अच्छा विकास करती है। कुल मिलाकर इन सभी किस्मों की खासियत यही है कि ये कम सिंचाई में भी अच्छी उपज देती है और पानी की 3 से 4 बार तक बचत कराती है। इससे आपकी खेती की लागत घटेगी और मुनाफा बढ़ेगा। तो किसान भाइयों, इस बार बासमती की खेती में इन कम पानी वाली किस्मों को जरूर आजमाएं और जल संरक्षण के साथ अपनी आय भी बढ़ाएं। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद।
1: फार्मिंग इंडिया में सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे एआई एंकर कृषि की, जो कि खेती किसानी से संबंधित तमाम नई नई जानकारियां हमारे किसानों के लिए लेकर आते हैं। तो आइए रुक करते हैं एआई एंकर कृषि का।
0: नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, मैं हूं आपका एआई एंकर कृषि। आज हम बात कर रहे हैं एक बेहद जरूरी योजना की, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की। यह योजना किसानों को फसल खराब होने की स्थिति में आर्थिक सुरक्षा देती है। इस योजना के तहत यदि आपकी फसल को बाढ़, सूखा, ओलावृष्टि, कीट या बीमारी से नुकसान होता है तो सरकार आपको बीमा राशि देती है। यहां तक कि फसल कटाई के बाद भी अगर बारिश या तूफान से नुकसान होता है तो भी इसका कवरेज मिलता है। लेकिन इस योजना का लाभ पाने के लिए कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहले अपने बीमा के लिए जरूरी दस्तावेज तैयार रखें, जैसे आधार कार्ड, बैंक पासबुक की कॉपी और जमीन से जुड़ा दस्तावेज या खसरा नंबर। अगर आप ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं तो इन सभी को स्कैन करके अपलोड करना होगा, और अगर आप ऑफलाइन आवेदन कर रहे हैं तो अपने नजदीकी कृषि विभाग, बैंक या सीएससी केंद्र पर जाकर ये दस्तावेज जमा कर सकते हैं। ध्यान रखें, हर सीजन की एक तय सीमा होती है, उसी के अंदर ही आवेदन करें। तो किसान भाइयों, इस बार की फसल बीमा योजना का लाभ जरूर उठाएं, समय रहते आवेदन करें, दस्तावेज पूरे रखें और अपनी मेहनत की फसल को आर्थिक सुरक्षा दें। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद।
1: फार्मिंग इंडिया में आज हम आपको बताएंगे सॉइल हेल्थ कार्ड के लिए, जो कि हमारे किसानों के लिए काफी लाभकारी साबित हो रहा है। जी हाँ, इससे मिट्टी की गुणवत्ता के बारे में उन्हें उचित जानकारी मिल पाती है, जिससे वो सही अनुपात में ही पोषक तत्वों का इस्तेमाल करते हैं। इससे न सिर्फ लागत कम होती है बल्कि मिट्टी की सेहत भी बेहतर होती है। आइए जानते हैं कि कैसे हमारे किसान सॉइल हेल्थ कार्ड से जुड़ सकते हैं, इसका लाभ ले सकते हैं।
2: मिट्टी की कमजोर सेहत का असर फसलों की पैदावार और गुणवत्ता दोनों पर पड़ रहा है, साथ ही फसल लागत भी बढ़ती जा रही है। इसी समस्या के समाधान के लिए केंद्र सरकार ने 2015 में सॉइल हेल्थ कार्ड यानी मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू की थी। ये वही साल था जिसे अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष के रूप में मनाया गया। एक ऐसी योजना जो खेत की मिट्टी में कमजोरियों का भी पता लगाती है और बताती है कि मिट्टी में कौन से पोषक तत्व की कमी हो रही है। ज्यादा फसलें, उर्वरकों और कीटनाशकों का अंधाधुंध और असंतुलित इस्तेमाल मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को लगातार कमजोर कर रहा है। जानकारी की कमी से किसान खेतों में रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, भले ही उस उर्वरक की जरूरत हो या ना हो, किस खेत की मिट्टी को कौन सा तत्व चाहिए और कौन सा नहीं, ये सब जानने के लिए उसकी जांच जरूरी है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड यही काम करता है। ये योजना पूरे देश में लागू है और मिट्टी की जांच के लिए देश भर में ही मिट्टी जांच की प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। जांच के बाद मिट्टी के गुण दोष की सूची तैयार होती है और फिर किसान को ये बताया जाता है कि उन्हें खेत में कौन सा पोषक तत्व कितनी मात्रा में डालना चाहिए। परीक्षण से ये भी पता चल जाता है कि किसान को कौन सी फसल बोनी चाहिए। अगर किसान कोई और फसल बोना चाहे तो अधिकारी फिर उस फसल के हिसाब से पोषण का सुझाव देंगे। ये योजना सभी 14 करोड़ किसानों के लिए बिल्कुल मुफ्त है। फरवरी तक के आंकड़े से पता चलता है कि 2019-20 के दौरान मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और झारखंड के अलावा कई और राज्यों में 100% किसानों को ये योजना के तहत कवर कर लिया गया है। केरल में 90-95%, जबकि उत्तर प्रदेश और हरियाणा में 85-90% किसान इस योजना का हिस्सा हैं। अध्ययनों से पता चला है कि इस कार्ड की सलाह पर की गई खेत से लागत में 8-10% की बचत हुई है। इस कार्ड का एक पोर्टल बना हुआ है, किसान वहां से भी अपना कार्ड प्रिंट करवा सकते हैं। इस पोर्टल पर 21 भाषाओं में खेती के बारे में बहुत सी जानकारियां उपलब्ध हैं। किसानों के लाभ के लिए प्रशिक्षण, प्रदर्शनी और किसान मेलों का भी आयोजन किया जाता है। 2019-20 के दौरान आदर्श ग्राम विकास के नाम से एक परियोजना शुरू की गई है, जिसके तहत खेतों से मिट्टी के नमूने उठाए गए। परियोजना के तहत हर ब्लॉक से एक गांव लिया जाता है और वहां मिट्टी के नमूने जमा करके उनकी जांच होती है। इस तरह हर गांव में 1 हेक्टेयर रकबे की जमीन से नमूने लिए जाते हैं।
1: तो ये था हमारा आज का फार्मिंग इंडिया। हमें पूरी उम्मीद है कि आज का कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सुझाव है, कोई फीडबैक है या फिर कोई सवाल है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshan@gmail.com। पत्र लिखने के लिए हमारा पता नोट कर ले। हमारा पता है कृषिदर्शन, कमरा नंबर 58, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आपके ईमेल्स और आपके पत्रों का हमें इंतजार रहता है। आपके सुझाव हमें कृषि दर्शन को और बेहतर करने में मदद भी करते हैं। चलते चलते ये भी बता दें कि आप हमारे ये कार्यक्रम यानी कृषि दर्शन YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें और YouTube पर भी देखें कृषि दर्शन। कृषि दर्शन के एक नए अंक में और कुछ ऐसी नई जानकारियों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।

0: डॉक्टर पद्मा ग्योरमेद, एक उपचारक जिसने पुनर्जीवित किया एक खत्म होती विरासत को, हिमालय की खामोशी में 2500 साल पुरानी उपचार परंपरा दम तोड़ रही थी। सोवा रिग्पा, नाड़ी देखकर बीमारी समझना, दुर्लभ जड़ी बूटियों से इलाज करना। डॉक्टर पद्मा ग्योरमेद मानते थे कि कुछ विरासतों को बचाना बेहद जरूरी है। सोवा रिग्पा को बचाने का उनका सफर बड़ी ही कम उम्र में शुरू हुआ। वो अक्सर अपने पिता को दवाइयां बनाते और लोगों का इलाज करते हुए देखा करते थे। उन्होंने सोवा रिग्पा को नहीं चुना, सोवा रिग्पा ने उन्हें चुना। शुरुआत में वो इसे सीखना नहीं चाहते थे, लेकिन उनके पिता ने उन्हें समझाया। डॉक्टर ग्योरमेद ने अपना जीवन इस चिकित्सा पद्धति को बचाने में समर्पित किया। उन्होंने सोवा रिग्पा पर कई किताबें भी लिखी, लेकिन परंपरा को बचाना आसान नहीं होता।
1: शुरुआत में इस सिस्टम को दोबारा खड़ा करना बहुत मुश्किल था। अपने ही लोगों को समझाना कि ये भारत की विरासत है, काफी घुटन भरा था। छात्रों के लिए सोवा रिग्पा आखिरी विकल्प होता था। हमारी परंपरा दम तोड़ रही थी।
0: डॉक्टर ग्योरमेद ने कई सोवा रिग्पा चिकित्सकों को एक साथ लाया, अनेक सम्मेलन आयोजित किए और पुराने ग्रंथों को इकट्ठा किया। उनकी पहल पर माननीय प्रधानमंत्री के सहयोग से लेह में राष्ट्रीय सोवा रिग्पा संस्थान की स्थापना हुई। पर संघर्ष यही खत्म नहीं हुआ।
1: 2014 में मुझे भारत में चीनी दूतावास से एक प्रेस रिलीज मिली, जिसमें लिखा था कि वो इस चिकित्सा पद्धति को यूनेस्को में अपनी सांस्कृतिक विरासत के रूप में दर्ज कराएंगे।
0: डॉक्टर ग्योरमेद ने सभी संबंधित दस्तावेज इकट्ठा किए, फाइल बनाई और पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़े। इस लंबे सफर में कई लोगों ने डॉक्टर ग्योरमेद का साथ दिया।
1: मेरे परिवार ने बहुत त्याग किया है। 25 सालों में मैंने शायद ही कभी छुट्टी ली होगी। जब मेरे पिता स्वस्थ थे, वो मुझसे कहते थे, मेडिसिन बुद्धा तुम्हारे साथ है, अगर तुम अच्छा काम कर रहे हो तो एक दिन जरूर सफल होगे।
0: आज एक नई पीढ़ी इस प्राचीन ज्ञान की ओर लौट रही है। डॉक्टर ग्योरमेद की अथक मेहनत से सोवा रिग्पा सिर्फ बचा ही नहीं, उसे मिली एक नई जिंदगी। एक उपचारक के बेटे से भारत में सोवा रिग्पा सूत्रधार तक का सफर वाकई प्रेरणादायक है। डॉक्टर पद्मा ग्योरमेद, पद्मश्री 2026, कोटि कोटि नमस्कार।
2: सुर्खियों में ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए, परीक्षा संचालन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार के ठोस कदमों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार अदिति टंडन, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं मनोज पाठक।
3: नमस्कार, सुर्खियों में कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज पाठक और आज इस अंक में हम चर्चा करने वाले हैं राष्ट्रीय प्रतियोगी परीक्षाओं की पवित्रता बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम। ध्यान देने वाली बात है कि प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में स्पष्ट कहा कि इन परीक्षाओं की शुचिता बनाए रखने के लिए सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं और आने वाले दिनों में इसे अमली ढांचा पहनाने के लिए विधि सम्मत उपाय भी किए जाएंगे। यानी संभव है आने वाले दिनों में हम एक नया कानून इसकी शुचिता बनाए रखने के लिए अस्तित्व में आता हुआ दिखें। इस विषय पर चर्चा के लिए हमने आमंत्रित किया है स्टूडियो में राजनीतिक मामलों की वरिष्ठ विश्लेषक अदिति टंडन जी को। अदिति जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
4: धन्यवाद।
3: सबसे पहले तो हम यही समझना चाहेंगे कि जो राष्ट्रीय प्रतियोगी परीक्षाएं हुआ करती हैं, उसमें कई में हमने देखा कि कुछ लापरवाहियां रही या उचित कदमों में कहीं तालमेल का अभाव दिखा और प्रश्न पत्र लीक हो गए, इसका अंजाम अच्छा नहीं निकला और अंततः सरकार ने कड़े कदम उठाने के आश्वासन दिए हैं। किन रूप में देख रहे हैं इन्हें?
4: देखिए, जैसा कि आपने कहा खुद ही अपने रिमार्क्स में कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस हैं और इवन राज्य के स्तर पर जो एग्जामिनेशंस हैं, ऐसा नहीं है कि वो आज के लीक हो रहे हैं, सिस्टम में लीकेज ऑफ एग्जामिनेशन पेपर्स होते रहे हैं, बहुत सारे हुए हैं हर स्तर पर, राज्य के स्तर पर, केंद्र के स्तर पर हुए हैं, और सिस्टम्स को इम्प्रूव करने की जो कवायद है वो ये बहुत सालों से चल रही है। मैं खुद ही बहुत पहले एजुकेशन मिनिस्ट्री पर लिखा करती थी, तब से ये कोशिश चल रही है। मुझे आज भी याद है कि AIEEE का एग्जाम लीक हुआ था 2011 में, जिसके बाद सबसे पहले एक संजीदा मसौदा तैयार करने की बात हुई थी कि किस तरीके से आप अपने एग्जामिनेशन सिस्टम को फूल प्रूफ बना सकते हैं। तो ये जो चैलेंज है मनोज जी, हर सरकार के टाइम पर आया है और हर सरकार ने अपने तरीके से इसको प्लग करने की कोशिश की है, पर हम सब जानते हैं कि एक ऑर्गेनाइज्ड माफिया है जो इससे लाभान्वित होता है, और इंडिविजुअल्स हैं जो बहुत वेल एंट्रेंच हो चुके हैं सिस्टम में। जो लोग एजुकेशन को फॉलो कर रहे हैं, पेपर लीक के डायनामिक्स को समझते हैं, वो ये जानते हैं कि ये कोई मामूली अपराध नहीं है, इसके जो तार हैं बहुत दूर तक जुड़े हुए हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण घटना जो कल मैंने देखी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के 47 ऑफिशियल्स को सैक किया गया है, और ये भी वक्तव्य आया है सरकारी सोर्सेज के हवाले से कि उनमें से बहुत लोगों पे अब मुकदमा भी चलने वाला है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि ये जो लेटेस्ट नीट यूजी जो मेडिकल अंडर ग्रेजुएट MBBS एग्जाम का पेपर लीक हुआ था, May 3 को पेपर कैंसिल हुआ था, उसमें ऑब्वियस सी बात है कि ना सिर्फ ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल गैंग्स इन्वॉल्व हैं, अंदर के भी लोग कुछ इन्वॉल्व हैं। तो उसके लिए एक इस सिस्टम में ट्रस्ट को रीबिल्ड करने के लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम कल उठाया गया है। और आपने सही कहा कि प्रधानमंत्री ने दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें अपने वक्तव्य में कही हैं सिस्टम को फूल प्रूफ बनाने के लिए। एक तो उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए जाएंगे। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स ऐसा नहीं कि देश में है नहीं, लेकिन जो प्रधानमंत्री का मतलब है वो ये है कि डेडिकेटेड फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए जाएंगे जो सिर्फ इस लॉ के तहत जो केसेस दर्ज होंगे उनको डे टू डे बेसिस पर सुनने के बाद 3 महीने में उनका ट्रायल खत्म करेंगे, चार्जशीट फाइल होने के बाद। और हम और आप आज बात कर रहे हैं, बल्कि कुछ ही घंटों पहले जो बिल का मसौदा है, जो बिल प्रधानमंत्री ने जिक्र किया था अपने वक्तव्य में परसों रात को, जब उन्होंने एक वीडियो सेल्फी बना के देश के युवाओं से संपर्क करने की कोशिश की थी, उसमें उन्होंने कहा था कि हम कैबिनेट में एक बिल लेके आने वाले हैं, जो पुराना बिल 2024 में सरकार ने पास किया है उसी को इम्प्रूव किया गया है, और उसमें स्ट्रिंजेंट प्रोविजन्स किए गए हैं, और जो महत्वपूर्ण बात उसमें ऐड की गई है वो ये की गई है कि स्टैट्यूटरी बैकिंग दी जाएगी फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को, जो प्रधानमंत्री ने घोषित किया परसों रात को अपने संदेश में, और कल कैबिनेट ने उसको पास कर दिया। आज बिल का मसौदा भी हम सबके सामने आ गया है और पार्लियामेंट में ये बिल मंडे को पेश भी होने जा रहा है।
3: यहाँ पर थोड़ा हम श्रोताओं के हित में समझना चाहेंगे कि ये जो मसौदा बिल आया है उसमें क्या सब बातें रखी गई हैं और कैसे ये आने वाले दिनों में सुधार के कारक बनकर सामने आएंगे।
4: इस बिल का जो नाम है वो है पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट 2024। मैंने जैसे कहा कि ये नया बिल नहीं है, 2024 का बिल है, उसमें संशोधन लाएगी सरकार। संशोधन के माध्यम से नई पनिशमेंट्स घोषित करेगी और जो नए मसौदा तैयार किया है उसको स्टैट्यूटरी बैकिंग देगी। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, जो मुझे इम्पोर्टेंट लगती है, वो ये है कि पनिशमेंट बढ़ा दी गई है। जो पुराना बिल था 2024 का, उसमें ये कहा गया था कि जब कोई इंडिविजुअल पेपर लीक के मामले में लिप्त पाया जाएगा तो उसको पनिशमेंट दी जाएगी 3 से 5 वर्ष की, और उस पे जो फाइन होगा वो 10 लाख का होगा। अब उसको बदल के कहा गया है कि मिनिमम पनिशमेंट 5 साल की होगी और जो फाइन होगा वो 10 लाख से बढ़कर 1 करोड़ तक ले गए हैं। और सिमिलरली अगर यही क्राइम ऑर्गेनाइज तरीके से कोई कर रहा है, ऑर्गेनाइज्ड नेक्सस इन्वॉल्व है, तो उसके लिए सजा के प्रावधान और भी कड़े किए गए हैं। उस केस में कहा गया है कि मिनिमम पनिशमेंट अब 7 साल होगी और मैक्सिमम जो फाइन होगा वो 10 करोड़ होगा। तो ये मेन इस बिल की प्रावधान है। ये तो हो गया कि आपने पनिशमेंट बढ़ा दी, लेकिन सिर्फ पनिशमेंट बढ़ाने से कुछ नहीं होता। हमें पता है कि केसेस लंबित रहते हैं लंबे लंबे समय तक। उसको ठीक करने के लिए इस बिल में एक इम्पॉर्टेंट प्रावधान जो मुझे लगता है वो ये है कि तमाम स्टेट गवर्नमेंट्स और यूनियन टेरिटरीज को ये पावर्स दे दी गई हैं कि वो किसी भी कोर्ट ऑफ सेशंस को स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट घोषित कर सकते हैं इस कानून के तहत दर्ज मामलों को निपटाने के लिए। और ये भी कहा गया है कि जितनी भी प्रोसीडिंग्स इन मामलों में होंगी वो हर दिन होंगी, डे टू डे बेसिस पर चलेगा ट्रायल, और ट्रायल 3 महीने में कंप्लीट होगा फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ चार्जशीट। तीसरा जो इम्पोर्टेंट चीज है, उन्होंने ये भी कहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को भी एम्पावर कर दिया गया है कि जब जब ऐसा कोई बड़ा मामला आए नजर में तो इमीडिएटली स्पेशल टास्क फोर्स का गठन करके उस एसटीएफ को ये मैंडेट होगा कि आपने 2 महीने में इन्वेस्टिगेशन पूरी करनी है। अभी क्या हो रहा है ना, सिस्टम में मिसट्रस्ट इसलिए पैदा हो रहा है क्योंकि लंबित बहुत हैं केस। आप कानून लाकर सिस्टम को परिवर्तित नहीं कर सकते, आपको कानून को अमली जामा पहनाने के लिए जो सिस्टम्स चाहिए वो भी क्रिएट करने पड़ेंगे। मेरे हिसाब से बड़ा चैलेंज जो सरकार के सामने आएगा वो फाइनेंसिस का आएगा।
3: अच्छी बात कही है कि पिछले कानून से किस तरह ये कानून बदला हुआ होगा, अधिक सख्त होगा। यहां पर सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि एक मामला शुरू हुआ और आमतौर पर ये मामले दम तोड़ देते जब पुख्ता सबूत नहीं रखे जाते, वहां पर कैसे कह लें कि उस प्रक्रिया का ध्यान रखा जाएगा, यानी अदालतें बन गई। जैसे अभी यदि हाल का एक मामला लें तो उसमें जिस व्यक्ति को आरोपी ठहराया गया उसके विरुद्ध फिलहाल कोई सबूत नहीं मिलने से वह छूट गया, तो वहां पर क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए?
4: इसमें मुझे लगता है कि प्रोसिक्यूशन की बहुत बड़ी भूमिका है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो अपॉइंट होता है ऐसे केसेस में वो कितना लायक है, वो कितने अच्छी तरीके से आर्ग्यू कर सकता है मैटर, और जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन है वो कितनी क्विकली फॉरेंसिक एविडेंस गैदर कर सकती है, कितनी जल्दी डिजिटल इम्प्रिंट्स को देख सकती है, क्योंकि लीकेजेस तो अब डिजिटल माध्यम से हो रहे हैं। हम सब जानते हैं कि सारा का सारा एग्जाम ऑनलाइन है, तो उससे क्या है, साइबर सिक्योरिटी चैलेंज है। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को यह सोचना होगा कि जो स्पेशल टास्क फोर्स गठित किया जाएगा ऐसे क्राइम्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, उसमें आपको एक्सपर्ट्स भी कोऑप्ट करने पड़ेंगे। अब ये जो वक्त है, ये जो जमाना है, उसमें कन्वेंशनल पुलिसिंग मेथड से आप क्रिमिनल गैंग्स को नहीं हैंडल कर सकते, आपको बहुत हाई लेवल की एक्सपर्टीज हर सेक्टर में चाहिए।
3: यहां पर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि इस दिशा में एनटीए क्या कर रही है और किस रूप में अपने आप को पेशेवर बनाने के लिए पेशेवर लोगों की सलाह लेने की योजना बना रही है।
4: इनफैक्ट परसों हमने देखा कि सरकार ने एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से नए पोस्ट्स घोषित किए हैं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में। उन्होंने ये कहा है कि नियुक्ति के लिए अब 4 जनरल मैनेजर्स बुलाए जाएंगे। अभी क्या है, अभी जो स्ट्रक्चर है बहुत सेंट्रलाइज्ड है, जैसे सबसे ऊपर एक चेयरमैन है, उसके नीचे सीईओ है, तो लेकिन अब डिसेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर बनाने की बात हो रही है। इसके साथ ही संघ लोक सेवा आयोग के जो प्रतिभा सेतु पोर्टल के माध्यम से 16 युवा पेशेवरों को भी भर्ती में शामिल किया जाएगा, उनकी भर्ती की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। एनटीए ने एक बयान में ये भी कहा है कि ये उपाय एजेंसी के जो संस्थागत पुनर्निर्माण की दिशा है उसके लिए हेल्प करेंगे।
3: यदि श्रोताओं, कुल मिलाकर सरकार हर स्तर पर प्रयास कर रही है कि हमारी जो राष्ट्रीय परीक्षाएं हैं या राज्य स्तर की परीक्षाएं हैं उन परीक्षाओं की शुचिता सुनिश्चित की जाए, और इसके लिए जिस तरह तकनीक बदल रही है, तकनीक हावी हो रही है, उसके निदान के लिए जो हमारा वैधानिक ढांचा है उसमें वैसे ही दक्ष पेशेवरों की नियुक्ति की जाए। यहां पर अदिति जी आपने कहा कि इसे वैधानिक स्वरूप दिया जाएगा, ढांचा तैयार किया जाएगा, किस रूप में परिवर्तन होता देख रही हैं आप वहां उस स्तर पर?
4: देखिए, परिवर्तन कितना हो पाएगा वो वक्त बताएगा, लेकिन जो इम्पोर्टेंट और पॉजिटिव सिग्नल इस वक्त है वो ये है कि परिवर्तन की दिशा में सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। ये जो लड़ाई है मनोज जी, ये बहुत लंबी है, और ये जो पेपर लीक का मामला है, ये सिर्फ पेपर लीक का मामला चीटिंग से लिंक करके नहीं आप देख सकते। इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है स्टूडेंट्स के माइंड पे, बिट्रेयल ऑफ ट्रस्ट होता है। आप सब जानते हैं कि मिडिल क्लासेस बच्चा पैदा होते ही पैसा जमा करना शुरू कर देती हैं कि देश में अच्छे एजुकेशन में या अच्छे कॉलेज में अगर बच्चे की भर्ती करानी है तो उसे अच्छे स्कूल में भेजना है, उसकी एक कॉस्ट है, अच्छी कोचिंग दिलानी है, वो कितनी एक्सपेंसिव है हम सब जानते हैं। उसके बाद कोई गारंटी नहीं है कि बच्चे को सीट मिलेगी। यही वजह होती है कि बच्चों की इमोशनल और साइकोलॉजिकल वल्नरेबिलिटी पर ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ग्रुप्स फीड करते हैं।
3: थोड़ा इसे और विस्तार देकर बताएं कि सिस्टम में बदलाव किस तरह का और उसका इम्प्लीमेंटेशन किस रूप में?
4: मेरा जो व्यक्तिगत मानना है वो ये है कि एग्जामिनेशन सिस्टम तब फूल प्रूफ हो सकता है जब उसमें ग्रेडिंग हो। ये प्रामाणिक है। आप देखिए कौन कौन से एग्जाम्स, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हमारे देश में हैं जिनमें या तो आप बिल्कुल नहीं सुनेंगे कि लीक हुए हैं या बहुत नेग्लिजिबल हुए हैं। जैसे आप यूपीएससी का एग्जाम देखिए, वो कभी क्यों नहीं लीक होता।
3: बिल्कुल,
4: आप उस मसौदे को समझिए,
3: आर्म फोर्स हैं उनके
4: आर्म फोर्सेस के लीक नहीं होते। आप और भी समझिए, जब से आपने आईआईटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन को ग्रेडेड बना दिया है, जैसे पहले क्या होता था कि एक ही एंट्रेंस एग्जाम होता था AIEEE, मुझे आज भी याद है 2011 में एक बहुत बड़ा पेपर लीक हुआ था जिससे बहुत सारे बच्चे बहुत त्रस्त हुए थे। उसके बाद ये सिस्टम शुरू हुआ कि किस तरीके से एग्जामिनेशन सिस्टम को इम्प्रूव किया जाए। आप जानते हैं पहले JEE मेन कंडक्ट होता है, उसमें एक पर्टिकुलर लेवल के बच्चे जो टॉप 25% आते हैं उनको मौका मिलता है IIT में जाने का। उससे होता क्या है, जब आप ग्रेडेड एग्जामिनेशन सिस्टम बनाते हैं कॉम्पिटिशन के लेवल पे, आप डिसइंसेंटिवाइज करते हैं कि बच्चे पैसा देके पेपर खरीदें। क्यों? क्योंकि पहले लेवल पर आप निकल जाएंगे, कोई गारंटी नहीं है। जब कोई गारंटी नहीं है तो कोई इंसेंटिव नहीं है पैसा देने का, तो आप डिमांड और सप्लाई के साइकिल को तोड़ सकते हैं ग्रेडेड सिस्टम में। सिमिलरली यूपीएससी में 3 लेवल्स हैं। सबसे पहले आप जानते हैं कि प्रिलिमिनरीज होते हैं, उसके बाद मेन्स होते हैं, उसके बाद इंटरव्यू होता है। किस किस लेवल पर कोई लीकेज के लिए पैसे देगा? सो ये एक सिंपल इजीली डूएबल एक फॉर्मूला है। जो AIPMT का एग्जाम भी पहले ग्रेडेड होता था, उस वक्त लीकेजेस मुझे लगता है कम होते थे। जब से आपने सिंगल एग्जाम बनाया है, ये जो NEET UG है, आपने जब से इसको सिंगल एग्जाम बनाया, 22 लाख बच्चे बैठते हैं। 500 सिटीज में होता है, जिसको कहते हैं बहुत बड़े स्केल पर ये एग्जाम होता है। 22 लाख बच्चों को एक साथ टेस्ट करना और उनको एक ही विंडो में MBBS की सीट देना, थोड़ा सा मुझे लगता है कि अगर हम ग्रेडेड एग्जाम करेंगे NEET UG को, जैसा कि पहले होता था 2 लेवल्स पर, पहले स्क्रीनिंग और फिर सिलेक्शन, तो शायद ये लीकेजेस का इंटेंसिटी कम होगा। ये प्रामाणिकता से मैं इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि मैंने ऑब्जर्व किया है।
3: अच्छा, कुछ राज्यों की ओर से इस नीट परीक्षा प्रणाली को ही लेकर विरोध जताए जा रहे हैं, उस दिशा में कुछ सुधार की या एकरूपता लाने की कोई भूमिका बनती नजर आ रही है आपको?
4: बिल्कुल, देखिए तमिलनाडु ने शुरुआत से NEET UG का विरोध किया है। उनका ये कहना था कि 12वीं कक्षा के एग्जामिनेशन के बेसिस पे हमारी स्टेट में एक MBBS की एडमिशन होती थी और वो चलती रहनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है आज की डेट में अगर आप कोई भी एग्जामिनेशन मॉडल स्टडी करेंगे, उसमें JEE मेन और JEE एडवांस्ड का मॉडल बहुत अच्छा है। IITs के टॉप डायरेक्टर्स ने मिलकर उसे बनाया है, उसमें बहुत लेवल हुई थी स्टेक होल्डर कंसल्टेशन की, और उसमें 12वीं के रिजल्ट्स का भी एक पोर्शन काउंट होता है। फिर वही मैं कहूंगी कि NEET UG बहुत बार लीक हुआ है, 3 बार तो रिसेंट हिस्ट्री में हुआ है। तमाम मॉडल्स को स्टडी करने के बाद आप ये भी देखिए कि क्या कहीं NEET UG के स्ट्रक्चर को ही चेंज करने की जरूरत तो नहीं है।
3: यानी श्रोताओं, एक आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता परीक्षा प्रणाली को है, ऐसा लग रहा। बस यहीं पर हम श्रोताओं आपकी ओर से अदिति जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे।
4: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे परीक्षा संचालन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार के ठोस कदमों पर चर्चा। इसमें भाग ले रही थी वरिष्ठ पत्रकार अदिति टंडन। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे मनोज पाठक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
5: सुर्खियों में
6: रीड इंडिया माने रूरल एजुकेशन एंड डेवलपमेंट, ग्रामीण शिक्षा एवं विकास। हमारा काम तो लाइब्रेरीज बनाना है और आज के समय में जो चर्चा हो रही है, लाइब्रेरीज खाली किताब पढ़ने के लिए नहीं है। लाइब्रेरीज एक ऐसी जगह है जहां हम बहुत कुछ अपने लिए भी कर सकते हैं और समुदाय के लिए भी कर सकते हैं। माने पढ़ें तो हम अपने बच्चों को भी पढ़ाएं, हम बड़ों को भी पढ़ाएं, हम छोटे बच्चों के साथ भी एक्टिविटीज करें कि किताब क्या चीज है और किताब उनके जीवन में क्या महत्व रखती है। पर ड्यूरिंग द जर्नी इस समय के साथ साथ हमने ये सोचा कि हमें महिलाओं के लिए भी कुछ कार्यक्रम करने चाहिए। अगर महिला अपने आप को निखार सकती है, अपने आप को सक्षम बना सकती है और जिम्मेदारी अपने शोल्डर्स पे ले सकती है कि अपने बच्चों का विकास कैसे करना है, वो भी रीड इंडिया अपने कम्युनिटी लाइब्रेरीज और रिसोर्स सेंटर्स में करती है। हमने औरतों के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे कार्यक्रम किए, जैसे सिलाई सिखाना, ब्यूटी पार्लर की ट्रेनिंग देना और भी बहुत सारी ऐसी ट्रेनिंग्स हैं जो हम अपने सेंटर्स में करते हैं। पर उसका जो आउटकम है, जो हम समझ रहे हैं कि एक महिला इतनी सक्षम हो जाए कि वो अपने परिवार की भी सोच बदल सके, अपनी भी सोच बदल सके और अपने बच्चों को एक मकाम तक लेके जा सके। इसी दौरान हमने पिछले 3 सालों में उनको बहुत सारी ऐसी स्किल्स दी जिससे वो अपना बिजनेस भी शुरू कर सकती हैं, और हम उनको रेगुलरली ट्रेस भी करते हैं, ट्रेस इन द सेंस कि हम उनसे बातचीत भी करते हैं कि वो अपने बिजनेस के बारे में क्या सोच रही हैं, अपना बिजनेस कैसे आगे लेके जा सकती हैं। और इसी दौरान हमने ये सोचा कि हम क्यों इतने बड़े बड़े BBA और MBA की बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, तो हम इतने पैसे कहाँ से लाएं कि हम इन महिलाओं को बोलें कि ये कोर्सेज ज्वाइन कर लो। तो रीट इंडिया ने क्या किया, अपने प्रपोजल में ये सारे एपिसोड्स लिख दिए। मैं इनको एपिसोड्स ही कहूंगी, मॉड्यूल्स नहीं कहूंगी, क्योंकि ये एपिसोड्स उनके जीवन में बहुत सा बदलाव ला सकते हैं, उनको एक उद्योग क्या है उसके बारे में ज्ञान दे सकते हैं, और उद्योग करने के लिए उनको क्या क्या सीखना है वो भी ट्रेनिंग्स हम देने के लिए तैयार हैं। और हम महिलाओं को बोलते हैं, यंग लड़कियों को बोलते हैं जो BA कर चुकी हैं या 12वीं पास कर चुकी हैं, वो अपना नाम आके रीड इंडिया की लाइब्रेरी एंड रिसोर्स सेंटर में लिखवाएं, और हम बिल्कुल तैयार हैं उनको इनके ऊपर ट्रेनिंग देने के लिए। और आगे आने वाले समय में अगर नौकरी नहीं भी मिलती है, तो अगर वो अपना एक लघु उद्योग शुरू कर लेती है और अपने परिवार की देखभाल अच्छे ढंग से कर लेती है और अपने हस्बैंड के साथ, अपने परिवार के साथ कंधे से कंधा मिला के अपने परिवार को आगे लेके जाती है, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सकती है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज उनकी जिंदगी में क्या हो सकती है। तो श्रोताओं, मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि आप रीड इंडिया के मिशन को समझें, रीड इंडिया की लाइब्रेरी के बारे में जानें, और जितना भी आप अपने आप को सक्षम कर सकते हैं, रीड इंडिया के सेंटर पे आके अपना नाम लिखवाएं। धन्यवाद।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो। रीड इंडिया समुदाय के सहयोग के द्वारा समुदाय के विकास के लिए कार्य करता है। रीड इंडिया ग्रामीण समुदायों में स्थायी सामाजिक परिवर्तन हेतु शिक्षा, उद्यम और सामाजिक विकास के क्षेत्र में कार्य करता है। आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो।
1: सन 1972, 5 जून से 16 जून, स्टॉकहोम, स्वीडन, विश्व पर्यावरण सम्मेलन, 119 देश, एक ही पृथ्वी का सिद्धांत, और फिर जन्म हुआ विश्व पर्यावरण दिवस का 5 जून 1973, पहला विश्व पर्यावरण दिवस।

लेकिन अब बढ़ रहा है धरती का तापमान, कट रहे हैं घने जंगल, लुप्त तो हो रही है प्रजातियां, प्रदूषित हो रहा है पर्यावरण, जल रही है धरती, तप रहा है आसमान और पिघल रहे हैं हिमखंड। जी हाँ, यदि ऐसा ही होता रहा तो एक दिन न रहेंगी प्रजातियां, न बचेंगे जंगल, न होगी हरियाली और न होगा जल और न ही रहेगा जीवन, क्योंकि धरती का तापमान लगातार बढ़ रहा है। पर्यावरण में बढ़ता प्रदूषण कैसे कर रहा है आपको प्रभावित, आइए हम बताते हैं। दरअसल पृथ्वी के सभी प्राणी एक दूसरे पर निर्भर हैं तथा विश्व का प्रत्येक पदार्थ एक दूसरे से प्रभावित होता है। इसीलिए और भी आवश्यक हो जाता है कि पृथ्वी की इन सभी वस्तुओं के बीच आवश्यक संतुलन को बनाए रखा जाए। लेकिन ऐसा नहीं होने की स्थिति में पर्यावरण प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। नतीजतन मानव और अन्य जीवों के पास न तो लेने के लिए शुद्ध प्राणवायु है, न ही स्वच्छ जल और न ही वो मृदा जिस पर उगे अनाज से मनुष्य अपना पोषण कर सके। और इसके साथ ही बढ़ रहा है मानव जीवन के प्रदूषित होने का खतरा। इन सब के उपायों के तौर पर हम सभी को अपने स्तर पर पर्यावरण का संरक्षण करना होगा ताकि प्रकृति शुद्ध और हम स्वस्थ रह सकें। आइए जानते हैं कैसे। अधिक से अधिक पौधारोपण करें, कचरा व गंदगी न होने दें, जल व्यर्थ न बहाएं, न ही प्रदूषित करें, अनावश्यक बिजली न जलाएं, पॉलिथीन का उपयोग न करें, वर्षा के जल का संरक्षण करें और ध्वनि प्रदूषण न करें।

0: मैं या तो तिरंगे को लहरा कर आऊंगा या फिर तिरंगे में लिपटा हुआ आऊंगा, पर मैं आऊंगा जरूर। इन बातों को सच किया करगिल युद्ध के हीरो कैप्टन विक्रम बत्रा ने। देश की सरहदों की रक्षा करने वाले और अपनी जान कुर्बान करने वाले कुछ अलग ही मिट्टी के बने होते हैं, ऐसे ही सपूत थे विक्रम बत्रा। पूरे परिवार में दूर दूर तक कोई सेना में नहीं था, पर अपने इरादों की बदौलत उन्होंने वर्दी चुनी। 1996 में भारतीय सेना एकेडमी देहरादून में प्रवेश लिया और 1997 में 13 जम्मू कश्मीर राइफल्स में लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्त हुए। उन्होंने सैनिक जीवन में कमांडो ट्रेनिंग भी ली थी। 1999 में हुए करगिल युद्ध में उनकी टुकड़ी को श्रीनगर लेह मार्ग के ठीक ऊपर सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट 5140 को पाक सेना से मुक्त करवाने की जिम्मेदारी मिली, जिसे उन्होंने बखूबी निभाया। शानदार जज्बे ने विक्रम बत्रा को शेरशाह बना दिया। इसके बाद उनका अभियान 4875 चोटी को कब्जे में लेने का था। मिशन पूरा होने को था, तभी एक विस्फोटक से अपने साथी को बचाने के लिए वो आगे बढ़े और एक गोली शेर के सीने में लगी, पर जख्मी शेर ने हार नहीं मानी और एक एक दुश्मन को मौत के घाट उतार दिया। पॉइंट 4875 पर तिरंगा लहराया, पर उस पल को जीने के लिए वहां विक्रम बत्रा नहीं थे। इस अभियान में वो शहीद हो गए और उनके इस पराक्रम के लिए उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।
1: गिरधारी लाल बत्रा, फादर ऑफ कैप्टन विक्रम बत्रा, रिसीविंग परमवीर चक्र।
2: डीडी किसान, बदलते भारत की शान।
3: एलोवेरा, जिसे हम घृत कुमारी भी कहते हैं, इसकी खेती आजकल बहुत ज्यादा प्रचलित हो रही है क्योंकि इसकी मांग लगातार बढ़ती जा रही है। इसके गुणों की अब पहचान हो गई है, जिसके चलते अब इसकी मांग में लगातार हम बढ़ोतरी होते हुए देख रहे हैं, जिसका फायदा हमारे किसान भी उठा रहे हैं इसकी खेती को अपनाकर। जी हाँ, अगर आप भी करना चाहते हैं एलोवेरा की खेती, तो क्या है इसका सही तरीका, आइए आपको बताएं विज्ञान और किसान सेगमेंट के माध्यम से।
4: एलोवेरा को ग्वार पाठा भी कहते हैं। इसे सिंचित या फिर असिंचित दोनों अवस्थाओं में उगाया जा सकता है। इसका जेल यानी लसलसा गुदा ही काम का है। इसी से जूस और दूसरे उत्पादन बनते हैं। समय पर सिंचाई करेंगे तो ज्यादा जेल मिलेगा। एलोवेरा को बरसात में लगाया जाता है और इसके कंदों को ही बोया जाता है। पौधों और कतारों के बीच एक एक मीटर का फासला रखते हैं। इस तरह एक हेक्टेयर में करीब 40,000 पौधे रोपे जा सकते हैं। कमाल की बात यह है कि एक बार बुआई के बाद 4-5 साल तक पत्तियां मिलती रहती हैं। सुरेंद्र काकड़े महाराष्ट्र में सतारा जिले के रहने वाले हैं और मैकेनिकल इंजीनियर हैं। पढ़ाई के बाद उन्होंने कंसल्टेंसी एजेंसी खोली, लेकिन बाद में एलोवेरा के गुणों से प्रभावित होकर खेती में आ गए। सुरेंद्र ने ऐसे ही खेती नहीं शुरू की, बल्कि पहले पूरी रिसर्च की और जब पूरा कारोबार समझने के बाद ही काम शुरू किया। बाद में उन्होंने प्रसंस्करण भी शुरू किया। हालांकि शुरू के 6 महीने उन्हें खास फायदा नहीं हुआ, लेकिन उन्हें विश्वास था कि एक न एक दिन कामयाबी जरूर मिलेगी और ऐसा ही हुआ। आज उनकी एक प्रोसेसिंग यूनिट है, इसमें वो अपनी फसल का तो प्रसंस्करण कर ही रहे हैं, दूसरे किसानों से भी एलोवेरा खरीद कर नए नए उत्पाद बना रहे हैं। प्रसंस्करण के दौरान सबसे पहले पोटेशियम में डालकर गर्म पानी से धोते हैं, फिर टुकड़े करेंगे, टुकड़ों को गर्म पानी में डालते हैं और कुछ समय बाद उनसे जेल निकालते हैं। जूस निकालने के लिए जेल को ब्लेंडिंग मशीन में डालेंगे, फिर जूस को 70 डिग्री तापमान पर गर्म करेंगे। छानने के बाद इसमें प्रिजर्वेटिव मिलाएंगे और ठंडा करने के लिए फ्रीजर में रख देंगे। इस तरह से ये उत्पाद बनकर तैयार हो जाता है। अब इसका इस्तेमाल सौंदर्य और दवा बनाने में किया जाएगा। सिर्फ फसल उगा लेना और प्रसंस्करण के जरिए उत्पाद तैयार कर लेना ही काफी नहीं था, बल्कि ज्यादा कमाई के लिए अच्छी मार्केटिंग भी बहुत जरूरी है। सुरेंद्र काकड़े ने हर पहलू का बारीकी से जायजा लिया और बेहतर मार्केटिंग से कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। फसल लगाने के बाद किसान आमतौर पर एक बार कटाई कर लेते हैं और बात खत्म है, लेकिन एलोवेरा को अगर एक बार लगा लिया तो साल भर फसल मिलेगी और हर महीने कमाई होगी।

0: वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को सुनीता सिंह का नमस्कार।
1: ये वतन का राग।
0: किसी झील के ठहरे पानी में जो शांति होती है वो उनकी आंखों में थी। मुस्कुरा कर जागती एक सुबह में जो सादगी होती है वो उनके चेहरे पर थी। दूर तक फैले आसमान में जो धीरज होता है वो उनकी आत्मा में था। उनकी शालीनता अपनों को ही नहीं परायों को भी विमुग्ध कर देती थी। 5 फुट का छोटा सा कद और मात्र 39 किलो का वजन लिए चट्टान सा हौसला रखने वाला ये महान व्यक्तित्व था देश के दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री का, जिनके सामने बड़ी से बड़ी मुश्किलें भी मुश्किल में पड़ जाती थीं। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर सन 1904 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी से 7 मील दूर एक छोटे से रेलवे टाउन मुगलसराय में हुआ था। उनके पिता मुंशी शारदा प्रसाद श्रीवास्तव प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक थे। मात्र 18 महीने की अल्पायु में ही उनके सर से पिता का साया उठ गया। माँ राम दुलारी बच्चों के साथ अपने पिता के घर मिर्जापुर जा बसीं। अपने ननिहाल में रहते हुए बालक लाल बहादुर ने प्राथमिक शिक्षा ग्रहण की। कुछ समय के बाद उन्हें वाराणसी में चाचा के साथ रहने के लिए भेज दिया गया ताकि वे उच्च विद्यालय की शिक्षा प्राप्त कर सकें। वे कई मील की दूरी नंगे पांव तय करके विद्यालय जाते, भीषण गर्मी, बरसात और ठंड में भी। कुछ बड़े होने के साथ ही आजादी के लिए देश में हो रहे संघर्ष में उनकी रुचि बढ़ने लगी। भारत में ब्रिटिश शासन का समर्थन कर रहे भारतीय राजाओं की महात्मा गांधी द्वारा की गई निंदा से वे अत्यंत प्रभावित हुए। शास्त्री जी जब केवल 11 वर्ष के थे तब से ही उन्होंने

उन्होंने वो कुर्ते वापस मांगे और कहा, अब नवंबर आएगा, जाड़े के दिन होंगे, तब ये कपड़े काम आ जाएंगे। ऊपर से कोट पहन लूंगा तो ये फटे हैं, ये दिखाई नहीं देगा। उन कुर्तों को सहेजते हुए वो बोले, ये खादी के कपड़े हैं, बड़ी मेहनत से बनाए हैं बीनने वालों ने, इसका एक एक सूत काम आना चाहिए।

गांधी जी के विचारों का उन पर बहुत गहरा असर था। काशी विद्यापीठ से शास्त्री की उपाधि मिलने के बाद उन्होंने अपने नाम के साथ चला आ रहा जाति सूचक शब्द हमेशा के लिए हटा दिया और अपने नाम के आगे शास्त्री लगा लिया। संस्कृत भाषा में स्नातक स्तर की शिक्षा समाप्त करने के बाद वे भारत सेवक संघ से जुड़ गए और देश सेवा का व्रत लेते हुए यहीं से अपने राजनैतिक जीवन की शुरुआत की। स्वाधीनता संग्राम के सभी महत्वपूर्ण कार्यक्रमों और आंदोलनों में उनकी सक्रिय भागीदारी रही और इसके परिणाम स्वरूप उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। 1921 के असहयोग आंदोलन के समय उनकी उम्र मात्र 16 वर्ष थी। परिवार के लोग नहीं चाहते थे कि वो उसमें शामिल हों, लेकिन शास्त्री जी अपना मन बना चुके थे और उनके संकल्प चट्टान की तरह दृढ़ हुआ करते थे। 1930 में महात्मा गांधी ने नमक कानून को तोड़ते हुए जब दांडी यात्रा की तो इस प्रतीकात्मक संदेश ने पूरे देश में एक तरह की क्रांति ला दी। लाल बहादुर शास्त्री भी विह्वल ऊर्जा के साथ इस संघर्ष में शामिल हुए। उन्होंने कई विद्रोही अभियानों का नेतृत्व किया। 1942 के दिन थे। भारत छोड़ो आंदोलन जोरों पर था। देश के बड़े बड़े नेता जेलों में थे। शास्त्री जी आंदोलन को चलाने के उद्देश्य से अज्ञात स्थान पर जा बैठे थे। सरकार शास्त्री जी की गिरफ्तारी करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही थी, पर शास्त्री जी का कहीं भी पता नहीं लग रहा था। आखिर एक दिन अचानक इलाहाबाद में ये खबर बिजली की तरह फैल गई कि शास्त्री जी चौक की सार्वजनिक सभा में उपस्थित होंगे और आंदोलन की रूपरेखा पर प्रकाश डालेंगे। पुलिस ने चारों ओर से नाकेबंदी कर दी। सरकार का प्रयास था कि वो सभा में उपस्थित होने से पहले ही गिरफ्तार कर लिए जाएं, पर शास्त्री जी को सभा से पूर्व बंदी बनाना सरल काम नहीं था। शास्त्री जी सभा में पहुंचे और ओजस्वी शब्दों में गांधी जी और नेहरू जी का संदेश सुनाने लगे। कुछ ही क्षण बीते थे कि वे गिरफ्तार कर लिए गए। इनकलाब जिंदाबाद और शास्त्री जी जिंदाबाद के नारों से आकाश गूंज उठा। करो या मरो गांधी जी के इस नारे को शास्त्री जी ने बड़ी चतुराई से मरो नहीं मारो में बदलकर अप्रत्याशित रूप से क्रांति की दावानल को पूरे देश में प्रचंड रूप दे दिया था।

स्वाधीनता संघर्ष के दौरान शास्त्री जी ने कुल 9 वर्ष का समय ब्रिटिश जेलों में गुजारा। इस दौरान लाला लाजपत राय ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी, जो गरीब पृष्ठभूमि से आने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को आर्थिक सहायता देती थी। सोसाइटी की ओर से 50 रूपये प्रतिमाह शास्त्री जी को भी मिलते थे। एक बार जेल से शास्त्री जी ने पत्र लिखकर पत्नी से पूछा कि 50 रूपये समय से तो मिल रहे हैं ना, और क्या ये पर्याप्त हैं? ललिता शास्त्री का जवाब आया कि घर का खर्च तो 40 रूपये में ही चल जाता है, वो 10 रूपये बचा लेती हैं। शास्त्री जी ने तुरंत सोसाइटी को पत्र लिखकर कहा कि उनकी आर्थिक सहायता घटाकर 40 रूपये कर दी जाए, 10 रूपये किसी और जरूरतमंद को दे दिए जाएं। उच्च आदर्शों से भरा उनका ये आचरण आजीवन बना रहा। शास्त्री जी ने न केवल आजादी के पहले बल्कि आजादी के बाद भी भारत के निर्माण में अपना योगदान दिया। स्वाधीनता के बाद उन्हें उत्तर प्रदेश के संसदीय सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। गोविंद वल्लभ पंत के मंत्रिमंडल में उन्हें पुलिस और परिवहन मंत्रालय सौंपा गया। परिवहन मंत्री रहते हुए उन्होंने पहली बार महिला कंडक्टर्स की नियुक्ति की। पुलिस मंत्री होने के बाद उन्होंने भीड़ को नियंत्रण में रखने के लिए लाठी की जगह पानी की बौछार का प्रयोग प्रारंभ करवाया। 9 जून सन 1964 को उन्होंने भारत के दूसरे प्रधानमंत्री का पदभार ग्रहण किया। निष्पक्ष रूप से देखा जाए तो शास्त्री जी का लगभग 18 महीने का कार्यकाल बेहद कठिन किंतु अद्वितीय रहा। पूंजीपति देश पर हावी होना चाहते थे और दुश्मन देश पर आक्रमण करने के फिराक में थे। देश में जब खाद्यान्न संकट उत्पन्न हुआ तो अमेरिका ने प्रतिमाह अन्नदान देने की पेशकश की। शास्त्री जी तिलमिला उठे। उन्होंने देश का आह्वान किया कि पेट पर रस्सी बांधो, साग सब्जी ज्यादा खाओ और सप्ताह में एक शाम उपवास करो। हमें जीना है तो हम इज्जत से जिएंगे, वरना भूखे मर जाएंगे। और देश उनके साथ खड़ा हो गया। सन 1965 में अचानक पड़ोसी देश ने भारत पर हवाई हमला कर दिया। इस युद्ध में शास्त्री जी ने नारा दिया, जय जवान जय किसान। सबका मनोबल बढ़ा और सारा देश एकजुट हो गया। पड़ोसी देश को करारी शिकस्त मिली। देश ने याद किया 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से दिए गए उनके पहले भाषण को, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत सम्मान और गौरव के साथ किसी भी देश से बातचीत द्वारा अपने विवाद हल करने को उद्यत है, लेकिन अगर कोई धमकी या तलवार के बल पर हमें झुकाना चाहेगा तो हम अपनी सारी शक्ति से उसका मुकाबला करेंगे। और ये उन्होंने कर दिखाया। ताशकंद में पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर दस्तखत करने के बाद 11 जनवरी सन 1966 की रात में ही उनका असामयिक निधन हो गया। अपनी अंतिम सांस तक उन्होंने देश की सेवा की। गांधी जी को दिया वचन था, नहीं किया धन का संचय, अपरिग्रह का पालन करके किया विजित मन का संशय, शक्ति और साधन का सम्यक जनहित में करते उपयोग, आजीवन अनिकेत रहे पर सिद्धांतों से न था वियोग। नमन उनके योगदान को, नमन उनके सीधे सादे सरल पर विराट व्यक्तित्व को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया श्री राजेश प्रसाद मिश्र ने, समन्वय किया संजय यादव ने और स्वराज संस्थान संचालनालय के लिए इसे प्रस्तुत किया सुनीता सिंह ने।

0: प्रयासों की बुनाई सम्मान की कमाई। खेमराज सुंदरियाल, पद्मश्री 2026। हजारों की उम्मीद और उनकी जीविका के मार्गदर्शक हैं खेमराज सुंदरियाल, जिन्हें सब स्नेहवश गुरुजी कहते हैं। खेमराज जी का जन्म 1943 में पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। आर्थिक अभाव के कारण उन्होंने बचपन में बहुत कठिनाइयों का सामना किया।
1: मैं जब पढ़ रहा था एक दिन संत कबीर जी के बारे में जाना, उनका बड़ा नाम है और हम इतनी किताबें पढ़ती हैं उनके, तो मैं तो उन्हीं के जैसा काम सीखूंगा। मैंने ठान लिया कि मैं बुनकर बनूंगा।
0: हैंडलूम टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा करने के बाद खेमराज सुंदरियाल जी की काम की तलाश ने उन्हें यह बता दिया कि रोजगार के लिए उन्हें दिल्ली जाना ही होगा। लेकिन खेमराज जी के पास पौड़ी से दिल्ली आने तक के पैसे नहीं थे। तभी एक दिन उनके चचेरे भाई को चोट लग गई और उन्हें इलाज के लिए दिल्ली ले जाना पड़ा। उनकी देखभाल के लिए इन्हें भी साथ भेजा गया और यही सफर खेमराज जी को पहली बार दिल्ली ले आया। दिल्ली क्लॉथ मिल में काम करने के बाद खेमराज सुंदरियाल बुनकर सहायता केंद्र में कार्यरत हो गए। 9 से 10 साल गुजर गए। काशी के बुनकर सेवा केंद्र में खेमराज जी की मुलाकात एक टेक्सटाइल आर्टिस्ट SV निकम जी से हुई। उन्होंने इनकी प्रतिभा को पहचान कर इन्हें केंद्र से लौटने के बाद आर्टिस्ट लोगों के लिए टैपेस्ट्री बनाने की सलाह दी।
1: उन्होंने मुझे 175 रुपए दिए लूम खरीदने के लिए।
0: इसी दौरान खेमराज सुंदरियाल बुनकर सेवा केंद्र की पानीपत शाखा में आ गए और जल्द ही देश के कई सुप्रसिद्ध कलाकारों के लिए टैपेस्ट्री बुनने लगे। जिस लड़के के पास पौड़ी से दिल्ली आने तक के पैसे नहीं थे, उनका काम उन्हें देश विदेश ले गया। जामदानी तकनीक पर खेमराज जी की पकड़ देखते ही बनती थी और साथ ही उन्होंने हत्ता तकनीक और पॉलिएस्टर की बुनाई भी शुरू कर दी। अपनी इसी लगन से उन्होंने पानीपत की दरी और खेस को एक बार फिर से प्रसिद्ध कर दिया। रिटायर होने के बाद खेमराज जी ने विष्णु हैंडलूम कोऑपरेटिव शुरू किया, जिसमें वो अब तक 10,000 से ज्यादा युवाओं को काम सिखा चुके हैं। भारत के कई प्रख्यात संस्थानों के छात्र भी खेमराज जी से बुनाई की कला सीखने आते हैं।
1: इस कला ने मुझे मान सम्मान और पहचान दिलाई। अब लगता है मैंने इस कला को नहीं, इस कला ने मुझे अपना है।
0: खेमराज सुंदरियाल, पद्मश्री 2026। कोटि कोटि नमस्कार।

नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारी रसोई में मौजूद साधारण दिखने वाला ड्रमस्टिक, जिसे सहजन भी कहते हैं, सेहत के लिए कितना फायदेमंद है। ये सिर्फ एक सब्जी नहीं बल्कि पोषण से भरपूर एक सुपर फूड है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ड्रमस्टिक के जबरदस्त फायदे, इसे खाने का सही तरीका और कुछ खास टिप्स। ड्रमस्टिक, जिसे मुनगा या सहजन के नाम से भी जाना जाता है, एक पौष्टिक पेड़ का फल है। इसके पत्ते, फल, फूल और यहाँ तक कि इसकी छाल भी औषधीय गुणों से भरपूर होती है। इसे आयुर्वेद में एक वरदान माना गया है और इसका उपयोग कई बीमारियों के इलाज में किया जाता है। ड्रमस्टिक के स्वास्थ्य लाभ। प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाता है। इसमें विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होते हैं, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। हड्डियों को मजबूत करता है। ड्रमस्टिक में कैल्शियम और फास्फोरस होते हैं, जो हड्डियों को मजबूती प्रदान करते हैं। पाचन में सुधार करता है। ये फाइबर से भरपूर होता है, जिससे पेट की समस्याओं जैसे गैस, अपच और कब्ज से राहत मिलती है। ब्लड शुगर को नियंत्रित करता है। डायबिटीज के मरीजों के लिए यह बेहद फायदेमंद है, क्योंकि यह ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में मदद करता है। दिल की सेहत के लिए फायदेमंद। इसमें पोटेशियम और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो ब्लड प्रेशर को संतुलित रखते हैं और दिल की बीमारियों के खतरे को कम करते हैं। त्वचा और बालों के लिए लाभकारी। ड्रमस्टिक का सेवन करने से त्वचा चमकदार बनती है और बालों की ग्रोथ बेहतर होती है। ड्रमस्टिक का उपयोग कैसे करें? अब जानते हैं कि इसे अपनी डाइट में कैसे शामिल करें। सब्जी। ड्रमस्टिक को आलू, टमाटर और हल्दी के साथ मिलाकर स्वादिष्ट सब्जी बनाई जा सकती है। सूप। इसका सूप बनाने से आपको इसके पोषक तत्व पूरे मिलते हैं। पाउडर। ड्रमस्टिक की पत्तियों को सुखाकर उसका पाउडर बना सकते हैं, जिसे स्मूदी या दूध में मिला सकते हैं। चाय। ड्रमस्टिक की पत्तियों की चाय भी बहुत फायदेमंद होती है। ध्यान देने योग्य बातें। दोस्तों, हालांकि ड्रमस्टिक सेहत के लिए फायदेमंद है, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। अत्यधिक सेवन से पेट में जलन या डायरिया हो सकता है। गर्भवती महिलाओं को इसका सेवन डॉक्टर की सलाह से करना चाहिए। अगर आपको कोई एलर्जी हो तो पहले डॉक्टर से सलाह लें। तो दोस्तों, ये थे ड्रमस्टिक के अद्भुत फायदे।

0: महज 19 साल की उम्र में परमवीर चक्र से उसे अलंकृत किया गया था, क्योंकि उसने करगिल युद्ध के दौरान 15 गोलियां लगने के बाद भी हार नहीं मानी और वो लड़ता रहा। हम बात कर रहे हैं योगेंद्र सिंह यादव की, जिन्होंने साक्षात मौत को चुनौती दी थी और उसे पछाड़ा था। 27 दिसंबर 1996 में इन्हें भारतीय सेना की 18 ग्रेनेडियर बटालियन में रिक्रूट किया गया था। 1999 में करगिल युद्ध के दौरान इनकी टुकड़ी को टाइगर हिल से पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार भगाने की जिम्मेदारी मिली थी। टाइगर हिल में घुसपैठियों की 4 चौकियां थी। मुठभेड़ शुरू हुई और पहली चौकी पर कब्जा करने के बाद 7 सदस्यीय कमांडो वाला दल आगे बढ़ा। दुश्मन की ओर से भीषण गोलीबारी में पहले 2 और फिर 4 शहीद हो गए। अंत में सिर्फ ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव बचे, जिनके बाएं हाथ की हड्डी गोली लगने से टूट चुकी थी और उनके हाथ ने काम करना बंद कर दिया था।
1: राइफल को ऐसे पकड़ने की कोशिश करी, लेकिन ये हाथ को हिला ही नहीं, क्योंकि इस हाथ की हड्डी निकल के पूरी बाहर हो गई। एक हाथ से राइफल को उठाया, वहां से फिर एकदम से उनके ऊपर फायर खोला, 3-4 बंदे और उनके मारे गए। फिर इसी हाथ से पलटा खाया, दूसरे पत्थर से, तीसरे पत्थर से। जब 3-4 जगह से फायरिंग किया तो उनको लगा कि यार हाँ, नीचे से रीइंफोर्समेंट आ गई है। फिर उनके हौसले पस्त हो गए, वो पैर उखड़ गए और वहां से उनको भगा दिया।
0: और इस तरह तीसरी चौकी पर भी भारत का कब्जा हो गया और टाइगर हिल पर तिरंगा फहरा। पर इस पूरी कवायद में इन्हें काफी गोलियां लगी थी, खून काफी बह चुका था। इनका जीवित बचना इनके जीवट और मजबूत इच्छा शक्ति को दर्शाता है। योगेंद्र यादव को इस अदम्य साहस के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। देश को ऐसे वीर पर अभिमान है।
2: Kulbhan Yadav captured the Tiger Hill, leading his Ghatak Datu.

0: मानव सेवा से राष्ट्रोत्थान के नायक श्री ब्रजलाल भट्ट, पद्मश्री 2026। दुनिया इसे धरती का स्वर्ग कहती है, लेकिन इस स्वर्ग ने अपनों को दूर जाते देखा। साल 1990 एक अनिश्चितता का दौर था, जब अपने ही घर छूट रहे थे, तब ब्रजलाल भट्ट ने इसके विपरीत जाने का साहस दिखाया।
1: मेरे दिल में एक ही बात आई कि मुझे कश्मीर नहीं छोड़ना है। हमारा लक्ष्य एक ही है, मानव सेवा से राष्ट्र उत्थान,
2: मैन मेकिंग नेशन बिल्डिंग।
0: इसकी नींव उनके बचपन में ही पड़ गई थी। अनंतनाग के एक बड़े संयुक्त परिवार में पले बड़े भट्ट साहब की सुबह इंद्रनाग चश्मे, गुरुद्वारा, देवी बल मंदिर और ऋषि साहब की जियारत से होकर गुजरती थी। यही गंगा जमुनी तहजीब आगे जाकर उनके जीवन का सबसे बड़ा मिशन बन गई। वे पिछले 55 वर्षों से नागदंडी के श्री रामकृष्ण महासम्मेलन आश्रम और विवेकानंद केंद्र के सानिध्य में सनातन धर्म के मूल मंत्र, मानव सेवा और वैश्विक भाईचारे का प्रसार कर रहे हैं। 1996-97 के कठिन दौर में भट्ट साहब के नेतृत्व नागदंडी आश्रम ने माता खीर भवानी में भंडारा शुरू करने की ठानी।
1: शुरू में भंडारे में माता खीर भवानी मुश्किल से 400-500 लोग थे, पर बिना किसी परवाह के हम बस आगे बढ़ते गए और मेरी अर्धांगिनी हर मोड़ पर मेरे साथ खड़ी रही।
3: भरपूर
0: उनके उस निडर पहेल का रंग आज साफ नजर आता है। 2024-25 में उसी भंडारे की पंगत में 35,000 से अधिक लोगों ने भोजन किया। समाज को जोड़ने के साथ साथ अमेरिका से हॉर्टिकल्चर की उच्च शिक्षा प्राप्त भट्ट साहब ने कश्मीर की बंजर और वीरान जमीनों को भी संवारा। वैज्ञानिक सोच से सेब और अखरोट के लहलहाते बाग खड़े किए। कोल्ड चेन और नई पैकेजिंग से गांव वालों को आत्मनिर्भर बनाया। युवाओं को योग शिक्षा शिविर, संस्कार वर्ग और युवा सम्मेलन द्वारा सही दिशा दिखाई, ताकि उनके हाथों में कलम हो। अब वे नागदंडी आश्रम का विस्तार कर रहे हैं, ताकि एक साथ 400 लोग वहां ठहर सके। आज कश्मीर का युवा जान चुका है कि असली ताकत आपसी भाईचारे में है। सम्मान और पुरस्कार तो बस एक पड़ाव है, उनकी असली वसीयत वो बीज है जो उन्होंने यहाँ के दिलों में बोए हैं।
1: जब हमारे युवाओं का जोश और माता पिता का होश एक साथ आएगा, तभी हमारा कश्मीर फिर से एक खूबसूरत गुलदस्ता बनकर महकेगा।
0: उनकी ये यात्रा अब एक महायात्रा बन चुकी है, जो सदैव चलती रहेगी। श्री ब्रजलाल भट्ट, पद्मश्री 2026।

0: आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर, आकाशवाणी समाचार के संग। एक राष्ट्र का जन्म, स्वाधीनता के लिए भारत का शानदार संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए रोजाना ला रहा है इस शानदार संघर्ष की झलक। आज की कड़ी में हम आपको नेताजी के जीवन के कुछ पहलुओं के बारे में बताएंगे। पेश है भारत के स्वाधीनता संघर्ष की सबसे बहादुर हस्तियों में से एक नेताजी के जीवन की झलक। सुभाष चंद्र बोस को प्यार से नेताजी कहा जाता था। उनका जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक में हुआ था। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से 1919 में स्नातक शिक्षा प्राप्त की और 1921 में इंडियन सिविल सर्विसेज परीक्षा उत्तीर्ण की। कहा जाता है कि बाघ को लंबे समय तक पिंजरे में कैद नहीं रखा जा सकता।
1: आजाद ख्याल के सुभाष चंद्र बोस ने चित्तरंजन दास से प्रभावित होकर सिविल सेवा से त्याग पत्र दे दिया। उन्होंने अंग्रेजों की दास्ता करने के बजाय अपने देश की आजादी के लिए कार्य करने का रास्ता चुना। सुभाष ने स्वराज का समर्थन किया। उनका विचार था कि आजादी दी नहीं जाती बल्कि ली जाती है, इसलिए उन्होंने अपनी मातृभूमि को विदेशियों के चंगुल से मुक्त कराने की रणनीति बनाई। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू होने के बाद नेताजी ने जन आंदोलन शुरू किया। इसके तहत उन्होंने देश भर के लोगों को एकजुट करना शुरू कर दिया। सुभाष की अपील पर लोगों ने जबरदस्त उत्साह दिखाया, इसलिए अंग्रेजों ने उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया। बोस घर में नजरबंद कर दिए गए। इस दौरान उन्होंने नाटकीय ढंग से वहां से निकलने की योजना बनाई। उन्होंने दाढ़ी बढ़ा ली ताकि अंग्रेज उन्हें पहचान न सकें और वे पठान के वेश में घर से निकल गए। 19 जनवरी 1941 की रात बोस पहले बिहार गए, वहां से पेशावर के रास्ते काबुल, मॉस्को और रोम होते हुए आखिरकार जर्मनी पहुंचे। जर्मनी में उनकी मुलाकात हिटलर से हुई। उन्होंने बर्लिन में फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की और आजाद हिंद रेडियो की शुरुआत की।
2: दिस इज सुभाष चंद्र बोस स्पीकिंग टू इंडियंस इन ईस्ट एशिया। माय कंट्रीमैन इन ईस्ट एशिया, व्हाइल आई एम इन टोक्यो, आई डिजायर टू एड्रेस ए फ्यू वर्ड्स टू यू एंड आई हैव नो डाउट दैट यू विल गिव देम ड्यू कंसीडरेशन।
0: बोस 1943 में दक्षिण पूर्व एशिया के लिए निकल गए और आजादी का संघर्ष जारी रखा। आजाद हिंद फौज को उन्होंने नया रूप दिया। नेताजी ने गांधी, नेहरू और मौलाना आजाद के नाम पर आजाद हिंद फौज की रेजिमेंट के नाम रखे। आजाद हिंद फौज में एक रेजिमेंट ऐसी भी थी जिसमें केवल महिलाएं थीं। इसका नाम झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर रखा गया। नेताजी के नेतृत्व में आजाद हिंद फौज में युद्धबंदी और हजारों आम नागरिक शामिल हुए। बोस जापानी सेना की सहायता से ब्रिटिश साम्राज्य से लड़कर भारत को आजाद कराना चाहते थे। जब ब्रिटिश सेना ने मलय प्रायद्वीप पर कब्जा कर लिया तो बोस ने समर्पण न करने का फैसला किया और सोवियत संघ के समर्थन के साथ मंचूरिया से लड़ाई जारी रखने की योजना बनाई। मंचूरिया जाते समय ही उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बोस के मृत्यु के बारे में विवाद है।
1: माना जाता है कि नेताजी का अंतिम संस्कार किया गया और उनकी अस्थियां टोक्यो के रेकोजी मंदिर में रखी गईं। हालांकि इस बारे में भी विवाद है कि मंदिर में रखी अस्थियां नेताजी की हैं या नहीं। इसके कारण कई तरह की धारणाएं बनी और माना गया कि शायद सुभाष इस हादसे में बच गए हों। गांधी जी ने नेताजी को देशभक्तों का देशभक्त कहा था। सच्चाई कुछ भी हो, लेकिन नेताजी की आवाज आज भी लोगों के दिलों में देशभक्ति का संचार कर देती है।
2: आई डू नॉट नो हाउ मेनी ऑफ अस हू आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन द कमिंग बैटल विल सर्वाइव टू सी इंडिया फ्री, बट वेदर वी सर्वाइव और नॉट, वेदर वी इंडिविजुअली लिव टू सी इंडिया फ्री और नॉट, वी आर कॉन्फिडेंट दैट इंडिया शैल बी फ्री।

ये डेंगू डेंगू क्या है, ये डेंगू डेंगू जब आसपास पानी जमा होता है तो एडिस पैदा होता है ये डेंगू मच्छर।

0: तेज बुखार, सर दर्द, जोड़ों तथा मांसपेशियों में दर्द, जी मचलना, त्वचा पर चकते और थकावट, यह हो सकता है डेंगू। डेंगू एडिस मच्छरों से फैलता है। अपने घरों और आसपास मौजूद गमलों, बाल्टियों और कूलर्स और गड्ढों में पानी जमा न होने दें और मच्छरों के काटने से बचें।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो। रीड इंडिया समुदाय के सहयोग के द्वारा समुदाय के विकास के लिए कार्य करता है। रीड इंडिया ग्रामीण समुदायों में स्थायी सामाजिक परिवर्तन हेतु शिक्षा, उद्यम और सामाजिक विकास के क्षेत्र में कार्य करता है। आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो।

0: गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, कैसे हैं सभी लोग? मेरा नाम स्मिता है। लास्ट टाइम हमने ये डिसाइड किया था कि जो हमारे लाइफ स्किल के सेशंस होंगे वो लीडरशिप सेशंस के पैरेलल चलेंगे। जो जो टॉपिक्स मैम कवर करेंगे, हम उसको एक एक टॉपिक को और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि एज अ लीडर तो ठीक है कि हमें वो चीजें समझनी, एज एन इंडिविजुअल भी हम उससे कैसे शुरुआत कर सकते हैं। मैम की प्री कमिटमेंट की वजह से इस बारी जो हमारा सेशन है वो अभी अगले वीक पोस्टपोन हो गया है। सो आई थॉट कि एक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है टीम वर्क का, हमने पहले भी ये वाला सेशन लिया था, बट कुछ नए यूजर्स हमारे साथ जुड़े हैं, नए बेनिफिशरीज जुड़े हैं। सो मे बी वी कैन स्टार्ट विथ टीम वर्क, कि टीम वर्क की क्या इम्पोर्टेंस होती है, कि हमें एक साथ जुड़ के काम करना क्यों जरूरी है। सो आई होप जिनको ये रेपिटेटिव लग रहा होगा, इसका मतलब है आपने टीम वर्क में काम करना शुरू कर दिया है। और कुछ अगर अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहते हैं तो टुवर्ड्स द एंड, छोटा सेशन है ये, वी विल हैव अराउंड 30 मिनट्स ऑफ माई स्पीकिंग एंड देन वी कैन शेयर योर व्यूज। तो टीम वर्क से क्या समझ में आता है, किसी को कुछ पता है ये टर्म टीम वर्क क्या होती है? टीम वर्क इंग्लिश की टर्म है, इसका मतलब है कि एक साथ जुड़ के, एक होता है कि अकेला चलता है, एक इंसान अकेला काम करता है, और दूसरा होता है कि हम आते दुनिया में अकेले हैं लेकिन रहना तो हमें सबके साथ है। और घर में हो गया, प्रोफेशनली हो गया, पर्सनली हो गया, हम कोई भी काम अलग से नहीं करते, अकेले नहीं करते, कुछ लोगों के साथ जुड़ के, कुछ लोगों की मदद से करते हैं, कुछ लोगों के साथ जुड़ के करते हैं, उसको हम टीम वर्क कह सकते हैं। रीडिंडिया में जो काम करते हैं लोग, उनके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टीम वर्क है, क्योंकि हम समुदाय के साथ काम करते हैं, समुदाय के लिए काम करते हैं और समुदाय में रह के काम करते हैं। हमारे जितने भी सेंटर्स हैं वो कम्युनिटी के अंदर हैं, कम्युनिटी के लिए हैं, और कम्युनिटी ही उनसे हमारे हम उनसे सेंटर्स के थ्रू इसीलिए जुड़े हैं क्योंकि वो, अगर हमारे सेंटर्स पे कोई आता नहीं है तो हमारे सेंटर की कोई वैल्यू नहीं है। वो मशीनें, वो किताबें, वो जितनी हमने आपको रिसोर्सेस दिए हैं, चाहे वो मशीनें हैं, चाहे ब्यूटी का सामान है, इसीलिए हमारे सेंटर्स आज, जो जो 15 15 साल पुराने सेंटर्स भी हैं, आज भी वो लोग क्यों काम कर पा रहे हैं, क्योंकि नया नया समुदाय जुड़ रहा है और जो पुराना समुदाय है, जो पुराने बेनिफिशरीज हैं, जो पुराने बच्चे हैं जो सीख के गए हैं, वो आज भी आते हैं। शायद कुछ बच्चे किताबें पढ़ना शुरू किया था उन्होंने और आज वो कोई ना कोई लघु उद्योग की ट्रेनिंग लेके आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे भी बच्चे होंगे जो हमारे साथ पिछले 5 10 सालों से जुड़े हैं, तो उनको हम क्यों जोड़ के रख पा रहे हैं? क्योंकि हमारा काम जो है वो समुदाय का है, और हम अपनी सर्विसेज अगर सोशली रिस्पॉन्सिबल नहीं देंगे तो कोई हमारे सेंटर पे नहीं आएगा। कभी कभी हम ऐसा भी सुन देंगे, अब एनजीओ तो बहुत सारे हैं लेकिन जो बेनिफिशरीज हैं वो हमारे सेंटर पे आके सीखना चाहते हैं। कोई बता सकता है ऐसा क्यों होता है? ऐसी क्या क्वालिटीज हैं हमारे सेंटर में, स्पेशली लड़कियां क्यों आके सीखना चाहती हैं? आप सभी लोग करीबन 10 साल, 8 साल, 5 साल, 2 साल से सेंटर चला रहे हैं, कोई मुझे बता सकता है कि जब हम टीम वर्क की बात करते हैं या टीम की बात करते हैं, टीम वर्क तो छोड़ दीजिए, टीम वर्क से हमें सिर्फ यही समझ में आता है कि वो 4 लोग जिनके साथ हम रीड में जुड़े हैं, यानी कि आप हो गए, लाइब्रेरियन हो गया, ट्रेनर हो गया, लेकिन हम अपने बेनिफिशरीज को नहीं भूल सकते। वो लोग जो हमारे साथ आके हमारे लिए जुड़ के काम कर रहे हैं उनको हम नहीं भूल सकते। मैं एक रिसेंट एग्जाम्पल दूंगी, जो हम रामपुर में विजिट किया था उसका मैं अभी अभी आपको एग्जाम्पल दूंगी, बट बिफोर दैट आई वॉन्ट टू हियर फ्रॉम यू कि आपको क्यों लगता है कि समुदाय हमारे साथ जुड़ के क्यों रहता है, बार बार क्यों आता है, साल दर साल, 10 साल, 15 साल तक क्यों आता है हमारे पास, हमारे सेंटर्स में? फ्री दे रहे हैं क्या, इसलिए आता है या कोई और रीजन है?
1: मैम, हमारा कमिटमेंट, जो हमारी कम्युनिटी के साथ कमिटमेंट है, जिस
0: क्या
1: तरह से हम
0: कमिटमेंट?
1: कम्युनिटी को लेकर चलते हैं अपने साथ, मैम, जो कनेक्शन हमने उनके साथ बिल्डअप किया है, जो कॉन्फिडेंस कम्युनिटी को हमारे ऊपर है, हमारे साथ सीखने में है, वो चीज उन्हें अलग जगह नहीं मिल रही, इसलिए वो हमारे साथ कनेक्टेड है। 5 साल से हम उन्हें रिटेन कर पा रहे हैं, जस्ट बिकॉज वी आर डूइंग इट फॉर द गुड कॉज। और उन्हें भी पता है कि वी आर डूइंग इट, मतलब नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि वी आर डूइंग इट विदाउट एनी प्रॉफिट। तो दिस इज आर डेडिकेशन टुवर्ड्स अवर वर्क विच इज कनेक्टिंग द कम्युनिटीज।
0: तो आवर डेडिकेशन तो हम एक पॉइंट रखते हैं कि हम जो एज ए टीम काम कर रहे हैं, हमारी पूरी टीम डेडिकेटेड है, यानी कि वो 4-5 लोग जो सना के सेंटर में हैं, और सना के पास 2 सैटेलाइट सेंटर्स भी थे, जो इनकी टीम है वो एक क्वालिटी सर्विस दे पा रही है अपनी कम्युनिटी को, इसीलिए उनकी जो कम्युनिटी है वो लगातार साल दर साल इनसे जुड़ी हुई है। सिंस वी प्रोवाइड क्वालिटी ट्रेनिंग एंड ट्रस्ट फैक्टर, दीक्षा ने मैसेज में लिखा है। थैंक यू दीक्षा। और कोई बताना चाहेगा? इसमें कुछ भी सही या गलत नहीं है, हम ये समझने की कोशिश करें कि हमारी एज ए टीम, एज ए रीड इंडिया, आज यहाँ पे 80 लोग जुड़े हैं। क्या 80 लोग एक टीम है, या हम अलग अलग सेंटर से जुड़े हैं? अगर हम एक हैं तो हमारी एक कॉमन क्वालिटी क्या है एज ए टीम? अगर हम अलग अलग हैं तो हमारे अलग अलग क्या क्वालिटीज हैं, उसको जानने की कोशिश करते हैं। एनीबडी एल्स कोई कोशिश करना चाहेगा, कुछ बोलना चाहेगा? गुड
1: गुड आफ्टरनून
0: आफ्टरनून स्वाति जी।
1: मैम, एक तो सेफ इन्वायरमेंट है फॉर गर्ल्स गर्ल्स स्टूडेंट्स एंड बॉय स्टूडेंट्स ऑल्सो, एंड सेकंड ये है कि हमारा जो इमोशनल अटैचमेंट होता है उनके साथ वो भी काफी अच्छा होता है, क्योंकि वो हमारे एरिया के होते हैं। उसके साथ साथ ही जो 3 महीने वो हमारे पास रहते हैं, तो उन 3 महीनों में हम भी उनको ज्यादा अच्छे से मतलब पहचान सकते हैं, और वो भी हमें अच्छे से जानते हैं, तो एक अटैचमेंट बन जाती है। छोटे बच्चे जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं, तो हमारे पास 3 to 6 ईयर एज ग्रुप से लेकर मतलब अडल्ट तक के सारे लेवल का कुछ ना कुछ सबको सीखने का चांस है, सीखने के लिए साधन है हमारे पास, तो इसलिए वो हमारे पास मतलब सालों तक अटैच रहते हैं।
0: राइट राइट। थैंक यू स्वाति। और कोई कुछ बताना चाहेगा? बिल्कुल ठीक बोला है स्वाति ने कि जो क्वालिटी सर्विस है, जो डेडिकेशन है, और जो हम उनको जानने की कोशिश करते हैं, एक एक रिलेशनशिप बना के रखते हैं उनसे, उनकी तकलीफें जो हैं या उनके जो चैलेंजेस हैं उसको समझने की
1: लाइट
0: कोशिश करते हैं।
1: ड्रॉप हो जाएगी, मतलब देखिए लाइट आ गई है ना, ये यूपीएससी का पीपीटी का है।
0: तो वी आर गोइंग अ स्टेप अहेड। ये हमारे जॉब डिस्क्रिप्शन में कहीं नहीं लिखा हुआ है, लेकिन जैसे कि सना हो गई, स्वाति हो गई, एवरी ईच वन ऑफ अस, जितने भी लोग हमारे यहाँ कोऑर्डिनेटर्स हैं सालों से जो जुड़े हुए हैं, हम लोग एक स्टेप फर्दर जा रहे हैं। फर्दर जा रहे हैं एज इन हम लोगों के घर में जा जा के उनको निकाल के लेके आते हैं कि नहीं, आप आइए हमारे सेंटर पे सीखिए। सो दिस इज अ क्वालिटी ऑफ अ वेरी गुड टीम, जहाँ पे हम बियॉन्ड आवर कमिटमेंट जो है वो जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वी बिलीव इन आवर मिशन। हम बिलीव करते हैं कि कोई हमारे सेंटर पे आएगा तो वो हमारे सेंटर से कुछ सीख के ही जाएगा, कुछ लेके ही जाएगा, और ऐसी चीज लेके जाएगा जो हमेशा साल दर साल उसके साथ रहेगी। क्योंकि अगर हमने किसी को कोई स्किल दे दिया तो वो स्किल हम वापस तो नहीं ले सकते ना। आपने किसी को 100 रुपए दे दिए तो वो 100 रुपए तो खत्म हो जाएंगे, वो शायद खाना खरीद लेगा उसका, या कपड़ा खरीद लेगा, या अपनी कोई भी जरूरत की चीज खरीद लेगा। लेकिन जिसको हमने कला दे दी एक बार, चाहे वो स्टिचिंग की स्किल है, ब्यूटी की स्किल है, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर की स्किल है, या फिर सॉफ्ट स्किल है, यानी कि बातचीत करने का तरीका, या अपना आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो सॉफ्ट स्किल हो गई, टेक्नोलॉजी स्किल हो गई, तो वो स्किल तो कोई वापस नहीं ले सकता। बट वी आर गोइंग अ स्टेप अहेड, हम लोग एज ए टीम काम करके एक और दरिया जो है वो पार करते हैं, जो कि है सोशली। सोशली जो दबाया जाता है कि नहीं, आपको नहीं जाना है सेंटर पे, नहीं जाना है, बाहर नहीं निकलना है, उसको भी हम कोशिश करते हैं कि उस बांध को भी हम तोड़ें। दिस इज वन ऑफ द कोर क्वालिटी ऑफ आवर टीम, जो रीट की जो टीम है ये कोर क्वालिटी बन गई है। एनीबडी एल्स, कोई और कुछ, किसी ने कमेंट में लिखा है कुछ, लेट मी जस्ट रीड दैट। पॉजिटिव एनवायरनमेंट, ज्योत्सना जी लिख रहे हैं पॉजिटिव एनवायरनमेंट, वेरी गुड। कैन यू डिफाइन पॉजिटिव एनवायरनमेंट?
1: गुड आफ्टरनून मैम, गुड
0: गुड आफ्टरनून,
1: आफ्टरनून
0: गुड
1: मैम,
0: आफ्टरनून।
1: सुन। हाँ जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि लोग यहाँ पे आते हैं क्योंकि एक उनको ट्रस्ट होता है रीड इंडिया के नाम से, इसलिए लोग हमारे पास आते हैं, और लड़कियों को भेजते हैं हमारे यहाँ पे कि उनको पता है कि यहाँ पे बच्चियां जा रही है या लेडीज, हमारे घर से कोई भी लेडीज जा रही है तो यहाँ पे सेफ है इस चीज के लिए। और जो भी सिखाया जाएगा, जो भी चीज होगी यहाँ पे अच्छे से ही सिखाया जाएगा, उनकी ग्रोथ ही होगी, कभी वो डाउन नहीं होगी किसी चीज के लिए। तो कुछ
0: बिल्कुल
1: बेनिफिशियरीज मेरे साथ यहाँ पे बैठे हैं, हम उनसे आपसे बात भी करना चाहते हैं।
2: डायरेक्ट आप उन्हीं से बात करिए, वो लोग क्यों आते हैं यहाँ पे, क्या उनको आने से फायदा है, वो क्यों सीखते हैं यहाँ पे आने के बाद, बताओ
0: राइट
2: बताओ, आप बता
0: राइट
2: सकते हो? कोई भी
0: गुड आफ्टरनून
2: पढ़ाई के साथ साथ काम भी करते हैं, हमें यहाँ पर आना बहुत अच्छा लगता है और इसके साथ हम आगे भी बढ़े और इससे हेल्प मिले उसके लिए हम आते हैं।
0: ऑल राइट थैंक यू सो मच थैंक यू
2: दामिनी आप
0: सो मच
2: बोलना, बोल कुछ बोलो। गुड आफ्टरनून मैम,
0: गुड आफ्टरनून
2: हाँ मुझे ना सिलाई करना बहुत पसंद है इसलिए मैं आती हूँ।
0: तो रीड के सेंटर पे क्यों आते? सिलाई सेंटर तो बहुत सारे खुले हुए हैं,
2: हाँ
0: बहुत सारे
2: सीख
0: खुले।
2: भी रहे हैं उसके साथ, नए नए डिजाइन में मतलब सीख रहे हैं, जो बन रहा है वो सीख रहे हैं, मैम अच्छे से बताती हूँ इसके साथ।
0: अच्छा
2: बताओ प्रोडक्शन में आप काम करके पैसे भी कमा रहे हैं उस टाइम? हाँ काम
0: अच्छा
2: करके पैसे भी मिलते हैं।
0: अच्छा पैसे भी मिलते हैं इसलिए आप आपको यहाँ आना अच्छा लगता है कि सीख भी रहे हैं और प्रोडक्शन का काम
2: हाँ
0: भी आ रहा है।
2: हाँ
0: वेरी
2: जी
0: गुड वेरी गुड। थैंक यू ज्योत्सना जी, यू वर ट्राइंग टू से समथिंग पॉजिटिव एनवायरनमेंट के बारे में, शायद आप कुछ कहना चाह रहे थे। हेलो
2: हाँ जी मैम, हेलो मैम,
0: आप
2: हेलो मैम, बोलिए बोलो बोलिए सर, मैं ये कह
0: कहाँ
2: रही
0: से हो?
2: थी कि
0: जो
2: स्टूडेंट्स जब यहाँ आते हैं
0: सुमन
2: वो
0: जी, सुमन जी आप म्यूट। हाँ
2: हम जब आते हैं यहाँ पे वो थोड़ा सा प्रॉपर क्लियर नहीं होता उनके माइंड में, बहुत कुछ चीजें होती हैं और थोड़ा सा ऐसे एनवायरनमेंट से आता है जो वो बहुत पॉजिटिव साइड पे सोचते नहीं है, तो यहाँ पे आके जब उन लोगों को हर चीज पॉजिटिवली सोचने के लिए, आगे बढ़ने के लिए और इम्प्लीमेंट करने के लिए कहा जाता है तो उनके माइंड्स काफी क्लियर हो जाते हैं और पॉजिटिव होता है। और सबसे अच्छी चीज है कि हम जो एनवायरमेंट है सिर्फ स्टडी वाला रखे हैं, और चीजों पे बातें करना, डिस्कस करना या कुछ ऐसी चीजें करना, उसमें हम लोग बच्चों को इंटरेस्ट लेने ही नहीं देते, जिससे क्या होता है वो लोग पॉजिटिव सीखते भी हैं और साथ साथ बात भी पॉजिटिव करते हैं। और एक
0: राइट
2: ही जगह उन्हें तीन तीन चार चीजें सीखने के लिए यहाँ पे मौका भी मिलता है। जैसे मैम कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो मेकअप सीख रहे हैं या वो कंप्यूटर सीख रहे हैं, लेकिन उनका बाद में इंटरेस्ट डेवलप होता है कि हम थोड़ा सा और भी कुछ सीख लें और आगे सीखें, तो ऐसे भी वो सीख सकते हैं।
0: वेरी नाइस वेरी नाइस। थैंक यू जसन जी। सो मैंने कहा था मैं एक एग्जांपल दूंगी कि किस तरीके से हमारी टीम एक कदम आगे ही चल के काम करती है। अभी हम रिसेंटली रामपुर में गए थे और करीबन मेरे को लगता है 50, बहुत गर्मी थी, बहुत ज्यादा गर्मी थी उस दिन, और 50 से भी ज्यादा लड़कियां उस सेंटर में बैठी हुई थी। नया सेंटर जो रिलोकेट किया है हमने, हमारा रामपुर में जो सेंटर है, बहुत गर्मी थी एकदम। लेकिन एक एक बच्चा जो था, एक एक स्टूडेंट्स जो था, वो कुछ ना कुछ बोलना चाह रहा था, कुछ ना कुछ एक उमंग थी उनके अंदर कि हाँ हम रीड सेंटर पे आए हैं तो रीड सेंटर से कुछ सीख के जाएंगे, कुछ लेके जाएंगे। इतना एनर्जी था। पहले शुरुआत में वो बहुत घबरा रहे थे बोलने में, बहुत ज्यादा, पहली बार ही मिले थे, मैम थी हमारे साथ तो बहुत ज्यादा उनको हिचकिचाहट हो रही थी बोलने के लिए। लेकिन 5-10 मिनट के बाद वो लोग कंफर्टेबल हुए और फिर जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी कोई भी लड़कियां, इतना उनके पास था शेयर करने के लिए। तो ये एनर्जी कहाँ से आई? ये एनर्जी आई जब हमारी टीम ने उनको ये कॉन्फिडेंस दिखाया कि नहीं आप आइए सेंटर पे, आइए सीखिए। यहाँ पे सीखने के साथ साथ आपको सॉफ्ट स्किल, यानी कि आपस में जब आता है लोग, इंसान मिलते हैं तो उनको लगता है कि हम और भी कुछ सीख सकते हैं। देखो सिलाई तो कोई भी सिखा देगा, कोई भी सेंटर पे जाएंगे आप सीख जाएंगे, ब्यूटी भी आप कहीं ना कहीं सीख जाएंगे, आप हेल्थ वर्कर की ट्रेनिंग भी सीख जाएंगे। लेकिन एक माहौल जो हम क्रिएट करके रखते हैं अपने सेंटर में, जिसमें जो आप ही ने मुझे बताया कि हम पॉजिटिव एनवायरमेंट क्रिएट करके रखते हैं, हम एक अच्छे तरीके से सिखाते हैं, जो सना ने बोला कि जो भी हम सिखाते हैं हम बहुत अच्छी क्वालिटी ट्रेनिंग देते हैं, हम सेफ एनवायरमेंट रखते हैं कि ताकि अगर लड़कियां आ रही हैं या उनके पेरेंट्स को कोई ऐसा हिचकिचाहट ना हो। ज्योत्सना जी ने बोला कि हम फोकस करते हैं जिस काम के लिए आए हैं, पहले हम वो काम करें, उस पे फोकस रहें, इधर उधर गॉसिप नहीं करें, नेगेटिव एनवायरनमेंट नहीं फैलाएं। तो ये सारी चीजें जो कंपोनेंट्स है ना, ये मिलके ही किसी टीम को सक्सेस करा पाती है। तो यही कुछ चीजें आज मैं एक छोटी सी मैंने पीपीटी बनाई है, आई विल जस्ट ट्राई एंड शेयर विद यू। ऑल राइट, सो टीम वर्क यानी कि एक ग्रुप में एक साथ होके हमें जो एक कॉमन गोल, अब हमारे केस में कॉमन गोल क्या है कि हमारे सेंटर को इसी तरीके से ग्रोथ मिलती रहे, हमारा सेंटर कभी भी ऐसा ना हो कि हमारा सेंटर तो खुला है लेकिन कोई वहां सीखने ही नहीं आना चाहता। तो एक कॉमन गोल जो है, हम आज जितने 89 पीपल जुड़े हुए हैं, हम सबका एक कॉमन गोल है कि आपका छोटे दर पे गोल ये है कि आपका सेंटर जो है वो साल दर साल चलता रहे, उसमें बढ़ोतरी होती रहे और थोड़ा थोड़ा करके हम उसको सेल्फ सस्टेन कर सकें। ऐसे ही अगर हम सारे सेंटर्स को ले लेंगे और इन सबका जो एक कॉमन गोल होगा वो यही होगा कि हमारे सेंटर्स चलते रहें, इनमें कोई रुकावट नहीं आए, और जो हम मिशन है जो हमारा, जो कि कम्युनिटी को सर्विस देने का हमारा गोल है, वो हम एक साथ अचीव करें। अगर आप में से कोई भी एक सेंटर वो गोल अचीव करने में नाकाम हो जाता है, किसी एक सेंटर पे कोई प्रॉब्लम आती है, तो उंगली किसके ऊपर उठेगी? सीधा रीड इंडिया के ऊपर। तो जो टीम है हमारी, जो हम टीम वर्क की आज बात कर रहे हैं, तो अगर एक भी पुर्जा उस टीम का कमजोर हो जाता है या उसकी वैल्यूज मैच नहीं होती या वो किसी और रास्ते पे निकल जाता है, तो जो हमारी टीम है, जो एक माला है, अगर उसमें से एक मोती निकल जाता है तो माला टूट जाएगी। इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि लगातार हम सेंटर से जुड़े रहें, हम सेंटर्स को अपनी कोर वैल्यूज से जोड़ के रखें, क्योंकि हम टीम वर्क की इम्पोर्टेंस समझते हैं। और इसीलिए रीड जो है, मैम भी है, हम सबको नर्चर करती हैं कि हम सबका जो कॉमन गोल है वो हमेशा एक ही रहे और लाइव रहे, यानी कि हम उसे चेंज कर सकते हैं ग्रोथ की तरह, लेकिन ऐसा ना हो कि अलग ही दिशा में चला जाए। मान लीजिए कोई सेंटर बोलता है ठीक है, अब तो मुझे ये करना ही नहीं है, अब मैं इसमें जिम खोलना चाह रहा हूँ, अब मैं अपना सेंटर में जिम खोलूंगा, जी अब तो ये सेंटर हमारे को दे दिया गया, मैं इसमें जिम खोलूंगा, जिम की बहुत डिमांड है। क्या ये हमारा गोल है? नहीं, हमारा गोल है स्किलिंग का, हमारा गोल है एजुकेशन का, हमारा गोल है सॉफ्ट स्किलिंग का, हमारा गोल है कि हम महिलाओं को या लड़कियों को या जो कम्युनिटी है ऐसे एक ऑल्टरनेट लाइवलीहुड प्रोवाइड कर सके, जिससे कि उनकी ऑल्टरनेट इनकम हो सके, जिससे हम सेंटर भी सेल्फ सस्टेन कर सके। यही 5-6 गोल है, इसके अलावा तो और कोई गोल नहीं है हमारा। तो ये कॉमन गोल को डिफाइन करना और सभी पूरी टीम जो है, जो जितने भी लोग एक टीम में जुड़े हैं, उसकी तरफ काम करने से ही वो हमारा गोल अचीव हो सकता है। कभी भी टीम में

या एज ए कोर मेंबर ऑफ एनी टीम, आप हम सबका ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि हम कभी भी आई विन यू लूज, मतलब मैं तो जीतूं और तुम हार जाओ, कि दूसरे को नीचे खींच के हम ऊपर नहीं बढ़ सकते। ये टीम अच्छी टीम के कंपोनेंट नहीं है। अच्छी टीम की कंपोनेंट है कि मैं भी जीतूं तुम भी जीतो, यानी कि हम दोनों मिलके प्रोग्रेस करें। मेरी प्रोग्रेस थोड़ी ज्यादा हो सकती है, तुम्हारी कम हो सकती है, कि तुम्हारी कभी ज्यादा हो सकती है, मेरी कम हो सकती है, राइट? सो टीम में सबका मिल बांट के काम करना, सबके रोल्स डिफाइन होना। अगर रोल्स सही से डिफाइन नहीं होंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा, और कंफ्यूजन में कोई भी ढंग से काम नहीं कर सकता। घड़ी जो होती है, घड़ी में पीछे हमको सिर्फ 3 सुइयां दिखती हैं, राइट? लेकिन कभी अगर हम उसको पलट के खोल के देखें तो पीछे बहुत सारे छोटे छोटे छोटे छोटे पुर्जे हैं जो काम करते हैं। अगर उनमें से एक भी पुर्जा काम करना बंद कर देता है तो घड़ी सही टाइम नहीं दिखाएगी, या टाइम दिखाएगी ही नहीं, राइट? वो 3ों सुइयां शायद मूव नहीं करेंगी या गलत मूव करेंगी। तो हम जो पीछे हैं, पर्दे के पीछे हैं, पर्दे के आगे हमारी लीडरशिप है, हमारी ट्रस्टीज हैं, हमारी रिपोर्ट्स हैं, हमारी वेबसाइट है, लेकिन इसको बनाता कौन है? बनाते तो हम लोग हैं। तो जब हम आपसे रिपोर्ट्स लेते हैं, इन्फॉर्मेशन लेते हैं, फोटोज लेते हैं, आप ये सोचिए, आप वो घड़ी का वो छोटा पुर्जा है जिसको टाइम तो देखेगा कोई कोई होगा कॉर्पोरेट, उसने देखना है कि हाँ ये लोग क्या काम कर रहे हैं, तो वो टाइम दिखाना हो गया। लेकिन पीछे का काम तो हम सब मिलके कर रहे हैं ना, तो अपने काम को हम कभी भी छोटा नहीं सोचेंगे। कुछ भी अगर रीड में कुछ काम चल रहा है तो आप ये सोचिए कि ये काम सबसे इम्पोर्टेंट है, तभी तो मुझे दिया गया है। दैट इज वन वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट, कि कभी भी मत सोचिए कि आई एम अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ बिग टीम। अगर मैं ये नहीं भी करूंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर मैं 100% नहीं दूंगा इसका या नहीं दूंगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो फॉर अ गुड टीम, सारे कॉम्पोनेंट्स का एक साथ जुड़ के अच्छे से काम करना बहुत जरूरी है। अभी हमने बात करी कि रोल्स डिफाइन होने बहुत जरूरी होते हैं एक टीम में। अगर रोल्स डिफाइन नहीं होंगे कि भाई किसने सुबह सफाई करनी है, किसने स्विंग की क्लासेस लेनी है, किसने रिपोर्ट भेजनी है, किसने फाइनेंस का हिसाब रखना है, किसने देखना है कि भाई चाय पत्ती दूध चीनी सेंटर में है कि नहीं, किसने देखना है कि किताबें सही से लगी हुई हैं, मशीनें ठीक से काम कर रही हैं, अगर ये रोल्स ठीक से डिफाइन नहीं होंगे तो हमारा जो लाइब्रेरी है, हमारा जो सेंटर है, वो नहीं चलेगा, वो सही से नहीं चलेगा। देर इज सम जोक गोइंग ऑन, जो हमारा ये सेंटर है जूम यूजर वाला, आई वुड ऑल्सो वॉन्ट टू हियर दैट जोक। आप याद रखिएगा, वी विल कम बैक टू यू एंड वील हियर योर जोक। सो इस जो जो टीम वर्क होता है उसमें ऑनेस्टी बहुत जरूरी है। अभी सना ने और जो 2-3 लोगों ने बोला, उन्होंने बताया कि किस तरीके से हम फुल डेडिकेशन के साथ अपनी कम्युनिटी में काम करते हैं, उसी तरीके से एक अच्छी टीम का काम करने के लिए टीम में आपस में ऑनेस्टी होना बहुत जरूरी है। हम समय समय पे आपको पूरी आई वुड रिक्वेस्ट जूम यूजर, इधर आप चले जाएं बिकॉज देर इज सम गॉसिप गोइंग ऑन, या फिर आप अपनी स्क्रीन बंद कर दीजिए बिकॉज मेरे लिए बहुत अटेंशन डाइवर्शन हो जाता है, बिकॉज आई एम नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट। आई कैन हियर यू लाफिंग एंड आई कैन हियर यू नो, इट इज वेरी इरिटेटिंग। आई एम श्योर आपके पास ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है, आप स्क्रीन बंद कर लीजिए, सिर्फ नाम वास्ते आप ऑनलाइन रह सकते हैं। आई हैव नो इश्यूज विद यू, राइट? प्लीज स्विच ऑफ योर स्क्रीन, आप अपने जोक्स कंटिन्यू करिए। आई विश यू ऑल द बेस्ट, राइट? ऑनेस्टी के साथ काम करना बहुत जरूरी है एक टीम में, बिकॉज अगर हम ऑनेस्ट नहीं होंगे तो दैट मीन्स हम टीम में इक्वली ट्रांसपेरेंसी नहीं लेके आ रहे, तो कहीं ना कहीं हम चीजों को छुपा रहे हैं, और ये हमारी टीम की हेल्थ के लिए और हमारी टीम की ग्रोथ के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है। आज आप यहाँ पे हैं, हो सकता है आप आगे जाके किसी और कंपनी में जाएंगे या किसी बड़ी संस्था के साथ काम कर सकते हैं। तो एज ए लीडर, क्योंकि हम लीडरशिप के भी सेशन लेते हैं, एज ए लीडर और एज ए मेंबर ऑफ द टीम, बहुत जरूरी है कि हम कोई चीज अगर हमें पता चली है और हमें लगता है कि वो इम्पोर्टेंट है तो हमें सब मेंबर्स के साथ वो शेयर करना चाहिए। सो ऑनेस्टी इज वन ऑफ द कोर कॉम्पोनेंट ऑफ अ गुड टीम। ऑलराइट, आई विन यू विन आई विन हमने बात कर ली है, इसके इसके लिए कोई एग्जाम्पल्स अगर किसी के पास हैं तो वी विल बी हैप्पी टू नो अबाउट दैट। टीम में ना
तीन जो हम जितनी भी किताबें पढ़ते हैं, आपकी लाइब्रेरीज में बहुत किताबें होंगी टीम।

0: के ऊपर, हाउ टू विन पीपल, अच्छे जो टुगेदरनेस के ऊपर जो किताबें हैं, उसमें तीन चीजें बहुत जरूरी हैं कि ट्रस्ट, टॉलरेंस एंड टुगेदरनेस. यानी कि ट्रस्ट मतलब हमें पूरा ट्रस्ट होना चाहिए अपनी टीम के ऊपर. बट ट्रस्ट आएगा कैसे? वो ट्रांसपेरेंसी से आएगा, जिसकी बात हमने पहले वाली स्लाइड में करी. टॉलरेंस, अब टॉलरेंस सबसे ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि हर इंसान अलग है, हर इंसान को अलग चीज मोटिवेट करती है, हर इंसान के लिए अलग चीज जो है वो अच्छी है या बुरी है. तो हम एक टीम में एक जैसे तो नहीं होते. हर टीम में अगर 5 लोग हैं, 10 लोग हैं, 50 लोग हैं, 90 लोग हैं, तो हर कोई अलग अलग होगा. तो टॉलरेंस बहुत जरूरी है. फॉर एग्जाम्पल, अभी जो जनाब यहाँ बैठे हुए थे, 3 4 लोग, उनके लिए कुछ और इम्पोर्टेंस था, बट हमें हमें उनके लिए भी टॉलरेंट होना है. मे बी आज वो सुन रहे हैं, ये चीज हो सकता है कल उनके काम पे आए, आज नहीं इम्पोर्टेंट लग रहे, बट वो आगे जाएंगे, किसी कंपनी में काम के लिए जाएंगे, तब शायद ये बात मेरी उनको याद रहे या याद आ जाए, जब उनको कहा जाएगा कि टीम वर्क कितना इम्पोर्टेंट है. सो हमें हर किसी को टॉलरेट करना सीखना पड़ता है, और जिनके पॉजिटिव्स हैं, जो नेगेटिव्स हैं, उस पे काम करना चाहिए एज ए गुड टीम. अगर एक टीम में किसी की राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं, तो और लेकिन अगर उनकी स्पीकिंग स्किल्स अच्छी नहीं है, तो एज ए टीम लीडर हम ये नहीं कह सकते कि ठीक है तुम्हारी राइटिंग स्किल्स अच्छी हैं लेकिन स्पीकिंग स्किल्स तो अच्छी नहीं है, तो हम यू नो वी वोंट गिव यू अ रोल. हम स्वॉट एनालिसिस की बात करते हैं, तो हमें स्ट्रेंथ्स देखनी है कि हमारे टीम में जो अलग अलग लोग काम कर रहे हैं, उनकी अलग अलग स्ट्रेंथ्स क्या है. किसी की फाइनेंस में स्ट्रेंथ बहुत अच्छी हो सकती है, किसी की क्रिएटिविटी में बहुत अच्छी हो सकती है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, मेरी फाइनेंस में अच्छी है, लेकिन अगर मुझे कोई बोले कि कुछ बोर्ड पे लिख दो या ड्रॉ कर दो, तो मेरी हैंडराइटिंग बहुत बुरी है और ड्रॉइंग तो उससे भी बुरी है. लेकिन कोई बोले कि इसका फटाफट एक्सेल में कुछ बना दो, इसका जोड़ तोड़ कर दो, इसको बताओ कि इसका क्या, इसकी एक रिपोर्ट बनानी है जो फाइनेंस से रिलेटेड है, वो मेरे लिए बहुत आसान है. तो मुझे ये पता है, तो मैं अपनी जो मेरे लीडर है, मैंने उनको पहले ही बताया कि अगर इस तरीके का काम करेंगे तो मैं ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगी, और अगर इस तरीके का काम मुझे दिया जाएगा तो शायद मेरी कैपेबिलिटी उसमें नहीं है. सो वी हैव टू बी टॉलरेंट, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ स्किल्स बट ऑल्सो टेम्परामेंट. टेम्परामेंट मतलब कुछ लोग बहुत गुस्से वाले होते हैं, कुछ लोग बहुत विनम्र होते हैं, कुछ लोगों को जल्दी मतलब एकदम से वो घबरा जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, और काम करने में उनका दिमाग नहीं लगता, डाइवर्ट बहुत जल्दी हो जाते हैं. तो वी हैव टू एज अ टीम लीडर, हमें उनको फीडबैक देना है. आजकल सोशल मीडिया जो है वो बहुत ज्यादा अटेंशन डाइवर्ट कर लेता है हम लोगों की. बार बार हम फोन देखते हैं, बार बार हम फोन पे देखते हैं कि क्या चल रहा है, अच्छा क्या न्यूज है. हम लोग भी न्यूज आज सुबह, कल से तो मैं भी न्यूज बार बार देख रही हूँ कि दिल्ली में क्या हो रहा है, अच्छा फ्लडिंग कहाँ पे हो रही है. ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो टीम में हमें टॉलरेट करनी है, लेकिन हमारा गोल कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए. अगर कोई रिपोर्ट आज जानी है, अगर कोई इन्फॉर्मेशन आज जानी है, तो एज ए लीडर हमें ये देखना है कि टीम में टॉलरेंस की जगह तो है, लेकिन कॉम्प्लेसेंसी यानी कि काम ना हो, इस चीज की जगह नहीं है, क्योंकि फिर हमारी टीम फेल हो जाएगी. ट्रस्ट, टॉलरेंस, टुगेदरनेस तो होगी, लेकिन टीम फेल हो जाएगी, है ना. सबसे ऊपर गोल है, गोल के अंदर जो कॉम्पोनेंट्स है वो हम पहला कंपोनेंट था कि टीम में सबका एक साथ मिलके चलना बहुत जरूरी है फॉर अ सक्सेसफुल टीम. टीम में एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है, एक दूसरे की कमियों को टॉलरेट करना कुछ हद तक हमें सीखना चाहिए. ऐसा भी नहीं है कि कोई कुछ आके भी बोल जाए तो हम बोले नहीं नहीं ये तो हमारा टीम मेंबर है, और ये नहीं नहीं हम तो इसको कुछ कहेंगे ही नहीं, ऐसा भी नहीं है. टॉलरेंस एज फार एज इट इज एडिंग टू आवर गोल, राइट, एंड टुगेदरनेस. हम अकेले तो कुछ, अकेले तो टीम है ही नहीं, अकेले तो फिर हम इंडिविजुअल है, राइट. एक ये खरगोश और कछुए की कहानी हम सबने सुनी है बचपन में. हमने ये कहानी छोटे बचपन से सुनते आए हैं कि एक खरगोश था और एक कछुआ था, और ये दोनों ही रेस लगाते हैं, और खरगोश सो जाता है क्योंकि उसे लगता है अरे मैं तो इतना तेज भाग रहा हूँ और इतनी तेजी से मैं फटाफट कर लूंगा, और मैं सो जाता हूँ, थोड़ी देर सो भी जाऊंगा. उसने पेड़, एक पेड़ ढूंढा और उस पेड़ के नीचे सो गया. इतने में जो कछुआ था वो अपने गोल पे कायम रहा, धीरे धीरे धीरे धीरे करके वो गोल की तरफ बढ़ता रहा, और उसने देखा कि कछुआ तो उसने देखा कि खरगोश तो सो रहा है, तो उसने कहा चलो ठीक है मैं इसको जगाता नहीं हूँ, ये तो सो ही रहा है, इन एनी केस मुझे जीतना है, ये रेस जीतने के लिए है, मैं आगे बढ़ता हूँ। तो कछुआ जो था धीरे धीरे धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और अंत में वो रेस जीत गया। जब खरगोश उठा तो उसने देखा अरे मैं तो सो गया था और मैं ये रेस हार गया। ये स्टोरी सुनी है किसी ने पहले या इससे अलग कोई स्टोरी सुनी है किसी ने कछुए और खरगोश की? आप
1: हाँ जी,
0: मुझे
1: सही
0: सबने
1: नहीं है हम सबने किया मैंने।
0: सुनी है। इस स्टोरी में एक ट्विस्ट लेके आते हैं, इस स्टोरी को अगर एज ए टीम सुनाना है हमको तो हम कैसे सुनाएंगे? अगर खरगोश और कछुए की टीम है, अभी क्या था कि कछुआ अलग भाग रहा था, खरगोश अलग भाग रहा था, वो एज ए टीम नहीं भाग रहे थे। कछुए की अपनी कुछ स्ट्रेंथ थी और खरगोश की अपनी कुछ स्ट्रेंथ थी। अभी वो तो जंगल में रहते हैं लेकिन हम लोग तो इंसान हैं, हमें तो एक साथ जुट के काम करना है, और हम हमारी क्वालिटीज कछुए और खरगोश जैसी ही है, क्योंकि हर ह्यूमन बीइंग अलग है। हाँ, हम सबकी जो शक्तियां हैं या सबकी जो वीकनेसेस हैं वो सबकी अलग अलग हैं। अगर ये स्टोरी थोड़ी सी टीम वर्क में सुनाई जाए तो उसमें हम ये डाल सकते हैं कि कछुआ और खरगोश एक रेस में थे, उस रेस में कई रुकावटें थी। पहले तो बहुत रास्ता जो था वो पथरीला था, बहुत उबड़ खाबड़ पथरीला रास्ता था, और आगे जाके नदी आती है और फिर पहाड़ आता है, ये रेस उनको पार करनी थी। तो जब कछुए और खरगोश ने देखा कि ये रेस तो इम्पॉसिबल है पार करना, अलग अलग अगर हम करेंगे तो एक पड़ाव तक जाके हम रुक जाएंगे, हम ये रेस नहीं पार कर सकते। तो फिर कछुए और खरगोश ने बोला कि ठीक है क्यों ना हम टीम वर्क में काम करें, जब हम टीम वर्क में काम करेंगे तो जो पथरीला रास्ता है वो खरगोश फटाफट पार कर लेगा और मैं खरगोश के ऊपर चढ़ जाऊंगा, और जो पानी का रास्ता है वो कछुआ फटाफट पार कर लेगा और खरगोश उसके ऊपर चढ़ जाएगा, जो पहाड़ का रास्ता है वो फिर खरगोश कवर करके ऊपर पहुंच जाएगा और कछुआ उसके साथ चला जाएगा। तो अगर रेस पार करनी थी तीनों दोनों को तो ये तीनों पड़ाव पार करने थे। अब अकेले तो वो शायद नहीं कर पाते, खरगोश पानी में डूब जाता और ये दोनों ही हार जाते, लेकिन उन्होंने कहा कि ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, ये हमारी इज्जत का सवाल है और हम एज ए टीम काम करेंगे। सो एज ए टीम हमें ये देखना है कि हमारी जो कमियां हैं, हमारी जो इश्यूज हैं, जो प्रॉब्लम एरियाज हैं, क्या हमारे टीम वर्क करने से वो इश्यूज पार हो सकते हैं? क्योंकि हमारा गोल क्या था कि वो रेस को पार करना, गोल ये नहीं था कि जीतेगा कौन, राइट? अगर गोल रीडिफाइन कर दिया जाए, अगर गोल कॉमन हो, जो कि रीट का गोल है कॉमन गोल है, हम कोई कंपनी नहीं है कि मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं, हम एक संस्था है जो समाज समुदाय के साथ काम कर रहे हैं, समुदाय के लिए काम कर रहे हैं, तो क्या हमारे गोल में इंडिविजुअल का जीतना जरूरी है या एक टीम का एक कॉमन गोल की तरफ बढ़ना ज्यादा जरूरी है? कठिनाइयां उसमें भी आएंगी, हो सकता है कछुआ जो है खरगोश का भार ना सहन कर पाए, बट धीरे धीरे धीरे धीरे करके वो एज अ टीम शायद वो रेस पार कर लेंगे, क्योंकि ये तो कंफर्म्ड है कि अकेले वो नहीं पार कर सकते। हम ये बात ऑलरेडी कर चुके हैं कि एक टीम में बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्लियर रोल्स हो, क्लियर कम्युनिकेशन हो। आप देखेंगे बार बार मैम हमें कम्युनिकेट खुद से करती हैं, जहां भी चैलेंज आता है वो खुद से फोन उठाती हैं, हर एक से बात करती हैं, और जो प्रॉब्लम एरियाज है उसको वहीं के वहीं खत्म करने की कोशिश करते हैं। तो एज ए लीडर हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि कहीं भी कम्युनिकेशन गैप नहीं आना चाहिए, जो कम्युनिकेशन है वो लगातार सही तरीके से चलती रहे इन इन अ ग्रुप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये एग्जाम्पल्स हम आसपास अपने, जैसे कि यहाँ इस फोटो में दिखाया गया है, चींटियां जो है बड़े से बड़ा पहाड़ उठा लेती हैं, अपने भार से कई गुना ज्यादा भार वो उठा लेती हैं एज ए टीम जब काम करती हैं। इसका एक और बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, अगर आप देखें हनी बीज, हनी बीज जैसे काम करती है ना, उनका रोल्स बहुत डिफाइंड होता है, रानी मक्खी कौन सी है और वर्कर बी कौन सी है, शहद कौन इकट्ठा करके लाएंगी, और रानी मक्खी की जो क्या कहते हैं सोल्जर बीज होती है वो कौन सी है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिफाइन क्लियरली कि किसका क्या रोल है एक टीम में, क्योंकि जो कॉमन गोल है हमें वो अचीव करना है, राइट? और ज्यादातर टीम्स बड़ी बड़ी जितनी भी कंपनियां आप देखोगे, ज्यादातर टीम्स जो है ना वो फेल इसलिए करती हैं क्योंकि शायद उनकी लीडरशिप अच्छी नहीं होती, शायद लीडर अच्छा है लेकिन लीडर अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, शायद कम्युनिकेशन अच्छे से हो रही है लेकिन उनके गोल्स ही डिफाइन नहीं है भाई, बहुत अच्छे से किया लेकिन पता ही नहीं जाना कहाँ है, पता ही नहीं है करना क्या है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपनी कम्युनिकेशन अच्छे रखें, अपने लीडर को इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है, गोल्स क्लियर होने चाहिए कि टीम किस लिए काम कर रही है, ये जो सेंटर हमने खोला है इतनी जगह पे, जो हमारा सेंटर है किस लिए क्यों काम कर रहा है। और
1: हेलो,
0: हर
1: मैं
0: हाँ जी बिल्कुल
1: स्मिता जी है। आई वुड लाइक टू ऐड वन स्टोरी। अभी मैंने फुल टाइम पहले
0: मैं 1 मिनट अपना
1: एक
0: कैमरा ऑफ करती हूँ क्योंकि मेरे को ना आवाज थोड़ी कम आ रही है, 1 सेकंड सॉरी। हाँ जी आप बोलिए, आप कंटिन्यू करिए।
1: आई हर्ड कि समबडी वाज सेइंग कि हम शुड वर्क लाइक सनफ्लावर्स। तो बाय सनफ्लावर, सनफ्लावर हमेशा सन की तरफ देखता है टू गेट एनर्जी, और वो पूरा दिन सन की तरफ देखता है, सन की तरफ ही जैसे साइड पे सन हमारा जाता है, सनफ्लावर उधर ही मुड़ जाता है एनर्जी के लिए, ताकि वो अपना बाकी का जो उसका प्रोसेस है वो पूरा कर सके। एंड एट द टाइम्स जब सन नहीं होता है, वेदर की वजह से या कोई और रीजन की वजह से, तो सन के ना होने पे सनफ्लावर का, मैंने सुना कि वो सनफ्लावर्स एक दूसरे की तरफ फेस कर लेते हैं टू एक्सचेंज एनर्जी। तो जब हम अपनी टीम के साथ काम करते हैं, हमारा है, हमारे मेंटर्स हैं, वो लोग हमारी हेल्प करते हैं जहाँ तक वो कर सकते हैं वो करते हैं, जब वो लोग अपने किसी और काम में हैं तो वी शुड ऑल्सो वर्क लाइक सनफ्लावर्स, एक दूसरे को सपोर्ट करके अपनी टीम को हमें हर तरह से, हर हर सिचुएशन हम लोग को आगे लेके जाने के लिए वी शुड वर्क। आई जस्ट वॉन्ट टू ऐड।
0: इट इज अ ब्यूटिफुल रिप्रेजेंटेशन सीमा जी, अगर आप अलाउ करेंगी तो मैं ये स्लाइड अपने पैक जो हमारा पीपीटी है इसमें ऐड करना चाहूंगी। आई हैव नेवर हर्ड सच अ ब्यूटिफुल थिंग, मतलब डेफिनेटली ये वर्थ ऐड करने का है कि जब जब सूरज चमकता है यानी कि जब पॉसिबिलिटीज बहुत अच्छी हैं तब तो हम एज ए टीम काम कर रहे हैं, बट जब कठिनाइयां आ जाती हैं तो हमें एक दूसरे की तरफ देखना है, एक दूसरे का साथ जो है वो एज सनफ्लावर, एज ए गुड टीम मेंबर हमें वी शुड नॉट यू नो लेट गो कि अगर आज कठिनाइयां हैं तो आज हम टीम नहीं है, अब हम अलग अलग काम करेंगे। जब तक कि सब कुछ अच्छा था तब तक हम एक अच्छी टीम की तरह काम कर रहे थे, आज क्योंकि प्रॉब्लम आ गई, सन नहीं है, अब हमें रोशनी नहीं मिल सकती, तो रोशनी हमें एक दूसरे से लेनी है। वेरी गुड, थैंक यू सीमा मैम। सो दैट वॉज अ शॉर्ट प्रेजेंटेशन आई हैड क्रिएटेड जस्ट ऑन टीम वर्क, वो हम आपसे शेयर कर देंगे। बट ये बहुत इम्पोर्टेंट कॉम्पोनेंट है, चाहे आज यहाँ पे हैं आप, चाहे कल बड़े हो किसी कंपनी में जाएंगे, चाहे हम ये प्रोफेशनली बात करें तो ज्यादा मतलब ये स्लाइड्स रहेंगी, पर्सनली भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि पर्सनली भी हम घर में अकेले नहीं होते, हमारे माता पिता होंगे, भाई बहन होंगे, और जब अगर शादी हो जाती है स्पेशली फॉर लेडीज महिलाओं के लिए, हम दूसरे घर जाते हैं तो सास ससुर हो सकते हैं, वहां पे पूरी एक एक्सटेंडेड फैमिली हो सकती है, तो उनको भी हम कैसे एक परिवार को एक टीम की तरह देखें ये भी शायद सोचने की हमें जरूरत है, क्योंकि आजकल इतने मनमुटाव हैं, इतनी प्रॉब्लम है, क्योंकि वही वाला एटीट्यूड है ना कि मैं सही हूँ और तुम गलत हो, लेकिन हम सबको तो ये नहीं समझा सकते, सिर्फ खुद को ये समझा सकते हैं। सो इन छोटी छोटी चीजों को हम आप तक इसलिए लेके आते हैं क्योंकि हो सकता है ये छोटी सी चीज किसी की लाइफ में कोई बदलाव लेके आ सके। मुझे मेरे काम का ये पार्ट नहीं है लेकिन मुझे करने में मजा आता है आपसे सीखने, जैसे आज मैंने नई चीज सीखी है सीमा मैम से, ऐसे ही मैं चाहूंगी जो लोग लगातार जुड़ रहे हैं वो कोई ना कोई नई चीज, कोई एक नई सीख हम सबके साथ शेयर करें, बिकॉज सिर्फ मेरा बोलना अच्छा नहीं है, सब सबके पास वो नॉलेज है, सभी पढ़ रहे हैं, सभी के पास वो एग्जाम्पल्स हैं। और कुछ भी एग्जाम्पल सही या गलत नहीं होता क्योंकि हम सब लाइफ से सीख रहे हैं, अगर हम सभी शेयर करने शुरू करेंगे तो आप सोचिए कितना कुछ हम सीखने को मिलेगा। इस सेशन में आना कोई जबरदस्ती नहीं है, जिनको लग रहा है कि कोई इंपॉर्टेंट काम है या कुछ और प्रायोरिटी है आप प्लीज मत आइए इस सेशन में, ये सेशन इन एनी केस आपसे शेयर कर दिया जाएगा जब आपको लगेगा कि आपके पास वक्त है और आपका दिमाग इस रास्ते पे चलने के लिए तैयार है, आप तभी भी सुन सकते हैं। सो देर इज नो मैंडेटरी, यहाँ कोई अटेंडेंस नहीं है, रिकॉर्ड किया जाता है जस्ट क्योंकि ये सेशन हम आपसे शेयर करेंगे ताकि वो आप जब चाहें सुन सकते हैं। ये जूम यूजर का जोक तो हम सबको सुनना है, राइट? वो क्या जोक चल रहा था? फतेहपुर सेंटर, फतेहपुर, राइट?
2: सॉरी मैम, आई एम सो सॉरी। जूम ये चला था कि आपने वहां पे एक पॉइंट रखा था कि सब जो लीडर होता है वो ये चेक करता है कि जो किचन में चीनी है या नहीं, या फिर चाय की पत्ती है या नहीं मैम। बट एज अ लीडर मैं ऐसा कुछ मैंने गलती की तो सो मुझे हंसी आई अपने ऊपर कि हाँ मैं ये कर रहा हूँ, आज मैम जो बात कह रही है वो रियलिटी में मेरे साथ ऐसा हो रहा है,
0: राइट
2: इसलिए
0: हमने
2: मुझे
0: खेल,
2: मैम, या मैम दैट
0: बहुत
2: नॉट
0: अच्छा
2: जोक मैम,
0: पॉइंट,
2: या मैम
0: बहुत
2: ये
0: अच्छा
2: जोक नहीं था
0: पॉइंट।
2: मैम। यस मैम, क्योंकि
0: नहीं
2: मैंने ये
0: मैंने
2: गलती फील की कि मुझे
0: ना,
2: इन्होंने किया है, सो मुझे थोड़ी सी हंसी आई अपने ऊपर आई इस बात को लेकर के, और मेरे
0: नो
2: जो मेंबर्स
0: प्रॉब्लम,
2: हैं उनको भी लगा कि हाँ तो सो सॉरी मैम, मैंने ऐसा कोई
0: नो नो, सॉरी की
2: गलत
0: बात ही नहीं है, मुझे
2: नो
0: लगा कोई अच्छी बात चल रही है तो हमें भी
2: नो
0: पता
2: मैम,
0: चले। तो
2: नहीं
0: मैंने
2: मैम
0: ये नहीं बोला था कि लीडर जो है वो ये देखेगा चाय पत्ती है कि नहीं, मैंने
2: या
0: बोला
2: मैम
0: था,
2: या मैम
0: मैंने ये
2: अच्छा
0: कहा था कि रोल्स बहुत जरूरी हैं डिफाइन होना। हमारे सेंटर में या हमारी टीम में किसका क्या रोल है, ये मैंने सिर्फ एग्जाम्पल दिया था। जैसे हमारे ऑफिस में ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये कुछ चीजों का हिसाब रखना वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसे जो और 10 लोग हैं उनकी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन अगर वो मान लीजिए कोई 2 लोग उसमें से उस दिन नहीं आए, तो एज ए टीम मैं ये नहीं कह सकती ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं। एज ए गुड टीम मुझे थोड़ा सा आइडिया है अगर, तो मैं कह सकती हूँ ठीक है आज वो नहीं आए तो मैं उसका उसकी जगह ये काम करने को तैयार हूँ। तो दैट वॉज जस्ट एन एग्जाम्पल ऑफ अ गुड टीम वर्क, राइट? और कोई कुछ शेयर करना चाहता है? वेरी
1: गुड आफ्टरनून मैम, सुनीता
0: गुड
1: फ्रॉम
0: आफ्टरनून,
1: मैम। जैसा कि आपने आज सारे पॉइंट इतने अच्छे से बताया, तो उसी का एग्जांपल मैं देना चाहूंगी कि जो स्प्रिंगवुड स्कूल शीतला कॉलोनी का है, इतना प्रोग्रेस कर रहा है टीम वर्क की वजह से ही कर रहा है। कहाँ लास्ट सेशन जुलाई में मेरे पास 11 एनरोलमेंट थे और अभी मेरे पास 75 स्टूडेंट्स एनरोल हो चुके हैं
0: वेरी गुड, वेरी गुड,
1: और पेरेंट्स आ रहे हैं, और इसके लिए मुझे और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना पड़ रहा है, और ये रिजल्ट है हमारे टीम वर्क का और आपके सेशंस का, और जो भी मेरी हेल्पर्स हैं, मेड हैं, और जो भी मेरी टीचर्स हैं वो मुझे पूरा सपोर्ट करती है। अगर टीम वर्क ना होता तो हम कुछ भी अचीव नहीं कर पाते। थैंक
0: नहीं
1: यू
0: कर
1: सो मच।
0: पाते। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जहाँ पे टीम्स अच्छी नहीं थी और वो नहीं कर पाई क्योंकि वो सिर्फ ये देख रहे थे कि भाई हमारी सैलरी आई कि नहीं आई, फोकस यही था कि इस मंथ हमारी सैलरी आई नहीं तो अब हम काम नहीं करेंगे। ऐसे भी एग्जाम्पल्स हमारे पिछले कुछ दिनों में हमारे सामने आए। सैलरी इज नॉट एन इश्यू, बट अगर हमारा स्कूल चल ही नहीं रहा है, अगर हमारे बच्चे आ ही नहीं रहे, तो कहीं ना कहीं तो कमी हमारे अंदर है ना, उस कमी को तो हम समझेंगे ना, तभी तो आगे बढ़ेंगे। वरना अगर बच्चे ही नहीं है, बच्चे हम मोबिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, बच्चे हैं ही नहीं, तो फिर स्कूल सिर्फ किताबें चेयर टेबल रखने से तो कोई फायदा ही नहीं है ना, अगर 10 ही बच्चे हैं। सो वेरी गुड एग्जाम्पल सुनीता जी, आपकी टीम इतने अच्छे से 75 बच्चों को मोबिलाइज कर पाई, अपनी अपने आप को आप सेल्फ सस्टेन कर पा रहे हैं। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ अ टीम, क्योंकि उसके बिना पॉसिबल नहीं था।
1: यस मैम, यस मैम। हेलो मैम,
0: हेलो हेलो, हाउ आर यू? गुड
1: आई एम फाइन मैम।
0: दैट आपने ज्वाइन किया है,
1: क्या मैम?
0: अच्छा लगा आपका देख के कि आपने ज्वाइन किया है।
1: हाँ मैम, हमारे सेंटर में बहुत सारी रेलीज ऐसी थी कि उनके घर वाले मतलब उनको यहाँ भेजते नहीं थे, तो जब नई नई लेडीज आती थी तो बोलती थी हमारे घर वाले नहीं भेज रहे, तो हमने घर वालों के साथ बात की तो अब खुद घर वाले आके यहाँ छोड़ देते हैं लेडीज को, देखते हैं कि खुद लेडीज इतना अच्छा टीम बना के सीख रही है तो उनको बहुत अच्छा लगता है मैडम, और लेडीज को भी बहुत अच्छा लगता है कि हम एक जगह पे आके इतना अच्छा सीख रहे हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट भी जुड़े हुए मैम, आप उनके साथ भी बात कर लीजिए, देखो बहुत सारे
0: हेलो
1: स्टूडेंट्स हैं।
0: हेलो हेलो एवरीबॉडी, आपको कैसे?
3: वही हम बता रहे कि हमें इधर रीड इंडिया में आके बहुत अच्छा लगता है। रीड इंडिया, रीड मीन्स पढ़ना सीखना। यहाँ पे आके हम जो पढ़ते सीखते, मतलब पार्लर हुआ, जो जो इधर है वो सब हम पढ़ते हैं, हमें अच्छा लगता है। हमारे घर वाले हमें ना इनक्रीज करते कि लेडीज है, सिर्फ सिर्फ लेडीज है इधर कि आप जाओ पढ़ो, आपको जो अच्छा लगता है वो पढ़ो, आगे पढ़ो ऐसा। और फिर इधर सुवर्णा मैडम भी हमें इंक्रीज करते कि ना आप आइए, और लेडीज होंगे स्टूडेंट होंगे, कॉलेज स्टूडेंट या स्कूल स्टूडेंट है वो भी इधर आते हैं, स्कूल से पढ़ते हैं लाइब्रेरी में, हमें अच्छा लगता है। थैंक
0: अच्छा
3: यू
0: ठीक है, आपको सबको मैं देखती हूँ काफी सारे यंग बच्चे हैं। सो
1: हाँ
0: अगला सेशन अगर हम इंटरव्यू स्किल्स पे रखें या फिर रेज्यूमे राइटिंग पे रखें, सो विल अगर जो जो लीडरशिप से लिंक्ड होगा वो तो हम करेंगे ही, बट आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ यूथ हियर, तो यूथ के लिए अगर एक सेशन आप चाहेंगे तो हम रख सकते हैं। ये काफी इम्पैक्टफुल रहेगा मुझे ऐसा लगता है, बट आप बता सकते हैं इफ इफ यू नीड, हम रेज्यूमे राइटिंग या इंटरव्यू स्किल्स पे एक सेशन कर सकते हैं नेक्स्ट सेशन। ठीक है जी, ऑल राइट। सो सभी अगर किसी को और कुछ इनपुट देना है, कुछ शेयर करना है तो प्लीज करिए, अदरवाइज वी कैन क्लोज द सेशन।
1: जी मैम, सुमन
0: हाँ जी सुमन जी,
1: मैम, सबसे पहले आपका थैंक यू, रीड का थैंक यू कि हम लोग इतना कुछ सीखते हैं रीड से, और टीम वर्क में आप लोगों से सीखा है, टीम वर्क में कैसे काम होता है, कैसे क्या होता है। और शीतला बलून जैसे भी स्कूल हमारा टीम वर्क में बहुत अच्छा चल रहा है, उसी तरह से सेंटर में भी हम लोग टीम वर्क में ही काम कर रहे हैं। जो टीम है यहाँ की बहुत कोऑपरेटिव है, जैसे स्वाति जी हैं, मास्टर जी हैं, और सभी लोग जो जितने भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं, पुराने भी आ रहे हैं और नए भी आ रहे हैं, टीम वर्क हुआ तभी हम लोग जो लेडीजों को रोजगार देने का एक मिशन है इसको हम लोग चला पाए, और इसको हम लोग आगे लेके जाना चाह रहे हैं इसीलिए। और आज वाले सेशन से भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, तो थैंक यू मैम इस चीज के लिए, थैंक यू।
0: थैंक यू, मुझे भी सीखने को मिला क्योंकि मुझे सीमा मैम ने एक बहुत अच्छे से स्टोरी सुनाई है, और डेफिनेटली ये जो स्लाइड्स आपके पास पहुंचेंगी ये स्टोरी उसका पार्ट होगी। सो थैंक यू मेरी नॉलेज भी बढ़ाने के लिए, एंड आई होप ऐसे एग्जाम्पल्स और भी आए आगे। सो आप लोग सब सेफ रहेगा, स्पेशली जहाँ बहुत बारिश हो रही है। सीमा मैम आप कुछ कहना चाह रहे हैं?
1: स्मिता जी, मैं आप सबको शायद पता भी है, मैंने कॉर्पोरेट के साथ भी बहुत साल तक काम किया है, तो एक बहुत ही मैं नाम नहीं लूंगी, बहुत रिनाउंड कंपनी, उसके सीईओ, उनके साथ मेरी मीटिंग थी रिगार्डिंग माय कैफेटेरिया सॉर्ट ऑफ। तो उन्होंने मुझे एक बात बोली थी, वो मेरे लिए बहुत डिप्रेसिंग, वो मैं मेरे को इतना अजीब लगा। मैंने बहुत बहुत बार बहुत लोगों से सुना था कि कॉर्पोरेट सेक्टर इज लाइक एक दूसरे को क्रश करके ही आप ऊपर जा सकते हैं, है ना, टीम वर्क का तो कोई सवाल ही नहीं होता होगा। वो
0: बिल्कुल
1: इतनी बड़ी कंपनी के सीईओ से मेरी बात हो रही थी यार, कि स्ट्रेट अवे सेड ऑन माय फेस, ही सेड कि 10 में से आपको आगे बढ़ना है तो 9 को यू हैव टू क्रश देयर हेड्स, यू हैव टू क्रश देयर हेड्स, उसके बाद ही आप नंबर 1 पे आ सकती है। मैम बहुत कॉम्पिटिशन है, बहुत कॉम्पिटिशन है, तो कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड में आपने आपको सर्वाइव करना है, तो आप अपने आप को यूनिक रखिए, 9 को हटाइए, तब आप पहले नंबर पे आए। वो मेरे लिए बहुत खराब था सुनना, बिकॉज मैंने ऐसा सुना था, लेकिन अपने सामने मैंने ये देखा कि वो खुद मुझे कह रहे हैं कि आप अपने आप को सबसे अलग रखिए, सबको पीछे छोड़ के ही आपकी तरक्की है। लेकिन आज मैं रीड इंडिया के साथ काम कर रही हूँ, एंड वी आर टेकिंग सेशंस ऑन लीडरशिप, ऑन टीम वर्क, एंड सबको मैं कॉन्ग्रेचुलेट, सो लकी कि यहाँ हम लोग टीम वर्क के बारे में सेशंस ले रहे हैं, टीम वर्क में और कैसे बेटर कर सकते हैं, अपने अपने सेंटर्स पे हम टीम बना के काम कर रहे हैं, और एक बिग फैमिली, बिग टीम इंडिया की फैमिली जो कि महाराष्ट्र और कहाँ कहाँ तक पूरे इंडिया में पहुंची हुई है, उस पे हम लोग सब काम कर रहे हैं। वी आर नॉट क्रशिंग एनीबडीज हेड, वी ऑल आर टुगेदर, वी ऑल आर ग्रोइंग टुगेदर। थैंक यू सो मच इंडिया, थैंक यू सो मच।
0: थैंक यू सीमा मैम, इट इज अ रियल थिंग। ऐसा ऐसा कॉरपोरेट में ऐसा ऐसा हर रोज हर घड़ी होता है कि हम किसी को दबा के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हर जगह पे ही हम देखेंगे कि हमें आगे बढ़ना है तो किसी को तो दबाना ही पड़ेगा, किसी को साथ लेके। सिर्फ हमारे पेरेंट्स जो हैं वो ही चाहते हैं कि शायद मतलब माँ बाप ही हैं जो एक एक तरीके से चाहते हैं कि मतलब बच्चे हमसे भी आगे बढ़ जाएं। शायद और कोई इस दुनिया में नहीं चाहेगा कि कोई और मुझसे आगे बढ़ जाए, बट एज ए टीम जब हमें काम करना है, मैम ने मुझे कभी आगे बढ़ने से नहीं रोका। वो हमेशा बोलेंगी अच्छा तुम ये भी कर लो, अच्छा वो ये भी कर लो, अच्छा ये भी कर लो। अब वो करना है नहीं करना है वो मेरे ऊपर है, राइट? सो हमने मैम से सीखा है कि एज ए लीडर किस मुकाम तक हम पहुंच सकते हैं विद आवर टीम। अकेले तो वो शायद अकेले तो वो शायद मेरे को लगता है यूएन के भी हेड, मतलब यूएन में, यूनाइटेड नेशन में किसी हो सकता है, किसी कंपनी, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी सब पार्ट में वो किसी लीडरशिप रोल पे होती है। बट उन्होंने ये अपने ऊपर रखा है कि मुझे सबको साथ लेके चलना है, रीड में काम करना है। अगर वो अकेले निकल जाए तो मुझे नहीं लगता कि वो किसी किसी मतलब सबसे आगे ही निकल जाएंगी। बट हम 5 लाख लोगों से जुड़ के हम कहते हैं कि हम आज यहाँ पे 80 लोग जुड़े हुए हैं, 80 लोगों के साथ शायद 10-10 लोग बैठे होंगे तो हम 800 लोग हो गए, 800 लोगों की भी फैमिली हो गई, तो आप उसको अगर 10 से गुणा करते हैं तो 8,000 लोग हो गए। ऐसे करते करते हम कहते हैं कि रीड सेंटर पे पिछले 17 साल से करीबन 5 लाख लोग आए हैं। अब वो 5 लाख लोग कुछ तो कर रहे हैं, कुछ तो सीख के गए होंगे, चाहे वो यही सीख के गए होंगे कि किताब खोल के पढ़ना कैसे है, 2 शब्द पढ़ के गए होंगे, कुछ सीख के गए होंगे। तो रीड का गोल यही है, और रीड का ये गोल हम इकट्ठे ही उसको अचीव कर सकते हैं, एक साथ ही अचीव कर सकते हैं, अकेले नहीं अचीव कर सकते। सो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ टीम, स्पेशली इन आवर केस। और कहीं बाहर भी जाते हैं आप लोग, जो बच्चे सीख रहे हैं, जो बच्चे कुछ ना कुछ करेंगे आगे लाइफ में, आप ये देखेंगे कि हर कोई इसमें बिलीव नहीं करता। दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आई विन यू लूज एटीट्यूड पे ही काम करते हैं। हमें कैसा होना है ये हमारी चॉइस है। जैसे सीमा मैम ने बोला, शायद वो उस कंपनी में काम नहीं करना चाहती थी, बट वो कंपनी में कोई ना कोई तो काम कर रहा होगा, और वो अगर लीडर कह रहा है कि यू हैव टू विन, तो ही और शी हैज टू विन अगर उस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। तो हमें अपने अंदर कौन सी वैल्यूज लानी है, हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, ये चॉइस हमारे हाथ में है। तो जो लोग रीड में जुड़े हैं उनको तो हम यही कहेंगे कि प्लीज आप टीम वर्क में काम करिए, आई विन यू विन, मतलब हो सकता है विन थोड़ी छोटी हो लेकिन सबकी विन हो, इसी में ही हमारा यही हमारा कॉमन गोल। सो थैंक यू मुझे बर्दाश्त करने के लिए 1 घंटे के लिए, एंड लिसनिंग टू मी एंड शेयरिंग सो मेनी नाइस थिंग्स। सो कोई कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ जी,
2: मैम,
0: हाँ जी,
2: मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे आपने टीम वर्क के बारे में मुझे बताया, हम लोगों को अच्छा लगा, और कि ये नॉलेज बढ़ती है कि हम कैसे टीम वर्क करेंगे, कैसे लोगों के साथ मेंटेन होकर के अपने वर्क को आगे बढ़ाएंगे। बट मैम, एक इन्फ्लुएंस करना होता है, किसी को बताना होता है कि कई बार हम ऐसी जगह पे स्टे करते हैं, रहते हैं, जहाँ पे हमने अपना सेंटर ओपन कर रखा है, कुछ करना चाहते हैं। वहाँ की जो आसपास के लोग हैं ना, वो कंजर्वेटिव टाइप के हैं। अब वो कंजर्वेटिव टाइप के हैं तो वो निकल ही नहीं रहे उससे, तो उन्हें कैसे, किस प्रकार से इन्फ्लुएंस करें? मैम, ये तो समझ, हम लोग क्या है कि अभी कम एज के हैं, कुछ इतनी नॉलेज नहीं होती है, अभी जस्ट है, ग्रो वे यूथ है,
0: तो
2: तो इतना सम...
0: इसका, हाँ, इसका जवाब तो मैं नहीं दूंगी, मेरे पास तो महारथी है इसका जवाब देने के लिए, मेरे पास सीमा जी
2: मैम, आई
0: है,
2: वांट
0: फरा है।
2: अ मीट,
0: नहीं नहीं 1 मिनट आप रुकिए। सो आई वुड रिक्वेस्ट फरा, सीमा जी, मीना, सना, ये
2: हाँ
0: तो
2: जी
0: आप कंजर्वेटिव कम्युनिटी की बात कर रहे हैं।
2: मैम,
0: सो
2: कंजर्वेटिव
0: बिल्कुल बिल्कुल आपको जवाब यहीं पे मिलेगा। सो प्लीज प्लीज बी माय सपोर्ट, मैं इसमें वीक हूँ, मेरी टीम मुझे सपोर्ट करेगी।
1: यस मैम, एक्चुअली मैम आदित्य इज फ्रॉम माय सेंटर ओनली फतेहपुर।
0: यस
1: तो मैम अभी न्यूली लॉन्च सेंटर है तो इट विल टेक अ बिट ऑफ टाइम। ये मैंने आदित्य को भी बोला था कि थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है, बिकॉज इतनी जल्दी कम्युनिटी बाहर नहीं आती है। वी रियली नीड टू वर्क हार्ड फॉर दिस।
0: राइट। सो फरा, आप कुछ टिप्स देना चाहेंगी फतेहपुर सेंटर को? आप बताएं कि कंजर्वेटिव कम्युनिटी में कैसे लोगों को बाहर निकालते हैं।
3: पहले तो मैं थोड़ा सा हिंदी में जानना चाहूंगी क्योंकि इंग्लिश मेरे इतनी जल्दी समझ में नहीं
0: तो वो
3: आता।
0: ये कह रहे हैं फरा कि उनकी कम्युनिटी में लड़कियों, उनकी जो समुदाय है वो इतना खुले दिमाग का नहीं है। अगर मैं कुछ गलत बोल दूं तो प्लीज मुझे माफ करेगा, बट आई थिंक दैट इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू से, कि वो लड़कियों को नहीं निकलने दे रहे हैं, वो नहीं चाह रहे हैं कि सेंटर पे लड़कियां आए या महिलाएं आए या कोई भी आए सेंटर पे सीखने के लिए।
3: जैसे कि इन्होंने बताया कि अभी इनका नया सेंटर खुला है, और अगर इनका नया सेंटर खुला है तो इतनी जल्दी वो लोग बाहर नहीं आएंगे, धीरे धीरे करके आएंगे। इनको थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा, उन लोगों को समझाना पड़ेगा। और अगर इन्होंने 1-2 लड़कियां या 5 लड़कियों को भी बहुत अच्छे से सिखाया, बहुत अच्छी वहां पर सेंटर की बातें पहुंची, तो ज्यादा से ज्यादा लड़कियां खुद आना शुरू हो जाएगी, इनको जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बट ये है कि हम समझा कैसे रहे उन्हें, हम किस तरीके से बता रहे हैं, क्या चीज उन तक पहुंच रही है, कि सिर्फ हम सिखा रहे हैं। 1 मिनट, सॉरी, ऐसा लग रहा है मैं खुद से बात कर रही हूँ। तो
0: हम वहां पर क्या चीज पहुंचा रहे हैं, पहले हम उनके उनको बताएंगे कि हमारा सेंटर किसमें खुला है, लाइब्रेरी है, सिलाई है, पार्लर है, कंप्यूटर है, बट खुला है लेकिन लड़कियों के लिए क्यों खुला है, लड़कियां आगे इससे सीख के क्या करेंगी, उनके लिए ये किस तरीके का प्रॉफिट हो सकता है, किस तरीके से वो सक्षम बन सकती हैं, तो वो थोड़ा सा आप उनको समझाइएगा। और अगर वो आपकी बात नहीं समझे तो दो तीन टीचर्स को लड़कियों को लेके जाइए, उनसे थोड़ा सा बात करवाइए, जब तक आप अच्छे से नहीं समझाएंगे तब तक वहां के लोग नहीं निकल पाएंगे। थैंक यू फरहान।
1: जी नमस्ते स्मिता जी। जी
0: नमस्ते नमस्ते। थोड़े आप हेल्प करेंगे हमारे दोस्त को, यहाँ पे इनका
1: जी
0: नया
1: जी
0: सेंटर खुला है।
1: मैम। हाँ देखो, सबसे पहले हमने जिस गांव में भी आज सेंटर निकालते हैं, नई कम्युनिटी होती है, तो सबसे पहले लोगों के साथ हमें एक रिश्ता बनाए, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कभी कभी जैसे हम लोग किसी गांव में जाते हैं और हमारी मीटिंग लेके जाते हैं कि हम रीड इंडिया में ये एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो कई बार क्या होता है कि उसके घर पर कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कभी किसी का कोई बीमार है या उसके बच्चे को कोई स्कूल में एडमिशन नहीं मिल रहा, तो सबसे पहले हम उसकी बात सुने। हो सकता है कि जो उसकी प्रॉब्लम है उसको हम हल कर दें। कभी कभी स्कूल में अपनी पहचान होती है कि चलो तुम्हारे बच्चे का एडमिशन हम करवा देते हैं, कोई बीमार है उसको हॉस्पिटल तक ले गए, तो एक बार हमने जिस बंदे का काम कर दिया तो वो हमेशा हमारा फ्रेंड बन जाता है। फिर उसको आप कहीं कहीं पे भी बोलो कि तुम इस सेंटर में आ जाओ तो वो तुरंत आने को तैयार है। और उसी गांव में जो हमारे सेंटर से जो लड़कियां सीख के गई हैं, जब 10 लड़कियां दूसरी होती हैं और 5 लड़कियां हमारे जो सेंटर से निकल के जाती हैं उनमें एक अलग ही चेंज होता है, तो उन्हीं के माध्यम से वहां पे जाके कम्युनिटी में उनकी मीटिंग करवाएं कि देखो ये आपके यहाँ से लड़कियां नहीं थी और इनमें इनसे पूछो इन्होंने वहां पे क्या क्या देखा, तो उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। तो शुरुआत में ये चीजें अगर हम करते हैं तो धीरे धीरे कम्युनिटी का एक रिश्ता बन जाता है हम लोगों के साथ, तो वो बहुत हेल्प करता है। जैसे अभी भी हम लोग नए नए और गांव को जोड़ रहे हैं, तो उसमें भी हम यही प्रोसेस कर रहे हैं। 5-7 लड़कियों को जिन्होंने ट्रेनिंग ली है, मैं उनको लेके जाते हैं, उनसे बात कराते हैं, तो ऑटोमेटिक 10-10, 20-20 रजिस्ट्रेशन डेली होते हैं।
0: थैंक यू मीना
1: अच्छा
0: जी।
1: लगाइए
0: सर कि वहां लड़कियां निकलना क्यों नहीं चाह रही है, क्या वो स्कूल नहीं जाती, या फिर वो पेरेंट्स मना कर रहे हैं, या वो कुछ कुछ से खुद से कुछ सीखना नहीं चाहती, कैसा माहौल है वहां का, क्योंकि हमने तो नहीं
2: एक्चुअली
0: देखा ना।
2: एक्चुअली मैम, टाउन एरियाज में क्या है कि जब थोड़ा जो पिछले होते हैं ना, जब थोड़ा सा ग्रो करते हैं, तो आजकल आपको पता है ना, सोशल मीडिया जो बहुत बच्चों को टाइम जो है वो खराब करवा रहा है, सोशल मीडिया पे लगे रहते हैं, तो उनका मन ही नहीं करता है कि कुछ स्किल डेवलपमेंट करें, कुछ सीखें, या आते भी हैं तो कुछ नए तरीके से, या फिर लोग जॉब के लिए करते हैं कि हाँ ये ऑप्शन है तो मुझे सिर्फ जॉब सीधे मिल जानी चाहिए, वो स्किल डेवलपमेंट के लिए बढ़ ही नहीं रहे हैं, कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। आते हैं क्लास में बैठे, कोई कॉलेज भी जा रहा है, पढ़ रहा है, फिर वहां से निकल रहा है, उनको मार्क्स की चिंता भी नहीं है, उनके पेरेंट्स को उनकी जो बिहेवियर है या जो उनकी आजकल जो टाइम का चल रहा है उसकी भी कोई चिंता नहीं है, कोई गेम खेल रहा है तो कोई इंस्टाग्राम पे रील्स बना रहा है, तो ये सारी चीजें लोगों के अंदर बनती जा रही है। एक्चुअली वो कंजर्वेटिव है लेकिन सिर्फ दिखाने के लिए, अंदर से वो एकदम शांत है, क्योंकि वो बच्चों को कुछ कहते ही नहीं है कि यहाँ पे ये सेंटर ओपन हुआ है, यहाँ पे आप स्किल डेवलपमेंट कर लो। तो इसके लिए मैम कोशिश की जा रही है, तो मैं यही जानना चाहता हूँ कि इन्फ्लुएंस करने का क्या और भी रीजन हो सकता है, जब मैंने अच्छे अच्छे सारे उनको चीजें बताई कि ऐसे ऐसे आप कर सकते हैं, एजुकेशन की तरफ आप बढ़ सकते हैं, एजुकेशन आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी तरह से आप बैठ के, ढेर सारी बुक्स हैं आपके पास, कोई भी बुक आप बैठ के पढ़ सकते हैं, हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं, तो लोग आते हैं, लोग विजिट करते हैं, फिर चले जाते हैं, उसके बाद बात ही नहीं करते, भूल जाते हैं, तो ये चीज करने के लिए मैंने एक क्वेश्चन
1: आप
2: है।
1: एक चीज कर सकते हैं, आप देखिए कि किस तरह की स्किल्स की जरूरत है उस वाले
2: जी
1: एरिया में, आपके क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, कौन सी स्किल्स के लिए आप ज्यादा उनसे बात करेंगे तो उनके लिए बेहतर रहेगा। जैसे हम लोग बिल्कुल एकदम टिपिकल गांव में बैठे हुए हैं जहाँ पे इलिटरेट लोग जाते हैं, तो उनको तो हम ऐसी चीजें सिखाते हैं जैसे स्टिचिंग हो गया या और कोई स्किल्स जो जो अनपढ़ औरतें भी कर सकती हैं उस पे फोकस करते हैं। आपके वहाँ देखिए कि किस टाइप की स्किल्स पे वो लोग थोड़ा इंटरेस्ट दिखाएंगे, उसी के फोटोग्राफ्स आप दिखाइए उनको, तो अपने सेंटर के फोटोग्राफ दिखाइए और
2: जी
1: लेडीज
2: मैम,
1: को, लेडीज स्टाफ को लेके जाइए उनके साथ,
0: और
1: दैट विल बी
0: आपकी
1: मोर इम्पोर्टेंट।
0: किटी ज्यादा डेवलप है तो फिर आप एडवांस कोर्स वहाँ स्टार्ट करिए, जैसे कि अगर बच्चे बेसिक कंप्यूटर नहीं सीखना चाह रहे कि बेसिक तो हमें आता ही है, तो थोड़ा टेली सी टेट मतलब ये चीजें स्टार्ट करिए, ट्रिपल सी का कोर्स वगैरह, कि जिससे बच्चों को सीखने में ज्यादा इंटरेस्ट आए, वो लगे कि हाँ हमारे लिए सेंटर खुला। ये नहीं कि हमने बेसिक चीजें रख दी है, बेसिक कंप्यूटर सिखा रहे हैं, बेसिक सिलाई सिखा रहे हैं, बेसिक पार्लर सिखा रहे हैं, इसके अलावा हम कुछ भी नहीं सिखा सकते। तो बच्चों को लगता है कि ज्यादा जहाँ एरिया डेवलप होता है कि ये चीजें तो हमें बेसिकली घर में आती है, हमारी किस काम आने वाली चीजें, तो थोड़ा
2: एक्चुअली
0: सा
2: मैम
0: एडवांस भी रखिए।
2: मैंने ये भी बताया कि मैं एक प्राइवेट टीचर हूँ, मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ
0: ओके
2: बच्चों को।
0: मैम,
2: मैंने ये
0: बहुत
2: भी कहा
0: शुक्रिया।
2: कि 10th और 12th तक के बच्चों को मैं एजुकेशन भी दे सकता हूँ। आपके कोई इंग्लिश लैंग्वेज प्रॉब्लम आ रही है, आपके कुछ ऐसे ही आपके अंदर कुछ फीलिंग्स टाइप की प्रॉब्लम्स है, तो मुझे बताइए, शेयर कीजिए, मैं आपकी हेल्प करूंगा। मैं ट्यूशन के लिए भी कह रहा हूँ, स्पेशली बताने के लिए कि हाँ मैं
0: हाँ,
2: अलग से
0: आप
2: बोल रहा था
0: म्यूट
2: कोई।
0: हो गए हैं, आप म्यूट हो गए हैं।
2: ओके, थैंक यू सो मच मैम, आपने काफी हेल्प किया। हम लोग ट्राई करेंगे और बेटर करेंगे। ओके मैम,
0: ओ
2: या मैम,
0: थैंक यू, ये
2: और
0: टीम वर्क का बहुत
2: थैंक
0: अच्छा एग्जाम्पल था मेरे सामने सामने। सभी लोग चाह रहे थे कि इनका सेंटर जो है वो किसी तरीके से चल चल पड़े, और शायद हम लोग कभी मिले भी नहीं हैं, और शायद हमने अभी आपका सेंटर देखा भी नहीं है, बट एवरीबडी वांटेड कि ये टीम, ये रीड का सेंटर है और ये चल नहीं रहा है। सो कितनी मतलब कितने पैशन के साथ सबने अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करा, तो आई थिंक इससे ज्यादा लाइव एग्जाम्पल नहीं हो सकता था टीम वर्क का। आई एम सॉरी मैं आपका नाम नहीं जान पा रही, फतेहपुर से जो है
2: आदित्य श्रीवास्तव,
0: आदित्य।
2: आदित्य।
0: आदित्य आपके ना ये जो सना का सेंटर है, यहाँ पे कुछ बच्चों ने, आपका जो सना का ये जो सेंटर है, यहाँ पे कुछ बच्चों ने बहुत अच्छे से सीख के अभी वो कुछ कर रहे हैं, तो आप उनको भी बुला सकते हैं अपने सेंटर पे, ताकि वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। और वो बच्चे भी शुरुआत में शायद उतना ध्यान नहीं देते थे, और शायद वो इतने सीरियस नहीं थे, लेकिन आज 5 साल के बाद वो जहाँ पे है, मैंने हमने खुद सुना है उनके मुंह से कि कितना फायदा हुआ है सेंटर को। सना प्लीज हेल्प हिम टू मोबिलाइज, एंड आप कोशिश करिए कि जो आपका
2: यस
0: जो जो स्टोरीज थी, जो जो बच्चे वो पीछे बोल रहे थे हम जब आए थे ज्ञानेश सर के साथ,
2: हाँ जी
0: दोज
2: मैम,
0: पीपल गो टू हिज सेंटर एंड वो मोबिलाइज करने में थोड़ा मदद करें, ये बताते हुए कि उनको कैसे फायदा हुआ है। शायद किसी को देख के हम सीख जाएं कि हाँ यू नो दिस सेंटर कैन बी एड वैल्यू टू अस।
1: वर्क
0: गुड आफ्टरनून।
1: कर रहे हैं उस पर।
0: ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट, थैंक यू। हाँ जी रितु जी।
3: मैम मैं भी एक एग्जांपल शेयर करना चाहती हूँ।
0: हाँ जी
3: अभी मैम हमें जब टारगेट मिला था, तो हमने नूना माजरा जो यहाँ से 4 किलोमीटर दूर पड़ता है मैम, तो वो लोकेशन हमने ली थी। वहाँ के सरपंच इतने हठी थे कि मतलब वो मान ही नहीं रहे थे कि भाई आप लोग एनजीओ चला रहे हो, क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। तो हमने उनको मतलब अपना पूरा डिटेल दिखाया, ऑनलाइन भी दिखाया उनको सारा, तो वो उनको डाउट्स थे जो उनके वो क्लियर हो गए। पैम्पलेट्स भी हमने दिखाई, फिर हमने सर को कहा कि आप हमारे सेंटर पे विजिट करिए, और
0: जी
3: आई नहीं कि हम क्या क्या कर रहे हैं। तो सर आए यहाँ पे, सर ने देखा कि हमें जो XDCP सर हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो रेडी हो गए। और फिर उन्होंने खुद ही, आशा वर्कर हैं और आंगनवाड़ी वर्कर हैं, उनके साथ हम लोगों की मीटिंग करवाई, क्योंकि पहले वो हमें गांव में जाने ही नहीं दे रहे थे, बात ही नहीं करने दे रहे थे, क्योंकि फर्स्ट जो हमारा विजिट था वो सरपंच के साथ था कि हम सरपंच से बात करें कि वहां का कैसा माहौल है, हमें कहाँ बिल्डिंग लेनी चाहिए। तो उन्होंने सीधा मना कर दिया था, कि तो हम भी इतने हताश हो गए थे कि भाई पता नहीं यहाँ पे सेंटर चलेगा या नहीं चलेगा, लेकिन सर के विजिट से, क्योंकि हमने इतना उनको पूरा प्रूफ दिखाया कि हमारे कितने सारे सेंटर्स हैं, सारा उनको डिटेल दिखाया, तो वो एग्री हो गए। फिर अब वो इतना हमें सपोर्ट कर रहे हैं कि पानी की हेल्प कर रहे हैं, उन्होंने हमें फ्री जो जो गांव में पंचायत घर होते हैं वो हमें दिलाया है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी सपोर्ट करवाया उन्होंने, और बहुत सारा सपोर्ट करवाया है, क्योंकि जो ये हमारा कम्युनिकेट है वो देख के कि मतलब कम्युनिटी में हम कैसे काम कर रहे हैं, यहाँ के लोगों से मिले, बात की उन्होंने, तो मैम ऐसे भी उनके डाउट्स क्लियर होते हैं लोगों के। तो जब हम विजिट करवाते हैं, कम्युनिटी से मिलवाते हैं, तो जो डाउट होते हैं जिस बंदे के वो क्लियर हो जाते हैं यहाँ पे
0: बिल्कुल
3: आके। तो हमें
0: बिल्कुल
3: अपने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही वर्क अगले बंदे को दिखाने पड़ते हैं कि हमारे आगे कैसे सपोर्ट मिल रहे हैं हमें, और हम लोग क्या कर रहे हैं। थैंक
0: बिल्कुल
3: यू।
0: जी बिल्कुल, क्योंकि एनजीओ बहुत सारे चल रहे हैं, और शायद सभी एनजीओ का अपना अपना कोई ना कोई स्ट्रेंथ होगा। हमारा स्ट्रेंथ जो शुरुआत में बताया था कि हम जो कमिट करते हैं वो कम्युनिटी को डिलीवर करते हैं, वो हमारी स्ट्रेंथ है। सो थैंक यू वंस अगेन, टाइम बहुत हो गया है, लोग छोड़ के मतलब बैठे हैं अपना काम। सो आई विश एवरीबडी सेफ, बहुत बातचीत
3: हेलो
0: कहीं हो रही है, सो कौन बोलना चाह रहा है? बताना,
3: नमस्ते, मैं
0: फरजाना।
3: प्रजा बोल रही।
0: हाँ जी, नमस्ते।
3: मैं सर के लिए एक थोड़ी सी बात मैं भी बोलना चाहूंगी, क्योंकि मैं भी ऐसे ही एरिया से बिलोंग करती हूँ। वो सर से, सर आप ना टेंशन ना लीजिए, क्योंकि हमको पता है अभी आपका सेंटर नया नया है, और क्योंकि ऐसे एरिया में बहुत से लोग ऐसे भी रहते हैं जो एक दूसरे को कामयाब होते देखते हैं ना, तो उनके उनको देखा देख तो वो खुद को उनके मन में एक एहसास उठता है कि हाँ मैं भी ऐसा कुछ करूँ, क्योंकि बहुत से लोग देखा देख भी आते हैं। तो आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, रीड इंडिया हमेशा बड़ा है और बढ़ता रहेगा, देखना एक दिन बहुत
0: वेरी
3: अच्छा से
0: गुड,
3: बढ़ेगा।
0: थैंक यू
3: जी
0: फरजाना,
3: मैम,
0: थैंक यू। ठीक,
3: थैंक यू मैम।
0: राइट, ऑल राइट, थैंक यू एवरीबॉडी, स्टे सेफ, एंजॉय, बाय बाय।

आज हम जो बात करने जा रहे हैं, हमने पहले स्लाइड्स में बात करी थी कि हम सबके गोल्स हम डिफाइन करते हैं। लीडर्स हमेशा अपने गोल्स डिफाइन करते हैं और उस पे बाय हुक एंड क्रूक, वेदर दे स्टैंड अलोन, वेदर दे हैव चैलेंजेस, वेदर दे हैव पीपल दोज हु आर नॉट सपोर्टिंग देम, दे वॉक थ्रू ऑल दीज थिंग्स। तो इसको क्या बोलते हैं? चेजिंग योर गोल्स। हम अपने गोल्स को चेज करते हैं कि हम कैसे उनको फुलफिल करें। तो जब हम अपने गोल्स चेज करते हैं, हमारे ड्रीम्स, हमारे एम्बिशंस, तो हमें डिसरिगार्ड द पीपल हु टेल यू इट कैन नॉट बी डन। जो लोग बोलते हैं कि ये तो हवा में बात है, ये हम नहीं कर पाएंगे, ये नहीं हो सकता, तो उन लोगों को डिसरिगार्ड ही कर देना चाहिए, ठीक है? क्योंकि वो क्या होगा, अगर 10 में से 5 लोग बोल रहे हैं नहीं हो सकता, तो आपकी 50% एनर्जी तो उन्होंने लाइक वैनिश कर दी, बिकॉज यू ऑल्सो गेट कंफ्यूज वेदर वी आर एबल टू डू और नॉट, राइट? तो बहुत ज्यादा नेगेटिविटी को अपनी लाइफ में सुनना नहीं चाहिए, और इसका यही मकसद है। डिसरिगार्ड मींस, मैं ये नहीं बोल रही कि बिल्कुल बायकॉट कर दो उनके साथ। डिसरिगार्ड मींस डोंट वेस्ट योर एनर्जीज, योर टाइम, योर पेशेंस टू लिसन टू देम, दोज हु आर सेइंग इट कैन नॉट बी डन, बिकॉज यू एज अ लीडर हैज सम मिशन, मीनिंगफुल काम करना है आपको। तो अगर आप मीनिंगफुल काम करने में कोई भी ऐसे बोल रहा है कि ये नहीं हो सकता, तो वो हमें नजरअंदाज कर देना, हमें सुनना ही नहीं है। टर्न अ डेफ ईयर टू क्रिटिक्स, राइट? बिकॉज क्रिटिसिज्म करना बहुत ईजी है, पर साथ चल के काम करना बहुत टफ है। तो मैं ये भी हमेशा अपनी टीम को बोलती हूँ कि अगर कुछ नहीं हो रहा फील्ड पे, तो हमें एनालाइज करने की भी जरूरत है कि शायद वो कुछ चैलेंजेस फेस कर रहे हैं और उनको हम कैसे मिटिगेट कर सकते हैं, राइट? सो व्हाट यू अचीव इन लाइफ विल बी लिमिटेड ओनली बाय योर एम्बिशंस। कुछ एम्बिशन होगी लाइफ में कुछ करने के लिए, विदाउट एम्बिशन तो लाइफ ही नहीं है, उसका कोई मीनिंग ही नहीं है। तो जब हमें कुछ अपनी लाइफ में अचीव करना है, तो हमारे एम्बिशंस तो है ही है, राइट? और अगर हम अपनी अचीवमेंट्स को कम करेंगे, तो हमारे एम्बिशंस भी लिमिटेड हो जाएंगे, और अगर हम अपनी अचीवमेंट्स के ऊपर, अपने गोल्स के ऊपर काम करते रहेंगे, और नेचुरली रिजल्ट आएगा। क्योंकि पिछली बार मैंने बोला था कि अगर पॉजिटिव रिस्पांस है, पॉजिटिविटी है, पॉजिटिव सोच है, तो व्हेन वी लर्न हाउ टू गिव द रिटर्न विल बी डेफिनेटली देयर, राइट? तो ये वहां भी फिट इन होता है कि व्हाट यू अचीव इन लाइफ विल बी लिमिटेड ओनली बाय योर एम्बिशंस। गिव अप चेजिंग योर ड्रीम्स इज वेरी इजी, वेरी वेरी इजी, बट गेटिंग टू योर गोल्स एंटेल्स हार्ड वर्क। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और हमें अपने आप को ऐसे ट्यून करना है कि हम मेहनत करें। हम सब लोग मेहनत कर सकते हैं और कर भी रहे हैं और करेंगे भी, पर अपनी प्रायोरिटीज को सेट करना है, अपने आप को टाइम देना है, अपने घर को टाइम देना है, अपने काम को टाइम देना है, और हम कैसे हार्ड वर्क करें, ये हमें हमेशा ध्यान में रखना है। मैनी गिव अप एट द थॉट लेवल, कि जब हम थॉट ही लेते हैं अपने माइंड में, हम सोचते ही हैं, तो हम कह देते हैं नहीं नहीं नहीं ये तो नहीं हो सकता, इसको तो सोचना ही बेकार है, राइट? होता है ना ऐसे हमारे साथ? और बहुत सारे लोग गिव अप कर देते हैं एक्शन लेवल पे। 3 4 दिन काम किया, 5 दिन किया, महीना किया, फिर वी गिव अप, नो आई एम नॉट फाइंडिंग एनी वैल्यू, एनी इंटरेस्ट, एनी थिंग इन इट, बिकॉज वी आर नॉट विजनरीज, राइट? दोज हु डिफाइन द गोल्स विद वर्ड्स, थॉट्स एंड एक्शन गो अहेड टू देयर लैडर अप। हम बोलते हैं, मतलब कि हम कमिट करते हैं, हम उसके ऊपर सोचना शुरू कर देते हैं और अपनी सोच को एक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं, और हम साथ साथ सीढ़ियां चढ़ते रहते हैं अपनी प्रोग्रेस की तरफ, तो हम
Somehow we are able to realize our dreams. Somehow we are able to, ambitiously do the things what we want to do. Do you all agree with me what I have said? Chasing your goals. बिल्कुल ये प्रैक्टिकल चीजें हैं. मैंने कोई थ्योरी नहीं लिखी है यहाँ पे. सारी ये प्रैक्टिकल डे टू डे हमारी लाइफ में हमारे साथ ऐसे ही होता है. तो हम एक स्टोरी छोटी सी मैंने लिखी नहीं है प्रेजेंटेशन में. आई जस्ट नरेट अ स्टोरी टू यू. सब लोगों को पता है फ्रॉग उछलता है, छोटे छोटे स्टेप लेके उछलता है बहुत. एक बार एक बहुत सारे फ्रॉग्स इकट्ठे जमीन पे थे और अगर अपनी निगाहें ऊपर करके देख रहे थे कि बहुत बड़ा टीवी टॉवर है. एंड दे कलेक्टिवली डिसाइडेड कि आज हम टीवी टॉवर पे क्लाइंब करके चले जाते हैं. राइट तो चलना शुरू कर दिया उन्होंने ग्रुप में. थोड़े जो बहुत ज्यादा तेज छलांग मार सकते थे वो ज्यादा तेज आगे बढ़ गए, जो कम छलांग मार सकते थे वो पीछे पीछे थे. कुछ ने तो वहीं पे ग्राउंड पे ही छोड़ दिया और जोर जोर से आवाजें लगाने शुरू कर दी कि पागल हो, क्यों जा रहे हो, गिर जाओगे, इतनी ऊपर जा रहे हो, किसी के पैर के नीचे आ जाओगे, दब जाओगे, ऊपर पहुंच गए तो वापस कैसे आओगे, कोई आपको वहां से गिरा देगा. मतलब कि दे वर शाउटिंग इन देयर ओन लैंग्वेज. तो तीन चार ऐसे फ्रॉग्स थे जो आगे बढ़ गए और टीवी टॉवर तक पहुंच गए. एंड दे वर वेरी हैप्पी रीचिंग द टीवी टॉवर. ऊपर टॉप में पहुंच गए एंड दे सेड ओ गॉड इट्स अ ड्रीम फुलफिल्ड. और वहां से फिर नीचे आ गए क्योंकि उन्होंने अपनी यात्रा पूरी कर ली थी. वहां पे अपना झंडा लगा दिया उन्होंने कि हमने तो टीवी टॉवर के टॉप पे पहुंच गए. जब वापस आए तो नीचे जो फ्रॉग्स बैठे हुए थे उनकी वेट कर रहे थे, जो आधे रास्ते से वापस आ गए थे और जो गए ही नहीं थे, थॉट लेवल पे ही गिव अप कर दिया था, वो सारे बैठे. और उन्होंने वो दो तीन जो फ्रॉग्स थे उनसे एक एक करके पूछा कि तुम लोग कैसे चले गए वहां पे. और जो भी हमने तो इतना शाउट किया था, मत जाओ, डर रहे थे हम लोग. तो जिसने टॉप पे पहुंच गया था ना, वो फ्रॉग कहता है कि मैंने तो कुछ सुना ही नहीं आप क्या कह रहे थे मुझे, क्योंकि मैं तो बहरा था. वो फ्रॉग ही बहरा था, उसने कुछ सुना ही नहीं. लोग चिल्ला रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसने आसपास परवाह ही नहीं करी कि क्या हो रहा है, क्या शोर आ रहा है, क्या नहीं आ रहा. बस उसके माइंड में तो एक ही था कि मुझे टीवी टॉवर पे जाना है. तो ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है. इसके टर्न ए डेफ ईयर टू क्रिटिक्स. तुम सुनो ही नहीं कि लोग क्या बोल रहे हैं, कि तुम्हारा मिशन इतना क्लियर है, तुम्हारा तुम्हारा गोल इतना क्लियर है कि आपको वो कंबाइन करना है. बाकी के दो से पूछा कि तुम्हारा क्या था, मतलब कि तुम कैसे चले गए ऊपर. तो उसने बोला कि हमने ये जो डेफ फ्रॉग था उसको फॉलो किया, बिकॉज हम यही सोच के चल रहे थे कि अगर ये हमारा लीडर है, हमें रास्ता दिखा रहा है, तो हम तो इसके पीछे पीछे चलेंगे, तो हम तो पहुंच ही जाएंगे ऊपर. तो हमने तो क्रिटिसिज्म को बॉदर ही नहीं किया, रास्ते में हमने किसी की परवाह नहीं करी और हम इसके पीछे पीछे पीछे पीछे चल के ऊपर पहुंच गए इसके साथ. तो ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग लगी मुझे. और फ्रॉग बहुत टिमिड होता है देखा जाए तो, बहुत छोटा सा होता है. तो वो क्या टीवी टॉवर पे चढ़ने का, तो वो उसने तो अपनी लाइफ में इमेजिन ही नहीं किया होगा कि कभी टीवी टॉवर पे मैं चढ़ जाऊंगा. पर उसका गोल बहुत क्लियर था, उसका माइंड में बहुत ही पावर थी कि उसको चढ़ना है. और दो लोग जो उसके साथ चढ़े वो उसको ब्लाइंडली फॉलो कर रहे थे क्योंकि उनका ट्रस्ट फैक्टर था उसके ऊपर कि ये अगर चढ़ जाएगा तो हम भी चढ़ जाएंगे. तो ये इन नटशेल इस स्टोरी को आप प्लीज याद रखना. और अपने गोल्स को कैसे चेस करना है वो इस स्टोरी के माध्यम से, बहुत इजी स्टोरी है और इस माध्यम से आप जरूर अपने गोल्स को चेस कर लोगे और पहुंच भी जाओगे. तो आई फाउंड दिस स्टोरी वेरी इंटरेस्टिंग. आई थॉट लेट मी शेयर विद यू. बहुत लंबी स्टोरी थी, मैंने तो उसका जिस्ट बताया आपको. तो आई थिंक वी शुड लर्न फ्रॉम दीज स्मॉल स्मॉल स्टोरीज एंड अचीव आर बिग गोल्स.
नेक्स्ट है प्रॉब्लम्स इन लाइफ्स फोकस ऑन गैप्स एंड रिजॉल्व. हर एक की लाइफ में प्रॉब्लम्स है, हर एक के काम में प्रॉब्लम्स है. वी ऑल फेस प्रॉब्लम्स इन लाइफ्स. वी एनकाउंटर हर्डल्स दैट सीम टू ब्लॉक आर प्रोग्रेस. बहुत सारे हर्डल्स आती हैं और हमारी जो अचीवमेंट है उसको वो ब्लॉक कर देती है. वी ऑलवेज डिस्कस एंड हाईलाइट द हर्डल्स एंड आर ऑब्सेस्ड बाय देम एंड फेल टू ऑब्जर्व द अपॉर्चुनिटीज दैट मे बी ओपनिंग अप इन फ्रंट ऑफ अस. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ये जब मैं पढ़ रही हूँ तो सुबह मैं जब अपनी टीम के साथ बात कर रही थी तो ये बहुत फिट बैठती है वहां पे कि हम हाइलाइट्स करते हैं जो हर्डल्स हैं, जो चैलेंजेस हैं, और हम उस इतने ऑब्सेस्ड हो जाते हैं उसके साथ कि हम हमेशा फेलियर्स की ही बात करते हैं. पर उसमें से एक जो रे ऑफ होप है, जो एक सनशाइन की छोटी सी किरण है, हम उसको इग्नोर कर देते हैं. और उसमें से जो हमें अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली हैं, जो हमारे सामने आने वाली हैं, हम उसको बिल्कुल ही उस ब्राइटनेस से नहीं देखते जैसे मैं एक सन की रे की ब्राइटनेस की बात कर रही हूँ. तो अल्टीमेटली वही है चीज जो मैंने पहली स्लाइड्स में बोला था कि हम हमेशा क्रिटिसिज्म में आ जाते हैं, हम अपनी परेशानियों को ज्यादा लेके बैठ जाते हैं, हम अपने सॉल्यूशंस की तरफ ध्यान नहीं देते हैं. और जो हमें अपॉर्चुनिटीज, कई बार ऐसे होता है कि हम 80% अपॉर्चुनिटीज ग्रैब कर जाते हैं और 20% में हम फिर नीचे डाउनफॉल आ जाता है. हम अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग नहीं बना पाते कि हम 20% और मेहनत कर रहे हैं तो शायद हम आगे बढ़ जाएंगे. तो इस चीज का भी हर समय हमें ध्यान रखना चाहिए. मैं बहुत आई एम वेरी पॉजिटिव इन द सेंस कि आई एम वेरी आई नो एवरीथिंग कि चैलेंजेस क्या आते हैं, बट उन चैलेंजेस को लेके बैठे रहेंगे तो कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे. पर अगर हम अपॉर्चुनिटीज को भी देखेंगे कि क्या है, तो तभी आपको पता है ट्रेनिंग्स में हम बहुत सारे साइंटिफिक टूल्स भी यूज करते हैं, स्वॉट एनालिसिस, दिस दैट, पर द मेजर स्वॉट एनालिसिस इज योर थॉट प्रोसेस विच इज द इनर वॉइस व्हाट इज टेलिंग यू, राइट? दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. वी फोकस ऑन प्रॉब्लम्स रादर देन द सॉल्यूशंस. The psychologists have proved that what your mind focuses on that tends to grow. Scientists ये भी कहते हैं कि हमारे ब्रेन में 80% जो नेगेटिविटी है वो इतनी हावी हो जाती है कि हमें पॉजिटिव सोचने ही नहीं देते. पर हमें अपने आप को, अपने माइंड को, अपने ब्रेन को ऐसा ट्यून करना है कि हम हमेशा पॉजिटिव सोचें और अपॉर्चुनिटीज की तरफ बढ़ें. और अपॉर्चुनिटीज ऐसे डोर स्टेप पे तो बहुत ही कम आती हैं.

अपने जो पड़ाव है उनको पार कर ले. सो द प्रॉब्लम्स लुक बिगर, फोकस ऑन गैप्स एंड रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स. द लास्ट पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अगर गैप्स को एनालाइज कर लें और हम उसके ऊपर बातचीत करें अपनी टीम के साथ कि हम इन गैप्स को कैसे रिजॉल्व करें, तो हमारे प्रॉब्लम्स के बहुत सारे सॉल्यूशंस हम खुद ही निकाल सकते हैं और हमें किसी से मदद लेने की भी जरूरत नहीं पड़ती है. नेक्स्ट आई एम टॉकिंग अबाउट द बेस्ट क्वालिटीज ऑफ ए गुड लीडर्स आर विजन. ग्रेट लीडर्स हैव अ विजन. दे कैन सी इन टू द फ्यूचर. दे हैव अ क्लियर एक्साइटिंग आइडिया ऑफ वेयर दे आर गोइंग एंड वॉट दे आर ट्राइंग टू अकॉम्प्लिश एंड आर एक्सेलेंट एट स्ट्रेटेजिक प्लानिंग. मैंने बहुत सिंपल वर्ड्स में पहली दो स्लाइड्स में बताया. ये डेफिनेशन है कि ग्रेट लीडर्स विजन होती है, हम बहुत देर से बात कर रहे हैं इसकी. दे कैन सी द फ्यूचर, वो जो मैं रे ऑफ सनलाइट की बात कर रही हूँ. दे हैव अ वेरी क्लियर एक्साइटिंग आइडियाज, उनके आइडियाज बहुत क्लियर हैं, बहुत एक्साइटेड हैं. एंड दे आर गोइंग वेयर दे आर गोइंग एंड वॉट दे आर ट्राइंग टू अकॉम्प्लिश, वो उनको सब क्लियर है. एंड दे हैव वेरी एक्सेलेंट वेरी गुड स्ट्रैटेजिक प्लानिंग ऑल्सो. तो जो लीडर्स हैं उनमें ये सब हुनर है और इन हुनर को शेप देके वो कैसे आगे बढ़ सकते हैं, वही विजनरी कहलाते हैं. दूसरा क्या है, करेज. वन ऑफ द मोर इम्पॉर्टेंट क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर इज करेज. अब वो फ्रॉग में तो करेज ही था जो नीचे से जमीन से खड्डे में से निकल के टीवी टावर पे क्लाइंब कर गया. Having the quality of courage means that you are willing to take risks in the achievement of your goals with no assurance of success. अब आज अगर मैं कोई project launch करती हूँ, मैं proposal लिखती है, स्मिता हम शुरू करते हैं project, मुझे ये तो नहीं पता कि इसका end result क्या होगा. मैं बिल्कुल नहीं define कर पाती हूँ. क्या मुझे पता था COVID आ जाएगा जब हम proposal लिख रहे थे? पर हमने क्या किया, कोविड में हमने स्ट्रैटेजी चेंज कर दी. हम आईसीटी प्लेटफॉर्म पे आ गए और हम बेटर अचीव कर पाए क्योंकि हमने बहुत सारे लोगों को ऑनलाइन पे कनेक्ट कर लिया और हमारे कार्यक्रम कहीं पे भी रुके नहीं. तो करेज था कि हम कैसे करें. अभी बहुत सारे कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं वो बंद पड़े हैं जो सितंबर 2020-21 में खुलेंगे. बट हम सेंटर्स भी खोल के बैठे हैं, हम ऑफिस भी खोल के बैठे हैं, हम ट्रैवल भी कर रहे हैं बिकॉज वी आर टेकिंग द रिस्क. व्हाई रिस्क? रिस्क इज नॉट ओनली फॉर माय ओन जॉब, रिस्क इज फॉर द वर्क द होल ऑल द सेंटर्स ऑफ रीड इंडिया इज डूइंग इन इंडिया. दे आर रीचिंग टू 400,000 प्लस पीपल. उनका क्या होगा, वो काम कहाँ जाएगा? वो गोल तो अचीव करना है हमें, तो वो कलेक्टिव गोल है जो हमें अचीव करना है, तो हम रिस्क भी ले रहे हैं, राइट? और मुझे एश्योरेंस नहीं है सक्सेस की. मुझे आज नहीं पता कि रीड इंडिया का अगले साल एनुअल टर्नओवर क्या होगा बिकॉज बस हम मेहनत कर रहे हैं, हम प्रपोजल्स लिख रहे हैं, हम डोनर्स को कनेक्ट कर रहे हैं, हम एग्जिस्टिंग डोनर्स इफ बेनिफिशरीज हैं इस लाइन पे, मैं उनको भी एजुकेट करना चाह रही हूँ इस लेवल पे कि हमारे जो डोनर्स हैं हमारे साथ पिछले 6-6 साल से काम कर रहे हैं. क्या है? ट्रस्ट है. क्या देखते हैं? कि ग्राउंड पे हम अच्छा काम कर रहे हैं. क्यों हमारे साथ बातचीत करना चाहते हैं? क्योंकि हम उनको फुल रिस्पेक्ट और बहुत डिग्निटी से हम उनके सामने बात करते हैं. फोर्थ पॉइंट क्या है कि हम कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं उनके सामने. जो रियलिटी है वही हम उनको बताते हैं कि ऐसे रियलिटीज हैं, ये चैलेंजेस हैं, हम इसको फेस कर रहे हैं. कोविड के दौरान हमने उनको बोला कि हम नहीं ट्रैवल कर पाएंगे. इट वॉज यूनिवर्सली नोन टू एवरीवन. बट हम आईटी प्लेटफॉर्म पे आ गए, आईटी प्लेटफॉर्म को कैसे यूज करना है. इमीडिएट नीड्स क्या है? कम्युनिटी की मास्क चाहिए, खाना चाहिए, सैनिटाइजर्स चाहिए. इमीडिएटली दे शिफ्टेड टू ऑल दीज थिंग्स. किसने उनको बोला करने के लिए? हम ही

0: बोला तो ट्रस्ट फैक्टर इतना स्ट्रांग था कि उन्होंने हम पे विश्वास किया। और कोई ऐसा डोनर नहीं है एक्सेप्ट वन और टू अमॉन्ग 13-14 डोनर्स जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, कि किसी ने एक साल में ही हमारे साथ काम करके बंद कर दिया हो। दे ऑल आर कंटिन्यूइंग विद अस। सो बिकॉज देर इज नो सर्टेनिटी इन लाइफ और बिजनेस, एवरी कमिटमेंट यू मेक एंड एवरी एक्शन यू टेक एंटेल्स अ रिस्क ऑफ सम काइंड। हम कुछ भी करते हैं उसमें रिस्क तो है ही है, पर हम रिस्क को सोच के बैठे रहेंगे तो हम नहीं कर पाएंगे। हम करके उस रिस्क को कैसे मिटिगेट करेंगे, वो हमारा एक्शन है, राइट? तो जब हम कहते हैं वर्ड्स थॉट्स एंड एक्शन, तो जब हम एक्शन लेते हैं तो हम रिस्क को साथ में लेके चलते हैं, और रिस्क को मिटिगेट करना भी हमें सिचुएशंस सिखाती हैं, राइट? तो दिस इज वेरी गुड क्वालिटी ऑफ ए लीडर। आप लोग सब ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, आपका रोजमर्रा का ये काम है कि आप क्या रिस्क आपके सामने आ रहे हैं, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, और आपको नहीं पता। आपको पता था आपके स्कूल बंद हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं पता था। आपने जब स्कूल चलाए थे तो आपने हमें तो नहीं ये कमिटमेंट दी थी कि एक साल के बाद हम आपको इतना प्रॉफिट देंगे, क्योंकि हम बिजनेस की तो बात ही नहीं कर रहे थे। तो चैलेंजेस हमने भी समझे आपके, हमने कॉन्टिन्यूसली सपोर्ट दी, बट विजन हमारी एक थी कि हम पूरे भारत में स्कूल चलाएंगे, हम पूरे भारत में लाइब्रेरीज बनाएंगे, हम पूरे भारत में औरतों को सक्षम करेंगे, हम पूरे भारत में आत्मनिर्भरता का नारा लगाएंगे कि हमने औरतों को सक्षम बनाया, वो अब अपना पैसा कमा रही है, चाहे 2,000 कमाए, चाहे 4,000 कमाए, चाहे 6,000 कमाए, राइट? और हमारी कोशिश हमेशा रहेगी उनको हम 2,000 से 6,000 तक लेके जाए, 6,000 से 12,000 तक लेके जाए, ये कोशिश हमने करनी करनी है। सेंटर्स को सेल्फ सस्टेन करना है, ये हमारा गोल है, हमारा मिशन है। हम कैसे करें उसको हमें करना है। जो मैं अभी ट्रूथफुलनेस की बात कर रही थी, इंटीग्रिटी में वही लिखा हुआ है, इंटीग्रिटी रिक्वायर्स दैट यू ऑलवेज टेल द ट्रूथ टू ऑल पीपल इन एवरी सिचुएशन। ट्रूथफुलनेस इज द फाउंडेशन क्वालिटी ऑफ द ट्रस्ट दैट इज नेसेसरी फॉर द सक्सेस ऑफ एनी बिजनेस। कुछ भी हम कर रहे हैं तो हमारा ओपननेस ट्रस्ट फैक्टर इतना स्ट्रांग होना चाहिए हर एक सिचुएशन पे, क्योंकि मैं ये डेफिनेशंस क्यों शेयर कर रही हूँ आपके साथ, क्योंकि हम एक सोशल एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, तो उसमें ट्रस्ट फैक्टर बहुत जरूरी है। इवन बिजनेस में भी बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं कहूंगी कि बिजनेस में तुम झूठ बोल सकते हो, जितना तुम सच बोलोगे, जितने तुम ट्रांसपेरेंट रहोगे, उतना आपका बिजनेस फ्लरिश करेगा। द बेस्ट क्वालिटीज अगेन अनदर इज ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी डज नॉट मीन दैट यू आर वीक और अनश्योर ऑफ योर सेल्फ, राइट? इट मीन्स दैट यू हैव द सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ अवेयरनेस टू रिकग्नाइज द वैल्यू ऑफ अदर्स विदाउट फीलिंग थ्रेटन्ड। समझ में आया सबको? मतलब कि अगर मैं बहुत ही हलीमी से बात करती हूँ, बहुत रिस्पेक्टफुली बात करती हूँ, बहुत प्यार से बात करती हूँ, दैट डजेंट मीन कि मैं कमजोर पर्सनैलिटी हूँ या मुझे अपने के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है। इसका ये मतलब है कि मैं बहुत हलीमी से बात कर रही हूँ, पर मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत स्ट्रांग है, मैं सेल्फ अवेयर हूँ, और मैं जो लोग मुझे वैल्यू मेरे में वैल्यू देखते हैं वो तो मेरे लिए थ्रेट नहीं है, पर अगर मेरी वैल्यूज के ऊपर मतलब कि दे आर थ्रेटनिंग मी, तो आई एम नॉट टेकिंग दोज, राइट? तो ह्यूमिलिटी पर्सनालिटी में लाना बहुत जरूरी है। दिस इज वन ऑफ द रेयरर एट्रीब्यूट्स और ट्रेट्स ऑफ गुड लीडर्स, बिकॉज इट रिक्वायर्स कंटेनमेंट ऑफ वन्स ईगो। अपनी ईगो को हम पैरों में लेके चलते हैं, क्योंकि हम ईगो को अगर सिर पे लेके चलेंगे तो हमें हर एक की बात बुरी लगेगी, हमें हर एक का कमेंट बुरा लगेगा, हम क्रिटिसिज्म में चले जाएंगे, हम पॉजिटिव सोच को नेगेटिव में बदल देंगे। पर अगर हम अपनी ईगो को अपने शूज में डाल के रखेंगे तो हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो माइंड है, जो हमारी सोच है, वो इतनी क्लियर होगी और वो हमारे गोल के ऊपर फोकस करेगी विदाउट एनी सेल्फिश इंटरेस्ट, राइट? इट मींस दैट यू आर विलिंग टू एडमिट यू कुड बी रॉन्ग, दैट यू रिकग्नाइज यू मे नॉट हैव द आंसर्स, बट इट मींस दैट यू गिव क्रेडिट वेयर क्रेडिट इज ड्यू, विच मैनी पीपल स्ट्रगल टू डू. बहुत सारे काम ऐसे होते हैं कि हम कहते हैं कि ये फ्लैग तो हमारे कंधे पे ही लगना चाहिए. हम कभी भी अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं होते और हम अपनी गलतियां दूसरों के ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं कि ये अगर गलत हुआ तो उसकी वजह से हुआ. मैं तो ठीक था, बिल्कुल. मैं तो टीवी टावर पे चढ़ रहा था. अगर वो डेफ नहीं होता तो वो किसको ब्लेम करता जो नीचे से शाउट कर रहे थे फ्रॉग्स, जो आधे रास्ते से उनको कह रहे थे वापस चलो वापस चलो, जो नीचे से कह रहे थे ये तो पागल है, इनका तो दिमाग खराब है, टीवी टावर पे चढ़ के क्या करेंगे. पर इसका ये मतलब नहीं था कि वो नहीं चढ़े. पर उसने क्रेडिट किसको दिया? जो दो लोग दूसरे थे, दो फ्रॉग्स दूसरे थे, उसने क्रेडिट किसको दिया? जो डेफ था उसने उसको दिया कि मैंने तो कुछ सुना ही नहीं श्योर. और जो दो वो थे उसने बोला हमारा लीडर चढ़ रहा था तो हम भी चढ़ गए. लीडर एक दूसरे को क्रेडिट देना भी एक बहुत बड़ी कला है कि अगर हम कुछ अचीव करते हैं तो टीम की वजह से अचीव करते हैं, हम अकेले कुछ नहीं कर पाते हैं. तो क्रेडिट भी देना बहुत जरूरी है और ये अपनी पर्सनालिटी में आप इम्बाइब कर सकते हैं. ये जो तीन क्वालिटीज मैं ह्यूमिलिटी की बता रही हूँ ये बहुत लाइफ में पे करती हैं इन द लॉन्ग रन. इतनी ज्यादा पे करती है ना कि इसका इम्पैक्ट आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, राइट? और ये ऐसी क्वालिटीज हैं तीनों की वो कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली आपकी पर्सनालिटी के साथ इतनी इम्बाइब हो जाती हैं कि आपकी पर्सनालिटी ही वही बन जाती है. तो अगर एक लीडर बनना है तो इसके ऊपर आप जरूर फोकस करिए और जो बाकी के तीन है ना, विजन, करेज और इंटेग्रिटी, ये अपने आप आ जाते हैं. बिकॉज इफ यू हैव दिस ह्यूमिलिटी एज योर पर्सनालिटी ट्रेट, देन द रिस्पॉन्स इज 100% श्योर. यू विल डेफिनेटली गेट द रिस्पॉन्स, उसमें कोई दो राय वाली बात ही नहीं है. द बेस्ट क्वालिटीज में तीसरा आ रहा है ये स्ट्रैटेजिक प्लानिंग. लीडर्स हैव द एबिलिटी टू एंटिसिपेट ट्रेंड्स वेल इन एडवांस ऑफ देयर कॉम्पिटिटर्स. कॉम्पिटिटर्स तो हर एक जगह पे ही होते हैं. एनजीओस मशरूम कर रही हैं इतनी, पर हम उनको थ्रेट ना मान के अगर हम उनके ट्रेंड्स को समझ लें कि वो क्या कर रहे हैं और हम क्या करें, हम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें तो ये बहुत अच्छी बात होती है. दे कॉन्टिन्यूअली आस्क बेस्ड ऑन वॉट इज हैपनिंग टूडे, वेयर इज द मार्केट गोइंग, वेयर इज इट लाइकली टू बी इन 3 months, 6 months और 1 year और 2 years. दे डू दिस थ्रू थॉटफुल स्ट्रेटेजिक प्लानिंग. फॉर एग्जाम्पल, अब आप सब लोग प्रोडक्शन यूनिट्स भी चला रहे हैं और वोकेशनल सेंटर्स भी चला रहे हैं. अब आने वाले टाइम में जो एनजीओस पॉलिसी लेवल पे काम कर रही हैं उनको फंडिंग नहीं मिल रही है, बिकॉज सरकार कहती है हमें तो अभी मतलब कि ग्रास रूट्स में काम चाहिए, राइट? तो हम लोग क्या हैं, अगर हम अपने कॉम्पिटिटर्स की बात करें तो हम एक बेटर स्टेक पे हैं कि हमारे फंड्स क्यों नहीं बंद हो रहे हैं, क्योंकि हम उन लोगों के साथ काम कर रहे हैं जिनको जरूरत है, जिनके साथ हमें अभी काम करना है, उनको सक्षम बनाना है. तो दैट्स वाई द डोनर्स, जब मैं कह रही हूँ कि वो हमें पिछले 5 साल से 6 साल से सपोर्ट करें, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम ग्राउंड ग्राउंडेड ऑर्गेनाइजेशन है, ग्राउंड पे काम कर रही है. और जब हम मैं बिजनेस की बात करती हूँ तो ये सोच आपको बनानी है जब आप अपने सस्टेनेबल एंटरप्राइजेस की बात करें कि मार्केट क्या मांग रही है, अगले 3 महीने में मार्केट क्या मांगेगी, अगले 6 महीने में मार्केट क्या मांगेगी और अगले 2 साल में क्या ट्रेंड्स होंगे. दे डू दिस थ्रू थॉटफुल स्ट्रैटेजिक प्लानिंग. और ये इतना बड़ा गैप है हमारे लीडर्स में जो हमारे सेंटर्स चला रहे हैं कि हम इस पे सोच नहीं बना रहे हैं. राइट, हम आज के बारे में सोचते हैं और एक महीने के बारे में सोचते हैं, पर उसके बियॉन्ड हम सोच ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि हम इतने इंग्रॉस्ड हैं और सब चीजों में, हम ये सस्टेनिंग एंटरप्राइज को लेके फोकस नहीं हो पा रहे हैं। बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग कॉम्पिटेटिवनेस, ओनली द लीडर्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस दैट कैन एक्यूरेटली एंटिसिपेट फ्यूचर मार्केट्स कैन पॉसिबली सर्वाइव। ओनली लीडर्स विद फोरसाइट कैन गेन द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। फर्स्ट मूवर एडवांटेज क्या होती है कि हम जितने लोग और भी काम कर रहे हैं उनसे हम आगे एलोन कैसे, सबसे आगे कैसे स्टैंड करें। तो ये जब हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, अब मैं बात रीड इंडिया की नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, अब मैं आपके इंडिविजुअल सेंटर्स की बात कर रही हूँ, उसको मैं नाम दे रही हूँ ऑर्गेनाइजेशन। हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे आगे लेके जा सकते हैं? क्या आप लोग मुझे एक पेज विजनरी नोट लिख के दे सकते हैं दैट यू रिफाइन एंड मेक एज योर गोल, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी आर टेकिंग लीडरशिप ट्रेनिंग्स। दिस इज द प्रैक्टिकल एक्शन विच यू कैन डू फॉर योर सेल्फ, राइट? तो मैंने पिछली बार जब वो उनकी ट्रेनिंग हुई थी स्टोरी टेलिंग की सैटरडे को, तो मैंने बोला था कि आप अपने सेंटर्स के बारे में अपनी अपनी स्टोरी, जब से शुरू हुआ, कैसे हुआ, आप क्या कर रहे हो, क्या करना चाहते हो, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट कि आप जहाँ बैठे हो आपको इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप क्या विजनरी हो, उसको कहाँ लेके जाना चाह सकते हो, क्या आप लिख के दे सकते हो मुझे? दैट विल बी अ ग्रेट ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम ऑल ऑफ यू, राइट? दे फोकस ऑन द स्ट्रेंथ्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑन द थिंग्स दैट द कंपनी डज बेस्ट इन सेटिस्फाइंग डिमांडिंग कस्टमर्स इन ए कॉम्पिटेटिव मार्केट प्लेस। आप किस पे फोकस कर रहे हो? अपनी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ, आपकी स्ट्रेंथ क्या है? आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, आपके पास बुक्स हैं, आपके पास कंप्यूटर्स हैं, आप डिजिटल लिटरेसी की बात कर रहे हो। जिनको कंप्यूटर्स नहीं आता, कभी आपने उनको बोला कि आगे आने वाले टाइम पे देखो, कोविड ने ही हमें सिखा दिया कि हमें डिजिटल प्लेटफॉर्म आना चाहिए। जिनको नहीं आता, दे आर हाईली क्वालिफाइड बट दे आर अनएजुकेटेड। बिकॉज अगर कंप्यूटर यूज करना नहीं आता तो हम अपनी लाइफ को आगे कैसे चलाएंगे? मुझे पेटीएम नहीं आता था, मैंने पेटीएम सीखा। मुझे बैंकिंग ट्रांजेक्शन ऑनलाइन नहीं आती थी, मैंने बैंकिंग ट्रांजेक्शन सीखी। बिकॉज बैंक कह रहे थे कि 60+ के लोगों को हम बैंक आना अलाउ नहीं करेंगे, हम नहीं एनकरेज करते। तो टाइम ने मुझे सब कुछ सिखाया। इसी तरह से अगर हम अपनी ऑर्गेनाइजेशंस की स्ट्रेंथ को पहचानेंगे, हम एक पेपर पे लिखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, कैसे लोगों तक पहुंच सकते हैं, कैसे हम, हमारे कस्टमर्स कौन है, हमारे बेनिफिशियरीज, राइट? और हम उनको कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं अपनी सर्विसेज से, हम कैसे इसको सेल्फ सस्टेन बना सकते हैं, दैट यू पीपल हैव टू टॉक एंड डिसाइड, राइट? Your ability as a leader to call the shots and make sure that everyone is focused and concentrated on the most valuable use of their time is essential to the excellent performance of the enterprise. मैंने जान के ये business language लिखी है यहाँ पे, because हमारा 1/3 focus organization का enterprise ही है। तो इसका ये भी मतलब है कि क्या हम अपना टाइम जो 8 घंटे 10 घंटे हम लगा रहे हैं वो हम फ्रूटफुली यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। एवरी डे वेदर इट्स एडिंग वैल्यू टू माय ऑर्गेनाइजेशन और नॉट, ये बहुत जल्दी आपके ऊपर भार आने वाला है। ये बहुत जल्दी अभी आप अपनी संस्था को चलाने के लिए आगे बढ़ेंगे और ये सारे पॉइंट्स आपको उस समय याद आएंगे कि गीता मैम ने ये सारे पॉइंट्स हमें बताए थे, राइट? The last point is cooperation. Gain the cooperation of others by making a commitment to get along well with each key person every single day. रोज आप अपने कनेक्शंस, अपनी नेटवर्किंग, अपने स्टाफ का लाइक यू नो टीम वर्क को हमेशा ये सोचो कि हम कैसे रिफाइन करें इसको, हम कैसे इकट्ठे आगे बढ़ सकते हैं, किसमें क्या स्ट्रेंथ्स हैं। आपको मैं ये भी बोलूंगी कि आप ये एक एक्सरसाइज करो, मैं भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रीड में करूंगी कि हमारे जितना स्टाफ है, 5 है 6 है, हमारी स्ट्रेंथ्स क्या क्या हैं, हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम द जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज विच द ऑर्गेनाइजेशन हैज गिवन। सी दीज 5 जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैव बीन गिवन बाय द ऑर्गेनाइजेशन, दीज 5 क्वालिटीज आई हैव द स्ट्रेंथ, आई कैन कॉन्ट्रीब्यूट एडिशनली। डू दिस एक्सरसाइज, दिस विल रियली हेल्प यू टू डू दैट, राइट? यू ऑलवेज हैव अ चॉइस व्हेन इट कम्स टू अ टास्क, यू कैन डू इट योर सेल्फ और यू कैन गेट समवन एल्स टू डू इट फॉर यू, विच इज इट गोइंग टू बी। ये एक्सरसाइज आपको बहुत बहुत हेल्प करेगी। मैं दोबारा से ये पॉइंट्स पढ़ना चाहूंगी आपके सामने, बहुत इम्पोर्टेंट है। विजन, करेज, इंटेग्रिटी, ह्यूमिलिटी, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, फोकस एंड कोऑपरेशन, ठीक है? आप इनको सेल्फ एनालिसिस भी करें और ये 7 पॉइंट टीम में बैठ के डिस्कस भी करें, और जो एक्शन पॉइंट्स मैंने बताया अगर आप उन पे फोकस करेंगे तो आई एम 100% श्योर यू कैन रीच द टीवी टावर, राइट? लीडरशिप स्टाइल, बहुत सारे लीडरशिप स्टाइल हैं, बहुत सारे, बट मैं जो हमारे को सूट करता है वो है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। ट्रांसफॉर्मेशनल, हम कहते हैं ना ट्रांसफॉर्मिंग कम्युनिटीज, हम ऐसे ही थोड़ा लिख रहे हैं उसको। अभी हम डायरी प्रिंट करा रहे हैं आप सब लोगों के लिए, उसके ऊपर लिखा है 14 इयर्स ऑफ सर्विस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग कम्युनिटीज। झूठ तो नहीं लिख सकते ना, हम कर रहे हैं तभी तो हम लिख रहे हैं ना। इज ऑफन डिफाइंड एज ए सिंगल मोस्ट इफेक्टिव स्टाइल। दिस स्टाइल वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड ड्यूरिंग द लेट 1970s एंड लेटर एक्सपेंडेड अपॉन बाय रिसर्चर बर्नार्ड एम बास। मैं क्यों ये बोलना चाह रही हूँ कि ये जो जार्गन्स हैं ये कहीं ना कहीं सच हुए हैं और तभी हम इनको आगे लेके चल रहे हैं और हम इस पे बात कर रहे हैं, ठीक है? दीज लीडर्स टेंड टू बी इमोशनली इंटेलिजेंट, एनर्जेटिक एंड पैशनेट। दे आर नॉट ओनली कमिटेड टू हेल्पिंग द ऑर्गेनाइजेशन अचीव इट्स गोल बट ऑल्सो टू हेल्पिंग ग्रुप मेंबर्स फुलफिल देयर पोटेंशियल। ये एक सेंटेंस में मैंने समराइज किया है जो लास्ट 7 पॉइंट्स मैंने बताए हैं एक लीडर की क्वालिटीज के बारे में। अब लीडर की क्वालिटीज तो बता दी कि लीडर को करना क्या है। पहले तो हमने गोल्स भी चेज करे, फिर हमने अपने वो पॉइंट्स भी यहाँ पे हाईलाइट करे बेस्ट क्वालिटीज के। फिर अभी हम कह रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप बेस्ट है क्योंकि वो इमोशनली इंटेलिजेंट है। इमोशनली इंटेलिजेंट का मींस है कि मैं दूसरों के पर्सनालिटी की कदर करती हूँ, उनके थॉट्स की कदर करती हूँ, उनके जो वॉट एवर दे आर शेयरिंग और सेइंग और हेल्पिंग आई रिस्पेक्ट दैट। और ये एनर्जेटिक भी है और पैशनेट भी है, तो इन सबको कंबाइन करके हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को कैसे अचीव कर सकते हैं ये हमें बहुत ध्यान रखना है। रिसर्च शोज दैट दिस स्टाइल ऑफ लीडरशिप रिजल्ट्स इन हायर परफॉर्मेंस। अगर आप ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप हैं तो उसकी परफॉर्मेंस हमेशा हायर होगी एंड मोर इम्प्रूव्ड ग्रुप सेटिस्फेक्शन। आपको सेटिस्फेक्शन होगी कि जो आपके साथ काम कर रहे हैं वो आपकी सोच के मुताबिक कर रहे हैं, हमारी सोच कॉमन है, हमारे हमारे थॉट्स कॉमन है और हमारे एक्शन भी कॉमन है। तो ये इस पे रिसर्च हो चुकी है कि जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल है ये हमेशा संस्था को आगे लेके जाता है, कभी भी संस्था को पीछे नहीं करता है क्योंकि हम डिक्टेटर नहीं है। हम मींस रॉब से और दबाव से काम नहीं करा रहे हैं, हम लोगों को मोटिवेट करके काम करा रहे हैं, हम लोगों को इंस्पायर करके काम करा रहे हैं। तो यही एक ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेके जाने का बेस्ट तरीका है। लास्ट स्लाइड इज कि जब हम मोटिवेशन की बात करें, मैंने अभी मोटिवेशन वर्ड यूज करा था, तो मोटिवेशन है क्या चीज? हम बहुत वर्ड यूज करते हैं कि हम मोटिवेशन कर रहे हैं, हम मोटिवेट कर रहे हैं, पर उसको समझने की भी जरूरत है. मोटिवेशन इज द प्रोसेस दैट इनिशिएट्स, गाइड्स एंड मेंटेन्स गोल ओरिएंटेड बिहेवियर्स. इट इज व्हाट कॉजेस यू टू एक्ट. मोटिवेशन ये नहीं कि हमने दो बात कर दी तो मोटिवेट हो गए हम. हमें उसको एक्शन में कैसे लाना है, अपने बिहेवियर में कैसे लाना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. थ्री पॉइंट्स हैं इसके, एक्टिवेशन, परसिस्टेंस एंड इंटेंसिटी. हम मोटिवेट तो करके हम अगर चुप करके बैठ जाएंगे तो कोई भी मोटिवेट नहीं होगा. उसके साथ हम बोलते हैं ना कि हम हैंड होल्डिंग कर रहे हैं. हैंड होल्डिंग का क्या मतलब है कि हम उनके साथ एक्टिवेशन, एक्टिवेशन मतलब कि वी आर वॉकिंग विद देम, राइट, वी आर डूइंग वर्क विद देम. और परसिस्टेंस जो मैंने बोल रहा था, परसिवेरेंस, एक स्लाइड में पिछले 3-4 सेशन में मैंने बात की थी परसिस्टेंस की, हम कितना उसको कॉन्टिन्यूसली करते हैं, चाहे फेलियर्स आए चाहे चैलेंजेस आए, और किस इंटेंसिटी के साथ करते हैं. अगर हम एक्टिवेशन, परसिस्टेंस और इंटेंसिटी को कंबाइन करके हम एक्शन ओरिएंटेड काम करते हैं, तो तभी हम कह सकते हैं कि हम किसी को मोटिवेट कर रहे हैं, राइट. हर एक इम्पोर्टेंट वर्ड का पीछे मीनिंग होता है. बहुत सारे, मैं इधर एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ. हम ट्रेडमिल पे चढ़ते हैं एक्सरसाइज करने के लिए, राइट. हम बटन दबाते हैं तो ट्रेडमिल चलता है. तो हम क्या करते हैं, हम उसको एक्टिवेट कर देते हैं ट्रेडमिल को. हम चल रहे हैं, हम 2 मिनट करते हैं, हम थक जाते हैं. हमारी बॉडी हमें बोलती है कि नहीं, अब हम नहीं और भाग सकते. वही मैं ब्रिगेडियर वाला एग्जाम्पल ले रही हूँ कि पहले तो तुम अपनी लेग से भाग रहे थे, अब अपने माइंड से भागो. तो हम परसिस्ट करते हैं, हम घड़ी देखते हैं, अच्छा 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट. जब हम 10 मिनट ट्रेडमिल पे भाग लेते हैं इंटेंसिटी के साथ, तो क्या हुआ, हमारा जो, हमारे पसीने भी छूटते हैं, हमारा वेट भी कम होता है, तो हम स्लोली अपने गोल पे पहुंच रहे हैं कि आज मुझे अगर 1 महीने में मुझे 10 किलो वेट कम करना है, तो मुझे ट्रेडमिल में 10 मिनट से कम नहीं भागना है, राइट. दैट इज मोटिवेशन, दैट इज सेल्फ मोटिवेशन. और जो जिम में कोच होता है वो आपको मोटिवेट कर रहा है, इंटेंसिटी आपकी वर्ड आ रहा है, आपको परसिस्टेंस की बात कर रहा है, आपको बोल रहे ट्रेडमिल पे भागो. बहुत सिंपल एग्जाम्पल से मैंने आपको ये चीज समझाई कि मोटिवेशन है क्या. हमारे यहाँ पे लड़कियां आती हैं सीखने के लिए और हम बीच में ही छोड़ देते हैं उनको, वो चली जाती हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं हम उनको मोटिवेट इन तीनों पॉइंट से नहीं कर पा रहे हैं, राइट. तो ये बहुत जरूरी है. हेल्प इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ पीपल एज दे वर्क टूवर्ड्स गोल. एफिशिएंसी इम्प्रूव करने की जरूरत है. हेल्प पीपल टेक एक्शन. एनकरेज पीपल टू एंगेज इन हेल्थ ओरिएंटेड बिहेवियर्स. हेल्थ ओरिएंटेड बिहेवियर्स मतलब कि अगर तबीयत ही खराब हो गई तो वो सेंटर में तो आएगी नहीं, राइट. हेल्प पीपल अवॉइड अनहेल्थी एंड मैल एडेप्टिव बिहेवियर्स. ये दूसरा रिस्क मैं बात कर रही हूँ कि जो अनहेल्दी प्रैक्टिसेस हैं उसको रोकने की जरूरत है, राइट. बहुत जरूरत है रोकने की, क्योंकि हम, हमारा माइंड इतना नेगेटिव भागता है कि हम छोटी छोटी बात पे दूसरों के ऊपर डाउट करना शुरू कर देते हैं, हमें विश्वास ही नहीं बैठता. ये ह्यूमन टेंडेंसी है, पर इसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, अगर हम ट्रांसपेरेंट हैं, है ना, ट्रांसपेरेंट है, ट्रस्टवर्दी है, जो मैंने पीछे क्वालिटीज बताई हैं, अगर उसको हम मद्देनजर रखेंगे तो हम एक दूसरे पे डाउट नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि सब कुछ ट्रांसपेरेंट चल रहा है यहाँ पे. हेल्प पीपल फील मोर इन कंट्रोल ऑफ देयर लाइव्स. बहुत इस पे हम बात कर चुके हैं, 10 स्केल फॉर्मूला ही इस पे है. इम्प्रूव ओवरऑल वेलबींग एंड हैप्पीनेस. तो ये मैं आप सबको समझाना चाह रही थी थोड़ा, क्योंकि मेरी 7 प्रेजेंटेशंस थोड़ी लाइट थी, ये थोड़ी सी मैंने टफ की है, बिकॉज़ किस लिए टफ किए, ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों को समझने के लिए। एक लीडरशिप को करना क्या है, एक लीडर में क्या क्या होना चाहिए। अगर मैं इसको रिट्रेट करूं, आप प्रेजेंटेशन स्टाइल देखेंगे कि मैंने गोल्स की पहले बात की, फिर मैंने एक लाइट सी स्टोरी सुना दी, फिर उसके बाद मैंने बोला कि हम नेगेटिव ना सोचें, हम प्रॉब्लम्स को ना फोकस करें, हम उसमें जो एक सूर्य की किरण आ रही है उसकी तरफ देखें और आगे बढ़ें। फिर मैंने बेस्ट क्वालिटीज क्या है लीडरशिप की, उस पे मैंने 7 क्वालिटीज की बात की, विजनरी, करेज, इंटेग्रिटी, ह्यूमिलिटी, देन स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, फोकस एंड कोऑपरेशन। ये एक संस्था के करेक्टरिस्टिक्स भी हैं। ये 7 करेक्टरिस्टिक्स इतने इम्पोर्टेंट है कि अगर हम इसको एक को भी इग्नोर कर देंगे तो ऑर्गेनाइजेशन नीचे चली जाएगी, वो ग्रो ही नहीं कर पाएगी। फिर उसके बाद मैंने लीडरशिप स्टाइल की बात करी कि ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप क्या होता है, इमोशनली इंटेलिजेंट, वो वीक नहीं होता है पर लोग उसको वीक समझते हैं, पर उसमें इतनी पावर होती है कि वो कैसे सबको अपने पैशन के साथ जोड़ के रखे, राइट। और लास्ट है कि जब हम ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप की बात करें तो हम मोटिवेशन की बात करें, पर मोटिवेशन का मतलब क्या है। आप हमेशा कहते हो कि हम अपनी कम्युनिटी को बहुत मोटिवेट करते हैं, पर अब आप इन 3 पॉइंट्स के साथ मोटिवेट करके देखना रिजल्ट में क्या चेंज आता है। एक्शन, परसिस्टेंस एंड इंटेंसिटी, राइट। इन तीनों के अगर मीनिंग चाहिए, एक्शन मतलब कि हम काम करें, परसिस्टेंस मतलब कि हम अपना उसको लगातार करें, और इंटेंसिटी की हम अपनी पूरी एनर्जीज उस काम में लगा दें और उसको फेलियर नहीं होने दें। दैट इज द आउटकम ऑफ मोटिवेशन। दैट्स ऑल। आज मैंने बहुत बोला है, 4 बजने वाले हैं तो किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, मैं एक्सप्लेन करने के लिए तैयार हूँ इसको। ठीक है, 5 मिनट है
1: यस
0: हमारे पास।
1: मैम,
0: हाँ, और ये स्लाइड्स रो हमेशा हर सेशन के बाद आपके पास आती हैं। मैं आप सबको एनकरेज करूंगी कि इस स्लाइड्स को पढ़ के आप अपनी एक डायरी लिखनी शुरू कर दें कि हर पॉइंट में आप कैसे अपनी लाइफ में उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, आप उसको कैसे इम्बाइब कर रहे हैं अपने एक्शन लेने के लिए, आप अपनी पर्सनालिटी को कैसे चेंज कर रहे हैं इन पॉइंट्स के अलावा। अगर ये आप होमवर्क करेंगे तो इट विल हेल्प यू सो मच, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, राइट। आप प्लीज ये करिए, आपका जरूर 10 मिनट रात को ज्यादा जाएगा इस पे, पर अगर 8 स्लाइड्स हैं, 8 स्लाइड्स के ऊपर आप हर पॉइंट पे एक एक लाइन भी लिख लेंगे या एक स्लाइड के ऊपर एक पॉइंट लिखेंगे तो आपकी डायरी में 10 पॉइंट आ जाएंगे लिखने के लिए। आपका थॉट प्रोसेस बढ़ेगा, आपकी सोच बढ़ेगी, आपका विजन स्ट्रांग होएगी और आप एनकरेज फील करेंगे और आप बहुत वेल डिफाइंड अपने अपने शार्प कर लेंगे अपने विजन को और एक्शन उसी तरीके से लेंगे। ये मैं गारंटी लेती हूँ इस चीज की, आप करके देखिए। ये सारे मैनेजमेंट के लेसन्स हैं जो मैं बहुत मेहनत करके इसको आपके मतलब कि लाइक आई ब्रिंग दैट इन टू ए डिस्कशन लेवल कि कहाँ मैं ये लीडरशिप आपको समझा सकती हूँ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। जस्ट 5 मिनट्स फॉर एनी क्वेश्चन आंसर्स, आई एम ओपन फॉर दैट।
1: ये आपने बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया कि ब्लेम गेम नहीं होना चाहिए। ब्लेम करके ही हम अपने अपने अच्छे काम भी कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ फेलियर कहीं हो किसी बात में तो दूसरे को ब्लेम कर जाते हैं हम लोग।
0: हाँ,
1: तो दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग यू टोल्ड अस कि ब्लेम गेम नहीं होना चाहिए, एंड हर चीज में वी शुड ऑलवेज टॉक अबाउट द सॉल्यूशंस, पर्सनल लाइफ में भी अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी।
0: बिल्कुल।
1: हमेशा
0: पता
1: कोई
0: है
1: चीज हो जाती है, घट जाती है।
0: बहुत बहुत मायने रखता है ये पर्सनल लाइफ में, मैं आपको बताऊं, क्योंकि हमें ना सुनने की क्षमता होनी चाहिए। हम ना
1: जी
0: सुनने
1: मैम,
0: कि अपनी जो स्किल है ना उसको हम हमेशा बहुत कम टाइम देते हैं, हम हमेशा अपने बोलने की स्किल को ज्यादा टाइम देते हैं। ये ह्यूमन
1: हाँ जी
0: बिहेवियर है, टेंडेंसी है। वेरी नाइस, कंटिन्यू।
1: यस मैम। हाँ जी, हम प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे तो और हम डिमोरलाइज हो जाते हैं उन्हीं प्रॉब्लम्स को रिपीटेडली व्हेन वी टॉक अबाउट, तो लगता है तो गई, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब कैसे ठीक होगा। तो हो चुका, वो तो घट गया, उसको तो अब असाइड करके, तो उसके बाद फैमिली में भी बैठे हुए हैं या अपने स्टाफ के साथ भी आप बैठे हुए हैं, सबके व्यूज लेके फटाफट फटाफट आप सॉल्यूशंस के बारे में बात करो, फिर वो प्रॉब्लम फिर छोटी लगने लग जाती है। तो ये आपने बहुत ही सुंदर पॉइंट बताया कि रे ऑफ आप देखिए हर चीज में, पूरा डार्क नहीं होता कभी भी, कहीं ना कहीं एक सनशाइन होती है, एंड वी शुड चेज दैट एंड वी शुड फॉलो दैट, और हमेशा सॉल्यूशंस के बारे में बात, प्रॉब्लम्स को फटाफट रिजॉल्व करें, यही आप बता रहे थे। दिस वाज वेरी नाइस,
0: वेरी नाइसली समराइज।
1: थैंक यू सो मच,
0: थैंक यू सो मच फॉर समराइजिंग दिस वेरी वेल। एनीबॉडी एल्स? थैंक यू सीमा, आपने तो बड़ी प्रॉब्लम मेरी सॉल्व कर दी। मुझे लग रहा था कि मैं ही बोलती जा रही हूँ, पर आपने समराइज करके तो बहुत उसको इजी बना दिया।
1: थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।
0: या
2: गुड इवनिंग मैम, अकबर बोल रहा हूँ रामपुर से।
0: जी अकबर
2: जी मैम, जैसे सीमा मैम ने बोला और आपके हमने ट्रेनिंग में ये सुना भी था, आपने बहुत पहले ही बोला था कि प्रॉब्लम्स को क्रिएटिव माइंड के थ्रू आप सॉल्व करते हैं, आपकी एक आदत है कि आप उस प्रॉब्लम को लेके बैठते नहीं है और उसको आप क्रिएटिव माइंड के थ्रू, अभी लास्ट स्मिता मैम ने भी हमें फ्राइडे में बताया था लाइफ स्किल्स की ट्रेनिंग में आपका ये एग्जाम्पल देके, और मैंने उसको ना एक ग्रेस्ट कर लिया इस पॉइंट को, और उस पॉइंट पे अब मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ 3-4 दिन से, मैं इस पे बहुत फोकस करके प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मेरे सामने जो भी प्रॉब्लम आ रही है, मैं पहले क्या होता था कि जो प्रॉब्लम आती थी अगर उसका सॉल्यूशन नहीं निकलता था तो मैं हार मान के बैठ जाता था, और एक टेंशन दिमाग को होती थी, बहुत ज्यादा डिप्रेशन सा लगता था कि यार अब क्या होगा, कैसे होगा। बट जब मैंने इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए, मतलब जैसे सीमा मैम ने बोला कि प्रॉब्लम्स को हम असाइड कर दें और उसके सॉल्यूशंस के ऊपर बात करें, तो अब सेम वही मैं करना स्टार्ट करा है, तो इतना मतलब लग रहा है कि हाँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकल ही जाता है जब उसके ऊपर दिमाग लगाओ और उस पर करते रहो फोकस, कि कुछ तो आएगा हल, कुछ तो आएगा, वो अल्टीमेटली आता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, भले से थोड़ा सा ही आए लेकिन आता है, उससे मुझे बहुत फायदा हुआ। रियली थैंक यू मैम, आपने मतलब इतने अच्छे से उसको समझाया था कि वो दिमाग में एकदम बैठ गया है।
0: नहीं, बहुत अच्छी बात है, और ये अगर हम सोचते ही रहेंगे प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स, तो हमारे कंधे के ऊपर जो बैग है ना, वो इतना भर जाएगा कि एक दिन वो इतना भारी हो जाएगा कि हमें दबा देगा वो। पर अगर हम हर प्रॉब्लम का सलूशन लेके वो बैग हम खाली करते रहेंगे, तो वी विल फील लाइट, हमारा ब्रेन लाइट फील करेगा और हम कुछ नया सोच पाएंगे करने के लिए। तो जो अपने कंधे के ऊपर बैग लेके हम चलते हैं ना, उसको बस ये याद रखिए कि हमें लाइट ही रखना है। देयर एंड देन यू फाइंड अ सॉल्यूशन एंड स्टार्ट एक्शन ऑन दैट, राइट?
2: यस बिल्कुल। और एक चीज और कि हम कभी भी, मेरे साथ अक्सर ये होता है कि मैं बहुत आगे तक की सोचता हूँ कि यार कल क्या होगा, अगर मैं ऐसा एक्शन करूंगा तो इसमें फिर क्या होगा, आगे वाले नतीजे क्या रहेंगे, तो उसको लेके क्या होता था, एक स्टेप फॉरवर्ड होने के बजाय और बैकवर्ड हो जाता था। लेकिन अब मैंने ये सोचा है कि नहीं, जो होगा उसके लिए भी कोई ना कोई नया सॉल्यूशन निकाला ही जाएगा, अभी फिलहाल जो है उसको पूरा करो।
0: बिल्कुल, मैंने आपको एग्जांपल दिया ना कि जब हम प्रपोजल लिखते हैं तो हमें नहीं पता सक्सेस क्या होगी।
2: जी,
0: हम डोनर को ये थोड़ा कर देते हैं कि हम 1 साल के बाद जी हम ये 100% करके दिखा देंगे आपको, हम प्रपोज करते हैं कि हम कोशिश करेंगे करने की, राइट?
2: यस।
0: तो हमेशा जो एक्शन है उसको हम अगर सीधे रास्ते पे रखें या सीधी सोच के साथ रखें तो रिजल्ट्स तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है?
2: यस मैम,
0: थैंक यू सो मच। और मैं इनकरेज करूंगी, अगर किसी के कोई और भी डाउट्स रहते हैं तो दे आर वेलकम टू राइट बैक टू मी, राइट? बिकॉज लीडर्स तो आपको बनना ही बनना है, राइट? ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।

आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो। रीड इंडिया समुदाय के सहयोग के द्वारा समुदाय के विकास के लिए कार्य करता है। रीड इंडिया ग्रामीण समुदायों में स्थायी सामाजिक परिवर्तन हेतु शिक्षा, उद्यम और सामाजिक विकास के क्षेत्र में कार्य करता है। आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो।

भारत छोड़ो आंदोलन, महात्मा गांधी का करो या मरो आह्वान और देश भर से अनगिनत आजादी के मतवाले बलिदान की राह पर चल पड़े। उन्हीं में से एक वीरांगना थी कनकलता बरुआ। असम के गोहपुर में जन्मी कनकलता के मन में क्रांति का अंकुर महज 7 वर्ष की उम्र में ही फूट चुका था, जब कनकलता ने पास के गांव में हुई एक क्रांतिकारी सभा में हिस्सा लिया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान तेजपुर में मृत्यु वाहिनी दल के गठन के दौरान कनकलता दल की सक्रिय सदस्य बन गईं। आंदोलन के समर्थन के लिए मृत्यु वाहिनी ने गोहपुर पुलिस स्टेशन पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का निर्णय लिया और 20 सितंबर 1942 को हाथ में राष्ट्रीय ध्वज लिए कनकलता जुलूस के साथ आगे बढ़ने लगी। पुलिस की चेतावनी से बेपरवाह निर्भीक कनकलता के नेतृत्व में जुलूस आगे बढ़ता रहा। जुलूस को रोकने के लिए पुलिस ने गोली चला दी। गोली लगते ही कनकलता गिर पड़ी और आखिरकार हाथ में तिरंगा और दिल में आजाद राष्ट्र का सपना लिए ये महान स्वाधीनता सेनानी हमेशा के लिए पंचतत्व में लीन हो गई।

0: नमस्कार, सलोना ग्रुप प्रस्तुत करता है कार्यक्रम सबला। मैं हूँ आरती।
1: प्रीति की ओर से भी सभी सुनने वाले श्रोताओं को ढेर सारा नमस्कार।
0: हाँ प्रीति, तो आज हम श्रोताओं को किस विषय पर बातें करेंगे?
1: हाँ आरती, हम अपने श्रोताओं को आज देव सूर्य मंदिर के बारे में बताएंगे और चर्चा करेंगे।
0: हाँ, तो अब हम श्रोताओं को ले चलते हैं देव सूर्य मंदिर की ओर।
2: हाँ तो दोस्तों, आज हम आपको ले चलते हैं देव सूर्य मंदिर की ओर, जो कि बिहार के औरंगाबाद जिले से 18 किलोमीटर दूर दक्षिण की ओर देव में स्थित है।
0: बाबा, मंदिर के बारे में विशेषता बताइए ना।
3: मेरा नाम सच्चिदानंद पाठक है। मैं देव सूर्य मंदिर का मुख्य पुजारी हूँ। यह सूर्य मंदिर जो बना हुआ है, यह त्रेता युग का बना हुआ मंदिर है। इस मंदिर में कोई चूना सीमेंट वगैरह का प्रयोग नहीं है, केवल पत्थर पर पत्थर रखा हुआ है। यह मंदिर, भगवान जो वहाँ बैठे हुए हैं, अलग अलग ब्रह्मा महेश और विष्णु की यह प्रतिमा है। भविष्य पुराण से 12 नाम आदित्य का भगवान का लिया हुआ है। आदित्य है प्रथमो नाम, द्वितीयम तु दिवाकर, तृतीयम भास्करम, प्रोक्तम चतुर्थम तु प्रभाकर, पंचमम तु सहस्रांशु, अष्टम चैव त्रिलोचनम, सप्तम हरिदशस्वश्च, अष्टम च विभावसो, नवमं दिन कृत प्रोक्तं, दशम द्वादशात्मक, एकादशम त्रिमूर्ति, द्वादशम सूर्य वच, बारहवां नाम सूर्य है जो हम नित्य प्रतिदर्शन करते हैं। यहाँ एकादश सूर्य की प्रतिमा विराजमान है। उदय काले ब्रह्मणे रूपं, उदय काल में ब्रह्मा के रूप में रहते हैं भगवान। मध्याह्ने तु महेश्वरः, और मध्याह्न काल में महेश्वर के रूप में रहते हैं। अस्तमाने स्वयं विष्णु, अस्त काल में विष्णु के रूप में रहते हैं। त्रिमूर्ति दिवाकर, तीनों मूर्ति दिवाकर है। यह भगवान सूर्य नारायण की विशेषता, मैं विशेष तो नहीं लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि यह भगवान सूर्य नारायण प्रत्यक्ष के देवता हैं। सारे जीवों की ऊर्जा इन्हीं के द्वारा प्राप्त होता है। ये जब छुप जाते हैं तो अंधेला हो जाता है, पूरा विश्व अंधेला रहता है। जहाँ उगते हैं वहाँ दिन होता है, जहाँ नहीं उगते हैं वहाँ रात होता है। ये जलचर, थरचर, नभचर, ये तीनों लोक में जितने भी जीव हैं, सारे जीवों की ऊर्जा इन्हीं के द्वारा प्राप्त होता है। ग्रहों के राजा हैं सूर्य, प्रत्यक्ष के देवता हैं सूर्य। ये जितने भी तारे, चंद्रमा तक चमकते हैं, सब इन्हीं के प्रकाश से प्रकाशवान हैं। समझे कि नहीं? ये शरीर के मालिक हैं, समझे? इनके यहाँ आते हैं लोग, दंडवत वगैरह देते हैं, उससे उनका शरीर आरोग्य होता है। जो राजा इस मंदिर को बनवाए, वे राजा कुष्ठ से ग्रसित थे। ये राजा अहिल थे, उस बाहर लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है, सुन्न भ्योम नभोर सिंधु कर भू इन द्वितीय जुगे बाघे बाने यमौ तिथौ तिथे गुरु दिने देवे दिनेशालाम प्रारभे दृष्टान रचयतु सभ्यादि यस्तासि तस्नराधि प्रभूते आलोको विशुको भुवि। कहता है कि माघ मास शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को गुरुवार के दिन देव नामक स्थान में इला के पुत्र अहिल ने त्रेता में 12,16,000 वर्ष बीत जाने के बाद में इस सूर्य मंदिर का शिलान्यास किया। जबकि 12,96,000 वर्ष का त्रेता व्यतीत हो गया, मतलब 80,000 वर्ष त्रेता में बचा हुआ था, तब इस सूर्य मंदिर का शिलान्यास हुआ। द्वापर 8,64,000 वर्ष व्यतीत हो गया। वर्तमान कलयुग 5,910 वर्ष व्यतीत हो गए। ये कुल मिलाकर के 9.5 लाख वर्ष इस मंदिर को बने। इसका लगभग 110 फीट ऊंचाई है पूरे। लंबाई चौड़ाई तो हमको ज्ञान नहीं
0: है।
3: यह करीब 1 एकड़ में यह पूरे मंदिर है। हाँ हाँ, मंदिर तो सार्वजनिक है, सभी लोग यहाँ आते हैं, दर्शन पूजा पाठ करते हैं, सभी की कामना पूर्ण होती है। जो सच्चे हृदय से भगवान सूर्य नारायण को आवाहन पूजा करता है, उसकी कामना को पूर्ण करते हैं। इसमें कोई संशय नहीं, कोई यहाँ से खाली हाथ नहीं जाता है। जो राजा अहिल इस मंदिर को बनवाए, वे कुष्ठ से ग्रसित थे। वो राजा अहिल कौन थे? तो हर युग में एक मनमंत्र होते हैं, जैसे ये कलयुग में वैवस्व नाम के मनमंत्र हैं, उसी प्रकार से ये त्रेता में मनु नाम के मनमंत्र थे। तो वो मनु की लड़की थी इला और चंद्रमा के लड़का बुध, ये दोनों के संयोग से जो पुत्र पैदा हुए वही राजा अहिल हुए। और जो कि कुष्ठ से ग्रसित थे, कुष्ठ उनका यही निवारण हुआ, उन्हीं के द्वारा जो है सो यह मंदिर का निर्माण किया गया, भगवान सूर्य का स्थापना किया गया।
4: देखिए श्लोक का अर्थ है, ये श्लोक जो शिला पट लिखा हुआ है, इस श्लोक का अर्थ है, माघ मास में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को गुरुवार के दिन देव नामक स्थान में इला के पुत्र एल ने त्रेता में 12,16,000 वर्ष बीत जाने के बाद इस सूर्य मंदिर का शिलान्यास कराया गया। त्रेता युग 12,96,000 वर्ष का होता है, इसमें से 12,16,000 वर्ष घटा देने पर 80,000 वर्ष त्रेता बचा, तब देव सूर्य मंदिर का शिलान्यास कराया गया। द्वापर 96,400 वर्ष का होता है, वर्तमान कलयुग के 50,078 वर्ष बीत चुके। इस प्रकार माघ बसंत पंचमी संवत 2029 को देव मंदिर को बने हुए 80,000 प्लस 96,864,000 वर्ष प्लस 50,078 वर्ष कुल मिलाकर 96,948,078 वर्ष हो गए, कुल मिला के 9.5 लाख वर्ष इस मंदिर को बने हुए हो गए आज तक। देव सूर्य मंदिर के दाहिने तरफ से प्रांगण में परिक्रमा करने के वक्त दुर्गा जी का प्रतिमा स्थापित किया गया है। यहाँ पर जितने श्रद्धालु नारियल अंदर में सूर्य नारायण भगवान को चढ़ाते हैं, उस नारियल को वहाँ से चढ़ेला के बाद श्री दुर्गा जी के पास आनकर यहाँ उसको संकल्प करके फोड़ा जाता है और उसका जल माँ को अर्पण किया जाता है। पर भगवान का चरणामृत स्थान है, जितने भी वहाँ पर भगवान को स्नान कराया जाता है, सुबह शाम जो आरती होता है, उस स्नान में जितने भगवान का स्नान किया हुआ जो जल है, उस इसी प्रकार के रास्ते से निकलकर बाहर जाता है। सीधे मंदिर के पीछे मुंडन स्थान है, जो अपने श्रद्धालु आते हैं, अपने मनोकामना को यहाँ मांगते हैं कि हमको बाल बच्चा नहीं है, बाल बच्चा हो जाएगा तो हम यही मुंडन कराएंगे, तो उस श्रद्धालु यहीं पर आके अपना बाल बच्चे को मुंडन करा के बाल मुंडन बाबा पर चढ़ा देते हैं। ये मंदिर जो बनाया हुआ है वो पत्थर पर पत्थर रखा हुआ है, जब ये पत्थर पर पत्थर रखा हुआ है तो इसमें कहीं कील है, जो लोहा का कील चारों पत्थर के कोन पर लगाया हुआ है और एक बीच में कील लगाया हुआ है लोहा का, उसी कील के सहारे ये पूरे मंदिर का निर्माण कराया गया है। जो कील है जो लोहा का लगाया हुआ है, देखिए लोहा प्रमाणित करता है आपको, देखिए लोहा प्रमाणित करता है कि लोहा का कील यहाँ देखिए ठोका हुआ है, यहाँ भी देखिए लोहा का कील ठोका हुआ है, ये देखिए लोहा का कील ठोका हुआ है, और इसमें भी लोहा का कील जो प्रमाणित करता है, जो एक चारों कोन पर लोहा का कील ठोका हुआ है, हाँ चारों कोना पर पत्थर का लोहा का कील है।
2: सुनते हैं कि ये भगवान का मंदिर विश्वकर्मा द्वारा बनाया गया है?
4: नहीं, विश्वकर्मा भगवान त्रेता युग में थे, त्रेता युग में विश्वकर्मा भगवान तो उस समय हम लोग देखे नहीं, सुना हुआ बात कहते हैं। भगवान सूर्य नारायण की भी विश्वकर्मा भगवान को आदेश किए होंगे भगवान कि जाके मंदिर एक रात में बना दो, तो हम लोग भी सुनते हैं कि विश्वकर्मा भगवान बनाए हैं मंदिर को, हम लोग तो देखे नहीं है कि विश्वकर्मा भगवान बनाए, लेकिन कहने का मतलब है कि जब लोहा लगाया हुआ है इसमें, तो लोह युग का निर्माण कब हुआ? जब लोहा का निर्माण किया गया होगा तब इस मंदिर का निर्माण हुआ, तभी तो लोहा चारों कोन पर लगाया गया। इसलिए हम लोग मानते हैं कि त्रेता युग में जब कुछ दिन बीत जाने के बाद भगवान श्री रामचंद्र उस समय थे, विश्वकर्मा भगवान को आदेश दिए होंगे कि जाके देव सूर्य मंदिर को बना दीजिए, और तीन रात में तीन मंदिर बना, देव देवकुड़ और उमगा, यही इसका प्रमाणित है। अब आगे में चलिए, आप समझे ना, जहाँ भी है महेश्वर भगवान में ही सूर्य है, त्रिकाली सूर्य का यहाँ पूजा होता है, जैसे उदय ब्रह्मणे रूपम मध्याने तु महेश्वर अस्तमाने स्वयं विष्णु त्रिमूर्तिश्च दिवाकर, तीनों रूप में सूर्य नारायण भगवान यहाँ विराजमान है। जो उदय लेते हैं सूर्य नारायण भगवान तो ब्रह्मा के रूप में रहते हैं, मध्य काल में महेश्वर के रूप में हो जाते हैं, जब अभी का समय है वो महेश्वर भगवान का है, और अस्त काल में विष्णु भगवान का रूप धारण करके अस्त हो जाते हैं, वही त्रिकाली सूर्य का यहाँ पूजा होता है। अब आइए कि भगवान सूर्य नारायण का हर मंदिर में दरवाजा पूर्व की दिशा होता है, तो ये देव सूर्य मंदिर का दरवाजा पश्चिम दिशा क्यों है? तो ये लोग पहले का बूढ़ बुजुर्ग लोग जो थे वो कहते थे कि इस मंदिर का दरवाजा पश्चिम इस तरफ से हो गया कि औरंगजेब लोग जब उस समय आया था जब मंदिर विध्वंस करने लग रहा था, तो उस समय यहाँ पर भी आया उन लोगों ने आक्रमण करने, तो आक्रमण के दौरान उन्होंने यहाँ पर भी तोड़ना चालू किया, तो यहाँ का पुजारी ये मूर्ति जो है सब मूर्ति खंडित हुए हुए हैं, जितना भी मूर्ति है यहाँ सब भी खंडित हैं, जितने भी मूर्ति यहाँ है सब खंडित हैं, समझे ना? विष्णु भगवान, ब्रह्मा जी, दुर्गा जी, जितना भी मूर्ति है, ब्रह्मा विष्णु शंकर जी का, सब मूर्ति खंडित है। जितने विशाल मंदिर है यहाँ उतने विशाल मूर्ति भी थे यहाँ, लेकिन वो खंडित के चलते सब निकाल दिया गया है बाहर में, उन सब का पूजा अर्चना होता है। हाँ, औरंगजेब ने मंदिर को तोड़ फोड़ कर दिया, उसके बाद जब मंदिर ढहने का प्रक्रिया चालू किया तो उस समय सब आग्रह करने लगा कि हमारे मंदिर में सत्य है इसलिए मत तोड़िए, इसको छोड़ दीजिए। तो उस आग्रह पर औरंगजेब ने, लोग कहता है, हमने सुना नहीं है और कहीं लिखा हुआ नहीं है ऐसा, लोग कहता है कि पुजारी लोग, महात्मा लोग, यहाँ का जितने रहने वाले थे बूढ़ बुजुर्ग लोग, उन्होंने मना किया, तो औरंगजेब ने मना करने के बाद कहा कि तुम्हारे मंदिर में जब सत्य है तो अगर एक रात में अगर दरवाजा पूर्व से पश्चिम की ओर हो जाएगा तब मैंने छोड़ देगा, मंदिर को नहीं ढाएंगे। तो इसी प्रकार भगवान को आराधना करते हुए सब बूढ़ बुजुर्ग पुजारी लोग बैठ गए दरवाजे पर, और सुबह हुए उन लोग को नींद आ गया, और सुबह हुआ तो एक बैग देखा जा रहा है कि पूर्व से दरवाजा पश्चिम भर खुल गया और पूर्व भर मंद आ गया, इसलिए औरंगजेब ने इस मंदिर को सत्य मानकर छोड़ दिया, नहीं तोड़ा गया। देव सूर्य मंदिर का पौराणिक हवन कुंड है, इसमें जितने भी देव सूर्य मंदिर में श्रद्धालु आते हैं वो मंदिर में दर्शन कैला के बाद अपना धूप, अगरबत्ती, कपूर जो भी होता है वही इसी हवन कुंड में उन लोग जलाते हैं और कपूर का आरती करते हैं। इस हवन कुंड से जितने भी घीव हवन कुंड में डलाता है और सब घीव एक जगह पर जला हुआ जमा हो जाता है, उस घी से यहाँ पर घी को जितने भी भक्त आते हैं उनको अगर बाई चांस कभी किसी को भगवान न करे कि वैसा हो और जिसको कुष्ठ रोग से ग्रसित रहते हैं वो घी का सेवन करते हैं तो उनका भी कुष्ठ रोग निवारण होता है, समझने? इसीलिए हवन कुंड को, जैसे कि हवन कुंड को यहाँ पर जलाते हैं लोग और उसका जैसे कि जो घी बचा हुआ रहता है, जो जला हुआ रहता है, उसको शरीर में अपना लगाते हैं, जहाँ जहाँ किसी किसी को दाग होता है उससे, इस घी से, जले हुए घी से वो कंचन शरीर हो जाता है, यही हवन कुंड है। हवन कुंड बहुत पुरानी हवन कुंड है, जो हम लोग के होश से पहले से ही हम लोग ने देख रहे हैं कि यहीं पर हवन कुंड स्थापित किया गया था, जो आज तक इसको विराजमान रखा गया है और इसको जैसे कि बाहर ऊपर से छा छोप दिया गया है। हमारे पास 1957 का फोटो है, जो उस समय भी ये भोलेनाथ का प्रतिमा उस फोटो में भी दर्शाता है, इसलिए ये भोलेनाथ का बाबा का जो मूर्ति है शंकर जी का, ये बहुत पुराणिक मूर्ति है, जिस समय मंदिर बना था उसी समय से ये भोलेनाथ का शिवलिंग है, यहाँ स्थापित किया गया था और इसको भगवान पूजा अति भगवान के दरबार में पूजा श्रद्धालुओं करते हैं और अपना मनोकामना पूर्ण करते हैं। का प्रतिमा जो अंदर में है, जो स्थापित किए हुए ब्रह्मा विष्णु शंकर जी का, तीन कमल आसन है, जो एक दो तीन, तीन कमल आसन है, इसीलिए इनको भी पूजा लोग करता है, श्रद्धालु लोग आन के यहाँ भी पूजा पाठ करने से श्रद्धालुओं का मनोकामना पूर्ण होता है, क्योंकि भगवान का आसन है, इसलिए यहाँ पर भी श्रद्धालुओं ने पूजा पाठ करते हैं। अब देखिए भगवान का मंदिर है, जो भगवान का मंदिर है इसमें 12 मंदिर बने हुए हैं, भगवान का जो बाहर 12 नाम है उस इसमें 12 मंदिर भी बने हुए हैं, जो दो मंदिर तो आपको उसी में लोक रहा है, जो एक गणेश जी के नीचे मंदिर और एक ऊपर स्वयं बड़ा मंदिर, देखिए 5 मंदिर दरवाजा पर है और इसी के जस्ट पीछे जो दरवाजा भगवान के पास है उस पर 5 मंदिर है, तो 5 × 10 और 2 12 मंदिर और 12 को भगवान सूर्य नारायण का नाम है और 12 को मंदिर है, ऊपर में सोना का कलश है
2: जी, आप उसके बारे में कुछ बताना चाहते हैं?
4: हाँ, सोना के कलश है, तो सोना के कलश कम से कम सावा मन का सोना का कलश ऊपर सूर्य नारायण भगवान पर रखा गया है जी? जो उस मंदिर पर रखा गया है तो आज से नहीं है, त्रेता युग से ही कलश रखाया है। उस कलश को भी ओरिजिनल सोना लोग कहते हैं कि है, हम लोग तो वहाँ गए नहीं है, देखे नहीं है, वहाँ कोई जा नहीं सकता है, और जो जाता है
5: बाबा सुने कि कोई गया है वहाँ पास।
4: हाँ, गया था जो उनका गर्दन तक तो लोग जाता ही है माइक तक बांधने के लिए, जो बहुत वो आत्मा का अपना मतलब परिपूर्ण रहता है वो वहाँ जाता है गर्दन तक चढ़ जाता, सभी आदमी नहीं, एक दो आदमी जाता है,
2: नहीं पहुंच पाता है
4: उस कलश पास, कोई नहीं पहुंचता है, जो प्रयास करता है कि उस कलश पास जाए उसको भगवान वहीं पर सटा लेते हैं कि तुम यहाँ किस लिए आया हो, उसको वहीं पर सटा लेते हैं, जैसे प्रमाणिक है। पहले लोग कहते हैं, पहले लोग कहते हैं कि चार चोर चढ़ रहे थे उस सोने को कलश को उतारने के लिए, जो भगवान उसी कलश उसी मंदिर में अपने सटा लिए, पत्थर को बना दिए, इसलिए कोई ऐसा काम नहीं करता है आज के, अब नहीं करता है, हम लोग देखे नहीं है, सोने हुए बात कर रहे हैं कि चोर लोग जो है ऐसे चढ़ रहा था, जो भगवान वहीं पर उसको जला दिए, और इसके बाद पुनः फिर भगवान का जो है से कि स्थापना हुआ, और जो है से उसी समय से पौराणिक मंदिर सब श्रद्धालुओं का आस्था है पूर्ण होता है, और आस्था को अपना बरकरार रखने के लिए हिंदू लोग, हिंदू भाई धर्म जो है जितने भी हैं मंदिर में दर्शन पूजा करते हैं।
6: मेरा नाम सतीश कुमार राय है, मैं इस मंदिर का कोषाध्यक्ष हूँ और पिछले 7 वर्ष से यहाँ कोषाध्यक्ष है। इस किला के अंतिम राजा राजा जगन्नाथ प्रसाद थे, जिनका देहांत 1934 में हो गया था, और उन्हीं के नाम पर एक यहाँ पर विद्यालय है, राजा जगन्नाथ उच्च विद्यालय। इस किला के विषय में यह जानकारी है कि यह लगभग 1000 वर्ष पुराना किला है और इसके प्रथम राजा कौन थे ये तो जानकारी नहीं है, लेकिन राजा जगन्नाथ प्रसाद जो लास्ट राजा थे जिनकी मृत्यु 1934 में हुई थी, इनकी 3 रानियां थी, तो एक बेगम, अभी बेगम से ही इनका बाल बच्चा था, अन्यथा 2 रानियों का किसी भी प्रकार का कोई बाल बच्चा नहीं हुआ और वे लोग ऐसे ही मृत हो गए। बेगम से

0: और इसी सूर्य मंदिर का जो भी प्रताप पुण्य प्रताप रहा हो, इन्होंने उनसे उक्ति ली, उनसे आशीर्वाद लिया और अंग्रेजों से बराबर लोहा लेते रहे।
1: जी अंकल, सुनने में आता है ये महल पहले मुस्लिम लोग का था, मुस्लिम शासक थे यहाँ पहले?
0: ऐसा नहीं है, ऐसा इसलिए नहीं है कि जहाँ तक मेरी जानकारी है कि राजा जगन्नाथ प्रसाद के जो पूर्वज थे वो 7-8 पुश्त से ही हैं। तो 7-8 पुश्त से यहाँ पर है, तो ऐसा नहीं हो सकता है, इसलिए कि मुस्लिमों का जहाँ भी साम्राज्य रहा है वहाँ पर मुस्लिम आबादी बहुत ज्यादा रही है। लेकिन देव एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ की हर जातियों का, हर धर्म का लोग रहे हैं, लेकिन यहाँ मुस्लिमों का प्रभाव आज तक नहीं रहा है, बल्कि कहा जाए कि नहीं ही है। तो इसलिए कहीं भी राजा अगर मुस्लिमों का है तो वहाँ पर अपने अनुसार वो मुस्लिमों को बसाए हैं, लेकिन यहाँ ऐसी बात नहीं रही, यहाँ 100-200 मुसलमान ही आज के डेट में भी निवास करते हैं।

0: ये बहुत पुराना मंदिर है। लोगों का कहना है कि अगर बरसात के दिनों में पानी ना हो तो इनको दूध में डुबाने से या पानी में डुबाने से वर्षा होने लगती है, और सभी किसान जिस साल अकाल होने की संभावना रहती है उस साल इनको दूध या पानी में डुबाते हैं जिससे वर्षा होने लगती है, ऐसा लोगों का कहना है।
1: सूर्य मंदिर पर जानकारी दे रहे थे अलका, प्रीति, पूजा, आरती, अंजू, सविता, खुशबू और संजू।
2: तो दोस्तों, हम आशा करते हैं आप जल्द ही सूर्य मंदिर से देव औरंगाबाद से रूबरू होंगे। तो अब हम लोगों को दीजिए इजाजत। नमस्कार,
1: नमस्कार, नमस्कार।

के रह जिला जजर और माजरी गांव और इंदु बड़बोला की तरफ से सब ने राम राम। तो मैं इंदु बड़बोला आप सभी के सामने दो चार शायरी प्रस्तुत करना चाहती हूँ, तो ध्यान पूर्वक सुनिए। तो सबसे पहले मम्मी पापा के ऊपर है एक के रह, जब मैंने उनका जिक्र कर दिया ना तो बात किसे का समाणी कोनी। के रह जब मैंने उनका जिक्र कर दिया ना तो बात किसे का समाणी कोनी। अरे या दुनिया मैंने बहुत आजमाक देख ली मेरे भाई, इब और आजमानी कोनी। और उनने मेरे ऊपर बहुत उपकार कर रखे है मेरे भाई, मेरे माँ बाबू वर्गे तो कोई राजा रानी भी कोनी। एक है भाई के ऊपर है के रह, दुनिया में माँ बाप के अलावा एक और प्यारा है। के रह दुनिया में माँ बाप के अलावा एक और प्यारा है, और वो है मेरा भाई जो सब तेन्यारा है। और जब भी वो मैंने बुंडी शक्ल की कवे ना बेशक ते चिड़ो वह है, पर उसका मजा ही न्यारा है। एक सुनियो फौजियों के ऊपर है के रह, गले में माड़ा पैरणिया और संतरी बाणा पैरणिया, और किसे मानस ने जोगी नहीं कह सकते। के रह गले में माला पहरणिया और संतरी बाणा पहरणिया, और किसे मानस ने जोगी नहीं कह सकते। और जो मारे खातर खून पसीना बाक दिन रात बॉर्डर पर लड़े जाने मेरे भाई, जय फौजी नहीं हो ना तो हम एक रात भी चैन तो नहीं सो सकते। एक सुनियो के रह, शर्म ओढ़न पहरण की ना होया करे, आख्या की बतेरी होया करे। और जी मैं कुछ करण की लगन होने वो बंदा दिन रात नहीं सोया करे, और जो जम कह करे मेहनत वो कामयाब जरूर होया करे। वाई बात है राम के घर देर होया करे पर अंधेर नहीं होया करे। तो आप सबका धन्यवाद।

श्रोताओ, बज्जू में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में बज्जू और उसके आसपास रहने वाले गांव से बहुत सारे बालक और बालिकाओं ने इस कार्यशाला में भाग लिया। अपने समुदाय की परेशानियों को रेडियो कार्यक्रम के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना भी इस कार्यशाला में सिखाया गया। तो प्रस्तुत है इन्हीं बालक और बालिकाओं द्वारा बनाया गया ये कार्यक्रम। सबसे पहले प्रस्तुत है बालिका शिविर की बालिकाओं द्वारा प्रस्तुत ये गीत, जिसमें अपने अधिकारों की बात की गई है।

0: और अब सुनिए चित्रंजन और भंवर द्वारा प्रस्तुत ये कार्यक्रम अपना गांव अपनी बात।
1: कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को चित्रंजन
2: और भंवर का प्यार भरा नमस्कार।
1: आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कार्यक्रम अपना गांव अपनी बात।
2: हमारे इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आएंगे अपने ही गांव की कहानियाँ और गीत।
1: हम आपको ऐसी कहानियाँ सुनाएंगे जिससे आपको शिक्षा मिले।
2: हम एक दूसरे की कहानियाँ पढ़कर उससे सीख लेंगे और अपने ही गांव को खुशहाली की ओर ले जाएंगे।
1: चलिए हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक नाटक से जिसमें शराब से होने वाले नुकसान के बारे में बताया गया है।
3: थक गयो यार, आज तो काम करतो करतो खेत में दारू ले रहा हूँ आज जाऊँ। अरे कृष्णा राम
4: सा
3: घरे हो गए?
4: वे यहाँ
3: दारू है गए?
4: हाँ है।
3: देवो ने किसो है थर्डी है इंग्लिश?
4: इंग्लिश थर्डी दुनी है।
3: तो ते थर्डी लाओ एकर।
4: लो
3: कितने रुपए है बोलता था?
4: 60 रुपया।
3: 60 रुपया दे थाने काम मत जाऊँ ऐसा भोजन दे हूँ। दारू तो यार तो हकरो ही कोने का है, हकरो कोने तो कृष्णा राम
4: सा।
3: अरे इंग्लिश दे तो हकरो ही कौन का गिरजा पीनो मैं तो हकरो ही कौन नर्सो ही कौन आते इंग्लिश दे तो कैडी के बताओ।
4: इंग्लिश महंगो घड़ो है।
3: कितने रुपये है?
4: 280 रुपये बोतल है।
3: अरे रुपया हूँ थान दे हूँ 280 रुपया थे बोतल तो देव अने
4: पक्की बात दे दो रुपया।
3: हाँ रुपया दे दू
4: लो
3: भावे रुपया इंग्लिश बोतल रुपया कठे रुपया होता थारे खन कौन आता थारे घेरे आया। इंग्लिश तो बहुत अच्छे है यार दारू इंग्लिश तो बहुत अच्छो है।
5: विखो बड़ा रुपया दे ही गए।
3: अरे कौन है तू?
5: हूँ छोटू।
3: क्या छोटू है हम कौन जानो जाने
5: जाने कहाँ कर कौन रुपया ले वाले टाइम तू जान ले हमें जाने ही कौन
3: है। भगवान यहाँ से भगवान नगर जाने हमें
5: जानो कहाँ कर कौन है कृष्णा राम जी के नाल दारू लिया।
3: अरे क्या किसी ने सर बाप ने बोला ला भी ना जा
5: बुला कर ले हाल जो
3: हूँ कौन सर सर बाप नटे बोला ला भी ना जा
5: तो आला
3: कृष्णा
5: राम गने
3: सर बाप गने बे हाल बे
5: बे
3: किसनिया
4: आशा
3: थर बाप कहेंगे बाल बोल दे कहेंगे रिपे कर दिन मन
4: कल दिया नहीं
3: क्या बुढ़ा बोले मन को रिपे कर दिन झूठ बोला तो
4: क्या
3: रिपिया
4: 500 रुपया दिया कल दारू कर
3: दिया है तेने कहे डरे
4: कल रोमाल छोटू
3: क्या
5: एक बियर एक थर्टी दो बोतल ले गया कई भुजिया दुजिया बिस्कुट रहा गई ले जाओ तार बड़े के दिया को निजन कर दे
3: सर बाप रुपया लग गए मरा लग मजूर मारो कमा लो रुपया
5: बाप लो मजूरी बात है।
4: काल देखो काल आड़ो याद करो।
3: अरे हाँ यार रुपया हाँ दिन है सोची बोई तो हाँ जानो रुपया हाँ देना फिर दे अरे दे कृष्ण राम से अरे थोड़ा दे अरे मारे सब हो ने खान मातु पैसा जन मैं थाने दे रुपया थाने दे दारू वाला और छोटी ने दे
6: ए दारूडे की संग मारी कर दी सगाए रे कर दी सगाए मन जट पर रे मन बुरो तो मिलियो कसाई रे हमारा घर में फूट गया पाई रे
3: ए सुखा जीत गवे
6: ए सोन्यो बीमार मारो मोन्यो बीमार दापुड़ी निकासी होगी पे मन पुकार इनने कोई तो दरवर दवाई रे मार घर में फूट गया पाई रे
3: ए सर बाप ने क्या सोच रहा है मगन कोई लौट को नहीं भावे लौट और दवाई सर बाप ने क्या आवाज ना सुना रे
6: ए दारुड़े की संग मारी कर दिस गाई रे कर दिस गाई मन जट पर नाई रे मन बुरो तो मिलियो कसाई रे मार घर में फूट गया पाई रे
3: ए रेंडे बूटा थरा बूटा थर बाप रा मुका करूं मैं तो बेम दारू ऐस कर बोल तो गई करे
6: ए नसबंदी रो क्या सारो गण समझ जाऊं से नसबंदी रो क्या सारो गण समझ जाऊं से गण समझ जाऊं सारो अली गली कैसे इरी बुद्धि ठिकाने लवरे मारे घर में फूट गया पाई रे
3: ए रंडे कर बकबक करे मारी बुद्धि ठिकाना तू धर ठिकाना ला रंडर कहीं गीत गा मन घर में आ गलिया मुबे
6: ए सारा दिन पिए जद मोटी मोटी आगे है मोटी मोटी आगे जद छोरा ने डरा है कोई पूरी कबड्डी टीम बनाव रे मार कर में फूट गया पाई रे
3: कबूज कबूज कबूज सुरा कबूज कबूज कबूज
5: क्या
3: ए भगवान ने कबूज इतना मरबा था जानते मुझे भगवान हो मैं भीगू हाँ मेरा नाम भीगू है जाने मुझे
5: जानू
3: ए भगवान ने अगर भागे थे
6: दारूडे के संग मर कर दिस गए रे कर दिस गए मन जट पर नाई रे मन बुरो तुम लियो कसाई रे मारे घर में फूट गया पाई रे
3: रे सुबह ने कवर का बटिल मारोगा जान से रहने लगा चल रहे जोर से सुप्रा यार घर बगल लागी है बोले मरा अरे यार गाय करो रोंडी लड़े पड़ की दारू सोडा ने गांव वाला बस अगले अब दारू सोडा यार दारू सोड आदर बाद में दारू पीऊं को ने यार और हम काई करो पैसा ही करने को ने यार रांड बड़ो जी ने घरे गाना कर रहे अब यार रांड ना तो रिबे दे मैं कमा जो दारू भांगदा रांड गाना काट रोजी ने आज बाद में यार दारू सोडा और काई करो
2: अभी आपने नाटक सुना भाई मैं तो मान ही गया कि शराब पीने से नुकसान ही नुकसान है फायदा कोई नहीं
1: सही कह रहे हो मोहनलाल तो हमारे गांव में रहने वाले लोग भी इस बात को मान गए होंगे
2: अगर आप या आपके आसपास वाले शराब पीते हैं तो आज ही फैसला ले लो कि शराब के हाथ तक नहीं लगाना है देखा भिखाराम को कितना नुकसान उठाना पड़ा और फिर उनके जब अकल आई तो उन्होंने दारू छोड़ दिया
1: अब तो होली भी आने वाली है मोहनलाल जी इस बार होली पर अपन को अच्छे अच्छे पकवान खाने हैं अच्छे अच्छे गाने गाने हैं शराब को तो इस बार हाथ भी नहीं लगाना है
2: इसी बात पे एक अच्छा सा गाना हो जाए

0: दारू पिए जल्द पड़िया गया मैं ऊपर कुत्ता मुते जी, दारू थे छोड़ो नी भाया, दारू थे छोड़ो नी, दारू थे छोड़ो नी भाया, दारू थे छोड़ो नी।
1: सूखी धरती करे पुकार,
2: पेड़ लगा कर करे श्रृंगार,
1: सूखी धरती करे पुकार।
3: अभी हम सब ने जो गाना सुना मुझे तो भाई बहुत अच्छा लगा भवनलाल जी।
4: हाँ, इसी गाने पे मुझे एक दोहा याद आ रहा है,
3: जल्दी सुनाओ भवनलाल जी, श्रोताओं को इंतजार है।
4: राम जन्म में दूध मिला, कृष्ण जन्म में घी, कलयुग में दारू मिला तो सोच समझ कर पी।
3: सही कह रहे हो भवनलाल जी, एकदम सही कह रहे हो। आपने पिछले दिनों वो घटना हुई थी उसका सुना था क्या?
4: हाँ, वो जो कोलायत में घटना हुई थी उसके बारे में हमने सुना था। लोगों की नजरें होते हुए भी जानबूझकर अंधे बन रहे हैं।
3: सही कह रहे हो, दारू को किस तरह अमृत बनाकर पिया और फिर किस तरह पछताए।
4: अब हम समय को देखते हुए श्रोताओं से आज के इस कार्यक्रम के लिए इजाजत लेते हैं।
3: अब अगले सप्ताह इसी समय इसी दिन फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमारा नमस्कार।
5: आ खेल दी तो तगड़ी मिली नहीं रे आज, इनका आटू तो तने सारो घरो खर्चो हाउ निकल जाए। 3 क्विंटल लकड़ी बड़ा निकाली, बीकानेर बेचाओ।
1: सूखी धरती करे पुकार,
2: पेड़ लगा कर करो श्रृंगार,
1: सूखी धरती करे पुकार,
2: पेड़ लगा कर करो श्रृंगार,
1: सूखी धरती करे पुकार,
2: पेड़ लगा कर करो श्रृंगार।
5: छोरो रो माथो फूट्यो, काल में पेड़ लगाओ, कौन लगाए पेड़, थे लगा बोगरो पेड़ और हूँ काटी राखू। ओ गियो हमें सामना गाडो लेर जाने इम चाल चाल पनो टेक गाडे और बेचा बीकानेर।
1: ओहो आज खेत जायू, खेत जाए नी घना दिन हो गया, जिको आज खेत जा रहा हूँ देखने। ओहो।
6: और श्रोताओं, अब रानू सिंह लेकर आए हैं कार्यक्रम मेहनत करो मंजिल दूर नहीं। इस कार्यक्रम में वो आपको मिलवाएंगे दासोड़ी गांव के बालक जयदेव से। तो आइए जानते हैं जयदेव की कहानी और सुनते हैं कि इस कहानी के द्वारा रानू सिंह हम सबको क्या संदेश दे रहे हैं।
7: कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को रानू सिंह की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आज मैं अपने आपके लिए मेहनत करो मंजिल दूर नहीं कार्यक्रम लेकर आया हूँ। अपने इस कार्यक्रम को मैं हर बार लेकर आता हूँ। आज हमारे गांव में रहने वाले उन लोगों से बातचीत करेंगे जिन्होंने मेहनत से अपनी जिंदगी को बदल डाला। इस कार्यक्रम से पता चलेगा कि मेहनत करने वालों को फल भी मीठा मिलता है। जो एक अशिक्षित बालक था वो शिविर के माध्यम से शिक्षा का महत्व समझा। आइए उसे बात करते हैं। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। सभी श्रोताओं का आपका नाम बताइए।
8: मेरा नाम जयदेव सिंह चारण।
7: आपको पढ़ाई अच्छी क्यों नहीं लगती थी?
8: मुझे इसलिए पढ़ाई अच्छी नहीं लगती थी कि जब मैं स्कूल जाता था तब मुझे मास्टर मारते डांटते थे, इसलिए मैंने स्कूल जाना छोड़ दिया था।
7: बाद में पढ़ाई अच्छी क्यों लगी?
8: जब मैं शिविर में आया तब देखा कि शिविर में इतने सारे बालक पढ़ रहे हैं तो मुझे थोड़ी सी पढ़ाई को उचित समझा। मैंने इतने बालक थे कि वो पढ़ाई कर रहे थे, मैंने भी सोचा कि पढ़ाई से क्या होता है, इसलिए मैंने पढ़ाई को अच्छा मानकर पढ़ने लगा और मुझे मेहनत का फल मिल गया।
7: अपने शिविर के अनुभव हमारे श्रोताओं को बताइए।
8: जब मैं शिविर में आया तो शिविर में कई 80 बालक थे, लगभग 80 बालक थे जो इलमिल कर रहते थे और किसी को गाली गलौज नहीं देना, प्यार से रहना, सभी के साथ खाना खाना, पानी पीना, इसलिए सभी साथ खेलते थे। ये अनुभव हमारे शिविर के।
7: स्कूल व शिविर की पढ़ाई में क्या अंतर है?
8: स्कूल और शिविर की पढ़ाई में रात दिन का अंतर है। जैसे स्कूल में तो मास्टर आते ही नहीं है टाइम पर, और शिविर में समय समय पर बदलते रहते हैं पीरियड, जिस पीरियड का जो पीरियड होती है हिंदी की, तो हिंदी मैडम आके पढ़ाने लग जाती है।
7: आप आगे अपने जीवन में क्या बनना चाहते हो?
8: मैं पढ़ लिख कर अपने जीवन में देश की रक्षा करना चाहता हूँ।
7: धन्यवाद। श्रोताओं, अब मिलते हैं जयदेव के पिताजी से। आइए, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। सभी श्रोताओं को अपना नाम बताइए।
9: मेरा नाम है मांगी दान चरण।
7: जयदेव के बारे में क्या कहना चाहते हो?
9: जयदेव के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जयदेव को मैं कहता था कि तुम पढ़ो और समय पर स्कूल जाओ, और वो हमें पता नहीं चला कि जयदेव समय पर जाता है या नहीं, और जयदेव तो स्कूल का बहाना बनाकर वो तो दूसरी जगह कहीं पर छुप जाता, और मैं जानता कि जयदेव पढ़ने के लिए जाता है। बाद में एक दिन जयदेव के साथी से मैंने पूछा कि छात्र से पूछा कि जयदेव स्कूल आता है या नहीं। जब उन्होंने बताया कि जयदेव तो स्कूल में आता ही नहीं है, जब मैंने सोचा कि जयदेव तो ऐसे नहीं पढ़ पाएगा, और एक दिन मुझे एक उमूल कार्यकर्ता ने कहा कि ऐसे बच्चों को पढ़ाने के लिए एक बजू में शिविर खुल रहा है, उसमें आप इस बच्चे को भेज दो, तो मैंने उसी शिविर के अंदर इसको भेज दिया और वो पढ़ाई करने लगा। और जब उन्होंने उस शिविर के अंदर प्रथम स्थान से पांचवी कक्षा पास की, तो मैंने सोचा कि अब इसकी रुचि लग गई है और अब ये अच्छी पढ़ाई कर सकता है और अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। बस मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ।
7: धन्यवाद। श्रोताओं, अब मिलते हैं जयदेव के अध्यापक से। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। कृपया श्रोताओं को अपना नाम बताइए।
10: मेरा नाम कुमार दान है।
7: जयदेव पढ़ाई के साथ साथ किस में भाग लेता था?
10: यह कहानियां अच्छी लिखता है और यह खेल कूद में अच्छा है। यह हर फंक्शन में भाग लेता था। 80 लड़कों में से इसने प्रथम स्थान हासिल किया, तो आप भी इसका अंदाज लगा सकते हैं। मुझे ऐसे विद्यार्थी पर गर्व है। लगभग सब बच्चे 8 बजे सो जाते थे, लेकिन यह 10 बजे तक पढ़ता। यह खेल की जगह खेल और पढ़ाई की जगह पढ़ाई करता। ऐसे बच्चों के साथ मेरी मनोकामना है।
7: धन्यवाद। श्रोताओं, इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि बच्चे के जीवन में शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान है। इससे बच्चे का विकास होता है और साथ साथ खेल का भी ध्यान रखना चाहिए। शिक्षा है अनमोल रतन, पढ़ने का सब करे जतन। अर्थात शिक्षा एक ऐसा रतन है, हीरा है, जो चाहे गरीब हो बीमार हो, गरीब हो अमीर हो, वो सभी ग्रहण करें। अब श्रोताओं, अब कार्यक्रम का समय पूरा हो रहा है। अब हम मिलेंगे अगली सप्ताह मेहनत करो मंजिल दूर नई कार्यक्रम लेकर आएंगे। तब तक के लिए दीजिए रानू सिंह को इजाजत। नमस्कार।
5: इनका आटू तो तन सारो घर खर्चो हाउ निकल जाए। 3 क्विंटल लकड़ी बड़ा निकाली, बीकानेर बेचा।
1: सूखी धरती करे पुकार,
2: पेड़ लगाकर करो श्रृंगार।
1: सूखी धरती करे पुकार,
2: पेड़ लगाकर करो श्रृंगार।
1: सूखी धरती करे पुकार, पेड़
6: लगा। श्रोताओं, ये सभी कार्यक्रम जो आपने अभी सुने, उन बालक और बालिकाओं ने बनाए थे जिन्होंने मीडिया कार्यशाला में रेडियो प्रोग्राम बनाने सीखे। आशा है आपको इन बालक और बालिकाओं का ये प्रयास जरूर पसंद आया होगा। नमस्कार।

0: नमस्कार श्रोताओं, चेतना कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी अपनी शांति तिवारी।
1: और मैं हूं जगबंधु। तो दोस्तों, इस कार्यक्रम में हम हर बार आपके लिए सामाजिक विषयों पर एक नाटक सुनवाएंगे।
0: हमारा आज का नाटक सच्ची घटना पर आधारित है। इस नाटक का विषय है नारी का संघर्ष।
1: आज हमारे समाज में इतनी भ्रांतियाँ फैली हुई है कि हमारे समाज में आज भी लड़कियों को वो अधिकार नहीं दिया जाता जो उन्हें मिलना चाहिए। आए दिन एक से एक घटनाएं सुनने को मिलती है, कहीं दहेज के कारण लड़कियों की हत्या, तो कहीं कम उम्र में शादी कर उनको प्रताड़ित किया जाता है, जिससे वो अपना बौद्धिक विकास और मौलिक अधिकार सही ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पाती। आज भी लड़कियों की उनकी इच्छा के विरुद्ध शादी कर दी जाती है। ऐसी ही एक घटना भलसवा जे कॉलोनी में एक लड़की के साथ घटित हुई है। तो दोस्तों, प्रस्तुत है ये नाटक।
2: सीमा की माँ, अरे सीमा की माँ,
3: क्या है, क्यों शोर मचा रखा है?
2: अरे आज मुझे मेरा दोस्त मिला, उसने हमारी सीमा के लिए बहुत अच्छा रिश्ता बताया है।
3: अच्छा?
2: हाँ, लड़का मुंबई का ही रहने वाला है। मुंबई जैसे बड़े शहर में उनका अपना मकान है, और तो और लड़का 2 साल दुबई में भी रह गया है। अब मुंबई में खराता काम करता है। अच्छा परिवार है, 2 भाई और 1 बहन है। लड़के के माता पिता भी बहुत अच्छे स्वभाव के हैं, और तो और उन्होंने हमारी सीमा का हाथ स्वयं मांगा है। अरे हमारी सीमा राज करेगी, राज।
3: अजी, परिवार का तो सब कुछ ठीक है, परंतु हमारी सीमा की उम्र भी तो कम है, अभी पढ़ रही है, 10वीं की परीक्षा ही तो पास की है, आगे और भी पढ़ना चाहती है। इतनी जल्दी करके उसका भविष्य खराब करना है क्या?
2: अरे भाग्यवान, उसका भविष्य खराब नहीं, सुधर जाएगा। लोग शादी के बाद भी तो पढ़ते हैं, अगर ना भी पढ़ी तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा, और बाद में घर का काम ही तो करना है।
0: इस तरह सीमा के माता पिता अच्छे लड़के की चाह में जगह जगह से पैसा उधार लेकर उसकी शादी की, ताकि बिरादरी में उनकी नाक न कटे और इज्जत बनी रहे। श्रोताओं, सीमा के गरीब माता पिता ने शादी कर उन्हें सीमा को ससुराल विदा कर दिया।
1: सीमा के ससुराल का परिवार तो बहुत सही था, लेकिन लड़के की आदत के बारे में किसी को पता नहीं था। शादी के कुछ दिनों के बाद पता चला, लड़का रोज घर पर शराब पीकर आता और सीमा को परेशान करता।
2: अरे सीमा, अरे सीमा, कहाँ हो सीमा?
4: तुम फिर पी के आ गए हो, तुम बिल्कुल मेरी सुनते नहीं हो, कब सुधरोगे तुम, रोज रोज पीते हो।
2: अरे अपनी कमाई की पीता हूँ, तेरे बाप से मांगने नहीं जाता हूँ, और हाँ पीऊंगा, रोज पीऊंगा, ऐसे ही पीऊंगा, रहना तो रह, नहीं तो अपने घर जा।
4: एक दिन ऐसा भी आएगा कि मुझे तुम्हारा घर छोड़ के जाना ही होगा।
0: आए दिन झगड़े, संजीव शराब पीकर आने लगा। इसी दरमियान सीमा 2 वर्ष में 2 बच्चों की माँ बन चुकी।
1: सीमा के लाख समझाने पर भी संजीव की आदत में सुधार नहीं आया। शराब की बुरी लत के कारण संजीव की नौकरी भी छूट गई।
4: देख लिया शराब पीने का नतीजा क्या निकला, गई ना आज नौकरी हाथ से, अब बैठे रहिए। मुझे ही जाना पड़ेगा लगता है नौकरी करने के लिए, या तो घर घर के बर्तन मांजूंगी, कैसे होगा बच्चों का पालन पोषण, कैसे पढ़ाएंगे बच्चे हम, सारी जिंदगी के तुम्हारी मम्मी पापा ने ठेका लेकर रखा हुआ है हमें पालने का, कहाँ से खर्च करेंगे वो लोग।
2: अरे तेरे को चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं सब ठीक कर लूंगा। अरे मैं दूसरा काम ढूंढ तो रहा हूँ, अपने बच्चों पर ध्यान दे और घर में रह, मैं काम ढूंढ लूंगा, और तुझे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है।
4: झूठ है, तुम्हारी हर बात झूठ है, तुम्हारी रोज रोज की झूठी बातों से तो मैं तंग आ चुकी हूँ। अब सारी व्यवस्था तुम ही करो, आज ही मम्मी ने मुझसे कहा है कि तुम दोनों को अलग कर दूंगी, अपना बनाओ, अपना कमाओ, अपना खाओ, जैसे मर्जी करो।
2: अरे तू नहीं जानती मेरे माँ बाप को, एक दिन खर्चा बंद करेंगे, 2 दिन बंद करेंगे, तीसरे दिन खुद ही खर्चा हमें देंगे। मैं चिंता कर तो रहा हूँ, देखते है चिंता चक्कर में मैं दिन रात पीने लगा हूं। और सुन, मैंने अपने दोस्त से बात की है, रात में ऑटो चलाऊंगा और पैसे कमाऊंगा, और सुन मैं तेरे को पैसे दूंगा और अपने बच्चों को पूरा खर्चा दूंगा।
4: कैसे खर्चा दोगी, देखती हूँ मैं भी कैसे खर्चा देते हो तुम, कहाँ से होगा हमारा गुजारा, तुम्हारी झूठी बातों से तो मैं बिल्कुल ही तंग आ चुकी हूँ। इतनी रात को घर को आ रहे हो, वो भी शराब पीकर, पहले की बात थी कि तुम भारी पीकर आते थे, अब तो तुम घर में भी साथ में लेके आने लगे हो, तुम्हारी आंखों की शर्म तो बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है।
2: चुप, ये एक बात कान खोल के सुन ले, मैं शराब नहीं छोड़ सकता, रहना तो रह नहीं तो जा अपने घर। और मैं तेरे को छोड़ सकता हूँ, शराब नहीं छोड़ सकता, क्योंकि अगर मैं शराब ना पीऊँ तो मेरे हाथ पैर कांपने लगते हैं, और जाए पगबक्की तो तेरे दूंगा कान के नीचे।
4: ऐसे कैसे कान में दूंगा, मैं भी मम्मी को बोलती हूँ, हमेशा मेरे पे हाथ भी उठाने लग गए आजकल।
2: अच्छा
4: तो।
2: मम्मी को बुलाएगी,
4: मम्मी मम्मी
2: बुलाएगी, मम्मी को बुलाएगी, ये ले ये ले ये ले।
4: सुबह मैंने कितनी बार कहा है संजीव कि तुम्हें हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, तुम्हें दिखाना पड़ेगा, तुम्हारे पेट में आजकल दर्द रहता है, तुमने रोटी खाना भी छोड़ दिया। संजीव कैसे होगा, मैं मम्मी को बुलाती हूँ।
0: इस प्रकार सीमा के लाख समझाने के बाद भी संजीव पीना नहीं छोड़ा। अब तो रात दिन शुरू हो गया, दिन व दिन शराब पीने लगा, शरीर की ताकत खत्म होने लगी, नई नई बीमारियों ने उसे घेर लिया। लगातार पीने के कारण अपने शरीर को बीमारी का घर बना लिया और लगातार कमजोर होता गया।
1: संजीव को बाहर वाले घर वाले सभी समझाते गए, पर किसी की वो नहीं सुना। इस प्रकार उसके फेफड़े खराब हो गए और उसे टीबी हो गई। दिन ब दिन उसकी हालत खराब होती गई। सीमा ने अपने पति को बचाने के लिए हर संभव कोशिश की, बड़े से बड़े हॉस्पिटल में उसका इलाज करवाया।
0: सीमा अपने पति के साथ एक महीने हॉस्पिटल में थी, वह अपने गहने तक बेच दिए पति के इलाज में। श्रोताओं आप सोच रहे होंगे कि टीबी का इलाज की बीमारी ठीक हो जाती है, वो तो ठीक है, संजीव सही ढंग से दवा लेता तो, वो तो दवा के साथ साथ शराब भी पीता रहा।
1: धीरे धीरे टीबी के कीटाणु उसके दिमाग में चले जाने से वह कोमा में चला जाता है, अंत में उसकी मौत हो जाती है। सीमा की शादी 6 वर्ष बाद ही उसके पति की मौत हो जाती है, उसकी कहानी तो खत्म हो जाती है। सीमा को 2 बच्चों के साथ रोता बिलखता जमाने की उठती सवालों से जूझने के लिए छोड़ गया। श्रोताओं सीमा की कहानी यहीं खत्म नहीं होती है।
0: तो दोस्तों आइए सुनाती हूँ अब सीमा के साथ क्या हुआ।
1: सीमा पढ़ी लिखी महिला थी, वह अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी। एक दिन सीमा अपने सास ससुर से काम करने की इच्छा जाहिर की, मैं नौकरी करूंगी, जो उसके सास ससुर को पसंद नहीं था। अब सीमा के घर छोटी छोटी बातों का क्लेश होता रहता था,
0: जिससे सीमा को बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। सीमा तो वही रहकर जीवन बिताना चाहती थी, वो अपने दोनों बच्चों के सहारे अपनी जिंदगी गुजारना चाहती थी, लेकिन उसकी सास ने उसकी जिंदगी के बारे में सोचते हुए उन्होंने दूसरी शादी का फैसला कर लिया था। क्योंकि सीमा 23 वर्ष की यंग महिला थी, उन्होंने जमाने को देखते हुए ये फैसला किया कि वह कहीं भी सुरक्षित नहीं रह सकती। वह दोनों बच्चों को अपने पास रख लिए, सीमा को अपने घर जाने की इजाज़त दे दी। उन्होंने ये भी कहा कि वह अपने दोनों बच्चों से जब इच्छा मिल सकती है। इस प्रकार सीमा अपने घर अपने दोनों बच्चों को लेकर दिल्ली आ गई।
1: श्रोताओं सीमा अब आपके बीच है, अब उसी से जानिए उनकी जुबानी कि उसके साथ क्या होता है, वो कैसे आगे जीवन यापन करती है और अपनी जिंदगी सुधारती है।
0: सीमा जी स्टूडियो में आपका स्वागत है। सीमा जी आप तो काफी कठिन दौर से गुजरी हैं और आपने काफी स्ट्रगल किया है
4: जी,
0: तो आपसे मैं कुछ क्वेश्चन करना चाहती हूँ। सीमा जी आप जब मुंबई से अपने दोनों बच्चों के साथ दिल्ली लेकर आ गई तो क्या आपके ससुराल वालों ने आसानी से आने दिया?
4: जी नहीं शांति जी, आसानी से तो नहीं आने दिया उन्होंने मुझे। उन्होंने बहुत मना किया था मुझे यहाँ आने के लिए कि 2 रोटी ही तो खानी है, अपना घर संभालो, बच्चे तो पढ़ ही रहे हैं। लेकिन मैंने ये जरूरी नहीं समझा ये ऐसे करना। मैंने अपने पिता को बुला लिया था दिल्ली से।
0: अच्छा।
4: कि मैं ऐसे सारी जिंदगी खराब नहीं करना चाहती हूँ, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं कुछ करना चाहती हूँ, मैं अपने पैरों पे खड़ा रहना चाहती हूँ, कुछ बन के दिखाना चाहती हूँ। ऐसे सारी जिंदगी घर के बर्तन झाड़ू पोछे करके तो मैं नहीं गुजार सकती। तो मेरे पिता आए थे मुझे लेने।
0: तो बच्चों के भविष्य के बारे में आपने क्या सोचा है?
4: जी वहाँ से तो मैं बच्चे ले आई थी यहाँ पे, मैंने यहाँ पे स्कूल में भी उनको दाखिला करवा दिया था, 1 साल उन्होंने यहाँ पढ़ा भी। फिर अचानक में वहाँ से फोन आता है कि मेरे ससुर जी की तबीयत खराब हो गई है, उन्हें पैरालिसिस अटैक हो गया था। बच्चों के बिना दोनों सास ससुर का मन ही नहीं लग रहा था, घर बिल्कुल सुना सुना सा लग रहा था उन लोगों को। तो उन्होंने अपने छोटे बेटे को भेजा मेरे पास, यानी मेरे देवर को। वो आए थे मेरे बच्चे लेके जाने के लिए जब बच्चों को छुट्टियां पड़ी थी। तो वो अपने 7 बच्चे ले गए और वहीं पे उन्होंने अच्छे स्कूल में उनको दाखिला दिलवा दिया। अब बच्चे वहीं रह के उन्हीं उस अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं और मैं जाती हूँ 6 महीने और साल में 2 बार जाती हूँ उनके पास उनको मिलने के लिए। वो बहुत अच्छी तरह उनका केयर कर रहे हैं, बच्चों में किसी चीज़ की कमी नहीं रख रहे हैं वो लोग।
0: सीमा जी, आगे आपने क्या अपने भविष्य के बारे में क्या सोचा है? क्या आप दूसरी शादी करेंगी?
4: जी, दूसरी शादी के बारे में तो मैंने सोचा नहीं है और मैं चाहती हूँ मैं ना ही करूँ तो अच्छा है, क्योंकि पहली शादी में जो मैंने कुछ नहीं पाया तो मैं दूसरी शादी करने के भी हक में नहीं हूँ। लेकिन मेरे घर वाले मम्मी पापा बुजुर्ग हैं, बूढ़े हैं, वो चाहते हैं भाई भाभी किसी के नहीं होते हैं, और मेरे ससुराल वाले भी चाहते हैं कि अभी तुम्हारी उम्र कम है, तुम शादी कर लो तो ही बढ़िया रहेगा, क्योंकि सारी ज़िंदगी अकेले जीना इतना आसान नहीं है। लेकिन मैं दूसरी शादी करने के हक में तो नहीं हूँ बिल्कुल, अब देखेंगे। फिलहाल तो मैं नौकरी कर रही हूँ, अपने पैरों पे खड़ी हूँ, कमा के अच्छी तरह खा रही हूँ, मुझे अब किसी की सपोर्ट की इतनी ज़रूरत नहीं है। फिर भी दुनिया है, देखिए माँ बाप पीछे पड़े हुए हैं कि शादी कर लो, पर मैंने सोचा नहीं है इस बारे में।
0: सुना दोस्तों आपने सीमा की बातें। श्रोताओं, अब हमारा समय समाप्त हो रहा है, अब आपसे हम विदा लेना चाहते हैं। नमस्ते।

0: मेरा नाम वंश है, मैं 7th क्लास में पढ़ता हूँ और मेरा रोल नंबर 6 है और मैं यहाँ पर एनजीओ में पढ़ने के लिए आता हूँ और अच्छी बातें सीखने के लिए आता हूँ और शिक्षा सीखने के लिए आता हूँ। थैंक यू।
1: मेरा नाम आदित्य है, मैं 4th कक्षा में पढ़ता हूँ और मुझे इस सेंटर में आकर बहुत अच्छा लगता है और यहाँ पर रीडिंग करने आता हूँ और स्कूल और ट्यूशन का काम।
2: मेरा नाम हैप्पी है, मैं 6th क्लास में पढ़ता हूँ। मैं यहाँ पर रोज 3 बजे आकर रीड इंडिया लाइब्रेरी में आके मैं पढ़ता हूँ। हमारी रेशमा मैम हमें बहुत पढ़ाती है और प्रियंका मैम भी पढ़ाती है। रेशमा मैम कभी कभी हमें पढ़ाती भी है, खिलाती भी है, डांस भी करवाती है।
3: मैं शुक्रिया अदा करती हूँ गीता मैम और रीड इंडिया का, क्योंकि मुझे ये फील्ड के दौरान ही पता चला था कि यहाँ पर एक सेंटर है और मैंने उस सेंटर में जाकर कंप्यूटर सीखा और उसके बाद मैंने दिल्ली महिला आयोग में जॉब ज्वाइन की और जो मैं दीपशिखा में ही दूसरे प्रोजेक्ट में काम करती हूँ दिल्ली महिला आयोग में, वो सब संभव हो पाएगा आपकी वजह से गीता मैम। थैंक यू।
4: పేరు సరిత, మా గ్రామం పేరు కలుగుట గ్రామం. నేను కడతెట్లపల్లి గ్రామంలో రీడ్ ఇండియా ఫౌండేషన్ ద్వారా సైబర్ సెక్యూరిటీ కోర్స్ నేర్చుకున్నాను. దానివల్ల నాకు చాలా లాభం జరిగింది, ఎందుకంటే ఫేక్ కాల్స్ నమ్మకూడదని, ఈమెయిల్ ఐడి, గూగుల్ పే, బ్యాంక్ అకౌంట్ లాంటివి చాలా జాగ్రత్తగా కాపాడుకోవచ్చు. ఇంకా దీనిని నేను మా ఫ్రెండ్స్ కి, మా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కి, మా చుట్టుపక్కల వాళ్లకు నేర్చుకోవాలని చెప్పాను. దీని వల్ల మనకి చాలా లాభం జరుగుతుంది. థ్యాంక్ యూ ఫర్ రీడింగ్. మా
5: పేరు ధనశ్రీ, మా ఊరు పేరు రంగంపల్లి. మా ఊరు నుంచి నేను 5 కిలోమీటర్స్ వరకు నడిచి కడపనాకంకి వెళ్లి చదువుకునేదాన్ని. అప్పుడు మా కడపనాకం పక్కనే కడతటిపల్లి ఉంది, మా ఊరు నుంచి 2 కిలోమీటర్లు. అక్కడికి వెళ్లి నేను కంప్యూటర్ నేర్చుకున్నాను. అంతకుముందు అయితే అసలు నాకు ఓపెన్ చేయడం అసలు టైపింగ్ చేయడం అసలు ఏమీ రాదు. మా స్కూల్లో ఉంది కానీ అది ఎక్కువగా యూజ్ చేయరు, అసలు నేర్పిరు. నేను అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత చాలా నాలెడ్జ్ పెరిగింది. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ 9th లో ఉన్నప్పుడు నేను నేర్చుకున్నాను, ఇప్పుడు 10th క్లాస్ కాబట్టి మాకు ఆన్లైన్ క్లాసెస్ లో కూడా చాలా యూజ్ అవుతా ఉంది. నా ఫ్రెండ్స్ కూడా చాలా మంది వెళ్లారు, వాళ్ళకు కూడా నేను అర్థమయ్యేలా చెప్పాను కాబట్టి కంప్యూటర్ క్లాసెస్ వెళ్ళినందుకు చాలా యూజ్ అవుతూ ఉంది నాకు. ఎంఎస్ ఆఫీస్ ద్వారా పెయింటర్, పవర్ పాయింట్ ఇంకా చాలా నేర్చుకున్నాను. నాకు కంప్యూటర్ నేర్చుకున్న ద్వారా చాలా యూజే ఉంది కానీ ఏమీ నష్టం లేదు కాబట్టి నా ఫ్రెండ్స్ కూడా చాలా మంది చెప్పాను, చెప్పి వాళ్ళని కూడా అక్కడికి తీసుకెళ్లి ఇంకా చాలా మంది. రీడ్ ఇండియా సెంటర్ మాకు పక్కనే ఉంది కాబట్టి మాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది. దానివల్ల మాకు చాలా యూజ్ ఉంది కాబట్టి మా ఫ్రెండ్స్ తో పాటు మేము అందరూ వెళ్ళి కంప్యూటర్ యూజ్ చేసుకుంటున్నాము. థ్యాంక్స్ ఫర్ రీడ్ ఇండియా.
6: హలో ఎవ్రీవన్, దిస్ ఈజ్ షామి ఫ్రమ్ బారెట్పల్లి. డ్యూరింగ్ కోవిడ్ పీరియడ్ ఐ అటెండెడ్ ది సైబర్ సెక్యూరిటీ క్లాస్ కండక్టెడ్ బై రీడ్ ఇండియా. Before this class, we had no idea about such thoughts. This class helped me and surrounding people a lot. We got to know that we should not share the OTP and passwords with others. Before this class, one of my friend lost 2000 rupees, but now we all are aware of such frauds. This class was really very helpful. We all are thankful to Read India. Thank you very much.
7: मेरा नाम रेखा सिंह है, हम कटहरी गांव में रहते हैं. हमारी उम्र 40 साल है, हम हाई स्कूल तक पढ़े हैं. ये हमारे यहाँ रीड इंडिया का सेंटर खुला है, वहाँ पर कंप्यूटर सिलाई सबसे जुड़ा है. हम लोगों को पता चला तो हम लोग अपना भी रजिस्ट्रेशन कराए और पढ़े सीखने भी आते थे. वैसे हम लोगों को बहुत सारा चीज सिलने और काटने का आ गया है, हम लोग कुछ नहीं जानते थे, तो इतना तो बहुत कुछ आ गया है, मास्क वगैरह फ्राक और बेबी मेकर और बहुत से सलवार कुर्ता कुर्ची ब्लाउज पेटी को बताया गया, सब कुछ काटे अच्छे से सिले, अपना भी सिले, अपने घर वालों का सिले, थोड़ा सा हम लोगों का बचत भी हुआ।
8: मेरा नाम आकांक्षा शुक्ला है, मेरी उम्र 20 साल है। हमने यहाँ रीड इंडिया के सेंटर सेमराइज से सिलाई सीखी है। पहले हमें थोड़ी बहुत सिलाई आती थी, उसके बाद हम जब यहाँ सीखने आए तो हमें पूरी तरह से सिलाई आने लगी है। और पहले अपने कपड़े कहीं टेलर के यहाँ सिलवाते थे, अब हम अपने आप सिल सकते हैं। इससे मेरी आर्थिक स्थिति में सुधार आया। जब हम यहाँ सिलाई सीखने आए तो हमें कई सारी ट्रेनिंगें मिली और उससे मेरे जीवन में व्यक्तित्व में सुधार भी आया और हम अब अपने जैसी लड़कियों को ट्रेनिंग देना चाहती हूँ।
9: मेरा नाम नैन्सी गुप्ता है, मैं क्लास 11 में पढ़ती हूँ, मेरी उम्र 16 साल है। जी डिडिया सेंटर के जो कटहरी में खुला है उससे मुझे पर्चे के द्वारा पता चला, जो रीड इंडिया सेंटर के पर्चे छपे थे वो मेरे तक पहुंचे, तो मैं यहां पर आई और इससे जुड़ी, मेरा एडमिशन हो गया और फिर मैं कंप्यूटर सीख रही हूं, जिससे मुझे फ्यूचर में कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलने पर मैं इससे जुड़कर काम कर सकती हूं। पहले मुझे कंप्यूटर बहुत डिफिकल्ट लगता था क्योंकि मेरे आसपास कहीं भी कंप्यूटर सेंटर नहीं थे, लेकिन जब यहां रीड इंडिया सेंटर खुला तो मैं कंप्यूटर में सीखी और मुझे लगा कंप्यूटर बहुत आसान होता है और मुझे कंप्यूटर के सारे डर खत्म हो गए। और मैं रीड इंडिया सेंटर का बहुत बहुत थैंक यू सो मच करती हूँ और यहाँ पर जो मैम है और टीचर है उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ।
10: मैं विनीता मौर्य है, मैं ग्राम कटहरी में रहती हूँ, मेरी उम्र 35 साल है, एक अच्छा तक पढ़ी हूँ। मेरे गाँव में रीड इंडिया सेंटर खुला है, जब मुझे पता चला तो मैं यहाँ आई, अपना एडमिशन कराया और फिर सिलाई सीखना शुरू कर दिया। मुझे सिलाई करना लगभग आ चुका है, जैसे कि मास्क बनाना, बच्चों के कपड़े सिलना, औरतों के ब्लाउज सिलना, ये सब मैं कर लेती हूँ। अगर अवसर आया तो ये सब मैं सिलकर बाहर को निर्यात कर सकती हूँ।
11: कोमलपाल है, मेरी उम्र 17 साल है, मैंने रीड इंडिया सेंटर सिमराई बाराबंकी ट्रेनिंग ली है। पहले मुझे मतलब सिलाई के बारे में कुछ नॉलेज नहीं था, उसके बाद मैंने मतलब अपने कपड़े स्वयं सिल सकते हैं अपने पूरे घर परिवार के, और जो मतलब जो पहले था जो पैसे दूसरे को देते थे अब वो पैसे मतलब खुद मतलब बचत कर सकते हैं। और मेरे ट्रेनिंग लेने के बाद मेरी आर्थिक स्थिति में बहुत सुधार आया।
12: मेरा नाम बिंदेश सिंह है, हमें अनेक प्रकार के हमारे जीवन में बदलाव आए हैं इस सिलाई को लेकर, और जब मैं जो भी चाहती हूँ सिलाई से संबंधित जो ग्रुप बनाकर वो आगे काम भी कर सकती हूँ, अपना सिलाई का कोई सेंटर खोल सकती हूँ या समूह बनाकर मैं इकट्ठे कपड़े सिल सकती हूँ, सिलकर मार्केट में भेज सकती हूँ, जो भी चाहती हूँ सिलाई संबंधित कार्य कर सकती हूँ।
13: सिंह है, मेरी उम्र 21 ईयर है, मैं बी ए द्वितीय वर्ष में पढ़ती हूँ, मेरे ग्राम का नाम कटहरी सिमराई है। जैसा कि मुझे पता चला कि मेरे गांव में रीड इंडिया का सेंटर खुला, उसके बाद हमने इसमें एडमिशन लिया और आज हम अच्छे से कंप्यूटर का अध्ययन कर रहे हैं। इसके पहले हम लोगों को कंप्यूटर सीखने की अनुमति नहीं थी क्योंकि हम लोगों के घर से 10-10-15 किलोमीटर दूर सेंटर है और वहाँ पे हम लोगों को जाना पड़ता था, इसलिए घर के पेरेंट्स भी इसकी इजाज़त नहीं देते थे। उसके बाद जब से ये सेंटर खुला तब से हम लड़कियाँ आत्मनिर्भर हुए और कंप्यूटर के बारे में सब कुछ जान सके, और आज स्थिति ये है कि हम लोग कंप्यूटर को बहुत अच्छे से जान चुके हैं, अच्छे से चला भी रहे हैं, और ऐसा रीड इंडिया सेंटर की वजह से हुआ। कंप्यूटर को सीखकर हम आगे अपने रोजगार के अवसर अच्छे से खोज सकते हैं।
14: आई एम राखी फ्रॉम केलवाड़ा, मैंने हेल्थ वर्कर की ट्रेनिंग ली है और इसी लेकर मुझे बहुत अच्छा लगा। निधि मैम ने हमें बहुत कुछ सिखाया इस ट्रेनिंग में, जैसे कि हेल्थ वर्कर क्या होते हैं, वह समूह जो हेल्थ की जानकारी रखता है उसे हेल्थ वर्कर कहते हैं। इसमें हेल्थ वर्कर का कार्य रहता है कम्युनिटी डेटा इकट्ठा करना, उसमें मतलब जन्म और डेट ऑफ बर्थ वगैरह ये सब जानकारियाँ ली जाती हैं। हमारे आसपास की सफाई भी ज़रूरी होती है, शारीरिक हाइजीन्स में होता ही है। और मैम ने बताया था कि हमें हैंड वॉश कैसे करना चाहिए, तो हैंड वॉश के मैम ने 5 चरण बताए थे, जिसका हमें रेगुलर तीन मतलब रेगुलर यूज करना चाहिए। यदि हम रेगुलर हाथ धोएंगे तो हमें कोई बीमारी भी नहीं होगी, हम स्वच्छ रहेंगे। तो मैम ने बताया कि हमें वो हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर के बारे में, हाई ब्लड प्रेशर होता है तो हमें क्या लेना चाहिए, लो ब्लड प्रेशर होता है तो हमें क्या लेना चाहिए। लो ब्लड प्रेशर में हमें कॉफ़ी की मात्रा लेनी चाहिए क्योंकि इसमें कैफीन की मात्रा पाई जाती है जो हमारे लिए अच्छी होती है। मैम ने बताया शारीरिक मतलब शारीरिक क्रियाएं वगैरह जो होती हैं हमारे शरीर में, उसके बारे में बहुत कुछ बताया है जो हमने अच्छे समझाए, सबको समझाया भी है। हमारे आसपास जो व्यक्ति थे हमने उनको हमारे मतलब संपर्क में उनको बताया कि मैम ने हमें ये बताया है, आप भी इसका उपयोग करें, समय पर एंटीबायोटिक दवाएँ लें। मैम ने हमें ये जल्द से होने वाली बीमारियों के बारे में भी बताया है, जैसे कि हैजा, टाइफाइड, ORS घोल हैजा में लिया जाता है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, इसे हमें लेना चाहिए, ये अच्छा होता है। और मैम ने COVID-19 के बारे में भी बताया था जो चल रहा है, इसे हमें बचना चाहिए, ये खांसी और छींक के माध्यम से फैल रहा है, इसलिए हमें मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करना चाहिए जो हमारे लिए अच्छा होगा। मैम ने अस्थमा के बारे में बताया था कि ये सांस की बीमारी होती है जिससे मतलब हमारी जो सांस नली होती है वो उसमें सूजन आ जाती है तो हमें सांस लेने में दिक्कत होती है और मतलब सांस लेने में दिक्कत होती है और बलगम आता है तो मतलब सांस लेने में मतलब सीटी जैसी आवाज़ आती है, तो इसके उपचार डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए और एंटीबायोटिक दवाओं का यूज करना चाहिए। और बस मैम ने बहुत कुछ बताया है कि हमें बहुत अच्छा लगा और मैं इस संस्था को थैंक यू कहना चाहती हूँ क्योंकि हमें बहुत अच्छा लगा है और हमें बहुत कुछ सीखा है। थैंक यू।
15: आई एम पूनम कश्यप फ्रॉम केलवाड़ा। मैंने रीड इंडिया संस्था से हेल्थ वर्कर की ट्रेनिंग ली है और हमें इस ट्रेनिंग में कई प्रकार की बीमारियों के बारे में बताया गया है और उनकी रोकथाम के बारे में और हमें किस प्रकार से उनका उपचार करना चाहिए वो भी बताया गया है। रीड इंडिया संस्था द्वारा हमें ऑनलाइन ट्रेनिंग दी गई है, इसमें हमें मीना दीदी ने कई प्रकार की बातें समझाई हैं। उन्होंने हमें संस्था पर बुला करके कई प्रकार से बीमारियां जो चल रही हैं कई प्रकार की उनके बारे में जानकारी दी है। मेरे को इतनी नॉलेज नहीं थी बट हमें ऑनलाइन ट्रेनिंग से बहुत कुछ सीखने को मिला है। थैंक यू। मैं रीड इंडिया का धन्यवाद करती हूँ।
16: मेरा नाम सरोज सुमन है, मैं खाकरा की रहने वाली हूँ। मैंने हेल्थ वर्कर की ट्रेनिंग ली जिसमें मैंने बहुत कुछ सीखा। इसमें दीदी ने बताया कि हमें किस प्रकार से अपने स्वास्थ्य की देखभाल करनी चाहिए और कैसे हमें बीमारियों से लड़ना है और कोरोना के बारे में भी बताया और हमें ब्लड प्रेशर हाई व लो के बारे में बताया। कोरोना काल में हमें किस प्रकार से अपनी सावधानी बरतनी है, साबुन से हाथ धोना है, मास्क लगाना है, इस प्रकार हमें बताया। इससे हमें बहुत कुछ लाभ हुआ है और हमने गांव में जो लोग जानते नहीं थे उन्हें जाकर घर घर जाकर उन्हें बताया समझाया किस प्रकार हमें रहना है। धन्यवाद।
17: मेरा नाम मीना पांचाल है, मैं खाकरा गांव से रहने वाली हूँ। मैंने रीड इंडिया संस्था से हेल्थ वर्कर की ट्रेनिंग ली है। इसमें दीदी ने कोरोना के बारे में जानकारी दी है, कोरोना काल में कैसे हमें अपना सावधानियां रखनी चाहिए, अपना ध्यान रखना चाहिए, उसके बारे में बताया है कि हमें मास्क पहनना चाहिए, 2 गज की दूरी रखनी चाहिए, हाथों को सैनिटाइज करना चाहिए, उसके बारे में बताया दीदी ने। और हमें ब्लड प्रेशर में BP लो हाई कैसे चेक करना चाहिए उसके बारे में, पल्स रेट के बारे में भी बताया कि हमें कैसे नापनी चाहिए, पल्स रेट का पता कैसे लगता है वो बताया। और उन्होंने पानी से होने वाली बीमारियां, हवा से होने वाली बीमारियां, घर की सफाई आदि के बारे में हमें बताया है, शारीरिक स्वच्छता के बारे में भी जानकारी दी है और हमें बहुत अच्छे से समझ में आया और इससे हमें बहुत लाभ हुआ है। धन्यवाद।
18: हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रियांशी ठाकुर है, विलेज कांकरा राजस्थान से हूँ। मैंने रीन इंडिया के द्वारा कम्युनिटी हेल्थ वर्कर की ट्रेनिंग ली है जो डॉक्टर निधि गुलाटी द्वारा ली गई थी। निधि गुलाटी मैम ने हमें सबसे पहले कम्युनिटी हेल्थ वर्कर क्या होता है और कम्युनिटी से कैसे जुड़ना होता है इसके बारे में हमें बताया। साथ ही मैम ने हमें कोरोना काल में स्टे सेफ के बारे में बताया, फिर मैम ने हमें हाउ टू हैंड वॉश के बारे में बताया और फर्स्ट डेज इसके हमें अच्छे से डिटेल्स में समझाए और हमें पर्सनल हाइजीन के बारे में बताया और अगर हम पर्सनल हाइजीन नहीं करेंगे तो इसके साइड इफेक्ट्स बढ़ाए सारी क्लीनिंग एंड हाइजीनिंग के बारे में हमें डिटेल में समझाया और ह्यूमन बॉडी के बारे में बताया। उसके बाद मैम ने हमें पल्स कैसे चेक करते हैं इसके बारे में समझाया। मैम ने हमें अच्छे से बताया कि हमें दो फिंगर्स को थंब के नीचे रखकर कैसे हमारी एक मिनट तक हमें हमारी पल्स चेक करनी चाहिए। साथ ही अपना बीपी बढ़ने पर हमें ज़रूरी पल्स चेक कराने के बाद ही अपना बीपी के बारे में श्योर होना चाहिए और नॉर्मल बीपी कितना होता है, हाई बीपी कितना होता है, इसके बारे में बताया। साथ ही उन्होंने हमारे बॉडी टेम्परेचर के बारे में बताया और बॉडी टेम्परेचर हमारा दो तरीके से नापे जाता है, सेंटीग्रेड और फारेनहाइट से। इसके बारे में हमें मैम ने बहुत डिटेल से बताया और इसके बाद मैम ने हमें ब्लड प्रेशर के बारे में बताया कि ब्लड प्रेशर क्या होता है, कब होता है। मैम ने हमें बताया कि ब्लड प्रेशर हमें एक मिनट तक चेक करवाना चाहिए और हमारा दिल एक मिनट में 60 से 80 बार धड़कता है। साथ ही वर्कआउट या कॉफ़ी टी पीने पर हमारा ब्लड प्रेशर हमें नहीं चेक कराना चाहिए क्योंकि ये एज यूजली सही नहीं आएगा, ये गलत ही आएगा। और साथ ही हमें बताया कि ब्लड प्रेशर दो तरीके का होता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। इसके साथ ही मैम ने हमें बताया कि ग्रामीणों में नॉर्मल क्या क्या बीमारियां होती है और उनके बारे में डिटेल से समझाया, जैसे टीवी, शुगर, पीलिया, चिकन पॉक्स, निमोनिया, मलेरिया, टाइफाइड, डायरिया, ऐसी कैंसर जैसी और भी कई बीमारियों के बारे में बताया। उसके बाद मैम ने हमें ह्यूमन बॉडी के बारे में बताया, हमारा ब्रेन किस तरह से काम करता है, हमारा हार्ट किस तरह से काम करता है, लीवर, किडनी, इसके बारे में मैम ने हमें बताया। साथ ही हमारी बोन्स किस तरह से काम करती है और ये कैसे हमारी बॉडी में जुड़ी हुई है और भी काफ़ी सारी जानकारी मैम ने हमें डीपली समझाई। ये बहुत ही अच्छी जनरेसी अच्छे से मैम ने हमें समझाया एंड थैंक यू वेरी मच हमें इतनी सारी डिटेल्स।

0: ट्रेनिंग कराई गई थी, उसमें हम लोगों ने भी भाग लिया था और हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली है। हमें टैली के बारे में पहले कुछ भी मालूम नहीं था कि टैली क्या होती है, इसमें क्या सिखाया जाता है, क्या नहीं सिखाया जाता है, ऐसे कोई बात नहीं थी, कोई ना मतलब कोई जानकारी नहीं थी हमें। लेकिन उस ट्रेनिंग में हमें बहुत सारी जानकारी मिली है और हमने बहुत कुछ सीखा है, ऐसे बहुत कुछ सीखा है। और मैंने बीए कर रखी है और जैसे कि इसमें लागत मूल्य के बारे में सिखाया गया, लागत मूल्य वह होता है जिसमें कोई माल अथवा सेवा ऐसे जो करे वह प्राप्त किया जाता है, उसको लागत मूल्य कहा जाता है। वसूली मूल्य वह होता है वसूली मूल्य जिसे बाजार में कोई चीज या कोई संपत्ति को बेचकर जो राशि प्राप्त होती है, धन प्राप्त होता है, उसको वसूली मूल्य कहा जाता है। और जैसे कि संपत्तियां के बारे में बताया गया था, संपत्ति तीन चार प्रकार की होती है जैसे कि चल अचल धरस्य अधरस्य। धरस्य संपत्ति वह होती है जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो धरस्य संपत्ति होती है। अधरस्य संपत्ति उसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, एहसास नहीं कर सकते, तो वह अधरस्य संपत्ति होती है। बहुत सारी चीजें की जानकारी दी गई मैम ने और बाद में हमें सभी प्रकार के जो अकाउंट होते हैं उनकी एंट्री करना सिखाया है मैम ने।
1: हेलो, मेरा नाम रिंकू कुमारी है, मैं बारा जिले के मुसेन माता गांव की रहने वाली हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि लॉकडाउन के चलते ना तो कोई कहीं जा सकता है और ना ही कहीं से आ सकता है, तो इस माहौल में रेड इंडिया के द्वारा टेली हमें जूम ऐप पर घर बैठे ही ऑनलाइन ट्रेनिंग उपलब्ध करवाई गई और उसमें हमें खाता खोलने के बारे में, लेन देन के बारे में, डेबिट और क्रेडिट क्या होता है, इन सब के बारे में बताया गया। और मान लो जैसे कोई बिजनेस करना हो या फिर दुकान खोलनी हो तो उसका हिसाब किताब कैसे रखते हैं, और साथ ही ये भी बताया गया कि डेली डायरी मेंटेन करनी चाहिए। और भी टेली के बारे में जैसे हमें पहले कुछ नहीं आता था और कुछ समझ में नहीं आता था, फिर हमसे पहले जो लड़कियां थी उन्होंने इसके बारे में सीखा और हमें इसके बारे में बताया विस्तार से सब कुछ, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप कि परचेज कैसे करते हैं, माल खरीदा कैसे जाता है, बेचा कैसे जाता है, और लेन देन के बारे में बताया और उसकी एंट्री कैसे करते हैं, इन सब के बारे में हमें बहुत विस्तार से और बहुत बढ़िया तरीके से बताया। और हमने उनसे क्वेश्चन भी किए और उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से हमें सब कुछ बताया। तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगी रीड इंडिया को, टेली को और मैम्स को जिन्होंने हमें घर बैठे ही कोरोना काल में भी ऑनलाइन ट्रेनिंग उपलब्ध करवाई। थैंक यू।
2: हेलो, आप सभी को मेरा नमस्कार।

0: देन कैसे करना चाहिए, कैसा क्या देखना चाहिए, जो कि हम पहले नहीं सीख पाए थे। मैंने बहुत कोशिश करी थी सीखने की, लेकिन मैं नहीं सीख पाई थी। लेकिन इसमें रीड इंडिया की तरफ से जो ट्रेनर थे हमारे मैडम, उन्होंने हमको बहुत अच्छे से सिखाया। जो हम भूल जाते थे वो भी बार बार उन्होंने हमें बताया। उनकी मदद से हम बहुत अच्छे से ट्रेनिंग कर पाए। पता भी नहीं चला कि इतना टाइम कैसे निकल गया। मैडम सर सभी ने बहुत अच्छे से सिखाया। रीड इंडिया को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने पूछे सवाल, जिनके ट्यूशन जो कि हम नहीं कर पाते थे, वो ट्यूशन उन्होंने पूछकर हमारी कमियां भी दूर करी हैं, जिससे हमें बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रेनिंग मिली है।
1: हेलो, मेरा नाम मुस्कान बनर्जी है। मैं कक्षा 12वीं में पढ़ रही हूँ। और मैंने जब रीड इंडिया के बारे में सुना, मेरे पापा ने आके मुझसे बोला कि वहाँ पर रीड इंडिया की ट्रेनिंग हो रही है, कंप्यूटर की ट्रेनिंग करवा रहे हैं। तो मैं यहाँ पे आई, यहाँ पे आके मैंने फॉर्म भरा और एडमिशन किया। एडमिशन करने के बाद मुझे पहले से कंप्यूटर की कुछ बेसिक जानकारी थी, फिर भी मैंने यहाँ पे फोटोशॉप और भी कई चीज़ें सीखी है। सीखने के बाद मैं यहाँ से लैपटॉप लेके गई थी। मुझे बोला गया कि यहाँ से लैपटॉप ले जाओ, और तुम और भी बच्चे, रिश्तेदार, तुम्हारी मम्मी, इनकी जो भी महिलाएं हैं उनको तुम सिखाओ। तो मैं यहाँ से ले गई और उनको मैंने सिखाया। मैंने भी उनको वही सिखाया जो मैंने सीखा था, जैसे कि यहाँ से फोटोशॉप के अंदर जैसे फिल्टर, उसके बाद ब्लैक एंड व्हाइट फोटो को कलर करना, उसके बाद और शरीर को अलग करने करके वहाँ पे चेहरा लगाना, ये सब मैंने सीखा था। जो जो मैंने वो सब अपने बच्चों को, इनके अपने स्टूडेंट को मैंने सिखा दिया।
2: हेलो नमस्कार रेड इंडिया वाले, मैं मंजू हूँ। मैं गांव परानिया की रहने वाली हूँ और मैं कक्षा 12वीं तक पढ़ी हुई हूँ। मैं महिला समूह की सदस्य हूँ और मैं राजविका से जुड़ी हुई हूँ। हमें पता चला है कि ये रेड इंडिया वाले फ्री में कंप्यूटर या लैपटॉप चलाना सिखा रहे हैं महिलाओं को, लड़कियों को। हम यहाँ पर आए और हमने यहाँ पर कुछ सीखा है, हमने जानकारी ली है यहाँ पर, हमने यहाँ पर फोटोशॉप वगैरह सीखा है हमें। और मुझे राजीविका वालों ने CSC ID बनाकर दे दी है, तो हम मैं पैसे की लेन देन कर रही हूँ। थैंक यू रेड इंडिया।
3: रीड इंडिया माध्यम से मैं जुड़ी हुई थी और ऑनलाइन ट्रेनिंग लिया था, जो उसमें मुझे बहुत जानकारी मिली है, जैसे कि मोबाइल के बारे में, फेसबुक चलाना, व्हाट्सएप चलाना, और बैंक का जो है, जो उसमें खाता नंबर, आधार कार्ड का नंबर किसी को नहीं देना चाहिए, उसमें नुकसान हमको ही होगा, इसलिए इसका जानकारी हमको मिला है। हम पहले से, मान लो किसी ने फोन कर दिया कि ये तुम्हारा मोबाइल में इतना पैसा है, लॉटरी लग गया तुमको, जो नंबर दे दो बैंक का या आधार कार्ड का नंबर, ऐसे नहीं देना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। जैसे मोबाइल में फोन आए कि तुम्हारा फोटो भेजो या कुछ और भी भेजो, नहीं भेजना चाहिए, उसमें हमारा ही खराब होगा, इसलिए हम नहीं भेजते, हम इसमें सतर्क हैं। और भी है बहुत सारे, जो अभी मीटिंग में हम मिला हुए थे, जो ट्रेनिंग में, जो उसमें अभी हम बढ़िया तरह से सीख गए। और मोबाइल में ऐसा करना चाहिए, उसमें इस पर पासपोर्ट लगाना चाहिए, जो कोई लेके छेड़छाड़ी ना करे, और कहीं पे भी जाओ फिर भी नेट मतलब कुछ भी थोड़ा बहुत खांसी भी आए, लेकिन उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ज़्यादा कम करो और अपने मोबाइल को सुरक्षित रखो। ट्रेनिंग से हमें बहुत सारी जानकारी मिला है, जो इसलिए आप सबको धन्यवाद।
0: नमस्ते, मेरा नाम काजल बाला, गांव नाटे से। मैं रीड इंडिया संस्था साइबर सेफ्टी से मैंने ऑनलाइन ट्रेनिंग ली है, जिसमें मैंने बहुत कुछ सीखा है। जैसे हमें हमारे जैसे पर्सनल नंबर, मैसेज, OTP, ये सब किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए, ना ही हमें सार्वजनिक वाईफाई का उपयोग नहीं करनी चाहिए। हमें बैंक संबंधी ऐसे कोई मैसेज आए उस पर हमें क्लिक नहीं करनी चाहिए। हमें जैसे और भी बहुत कुछ हमें सीखने को मिले, जो भविष्य में हमारे काम आएंगे। और इसके अंतर्गत हमने जैसे हम जैसे शॉपिंग करते हैं, उसके लिए अलग अलग वेबसाइट का हमें प्रयोग नहीं करनी चाहिए, जो हमें पता ना हो, और ना ही हमें इंटरनेट पे ज़्यादा कुछ जानकारी

0: मतलब जो जरूरत ना हो ऐसी चीज की जानकारी भी नहीं लेनी चाहिए। ये बहुत ही काम की चीज हमने इस संस्था में सीखी है और ये खुद मैंने भी मतलब ये चीज मैंने भी नोटिस की है और मैं इसके बारे में जैसे अपनी फैमिली को अपने फ्रेंड सभी को मैं इसके बारे में जागरूक करूंगी कि कैसे सेव रखा जा सकता है हमारे बैंक अकाउंट हमारी OTP ये सब मैं उनको भी इन सब करके जागरूक करवाऊंगी।
1: मेरा नाम अंकिता बंसल है, मैं भवरगढ़ 12 राजस्थान से हूँ। मैंने अपनी एजुकेशन में अभी तक BSc किया है। मैंने रीड इंडिया से साइबर सिक्योरिटी की ट्रेनिंग ली है। इस ट्रेनिंग में मुझे साइबर क्राइम से कैसे बचें के बारे में बताया गया था और हम किस तरह से अपने मोबाइल के डाटा को सुरक्षित रख सकते हैं इसके बारे में बताया था। हम जैसे कि हमें किसी भी फर्जी ईमेल को नहीं खोलना चाहिए। आजकल व्हाट्सएप पे बहुत सारे लिंक्स आते हैं जिनमें होता है कि तुम इस लिंक पे क्लिक करो तो तुम्हें वाउचर मिलेगा, कोई गिफ्ट फ्री मिलेगा, लेकिन वो सब कुछ फर्जी होता है। वो कुछ हैकर्स होते हैं जो कि साइबर सिक्योरिटी को हार्म पहुंचाना चाहते हैं। उन लोगों के द्वारा बनाई गई साइट होती है जो कि आपके फोन में आपके डाटा को चुरा सकती है, आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन को उनके पास पहुंचा के वो आपको एक साइबर क्राइम के थ्रू ब्लैकमेल कर सकते हैं, आपसे किसी भी तरह का कुछ भी कर सकते हैं। इस वजह से आपको कोई भी लिंक या फिर ईमेल जो भी है उन्हें नहीं खोलना चाहिए। ये लिंक से कभी कभी हमारे फोन में एंटीवायरस भी ला देते हैं। इसके अलावा जो हमारा पासवर्ड होता है वो लंबी डिजिट का होना चाहिए, लाइक तुम्हारा नाम भी छोटा मोटा नहीं होना चाहिए। उसमें #@ ऐसे वर्ड्स यूज किए जाने चाहिए ताकि कोई उन्हें हैक ना कर सके। और इसके अलावा हमें सोशल मीडिया के सभी जो भी एप्स होते हैं उनमें प्राइवेसी रखनी चाहिए ताकि आपके बारे में ज्यादा लोगों को पता ना चले। इस तरह से हम हमारे मोबाइल डाटा को सुरक्षित कर सकते हैं। थैंक यू।
2: राठौरे, मैं भवरगढ़ की रहने वाली हूँ और रीड इंडिया से हमें होम मेकिंग प्रोडक्ट की ट्रेनिंग दी गई थी और इस पे हम घर पर बैठकर इस ट्रेनिंग से बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं और इससे हमें रीड इंडिया पर हमें बॉडी बैग्स और बॉडी बटर ये चीज़ें हमको सिखाई गई थी और इनमें वो शहद घी और वो ग्रीसलीन और डिबाम ये चीज़ों से हमने वो प्रोडक्ट बनाया था। इसको पैकिंग किया था और इसको तीन तरीके से हमने पैकिंग किया था, लिपस्टिक के सेप में और डिब्बी में और वो पोटली वाले में और रीड इंडिया में। यह सब चीज़ हमको रिया दीदी ने सिखाया था और इसमें मीना दीदी भी थी और हम 8-10 लड़कियों ने ये चीज़ सीखी थी। थैंक यू रीड इंडिया।
3: मेरा नाम लीना यादव है, ग्राम हरिद्वार पोस्ट बोयल तहसील सावर डिस्ट्रिक्ट 12 से बिलोंग करती हूँ। मैंने रीड इंडिया ऑनलाइन सेलिंग से ट्रेनिंग ली थी जिसमें हमें बहुत सारे प्रोडक्ट शेयर करना, प्रोडक्ट सेलिंग करना, उन सारी चीजों के बारे में बताया गया था। हमको प्रोडक्ट कैसे सेल करना चाहिए ये हमें आना चाहिए, हम ज्यादा से ज्यादा कैसे शेयर कर सकते हैं, इन सब चीजों को लेके हमको उस ट्रेनिंग के बारे में बताया गया था। जैसा कि हमको सीखने को मिला, बहुत सारे ऐप्स होते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, कई सारे वेबसाइटें होती हैं जिनसे हमको ये सब कुछ शेयर करना होता है। फेसबुक व्हाट्सएप के जरिए हम अपने प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं, फेसबुक पर डालकर हम उसको शेयर कर सकते हैं, किसी भी जानी मानी वेबसाइट से हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो हम अनजानी वेबसाइटों से ऑनलाइन शॉपिंग ना करें और सार्वजनिक वाईफाई से बचें। और भी कई सारी चीजें थी उसमें, पेज बनाना ये सब कुछ था उसी में, और अपना ऑनलाइन अपना मोबाइल लैपटॉप वगैरह सब अप टू डेट रखें और OTP वगैरह किसी के साथ शेयर ना करें। ये कई सारी चीजें हम लोगों को उसी के अंतर्गत सीखने को मिली। मैं बताना चाहूंगी कि ऑनलाइन सेलिंग के बारे में हमको बहुत कुछ जानकारियां मिली हैं। थैंक यू।
4: मेरा नाम जया बंसल है और मैंने रीड इंडिया से सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखा है। उसमें मैं फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, इन सब पर किस तरह से मार्केटिंग की जाती है वो सब सीखी है, और फेसबुक पर पेज बना कैसे बनाया जाता है ये सब सीखा है, किस तरह से फेसबुक पर मार्केटिंग की जाती है और व्हाट्सएप पर किस तरह से प्रोडक्ट डाले जाते हैं, किस तरह से सेलिंग की जाती है और इस तरह से, और मैं ये करती भी हूँ, प्रोडक्ट्स डालती भी हूँ, इससे मेरी इनकम भी बढ़ी है। और इस तरह से मैंने अभी अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया है। थैंक यू डिविड इंडिया।
5: मेरा नाम सुनीता, मैं ग्रेटर नोएडा से आती हूँ। मैंने सीखा है यहाँ पे तुड़पाई करना सीख लिया, प्लाजो बनाना सीख लिया और पेंटिंग बनाने से लिए पेंटिंग ये बना ली मैंने, और अब वो बना के आई अम्ब्रेला वाला बात वो प्लाजो।
6: अभी जो यहाँ पे रीड के माध्यम से राशन डिस्ट्रीब्यूट हुआ था वो भी उसमें भी आप थे?
5: हाँ, दो बार ले गए थे।
6: दो बार आप लेके गए।
7: मेरा नाम मीसा सिंह गौतम है और मैं तुगलपुर की रहने वाली हूँ, और यहाँ मैं सिलाई मशीन सीखना चाहती थी पर वहाँ कहीं दुकान वकान भी नहीं थी, और ये तो बहुत महंगे होंगे उसमें सिखाते थे। आसपास की लड़कियाँ सिलाई मशीन सीखने के लिए जाती थी और मैंने उनसे पूछा भी कि आप कहाँ जाती है, तो उन्होंने बताया कि एक केंद्र खुला पड़ा है बिमटेक केंद्र, तो मैं भी उनके साथ जाने लगी यहाँ से सीखने लगी। और मुझे आता भी कुछ नहीं था, मैंने तुरपाई से स्टार्ट किया था और मुझे अब सूट सलवार में बना लेती हूँ। और यहाँ मैंने बहुत कुछ सीखा है कि अनजान इंसान मतलब अनजान जो लड़कियाँ बढ़ती आती हैं वहाँ कैसे रहा जाता है, और कोई भी मतलब बुरा उड़ा नहीं होता, सब अच्छे होते हैं और यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है, मतलब सही है। जब लॉकडाउन लगा था तो यहाँ से हमें मतलब बहुत काम वाम भी मिला था, और मैं जब भी सीखने आती थी क्योंकि यहाँ मतलब बहुत कम उसमें सिखाया था, और हमें अच्छी बातें सिखाई जाती हैं कि बाहर जाके क्या करना है। और यहाँ से मैंने अपनी एक मैंने सोचा है कि मैं जब यहाँ से पूरी मशीन सीख लूंगी, जब मुझे वो डिप्लोमा मिल जाएगा तो मैं एक दुकान भी खोलूंगी अपनी, जिसमें मैं औरों को भी सिखा सकूँ और अपना काम भी वो कर सकूँ।
8: नमस्ते आप सभी को, मेरी तरफ से मैं तनु सैफी, मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मैंने यहाँ के बहुत कुछ सीखा है। पहले मुझे कुछ नहीं आता था और यहाँ सभी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं कि यहाँ मतलब बहुत अच्छे सिलाई सिखाते हैं और यहाँ सबकी केयर भी बहुत अच्छे से होती है, सबकी हैप्पीनेस का भी ध्यान रखा जाता है। बहुत सारी चीज़ें सीख ली बनाने में, कपड़े में बहुत सारे कपड़े सीख लिए, जैसे सूट सलवार प्लाजो पैंट बहुत सारे ब्लाउज।
6: खुद कटिंग कर लेती हूँ? पहले आपको कटिंग आती थी या पहले सिलाई आती थी?
8: कैची भी चलाने नहीं आती थी।
6: कैची भी चलाने नहीं आती थी। अच्छा, तो अभी सीखने के बाद आपका क्या है कि मैं क्या करना चाहती हूँ आप लाइफ में?
8: मैं ये दूसरों की हेल्प पहले तो,
6: हाँ,
8: और फिर अपनी एक छोटी सी शॉप
6: बुटीक टाइप। अच्छा, बुटीक खोलना चाहती हैं आप यहाँ सीखने के बाद?
9: मेरा नाम गीता है और मैं यही पास से तुगलपुर गांव से आती हूँ। पहले मैं यहाँ पढ़ने के लिए आती थी और लेडीजों के साथ, बहुत लेडीज पढ़ती थी, मैं भी पढ़ती थी यहाँ, और फिर पढ़ते पढ़ते एक साल सा हो गया, उसके बाद फिर मुझे यहाँ पे, मुझे सिलाई का शौक था, थोड़ा थोड़ा घर में ही मतलब करती रहती थी और मैंने सीखा भी था कहीं थोड़ा बहुत। रीड इंडिया की तरफ से मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ, मुझे काम भी यहाँ रीड इंडिया की तरफ से ही मिला है। पहले घर में रहती थी ना, मन नहीं लगता था बिल्कुल भी, ऐसे लगता था कहाँ कैद में रहती थी, यहाँ रीड इंडिया की तरफ से ही मिला है। पहले घर में रहती थी ना, मन नहीं लगता था बिल्कुल भी, ऐसे लगता था कहाँ कैद में रहती हूँ, और यहाँ आके तो एक नई जिंदगी सी मिली है। बस यही है कि उन्होंने हमें काम दिया, यहाँ बच्चों के लिए सेंटर खोला और फ्री चल रहा है यहाँ पे बच्चों के लिए, बड़े खुशी से आते हैं बच्चे, कौन सिखाता है, नहीं तो हजार हजार रुपए देते हैं मंथ के यहाँ पे, तो बच्चे गरीब बच्चे नहीं सीख पाते। बहुत ऐसे गरीब बच्चे हैं जो मतलब टाइम से पहले आ जाते हैं सीखने के लिए, मतलब उनको लगन है सीखने की।
6: लगन है सीखने की।
10: उनको मुझे कुछ लोगों से पता चला कि हमारे गांव में रीड इंडिया सेंटर है, वहाँ पे अलग अलग प्रकार की कोर्सेज होते हैं, जिनमें से कि मैंने ऑनलाइन सेलिंग के बारे में सीखा है। इसके बारे में पहले मुझे कुछ नहीं पता था, बट अब बहुत कुछ पता है, मैं इसके बारे में सीख चुकी हूँ और जानकारियाँ मैं देती रहूंगी, और इंस्टाग्राम यूट्यूब फेसबुक इन सब पे कैसे हम ऑनलाइन सेलिंग कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में मुझे पता चला है।
11: नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ज्योति है और मैं दिल्ली से हूँ। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ पूना मैम का, जिन्होंने मुझे रीड इंडिया सेंटर से जुड़ने का मौका दिया। फिर मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ महिपाल सर का, जिन्होंने मुझे रीड इंडिया फैमिली का हिस्सा बनाया और उससे जोड़ा, सभी को जानने का एक मौका दिया। रीड इंडिया के बारे में मैं नहीं जानती थी, बट जब यहाँ पे जुड़ी मुझे बहुत सारी चीजें सीखने को मिली, और जो जो मैंने सीखा वो एक्सपीरियंस मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ।

0: जैसा कि फोटोज वगैरह, एडिटिंग वगैरह, वीडियोस, शॉर्ट्स फोटोज, ये सब लेना मुझे नहीं मालूम था। जब मैं रेडियो टेस्ट सेंटर से जुड़ी, मुझे मालूम हुआ इन सब चीजों से मैं अनजान थी, पर जुड़ी तो मैंने एडिटिंग सीखी, वॉइस स्किल। जरूरी नहीं कि हमारे बोलने का तरीका कैसा है, हमारी वॉइस स्किल कैसे, ये मायने लगता है हम कैसे बोलते हैं, कितना उतार चढ़ाव हमारी आवाज में है, किस तरीके से हम बोल रहे हैं, जरूरी ये है। जैसा कि अब वॉइस स्किल में मुझे नहीं मालूम था कि कहाँ कितना ठहराव रखना है, लेकिन जब महिपाल सर ने हमें इतना सब कुछ सिखाया, हमने सीखा भी और बहुत कुछ किया भी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना पैंडेमिक में हम सभी के जीवन में कितने उतार चढ़ाव आए हैं। हम सभी ने आज से पहले ऐसा जीवन कभी नहीं देखा था, बट इस दौर में हम सभी को कुछ न कुछ सीखने को जरूर मिला। जैसे कि सब अपने घर में हैं, हम भी हैं, हम भी इस समय में हम खाली नहीं बैठे। रीड इंडिया सेंटर से हम लोग जुड़े, फिर हमने सीखा कि ऐसे दौर में हर इंसान जब घर में बैठता है तो हर इंसान बोर होता है, दम घुटने लगता है लोगों का घर में बैठ के। लेकिन इस दौर में हमने घर में बैठ के नहीं, बल्कि हमने सीखा, ऑनलाइन क्लास ली, सर से हमने बहुत कुछ सीखा। अब जैसा कि हमने बहुत सारे एफएम रेडियोस को सुना होगा, बट हमने सुना ही था लेकिन कभी उन्हें करीब से नहीं जाना था। लेकिन रेडियो सेंटर के जुड़ने के कारण हमने इसे करीब से जाना और उसे देखा और किया। और जैसा कि हम जानते लोगों की आवाजों को सुनते हैं, पर ये नहीं जानते कि वो लोग कितनी मेहनत करते हैं। जब हम इससे जुड़े तो हमने किया तो हमें पता चला कि लोग कितनी मेहनत करते हैं। हम लोगों को सिर्फ वॉइस के थ्रू हम सुनते हैं, बट कभी जाना नहीं। जब किया तो लगता है कि हाँ कितनी मुश्किल है ये चीजें। बहुत अच्छा लगा ये सब चीजें जानकर। करने के बाद बहुत, मतलब कि हमने किया तो बहुत एक्सपीरियंस मिला। अब जो मैं आपके सामने जो बोल पा रही हूँ, ये सब महिपाल सर, पूनम मैम की, इन सभी की बदौलत है कि मैं इतना कॉन्फिडेंस अपने अंदर बोलने का ला पा रही हूँ आप सभी के सामने। इससे पहले मैं बहुत नर्वस हुआ करती थी, बोलने मेरी आवाज भी नहीं निकलती थी। इसी के साथ मैं आप सभी से धन्यवाद लेना चाहती हूँ और रीड इंडिया सेंटर का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि मुझे इतना सब कुछ सीखने का मौका मिला।
1: हेलो, मेरा नाम तनु है, मैं शाहबाद में रीड इंडिया सेंटर से बोल रही हूँ। यहाँ पे मैंने वीडियो और ऑडियो एडिटिंग का कोर्स किया है। पहले हमें नॉलेज थी, बट इतनी नॉलेज नहीं थी जितनी अभी हमारी डेवलप हो गई है। अभी हमें यहाँ से बहुत अच्छी अच्छी स्किल्स सीखने को मिली है, जिससे हमें बहुत सारी चीज़ें आई हैं। अब हम यहाँ से वीडियो खुद बना सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें खुद कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे आकर बहुत फायदा हुआ है, सीखने को मिला है। थैंक यू।
2: मेरा नाम रितिका है, मैं 16 साल की हूँ और मैं शाहबाद मोहम्मदपुर की हूँ। मैंने रीड इंडिया से एडिटिंग का कोर्स किया है। यह कोर्स करने के बाद मैंने इसको अपनी स्कूल लाइफ में यूज किया है। जितनी हमारी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं और जितनी भी वीडियोस एडिटिंग होती हैं क्लास की, वो सब मैं ही करती हूँ। इससे मुझे बहुत हेल्प मिली है। अब मैं कोई भी काम आसानी से कर लेती हूँ। हमारी स्कूल असेंबलीज होती हैं, हमारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, वो सब मैं ही देखती हूँ एडिटिंग करने के लिए। और फ्यूचर में मैं इसको अपनी करियर में यूज करना चाहूंगी। थैंक यू।
3: मेरा नाम माया श्री है, मैं 32 साल की हूँ। मैं रीड इंडिया सेंटर द्वारका सेंटर से टैली का कोर्स कर रही हूँ। मुझे टैली के बारे में पहले कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, कोई नॉलेज नहीं थी, लेकिन यहाँ रीड इंडिया सेंटर पर आने के बाद टैली के बारे में मेरी नॉलेज इम्प्रूवमेंट हुई है। इसलिए मैं अब अपनी नॉलेज को और ज्यादा इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए आती हूँ।
4: मेरा नाम रंजिता जैन है, मैं 17 साल की हूँ। मैं यहाँ रीड इंडिया द्वारका सेंटर में ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स सीख रही हूँ। मैंने यहाँ बहुत सारी ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में सीखा और मैं अपने फोटोज एडिटिंग आसानी से कर सकती हूँ। और मैंने पोस्टर डिजाइनिंग करना सीखा और पैम्पलेट्स बनाना सीखा। मैं इसको अपनी डेली लाइफ में यूज कर रही हूँ और मैं अपना करियर ग्राफिक डिजाइनिंग में बनाना चाहती हूँ और मैं ग्राफिक डिजाइनिंग बनाना चाहती हूँ।
5: मेरा नाम उपासना है, मैं शाहबाद मोहम्मदपुर में रहती हूँ। मैंने रीड इंडिया सेंटर के बारे में अपनी एक फ्रेंड से सुना। यहाँ पे ऑनलाइन सेलिंग का कोर्स मैंने किया, जहाँ पे मुझे सिखाया गया कि यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इन सब के थ्रू अपना प्रोडक्ट कैसे सेल किया जाए, वो भी सेफली। थैंक यू।
6: मेरा नाम रेशमा वर्मा है, मैं शाहबाद मोहम्मदपुर में रहती हूँ। जब पहले
1: मैं यहाँ रीड इंडिया सेंटर में एडवांस्ड कोर्स कर रही हूँ। पहले जब मैं यहाँ आई थी तो मुझे थोड़ी बहुत सिलाई आती थी, पर मेरे हाथ में सफाई नहीं थी और ना मुझे इतनी ज्यादा चीजें आती थी जो आजकल चल रही है। अब मेरे हाथ में सफाई भी आ गई है, जैसे जिप लगाना और चैन वगैरह लगाना, सब प्लाजो में जेब लगाना, इन सब चीजों में। और अब मैं मुझे यहाँ आके बहुत सारा कुछ नया सीखने को मिला है, जैसे पैंट प्लाजो फ्रॉक सूट ये सब। और अब मैं बहुत खुश हुई सीखने के बाद, मैं अपने सूट अपने आप सिलती हूँ और मैं अपने दोस्तों को और अपने फ्रेंड सर्कल में सबको बताती हूँ कि मैं हमारी रीड इंडिया सेंटर से सिलाई सीखी है। और वहाँ के मैडम और बाकी स्टाफ सब बहुत अच्छा है, सब बहुत अच्छे से बिहेवियर करते हैं और बहुत अच्छे से सिखाते हैं, चाहे कितनी बार भी पूछो बहुत अच्छे से बताते हैं। और अब मैं बहुत खुश हूँ, आगे जब मुझे कहीं जॉब मिलेगी तो मैं जॉब करूंगी, और नहीं तो मैं अपना घर बैठ के सिलाई भी करूंगी, अपने भी बाहर के भी। और आगे कभी फ्यूचर में मिला तो कहीं और अप्लाई जरूर करती रहूंगी, जहाँ नौकरी मिले वहाँ मैं करूंगी। धन्यवाद।
6: मेरा नाम गरमा है, मैं शाहबाद मोहम्मदपुर में रहती हूँ। मैंने रीड इंडिया सेंटर से एडवांस स्टिचिंग का कोर्स किया है। मुझे पहले थोड़ा बहुत आता था और अब यहाँ पे आने के बाद मुझे सब कुछ आ गया है लगभग। अभी बस फिनिशिंग थोड़ी बहुत बाकी है, वो भी मेरी कंप्लीट हो जाएगी और इसके बाद मैं अपना एक बुटीक खोलना चाहूंगी, जिसमें मेरे पास थोड़े बहुत पैसे या कुछ भी होगा, जिससे मैं अपना कुछ कर सकूंगी, अपना काम निकाल पाऊंगी और अपना कुछ करियर कर पाऊंगी। जॉब भी करना चाहूंगी, अगर मेरे को फैसिलिटी मिलेगी आगे चल के तो मैं उसको जरूर अप्लाई करूंगी।
7: मेरा नाम अर्चना तिवारी है, मैं शाहबाद मोहम्मदपुर गांव में रहने वाली हूँ। मैंने रेड इंडिया से स्टिचिंग एडवांस स्टिचिंग का कोर्स किया है। पहले मुझे फिनिशिंग नहीं आती थी, अब मैंने सब कुछ सूट वगैरह गले की डिजाइन बाजू सब कुछ करना सीख लिया है। अब मैं खुद से अपना कुछ करना चाहती हूँ।
8: मेरा नाम बेबी श्वेता है, मैं शाहबाद मोहम्मदपुर में रहती हूँ। मैंने रेड इंडिया सेंटर से एडवांस स्टिचिंग का कोर्स किया है। पहले भी मुझे सिलाई आती थी, लेकिन जब से मैंने एडवांस स्टिचिंग का कोर्स किया है, जब से मेरे कपड़ों में और अच्छी फिनिशिंग आती है, मुझे बहुत कुछ नया नया सीखने के लिए मिला, जैसे कि चोली कट ब्लाउज, सिंपल ब्लाउज, अम्ब्रेला कट बाजू, बोट नेक। और पहले मुझे गले की डिजाइन वगैरह, सूटों के डिजाइन, ये सब अच्छी तरीके से सिलना नहीं आता था। जब से मैंने ये एडवांस स्टिचिंग का कोर्स किया है, मुझे बहुत अच्छे से सिलना आता है, मेरे कपड़े में बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। अब मैं अपने फैमिली मेंबर्स के कपड़े खुद ही सिलती हूँ। मेरे पास बाहर से भी कुछ कपड़े सिलने के लिए आते हैं, जिससे मेरी अपनी खुद की जरूरतें पूरी हो जाती है। इस एडवांस स्टिचिंग करने से मेरे अंदर बहुत बदलाव आया है। थैंक यू।
9: मेरा नाम मंजू है, मेरी उम्र 28 साल है। रीड इंडिया से मैंने एडवांस स्टिचिंग का कोर्स किया है। ट्रेनिंग लेने के बाद मेरी निजी जिंदगी में बहुत ही ज़्यादा परिवर्तन हुआ है। पहले मेरे पास स्टिचिंग के लिए कपड़े आते थे, लेकिन उनमें अच्छे से फिनिशिंग नहीं हो पाती थी, लेकिन रीड इंडिया में आने के बाद मैंने फिनिशिंग के साथ साथ बहुत सारे नए नए डिज़ाइन बनाने सीखे। हाँ, मुझे नए नए डिज़ाइन सीखने को मिले जो मुझे पहले नहीं आते थे, लेकिन ये कोर्स करने के बाद मेरे पास बाहर से कपड़े सिलने के लिए भी आने लगे। रेड इंडिया में आने से पहले मुझे पैसों के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन स्टिचिंग सीखने के बाद मुझे दूसरों की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि अब मैं अपने निर्णय खुद ले सकती हूँ और खुद ही अपना पैसे कमा सकती हूँ। और अब मैं बाहर से गारमेंट स्टिचिंग करके अपने इनकम पा रही हूँ। रेड इंडिया में आने के बाद मुझे बहुत खुशी और सफलता मिली है।
10: मेरा नाम मीनू है, मैंने रीड इंडिया सेंटर से ऑनलाइन सेलिंग का कोर्स किया है। पहले मैं इतनी कैपेबल नहीं थी, जो मेरी उसके पास बोल नहीं पाती थी, बट मैं बोलती थी और मैं एक रिसेप्शन की जॉब भी करती हूँ शाहबाद मोहम्मदपुर में। थैंक यू सो मच।
11: मेरा नाम किरण राजपूत है, मैं 49 ईयर्स ओल्ड हूँ और मैंने रेड इंडिया से मार्केटिंग ऑनलाइन का कोर्स किया था, जिसका बेनिफिट ये हुआ है मुझे कि मैं अपने जो काम मैं कर रही थी उसको मैं अच्छी तरह से और प्रेजेंट कर पाई हूँ और मार्केटिंग स्केल को और अच्छे से समझ पाई हूँ कि किस तरह से हम लोग मार्केटिंग को ऑनलाइन के साथ क्रिएट कर सकते हैं और अपने प्रोडक्ट्स और अपनी क्वालिटीज़ को किस तरह से हम और ज़्यादा अधिक से अधिक लोगों के आगे प्रेजेंट करने में हमें मुझे आसानी हुई है। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ रीड इंडिया का, जिन्होंने ऑलरेडी ये कोर्स चलाया जिससे कि हम मुझे बहुत बहुत बेनिफिट फ़ायदा हुआ है। थैंक यू फॉर द रीड इंडिया।
12: हेलो, मेरा नाम आशु है, मैं शाहबाद की रहने वाली हूँ। मुझे रीड इंडिया सेंटर के बारे में मेरी फ्रेंड से पता लगा। मैं यहाँ आई, फिर मेरी सुमन मैम से बात हुई। सुमन मैम ने मुझे बताया यहाँ पर मैं कॉलर एंड सिलाई सेंटर का भी काम सिखाया जाता है। फिर मैंने हर्बल के प्रोडक्ट बनाना सीखा। मैंने हर्बल के प्रोडक्ट में लिप स्क्रब, लिप बाम एंड बॉडी लोशन, फेस क्रीम और साबुन बनाना सीखा। मैंने उसको खुद घर पे यूज़ किया और मेरी फैमिली में भी यूज़ किया। उसके बहुत ही बेटर रिजल्ट आया। एंड थैंक यू सुमन मैम एंड थैंक यू रीड इंडिया सेंटर। थैंक यू सो मच।
13: नमस्कार, मेरा नाम सरिता सुबेदी, मैं शाहबाद के रहने वाली हूँ। मुझे अपने फ्रेंड से पता चला रीड इंडिया के बारे में। जैसे मैं वहाँ जाके पता करी तो वहाँ मुझे पता चला कि हर्बल प्रोडक्ट के अलावा वहाँ पर सिलाई, कंप्यूटर और पार्लर के कोर्स भी सिखाई जाती है। जैसे मैं सुमन मैम से मिली और सुमन मैम से जानकारी ली कि यहाँ पर हर्बल प्रोडक्ट बनाने सिखाई जाती है, तो मैंने ज्वाइनिंग किया और हर्बल प्रोडक्ट बनाना सीखा। मैम ने मुझे बहुत अच्छी तरीके से नेचुरल, बिल्कुल बिना केमिकल के प्रोडक्ट बनाना सिखाया, हर्बल प्रोडक्ट, जिसमें से बॉडी सोप, बॉडी वाटर, लिप बैम, लिप स्क्रब, बहुत अच्छे प्रोडक्ट बनाना सिखाया और मुझे बहुत अच्छा लगा। कुछ बॉडी लिप बाम, बॉडी स्क्रब एंड फेस क्रीम मैंने बनाया भी खुद और यूज किया, मेरी फैमिली को भी यूज कराया। सबको बहुत अच्छा लगा और सब ने मतलब बहुत तारीफ किया। इसीलिए थैंक यू सो मच सुमन मैम एंड थैंक यू सो मच रीड इंडिया इतने अच्छे प्रोडक्ट सिखाने के लिए। थैंक यू सो मच।
14: मेरा नाम सोनिया है और मैं शाहबाद मोहम्मदपुर में रहती हूँ। मुझे ब्यूटिशियन का कोर्स करना था तो मैं ब्यूटिशियन के कोर्स के लिए पूछने गई तो मुझे वहाँ फीस बहुत महंगी बताई जो कि मैं अफोर्ड नहीं कर पाती। तो मुझे किसी से रीड इंडिया सेंटर के बारे में पता चला तो मैं रीड इंडिया सेंटर में गई और मैंने वहाँ जाके मैम से पूछा कि मैम मुझे ब्यूटिशियन का कोर्स करना है। तो मैम ने मुझे ब्यूटिशियन के कोर्स के बारे में बताया और साथ में वहाँ स्टिचिंग, कंप्यूटर और हर्बल प्रोडक्ट बनाना सिखाया जाता है। तो मैंने वहाँ पे ब्यूटिशियन का कोर्स करना स्टार्ट कर दिया और मुझे 3 मंथ्स हो गए हैं ब्यूटिशियन का कोर्स करते करते और मुझे बेसिक पार्लर पूरा आ चुका है। तो मैं रीड इंडिया सेंटर को और सुमन मैम को थैंक यू बोलना चाहूँगी जिसके वजह से मेरा ब्यूटिशियन का कोर्स पॉसिबल हुआ हो पाया है, क्योंकि महंगी फीस की वजह से मैं अफोर्ड नहीं कर पा रही थी। तो थैंक यू सो मच सुमन मैम एंड थैंक यू सो मच रीड इंडिया सेंटर।
15: हाय, माझं नाव सामी उमेश जोगेश्वर आहे। माझं शिक्षण 11वीपर्यंत झालेलं आहे। मी रीड इंडियामध्ये 3 महिन्यामध्ये कोर्स करते। त्यामध्ये मी ब्लाऊज, साधा ब्लाऊज, कटोरी ब्लाऊज, परत प्रिन्स कटोरीवाला ब्लाऊज वगैरे सर्व शिक।
16: हाय, मेरा नाम है रेशमा अलूरव जोगिनकर। मैंने 12वीं की हूँ साइंस से, गोरेगाव से, और मैं 3 महीने से रीड इंडिया से कोर्स कर रही हूँ, बेसिक टेलर कोर्स का। और उसके बाद मैंने उसमें सीखी हूँ झबला, बिनबाही का, सादी चड्डी, फैंसी बॉनेट, उसके बाद प्रिंस कटोरी ब्लाउज, फ्रॉक और पंजाबी सूट। थैंक यू।
17: हाय, माझे नाव अक्षत अशोक कांबळे। मी ऍग्रीकल्चर डिग्रीमध्ये डिग्री करत आहे आणि इथे खामगाव मंडी इंडियामध्ये मशीन शिवण क्लास करत आहे। त्याच्यामध्ये जे दररोजच्या लग्नासाठी जे कपडे आहेत त्याच्यामध्ये शिकवलं जाते आणि इथे खूप काही गोष्टी शिकण्यासारख्या, रेड इंडियामध्ये खूप काही गोष्टी शिकण्यासारख्या मिळाल्या, त्यामुळे त्यांचे आम्ही आभार व्यक्त करते। थँक्यू।
18: नमस्कार, माझं नाव मनवा जीवन आडवीलकर। माझं शिक्षण टीवाय बीए मधून झालेलं आहे। मी इथे रीड इंडिया सेंटरमध्ये 3 महिन्यापासून कोर्स करत आहे। त्या कोर्समध्ये मी बिनबाईचा झबला, कटोरी ब्लाऊज, प्रिन्स कटोरी, साधा ब्लाऊज, ड्रेस हे सगळं शिकली आहे। थँक्यू रीड इंडिया।
19: माझं नाव नौशीन वजीर जोगिरकर। माझं शिक्षण 12वी। मी रीड इंडिया सेंटरमध्ये कोर्स केला आहे शिवण क्लास, 3 महिन्याचा कोर्स आहे। त्याच्यामध्ये बिनभाईचा झबला, चड्डी, सलवार कमीज, ब्लाऊज हे सर्व शिकवले गेले आहे। हा कोर्स भेटण्यामधून तुमचे आम्ही आभारी आहोत। थँक्यू।
20: आपकी उम्र
21: 22।
20: रीड इंडिया सेंटर से आपने कौन सी ट्रेनिंग ली?
21: कंप्यूटर के पार्लर की।
20: ट्रेनिंग लेने के बाद आर्थिक स्थिति के बदलाव के बारे में बताएं।
21: ट्रेनिंग लेने से हमें ये फायदा हुआ है कि हम सेल्फ डिपेंडेंट हो सकते हैं, उससे हमारी इनकम बढ़ सकती है, ट्रेनिंग बच्चों को दे सकते हैं, कोचिंग ले सकते हैं।
20: आप आगे क्या करना चाहती हैं?
21: कंप्यूटर ही कोचिंग देंगे और कंप्यूटर में स्कोप है, कंप्यूटर से ही जॉब करनी है।
20: आपका नाम क्या है?
21: स्वाति।
20: आपकी उम्र?
21: 24।
20: रीड इंडिया सेंटर से आपने कोई ट्रेनिंग ली?
21: यस मैम, हमने दो ट्रेनिंग ली थी, पार्लर का और कंप्यूटर का।
20: तो आपने कंप्यूटर में कैसे सीखा?
21: कंप्यूटर में एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, नेटवर्किंग
20: बेसिक सीखा आपने। और पार्लर में?
21: पार्लर में मैम कटिंग, फेशियल, ब्लीच, वैक्सिंग।
20: ट्रेनिंग लेने के बाद आर्थिक स्थिति के बदलाव के बारे में क्या आप कुछ बता सकते हैं?
21: कंप्यूटर सीखने के बाद घर पर बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, कोचिंग पढ़ाता है कंप्यूटर के बारे में, उससे अच्छी खासी इनकम होती है।
20: और पार्लर का?
21: पार्लर में मैम बस साइड में चल रहा है।
20: अच्छा, जीवन के निर्णय और पारिवारिक निर्णय लेने की आपकी क्षमता में कोई सुधार हुआ?
21: यस मैम, पहले से ज्यादा इनकम होने लगी है, सेल्फ डिपेंडेंट हो गया।
20: गुड। आप आगे क्या करना चाहती हैं?
21: मैम पार्लर में कर रहा है, पार्लर खोलना है।
20: अपना पार्लर खोलना है? अच्छा, तो पार्लर की पूरी ट्रेनिंग लेने के बाद मतलब आप चाहते हो अपना पार्लर?
22: माझे नाव आदिती संजय वाळणकर, माझ्या गटाचे नाव महालक्ष्मी गट, गाव विनेरे, आम्ही रीड इंडिया सेंटर विनेरे येथे पापड मेणबत्ती बनविण्याचे प्रशिक्षण घेतले। तेथे टाटर मॅडम यांनी आम्हाला खूप चांगल्या प्रकारे मेणबत्ती बनवण्याची माहिती दिली व त्यातून पुढे व्यवसाय कसा करायचा याचे मार्गदर्शन केले, मार्केटिंगचे आश्वासन दिले, त्यामुळे बचत गटाच्या वतीने व्यवसाय सुरू करण्याची नवी उमेद मिळाली। रीड इंडिया सेंटर विनेरे व टाटर मॅडम यांचे आम्ही आभार मानतो।
23: जय बजरंग महिला बचत गट, गाव विनेरे। आम्ही रीड इंडिया सेंटर विनेरे येथे पापड व मेणबत्ती बनवण्याचे प्रशिक्षण घेतले। तेथे टाटर मॅडमनी आम्हाला खूप चांगल्या प्रकारे मेणबत्ती बनवण्याची माहिती दिली व त्यातून पुढे व्यवसाय कसा करायचा याचे सुद्धा मार्गदर्शन केले। मार्केटिंगचे आश्वासन मॅडमनी आम्हाला दिले, त्यामुळे बचत गटाच्या वतीने व्यवसाय सुरू करण्यासाठी आम्हाला नवीन उमेद मिळाली आहे। त्यामुळे आम्ही टाटर मॅडम आणि रीड इंडिया संस्थेचे विनेरेकडून आभार मानत आहोत।
24: माझे नाव शर्मिला मंगेश पिसापूरकर, माझ्या गटाचे नाव जय बजरंग महिला बचत गट, गाव विनेरे। आम्ही रीड इंडिया सेंटर विनेरे येथे पापड व मेणबत्ती बनवण्याचे प्रशिक्षण घेतले। तेथे टाटरे मॅडम यांनी आम्हाला खूप चांगल्या प्रकारे मेणबत्ती बनवण्याची माहिती दिली व त्यातून पुढे व्यवसाय कसा करायचा याचे मार्गदर्शन केले। मार्केटिंगचे आश्वासन दिले, त्यामुळे बचत गटाच्या वतीने व्यवसाय सुरू करण्याची नवीन उमेद मिळाली। या वतीने टाटर मॅडम, रीड इंडिया व टाटर मॅडम यांचे मी आभार मानतो।
25: माझे नाव श्वेता संतोष सकपाळ, वय 24 वर्ष, रेड इंडिया सेंटर विनेरे येथून मी ग्राफिक डिझाईनचा कोर्स केला। यामध्ये मला फोटो एडिटिंग, बॅनर डिझाईन आणि व्हिडिओ बनवायला शिकवलं। त्याचा आम्ही नक्कीच भविष्यात उपयोग करू व रेड इंडिया सेंटरने आम्हाला जे फ्रीमध्ये कोर्स प्रोव्हाइड केले त्याबद्दल त्यांचे धन्यवाद।
26: माझं नाव श्वेता रोशन सप्पा, वय 29 वर्ष, रेड इंडिया सेंटर विनेरेकडून आम्हाला ग्राफिक डिझायनिंगचा कोर्स शिकवण्यात आला। या कोर्समध्ये आम्ही फोटो एडिटिंग, बॅनर डिझायनिंग आणि व्हिडिओ कशा बनवायचा हे शिकलो। या शिक्षणाचा उपयोग आम्ही भवितव्यात नक्कीच करू। रेड इंडिया सेंटरने आम्हाला हा जो कोर्स फ्रीमध्ये प्रोव्हाइड केला त्याबद्दल त्यांचे मनापासून धन्यवाद।
27: मेरा नाम लप्सा है, मैं रीड इंडिया पडवाई सेंटर सिलाई सीखी है। मैं पडवाई में रहती हूँ और मैं इस सेंटर में आती जाती रहती हूँ। इस सेंटर से मैंने अच्छी सिलाई सीखी है, अपने घर के कपड़े सिलती हूँ और मोहल्ले के भी कपड़े सिलती हूँ। इस रीड इंडिया का धन्यवाद करना चाहती हूँ मैं। इस रीड इंडिया में सिलाई सीख कर और सिलाई करती हूँ मैं और कपड़े सिलती हूँ, उससे जो पैसा आता है मैं अपनी कॉलेज की फीस करती हूँ, जमा करती हूँ। मेरा नाम निशा है, मैं पडवाई रीड इंडिया से सिलाई सीखी है। मैं एक फैशन डिजाइनर बनना चाहती हूँ और तरह तरह के डिजाइन के कपड़े सीना चाहती हूँ। और मेरा एक सपना ये है कि मैं एक सेंटर खोल सकूँ जिससे बच्चों को अच्छे से डिजाइन के कपड़े सिखा सकूँ। मेरे तरफ से सेंटर को धन्यवाद।
0: सकती। मेरी एज 21 है। मैं लास्ट ग्रेड पर रहती हूँ। मैं रीड इंडिया सेंटर में एडवांस स्टिचिंग का कोर्स किया है। मुझसे काफी कपड़े सिलाई के आ गए हैं, जैसे कि डिजाइनिंग कुर्ती, डिजाइनिंग पेंट, प्लाजो, गरारा, फरारा, लहंगा, चोली वगैरह वगैरह काफी सिलाई आ चुकी है। और मेरे डिजाइनिंग मैं अपने डिजाइन खुद करती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है अपना डिजाइन सिलाई करना। और मेरे डिजाइन सिलाई के लोग भी मतलब कहते हैं मेरे भी सीधे, इस वजह से मेरे मतलब काफी सिलाई आती है घर पर। और मैं सिलाई की वजह से अपने घर में काफी हेल्प कर सकती हूँ। और मैं पहले मतलब अपनी कुछ नहीं कह सकती थी अपने बारे में, पर अब मैं सबसे कुछ भी कह सकती हूँ। और मैं अपना खर्च खुद ही उठा सकती हूँ। पढ़ाई वगैरह का भी काफी कुछ अपने नहीं कर सकती हूँ। मैं एडवांस सिलाई सीख के मुझे काफी लाभ हुआ है।
1: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फिजा है। मैं कलघर में घोसियान मोहल्ले में रहती हूँ। या कलघर सेंटर हर्बल कॉस्मेटिक का कोर्स कर रही हूँ, जिससे मुझे बहुत फायदा हुआ है। जैसे कि लिप बाम, बॉडी वैक्स, बॉडी बटर और वगैरह काफी कुछ सीखने मिला है। और इसमें मुझे बहुत इंटरेस्ट है। मैं रेड इंडिया कलघर सेंटर को धन्यवाद कहना चाहती हूँ।
2: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अनब है और मेरी एज 18 ईयर्स है। और मैं एक बहुत मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। यहाँ पर रीड इंडिया सेंटर आने से पहले मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी यहाँ आने के लिए भी बहुत ज़्यादा, और मेरी फैमिली में भी बहुत ज़्यादा इनकम की प्रॉब्लम थी। मेरे पापा प्लम्बरिंग का काम करते हैं, मम्मी सिलाई करती हैं। तो मैं सोचती थी कि शायद मैं कुछ कर सकूँ अपने मम्मी पापा के लिए या अपने खुद के लिए, कि मैं अपना खुद खर्च अपना खुद लूँ, मम्मी पापा से नहीं लूँ। इस वजह से मैंने सोचा कि मैं अपने खुद काम करूँ, खुद कुछ भी करके अपना खुद ही निकालूँ खुद भी। फिर मैंने मुझे यहाँ पर रीड इंडिया सेंटर के बारे में पता चला, तो मैं यहाँ पर आई। मैंने यहाँ पर आके बेसिक सिलाई का भी कोर्स किया है और ऑनलाइन सेलिंग का कोर्स किया है। तो इसके जैसे मैंने बिजनेस कम्युनिकेशन और लाइफ स्किल्स और मेंटल हेल्थ का कोर्स है, और ये सब लेने के बाद मेरा माइंड बहुत फ्री रहता है। पहले मैं किसी के सामने बोल नहीं पाती थी, बिल्कुल भी बात नहीं कर पाती थी, और अब अच्छे से मैं सबसे बोल पाती हूँ, बात कर पाती हूँ। मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंट जागा है, दूसरों के सामने बोलने का, कुछ करने का एक हिम्मत आई है। पहले मुझे कुछ नहीं आता था बिल्कुल। यहाँ आने के बाद बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है मुझे, बहुत अच्छा लगता था यहाँ आके। और अब भी मैं पूरी कम्प्लीट फेस स्टिचिंग कर चुकी हूँ, और इससे मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है। इससे मैं अपनी इनकम अच्छे से काम कर लेती हूँ और मैं अपना खर्च खुद निकालती हूँ, किसी से कुछ कहने की जरूरत भी नहीं पड़ती। और पहले मेरी पढ़ाई रुक चुकी थी इस काम पैसों की वजह से ही और पापा की मजदूरी के काम की वजह से ही, मगर जब से मैंने अपना काम शुरू किया है या मैंने स्टिचिंग का कोर्स किया है, उसके बाद मैं अपने खर्च और स्कूल की कॉलेज की पढ़ाई खुद में करती हूँ, खुद अपना खर्च निकालती हूँ। और यहाँ पर आने के बाद मैंने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक से मैंने अपने डिज़ाइन अपलोड किए और मैं उसको अब सेल करती हूँ उस पर। उससे मुझे बहुत अच्छी इनकम हो जाती है और अपने में इस वजह से अपने घर में भी पूरी हेल्प देती हूँ और मैं अपनी पढ़ाई वगैरह भी खुद कर लेती हूँ। और मेरे रीड इंडिया सेंटर आने के बाद बहुत ज़्यादा मुझे फ़ायदा हुआ है और मैं रीड इंडिया सेंटर को बहुत ज़्यादा शुक्रिया करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच रीड इंडिया सेंटर।

आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो। रीड इंडिया समुदाय के सहयोग के द्वारा समुदाय के विकास के लिए कार्य करता है। रीड इंडिया ग्रामीण समुदायों में स्थायी सामाजिक परिवर्तन हेतु शिक्षा, उद्यम और सामाजिक विकास के क्षेत्र में कार्य करता है। आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो।

रीड इंडिया माने रूरल एजुकेशन एंड डेवलपमेंट, ग्रामीण शिक्षा एवं विकास। हमारा काम तो लाइब्रेरीज बनाना है और आज के समय में जो चर्चा हो रही है, लाइब्रेरीज खाली किताब पढ़ने के लिए नहीं है। लाइब्रेरीज एक ऐसी जगह है जहां हम बहुत कुछ अपने लिए भी कर सकते हैं और समुदाय के लिए भी कर सकते हैं। माने पढ़ें तो हम अपने बच्चों को भी पढ़ाएं, हम बड़ों को भी पढ़ाएं, हम छोटे बच्चों के साथ भी एक्टिविटीज करें कि किताब क्या चीज है और किताब उनके जीवन में क्या महत्व रखती है। पर ड्यूरिंग द जर्नी इस समय के साथ साथ हमने ये सोचा कि हमें महिलाओं के लिए भी कुछ कार्यक्रम करने चाहिए। अगर महिला अपने आप को निखार सकती है, अपने आप को सक्षम बना सकती है और जिम्मेदारी अपने शोल्डर्स पे ले सकती है कि अपने बच्चों का विकास कैसे करना है, वो भी रीड इंडिया अपने कम्युनिटी लाइब्रेरीज और रिसोर्स सेंटर्स में करती है। हमने औरतों के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे कार्यक्रम किए, जैसे सिलाई सिखाना, ब्यूटी पार्लर की ट्रेनिंग देना और भी बहुत सारी ऐसी ट्रेनिंग्स हैं जो हम अपने सेंटर्स में करते हैं। पर उसका जो आउटकम है, जो हम समझ रहे हैं कि एक महिला इतनी सक्षम हो जाए कि वो अपने परिवार की भी सोच बदल सके, अपनी भी सोच बदल सके और अपने बच्चों को एक मकाम तक लेके जा सके। इसी दौरान हमने पिछले 3 सालों में उनको बहुत सारी ऐसी स्किल्स दी जिससे वो अपना बिजनेस भी शुरू कर सकती हैं और हम उनको रेगुलरली ट्रेस भी करते हैं। ट्रेस इन द सेंस कि हम उनसे बातचीत भी करते हैं कि वो अपने बिजनेस के बारे में क्या सोच रही हैं, अपना बिजनेस कैसे आगे लेके जा सकती हैं। और इसी दौरान हमने ये सोचा कि हम क्यों इतने बड़े बड़े बीबीए और एमबीए की बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो हम इतने पैसे कहाँ से लाएं कि हम इन महिलाओं को बोलें कि ये कोर्सेज ज्वाइन कर लो। तो रीड इंडिया ने क्या किया, अपने प्रपोजल में ये सारे एपिसोड्स लिख दिए। मैं इनको एपिसोड्स ही कहूंगी, मॉड्यूल्स नहीं कहूंगी, क्योंकि ये एपिसोड्स उनके जीवन में बहुत सा बदलाव ला सकते हैं, उनको एक उद्योग क्या है उसके बारे में ज्ञान दे सकते हैं और उद्योग करने के लिए उनको क्या क्या सीखना है वो भी ट्रेनिंग्स हम देने के लिए तैयार हैं। और हम महिलाओं को बोलते हैं, यंग लड़कियों को बोलते हैं जो बीए कर चुकी हैं या 12वीं पास कर चुकी हैं, वो अपना नाम आके रीड इंडिया की लाइब्रेरी एंड रिसोर्स सेंटर में लिखवाएं और हम बिल्कुल तैयार हैं उनको इनके ऊपर ट्रेनिंग देने के लिए। और आगे आने वाले समय में अगर नौकरी नहीं भी मिलती है तो अगर वो अपना एक लघु उद्योग शुरू कर लेती है और अपने परिवार की देखभाल अच्छे ढंग से कर लेती है और अपने हस्बैंड के साथ, अपने परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाके अपने परिवार को आगे लेके जाती है, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सकती है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज उनकी जिंदगी में क्या हो सकती है। तो श्रोताओं, मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि आप रीड इंडिया के मिशन को समझें, रीड इंडिया की लाइब्रेरी के बारे में जानें और जितना भी आप अपने आप को सक्षम कर सकते हैं रीड इंडिया के सेंटर पे आके अपना नाम लिखवाएं। धन्यवाद।

0: Good evening, everyone. Welcome to today's episode of Nurturing Grassroots Leaders, Branding the Local Culture with Development. Today's guest will be Mrs. Sana from Barabanki, UP, who's here to share her story with us. As for a little background about her, she did her schooling in Barabanki but got married at a very early age, so had to wait for a while before continuing her studies. She did MA in English Literature and started teaching in Central Academy School. While working there, she and her husband got involved in an organization named ASI, which now goes under the name of Tanager. And while working in ASI, she was given a project regarding different farming communities. And through that, she got to know about Read India organization. She later joined Read India in March 2018 and is currently working as a center coordinator. Her current goal is to make sure that Read India is providing facilities and benefits to as many people as possible. This was just a little background about her, and she is going to explain that in much greater detail. So with that being said, I would like to request Smita ma'am to continue the program.
1: Thank you, Shashank. Thank you for the brief introduction about Sana. I welcome everybody, all our viewers, to another exciting episode of Nurturing Grassroots Leaders. Jaisa ki Shashank ne bataya, humare saath aaj Sana hai. So welcome, Sana. Welcome to our show. So Sana, और देर ना करते हुए हम आपके बारे में और जानना चाहेंगे और हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे. आप थोड़ा बताएंगे अपने बैकग्राउंड के बारे में. ब्रीफ में शशांक ने बताया, बट आप भी बताएं कि कहाँ पे आपका बर्थ हुआ, कहाँ पे आपने एजुकेशन कंप्लीट करी, फिर आपकी जैसे जर्नी आगे बढ़ी उसके बारे में आप बताना चाहेंगे.
2: गुड इवनिंग एवरीवन. गुड इवनिंग एवरीबॉडी. थैंक यू मुझे ये चांस देने के लिए कि मेरी जर्नी हम शेयर कर सकें रीड इंडिया के थ्रू. जितने भी लोग अब सुन रहे हैं, रीड इंडिया में के वजह से आज हम यहाँ तक लाइफ में पहुँच पाए हैं. आज मुझे बहुत सारे लोग जानते हैं और मेरे नाम से जानते हैं. थैंक्स, वेरी थैंकफुल टू रीड इंडिया फॉर दिस. सो स्टार्टिंग माई जर्नी, मेरी जो बर्थ हुई थी वो मेरे नानी के घर में हुई थी, बरेली में. वो एक दूसरा डिस्ट्रिक्ट है, यूपी में ही है, बट वो दैट इज नियर रामपुर. तो मेरी बर्थ बरेली में ही हुई थी मेरे नानी के घर पे. उसके बाद जब वापस आए दादी के घर पे हम लोग, तो मेरी स्कूलिंग शुरू हुई बाराबंकी से. बाराबंकी से हम एट्थ में ही थे, तो सामने कल स्टेटस की वजह से थोड़ा सा, एज मेरे फादर फॉरन में रहते थे, ही वॉज डूइंग हिज जॉब देयर, ही वॉज नॉट लिविंग विद अस. हम लोग अपने दादी के घर में रहते थे, बट पापा बाहर काम करते थे. तो ऐसे हमारी लाइफ शुरू हुई. बट जब हम एट क्लास में थे, तो कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स घर में होने लगी थी, मम्मी पापा का ये, तो थोड़ा बहुत इसकी वजह से. फिर जब मेरा नाइन्थ था, जब टेंथ में मेरे क्लासेस शुरू होने वाले थे, तो कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मुझे बाराबंकी छोड़कर अपने फादर के साथ शिफ्ट होना पड़ा, जिसकी वजह से मेरी स्कूलिंग एक रेगुलर CBSE स्कूल से होल्ड होकर के एक प्राइवेट टेंथ की मुझे ऑप्ट करना पड़ा, क्योंकि मेरा ऑलरेडी CBSE रजिस्ट्रेशन होता है, कुछ प्रोसेस तो वो चल रहा था. तो टेंथ में हमको एफए करना पड़ा. फिर टेंथ में होते होते ही मेरी शादी फिक्स कर दी गई. और फिर ना चाहते हुए भी उस एज पर, एट द एज ऑफ 16 and a half, आई हैड टू गेट मैरिड. ड्यू टू दैट मेरी शादी हुई थी, बट एक विल पावर था कि नहीं, ऐसे तो नहीं बैठ सकते, मतलब दिस इज नॉट फॉर मी. तो मेरी शादी हुई टेंथ में. मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया टेंथ का एग्ज़ाम देने. वो मुझे लेकर जाते थे शादी के 3 महीने बाद ही. मार्च जनवरी में शादी हुई, मार्च में एग्ज़ाम्स आ गए. उन्होंने मुझे पूरा टाइम दिया कि मैं पढ़ें, अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करें. फिर वो मुझे एग्ज़ाम्स के लिए लेकर जाते थे. फिर मैंने उन्हें बोला कि नहीं, मुझे 12th भी करना है. तो उन्होंने इमिडिएटली हाँ कर दिया विदाउट एनी. वो मुझे एग्ज़ाम्स के लिए लेकर जाते थे. फिर मैंने उन्हें बोला कि नहीं, मुझे 12th भी करना है. तो उन्होंने इमिडिएटली हाँ कर दिया विदाउट एनी थिंग. इवन दो आई वॉज मीन लाइक मेरा बेबी था ऑलरेडी, अब्दुल्ला वॉज बॉर्न, बट अगर तुम्हें करना है तो यू कैन गो फर्दर. तो फिर उन्होंने मुझे 12th करना है. फिर ग्रेजुएशन मैंने इस तरह पूरा किया. 12th के बाद एक्चुअली मेरी बेटी डॉटर भी, फिर मुझे 2 साल के लिए पढ़ाई अपनी रोकनी पड़ी, होल्ड करना पड़ा. बिकॉज इट वॉज वेरी टफ फॉर मी टू स्टडी विद 3 of the kids और 2 twins के साथ. इट वॉज वेरी टफ. सो ऐसे 10th वर्क मीटेड हुआ. उसके बाद हमारा फिर ग्रेजुएशन, फिर मैंने MA किया. इस सारे प्रोसेस के दौरान आई वॉज हैविंग माई फैमिली सपोर्ट अलॉट. इंटर के बाद एम ए जब फाइनल ईयर का रिजल्ट आया तो मुझे लगा कि अब क्या करना है। तो फिर मैंने यही सोचा कि अब स्टडी को

0: ब्रेक लगा देते हैं, बिकॉज आई नीड कि मुझे बाहर जाना चाहिए। घर में बैठकर हमने पढ़ाई तो कर ली, घर में बैठकर सब कुछ कर लिया, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, आई एम मतलब मैं पूरा टाइम फ्री हूँ। देन आई स्टार्टेड, मैंने कई जगह जाकर अपनी सीरीज दी, मेरा शॉर्ट लिस्टिंग हुई, उसके बाद मेरा इंटरव्यू हुआ। उन्होंने मुझे बोला कि आपने कहीं पर भी आप इतने बड़े स्कूल में आपने अप्लाई कर दिया सेंटर में, आपने ये भी नहीं सोचा कि आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो मैंने बोला मैम एक्सपीरियंस तो पढ़ाने से ही आएगा, कोई भी फ्रेशर कभी एक्सपीरियंस तो नहीं हो सकता, एंड एवरीबडी नीड अ चांस कि वो कुछ अपने आप को प्रूव करे। तो आप एक डेमो दे दो, उसके बाद हम देखते हैं। फिर मैंने उन्हें डेमो दिया तो थैंकफुली मेरा हो गया सिलेक्शन वहाँ पर। इस तरह हमने जॉब स्टार्ट कर दी। जॉब स्टार्ट करने के 3-4 साल के बाद ही मेरा रीड इंडिया के साथ कनेक्शन हुआ थ्रू ऑब्वियसली थ्रू मैनेजर और अदर ऑर्गेनाइजेशन। तो फिर इस तरह से हम रीड में जॉब स्टार्ट की। रीड में जॉब स्टार्ट करने का सबसे फर्स्ट रीज़न जो मेरा था कि शायद ये बहुत मुझे मतलब हमेशा से एक इनर फीलिंग आती थी कि मुझे सोशल वर्क करना चाहिए, सोशल वर्क करना चाहिए। सोशल वर्क करने की जो विल थी उससे ही हमको टीचिंग की तरफ अट्रैक्ट किया था। बिकॉज सोशल बिकॉज आप थोड़ा सा सोशलाइज हो जाते हो जब आप इतने सारे बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हो, आप क्लासेस लेते हो, उनमें से कुछ हर बच्चे की एक अलग स्टोरी होती है, उनके साथ टाइम स्पेंड करना। मेरा रेसेस का टाइम भी मेरा क्लास में ही जाता था, हम कभी स्टाफ रूम में बैठ कर लंच नहीं करते थे, हम बच्चों के साथ क्लास में, इवन दो वो 10-12 के सीनियर स्टूडेंट्स थे, बट मेरा लंच टाइम क्लास में ही होता था। तो बाकी टीचर ऑप्शन भी करते थे कि आपको स्टाफ रूम में आना चाहिए, मैंने बोला नहीं, मेरा एक वो है कि मेरा उनके साथ कुछ है अट्रैक्शन क्योंकि वो मेरी क्लास है। तो इस तरह से चलता रहा। फिर जब रीड इंडिया के साथ हम कनेक्ट हुए तो रीड इंडिया में के लिए मैंने अपनी जॉब को इमीडिएटली, स्मिता मैम से मेरी पहली मुलाकात दिसंबर में हुई। स्मिता मैम जब पहली बार आई थी यहाँ पर जगह देखने के लिए, गीता मैम, स्मिता मैम एंड नाइट सर, तब भी हम जॉब पर थे, मेरी स्मिता मैम से फर्स्ट टाइम मुलाकात भी नहीं हुई थी। तब जब सेकेंड टाइम में गीता मैम और नाइट सर आए तब हम घर पे थे, इट वॉज दिसंबर। तो जब मैं गीता मैम से मिली और मैंने उनकी बातें सुनना शुरू की, मैंने शिव लाइक मैंने ये स्वेटर पहना हुआ है, ये भी यहाँ के वीमेन से रिलीज किया है, हम लोग ऐसे काम करते हैं। तो एट द टाइम मतलब मुझे आई वाज लाइक ब्लैंक, मैम कह रही है क्या ये रियलिटी है, ऐसा होता है, जो ऐसा काम करते हैं? बिकॉज एक इमेज थी, तो भी वेरी ऑनेस्ट एक इमेज थी, जब आप न्यूज़ देखते हो, आप आसपास का अपने माहौल देखते हो कि नहीं ऐसा नहीं होता, एनजीओ वाले ऐसा तो काम कर ही नहीं सकते, बस नाम का एनजीओ, मतलब दैट वॉज एन इमेज। अगर आप एक ऑर्डिनरी पर्सन से पूछो तो यही इमेज है एनजीओ की। आई वॉज लाइक दैट, मतलब आज शायद मुझे ये नहीं बोलना चाहिए बिकॉज आई एम वर्किंग इन एनजीओ टू, बट वो इमेज थी, रियलिटी यही थी मेरे लिए। तो मैम बोल रही थी और मैं सुनी थी ऐसे बैठकर, मैम हम मैम सामने बैठे हुए थे, बट मैम बोल रही थी और मैं सोची थी अच्छा ऐसा भी होता है, अच्छा ऐसा भी होता है। देन मैम हमारा गुसाईगंज का भी सेंटर तब दिसंबर में ही खुला था हमारे सेंटर के सीमा पर, तो मैम ने बोला कि आप आइए आप देखिए हमारा क्या है। फिर मैंने एक बार को इमीडिएटली बोला कि मना मत करिएगा, हम लोग जाएंगे क्योंकि मुझे देखना है क्या है, रियलिटी ऐसी है। मैम का सेंटर कहता है एक बार को भी ये था कि हाँ अगर हम लोग ऐसा कुछ कर रहे हैं, जगह दे रहे हैं, तो चलो एक बार देख लेते हैं व्हाट इज दैट। जब हम लोगों ने स्टेप इन किया, जब हमने स्टेप इन किया गोसाईगंज के सेंटर के अंदर, वही से इट वॉज लाइक मतलब मैं देख रही थी कि स्कूल है, कि ये स्किल सेट्स हैं, मतलब लाइब्रेरी भी है, उसमें कंप्यूटर्स भी रखे हुए हैं, मतलब लाइब्रेरी इट वॉज लाइक अ ड्रीम, क्योंकि लाइब्रेरी तो मैंने कभी देखी ही नहीं थी। जैसे लाइब्रेरी होती है हमें पता भी नहीं चलता कि हमारे गाँव में लाइब्रेरी है, हमारे शहर में लाइब्रेरी है। और आई वॉज लाइक कि यार लाइब्रेरी है यहाँ पे, इन्होंने कंप्यूटर्स भी रखे हुए हैं, इन्होंने मशीन भी लगाई, इन्होंने गाँव में ला के प्रोजेक्टर भी लगा रखा है। मीन्स ये सारी चीज़ें एक बंदे के माइंड को बहुत इम्पैक्ट करती है जिन्हें इसकी वैल्यू पता होती है। तो आई वॉज लाइक कि मतलब मैंने बहुत अच्छे से
1: आप थोड़ा बताएंगे व्यूअर्स को, शायद आइडिया नहीं होगा कि ये जो गांव की आप बात कर रहे हैं गोसाईगंज बाराबंकी, इनकी लोकेशन के बारे में भी थोड़ा सा आइडिया दीजिए, बिकॉज ऑल ओवर द कंट्री और समटाइम्स ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल आर व्यूइंग द प्रोग्राम। तो आप थोड़ा बताएंगे जो आप विलेज के, ताकि वो भी विजुअलाइजेशन कर सकें कि जिन गाँव की आप बात बता रहे हैं वो शहर से कितनी दूर है, वहाँ पे क्या चैलेंजेस हैं, क्योंकि कई बार सुनने वाला ये अंदाजा नहीं लगा पाता कि शायद एक कंप्यूटर को देखना, हाथ लगाना भी एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड आप उसके बारे में भी दीजिए सना।
0: तो गुसाई बाराबंकी जो सेंटर है यूपी में है, गुसाईगंज सेंटर भी यूपी में ही है, इंडिया में यूपी एक स्टेट है, उत्तर प्रदेश, यूपी सिटी है लखनऊ, विच इज़ वेरी वेल नोन बाई एवरीबडी. लखनऊ के बाहर जब हम आते हैं तो बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट में ये सेंटर आता है, बाराबंकी सेंटर जो बड़ा गाँव में जिसपे अभी हम वर्क कर रहे हैं करेंटली. और गोसाईगंज सेंटर में है वो अदर रूट पर है, वो लखनऊ से अप्रॉक्स 20-20 किलोमीटर्स की रेंज में है. तो ये बड़ा गाँव सेंटर है जिसके पिक्चर्स अभी डिस्प्ले हो रहे हैं. ये वो सेंटर है, ये पूरी लोकेशन है सेंटर की. तो इस तरह से फिर हम जब बस्तिया गए, बस्तिया में मैंने देखा सारी चीजें, फिर मैंने वहाँ के लोगों से बात करना शुरू की कि ये सेंटर के बारे में आपको पता है, आप लोग यहाँ आए हैं इनॉग्रेशन में, आपको क्या लगता है सेंटर में क्या, क्योंकि मतलब मेरे अंदर क्वेश्चन पूछने की बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी रहती है, यहाँ आया है तो क्यों आया, उसे क्या बताया गया, वो क्यों आया, सेंटर कैसे सर्वाइव करेगा, लोगों को इम्पोर्टेंस पता है. तो उन्होंने कहा कि जी जी मैम, यहाँ पे सब गए थे बताने सेंटर के बारे में, हम लोगों को बताया गया क्या सेंटर खुलने वाला है. तो हमने पूछा आप लोग आएंगे सेंटर, क्योंकि गांव में शायद आपने कभी देखा नहीं. बोले मैम यही तो बात है कि हमने तो कभी कंप्यूटर देखे ही नहीं, हमने तो कभी देखा ही नहीं कंप्यूटर होता कैसा है, खाली नाम ही सुने. गोसाईगंज जो सेंटर है ना बस्तिया, दैट इज वेरी फार फ्रॉम लखनऊ, और वो बहुत ज्यादा ही मतलब बैकवर्ड है, यू नो, मतलब प्रॉपर विलेज, विच इज कॉल्ड अ प्रॉपर विलेज, दैट इज दैट प्रॉपर विलेज, मतलब जहाँ पे बच्चों को प्राइमरी स्कूल भी शायद वहाँ उनके घर से थोड़ी दूर पर ही होगा, उन्हें स्कूल भी जाने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है. तो वो ये सेंटर तो उनके लिए वॉज लाइक अ चांस कि उन्हें लाइफ में कुछ अचीव होने वाला है, वो ऐसे सेंटर पे खुला हुआ था वो जगह. तो वहां से वो मुझे मतलब दिमाग में आ गया कि नहीं, ये बेस्ट है जो बड़ागांव में होने वाला है. इट विल चेंज बड़ागांव, इट विल गिव आवर ट्रांसफॉर्मेशन टू द लाइफ ऑफ पीपल लिविंग इन बड़ागांव. सो वी वर लाइक ओके, मतलब ये एनीवन वाज सो सैटिस्फाइड कि नहीं अब आप करते हैं, बस अब यही करना है. तो द वेरी नेक्स्ट डे सेकंड से जाने के बाद मैंने जाके सबसे पहले अपना रेजिग्नेशन लिखा. मैंने कहा मुझे अब काम नहीं करना स्कूल में, मुझे अब यहाँ काम करना है. दैट वाज सो मतलब एक बार वो शायद पहले सोच तो लो. मैंने कहा नहीं मुझे यही करना है, मुझे वो जॉब देंगे नहीं देंगे वो तो बात की बात है, मतलब मुझे करना ही.
1: हम व्यूअर्स को बताना चाहते हैं कि ये जो पिक्चर्स आप देख रहे हैं ये हमारे ये बाराबंकी सेंटर की है जिसकी बात सना कर रही है, जो हाँ जहाँ पे सना बेस्ड है. ये जो पिक्चर्स आप देख रहे हैं सेटअप है पूरे सेंटर का, और जो विजिटर्स आए हैं ये कैलिसंस के ग्रुप के मेंबर्स हैं, और भी फॉरेनर्स भी विजिट करते हैं, लोकल टीम से भी बहुत लोग आते हैं. जो ये सेंटर है ये कैलिसंस नाम की एक कंपनी है जो मिंट फार्मर्स के साथ काम करती है, ये उनके सपोर्ट से ये सेंटर चल रहा है. करीबन 3 साल से ये सेंटर इस एरिया में चल रहा है, जिसको कि सना अपनी टीम के साथ और अपने टीम ऑफ वॉलंटियर्स, टीम ऑफ स्टाफ के साथ मैनेज करती हैं, जिसकी स्टोरी सना बताई. तो सना हमने शुरू से ही देखा, आपके हस्बैंड बहुत सपोर्टिव रोल उन्होंने प्ले किया, स्पेशली अर्ली मैरिज हुआ, अर्ली आपके बच्चे हो गए, देन इवन देन यू हैव नॉट गिवन अप. सो ये फीलिंग कैसी थी जब आपको, बिकॉज हमने देखा है स्पेशली इंडिया में सर्टन ग्रुप्स में सर्टन एरियाज में तो बिल्कुल इनकरेज ही नहीं करते, स्पेशली शादी के बाद तो ये एकदम ऐसे ड्रीम कम ट्रू हो गया जिस तरह का माहौल, जिस तरह का यू नो सपोर्ट आपको मिला है. सो यू वॉन्ट टू टॉक अबाउट दैट?
0: Yes, ma'am. I'm being in a community, in a Muslim community, is very tough to come out of the house. मतलब हमारे यहाँ का तो कल्चर नहीं है वो कि हम घर से बाहर भी जाएं. But education changes everything. I believe in that. और ये क्योंकि जो लोग इसकी importance ज़्यादा जानते हैं, जिसे ना इकबाल को ये लगता था कि चलो कुछ तो अगर वो करना चाहती है तो करने देते हैं. और हमको ये था कि हमें करना है तो करना है. अगर कोई कुछ बोलता भी है, कुछ रोक भी रहा है, तो वो अपने रोक रहा है, एक दिन बोलेगा, दो दिन बोलेगा, तीन दिन बोलेगा, फिर खत्म हो जाएगा. और वो ही हुआ मैम, दो बार तीन बार सबने ऑब्जेक्शन किया, फिर सब सारे चुप हो गए मैम. और अब तो ये है मैम, लोग मेरा नाम लेके अपने घर में लोगों को मोटिवेट करते हैं कि सना मैम को देखो, सना मैम को देखो, कुछ सीखो जाके उनसे, कैसे वो के साथ रहती है, कैसे वो सेंटर का काम करती है, वो घर का भी काम करती है, छोटे बच्चे को भी देखती हैं, बाहर के बच्चों के साथ भी वो ऐसे बिहेव करती है. तो मैम सुनने में खुद को भी अच्छा लगता है, वेरी ऑनेस्ट, खुद को भी सुनने में बहुत आउट फील होता है कि मेरे लिए लोग ऐसी बात करने लगे हैं. ये सब कुछ पॉसिबल है तो सिर्फ रेड इंडिया की वजह पे. रेड इंडिया नहीं होता तो डेफिनेटली मेरे बारे में कोई आज ऐसी बात ही नहीं कर रहा होता, क्योंकि लोग मुझे जानते ही नहीं कि हम कौन है.
1: कि ये पॉइंट हम इसीलिए लाना चाहते थे बिकॉज आज का जो हमारा टॉपिक है नर्चरिंग ग्रास रूट लीडर्स, तो आप

0: एंड वी वॉन्ट टू नो मोर अबाउट योर सेंटर नाउ. बाराबंकी में आपका जो ये सेंटर है, इसमें कौन कौन सी ट्रेनिंग्स चल रही हैं, कैसे आप कम्युनिटी में जाते हैं, क्या चैलेंजेस आते हैं आपको कम्युनिटी में जाने में?
1: मैम, कैलेसेंस जो हमारा प्रोजेक्ट है तो दिस इज बेसिकली फॉर मेन पावर के. हम मेन पावर को उतना ही डायरेक्ट करते हैं जितना हम बाकी कम्युनिटीज को करते हैं. तो मेन फार्मिंग की अगर हम बात करें तो मेन फार्मिंग कम्युनिटीज में हमें चैलेंज काम करने में जो हमारे साथ पहला चैलेंज है वो ये था कि वहाँ पर लोग बच्चों से मेंट की फार्मिंग कराते हैं क्योंकि वो उनका काम है. तो उन्हें सेंटर तक लाना वो अ बिग चैलेंज, क्योंकि उनको समझा के कन्विंस करना कि आप काम छोड़ कर आओ. तो कभी कभी जो हमारे सेंटर पे जो एक्टिविटीज चल रही थी स्टार्टिंग, जब हमने 2018 में स्टार्ट किया था, तो हमारे पास बेसिक सेविंग, बेसिक कंप्यूटर कोर्स एंड ब्यूटी एंड वेलनेस कोर्स एंड लाइब्रेरी, हमारी चार कॉम्पोनेंट्स तब थे. अभी तो हम लोग काफी आगे बढ़ चुके हैं. तो जब हमारा स्टार्ट हुआ था तो हमें ज्यादा मेहनत तब नहीं करनी पड़ी 2018, बिकॉज नया नया सेंटर खुला था यहाँ पर और ऐसा कोई भी कोई ऑर्गेनाइजेशन काम नहीं कर रही थी जो जिससे इनको ये बेनिफिट मिलता. तो स्टार्टिंग में तो हमारे पास बहुत अच्छी फुटफॉल थी 2018, इट वॉज वेरी नाइस. हम लोगों को बहुत कम मोबिलाइजेशन के लिए जाना पड़ता था बिकॉज इतने सारे एडमिशन 6-7 महीने तो बिल्कुल नहीं करनी पड़ी. बट आफ्टर 7 मंथ्स आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि ये तो सिर्फ गांव के ही लोग गा रहे हैं, ऐसे तो नहीं चलेगा. और मैं क्योंकि एक कैलिसेंस उसका हमारा डोनर है तो वी शुड फोकस मोर ऑन मिंट फार्मिंग कम्युनिटी दैट दे शुड कम टू द सेंटर एंड लर्न समथिंग. तो हमने फिर हमने बासा एक पॉइंट है यहाँ पर 5 किलोमीटर यहाँ से दूर है जहाँ पर बहुत मतलब टोटल कम्युनिटी वहाँ पर फार्मिंग ही करती है और मिंट फार्मर्स ही हैं. तो हमारे एक SHGs के ग्रुप्स थे पहले, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स. तो उन ग्रुप्स में जाकर वहाँ पर सारी फीमेल्स आती हैं, वो अपनी सारी प्रॉब्लम्स शेयर करती हैं. उन ग्रुप्स के अंदर मैंने जाकर के मीटिंग्स लेना स्टार्ट किया. हमने उन लोगों से जाकर बात करना शुरू किया कि आप लोग क्यों अपने लड़कियों को बाहर नहीं निकालती हैं. तो वो कहती है मैडम हमारे पास हमारे बच्चों के पास टाइम नहीं है, वो स्कूल जाते हैं फिर वो खेत जाते हैं. तो मैंने कहा कभी ऐसा होता होगा कि वो स्कूल नहीं जाते होंगे, कभी ऐसा होता होगा कि आपका मिल्क का सीजन 3 महीने ही रहता है, उसके बाद आप तो आप ही रहते हो, मतलब मार्च टू जून एक टाइम है, आप उस टाइम मत भेजो सेंटर पर, बट आप जब भेज सकते हैं जब आपके बच्चे फ्री रहते हैं आप उन्हें तब स्किल्स लर्न करने के लिए सेंटर में भेजिए, क्योंकि वो एक ऐसे स्किल्स आप सीख जाएंगे जो आपके लाइफ टाइम के लिए है. एक बार सेंटर विजिट कर लीजिए, आप देख पाएंगे कि सेंटर में क्या क्या है. लोगों को गांव से उनके घर से निकाल कर सेंटर लाना ही पहले हमारे लिए चैलेंज बना 7 महीने बाद जब वो लोग नहीं आ रहे थे. तो उन उसके लिए हम लोगों को सबसे बेस्ट ऑप्शन जो लग रहा था वो लग रहे, क्योंकि आप पूरे गाँव में जाओगे आपको पूरा दिन लग जाएगा, बट एक ग्रुप जहाँ पर कम से कम 40-45 औरतें मौजूद हैं, मतलब उनकी पेरेंट्स हैं और वो हर वुमेन एक अलग फैमिली से आ रही है. तो कहते हैं ना अगर आपने मदर को एजुकेट कर दिया तो पूरी फैमिली एजुकेट हो गई. तो हमने मदर्स को पकड़ा, मदर्स को बताया कि आपने ये करना है अपने बच्चों के साथ. तो मैम बच्चों को अकेला तो नहीं भेजेंगे, हमने कहा तो आप आइए, आपको आपके लिए भी सेंटर है, सेंटर तो सबके लिए है. आप आइए, आपको हम अडल्ट लिटरेसी की क्लासेस देंगे, आप आइए, आपके हस्बैंड आएंगे, हम उनको भी अडल्ट लिटरेसी की क्लासेस देंगे, आप हमसे सिखाएंगे, आपके बच्चों को हम कंप्यूटर सिखाएंगे, आपके बच्चों को हम ट्यूशंस पढ़ाएंगे. इतना इतना बताने के बाद मैम जो स्टार्ट हुए हैं उस गांव के लोग आना, हम लोग को लग रहा था कि हम शायद कम मोबिलाइज करना चाहिए था, तो हम उसको संभाल पाते. इतना स्टाफ होने के बाद भी हमारे लिए वो चैलेंज हो गया कि अभी ने कैसे संभालेंगे. फिर ये हो चीज़ होती रही. फिर हमारे यहाँ मैम एक मैम सीनियर मैम हमारी आती थी, उन्होंने बोला कि कम्युनिटी एक्टिविटीज़ करते हैं. फिर हम सब लोगों ने कम्युनिटी एक्टिविटीज स्टार्ट करी. हम लोग कम्युनिटीज में गेम्स लेकर जाते थे, कम्युनिटी के बच्चों के साथ वहीं पर गेम खेलते थे. उसके बाद जब हमारा गेम पूरा हो जाता था तो फिर हम अपनी मोबिलाइजेशन स्टार्ट करते थे, क्योंकि अगर हम मोबिलाइज करने जा रहे तो हम एक ही बंदे से बात कर पाते. उसमें क्या होता था, गेम खेलना स्टार्ट किया, आसपास वाले देख के इकट्ठे हो गए, सारे सोचते थे कि ये कर क्या रहे हैं ये लोग. कभी कभी म्यूजिक बजा देते थे लाउड, लोग घर से निकल के आ जाते थे. फिर मोबाइल लाइब्रेरी की एक्टिविटी हमने स्टार्ट करी, हम लोग वैन में सारी बुक्स स्पीकर्स लैपटॉप्स लेकर जाते थे कम्युनिटी में, वहां पर सारे बच्चों को इकट्ठा करना. मैम वहां पर बच्चे तो किनारे रह जाते थे और उनके पेरेंट्स बाहर निकल के आ जाते थे, अच्छा आपके पास ये भी बुक है. हमारे पास ब्रेल्स तक की डिमांड आई थी कि आप ब्रेल्स लेकर आइए मैम, बिकॉज क्योंकि वहां पे कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें ब्रेल्स

0: जरूरत थी, तो वहां पे पॉसिबल ही नहीं हुआ दोबारा जाना, क्योंकि कुछ टाइम की वजह से फिर ये कोविड आ गया, तो वो चीज़ थोड़ी सी बीच में रह गई। बट अब वो हम लोग प्लान करेंगे कि हम ड्रेस मंगा करके हम वो जाके प्रोवाइड करें, एटलीस्ट उनकी भी तो विश है कि वो पढ़ें। अब वो नहीं पढ़
1: जी
0: सकते
1: जी
0: नॉर्मल बुक्स, तो ऑफकोर्स हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उन्हें वो प्रोवाइड करा सकें
1: अभी
0: सेफली
1: हम
0: जर्नी
1: ऑडियो
0: के
1: बुक्स भी लेके आ रहे हैं, हमने
0: लिए।
1: टाइप किया है कुछ ऑर्गेनाइजेशन के साथ, स्पेशली फ्रॉम फॉर द कम्युनिटी हु आर नॉट एबल टू रीड, ये ऑडियो बुक्स भी प्रोवाइड करा सकते हैं आपके सेंटर में, सो दैट जो जो नहीं पढ़ सकते किताबें वो ऑडियो बुक्स भी सुन सकें। वेरी वेरी वास्ट वेराइटी ऑफ प्रोग्राम्स आपके यहाँ पे चल रहे हैं सना। आपने मैंने ये देखा कि आपने हेल्थ के ऊपर और लाइफ स्किल्स के ऊपर भी काफी काम किया है, स्पेशली ड्यूरिंग द कोविड। थोड़ा आप बताना चाहेंगे कि विद स्पेसिफिक इश्यूज ऑफ हेल्थ एंड लाइफ स्किल्स आपने क्या काम किया है?
0: यस मैम, तो हमने हेल्थ के सेशंस हमारे यहाँ अप्रैल से जनवरी 2019 से स्टार्ट हुए थे, तो उसमें डॉक्टर निधि लाठी जो हमारी कंसल्टेंट है, उन्होंने आकर हमारे सेंटर्स पर सेशंस लिए थे। सेंटर के जो बच्चे सेंटर पर मौजूद होते थे वो उन्हें कनेक्ट कर लेते थे अपनी फैमिलीज को ऑनलाइन, तभी भी वो रिकॉर्ड कर लेते थे सेशन अपने फोन्स में हम लोगों, और वो जाकर अपनी मम्मी को बताते थे कि देखिए मैम ने बताया सब्जी ऐसे धो के बनाते हैं, हमने बताया कि ऐसे वॉश करना है, खाना ढक के रखते हैं। तो ये सारी चीजें जो मैम ने बहुत मेहनत करी इन बच्चों के साथ, मैम क्योंकि मैम डॉक्टर है, तो जब वो बताती थी तो हम लोग जितना बताते थे उससे ज्यादा उनके बताने से उन्हें समझ आता था कि ये उनको बताते थे बच्चों को ये डॉक्टर है, स्पेशली आपसे मिलने आए हैं, आपके लिए सेशन लेने आए हैं। तो सारे बच्चे मतलब एक मैम के एक सेशन में 20-25 ऐसे बेनिफिट हो जाते थे। मतलब फिर उसके बाद मैम ने सेशन लिए, मैम ने हर टॉपिक पर सेशन लिया, उनकी मेंस्ट्रुएशन पर, उनकी फिजिकल फिटनेस पर, उनके हाइजीन पर, उनके न्यूट्रिशन पर। मैम ने 2 साल 3 साल में मैम कॉन्टिन्यूसली सेशन ले रही थी, और मैम के सेशन से काफी बच्चे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हुआ मैम बच्चों पर, स्पेशली जो गर्ल्स आती थी ऐसे ऐसे टॉपिक्स निकल कर आते थे निधि मैम के सामने कि मैम मुझे भूख भी नहीं लगती, तो मैम उनको बेस्ट सोल्यूशन बताती थी कि आप ऐसे खाओ, आपके टाइम मत बनाओ, आपको इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग खाना चाहिए, फिर आपको धीरे धीरे भूख लगनी स्टार्ट हो जाएगी। तो मैम से बहुत बच्चे क्वेश्चन पूछते थे, मैम उनके आंसर्स करती थी क्वेरीज उनकी, मैम सारी चीज़ें वो करती थी जो वो बेस्ट अपना दे सकती थी। तो निधि मैम के सेशन बहुत अच्छे चल रहे हैं हमारे सेंटर पे।
1: थैंक यू सना। जब हम आपके सेंटर पे आए तो हमने ये भी देखा कि बहुत ही खूबसूरत चिकनकारी का काम वहाँ पे चल रहा था। चिकनकारी जो क्राफ्ट लखनऊ का तो फेमस है ही, और ये आपके एरिया तक भी काफी स्प्रेड आउट है, सो उसके बारे में आप बताना चाहेंगे कि आपने लाइवलीहुड को कैसे प्रमोट किया? बिकॉज मिंट एक बहुत ही कैश क्रॉप की तरह लिमिटेड जो है लाइवलीहुड प्रोग्राम है, सो कैसे आपने, और स्पेशली ड्यूरिंग कोविड कैसे अगर महिलाओं को हेल्प हुआ, एक एडिशनल स्किल थी उनके पास, सो क्या इस चीज से उनको थोड़ा बहुत मदद हुई स्पेशली ड्यूरिंग दिस टफ टाइम?
0: यस मैम, चिकनकारी हम लोगों ने स्टार्ट करा था जब हमारा प्रोडक्शन सेटअप हुआ था, तो चिकनकारी में पहले लोगों को लग रहा था कि यहाँ बनाएंगे तो यहाँ पे कैसे दिखेगा क्योंकि लखनऊ के बहुत करीब है, तो फिर हम लोगों ने तो यही बोला कि आप सीख लो, आपको नहीं पता कि टाइम कैसा आएगा, आपका हमेशा आप खेती नहीं कर सकते। जैसे अभी मैं बाद में इसके बारे में बात करूंगी कि जब भी जो बारिश हो रही है इसके बारे में बाद में डिस्कस करूँ, तो मैंने उनको यही बोला था कि आप सीखो, आप पहले देखो चिकन क्या है, आप समझो चिकन का काम कैसे होता है, वो कहाँ सेल होगी नहीं होगी वो हमारी एडिट है, वो रेट इंडिया देखेगा, वो हम देखेंगे कि हमें कैसे सेल आउट करता है, आप पहले काम सीखो। तो जो जितनी भी लड़कियां थी, जो बहुत सारे बच्चे मैम ऐसे भी थे जो कहते थे कि मैम हम खेती नहीं करना चाहते, बट हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि अगर हम खेती ना करें तो हम क्या करें। तो मैंने बोला कि ये ही आंसर है आपके जवाब का कि आप स्किल सीखो, आप चिकनकारी का वर्क सीखो, आप हमारे प्रोडक्शन यूनिट में जो डिजाइनर कुर्ते बन रहे हैं आप उन कुर्तों को सीखो, आप स्टिचिंग सीखो, आप एडवांस स्टिचिंग सीखिए, और आप लिमिट मत रखिए कि अगर आपने सीविंग सीखा है तो आप कंप्यूटर नहीं सीख सकते, आप डेफिनेटली कंप्यूटर के कोर्सेज भी करिए, आप अलग अलग जगह पर वैकेंसी निकलती है, शायद आप हमारे से सीख कर आप कहीं काम करने लग जाओ, या चिकनकारी का वर्क ऐसा है हम आपको काम देते रहेंगे, आपको हम उसका पैसा भी देंगे, हम आपको पे करेंगे, आप जो भी पीसेस बनाओगे जितने बनाओगे हम उसके अकॉर्डिंग आपको पे करेंगे। तो वो लोग पीसेस बनाते थे, हमारे पास थोड़ा सा माल इकट्ठा हुआ, फिर सेलिंग का पॉइंट आया, तो जितने हमारे यहाँ अभी आपने पिक्चर्स डिस्प्ले करे हमारे इतने सारे विजिटर्स आते थे, तो हम लोग हर विजिटर के सामने मेन, चाहे हमारे कैलसेंस के डोनर्स आए या हमारे कोई भी विजिट सेंटर पर होती थी, हम सारे प्रोडक्ट डिस्प्ले करते थे और वो उन्हें, और ऐसा मैम होता भी था कि वो जनरली विद अ गुड हार्ट को बाय भी करते थे उस चीज़ को। मैंने कितनी बार ये चीज़ रिपोर्ट भी करी है कि वो आते थे और वो हमारे प्रोडक्ट्स बाय करते थे। तो उससे उन लड़कियों के फेस पर जब वो प्रेजेंट होती थी कि ये मैंने इन्होंने खरीद लिया, हमने कहा हाँ तुमने मेहनत करी है इसलिए इन्होंने खरीदा है, इनको ये बाहर भी मिल जाता, ये लखनऊ जाएंगे ये लखनऊ में ले सकते थे, ये दिल्ली जाएंगे दिल्ली में ले सकते थे, बट इन्होंने इसलिए खरीदा क्योंकि तुम लोगों ने मेहनत करी। मैम दैट वो वर्ड्स उन्हें इतना कॉन्फिडेंस देते थे, उनको मोटिवेशन मिल जाता था कि नहीं मैम आप सही कहती हैं, हम सीख ले, हम सीखेंगे इसको।
1: वेरी नाइस, वेरी नाइस। ऐसी कोई स्टोरी जो आप इतने सारे बेनिफिशरीज के साथ काम करते हैं, बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ, लड़कों के साथ आप काम कर रहे हैं, इतने सारे आपके कार्यक्रम चल रहे हैं, ऐसी कोई एक दो लाइफ चेंजिंग स्टोरी या इंस्पायरिंग स्टोरीज जो आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहते हैं?
0: श्योर मैम, चिकन की स्टोरी पहले आपको बताते हैं। मैम हमारी जो ट्रेनर थी, ट्रेनर से स्टार्ट करते हैं, उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी सेंटर पे ज्वाइन करने से एक साल पहले। मैम मैंने 3 लोगों का इंटरव्यू लिया, बाद में उनको ही मैंने फाइनलाइज करा जस्ट बिकॉज उनकी क्राफ्ट बहुत अच्छी थी, और जब उनको मैंने सेलेक्ट कर लिया मैम उसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि उनके हस्बैंड नहीं है, बिकॉज ही सेड कि अगर मैम हम आपको ये पहले बता देते तो शायद आपको लगता कि नहीं इन्हें रख लेते, बट उनके अंदर वो चीज़ थी कि नहीं मुझे मेरे स्किल जॉब मिलनी चाहिए, मेरे रीजन की जॉब नहीं मिलनी चाहिए, एंड दैट थॉट चेंज माई माइंड कि नहीं शी इज राइट, उनमें स्किल है। मैम जब फर्स्ट टाइम उन्होंने कुर्ता बनाया और जो मैंने मैम को दिया था गीता मैम को, एंड मैम शी वाज सो हैप्पी, सो हैप्पी कि मैम ये पहनेंगे, मैम इतनी बड़ी, हम 2 कुर्ते देते, सॉरी एक कुर्ता मैम आपको और एक गीता मैम को, तो हम शी वाज लाइक कि ये दोनों मैम इतनी हाई मैम, इतनी हाई प्रोफाइल मैम है, ये हमारे लाइफ कुर्ते पहनेंगे। मैंने कहा डेफिनेटली पहनेंगी मैम, पहन कर आएंगे और आप देखोगे, तो हम शी वाज लाइक मतलब उनकी कोई लिमिट नहीं थी खुशी की कि वो कैसे कितना खुश थी। फिर मैम उन्होंने यहाँ पर 1 साल 1.5 साल तक की जॉब की, कोविड में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ गई थी, बट उन्होंने यहाँ पर 1 साल जॉब किया, एंड मैम शी वॉज एबल टू फीड हर किड्स, उनकी 2 बेटियाँ हैं एक बेटा है, मैम शी वॉज सो हैप्पी कि मैम आपने मुझे जॉब दिया, मैम मैं अपने बच्चों को सपोर्ट कर पा रही हूँ। मैम हमारे यहाँ की सेकेंड स्टोरी है, एक सेकेंड स्टोरी है मैम जिसको हम लोगों ने महिपाल जी ने जिसकी स्टोरी कवर की थी, गायत्री पाल मैम, उसके वो यहाँ पर सीलिंग पहले करने के लिए आई थी बेसिक सीलिंग का कोर्स। मैम उसने बेसिक सीलिंग में एडमिशन लिया, उसने बेसिक सीलिंग किया, फिर उसने कंप्यूटर्स देखे, बोला कि मैम मैं सीखूँ कैसे, मुझे तो इंग्लिश ही नहीं आती। मैम मैंने खुद उसे 3 महीने बैठकर इंग्लिश पढ़ाई है और इतनी मेहनत से पढ़ाई है कि मैम उसने फिर कंप्यूटर कोर्स किया है, देन उसने एडवांस टीचिंग में एडमिशन लिया, फिर मैम उसने एडवांस टीचिंग सीखा, उसके बाद बोलते कि मैम मुझे मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे मशीन खरीदनी है। मैंने कहा ठीक है तुम मुझसे ले लो, तुम मशीन खरीद लो, तो बोलते मैम आप वापस ले लेंगी, मैंने कहा नहीं हम वापस ले लेंगे, ठीक है तुम जो पहले मशीन खरीद लो। फिर दूसरे मैं बोलती मैम थैंक यू बट मैंने मशीन ले ली है, एंड मैम एट दिस टाइम उसके पास इतने सारे ऑर्डर्स आते हैं, पूरे गाँव के मैम वो कपड़े बनाती है, एंड शी इज सो हैप्पी बिकॉज उसके फादर भी नहीं है अभी, जल्दी एफआईआर हो गए, तो शी इज सपोर्टिंग हर मदर, हर लिटिल ब्रदर एंड सिस्टर फॉर इन देयर एजुकेशन। तो मैम खुद को भी ये फील होता है कि रीड इंडिया के थ्रू हम लोग ये कर पा रहे हैं कि रीड इंडिया ने इतना अच्छे प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड कर रखे हैं कम्युनिटी के लिए कि जो लोग सीख रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत है मैम, ये इसे हम नहीं एनालाइज कर सकते पैसों के साथ, ये जो खुशी होती है हम ये कभी एनालाइज नहीं कर पाएंगे पैसे के साथ, कि हम पैसे तो कोई भी दे सकता है मैम किसी को, मैम ये स्किल उनके साथ लाइफ टाइम है,
1: ये स्किल उनके पास हमेशा रहेगी लाइफ में, कभी भी कोई भी मुसीबत आए, जैसे कि आप बताना चाह रहे हैं कुछ बारिशों के बारे में, आई थिंक अभी जो रेन्स आ रही हैं उसके बारे में, चाहे कोविड हो चाहे ऐसा कोई,
0: मैम ये दोनों चीजों ने यहाँ की मतलब पूरी कम्युनिटी को हिला दिया था। पहले तो कोविड पूरा 20 जैसे गया मैम, सबके बिजनेस बिल्कुल खत्म हो गए, सबके जो भी स्मॉल स्टार्टअप है वो खत्म हो गए, जो जो हालत मैम जो रेट फार्मर्स को यहाँ पर मिला है, मतलब उनको तो ये था कि फसल में ना ऐसे आग लगा देते हैं इसको बेचेंगे नहीं, हम इतना वो मायूस हो गए थे बिकॉज क्योंकि रेट ही नहीं आ रहा था। अब इतनी बुरी हालत चल रही है, कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं कर सकता था मैम, गवर्नमेंट के भी हाथ में नहीं थी वो चीज़, बिकॉज वो बिल्कुल हो गया था। और मैम कोविड खत्म हुआ फिर दूसरा वेव आया, सेकेंड वेव में मैम जो बचा था जिसके पास वो भी खत्म हो गया, उसके बाद से मैम ये रेगुलर रेन अभी हो रही है, आपको न्यूज में देखते होंगे यूपी में इतने जबरदस्त तरीके से अलर्ट्स जारी हो गए थे, इतनी ज्यादा बारिश हुई मैम, जिसने जो क्रॉप लगाया था वो सब वेस्ट हो गया, पूरा पूरा पानी भर गया। और एक बार ही हो गया, दो बार हो गया मैम, कॉन्टिन्यूसली 15-15 दिन बारिश हुई है, इतने दिन बारिश हुई है। ये सारे स्टाफ और बच्चे सेंटर में कैसे आते थे मैम हम लोग जानते, और उससे भी बढ़कर उनके सारे क्रॉप्स बर्बाद हो गए।
1: वेरी हार्टनिंग टू हियर दैट। इस दौरान में अगर किसी की भी कोई कला उनके काम आई है तो शायद जो हमारा मुद्दा है कि एक स्किल आपके पास होना चाहिए, चाहे आज आपको ज़रूरत नहीं है, हो सकता है कभी ज़रूरत पड़ने पे वो काम आ सके उनकी फैमिली के लिए, उनकी लाइफ को जारी रखने के लिए। तो वी होप कि हमारे सेंटर से जिन बच्चों ने या जिन महिलाओं ने कुछ सीखा है उसको वो यूज कर रहे हो। सो
0: मेरे पास मैम बच्चों के कॉल आने स्टार्ट हुए, बच्चे मिलने भी आए थे सेंटर पर कि मैम आप हमें कुछ काम दे दीजिए। तो मैंने बोला कि ठीक है हम आपको चिकन का देते हैं, आप चिकन का स्टॉक बनाकर आप हमें चिकन करके दो उन कुत्तों पे, हम उनका स्टॉक करेंगे, फिर हम उन्हें सेल आउट करके आपको हम आपके अमाउंट देते हैं, एटलीस्ट कुछ हेल्प आपकी हो जाएगी। मैंने उन्हें बोला देखो इसीलिए मैंने बोला था कि चिकन सीख लो, शायद तुम्हें कल काम आए। उस वक्त मुझे भी नहीं पता था कि ये पैंडेमिक आएगा, फिर ये रेन आएगी, फिर पैंडेमिक सेकेंड वेव आएगा, थर्ड वेव आएगा। तो मैम ये सब चीज़ें वो खुद रियलाइज करने लगे कि स्किल सीखना कितना ज़रूरी है। फिर मैम वो बाकी अपने फैमिली वाले बच्चों को भी लेके आते कि मैम इनका भी एडमिशन कर लीजिए, आप इन्हें भी सिखाइए।
1: वेरी नाइस, वेरी नाइस। और मैं सभी को बताना चाहूँगी कि हम लोग ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम लोग वही कपड़ों को हम भी इनकरेज करते हैं कि इवन विद इन द रीड एंटायर टीम हम लोग चाहते हैं कि हमारे सेंटर्स में जो बन रहा है हम भी उसके क्या कहते हैं, वी आर एम्बेसडर्स ऑफ दोज प्रोडक्ट्स। तो हम बहुत खुश होते हैं अगर सेंटर से हमें कुछ ऐसा लेने को मिलता है। जिस चिकनकारी कुर्ते की सना बात कर रही थी हमने उसे बहुत पहना है, आप प्लीज़ अपनी ट्रेनर को बता दीजिएगा। इनफैक्ट मैम जो है हमारी वो तो कोशिश करती हैं कि जिस सेंटर पर जाएँ वो ज़रूर वहाँ से एक कुर्ता स्टिच करवाएं, क्योंकि जो आपने बात कही थी ना कि जब उस औरत को लगता है कि उसके हाथ का बना हुआ कपड़ा कहीं बाहर जा रहा है और इतना अप्रिशिएट हो रहा है, उसकी सेल्फ एस्टीम जो कॉन्फिडेंस बढ़ता है उसके, उसको हम किसी भी लीडरशिप सेशन और किसी भी मोटिवेशनल सेशन से कंपेयर नहीं कर सकते। सो इनफैक्ट हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि जितना हो सके हम इन प्रोडक्ट्स को अपने सर्कल में, अपने मार्केट में, जो हमारा नेटवर्क है, रीड का जो नेटवर्क है, उसमें प्रमोट करें, चाहे हमारी फैमिलीज हैं, चाहे हम लोग खुद हैं। सो प्लीज़ पास दिस मैसेज टू योर टीम ऑल्सो दैट आपके प्रोडक्ट्स काफ़ी जो हैं मतलब मार्केट में अप्रिशिएट होते हैं। सो कीप अप द गुड वर्क एंड आई थिंक दिस इज़ द परफेक्ट टाइम टू कॉल आवर कोर मेंटर डॉक्टर गीता मल्होत्रा, बिकॉज उन्हीं की ये विजन है जिसको हम सब मिलकर आगे लेके जा रहे हैं। सो I welcome ma'am to the show. Good evening ma'am. We have Sana from Barabanki today.
2: Yeah, I have been listening the discussions. Sana, your answers were very, very encouraging. Good afternoon. And I highly appreciate your dedication and the commitment you have given to the Reed Community Library and Resource Center in Barabanki in Badagaon. सना, बिकॉज मुझे पूरी मेमोरीज मेरी रिवाइव हो गई हैं जब से मैं बाराबंकी जाना शुरू करा था और जगह ढूंढनी शुरू करी थी सेंटर बनाने के लिए, व्हेन इंटरैक्टेड विद कैलिसन्स टीम इन यूएस एंड देन वी थॉट दैट वी हैव टू स्टार्ट द वर्क देयर। जो सबसे पहली कंडीशन हमारी थी कि हम मिंट फार्मिंग कम्युनिटीज को अल्टरनेटिव लाइवलीहुड देंगे, बिकॉज तब हमें पता नहीं था कि पैंडमिक आएगा या कुछ और चैलेंजेस आएंगे लाइफ में। सो वी स्टार्टेड दैट वी विल गिव सेकेंड लाइवलीहुड टू द मिंट फार्मिंग कम्युनिटी, बिकॉज मिंट इज अ सीजनल क्रॉप, राइट? एंड आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू दैट हाउ मेनी मिंट फार्मिंग कम्युनिटीज यू रीच थ्रू योर इंटरवेंशंस एंड हाउ मेनी हैव बीन बेनिफिटेड फ्रॉम दैट।
0: Ma'am, we have, as per you know, ma'am, we have reached to till 25 to 30 villages, and they have maximum population of mint farmers there. So, ma'am, if we calculate like this, that 80% of the population in each village is committed to the center, they are connected, they are coming to the center, they

0: have learned the skills and they have moved out. And there are many children in I remember one boy was there. His name was Ram, I think. So he was from farming communities and he was working in the farms earlier. But when he came to the center and he said, "Ma'am, I have passed out my 12th. Now what should I do?" So I asked him to learn computers because you're a boy, you can learn computer and do something. And you can search for a job also, but not only computer, but you should continue with your studies. So he asked me, "Ma'am, should I do graduation?" So I said, "Yes, please go and get admission in graduation and come to the center. We will teach you computer, take English classes from here, take the books, use the library." Because, and when he came to the library, he was like, "Ma'am, इतनी सारी किताबें हैं यहाँ पर, मैम आप ये भी किताब है, मैम ये भी बुक है, मैम अगर मैं कुछ मंगाऊँ तो मिल जाएगा?" वो लाइक, "यस प्लीज आप ऑर्डर दीजिए, हम मैम को लिस्ट फॉरवर्ड करते हैं, मैम मुझे सारी बुक प्रोवाइड करवा दीजिए, मैम हमारे डिमांड्स पर सारी बुक इंडिया में देता है, हेड ऑफिस तुरंत अप्रूव करता है बुक्स की जब भी डिमांड जाती है, आप प्लीज मुझे बताइए आपको कौन सी बुक्स चाहिए." तो मैम ही डिमांड, और बहुत सारे बच्चों की डिमांड आई थी बुक के लिए, हमने डाला था, फिर अप्रूवल होके मैम बुक्स भी आ गई थी हमारे पास. And he was like, he was sitting in the library for 3 to 4 hours regularly. And after that, you won't believe, he was in second year only and he got the job in Lucknow in Fern Mall, and he's earning 15 to 18,000 per month right now. And he was like, he came with to me with a box, with a sweet box, and he was like, "Ma'am, this is all because of you." I said, "This is not what I said, this is what I said, please say thanks to you." Ma'am, these are the stories which inspire me a lot.
1: No, Sana, this is your contribution. Teed India is just a facilitator because you are sitting there and you are in touch with the villages. I also wanted to know ki bada gaon mein to bahut sare log aate hain wahan pe, to aas paas ke kitne aur gaon hain jisse community itni door door se chal kar aati hai aapke center pe, aur koi aise public transport bhi nahi hai jahan tak mujhe knowledge hai. So, I would also like to listen back, to revive my memories about that.
0: Yes, ma'am. Today only I visited one place, Hasnapur, ma'am. And that, ma'am, I was tired by going by car. But ma'am, the children, the girls from that village is coming to the center on bicycles. Ma'am, I was so shocked. Ke, ma'am, aaj main soch rahi thi ki wo jab bacche aayenge to maine puchungi ki आप 25 किलोमीटर साइकिल चलाकर आते हो सिर्फ सेंटर के लिए. तो अभी तो वो आए भी नहीं, बारिश होने लगी. बट मैम, इतने ऐसे से विलेजेस है, दिस इज द लेटेस्ट डिस्टेंस मैं टेलिंग यू, कि ये 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर मैम, 25 to 30 किलोमीटर बहुत टफ है साइकिल चलाकर सेंटर तक आ पाना. एंड मैम दे आर कमिंग 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, मैम इतने इतने डिस्टेंस से लड़कियां आती हैं. और मैम वो आके बस इतना ही करती है, "मैम प्लीज हमारा टाइमिंग मॉर्निंग के बैचेस में लगा दीजिए, हम इवनिंग में जाएंगे तो देर हो जाएगी हमें." तो मैम वो सारे बच्चों को हम लोग मॉर्निंग में एंटरटेन करते हैं, सॉरी क्लासेस की हम लोग मॉर्निंग में ही लेते हैं.
1: सना, ये बात सुनकर मुझे ऐसे लग रहा है कि उनके पेरेंट्स भी कितने सपोर्टिव हैं, बिकॉज वो भी अलाउ करते हैं कि हमारी बेटियां इतनी दूर साइकिल चला के चली जाए, और उनको इतना कॉन्फिडेंस है कि एक सेफ स्पेस पे जा रहे हैं. और रास्ते में भी, क्योंकि वो ग्रुप में आती है इकट्ठी, तो उनको कोई ऐसा चैलेंज फेस नहीं करना पड़ता. दैट इज द ग्रेट अचीवमेंट फ्रॉम योर साइड, बिकॉज यू मोटिवेट देम फॉर कंटिन्यूइंग देयर एजुकेशन एंड दे फाइंड दिस स्पेस सेफ, प्रोटेक्टेड. सपोर्ट इतना मिलता है, बुक्स उनको यहाँ से मिलती हैं, नॉलेज सपोर्ट मिलता है, आप उनके इश्यूज रिजॉल्व करती हैं. तो यही एक कम्युनिटी लाइब्रेरी का जो सर्विसेज हैं, यू आर प्रोवाइडिंग मोर देन व्हाट इज नीडेड एक्चुअली, सो दैट इज हाईली अप्रिशिएटेड. मैं और भी, मेरे मन में तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, पर मैं थोड़ा और भी आपसे जानना चाहूँगी कि एक तरफ तो आप कम्युनिटी को हैंडल करती हैं, जिनको समझाना, मोटिवेट करना, इनक्रेज करना, और फिर उनको टाइम भी देना, और दूसरी तरफ है आपके विजिटर्स जो नेशनल और इंटरनेशनल डोनर्स हैं, और जो विजिटर्स हैं, क्योंकि कैलिसंस हैव द ऑफिस इन पुणे, दे कम टू यूपी क्वाइट ऑफन बिफोर कोविड. तो आप कैसे अपना दोनों तरफ बैलेंस बना के रखते हैं?
0: मैम समटाइम्स तो वी हैव द इंफॉर्मेशन दैट दे आर कमिंग, एंड समटाइम्स दे कम लाइक दिस ओनली. तो I'm very punctual. I'm regular in the office because I don't like taking leaves at all, and I don't allow the staff also to take leaves unnecessarily. So this is the thing, that when they come without any information, we all are here. We all are present in the center. So we know that I have to give my, at least they take my 1 hour. So I have to stop all the children. कि आप लोग लाइब्रेरी में जाके बैठिए, अभी मैं कोई सेशन नहीं लूंगी, अभी मैं इन लोगों से बात कर रही हूँ. फिर मैम उनके साथ पूरा उनको एक्सप्लेन करना पूरे सेंटर के बारे में, कैसे हम काम करते हैं. मैम दे आस्क सो मच अबाउट एवरीथिंग अबाउट इन इंडिया, अबाउट, बिकॉज दे आर नॉट द डोनर्स एग्जैक्टली, बिकॉज दे आर कमिंग विद द डोनर्स, सो दे आर फ्रॉम डिफरेंट कंपनीज ऑल्सो, सो दे डोंट नो व्हाट इज इंडिया. सो आई हैव टू एक्सप्लेन देम ईच एंड एवरीथिंग अबाउट रीड, about the community, about the children coming to the center, what services we are giving at the center, what are the facilities that are being offered to the students in Read India. So this happens every time, and the visitors are very frequent in Badagaon center. So last year, like pandemic se to abhi tak isse do hi visits hui hain, but 2018 and 19 was full of visitors. Every month there is somebody has to come to the center, and we sometimes feel like surprise that they are saying they're sitting over here in the office, and we see somebody moving inside the office, and I was like, good afternoon sir, tum bhi aap kaam kar rahe ho to ekdam disturb mind mein, and everybody koi aage samne se khada ho jata. I was like, I take 2 minutes to think that who are they. He's like, kabhi kabhi chehra hi nahi yaad aata ki kaun hai ye. So it happens sometimes with me.
1: And when you deal with the community, then you just simply motivate them, encourage them, listen to their issues, problems, and then you, inspire them to come to the center regularly, right? So these two things go parallel, right?
0: Exactly, ma'am. I remember one story.
1: Yeah, please continue.
0: Ma'am, I remember one story. There was one girl in my beauty section. She was a trainer in beauty and bar. So she was coming from like 7 to 8 kilometers far away. Ma'am, the one boy was there who was continuously usko pareshan karne cha raha tha morning mein aane ke time pe, morning sham ko jaane ke time pe. Then ma'am, she complained 2-3 times to me ki ma'am main nahi aaungi center, ma'am mujhe nahi sikhana, because abhi ghar mein pata chal jayega to ma'am bahut problem ho jayegi mere liye. And she was a trainer, so even though she was a student also, then I had to take care of it. Then ma'am, hamare paas ek prerek tha hamara jo hamare liye committee mein jaake session leta tha. I told her ki abhi ghar pe kuch mat bolo. Then I have told Deepak, aap jao aaj ma'am ko leke ghar bike se, aur aap dekho ki ma'am ko kaun pareshan kar raha hai. Phir ma'am unhone wo jaake ghar pe chhod ke aaya, phir usne mujhe aakar bataya ki ma'am ye hai. Phir maine apne husband ko bola ek baar ko कि आप जाइए, आप इनके घर में जाकर कंप्लेन करके आइए कि ये क्यों परेशान कर रहे हैं. मैम बाद हिमसेल्फ वेंट टू वेंट देयर, और उसके बाद ही रिजॉल्व दैट इशू. तो मैम ये सारे चैलेंजेस गांव में बहुत आते हैं, क्योंकि मैम बिल्कुल सन्नाटा होता है, एकदम रास्ता अंधेरा होता है, बाघ होती है आसपास, बहुत सारे फार्म होते हैं, बाघ होती है जिसमें रोड पे भी आपको ठीक से दिखाई नहीं देता, सारे पेड़ इधर उधर से कवर होते हैं. तो मैम वी फेस दीज चैलेंजेस एवरी टाइम विद गर्ल्स विद बॉयज.
1: So now, major of the population in Barabanki and Badagaon are Muslim population, right? And many girls come from these families to your center. Are there any stories of delayed age at marriage or continuing higher education, convincing their parents that they want to learn more from the Read Center and establish themselves, then they'll get married?
0: Yes, ma'am. And there was one girl, she was coming to the center from 2018 only. So in 2019, when she was about to get married, she came to me ki ma'am, maine to pehle apne mummy papa ko bol diya ki aap shaadi to meri kar rahe ho, but main jab tak apna advanced teaching ka course center se mera pura nahi ho jayega, tab tak main sasural nahi chalungi, mujhe nahi jana wahan. So ma'am, she was like, she stayed here for 6 months, she learned, completed her course, and then she went back. Muslim communities mein to especially जैसे बच्चे 10-12 की लड़कियां आ जाती है, पेरेंट्स स्टार्ट सर्चिंग फॉर देयर मैरिज. बट मैम अ बिग ट्रांसफॉर्मेशन हैज आल्सो कम हियर इन बड़ागांव. आई हैव आल्सो अर्लियर डिस्कस्ड दैट कि अभी तो पेरेंट्स काफी अवेयर हो रहे हैं धीरे धीरे, बिकॉज दे सी ऑल अदर कम्युनिटीज की, उनके घर में बच्चे पढ़ाई करते हैं, देन दे गेट मैरिड. यहाँ पर भी मैम लोगों का काफी माइंड ट्रांसफॉर्म हुआ है. जितने मेरे कम्युनिटी विजिट्स, जितना मेरा पेरेंट्स के साथ इंटरेक्शन हुआ है, हम सब लोगों ने उनको यही बोला है कि आप पहले अपने बच्चे को एटलीस्ट फिजिकली फिट हो जाने दीजिए, देन लेट हर गेट मैरिड. एजुकेशन तो बाद में आती है, आपको स्किल्स सीख रहे हो वो भी बाद में आता है, बट लेट हर गेट फिजिकली फिट टू गेट मैरिड. एटलीस्ट वो 18, 19, 20 साल की होनी चाहिए किसी की भी शादी करने के लिए. मतलब 20 इज वेरी यंग इफ यू काउंट एज पर द करंट सिचुएशन. 20 इज ऑल्सो वेरी यंग टू गेट मैरिड. सो दिस हैपेंस एवरी टाइम that we have to counsel the parents, we have to counsel the girls, and they come and they you know, they discuss with me everything, especially the Muslim communities.
1: Very nice. It's very satisfying to know all these things, because it's not only about Muslim community or a Hindu community. The jo hamare regulations bane hue ki mentally, physically, socially the girl should be prepared to get married, only then she should get married. Aur jo the component jo bhi add ho raha hai ki she should be economically independent also, because COVID has taught us many things to be independent and be ready to support the family when any emergencies come in the family. So wo bhi hamare center ki taraf se aap hamesha unko karne karti rehti hain. Sana, अभी हम जो फ्यूचर प्लानिंग की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि हम सैटेलाइट्स भी बना देंगे, राइट? और जब हम सैटेलाइट्स बनाएंगे, क्योंकि हमें नहीं पता थर्ड वेव आएगी या नहीं आएगी, और बाय चांस अगर थर्ड वेव आ जाती है और जो बच्चे 25-30 किलोमीटर दूर से आपके सेंटर में आते हैं शायद वो ना आ पाए, तो उनके लिए जो हम सैटेलाइट्स बनाने की बात कर रहे हैं, तो आप तो कम्प्लीटली तैयार हैं उस काम को करने के लिए, तो हम कब तक ये सैटेलाइट्स बना देंगे सना?
0: यस मैम, आई वुड लाइक टू से दैट मैम, इफ वी आर गोइंग फॉर द सब सेंटर द सैटेलाइट्स, वी शुड पे यू नो, वी शुड मेक द सैटेलाइट फॉर अ टाइम पीरियड लाइक 6 months, फॉर या ओवर ईयर फॉर एट वन प्लेस, देन वी मूव इन अदर डायरेक्शन इन द अदर विलेज लाइक इफ विद बड़ागांव इन द सेंटर, देन इट हैज in its stages there are many villages, so we should rotate from everywhere after 1 year here and after 1 year in the different villages, because that will help us to build good relations with the community. We will get more people benefited from the center, because if it will be moving, like it will be a mobile center, then it will help many people over there. And if you talk about the district library, it will be a very, very good option if we are going with them and we are partnering with them, because that will make an image of Free India more powerful and more accessible to people, because they will know what Free India is and what facilities what we are giving to the children everywhere.
1: Very nice. Actually, the thought process which we are having is also matching, and we can do much more whatever we are committed to. And I'm sure that Barabanki Community Library and Resource Center can do wonders, that I am sure under your guidance and commitment what you are showing to Read India from the past 3 years. And we will also do the impact studies and collect the stories what you are sharing on this platform,
0: sure,
1: so that we can share with the wider community also. At this point, thank you so much for having the brief discussion with me. I would hand over to Smita now.
2: Thank you, ma'am. Thank you for your inspiring interaction with Sana. So, Sana, बहुत ही अच्छा लगा आपकी जो जर्नी है वो हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करके. आपकी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया. Anything that you want to share with your children? कैसे आपके बच्चे, I know you have 4 beautiful children, so इतनी strong mother को, इतनी strong family को देख के how they are feeling, especially both of your girl, the twins, the beautiful twins that you have, anything that you want to share about them, how their lives have been impacted due to this entire, REIT initiative being in your village and you being an inspiring person in your own community.
0: Yes, ma'am. During the last year, if you talk about COVID only, ma'am, they were like, kuch karne ke liye nahi hai, mama, kya karenge? मैंने बोला कुछ नहीं, जब सेंटर खुल रहा है आप सेंटर में आके बैठो, अब बच्चे आते हैं आप उनको पढ़ाओ. इससे क्या होगा, आपकी खुद की नॉलेज बढ़ेगी, उन बच्चों को भी आपसे सीखने का मिलेगा, बिकॉज आप लोग अच्छे स्कूल्स में जाते हो तो आप उन्हें ज्यादा बेटर पढ़ा सकते हो, आप उनका पर्सपेक्टिव समझ सकते हो कि वो क्या है इन दैट वर्ल्ड. सारे छोटे बच्चों को अभी तक मना लगा, दे वर टेकिंग द क्लासेस देयर एंड दे टेक सो गुड क्लासेस ऑफ द स्मॉल चिल्ड्रन एंड दे आर लाइक मैम आप पढ़ाइए, दीदी को बोल दीजिए पढ़ाने के लिए. तो आई एम लाइक ओके जाओ पढ़ा दो आप. सो इट हैपेंड मैम दैट यस मैम आई एम it helps them, every child, you know, if they share their knowledge with each other, they learn also, and everybody learns. I am learning till date, ma'am. I have learned so much from you, from Geeta, ma'am, from everybody. So, you know, the learning is never ends. I believe that.
2: And aapke parents ko kaisa lagta hai, aaj wo Sana hai, jo shayad kahin pe apni education bhi complete nahin kar pa rahi thi, aur aaj wo logo tak education ko pahuncha rahi hai.
0: Ma'am, actually, my parents are separated. That was the reason I got married earlier. So, ma'am, Papa ke saath aisa koi connection hi nahi hai. But my mother feels very proud of us because the three of us are very, you know, active. And my other sister, you know, my sister who's living in Hong Kong also, she's also working for an NGO only. And very she's nice. Working from past 7 years. So, we both are very social and we help each other a lot in everything.
2: Very nice, Anna. Any last message that you want to give to young girls or women who are in the same position or your community?
0: Yes, ma'am. Ma'am, only I can say only one thing. If you're getting married, if your parents want you to get married early, maybe any because of any reason, aapko ye chahiye ki aap give up mat karo. Kisi bhi lifestyle, kisi bhi life stage par, just don't give up and keep learning. That will help you for your entire life. Nothing much,
2: ma'am. On those inspiring lines, if there's nothing else, then we can, you know, close this session for today. Thank you so much, Sana, for sharing your such a beautiful and inspiring journey. Thank you, Geeta ma'am, for constantly mentoring us, and thanks to Shushank for moderating the session. We wish you all the very best, Sana. Hopefully, you have all the communities to reach career. और जो आपके सैटेलाइट सेंटर्स हैं वो भी उतने ही सक्सेसफुल हो जितना आपका प्रेजेंट सेंटर है. थैंक यू सो वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस एंड वी थैंक आवर व्यूअर्स आल्सो फॉर पेशेंटली ड्यूरिंग आवर प्रोग्राम. वी कैन एंड द सेशन, वी विल जॉइन यू अगेन ऑन फ्राइडे विद अनदर एक्साइटिंग प्रोग्राम ऑन कल्चर.

0: मृदंगम ही उनकी धड़कन है। श्री तिरुवारूर भक्त वत्सलम, पद्मश्री 2026। तिरुवारूर 18वीं शताब्दी में कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति संगीत ममूर्ति की जन्मस्थली।
1: मैं एक संगीत के वातावरण में पला बढ़ा। मेरी माँ तिरुवारूर तंजावुर क्षेत्र की एक प्रतिष्ठित संगीतज्ञ थी। जब मैं केवल 2.5 वर्ष का था तब मुझे पिता की अनुपस्थिति महसूस हुई। कहा जाता है माँ एक पवित्र मंदिर के समान होती है और मेरे जीवन में यह बात पूरी तरह सत्य सिद्ध हुई। मेरी माँ ने अपने 3 भाइयों और हमारी जिम्मेदारी उठाई छोटे छोटे संगीत कार्यक्रमों में प्रस्तुति देकर।
0: हर सुबह बालक भक्त वत्सलम अपनी माँ आनंद वल्ली की प्रार्थना और भक्ति गीतों की मधुर स्वर लहरियों के साथ जगता था। वो संगीत से मंत्रमुग्ध हो जाता। माँ ने उन्हें संगीत की शिक्षा देना शुरू किया। यही प्रारंभिक शिक्षा उनके जीवन भर की संगीत यात्रा की मजबूत नींव बनी। कुछ ही समय में वे अपनी माँ और मामा के साथ स्थानीय संगीत कार्यक्रमों में संगत करने लगे।
1: मेरे मामा तिरुवारूर कृष्णमूर्ति, मैंने उनसे जिद करके मृदंगम सीखना शुरू किया। वे मुझे सिखाना तो चाहते थे लेकिन हिचकिचाते थे। संगीतकारों की आय नियमित नहीं होती थी। वे नहीं चाहते थे कि मुझे भी उन्हीं संघर्षों का सामना करना पड़े जिनसे वे गुजरे थे।
0: उस समय चेन्नई भारतीय शास्त्रीय संगीत का प्रमुख केंद्र बन चुका था। देश भर के महान विद्वान और कलाकार वहीं आकर बस रहे थे।
1: जब मैं मद्रास आया तब मैं किसी को नहीं जानता था और न ही कोई सहारा था। मेरी माँ मेरे साथ आने में हिचकिचाई। मैंने एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया और बहुत आग्रह करके माँ को अपने साथ ले आया। मेरे लिए उन्होंने जो त्याग किया उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। उन्होंने मेरी खातिर उसी छोटे से कमरे में स्वयं को ढाल लिया। हम एक ऐसी बस्ती में रहते थे जहाँ छोटे छोटे घर एक दूसरे से जुड़े हुए। मैं पड़ोसियों को परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए खिड़कियों पर मोटे पर्दे लगाकर कमरे को ध्वनि निरोधित करता और घंटों मृदंगम का अभ्यास करता। लगातार 10 वर्षों तक यही मेरी दिनचर्या रही।
0: एक बार प्रसिद्ध गायिका M.L. वसंत कुमारी के साथ व्हाइट हाउस में प्रस्तुति के दौरान आयोजकों ने उनसे अनुरोध किया कि वे अपने माथे पर लगा पारंपरिक विभूति चिन्ह हटा दें, लेकिन भक्त वत्सलम ने इनकार कर दिया। उनके लिए वो उनकी पहचान और आस्था का प्रतीक था और उन्होंने गर्व के साथ अपनी प्रस्तुति दी। वर्ष 1992 में उन्होंने बार्सिलोना ओलम्पिक में अपनी प्रस्तुति की। इसके बाद महान कलाकार मैंडोलिन श्रीनिवास के साथ विश्व पटल पर संगत की। भक्त वत्सलम को प्रख्यात संगीतकारों के साथ ने भारतीय संगीत जगत की विशिष्ट पहचान बना दिया। एक नवाचारी कलाकार के रूप में उन्होंने विशाल तालवाद समूहों की ऐसी अनूठी प्रस्तुतियों की संरचना की जिन्हें पहले कभी नहीं सुना गया था। अपनी संस्था लय मधुरा स्कूल ऑफ म्यूजिक के माध्यम से वे 1000 से अधिक शिष्यों को प्रशिक्षित कर चुके हैं। जो ज्ञान सीखने योग्य है उसे पूरी निष्ठा से सीखो और फिर जीवन भर उन्हीं सिद्धांतों के अनुरूप आचरण करो।
1: संगीत मेरी सांस है। मैं अगले जन्म में भी मृदंगम ही बजाना चाहूंगा।
0: श्री तिरुवारूर भक्त वत्सलम, पद्मश्री 2026।

0: आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति विश्लेषण।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम विश्लेषण के नए अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं सरफिरोजी। श्रोताओं, भारत आज ऊर्जा के क्षेत्र में बड़े परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। देश की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण, ऊर्जा सुरक्षा और सतत विकास को प्राथमिकता देते हुए नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में तेज गति से विस्तार किया जा रहा है। भारत की नवीकरणीय ऊर्जा यात्रा अब केवल भविष्य की संभावना नहीं बल्कि वर्तमान की एक मजबूत वास्तविकता बन चुकी है। सौर और पवन ऊर्जा की बढ़ती स्थापित क्षमता, घरेलू विनिर्माण में विस्तार, ऊर्जा भंडारण, हरित हाइड्रोजन और नई तकनीकों के विकास ने भारत के ऊर्जा क्षेत्र को नए चरण में पहुंचाया है। इसी क्रम में 31 जुलाई को केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना यानी PMSSY को मंजूरी दी। ये योजना ऊर्जा भंडारण के साथ 5000 मेगावाट फ्लोटिंग सौर ऊर्जा क्षमता विकसित करने पर केंद्रित है। आज के कार्यक्रम में हम जानेंगे कि भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता किस तरह तेजी से बढ़ रही है, सौर और पवन ऊर्जा इस परिवर्तन के प्रमुख आधार क्यों बन रहे हैं, प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना किस तरह फ्लोटिंग सोलर और ऊर्जा भंडारण को बढ़ावा दे सकती है और हरित हाइड्रोजन आधारित परिवहन में भारत ने किस महत्वपूर्ण उपलब्धि को हासिल किया है। श्रोताओं, भारत की नवीकरणीय ऊर्जा यात्रा में पिछले एक दशक के दौरान उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। वर्ष 2014 में भारत की सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता लगभग 2.82 गीगावाट थी। ये क्षमता 30 जून 2026 तक बढ़कर 162.15 गीगावाट हो चुकी है, यानी एक दशक से कुछ अधिक समय में सौर ऊर्जा क्षमता में 53 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है। ये बदलाव केवल बड़े सौर ऊर्जा संयंत्रों तक सीमित नहीं है। सोलर पार्क, रूफटॉप सौर ऊर्जा, सौर कृषि पंप और अब फ्लोटिंग सौर ऊर्जा जैसी नई व्यवस्थाएं भारत के ऊर्जा परिदृश्य को व्यापक बना रही हैं। वित्त वर्ष 2025-26 में वितरित सौर ऊर्जा ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस दौरान जोड़ी गई 44.61 गीगावाट सौर क्षमता में लगभग 16.3 गीगावाट यानी करीब 36% वितरित सौर ऊर्जा से आया। इसमें रूफटॉप सौर ऊर्जा और पीएम कुसुम के तहत स्थापित क्षमता का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इससे स्पष्ट है कि भारत का सौर परिवर्तन केवल बड़े बिजली संयंत्रों तक सीमित नहीं है, ये घरों, खेतों और स्थानीय स्तर तक पहुंच रहा है। अब बात करते हैं भारत की नवीकरणीय ऊर्जा यात्रा के एक नए और महत्वपूर्ण आयाम फ्लोटिंग सौर ऊर्जा की।
2: प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना भारत में फ्लोटिंग सौर ऊर्जा को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस योजना का उद्देश्य ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के साथ 5000 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक यानी FSPV परियोजनाओं को समर्थन देना है। योजना के तहत कम से कम 2 घंटे की ऊर्जा भंडारण क्षमता विकसित की जाएगी जिसकी कुल क्षमता 10,000 मेगावाट होगी। इससे पीक डिमांड के समय बिजली की अतिरिक्त मांग पूरी की जा सकेगी। फ्लोटिंग सोलर परियोजनाओं में सौर पैनल जलाशयों और जल निकायों की सतह पर लगाए जाते हैं। इससे बड़े पैमाने पर भूमि की आवश्यकता कम होती है और उपलब्ध जल संसाधनों के साथ सौर ऊर्जा उत्पादन की नई संभावनाएं भी जन्म लेती हैं। प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना के लिए 5,070 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। योजना से हर वर्ष लगभग 1 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी आने की उम्मीद है। इस योजना का महत्व केवल अतिरिक्त सौर क्षमता विकसित करने तक सीमित नहीं है। ऊर्जा भंडारण को सौर ऊर्जा के साथ जोड़ने से दिन में उत्पन्न अतिरिक्त बिजली को आवश्यकता के समय इस्तेमाल करने में मदद मिल सकती है।
1: श्रोताओं, भारत की नवीकरणीय ऊर्जा यात्रा में सौर ऊर्जा के साथ पवन ऊर्जा भी एक महत्वपूर्ण स्तंभ बन चुकी है। आइए समझते हैं इस रिपोर्ट में।
3: भारत ने वित्त वर्ष 2025-26 में पवन ऊर्जा क्षमता में 6.057 गीगावाट की अब तक की सबसे अधिक वार्षिक वृद्धि दर्ज की है। इसके साथ ही 30 जून 2026 तक देश की कुल स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता बढ़कर 57.44 गीगावाट हो गई है। पवन ऊर्जा से वित्त वर्ष 2025-26 में लगभग 106 अरब यूनिट बिजली का उत्पादन हुआ, जो पिछले वित्त वर्ष के 83 अरब यूनिट की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि है। भारत वर्तमान में स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में दुनिया में चौथे स्थान पर है। मार्च 2014 में देश की पवन ऊर्जा क्षमता लगभग 21.04 गीगावाट थी, जो मार्च 2026 तक बढ़कर 56.09 गीगावाट हो गई। पवन ऊर्जा की खासियत ये भी है कि इसका उत्पादन सौर ऊर्जा के साथ बेहतर तालमेल बना सकता है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार पवन ऊर्जा उत्पादन का लगभग 45% हिस्सा पीक डिमांड के समय आता है। इससे ग्रिड की विश्वसनीयता मजबूत करने में मदद मिल सकती है। पवन टर्बाइन के घरेलू विनिर्माण में भी तेजी आई है। मार्च 2026 तक भारत की विंड टर्बाइन विनिर्माण क्षमता थी लगभग 24 गीगावाट, जबकि 2014 में ये करीब 10 गीगावाट थी। इस तरह सौर और पवन ऊर्जा मिलकर भारत के स्वच्छ ऊर्जा मिश्रण को मजबूत कर रहे हैं।
1: श्रोताओं, नवीकरणीय ऊर्जा की कहानी केवल बिजली उत्पादन तक सीमित नहीं है, अब स्वच्छ ऊर्जा का इस्तेमाल परिवहन जैसे क्षेत्रों में भी नए अवसर पैदा कर रहा है। इसका एक बड़ा उदाहरण है भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन।
4: 17 जुलाई 2026 को भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन को जीन सोनीपत रेल खंड पर हरी झंडी दिखाई गई। ये ट्रेन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रासायनिक प्रक्रिया के माध्यम से ट्रेन के भीतर ही बिजली पैदा करती है। इसके संचालन के दौरान मुख्य उप उत्पाद के रूप में जल वाष्प निकलती है और टेल पाइप से कार्बन उत्सर्जन नहीं होता। भारत की ये हाइड्रोजन ट्रेन स्वदेशी तकनीक और आत्मनिर्भरता की दिशा में भी महत्वपूर्ण उपलब्धि है। 10 कोच वाली इस ट्रेन में 2 ड्राइविंग पावर कार हैं, जिनकी कुल क्षमता 2400 किलोवाट है। इसकी परिचालन गति 75 किलोमीटर प्रति घंटा और डिजाइन गति 110 किलोमीटर प्रति घंटा है। हाइड्रोजन की आपूर्ति के लिए जींद में समर्पित हाइड्रोजन भंडारण और रीफ्यूलिंग व्यवस्था भी विकसित की गई है। ट्रेन के संचालन के शुरुआती चरण में ही ये 1200 किलोमीटर से अधिक की यात्रा कर चुकी है और 3200 लीटर से अधिक डीजल की बचत दर्ज की गई है। ये उपलब्धि दिखाती है कि भारत स्वच्छ ऊर्जा को केवल बिजली उत्पादन में ही नहीं बल्कि परिवहन क्षेत्र में भी अपनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।
1: श्रोताओं, सौर और पवन ऊर्जा के तेजी से विस्तार के साथ ऊर्जा भंडारण की आवश्यकताएं भी बढ़ रही हैं। सौर ऊर्जा का उत्पादन सूर्य के प्रकाश पर निर्भर करता है, जबकि पवन ऊर्जा का उत्पादन हवा की गति पर। इसलिए भविष्य की ऊर्जा व्यवस्था के लिए केवल उत्पादन क्षमता बढ़ाना पर्याप्त नहीं होगा, हमें ऐसी व्यवस्था की आवश्यकता होगी जो जरूरत के समय बिजली उपलब्ध करा सके और ग्रिड को स्थिर बनाए रखे। यहीं पर बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, पंप्ड स्टोरेज, स्मार्ट ग्रिड और फ्लोटिंग सौर ऊर्जा जैसी तकनीकों की भूमिका बढ़ जाती है। श्रोताओं, भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्रांति अब कई महत्वपूर्ण आयामों को एक साथ आगे बढ़ा रही है। पहला है अधिक स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन, दूसरा ऊर्जा भंडारण और ग्रिड की विश्वसनीयता, तीसरा घरेलू विनिर्माण और रोजगार, और चौथा परिवहन तथा उद्योगों में स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग। वर्ष 2025-26 में भारत ने 55.3 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा की क्षमता जोड़ी, जो अब तक की सबसे बड़ी वार्षिक वृद्धि है। मार्च 2026 तक देश की कुल गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता 283.46 गीगावाट हो चुकी थी। भारत ने 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस लक्ष्य की दिशा में सौर और पवन ऊर्जा के साथ साथ ऊर्जा भंडारण, हरित हाइड्रोजन और स्वच्छ परिवहन की भूमिका भी महत्वपूर्ण होगी। भारत की नवीकरणीय ऊर्जा यात्रा अब उस चरण में प्रवेश कर रही है जहां सूर्य, हवा, जल, हाइड्रोजन और ऊर्जा भंडारण मिलकर देश के भविष्य की ऊर्जा व्यवस्था को आकार दे सकते हैं। स्वच्छ ऊर्जा से ऊर्जा सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा से आत्मनिर्भरता और आत्मनिर्भरता से विकसित भारत, यही भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्रांति की व्यापक दिशा है। इसी के साथ कार्यक्रम विश्लेषण में आज के लिए बस इतना ही। इस कार्यक्रम को तैयार किया हमारे सहयोगी उत्पल कुमार ने, प्रस्तुति सहायक है अक्षत ममगई। नमस्कार।

0: प्रयासों की बुनाई, सम्मान की कमाई। खेमराज सुंदरियाल, पद्मश्री 2026। हजारों की उम्मीद और उनकी जीविका के मार्गदर्शक हैं खेमराज सुंदरियाल, जिन्हें सब स्नेहवश गुरुजी कहते हैं। खेमराज जी का जन्म 1943 में पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। आर्थिक अभाव के कारण उन्होंने बचपन में बहुत कठिनाइयों का सामना किया।
1: मैं जब पढ़ रहा था तो एक दिन संत कबीर जी के बारे में याद, उनका बड़ा नाम है और हम इतनी किताबें पढ़ती हैं उनके, तो मैं तो उन्हीं के जैसा काम सीखूंगा। मैंने ठान लिया कि मैं बुनकर बनूंगा।
0: हैंडलूम टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा करने के बाद खेमराज सुंदरियाल जी की काम की तलाश ने उन्हें यह बता दिया कि रोजगार के लिए उन्हें दिल्ली जाना ही होगा। लेकिन खेमराज जी के पास पौड़ी से दिल्ली आने तक के पैसे नहीं थे। तभी एक दिन उनके चचेरे भाई को चोट लग गई और उन्हें इलाज के लिए दिल्ली ले जाना पड़ा। उनकी देखभाल के लिए इन्हें भी साथ भेजा गया और यही सफर खेमराज जी को पहली बार दिल्ली ले आया। दिल्ली क्लॉथ मिल में काम करने के बाद खेमराज सुंदरियाल बुनकर सहायता केंद्र में कार्यरत हो गए। 9 से 10 साल गुजर गए। काशी के बुनकर सेवा केंद्र में खेमराज जी की मुलाकात एक टेक्सटाइल आर्टिस्ट SV निकम जी से हुई। उन्होंने इनकी प्रतिभा को पहचान कर इन्हें केंद्र से लौटने के बाद आर्टिस्ट लोगों के लिए टेपेस्ट्री बनाने की सलाह दी।
1: उन्होंने मुझे 175 रुपए दिए लूम खरीदने के लिए।
0: इसी दौरान खेमराज सुंदरियाल बुनकर सेवा केंद्र की पानीपत शाखा में आ गए और जल्द ही देश के कई सुप्रसिद्ध कलाकारों के लिए टैपेस्ट्री बुनने लगे। जिस लड़के के पास पौड़ी से दिल्ली आने तक के पैसे नहीं थे, उनका काम उन्हें देश विदेश ले गया। जामदानी तकनीक पर खेमराज जी की पकड़ देखते ही बनती थी और साथ ही उन्होंने हत्ता तकनीक और पॉलिएस्टर की बुनाई भी शुरू कर दी। अपनी इसी लगन से उन्होंने पानीपत की दरी और खेस को एक बार फिर से प्रसिद्ध कर दिया। रिटायर होने के बाद खेमराज जी ने विष्णु हैंडलूम कोऑपरेटिव शुरू किया, जिसमें वो अब तक 10,000 से ज्यादा युवाओं को काम सिखा चुके हैं। भारत के कई प्रख्यात संस्थानों के छात्र भी खेमराज जी से बुनाई की कला सीखने आते हैं।
1: इस कला ने मुझे मान सम्मान और पहचान दिलाई। अब लगता है मैंने इस कला को नहीं, इस कला ने मुझे अपना है।
0: खेमराज सुंदरियाल, पद्मश्री 2026। कोटि कोटि नमस्कार।
2: आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति विश्लेषण।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम विश्लेषण के नए अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं जागृति शर्मा। श्रोताओं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 6 अगस्त को भारत की राष्ट्रीय एकीकृत योजना गोबरधन कंप्रेस्ड बायोगैस यानी CBG को मंजूरी दे दी है। कुल 23,771 करोड़ रुपए के परिव्यय वाली ये योजना देश के जैविक कचरे और कृषि अवशेषों को स्वच्छ ऊर्जा, ग्रामीण समृद्धि और आर्थिक विकास के अवसर में बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में जानेंगे कि गोबरधन योजना की प्रमुख विशेषताएं क्या है, ये भारत की ऊर्जा सुरक्षा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को किस तरह मजबूत कर सकती है, किसानों और ग्रामीण उद्यमियों के लिए इसके क्या अवसर हैं, और कचरे से कंचन तथा आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में ये पहल कितनी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। श्रोताओं, भारत दुनिया की प्रमुख और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। आर्थिक विकास की रफ्तार बढ़ने के साथ देश की ऊर्जा आवश्यकताएं भी लगातार बढ़ रही हैं। लेकिन प्राकृतिक गैस की जरूरत का लगभग 50% हिस्सा भारत अभी आयात के माध्यम से पूरा करता है। हाल के वैश्विक भू राजनीतिक घटनाक्रमों और ऊर्जा आपूर्ति में सामने आई चुनौतियों ने ये स्पष्ट किया है कि किसी भी देश के लिए घरेलू ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाना कितना महत्वपूर्ण है। भारत के LNG आयात का एक बड़ा हिस्सा समुद्री मार्गों से होकर आता है। ऐसे में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में किसी भी तरह का व्यवधान ऊर्जा सुरक्षा को प्रभावित कर सकता है। यही कारण है कि भारत लगातार ऐसे स्वदेशी और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा दे रहा है जो आयात पर निर्भरता कम करने के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण और ग्रामीण विकास को भी गति दे सके। इसी सोच को आगे बढ़ाती है गोबरधन योजना। गोबरधन का पूरा नाम है गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन। वर्ष 2018 में इसे स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य पशुओं के गोबर, रसोई के जैविक कचरे, कृषि अवशेषों और बाजार से निकलने वाले जैविक कचरे को बायोगैस और जैविक खाद में बदलना था। अब इस पहल को एक व्यापक राष्ट्रीय CBG कार्यक्रम के रूप में आगे बढ़ाया गया है। पहले CBG इकोसिस्टम विभिन्न मंत्रालयों के दायरे में था। बेहतर समन्वय और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अब पूरी योजना को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत एकीकृत किया गया है। आइए अब विस्तार से समझते हैं कि इस योजना की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं और ये CBG क्षेत्र को किस प्रकार नई गति देने वाली है।
4: गोबरधन योजना का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य देश में कंप्रेस्ड बायोगैस के उत्पादन को बड़े पैमाने पर बढ़ाना है। इसके लिए योजना में पूरी CBG मूल्य श्रृंखला को मजबूत करने पर ध्यान दिया गया है। योजना के तहत सबसे पहले CBG उत्पादकों के लिए निश्चित बाजार और खरीद का भरोसा सुनिश्चित किया जाएगा। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन यानी CGD संस्थाओं के माध्यम से CBG की खरीद को बढ़ावा दिया जाएगा। योजना का दूसरा महत्वपूर्ण घटक है स्थिर CBG मूल्य निर्धारण। इसके तहत सरकार ने 2,110 रुपए प्रति MMBTU की कीमत तय की है, जो लगभग 105 रुपए प्रति किलोग्राम CBG के बराबर है। न्यूनतम 10 वर्षों की अवधि वाला यह मूल्य ढांचा उत्पादकों को राजस्व की स्थिरता प्रदान करने और नई परियोजनाओं में निवेश को प्रोत्साहित करने में मदद करेगा। तीसरे घटक के रूप में पात्र ग्रीन फील्ड CBG परियोजनाओं को स्थापित क्षमता के आधार पर प्रति टन प्रतिदिन 2 करोड़ रुपए तक की पूंजीगत सहायता

0: फंड। इसके माध्यम से जिला स्तर पर कच्चे माल का आकलन और मैपिंग, कच्चा माल एकत्रीकरण, तकनीक सुधार, जैविक खाद का मूल्य संवर्धन, क्षमता निर्माण और जागरूकता जैसे कार्यों को बढ़ावा दिया जाएगा।
1: श्रोताओं, गोबर धन योजना का महत्व केवल स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन तक सीमित नहीं है। इसका सीधा संबंध किसानों की आय, ग्रामीण रोजगार, कचरा प्रबंधन और स्थानीय अर्थव्यवस्था से भी है। हर सीबीजी संयंत्र के पास कृषि अवशेष, पशुओं का गोबर और अन्य जैविक कचरा कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जा सकता है। इससे गाँव में कचरे के बेहतर प्रबंधन के साथ साथ कच्चा माल एकत्र करने, परिवहन, संयंत्र संचालन और जैविक खाद के उत्पादन जैसे क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा होंगे। सीबीजी उत्पादन के साथ निकलने वाले जैविक उर्वरक भी कृषि क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है। सरकार पहले से ही फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मेन्योर, लिक्विड फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मेन्योर और फॉस्फेट रिच ऑर्गेनिक मेन्योर जैसे जैविक उर्वरकों को बढ़ावा दे रही है। इससे एक ऐसी चक्रीय जैव अर्थव्यवस्था विकसित हो सकती है जिसमें खेतों से निकलने वाला अवशेष कचरा नहीं बल्कि आर्थिक संसाधन बन जाए और सीबीजी संयंत्रों से प्राप्त जैविक खाद वापस कृषि क्षेत्र में उपयोग हो। यानी गोबरधन का मूल विचार है कचरे को संसाधन में बदलना, संसाधन को ऊर्जा में बदलना और ऊर्जा को आर्थिक विकास का माध्यम बनाना। श्रोताओं, गोबरधन योजना के जरिए भारत अपने विशाल जैविक संसाधनों को ऊर्जा सुरक्षा के साथ जोड़ने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद इस पहल के बारे में केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी जानकारी दी।
2: कंप्रेस्ड बायोगैस सीबीजी, इसका प्रोडक्शन एक डेकेड के अंदर 10 गुना बढ़ाने का टारगेट, करीब 5 MMSCMD प्रोडक्शन के लेवल तक पहुंचाने का इसमें टारगेट लिया गया है। अगर इसको हम एनवायरमेंटल पॉइंट से देखें तो दिस विल सेव अबाउट 40 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, करीब 75,000 करोड़ रुपीस नेशनल जीडीपी को ऐड होगा और अबाउट 1.5 लाख जॉब्स विल बी क्रिएटेड बाय दिस प्रोग्राम।
1: श्रोताओं, गोबरधन योजना की रूपरेखा और इसके प्रमुख घटकों को समझने के बाद अब ये जानना भी जरूरी है कि भारत की दीर्घकालिक ऊर्जा रणनीति में सीबीजी को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जा रहा है। आइए विस्तार से समझते हैं कि गोबरधन भारत की ऊर्जा सुरक्षा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को किस प्रकार प्रभावित कर सकता है।
0: भारत के गांवों में बड़ी मात्रा में कृषि अवशेष, पशु अपशिष्ट और अन्य जैविक संसाधन उपलब्ध हैं। यदि इन संसाधनों को संगठित तरीके से एकत्र कर सीबीजी संयंत्रों तक पहुंचाया जाए तो किसानों और स्थानीय उद्यमियों के लिए अतिरिक्त आय के अवसर पैदा हो सकते हैं। सीबीजी संयंत्र केवल ऊर्जा का उत्पादन नहीं करेगा बल्कि अपने आसपास एक स्थानीय आर्थिक चक्र भी तैयार करेगा जो कच्चे माल का संग्रह, परिवहन, प्रसंस्करण, गैस उत्पादन और जैविक खाद का निर्माण करेगा। इस तरह गोबरधन ग्रामीण भारत को केवल ऊर्जा का उपभोक्ता नहीं बल्कि ऊर्जा का उत्पादक और ऊर्जा सुरक्षा का भागीदार बनाने की क्षमता रखता है। पर्यावरण की दृष्टि से भी ये पहल महत्वपूर्ण है। कृषि अवशेषों और जैविक कचरे के वैज्ञानिक उपयोग से खुले में कचरा जलाने और लैंडफिल में जैविक कचरे के जाने को कम किया जा सकता है। इससे ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भी कमी आएगी।
1: श्रोताओं, गोबरधन योजना के तहत पहले से चल रहे प्रयासों को भी अब राष्ट्रीय स्तर पर एकीकृत रूप दिया जा रहा है। बायोगैस एकत्रीकरण मशीनरी योजना के तहत सीबीजी उत्पादकों को कच्चा माल एकत्र करने के लिए आवश्यक उपकरण खरीदने में सहायता दी जा रही है। वहीं जैविक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए बाजार विकास सहायता योजना के अंतर्गत सहायता दी जा रही है। श्रोताओं, गोबरधन योजना के तहत देश में सीबीजी क्षेत्र में हो रहे प्रगति के भी उत्साहजनक हैं। 6 अगस्त 2026 तक गोबरधन के एकीकृत पंजीकरण पोर्टल पर देश भर में 1908 सीबीजी और बायो सीएनजी संयंत्र पंजीकृत किए जा चुके हैं। इनमें 217 संयंत्र चालू हो चुके हैं और लगभग 0.4 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर प्रतिदिन गैस का उत्पादन कर रहे हैं जबकि 339 संयंत्र निर्माणाधीन हैं। श्रोताओं, गोबरधन भारत की उस विकास यात्रा का हिस्सा है जिसमें आर्थिक प्रगति और पर्यावरण संरक्षण को एक दूसरे का विकल्प नहीं बल्कि एक दूसरे का पूरक बनाया जा रहा है। कचरे से ऊर्जा, ऊर्जा से रोजगार और रोजगार से ग्रामीण समृद्धि, यही चक्रीय जैव अर्थव्यवस्था का आधार बन सकता है। गोबरधन योजना कचरे से कंचन, आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत के संकल्प को धरातल पर उतारने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसी के साथ कार्यक्रम विश्लेषण में आज के लिए बस इतना ही। इस कार्यक्रम को तैयार किया है।

0: हमारे सहयोगी उत्पल ने, प्रस्तुति सहायक अक्षत ममगाई। नमस्कार।
1: डॉक्टर पद्मा ग्योरमेद, एक उपचारक जिसने पुनर्जीवित किया एक खत्म होती विरासत को, हिमालय की खामोशी में 2500 साल पुरानी उपचार परंपरा दम तोड़ रही थी। सोवा रिग्पा, नाड़ी देखकर बीमारी समझना, दुर्लभ जड़ी बूटियों से इलाज करना। डॉक्टर पद्मा ग्योरमेद मानते थे कि कुछ विरासतों को बचाना बेहद जरूरी है। सोवा रिग्पा को बचाने का उनका सफर बड़ी ही कम उम्र में शुरू हुआ। वो अक्सर अपने पिता को दवाइयां बनाते और लोगों का इलाज करते हुए देखा करते थे। उन्होंने सोवा रिग्पा को नहीं चुना, सोवा रिग्पा ने उन्हें चुना। शुरुआत में वो इसे सीखना नहीं चाहते थे, लेकिन उनके पिता ने उन्हें समझाया। डॉक्टर ग्योरमेद ने अपना जीवन इस चिकित्सा पद्धति को बचाने में समर्पित किया। उन्होंने सोवा रिग्पा पर कई किताबें भी लिखी, लेकिन परंपरा को बचाना आसान नहीं होता।
2: शुरुआत में सिस्टम को दोबारा खड़ा करना बहुत मुश्किल था। अपने ही लोगों को समझाना कि ये भारत की विरासत है, काफी घुटन भरा था। छात्रों के लिए सोवा रिग्पा आखिरी विकल्प होता था। हमारी परंपरा दम तोड़ रही थी।
1: डॉक्टर ग्योरमेद ने कई सोवा रिग्पा चिकित्सकों को एक साथ लाया, अनेक सम्मेलन आयोजित किए और पुराने ग्रंथों को इकट्ठा किया। उनकी पहल पर माननीय प्रधानमंत्री के सहयोग से लेह में राष्ट्रीय सोवा रिग्पा संस्थान की स्थापना हुई। पर संघर्ष यही खत्म नहीं हुआ।
2: 2014 में मुझे भारत में चीनी दूतावास से एक प्रेस रिलीज मिली, जिसमें लिखा था कि वो इस चिकित्सा पद्धति को यूनेस्को में अपनी सांस्कृतिक विरासत के रूप में दर्ज कराएंगे।
1: डॉक्टर ग्योरमेद ने सभी संबंधित दस्तावेज इकट्ठा किए, फाइल बनाई और पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़े। इस लंबे सफर में कई लोगों ने डॉक्टर ग्योरमेद का साथ दिया।
2: मेरे परिवार ने बहुत त्याग किया है। 25 सालों में मैंने शायद ही कभी छुट्टी ली होगी। जब मेरे पिता स्वस्थ थे, वो मुझसे कहते थे, मेडिसिन बुद्धा तुम्हारे साथ है, अगर तुम अच्छा काम कर रहे हो तो एक दिन जरूर सफल होगे।
1: आज एक नई पीढ़ी इस प्राचीन ज्ञान की ओर लौट रही है। डॉक्टर ग्योरमेद की अथक मेहनत से सोवा रिग्पा सिर्फ बचा ही नहीं, उसे मिली एक नई जिंदगी। एक उपचारक के बेटे से भारत में सोवा रिग्पा सूत्रधार तक का सफर वाकई प्रेरणादायक है। डॉक्टर पद्मा ग्योरमेद, पद्मश्री 2026, कोटि कोटि नमस्कार।
3: आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति विश्लेषण।
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम विश्लेषण के नए अंक में आपका स्वागत है। मैं हूँ वैष्णवी। श्रोताओं, आज पूरी दुनिया के सामने दो बड़ी चुनौतियां हैं, बढ़ती ऊर्जा की आवश्यकताएं और जलवायु परिवर्तन। ऐसे में ऐसे ऊर्जा स्रोतों की आवश्यकता है जो स्वच्छ भी हो, भरोसेमंद भी हो और लगातार बिजली उपलब्ध करा सके। यही कारण है कि दुनिया में एक बार फिर परमाणु ऊर्जा की ओर ध्यान बढ़ रहा है। सौर और पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय स्रोत स्वच्छ तो हैं, लेकिन उनकी उपलब्धता मौसम और समय पर निर्भर करती है। इसके विपरीत परमाणु ऊर्जा संयंत्र 2400 घंटे लगातार बिजली उपलब्ध करा सकते हैं, इसलिए इन्हें बिजली व्यवस्था की एक विश्वसनीय आधारशिला माना जाता है। परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए सरकार कई स्तरों पर एक साथ काम कर रही है। एक ओर शांति अधिनियम के माध्यम से कानूनी और नीतिगत ढांचे को आधुनिक बनाया गया है, वहीं दूसरी ओर स्वदेशी परमाणु प्रौद्योगिकियों के विकास और नई पीढ़ी के रिएक्टरों पर निवेश बढ़ाया जा रहा है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से ईंधन सुरक्षा और तकनीकी साझेदारी को भी लगातार मजबूत किया जा रहा है। आज के कार्यक्रम में हम जानेंगे कि हाल के वर्षों में किस प्रकार भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को नई दिशा मिली है और इस क्षेत्र में हुई प्रमुख उपलब्धियां भारत की ऊर्जा सुरक्षा तथा स्वच्छ ऊर्जा के लक्ष्य को किस प्रकार मजबूती प्रदान कर रही है। श्रोताओं, भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का एक लंबा इतिहास रहा है। वर्ष 1962 का परमाणु ऊर्जा अधिनियम देश के परमाणु कार्यक्रम की आधारशिला बना। इसके बाद संशोधनों के माध्यम से सरकार ने इस क्षेत्र में सरकारी कंपनियों और संयुक्त उपक्रमों की भागीदारी का मार्ग प्रशस्त किया। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं, तकनीकी क्षमताओं और स्वच्छ ऊर्जा से जुड़े लक्ष्यों में तेजी से बदलाव आया है। ऐसे में आवश्यकता महसूस की गई कि परमाणु ऊर्जा से जुड़े विभिन्न प्रावधानों को एक आधुनिक और व्यापक कानूनी ढांचे में समाहित किया जाए। इसी सोच के साथ शांति अधिनियम 2025 लाया गया है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं।
5: भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की वर्तमान स्थिति पर नजर डालें तो देश के कुल विद्युत उत्पादन में परमाणु ऊर्जा की वर्ष 2024-25 में हिस्सेदारी लगभग 3% रही, जबकि देश की स्थापित परमाणु ऊर्जा क्षमता 8.78 गीगावाट है। सरकार का लक्ष्य स्वदेशी तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से विकसित रिएक्टरों के माध्यम से वर्ष 2031-32 तक 22 गीगावाट से अधिक की क्षमता विकसित करना है। वहीं दीर्घकालिक लक्ष्य वर्ष 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करना है। उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2025-26 के केंद्रीय बजट में न्यूक्लियर एनर्जी मिशन की घोषणा की गई। इसके तहत 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है ताकि देश में स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर यानी SMR के डिजाइन, विकास और तैनाती को बढ़ावा दिया जा सके। लक्ष्य ये भी है कि वर्ष 2033 तक कम से कम 5 स्वदेशी SMR विकसित किए जाएं। इन्हीं लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए लाया गया शांति अधिनियम 2025 भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र के लिए एक आधुनिक कानूनी ढांचा उपलब्ध कराता है। इसके तहत नियामकीय निगरानी के अंतर्गत निजी कंपनियों को परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में सीमित भागीदारी की अनुमति दी गई है। वे परमाणु बिजली संयंत्रों के संचालन, बिजली उत्पादन, उपकरण निर्माण और निर्धारित सीमा तक परमाणु ईंधन निर्माण जैसी गतिविधियों में भाग ले सकेंगी। हालांकि संवेदनशील गतिविधियां केंद्र सरकार या उसकी पूर्ण स्वामित्व वाली संस्थाओं के अधिकार क्षेत्र में ही रहेंगी। अधिनियम में परमाणु ऊर्जा और विकिरण से जुड़ी गतिविधियों के लिए लाइसेंस तथा सुरक्षा स्वीकृति की स्पष्ट व्यवस्था की गई है। एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड यानी AERB को वैधानिक दर्जा देकर नियामक व्यवस्था को और सशक्त बनाया गया है। इसके साथ ही परमाणु क्षति से जुड़े दायित्व, मुआवजा, दावों के निपटान और अपील की प्रक्रिया को भी अधिक व्यवस्थित स्वरूप दिया गया है। स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग और अनुसंधान जैसे शांतिपूर्ण क्षेत्रों में परमाणु तथा विकिरण तकनीकों के उपयोग के लिए भी स्पष्ट नियामकीय व्यवस्था बनाई गई है। समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
4: श्रोताओं, भारत का परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम कोई अल्पकालिक योजना नहीं बल्कि 6 दशकों से अधिक समय में विकसित हुई एक दीर्घकालिक रणनीति का परिणाम है। सीमित यूरेनियम संसाधनों और ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए भारत ने 3 चरणीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम तैयार किया। इसकी खास बात ये है कि हर चरण अगले चरण की नींव तैयार करता है। पहले चरण में प्राकृतिक यूरेनियम से बिजली उत्पादन किया जाता है, वहीं दूसरे चरण में उसी प्रक्रिया से प्राप्त ईंधन का उपयोग फास्ट ब्रीडर रिएक्टरों में किया जाता है। इसके बाद तीसरे चरण में भारत के विशाल थोरियम भंडारों के उपयोग का मार्ग प्रशस्त होता है। इसी दूसरे चरण की दिशा में भारत ने इस वर्ष एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। 6 अप्रैल 2026 को तमिलनाडु के कल्पक्कम स्थित प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ने पहली बार क्रिटिकलिटी प्राप्त की। सरल शब्दों में कहें तो इसका अर्थ है कि इस रिएक्टर में पहली बार नियंत्रित और सतत परमाणु श्रृंखला अभिक्रिया सफलतापूर्वक शुरू हुई। इसके साथ ही भारत ने अपने 3 चरणीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के दूसरे चरण में औपचारिक रूप से प्रवेश कर लिया है। लेकिन आखिर फास्ट ब्रीडर रिएक्टर होता क्या है और इसे भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में इतनी बड़ी उपलब्धि क्यों माना जा रहा है, इस विषय पर आकाशवाणी समाचार ने वरिष्ठ वैज्ञानिक टीवी वेंकटेश्वरन से विशेष बातचीत की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या बताया।
6: एक फास्ट ब्रीडर रिएक्टर टेक्नोलॉजी में हम लास्ट अबाउट 30 ईयर्स उसी कल्पाकम में टेस्ट कर रहा था। उस अनुभव का बेसिस में ये हम बिल्ड किया है। यूजुअली आप एक एटॉमिक रिएक्टर लिया तो वो एटॉमिक रिएक्टर से वेस्ट प्रोड्यूस होता है, बट इस रिएक्टर में एक इम्पॉर्टेंट चीज है वो वर्ड ब्रीडर। ब्रीडर का मतलब किसी चीज को नया पैदा कर सकता है ना, तो उस तरह से फ्यूल को ये पैदा करता है, वेस्ट को पैदा नहीं करता है। इस रिएक्टर के अंदर न्यूट्रॉन फास्ट तरीके से निकलेगा। इसके कारण वो क्या करेगा, ये रिएक्टर के बाहर एक कवच के रूप में हम किसी नॉन फिसाइल मटेरियल को हम रखेंगे, लाइक थोरियम को हम रख सकता है, उसमें ये फास्ट न्यूट्रॉन टकरा के उसको फ्यूल बन, एक न्यूक्लियर रिएक्टर में एक विशेष मात्रा में न्यूक्लियर फ्यूल होने के बाद अपनी आप एक चेन रिएक्शन में उसे एनर्जी प्रोड्यूस होगा वो ये क्रिटिकलिटी। इंडिया का एक अपनी आप एटॉमिक पावर का प्लान है, उस प्लान में 3 स्टेज बोलेगा, ये सेकेंड स्टेज है, ये स्टेज बहुत क्रिटिकल है, इसमें हमको कामयाब हो गया तो होगा, पक्का होगा, मुझे यकीन है। सो कामयाब होने के बाद हम देखा तो स्टेज 3 में हम इंडिया में अवेलेबल है थोरियम, वो थोरियम को हम यूज कर सकता है, थोरियम बहुत सेफ विषय है, तो ये एटॉमिक पावर प्रोड्यूस करने का थोरियम यूज किया तो बहुत सेफ होगा। एंड सेकेंड वो पूरा की पूरा इंडिया में अवेलेबल, सो इसका मतलब दैट हमको एक एनर्जी सॉवरनिटी, एनर्जी इंडिपेंडेंस मिलेगा।
4: श्रोताओं, भारत के पास यूरेनियम के सीमित भंडार हैं, जबकि थोरियम के दुनिया के सबसे बड़े भंडारों में से एक भारत के पास है। भारत का 3 चरणीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम इसी सोच पर आधारित है कि भविष्य में इन विशाल थोरियम संसाधनों का अधिकतम उपयोग किया जा सके। आइए इस विषय पर वरिष्ठ वैज्ञानिक टीवी वेंकटेश्वरन की राय सुनते हैं।
6: लास्ट 20-30 वर्ष में एटॉमिक पावर के ऊपर एक नेगेटिव व्यू था, बट अभी पेट्रोलियम एंड कोल का ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट देख के बहुत लोग ये बोलने लगा दैट हम नया दौर पर नया दृष्टिकोण से एटॉमिक पावर को देख, तो एक एटॉमिक पावर ग्रीन एनर्जी है, इसका मतलब एक ग्लोबल वार्मिंग करने वाला चीज को नई पैदा कर। एंड हम थर्ड स्टेज दैट इज थोरियम यूज करने लगाया तो इवन एटॉमिक सेफ्टी का इश्यू बहुत इजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा। सो फ्यूचर में आई थिंक सर्टनली ये एटॉमिक पावर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इंडिया में, एंड बिकॉज वी हैव थोरियम इन ह्यूज रिजर्व, बहुत ज्यादा मात्रा में थोरियम इंडिया में है, तो फ्यूचर में एक सिग्निफिकेंट पोर्शन एटॉमिक पावर प्ले करेगा।
4: श्रोताओं, आने वाले वर्षों में ऊर्जा की मांग और अधिक बढ़ने का अनुमान है, और ऐसे समय में पश्चिम एशिया और रूस यूक्रेन जैसे वैश्विक संघर्षों ने ये दिखाया है कि ऊर्जा आपूर्ति में व्यवधान किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है, इसलिए अनेक देश परमाणु ऊर्जा को एक दीर्घकालिक विकल्प के रूप में देख रहे हैं। वर्ष 2023 में आयोजित COP28 सम्मेलन में 20 से अधिक देशों ने वर्ष 2050 तक वैश्विक परमाणु ऊर्जा क्षमता को कम से कम 3 गुना करने की प्रतिबद्धता जताई थी। भारत भी अपने परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को मजबूत बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को लगातार विस्तार दे रहा है। हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच नागरिक परमाणु सहयोग के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था को अंतिम रूप दिया गया है। इस समझौते के अंतर्गत भारत के शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के लिए ऑस्ट्रेलिया से दीर्घकालिक यूरेनियम आपूर्ति का मार्ग प्रशस्त हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के पास दुनिया के कुल यूरेनियम संसाधनों का 1/3 से अधिक हिस्सा है, ऐसे में ये व्यवस्था भारत के बढ़ते परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के लिए ईंधन सुरक्षा को मजबूत करेगी। इस व्यवस्था के अंतर्गत भारत को शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए यूरेनियम की आपूर्ति अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की निगरानी और सुरक्षा प्रावधानों के तहत की जाएगी। साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप यानी NSG की सदस्यता के लिए भारत के समर्थन को भी दोहराया है। कार्यक्रम विश्लेषण में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। इस कार्यक्रम को तैयार किया हमारे सहयोगी अनिकेत ने, प्रस्तुति सहायक है अलका सिंह।
7: परिवर्तन की शांत लहर, श्री मोहन नागर, पद्मश्री 2026। कुछ लोग बदलाव की बातें करते हैं और कुछ लोग बदलाव लाते हैं। मध्य प्रदेश के श्री मोहन नागर जी को प्रकृति और पानी से प्रेम संस्कार में मिले थे।
8: हमने अपने काम की शुरुआत शिक्षा के माध्यम से की, भारत भारती के माध्यम से 500 गांवों में एकल विद्यालय प्रारंभ किए।
7: पर असल समस्या और थी।
9: जमीन बेकार हो गई थी, खेती बंद हो गई, लोग गांव छोड़ रहे थे।
8: पदयात्रा के समय अध्ययन किया तो ध्यान में आया कि दिवाली के समय पानी की बहुत समस्या हो जाती है और लोग पलायन कर जाते हैं। पर्याप्त बारिश होने के बाद भी कुएं, बावड़ी, तालाब और स्टार डैम की कमी के कारण अधिकांश पानी बह जाता था।
7: श्री मोहन नागर जी ने नदी नालों में बहते पानी को रोकने का एक अनोखा रास्ता निकाला।
8: हमने सीमेंट की खाली बोरियों में रेत भर के नदी नालों में बोरी बंधान बनाए, जिसके कारण पानी की समस्या कम हुई और पलायन बंद हुआ।
7: इसके बाद बारी थी जमीन के जलस्तर को बढ़ाने की।
8: हमने गंगा अवतरण अभियान के माध्यम से जनभागीदारी से सोना घाटी की पहाड़ी पर 8,000 कंटू टेंच बनाए और 32,000 पौधे लगा करके ताप्ती उपन उगाए, जिसके कारण उस क्षेत्र का भूजल स्तर बढ़ गया। लैंड माफिया, रेत माफिया, इसका हमको विरोध का सामना करना पड़ा। हमने अपने काम को नहीं रोका, हमने लोगों का विश्वास जीता और धीरे धीरे जो हमारे विरोधी थे वो भी हमारे सहयोगी बन गए।
7: प्रकृति और पानी बचा के मोहन जी ने वर्तमान बचाया और अब उनका लक्ष्य था एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करना।
8: भारत भारती विद्यालय के माध्यम से हम बच्चों को शिक्षा देकर आने वाले कल के लिए एक संस्कारी, प्रतिभाशाली और उत्कृष्ट नेतृत्व क्षमता वाले युवा तैयार करते हैं। हमने बाचा गांव को ग्रामवासियों के सहयोग से एक आदर्श ग्राम के रूप में विकसित किया है। बाचा गांव शांति, प्रगति और समृद्धि का प्रतीक बन गया है।
7: लेकिन अनगिनत बदलाव लाने वाले श्री मोहन नागर जी की एक चीज कभी नहीं बदली, उनके परिवार का अटूट भरोसा। मोहन जी को कई सम्मान मिले पर उनका असली सम्मान तो भरे हुए तालाब, लहराते पहाड़ और मुस्कुराते चेहरे हैं।
8: पानी बचाना एक काम नहीं या वचन है आने वाली पीढ़ियों से, क्योंकि जल है तो कल है।
7: श्री मोहन नागर, पद्मश्री 2026।
3: आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति विश्लेषण।
10: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम विश्लेषण के नए अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं कनकलता। श्रोताओं, भारत की समृद्ध हथकरघा परंपरा, बुनकरों की अद्भुत कला और उनके अमूल्य योगदान को सम्मानित करते हुए आज देश 12वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मना रहा है। नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज वर्ष 2025 के 3 संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और 19 राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर 4 स्मारक डाक टिकट जारी किए गए, 2 विशेष प्रकाशनों का विमोचन हुआ और पुरस्कार विजेता उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। आज के कार्यक्रम में जानेंगे कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का महत्व क्या है, इस वर्ष दिए गए पुरस्कार क्यों विशेष हैं, सरकार हथकरघा क्षेत्र को किस प्रकार सशक्त बना रही है और ये क्षेत्र भारत की अर्थव्यवस्था, संस्कृति तथा ग्रामीण आजीविका के लिए कितना महत्वपूर्ण है। श्रोताओं, भारत की हथकरघा परंपरा हजारों वर्ष पुरानी है। सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर आज तक भारतीय बुनकरों ने अपनी कला, कौशल और रचनात्मकता से दुनिया में अलग पहचान बनाई है। हर वर्ष 7 अगस्त को मनाया जाने वाला राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 1905 के स्वदेशी आंदोलन की याद दिलाता है, जिसने भारतीय उत्पादों और विशेष रूप से हथकरघा उद्योग को नई ऊर्जा दी थी। वर्ष 2015 से इस दिवस को राष्ट्र स्तर पर मनाया जा रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों से भारत की समृद्ध हथकरघा परंपराओं को बढ़ावा देने का आह्वान किया है।
11: मैं आज आग्रह करता हूं, 7 अगस्त हैंडलूम डे होगा, हमने उत्साह और उमंग के साथ हैंडलूम डे मनाना है। हमारा काम है आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, हमारे इन छोटे छोटे छोटे गरीब परिवारों को भी आर्थिक रूप से समृद्ध कर, आइए हम स्वयं हैंडलूम से कुछ न कुछ खरीदे, उसका एक वीडियो बनाए और देश और दुनिया में उस वीडियो को प्रचारित करें, ताकि हमारे बुनकर भाई बहनों के सामर्थ्य का परिचय दुनिया को भी हो।
10: आज भारत का हथकरघा क्षेत्र केवल सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक ही नहीं, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मजबूत आधार भी है। देश में 35 लाख से अधिक बुनकर और संबद्ध श्रमिक इस क्षेत्र से जुड़े हैं, जिनमें 72% से अधिक महिलाएं हैं। ये क्षेत्र लाखों परिवारों की आजीविका का आधार होने के साथ साथ पर्यावरण अनुकूल और टिकाऊ उत्पादन का भी उत्कृष्ट उदाहरण है। हथकरघा क्षेत्र के विकास, सरकार के विभिन्न पहलों और भविष्य की संभावनाओं पर विकास आयुक्त हथकरघा डॉक्टर एम बीना ने आकाशवाणी संवाददाता उत्पल कुमार से विशेष बातचीत की, आइए सुनते हैं।
12: डॉक्टर बीना, सरकार ने हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए क्या प्रमुख कदम उठाए हैं और अब तक इसकी मुख्य उपलब्धियां क्या रही है?
13: भारत के हथकरघा क्षेत्र के विकास के लिए नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया जा रहा है, तो इसके तहत हमारा अप्रोच है क्लस्टर बेस्ड डेवलपमेंट, क्योंकि वीवर्स जो हैं ज्यादातर एक ही इलाके में रहते हैं, तो उस पूरे इलाके को एक क्लस्टर आइडेंटिफाई करके वहाँ पर विकासशील कार्यक्रम और योजनाएं हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो उसमें दो तरह की योजनाएं हैं। एक तो है स्मॉल क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, जहां 500 लगभग वीवर्स जहां रहते हैं तो वहां पे हम ये योजना चलाते हैं। 2 करोड़ तक उसका हम सहायता देते हैं। इसमें हम लूम्स, सोलर लाइटिंग, वर्कशेड वगैरह का हम सपोर्ट देते हैं। इसके अलावा क्लस्टर में जो एक क्लस्टर डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव होगा जब तक ये क्लस्टर कार्यक्रम चलाया जाएगा, और एक क्लस्टर डिजाइनर भी रहेगा ताकि वीवर्स को नए डिजाइन से भी वो उनको अवगत किया जाएगा। दूसरा हमारे मेगा क्लस्टर्स, माने जो बड़े क्लस्टर्स हैं जहां 10,000 से ऊपर वीवर्स है, तो वहां पे मेगा क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, तो 30 करोड़ तक उसका हम असिस्टेंस देते हैं। वो राज्यों के साझेदारी से ये कार्यक्रम चलाया जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे सपोर्ट हैं, जैसे कि स्किलिंग सपोर्ट। देखो, वीवर को नए वीविंग टेक्निक्स के बारे में, नए डिजाइन्स के बारे में वगैरह के लिए हम समर स्कीम के तहत उनको ट्रेनिंग दिया जाता है, और उनको डिजाइन सपोर्ट, प्रोडक्ट नया करने के लिए भी उनको सपोर्ट देने के लिए डिजाइन रिसोर्स सेंटर्स भी बनाया गया है।
12: हथकरघा बुनकरों की आजीविका में सुधार लाने में सरकार की कौन सी योजनाएं सबसे अधिक प्रभावी रही है?
13: बुनकर की आय को बढ़ाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है उनका जो रॉ मटेरियल है, सूता जो है, उसमें हम सब्सिडी देते हैं। तो अगर आप नेचुरल फाइबर जैसे कि कॉटन हो गया, लिनन हो गया, या फिर सिल्क हो गया, या वूल हो गया, तो उसमें हम 15% हम प्राइस सब्सिडी देते हैं, और जो भी अगर इसके अलावा जो नॉट नेचुरल फाइबर्स है उनके लिए हम ट्रांसपोर्ट सब्सिडी भी देते हैं। तो इस तरह से रॉ मटेरियल का कॉस्ट में हम कमी लेके आते हैं। दूसरा, वीवर को मुद्रा लोन का भी फैसिलिटी है, और जब प्रोडक्ट बन जाए तब उनको वीवर को चाहिए मार्केटिंग सपोर्ट, तो उसके लिए जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर और नेशनल स्तर पर बुनकर मेले लगाए जाते हैं।
12: डॉक्टर बीना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
10: श्रोताओं, राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार केवल उत्कृष्ट बुनाई के लिए नहीं, बल्कि नवाचार, डिजाइन विकास, विपणन, स्टार्टअप, उत्पादक कंपनियों और पारंपरिक शिल्प के संरक्षण जैसे विविध क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए भी दिए जाते हैं। संत कबीर हथकरघा पुरस्कार देश का सर्वोच्च सम्मान है, जो जीवन भर के उत्कृष्ट योगदान और पारंपरिक बुनाई को संरक्षित रखने वाले बुनकरों को दिया जाता है। वही राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार उन बुनकरों और अन्य हितधारकों को सम्मानित करता है जिन्होंने परंपरा और आधुनिक तकनीक के संतुलित प्रयोग से गुणवत्ता और रचनात्मकता का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया है। इस वर्ष के पुरस्कार विजेताओं में जम्मू कश्मीर के मंजूर अहमद हाजाम और फैयाज अहमद वानी भी शामिल हैं, जिन्हें चंदर कानी शॉल की उत्कृष्ट बुनाई के लिए राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आइए सुनते हैं पुरस्कार मिलने के बाद उन्होंने क्या कहा।
14: मैं फयाज अहमद वानी और मेरे साथ है मंजूर अहमद हजाम। हम कानी हमा बड़गाम के रहने वाले हैं। हम बहुत ही खुश हैं और अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करते हैं, और ये लम्हा हमारे लिए इज्जत और फख्र का दिन है, और हम ये अवार्ड उन कानी हमा के बुजुर्गों को डेडिकेट करते हैं जिन्होंने इस फन को नस्ल दर नस्ल हम तक पहुँचाया। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी शुक्रगुजार है कि उन्होंने हमारे गांव टूरिज्म विलेज और हैंडलूम विलेज करार देकर करोड़ों रुपयों की मावनत की। हम उनके भी बहुत ही आभारी हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जिसने हमें इस एजाज से नवाजा।
10: इसी तरह ओडिशा के प्रफुल्ल कुमार साहू को पारंपरिक जगतपुर साड़ी की उत्कृष्ट बुनाई के लिए राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान किया गया। पुरस्कार मिलने के बाद उन्होंने भी आकाशवाणी से अपने अनुभव साझा किए।
15: मैं प्रफुल्ल कुमार साहू फ्रॉम ओडिशा जगतसिंहपुर। आज मेरे लिए बहुत गर्व और भावुकता का क्षण है। मुझे 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर माननीय राष्ट्रपति जी के करकमलों से नेशनल हैंडलूम अवार्ड प्राप्त करने के सौभाग्य मिला है। ये सम्मान सिर्फ मेरा नहीं बल्कि ओडिशा के जगतसिंहपुर जिलों के सभी बुनाकर और हमारी समृद्ध हथकरघा परम्परा का सम्मान है। मैं भारत सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स डेवलपमेंट कमिश्नर हैंडलूम, ओडिशा सरकार, वीवर सर्विस सेंटर, नेताजी तंतुबाई सहयोग समिति के सदस्य, बॉयनिकाओ और सभ्य संस्थाओं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने हम जैसे बुनकर को प्रोत्साहन दिया। मैं इसी सम्मान को अपने परिवार, अपने गुरुजन और सभी साथी बुनकर को समर्पित करता हूँ।
10: श्रोताओं, इन पुरस्कार विजेताओं की बातें ये बताती हैं कि भारतीय हथकरघा केवल एक व्यवसाय नहीं बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही सांस्कृतिक विरासत है, जिसे आज भी पूरे समर्पण के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में भारतीय हथकरघा क्षेत्र ने तेजी से नए आयाम हासिल किए हैं। वर्ष 2025-26 में भारत का हथकरघा निर्यात लगभग 1,331 करोड़ रुपए रहा। संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, ब्रिटेन और स्पेन जैसे देश इसके प्रमुख बाजार हैं। सरकार ने हाल के वर्षों में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। 36 हस्तशिल्प वस्तुओं पर GST घटाकर 5% किया गया, हथकरघा क्लस्टरों के आधुनिकीकरण पर जोर दिया गया, राष्ट्रीय फाइबर योजना तथा राष्ट्रीय हथकरघा एवं हस्तशिल्प कार्यक्रम जैसी नई पहलें शुरू की गयी। डिजाइन, नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए हैंडलूम हैकाथॉन 2026 जैसी पहलें भी की जा रही हैं। भारत की हथकरघा परंपरा केवल अतीत की धरोहर नहीं बल्कि भविष्य की संभावनाओं से भी जुड़ी हुई है। आज भारतीय हथकरघा फैशन, डिजाइन, निर्यात, डिजिटल विपणन और सतत विकास के क्षेत्र में नई पहचान बना रहा है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस हमें उन लाखों बुनकरों के श्रम, समर्पण और सृजनशीलता का सम्मान करने का अवसर देता है, जिनके हाथों से भारत की सांस्कृतिक पहचान दुनिया तक पहुँचती है। इसी के साथ कार्यक्रम विश्लेषण में आज के लिए बस इतना ही। इस कार्यक्रम को तैयार किया हमारे सहयोगी उत्पल कुमार ने, तकनीकी सहयोग अरुणदीप का था। नमस्कार।
16: वो खिलाड़ी जिसने जानवरों की भलाई की राह चुनी, डॉक्टर पुण्यमूर्ति नटेशन, पद्मश्री 2026। तंजावुर जिले के एक सुंदर गांव बल्लम में 1960 के दशक में एक युवा लड़का किसान परिवार में पला बढ़ा। उसे खेल बहुत पसंद थे। उसका सपना एथलेटिक्स और हॉकी का स्टार खिलाड़ी बनना था। वो अपने परिवार में कॉलेज जाने वाले पहले व्यक्ति थे। वो अपने दादा के बहुत प्रिय थे।
17: कॉलेज की पढ़ाई के लिए जब मैं अपने दादाजी के पास आशीर्वाद लेने गया तो उन्होंने कहा, कुछ ऐसा सीखो जो किसानों के काम आए। वह मेरी जिंदगी का निर्णायक मोड़ था। तब मैं सिर्फ BSc एग्रीकल्चर के बारे में जानता था, मुझे वेटनरी साइंस की जानकारी नहीं थी। मेरे दोस्त और सहपाठी वीर पांडियन ने मुझे वेटनरी साइंस से परिचित कराया।
16: युवा पुण्यमूर्ति 70 के दशक के मध्य में मद्रास वेटनरी कॉलेज पहुँचे। वो न केवल पढ़ाई में होशियार थे बल्कि वो लगातार 2 साल तक कॉलेज एथलेटिक्स चैंपियन भी रहे। कुछ वर्षों बाद वे इरोड के कृषि विज्ञान केंद्र में कार्यरत हुए। वहीं एक घटना ने उनकी सोच को नई दिशा दी।
17: मैं इरोड में एक युगल द्वारा चलाए जा रहे पोल्ट्री फार्म पर गया। मुर्गियां स्वस्थ दिख रही थी, अच्छा खा रही थी, फिर भी अंडे नहीं दे पा रही थी। रिकॉर्ड से पता चला कि उन्हें कॉक्सिडियोसिस यानी परजीवी रोग के लिए सल्फानामाइड दवा 10 हफ्ते तक दी गई थी। इसका दीर्घकालीन असर उनके प्रजनन पर पड़ा और वे अंडे नहीं दे पाई। अगर हमें भविष्य के लिए एंटीबायोटिक्स बचानी है तो उनका समझदारी से उपयोग करना चाहिए या फिर उनके विकल्प खोजने होंगे। मुझे ये एहसास हुआ।
16: पौधों के औषधीय गुणों की मदद से डॉक्टर पुण्यमूर्ति ने पशु रोगों के उपचार और रोकथाम में औषधीय पौधों का उपयोग किया। इस प्रकार उन्होंने एथनो वेटरिनरी को विकसित और प्रमाणित किया, प्राकृतिक तत्वों पर आधारित पशु चिकित्सा पद्धति।
17: पशुपालकों के लिए मास्टाइटिस एक गंभीर बीमारी है। इसके उपचार के लिए 1 चम्मच एलोवेरा, 2 मुट्ठी हल्दी और थोड़ा सा चूना मिलाकर दवाओं के बिना सफल उपचार किया जा सकता है। ये पारंपरिक सिद्ध आधारित इलाज के असर को दिखाता है।
16: उनके इलाज से लाखों गायों और किसानों को फायदा हुआ। उन्होंने जानवरों की 34 बीमारियों के लिए 5 आसान इलाज विकसित किए।
17: एक जिम्मेदार पशु चिकित्सक के रूप में जितना जरूरी स्वस्थ दूध, अंडे और मांस मुहैया कराना है, उतना ही जरूरी गायों का स्वस्थ गोबर और मूत्र भी है, ताकि मिट्टी का स्वास्थ्य बना रहे। भविष्य के लिए एंटीबायोटिक्स को बचाए रखना भी जरूरी है, जो हम एथनोवेटनरी चिकित्सा के जरिए कर रहे हैं।
16: डॉक्टर पुण्यमूर्ति की सभी खोजें सबके लिए निःशुल्क हैं। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने उनके काम को लाखों किसान तक पहुँचाया, जिससे उन्हें बहुत फायदा मिला।
17: मैं दिल से खिलाड़ी हूँ, इसलिए अपने काम से पूरा प्यार करता हूँ।
16: डॉक्टर पुण्यमूर्ति नटेशन, पद्मश्री 2026।
18: स्वच्छ देश के लिए अनमोल संदेश, सरदार इंदरजीत सिंह सिद्धू, पद्मश्री 2026।

0: मैंने आज से 500-600 साल पहले एनवायरमेंट को साफ रखने के लिए बोला था, जब पवन गुरु पाणी पिता माता तर्थ महत, अपनी माता पर कुछ गंदगी फैले तो सबसे बुरा इंसान हमसे कोई नहीं। शर्म का कम है कूड़ा फैलाना, इज्जत मान का कम है कूड़ा संभालना, और लोग कूड़ा फैलाने से शर्म नहीं करते, सफाई करने से शर्म करते।
1: ये है पंजाब पुलिस के रिटायर्ड DIG इंदरजीत सिंह सिद्धू, जिन्हें चंडीगढ़ के लोग रोज सड़कों की खुद सफाई करते देखते हैं। 6 जून 1938 को पंजाब के संगरूर जिले के एक फौजी परिवार में जन्मे इंदरजीत सिंह सिद्धू को विरासत में मिले थे देश प्रेम और अनुशासन। एक मेधावी छात्र रहे इंदरजीत सिंह सिद्धू 1961 में पंजाब पुलिस में शामिल हो गए। अपनी कर्तव्य निष्ठा एवं निस्वार्थ सेवा से इन्होंने राष्ट्रपति पुलिस मेडल भी प्राप्त किया। ये जहाँ भी जाते सफाई की जिम्मेदारी सहजता से अपने कंधों पर ले लेते।
2: तो शादियों में जाना तो कभी वो डिस्पोजेबल कप्स में लोग बस पीपी के ऐसे ही फेंक देते थे, यूजुअली उसको बोलते थे कि इसको उठा के डस्टबिन में फेंको, भाई यहाँ पे क्यों रखा है। दैट इज हिज नेचर, शुरू से ऐसे ही है।
1: 1996 में सेवानिवृत्ति के बाद इंदरजीत सिंह सिद्धू चंडीगढ़ आ गए। इंदरजीत सिंह सिद्धू ने देखा कि एक समय में देश का सबसे सुनियोजित माना जाने वाला शहर स्वच्छता में भारत के सर्वोच्च 10 शहरों में भी नहीं गिना जा रहा है। उनके लिए ये बेहद खेदपूर्ण था, क्योंकि उन्होंने चंडीगढ़ में घर नहीं बनाया था, उन्होंने चंडीगढ़ को घर बनाया था। इंदरजीत सिंह सिद्धू ने बेझिझक रास्तों की गंदगी को अकेले ही नियमित रूप से साफ करना शुरू कर दिया।
0: धीरे धीरे यह बात बढ़ती गई, कूड़ा उठाने के लिए ज्यादा टाइम लगा लिया, शहर के लिए कम। अल्टीमेटली हुआ कि मैंने शहर तो बिल्कुल बंद कर दी, सिर्फ कूड़ा उठाना याद रह गया।
1: एक रिटायर्ड DIG को सड़कों पर खुद सफाई करते देखना लोगों को अटपटा लगा, किसी ने उपहास किया तो कोई चौंक गया।
2: मेरे दोस्त हैं अभी आते हैं मिलने के लिए, तो वो कहते हैं कि अगर हम तुम्हारे नेबरहुड में ना हो तो हम तो इधर ही फेंक दें। अब हमें जो लगता है कि आपके फादर उठा रहे हैं, तो हम इधर फेंकते नहीं।
1: इन्हें कूड़ा उठाते देख हाथों में दस्ताने पहनने की सलाह देने तो कई आए, मगर हाथ बटाने के लिए कोई नहीं आया। पर ये बिना किसी दिखावे या हिचकिचाहट के सफाई को अपना कर्तव्य समझ कर करते रहे हैं।
0: मैं ये सड़कें और ये पार्क, ये पब्लिक प्लेसेस साफ करने की कोशिश करता हूँ, ताकि बाकी लोग भी देख लें कि भाई ये खाली हाथ से काम कर रहा है, हम भी लग जाएं इनके साथ और पब्लिक प्लेसेस को साफ कर दें।
2: लेकिन जब पद्मश्री मिला है तो वही लोग जो मुझे बोलते थे कि ये क्या कर रहा है, या व्हाट इज योर डैड डूइंग, उनका एटीट्यूड में चेंज मैंने देखा है। मैं आई एम रियली प्राउड ऑफ हिम।

नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है दीक्षा। मैं आज यहाँ पे आपको एक हेल्दी फूड टिप बताऊंगी। एक्चुअली एक टिप है, अगर आपके बच्चे या कोई भी फैमिली में ड्राई फ्रूट्स जैसे कि बादाम, अखरोट, काजू, किशमिश नहीं खाता, एलर्जी है तो अलग बात है, लेकिन अगर वैसे ही नहीं खाता कि ऐसे खाने में मजा नहीं आता, तो फिर एक टिप है कि आप उन्हें कैसे खिला सकते हैं। जैसे बड़े बूढ़े हैं, आप उन्हें हलवा, पिन्नी या लड्डू किसी चीज में बना के खिला देते हैं। उससे भी अच्छा है डार्क चॉकलेट। डार्क चॉकलेट मतलब जो गहरे रंग की चॉकलेट होती है, डार्क वाली, सफेद वाली नहीं। हम डार्क चॉकलेट में बादाम, किशमिश, अलग अलग चीजें डाल के उसकी चॉकलेटें बना के फ्रिज में रख सकते हैं, और जब कोई मांगे कि हमें चॉकलेट दे दो, तो हम उसे नट्स वाली चॉकलेट देंगे। बादाम, किशमिश, काजू, अखरोट, ये सब कुछ डाल के। लेकिन हाँ, एक चॉकलेट में ये सब कुछ एक साथ नहीं डालना। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा दिन के 5 बादाम खाए, तो 2 चॉकलेट में वो 5 बादाम डिवाइड करके डाल दीजिए, और अपने बच्चे को वो चॉकलेट, 2 चॉकलेट दे दीजिए दिन के। उसका काम हो जाएगा, आपका काम भी हो गया और उसे भी कुछ स्वाद मिल गया। तो कैसा लगा? आज के लिए बस यही फूड टिप है। बाकी जाने के लिए स्टे ट्यून्ड टू ओनली वन एंड ओनली योर ओन रेडियो, रेडियो बाय रीड। सी यू गाइस।

0: विज्ञान वाणी के विज्ञान वार्ता प्रसारण में आपका स्वागत है।
1: प्राचीन भारत में प्लास्टिक सर्जरी सन 1769 और 1799 के बीच 30 साल की अवधि में ब्रिटिश सेना और हैदर अली तथा उसके बेटे टीपू सुल्तान के बीच 4 मैसूर युद्ध लड़े गए। इन युद्धों के दौरान अंग्रेजों को 2 अत्यंत महत्वपूर्ण भारतीय तकनीकों रॉकेट निर्माण और प्लास्टिक सर्जरी के बारे में जानकारी मिली। बाद में इन दोनों ही भारतीय तकनीकों का पहले इंग्लैंड में और तदनंतर यूरोप के अन्य देशों में तेजी से विकास हुआ। अंग्रेजों ने भारतीयों से किस तरह प्लास्टिक सर्जरी की विद्या सीखी, ये एक दिलचस्प दास्तान है। टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच तीसरा मैसूर युद्ध एक संधि के द्वारा समाप्त हो चुका था। उसके कुछ दिन बाद की ही घटना है। अंग्रेजों की खिदमत करने वाला कवसाजी नाम का एक मराठा गाड़ीवान और 4 तिलंगे मैसूर राज की सीमा में दाखिल हुए तो टीपू सुल्तान के सिपाहियों ने उन्हें पकड़ लिया और उनके हाथ नाक कान सभी कुछ काट दिए। फिर उन्हें अंग्रेज कमांडर के पास वापस भेज दिया गया। उसके कुछ दिन बाद की बात है, वहां अंग्रेज कमांडर एक भारतीय व्यापारी से कोई और सौदा तय कर रहा था तो उसने देखा कि व्यापारी की नाक कुछ अजीब तरह की है और उसके ललाट पर जख्म के निशान भी हैं। कमांडर के पूछने पर व्यापारी ने बताया कि परस्त्री गमन के अपराध के दंड स्वरूप उसकी नाक कान काट दी गई थी और कुम्हार जाति के एक मराठा वैद्य से उसने नाक कान बनवा लिया था। अंग्रेज कमांडर ने उस वैद्य को बुला लिया और उससे कवसाजी तथा 4 तिलंगों की नाक की प्लास्टिक शल्यक्रिया करने को कहा। शल्यक्रिया पुणे के पास एक स्थान पर हुई। उस समय 2 अंग्रेज डॉक्टर थॉमस क्रूसो और जेम्स फिंडले वहां मौजूद थे। कुछ दिन बाद उस सनसनीखेज शल्यक्रिया का सचित्र विवरण मद्रास गजट में प्रकाशित हुआ। फिर लंदन में प्रकाशित होने वाला जेंटलमैन मैगजीन नामक पत्रिका के अक्टूबर 1794 के अंक में वो विवरण पुनः मुद्रित हुआ। 200 से भी कुछ अधिक साल पहले भारत में की गई नाक की प्लास्टिक सर्जरी के उस विवरण की प्रमुख जानकारी को यहाँ प्रस्तुत करना उपयोगी होगा। सर्वप्रथम नाक का सही माप लेने के लिए मोम की एक परत तैयार की गई, फिर ललाट से उसी आकार की त्वचा काटी गई पर आंखों के बीच थोड़ा हिस्सा रक्त संचार के लिए ललाट से जुड़ा रहने दिया गया। उसके बाद नासा छिद्रों के लिए ठीक से स्थान बनाकर नाक की चतुर्दिक सीमा की त्वचा में चीरा लगाया गया। फिर ललाट से काटी गई त्वचा को आधा मोड़कर नीचे नाक पर लाया गया और चीरे से फंसा दिया गया। फिर कपड़े की पट्टियों पर भीगे कत्थे का लेप लगाकर उसकी 4-5 परतें त्वचा की जोड़ पर लगा दी गईं। जख्म को भरने के लिए कत्थे के उस सीमेंट के अलावा और किसी चीज का इस्तेमाल नहीं किया गया। 4 दिन बाद उन्हें हटाकर घी में डुबोई हुई पट्टियां जख्म पर लगाई गईं। 20वें दिन ललाट से जुड़ी हुई त्वचा को काट दिया गया। इस शल्यक्रिया के बाद मरीज को 5-6 दिन तक पीठ के बल बैठाया गया। नासा छिद्र पर्याप्त खुले रहे इसीलिए 10वें दिन उसमें मुलायम कपड़े के टुकड़े रखे गए। अंत में इस शल्यक्रिया के विवरण में एक टिप्पणी है, नाक की ये प्लास्टिक शल्यक्रिया हमेशा सफल रही है। ये बनावटी नाक मजबूत होती है और काफी हद तक कुदरती नाक की तरह दिखाई देती है। कुछ अरसे बाद ललाट का दाग भी काफी हद तक मिट गया है। भारत में ही की गई नाक की प्लास्टिक सर्जरी का ये विवरण लंदन में प्रकाशित हुआ तो इसे पढ़कर वहां के अनेक सर्जन चकित रह गए। उस सचित्र विवरण ने 30 साल के तरुण सर्जन जोसेफ कॉन्स्टेन कारपूर को सबसे अधिक प्रभावित किया। उससे इस प्रकार की शल्यक्रिया के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त की। फिर उसने साहस करके लंदन में 23 अक्टूबर 1814 को नासिक संस्थान की ठीक वैसी ही शल्यक्रिया की जैसी भारत में कवसाजी और तिलंगों पर की गई थी। उसके साथ ही यूरोप में आधुनिक प्लास्टिक सर्जरी का युग शुरू हुआ। लंदन में नाक संस्थान की वह पहली शल्यक्रिया करने में कारपूर को कुल 37 मिनट का समय लगा। उस पहली सफलता के बाद कारपुए ने जल्दी ही नाक संस्थान की दूसरी शल्य क्रिया की भी, जिससे उसे खूब प्रसिद्धि मिली। भारतीय नाक यूरोप में मशहूर हो गई। समीप के अंग से त्वचा लेकर अंग भंग के स्थान पर जोड़ी जाती है, तो उस विधि को आज भी भारतीय प्लास्टिक सर्जरी के नाम से जाना जाता है। कारपुए ने नासिका संधान के अपने अनुभवों के आधार पर सन 1816 में एक छोटी पुस्तक भी प्रकाशित की थी। उससे प्रभावित होकर जर्मन सर्जन ग्रोएफ ने हाथ की त्वचा लेकर नासिका संधान की प्लास्टिक शल्यक्रिया शुरू कर दी थी। इस जानकारी से सहज स्पष्ट हो जाता है कि आज बहुत अधिक इस्तेमाल होने वाला संश्लेषित प्लास्टिक पदार्थ से प्लास्टिक सर्जरी का कोई सारोकार नहीं है। प्लास्टिक शब्द यूनानी भाषा के प्लास्टिकोस शब्द से बना है, जिसका अर्थ है सांचा बनाना या आकार देना। प्लास्टिक शल्यक्रिया में शरीर के खोए हुए अंग को पुनः स्थापित किया जाता है अथवा विरूपता या विकृत अंग को दुरुस्त किया जाता है। हालांकि प्लास्टिक शल्यक्रिया एक बहुत पुरानी तकनीक है, परंतु तेजी से इसका विकास प्रथम विश्व युद्ध के बाद ही हुआ है। प्राचीन यूरोप से प्लास्टिक सर्जरी के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। बाइबल में इसका कोई उल्लेख नहीं है। होमर ने अपने महाकाव्यों में युद्ध जनित अनेक जख्मों और उनके उपचारों की जानकारी भी दी है, परंतु अंग भंग कहकर प्लास्टिक सर्जरी का कोई भी जिक्र नहीं है। रोमन चिकित्सक सेल्सस होंठ, कान और नाक की प्लास्टिक शल्यक्रिया उल्लेख करता है, मगर लगता है कि स्वयं उसने कोई शल्यक्रिया नहीं की थी। रोमन साम्राज्य के अवसान के बाद फिर हमें मध्ययुग तथा यूरोप से प्लास्टिक शल्यक्रिया के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिली। यूरोप में प्लास्टिक सर्जरी के उल्लेख 15वीं सदी से मिलने लग जाते हैं। दरअसल कॉफ्रे के पहले ही नासिका संधान की भारतीय विधि की जानकारी दक्षिण यूरोप के देशों में पहुंच चुकी थी। सिसली द्वीप के सर्जन ब्रांका ने 1442 ईस्वी में नासिका संधान की शल्यक्रिया की थी। उस शल्यक्रिया में उसने गाल की त्वचा का उपयोग किया था। बाद में ब्रांका के पुत्र एंटोनियो ने पिता के कार्य को जारी रखा। हाथ से त्वचा लेकर नासिका संधान की शल्यक्रिया करने वाला एंटोनियो यूरोप का पहला सर्जन था। पिता पुत्र ब्रांका के बाद 16वीं सदी के आरंभ में इटली के बोयानी परिवार ने प्लास्टिक सर्जरी का काम किया। 16वीं सदी के उत्तरार्ध में इटली के बोलोना विश्वविद्यालय में शल्य चिकित्सा के प्राध्यापक जास्पारो तागलियाकोजी ने नाक संधान के सर्जन के रूप में खूब ख्याति अर्जित की। उसने हाथ से त्वचा लेकर नाक संधान की शल्यक्रियाएं की। उसने कर्णबंध और ओष्ठबंध की शल्यक्रियाएं भी की। तागलियाकोजी ने 1597 ईस्वी की कागड़ा की प्लास्टिक सर्जरी की परंपरा के बारे में जानकारी दी है। पता चलता है कि अकबर के शासनकाल में कांगड़ा के बिधा नामक एक वैद्य ने नासिका संधान की शल्यक्रिया की थी। ईसा की 7वीं या 8वीं सदी के प्राख्यात चिकित्सक बाणभट्ट के ग्रंथ अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय में भी प्लास्टिक शल्यक्रम के बारे में जानकारी मिलती है, परंतु सबसे प्राचीन जिस भारतीय ग्रंथ में प्लास्टिक सर्जरी के बारे में विस्तृत विवरण मिलता है वो है सुश्रुत संहिता। प्राचीन भारतीय चिकित्सा ज्ञान के दो महान विश्वकोश हैं, चरक संहिता और सुश्रुत संहिता। इसमें चरक संहिता अधिक प्रसिद्ध है और अधिक प्राचीन भी है। सुश्रुत संहिता की रचना कोई 2000 साल पहले हुई। चरक संहिता प्रमुख रूप से औषधि विज्ञान का ग्रंथ है। सुश्रुत संहिता में मुख्यतः शल्य चिकित्सा की विशद जानकारी दी गई है। प्लास्टिक सर्जरी के बारे में एक ग्रंथ प्रकाशित किया गया था, उसे आधुनिक प्लास्टिक सर्जरी का पहला वैज्ञानिक ग्रंथ भी माना जाता है। हाथ से त्वचा लेकर तागलियाकोजी ने नासिका संबंध की जिस विधि का विकास किया था वो अब इटालवी विधि के नाम से जानी जाती है। तागलियाकोजी ने चिकित्सा विज्ञान की अमूल्य सेवा की थी, फिर भी उसे ईसाई चर्च का कोपभाजन बनना पड़ा। उसे धर्म से बहिष्कृत कर दिया गया और उसके शव को चर्च के कब्रिस्तान से निकालकर दूसरे सामान्य स्थान पर गड़वा दिया गया। मगर बोलोना के नागरिकों के दिल में अपने इस देशवासी के लिए अगाध श्रद्धा थी। उन्होंने तागलियाकोजी की स्मृति में एक मूर्ति स्मारक खड़ा किया। उस मूर्ति के एक हाथ में नाग है। ताग्लियाकोजी के बाद उसके शिष्य प्लास्टिक शल्यक्रियाएं करते रहे।

0: मास्टर जी।
1: नमस्ते नमस्ते बच्चों। अरे कामाक्षी, मनीषा आज भी नहीं आई।
2: मास्टर जी, मनीषा की तबीयत खराब है और 2-3 हफ्तों से उसको खांसी भी हो रही है।
1: क्या उसके मम्मी पापा उसका इलाज करवा रहे हैं?
2: मास्टर जी, मुझे नहीं पता।
1: तो ठीक है, स्कूल के बाद मैं तुम्हारे साथ उसके घर चलूंगा।
0: कामाक्षी, तुम मास्टर जी के साथ?
2: हाँ मनीषा, तुमसे मास्टर जी मिलने आए हैं।
1: मनीषा तुम कैसी हो?
0: मास्टर जी मैं ठीक हूँ।
3: क्या करूँ मास्टर जी, इसकी खांसी बंद ही नहीं हो रही। मैंने अदरक और शहद का घोल इसे बार बार पिलाया है पर फिर भी कोई असर नहीं।
1: क्या आपको लगता है कि घरेलू नुस्खों से इसका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा? देखो सुलेखा बहन, आप मनीषा को किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले जाओ, क्योंकि खांसी अगर 2 या 3 सप्ताह से अधिक हो तो वो टीबी का खतरा हो सकता है।
3: हाँ आपने सही कहा, मैं आज ही इसे किसी डॉक्टर के पास ले जाती हूँ।
4: रीड इंडिया प्रस्तुत करता है विज्ञान प्रसार द्वारा निर्मित विज्ञान और तकनीकी पर आधारित कार्यक्रम। आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम।

0: हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू जीते रहो वंस अगेन।
1: किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, जीना इसी का नाम
0: इसे
1: है।
0: क्या हुआ है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना बबलू?
1: ऑफ कोर्स, मुझे क्या हुआ है। एनीवेज, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई मिस कोकिला एमबीबीएस। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ?
0: तुम्हें तो रातों रात ड्रास्टिक चेंजेस आ गए हैं।
1: हाँ, एक्चुअली लाइफ में पहली बार मुझे एहसास हुआ है कि किसी के काम आने में कितना आत्मिक सुख मिलता है।
0: अच्छा,
1: एक्चुअली मेरे एक दोस्त को बहुत जरूरी काम से अचानक शहर से बाहर जाना पड़ गया, तो पूरे एक हफ्ते मुझे उसकी बूढ़ी दादी की देखभाल करने का मौका मिल गया। अभी मैं उन्हीं के पास से आ रहा हूँ। तुम्हें तो पता है ना कोकिला, वृद्धावस्था में पहुंच चुके लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? गठिया। दादी जी भी इसी की मरीज हैं।
0: ओ, तो ये बात है। और अगर मैं ठीक गेस कर रही हूं तो आज शायद तुम गठिया यानी आर्थराइटिस के बारे में विस्तार से जानना चाहोगे, राइट?
1: ऑफ कोर्स।
2: हर रोज ना जाने कितनी बार आप झुकते हैं, कूदते हैं, दौड़ते हैं, नाचते हैं। आप कभी नहीं सोचते आप ये सब इतनी आसानी से कैसे कर पाते हैं। सच मानिए, जब सब कुछ ठीक से चल रहा होता है तो आप चाहे जैसे अपने शरीर का इस्तेमाल करते रहते हैं, और इस लापरवाही का नतीजा निकलता है उफ, आह, आउच। हमें ये मोबिलिटी यानी गतिशीलता और फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है जॉइंट से। चलिए एक बड़ी मशीन के जरिए समझते हैं हमारे जॉइंट्स यानी जोड़ों की बनावट।
3: बड़ी बड़ी मशीनें भी हमारे जॉइंट्स की नकल करके बनाई गई हैं। मशीन ठीक से काम करे इसलिए इसकी रेगुलर ऑयलिंग की जाती है। ऑयलिंग नहीं की तो मशीन के जॉइंट्स घिस जाएंगे और काम ठप हो जाएगा।
2: ग्रीस के इस्तेमाल से मशीन के जॉइंट स्मूथली काम करते हैं। इस मशीन की तरह हमारे जॉइंट्स को भी ऑयलिंग की जरूरत पड़ती है, और ये ऑयलिंग हमारे जॉइंट्स में नेचुरली होती है।
3: हमारे शरीर के जॉइंट्स को मुख्यतः दो वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला वर्ग है बॉल और सॉकेट जॉइंट्स, जैसे शोल्डर और हिप जॉइंट्स। दूसरा वर्ग है हिंज जॉइंट्स, जिनमें शामिल हैं एल्बो, नी और एंकल जॉइंट्स। बॉल और सॉकेट जॉइंट्स में जहां रेंज ऑफ मूवमेंट अधिक होती है, वहीं हिंज जॉइंट्स में रेंज ऑफ मूवमेंट लिमिटेड है।
2: इसको समझने से पहले आइए समझते हैं हमारे जॉइंट्स की संरचना। हमारे शरीर में दो हड्डियां जहां एक दूसरे से जुड़ती हैं, उनके जॉइंट्स पर एक नाजुक कवर होता है जिसे कार्टिलेज कहते हैं। इस गद्देदार कार्टिलेज से जॉइंट्स का लचीलापन भी बना रहता है, जिससे जोड़ों को मोड़ने में आसानी होती है। हड्डियों का जोड़ एक कैप्सूल जैसी संरचना में सुरक्षित रहता है। इस कैप्सूल पर पतली टिश्यू की परतें होती हैं, जिसे साइनोवियल मेम्ब्रेन कहते हैं। जॉइंट्स में ऑयलिंग का काम भी ये साइनोवियल मेम्ब्रेन ही करते हैं। दरअसल साइनोवियल मेम्ब्रेन एक चिकना फ्लूइड पैदा करते हैं जो जॉइंट्स में ऑयलिंग का काम करता है और हड्डियों को रगड़ से बचाता है, और इसके साथ साथ कार्टिलेज और हड्डी को नरिशमेंट यानी पोषण देता है। अगर किसी वजह से कार्टिलेज घिस जाए या उसमें किसी तरह का बदलाव आ जाए तो जोड़ों में स्टिफनेस यानी अकड़न और इन्फ्लेमेशन यानी सूजन होने लगती है, जिसे हम आर्थराइटिस कहते हैं। जोड़ों को कई वजहों से नुकसान पहुंच सकता है और इन्फ्लेमेशन हो सकती है। कई बार आर्थराइटिस से जॉइंट्स की शेप ही बदल जाती है, हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं और इससे बेहद दर्द भी होता है। गठिया या आर्थराइटिस का शाब्दिक अर्थ है जोड़ों की सूजन या इन्फ्लेमेशन। बुढ़ापे की दहलीज पर तो आर्थराइटिस जैसे हमारा इंतजार करते मिलती है। उम्र के साथ शरीर जर्जर होता जाता है, जोड़ों के सिरों की कार्टिलेज भी घिस जाती है। कार्टिलेज के घिसने से जॉइंट्स के जोड़ों में रगड़ से दर्द होता है। संतुलित आहार न लेने से शरीर में कैल्शियम की कमी से बोन की डेंसिटी यानी घनत्व कम हो जाता है और हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। फैटी फूड खाने से शरीर का वजन बढ़ने लगता है, मतलब जोड़ों को ज्यादा और ज्यादा बोझ उठाना पड़ता है, और एक वक्त आता है जब शरीर में हड्डियों के ये जोड़ जवाब देने लगते हैं। इसके अलावा कुछ और किस्म की आर्थराइटिस भी हैं, जो किसी भी उम्र के लोगों में पाई जा सकती हैं।

0: वेलकम बैक। एपिसोड के इस भाग में हम बात करेंगे आर्थराइटिस के टाइप्स की। हालांकि आर्थराइटिस बहुत से रूपों में शरीर के किसी भी अंग को प्रभावित कर सकता है, लेकिन
1: कोकिला, मुझे अब तक एक बात समझ में नहीं आई, आखिर आर्थराइटिस होने की वजह क्या है?
0: बिल्कुल ठीक पॉइंट पर आए तुम बबलू। एक्चुअली एजिंग आर्थराइटिस की एक बहुत बड़ी वजह है, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत से ऐसे रीजंस हैं जो आर्थराइटिस जैसी गंभीर बीमारी की बड़ी वजह बन सकते हैं।
2: आर्थराइटिस के ज्यादातर मामले क्रॉनिक होते हैं, यानी लंबे समय तक इस बीमारी से जंग लड़नी पड़ती है। जोड़ों में दो हफ्ते से ज्यादा दर्द या स्टिफनेस और सूजन का मतलब है जल्द से जल्द डॉक्टर की सलाह लेने की चेतावनी। हो सकता है आप आर्थराइटिस के निशाने पर हों। पुरुषों के मुकाबले महिलाएं इस बीमारी की ज्यादा शिकार होती हैं। महिलाओं में ये बीमारी पुरुषों के मुकाबले 2 से 3 गुना ज्यादा पाई जाती है। समय पर इलाज से इस बीमारी पर काफी हद तक काबू पाया जा सकता है। इस बीमारी के लक्षण कभी तो अचानक सामने आते हैं और कई बार सिम्टम्स लंबे समय में धीरे धीरे दिखाई देते हैं। आर्थराइटिस के प्रमुख लक्षण हैं जोड़ों में दर्द, सूजन और अकड़न। लेकिन सिर्फ डॉक्टर ही तय कर सकता है कि आर्थराइटिस है

बोन डेंसिटी यानी हड्डियों में मिनरल्स कम होने लगते हैं और हड्डियों का घनत्व कम हो जाता है। कार्टिलेज भी सालों के इस्तेमाल से घिसती जाती है और बची खुची कसर कमजोर मसल्स पूरी कर देते हैं। वीक मसल्स जॉइंट्स पर पड़ने वाले दबाव को ज्यादा रोक नहीं पाते, जिससे कार्टिलेज रगड़ खाते हैं और घिस जाते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस में शरीर के बड़े जॉइंट्स जैसे कंधे का जॉइंट, घुटनों का जॉइंट, हिप जॉइंट और रीढ़ की हड्डी पर यह बीमारी ज्यादातर असर डालती है। लगातार हड्डियों में रगड़ होने से जोड़ों में टूट फूट या रिसाव भी होने लगता है। कभी कभी तो कार्टिलेज असामान्य रूप से हड्डियों के किनारे पर बढ़ जाता है, जिसे बोनी स्पर्स कहते हैं। और अब बात करते हैं गाउटी अर्थराइटिस की। ये अर्थराइटिस हमारे मेटाबॉलिज्म में होने वाली गड़बड़ी से पैदा होती है। मेटाबॉलिज्म में खराबी के चलते हमारे खून में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। ये यूरिक एसिड जब किसी जॉइंट पर जमा हो जाते हैं तो वहाँ तेज दर्द होता है। इस आर्थराइटिस का असर ज्यादातर छोटे जॉइंट्स पर जैसे पैर और हाथ के अंगूठे पर होता है। अक्सर किसी पैर के अंगूठे के जॉइंट में बहुत तेज दर्द होता है, रोगी को पसीना आता है और शिवरिंग महसूस हो सकती है। जॉइंट के ऊपर की त्वचा बाद में काफी नाजुक और लाल हो जाती है। खाने पीने की कुछ चीजों से ये बीमारी बढ़ सकती है, जैसे कि अधिक शराब पीने से गाउटी अर्थराइटिस के पेशेंट्स में बीमारी और बढ़ सकती है। अब बात करते हैं इन्फेक्टिव आर्थराइटिस की। इन्फेक्शन की वजह से जॉइंट्स में सूजन होने लगती है और इसे इन्फेक्टिव आर्थराइटिस कहते हैं। अक्सर जो जॉइंट इस बीमारी का शिकार होते हैं वहाँ पहले कभी चोट लगी होती है, जिस कारण वहाँ जर्म्स इन्फेक्शन फैलाने में कामयाब हो पाते हैं। अगर समय पर इस पर काबू ना पाया जाए तो ये बीमारी लंबे समय तक परेशान कर सकती है।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि आर्थराइटिस कितना गंभीर रूप धारण कर सकती है। आप लोगों को एक बात बता दूं, हम में से बहुत से लोग आर्थराइटिस को वृद्धावस्था में होने वाला रोग समझते हैं, जबकि ये बीमारी किसी भी उम्र के लोगों को अपनी चपेट में ले सकती है। और तो और, ये कोई एक बीमारी नहीं बल्कि 100 से अधिक बीमारियों का एक बड़ा समूह है। आइए देखते हैं क्या है आर्थराइटिस के सिम्टम्स और इस बीमारी का पता लगाने के लिए डॉक्टर्स क्या क्या फिजिकल एग्जामिनेशंस यानी डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं।
1: आर्थराइटिस का एक ऐसा प्रकार भी है जिसकी वजह हमारे इम्यून सिस्टम में आई गड़बड़ी होती है। दरअसल हमारा इम्यून सिस्टम शरीर में आने वाले किसी भी फॉरेन पार्टिकल पर हमला करता है और उसे खत्म कर हमें रोगों से बचाता है, लेकिन कई बार हमारा इम्यून सिस्टम शरीर के किसी अंग को ही फॉरेन बॉडी मानकर उस पर हमला कर देता है। इसको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहते हैं। ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जब जॉइंट्स पर असर करता है तो इसे रिमेटॉइड अर्थराइटिस कहते हैं। इम्यून सिस्टम की गड़बड़ी के बाद जॉइंट कैविटी और साइनोवियल मेम्ब्रेन में इन्फ्लेमेशन पैदा हो जाती है। जॉइंट की इन्फ्लेमेशन से दर्द होता है, अकड़न पैदा होती है और जॉइंट के आसपास का एरिया गर्म और लाल हो जाता है। जैसे जैसे रिमेटॉइड अर्थराइटिस का असर बढ़ता है, कार्टिलेज घिसती जाती है, कभी कभी हड्डियाँ आपस में फ्यूज होने लगती हैं। अक्सर हम ऐसा सोचते हैं कि आर्थराइटिस केवल बुढ़ापे की समस्या है, पर ये रोग बच्चों और युवाओं को भी अपनी चपेट में ले सकता है। अगर सही समय पर इसके टेस्ट और ट्रीटमेंट नहीं कराए गए तो बच्चों को आगे चलकर चलने फिरने में भी दिक्कत हो सकती है। जुवेनाइल रिमेटॉइड आर्थराइटिस ऐसी ही एक आर्थराइटिस है जो बच्चों और युवाओं को शिकार बनाती है। रिमेटॉइड आर्थराइटिस पर और बात करने से पहले जानते हैं ये बीमारी किस तरह ऑस्टियोआर्थराइटिस से अलग है।

0: रीमेटॉइड अर्थराइटिस किसी भी उम्र के लोगों को शिकार बना सकती है। इस बीमारी का असर शरीर पर छोटे जॉइंट्स पर होता है, जैसे उंगलियों और अंगूठों के जॉइंट्स। लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस बुढ़ापे की बीमारी है और इसका असर बड़े जॉइंट्स पर होता है, जैसे कंधे का जॉइंट, नी जॉइंट, हिप जॉइंट आदि। रीमेटॉइड अर्थराइटिस में शुरू से ही सूजन और दर्द होता है और ये समय के साथ बढ़ता जाता है, लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस में पेन और दर्द काफी बाद में होता है। रीमेटॉइड अर्थराइटिस में जॉइंट्स में दर्द अक्सर सुबह होता है, लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस में दर्द मूवमेंट करने से जॉइंट्स पर पड़ने वाले दबाव से होता है। रीमेटॉइड अर्थराइटिस के डायग्नोसिस के लिए डॉक्टर सबसे पहले पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं। पेशेंट को दर्द कहां पर हो रहा है और दर्द कितना सीवियर है और कितने वक्त से है, ये अच्छे से समझा जाता है। फिजिकल एग्जामिनेशन में डॉक्टर दर्द वाली जगह की त्वचा, जोड़ और मसल स्ट्रेंथ का सही सही आकलन करते हैं। रीमेटॉइड अर्थराइटिस के डायग्नोसिस में एक खास तरह के ब्लड टेस्ट की भी मदद ली जाती है। दरअसल रीमेटॉइड फैक्टर, जिसे आर फैक्टर कहते हैं, एक खास तरीके का एंटीबॉडी प्रोटीन होता है जो कि रीमेटॉइड अर्थराइटिस के पेशेंट के ब्लड में पाया जाता है। हालांकि बीमारी की शुरुआत में ये आर फैक्टर एब्सेंट भी हो सकता है। इसके अलावा WBC और ESR टेस्ट के जरिए भी रीमेटॉइड अर्थराइटिस का डायग्नोसिस किया जाता है। ब्लड में सी रिएक्टिव प्रोटीन की मौजूदगी से इन्फ्लेमेशन की प्रेजेंस का पता चलता है, इसलिए सी रिएक्टिव प्रोटीन की मौजूदगी से भी RA की डायग्नोसिस में काफी मदद मिलती है। लेकिन ये टेस्ट रीमेटॉइड अर्थराइटिस होने के कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं है। इस टेस्ट से सिर्फ ये पता चलता है कि शरीर में इन्फ्लेमेशन प्रोसेस चल रही है। एक्सरे से रीमेटॉइड अर्थराइटिस के कारण हुई सूजन और जॉइंट्स को हुए नुकसान का आकलन किया जाता है। एक्सरे से सूजन काफी हद तक निर्धारित कर इलाज के निर्णय में डॉक्टर को आसानी होती है।
1: अब तो आप समझ ही गए होंगे, आर्थराइटिस बहुत से रूपों में शरीर के किसी भी अंग को प्रभावित कर सकता है, लेकिन सही ट्रीटमेंट एक सामान्य जीवन की संभावना को बढ़ा सकता है।
0: ऑस्टियोआर्थराइटिस के मुख्य कारण हैं बढ़ती उम्र, ज्यादा वजन, असंतुलित आहार और व्यायाम की कमी।
2: व्यायाम करने से जो है, जो शरीर की मांसपेशियां हैं वो स्ट्रांग हो जाते हैं, और जब शरीर की मांसपेशियां स्ट्रांग हो जाती हैं तो वो जोड़ों को आपस में घिसने से बचाती हैं। तो एक प्रकार से ऑस्टियोआर्थराइटिस को रोकने के लिए और जल्दी उसको तकलीफ न होने देने के लिए उसमें काफी फर्क पड़ जाता है। और मांसपेशियां अगर अच्छी होती हैं तो ऑस्टियोआर्थराइटिस भी लेटर स्टेज में कम होती है। एक तो ये कि अपना वजन संतुलित रखें, और इस प्रकार का आपके जो खान पीन है उसमें इस प्रकार की है कि आपका वजन नहीं बढ़ना चाहिए। दूसरी बात यह है कि नियमित रूप से व्यायाम कीजिए ताकि मांसपेशियां आपकी स्ट्रांग हो जाएं और वो जोड़ों को घिसने से बचाएं। तीसरी चीज जो बहुत जरूरी है वो कि अपना पोस्चर ठीक रखें, आपका बैठने का तरीका, आपका लेटने का तरीका या इस तरह की चीजें जो हैं उसको अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपको ये ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं होगी।
0: गौटी अर्थराइटिस में चूंकि मेटाबॉलिज्म में गड़बड़ होने से शरीर में यूरिक एसिड बढ़ जाता है, इसलिए इसे दवाइयों और खानपान में बदलाव कर काबू में किया जाता है। मरीज को शराब पीने से परहेज करना होगा और कुछ खाने की चीजों से परहेज करना होगा। गौटी अर्थराइटिस के पेशेंट्स को NS8 के अलावा कुछ खास दवाई दी जाती है, जैसे कि एलोप्रिनॉल और कॉल्चाइसिन। आर्थराइटिस के ट्रीटमेंट में पेशेंट को पेन और इन्फ्लेमेशन कम करने की नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स यानी NS8 जैसे एस्पिरिन और आइबुप्रोफेन दी जाती है। कुछ पेशेंट्स को स्टेरॉयड्स भी प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। जरूरत पड़ने पर जॉइंट्स में स्टेरॉयड्स के इंजेक्शन भी लगाए जाते हैं। इसके अलावा पेशेंट को कुछ एक्सरसाइज भी करने के लिए बताया जाता है। इन्फेक्टिव आर्थराइटिस में पेशेंट्स को NS8 दवाओं के अलावा एंटीबायोटिक दवाई दी जाती है। रीमेटॉइड आर्थराइटिस में NS8 दवाओं के अलावा इम्यून सप्रेसेंट ड्रग दी जाती है। आर्थराइटिस के पेशेंट्स को हीट थेरेपी भी दी जाती है। हीट थेरेपी से रक्त का प्रवाह तेज होता है और मरीज की दर्द सहने की क्षमता भी बढ़ती है। आर्थराइटिस के बहुत बढ़ जाने पर कुछ पेशेंट्स को ऐसी डिवाइस इस्तेमाल करनी पड़ती है जिनसे जोड़ों को सपोर्ट मिलता है और जॉइंट्स मूवमेंट में दर्द कम होता है। इन डिवाइसेस की जरूरत तब पड़ती है जब बीमारी बहुत बढ़ जाती है। कुछ अति गंभीर मामलों में डॉक्टर सर्जरी भी करते हैं। इन सर्जरीज में आती हैं नी और हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी। जॉइंट्स हमारे शरीर को मोबिलिटी यानी गतिशीलता प्रदान करते हैं। हमारे जॉइंट्स पर मौजूद नाजुक कवर को कार्टिलेज कहते हैं। कार्टिलेज से जॉइंट्स में लचीलापन आता है और मूवमेंट आसान होती है। कार्टिलेज के घिसने, उसमें बदलाव आने और इन्फ्लेमेशन होने को आर्थराइटिस कहते हैं। आर्थराइटिस को मोटे तौर पर चार श्रेणियों में बांटा गया है, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रिमेटॉइड आर्थराइटिस, इन्फेक्टिव आर्थराइटिस और गाउटी आर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस बुढ़ापे की बीमारी है। ज्यादातर इसका असर बड़े जॉइंट्स जैसे कंधे और घुटने के जोड़ों पर होता है। रिमेटॉइड आर्थराइटिस किसी भी उम्र के लोगों को अपना शिकार बना सकती है। ज्यादातर इसका असर शरीर के छोटे जॉइंट्स जैसे उंगलियों और अंगूठों के जॉइंट्स पर होता है। संतुलित भोजन, एक्सरसाइज और वजन को नियंत्रण में रखकर ऑस्टियोआर्थराइटिस को काफी हद तक काबू में रखा जा सकता है। आर्थराइटिस के पेशेंट का सामान्यतः NSAID और स्टेरॉइड से इलाज किया जाता है। कुछ अति गंभीर मामलों में डॉक्टर सर्जरी भी करते हैं, जैसे नी और हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी। रिमेटॉइड आर्थराइटिस में NSAID के अलावा इम्यून सप्रेसेंट ड्रग दी जाती है।
3: कोकिला, आर्थराइटिस पेशेंट्स की पेनफुल लाइफ को देखकर दुख होता है, क्या हम इनके लिए कुछ कर सकते हैं?
1: क्यों नहीं कर सकते, वही कर सकते हैं जो तुम कर रहे हो। यस, ह्यूमन सपोर्ट। दोस्तों, मेडिकल साइंस और डॉक्टर्स तो अपना काम कर ही रहे हैं, मगर हम और आप भी आर्थराइटिस से जूझते लोगों की मदद कर सकते हैं। तो बस, बबलू जी की इस लाइफ के प्रति पॉजिटिव अप्रोच के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले हफ्ते आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।
3: बाय।

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं महिपाल और मेरे साथ हैं आज आशा।
1: श्रोताओं, मेरा भी आपको प्यार भरा नमस्कार।
0: हम अपने कार्यक्रम से नए जुड़े दोस्तों को भी बता दें कि इस कार्यक्रम में हम खासकर उन विषयों पर बात करते हैं
1: जो हमारे समाज और स्वास्थ्य से जुड़े होते हैं।
0: तो आशा, आज हम कौन से विषय पर चर्चा करने वाले हैं?
1: महिपाल, हमारे देश में ऐसे कई ऑटिस्टिक बच्चे हैं जिनके सपने भी बहुत हैं, वह रिश्ते भी बनाना चाहते हैं पर बना नहीं पाते। उनका दुनिया को देखने का अपना ही तरीका है।
0: आज हम अपने कार्यक्रम में ऑटिज्म विषय पर ही बात करेंगे।

0: दोस्तों, ऑटिज्म एक ऐसी मानसिक स्थिति है जिसमें बच्चे अलग ढंग से अपने आप में खोए रहते हैं और चीजों के प्रति उनका अलग तरह का लगाव होता है। कई बार पास बुलाए जाने पर भी वे कोई प्रतिक्रिया नहीं करते हैं।
1: साथ ही वे दूसरे बच्चों के साथ मेलजोल और खेलने में कठिनाई महसूस करते हैं। भय, संकट या वास्तविक खतरों की समझ से अनजान होते हैं।
0: आशा, ऑटिज्म की अक्सर मानसिक असंतुलन या बीमारी से तुलना की जाती है, लेकिन ऑटिज्म के लक्षण और इलाज पूरी तरह से अलग होते हैं।
1: दोस्तों, यह लक्षण बचपन में ही दिखने शुरू हो जाते हैं और फिर ये सारी जिंदगी रहते हैं, लेकिन बच्चा देखने में आम बच्चों की तरह ही दिखता है।
0: आशा, कई बार देखा जाता है कि ऑटिस्टिक बच्चे और उनके परिवार वालों को कई सामाजिक मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है।
1: आप बिल्कुल सही कह रहे हो महिपाल, ऑटिस्टिक बच्चों को आम बच्चों से अलग रखा जाता है, क्योंकि इन बच्चों के विकास का मापदंड दूसरे बच्चों से अलग होता है और इनकी विकासात्मक असमर्थता के कारण ही इन्हें समाज हीन दृष्टि से देखता है
0: और इस कारण उनके परिवार वाले काफी चिंतित और मायूस हो जाते हैं।
1: ऐसे में ऑटिज्म से ग्रस्त बच्चे के माता पिता के सामने चुनौतियों की कमी नहीं होती।
0: दोस्तों, ऐसे ही एक माँ से हमने बात करी जिनका नाम है पूनम।
2: मेरे बेटे को बहुत थोड़ा सा है ऑटिज्म, मतलब उसका ऑटिज्म डायग्नोज हुआ है माइल्ड ऑटिज्म, तो इसलिए उसका सिर्फ स्पीच इफेक्ट हुआ है और कुछ एक उसका व्यवहार में जो कुछ अलग है दूसरों से। तो इसके लिए क्या होता है, कई बार जैसे लोग हैं सोचते हैं कि ये बच्चा ऐसे है और ठीक दिख रहा है, लेकिन इस तरह से क्यों बिहेव कर रहा है, इस तरह से इसका व्यवहार अलग सा क्यों है, तो उनको समझाना बहुत मुश्किल होता है उस टाइम पर कि इस बच्चे के साथ एक प्रॉब्लम है। लेकिन और मेरे बच्चे का जो सामाजिक व्यवहार है वो उसको सिखाने में मुझे काफी वक्त लगा उसको।
1: दोस्तों, हमारे साथ शिखा जी भी हैं, तो आइए उनसे बात करते हैं।
2: मेरे बेटे को जब डायग्नोसिस मिला था वो 4 साल का था, वो स्कूल जाता था, तो वो स्कूल की अगर मैं बात करूं तो मुझे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। टीचर्स की लगातार कंप्लेंट्स आती थी, प्रिंसिपल ने मुझे कई बार बुलाया कि आपका बेटा ये नहीं करता, उसका जॉइंट अटेंशन में प्रॉब्लम है, क्लास में लेट जाता है और दूसरे बच्चों को पुश करता है, इस तरह की दिक्कतें थी। वो उसको समझ नहीं पा रहे थे कि वो इस तरह क्यों करता है। जैसे ही उसका जब डायग्नोसिस मिला मुझे, तो मैंने बिल्कुल भी देर नहीं करी और मैंने खुद को अपने आप को ट्रेन करना शुरू करा और उसको समझने के लिए मैंने काफी बुक्स पढ़नी शुरू करी ऑटिज्म रिलेटेड, और काफी लोगों से मिलके और जो लोग इसके बारे में ज्यादा जानते हैं उनसे बात करना शुरू किया, ट्रेनिंग करना शुरू करा। और उसके बाद मैंने देखा, जब मैंने स्कूल वालों से जाके मिली, उनको बताया, उनको डिस्क्लोज करा कि ये प्रॉब्लम है, इसीलिए मेरे बेटे को ये चीजें फेस करनी पड़ी है, तो फिर मुझे जो पॉजिटिव रिस्पांस मिला स्कूल वालों की तरफ से, वो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तो इसलिए जहां तक मेरा एक्सपीरियंस कहता है, डायग्नोसिस बहुत जरूरी है और एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है। जिस दिन आप अपना बच्चे को जैसा है उसी तरीके से एक्सेप्ट कर पाएंगे, सोसाइटी भी एक्सेप्ट करने में कोई देर नहीं करेगी। जरूरत सिर्फ ये है कि आपको भी कदम बढ़ाना है, और आप कदम बढ़ाएंगे तो सोसाइटी अपने आप रिस्पॉन्स पॉजिटिव देना शुरू करेगी।

0: ऑटिस्टिक बच्चे का अभिभावक होना अपने आप में एक चुनौती है।
1: श्रोताओं, इस बारे में जानने के लिए आज हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है शुभांगी वैद्य।
2: मेरा खुद का बच्चा ऑटिस्टिक है और मैंने अपने शोध के दौरान कई ऐसे परिवारों से बात की है जिनके बच्चों को ऑटिज्म डायग्नोज हुआ है, और इन सारे अनुभवों के दौरान मुझे ये बात देखने को मिली है कि ऑटिज्म के बारे में लोगों की जानकारी बहुत सीमित है। हमारे बच्चों के कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं, कुछ ऐसे बिहेवियर्स होते हैं जो लोगों को बहुत विचित्र टाइप के लगते हैं। मिसाल के तौर पर हाथ फड़फड़ाना, एक जगह पे गोल गोल घूमना, खुद से बातें करना, बिना किसी वजह हंसना या रोना, और इसकी वजह से पेरेंट्स भी काफी हद तक मायूस हो जाते हैं। वो अपने बच्चों को कहीं पब्लिक प्लेसेस में लेके जाना ही पसंद करते हैं क्योंकि उनके अंदर ये एक एहसास होता है कि लोग हमारे बच्चे को देख रहे हैं, हंस रहे हैं, जजमेंट पास कर रहे हैं, उसको पागल के नाम से मतलब आइडेंटिफाई कर रहे हैं, और ये पेरेंट्स के लिए बहुत अधिक डिप्रेसिंग एक्सपीरियंस होता है। और जब तक पेरेंट्स और बच्चों के साथ रहने वाले लोग ये समझ नहीं पाएंगे कि जो हमारा बच्चा है वो जैसा भी है वो पहले हमारा बच्चा है, इस एक्सेप्टेंस तक आने में नेचुरली टाइम लगता है। ये कहना बहुत आसान है लेकिन इस बात को अपने डे टू डे लाइफ में इसका अनुकरण करना ये बहुत मुश्किल होता है। एक और बहुत अहम मुद्दा जो ये है कि बच्चे का जो केयर है, बच्चे की परवरिश, और सिर्फ बचपन में नहीं उम्र भर, जीवन भर जो बच्चे का केयर है ये पूरी तरह से परिवार के ऊपर निर्भर है, और परिवार के अलावा और ऐसी कोई भी संस्था नहीं है जो ऐसे मतलब डिसेबल लोगों की सहायता करता है या उन्हें सपोर्ट देता है। हम लोगों के बाद हमारे बच्चों का क्या होगा, इसका जिम्मा कौन लेगा?

0: आशा, कल मैं एक किताब पढ़ रहा था तो उसमें लिखा था कि पेरेंट्स अपने बच्चे के साथ कैसे समझौता करते हैं। उस किताब में एक माँ ने लिखा है कि साज की अगर एक तार भी टूट जाए तो संगीतकार उसे छोड़ता नहीं, बल्कि उसे और भी सुंदर तरीके से बजाता है।
1: इसी संदर्भ में मुझे एक पिता द्वारा अपने बेटे के लिए लिखी बात याद आ गई है। उन्होंने अपने बेटे पर लिखा है कि बेशक मेरा बेटा कुछ दूसरे बच्चों की तरह नहीं कर पाता, पर वो मुझे पूरी सहानुभूति प्यार देता है और अपनी जिंदगी की परिस्थिति से जूझता है, इसलिए मैं मानता हूँ कि मेरा बेटा ही मेरा हीरो है।
0: श्रोताओं, ऑटिज्म एक ऐसी आजीवन रहने वाली जटिल विकासात्मक असमर्थता है जिससे आज भारत में लगभग 20 लाख लोग प्रभावित हैं।
1: और महिपाल, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऑटिज्म लड़कियों की अपेक्षा लड़कों में 4 गुना ज्यादा पाया जाता है।
0: दोस्तों, इस विषय पर और अधिक बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इंदु जैसवाल, जो एक्शन फॉर ऑटिज्म ओपन डोर स्कूल के एजुकेशन डायरेक्टर हैं। इंदु जैसवाल जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है।
2: धन्यवाद।
0: सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे, इसका क्या उद्देश्य है?
2: ऑटिज्म जो है ये एक काफी कॉमन विकार है, परंतु इसके बारे में सिर्फ इंडिया में ही नहीं, सारे विश्व में देखा जाए तो ज्यादा जानकारी नहीं है, तो इसीलिए हम मनाते हैं वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे। लेकिन इसको डे न कह के इसको वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे का नाम दिया है, क्योंकि हम चाहते हैं कि आज के दिन हम ज्यादा से ज्यादा जागरूकता जो है, अवेयरनेस जो है ऑटिज्म की क्रिएट कर सके, क्योंकि इसकी बहुत जरूरत है। ये एक बहुत कॉमन कंडीशन है, परंतु इसके बारे में नॉलेज बहुत कम है।
0: इंदु जी, क्या ऑटिज्म वंशागत है, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचता है?
2: कई परिवार हैं जिनमें एक से अधिक बच्चे पाए जाते हैं जिनमें ऑटिज्म है, या कुछ ऐसे रिश्तेदार हैं जिनमें कुछ लक्षण ऑटिज्म से मिलते जुलते हों, परंतु आज तक ये सिद्ध नहीं हुआ कि ये पारिवारिक है। बहुत अनुसंधान चल रहा है, रिसर्च बहुत चल रही है, और ये माना जा रहा है कि ऑटिज्म जो है किसी एक कारण से नहीं होता, ये कॉम्बिनेशन होते हैं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, और हाँ, शायद उनमें से एक कारण पारिवारिक भी हो सकता है।
0: इंदु जी, माता पिता को कैसे पता लगेगा कि उनके बच्चे को ऑटिज्म है?
2: ये कई बार बहुत कठिन होता है। जब बच्चा छोटा होता है तो वो सामान्य बच्चों की तरह लगता है, क्योंकि उसमें कोई, उसको देखने में कुछ अटपटापन दिखता नहीं है, उसकी फिजिकल अपीयरेंस आम बच्चों की तरह होती है। जब बच्चों की उम्र होती है बात करने की, लोगों से संपर्क बनाने की, रिलेशनशिप्स बनाने की, तब पेरेंट्स नोटिस करते हैं, माता पिता ये देखते हैं कि उनके बच्चों के व्यवहार कुछ अजीब से हैं। जैसे जब उसे नाम से पुकारा जाए तो वह कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाता, माता पिता को ऐसा लगता है कि वो सुन ही नहीं रहा, परंतु वो म्यूजिक तो सुनता है और दूसरी आवाजों के प्रति भी वो संवेदनशील होता है, फिर अपना नाम सुन के वो एक रिएक्शन या एक रिस्पॉन्स क्यों नहीं देता। उसके बाद आंख मिलाकर संपर्क बनाने में, जिसे हम आई कॉन्टैक्ट कहते हैं, उसमें इन बच्चों को दिक्कत आती है। अपनी उम्र के दूसरे बच्चों के साथ घुलने मिलने में, उनके साथ खेल में उनको परेशानी होती है, और माता पिता देखते हैं कि एक डेढ़ साल का बच्चा हो गया, 2 साल का भी हो गया, खिलौनों से वो नए नए खेल नहीं रचा पा रहा, वो एक बहुत ही, जिसको हम बोलते हैं रूढ़िबद्ध, एक स्टीरियोटाइप्ड मैनर में खेल रहा है। तो ये कुछ चीजें हैं जिनसे माता पिता थोड़े से अलर्ट हो जाते हैं, और इस उम्र तक हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा बोलने भी लगेगा, और यहाँ पे वो बोल भी नहीं पाता, या बोलता है तो बहुत अटपटे ढंग से बोलता है। तो लगभग 2 साल की एज पे आकर माता पिता थोड़े से अवेयर होते हैं कि शायद बच्चा थोड़ा अलग है।
0: इंदु जी, क्या ऑटिज्म को रोका जा सकता है?
2: ऑटिज्म कोई बीमारी नहीं है, तो इसीलिए इसका कोई रोकथाम भी नहीं है। बच्चा इस दुनिया में ऑटिज्म के साथ ही आता है, और ये लाइफ लॉन्ग कंडीशन है, कोई दवा ऐसी नहीं है जो इसका उपचार हो। हाँ, कई बार ऑटिज्म के लक्षण बहुत तीव्र हो जाते हैं और माता पिता को और दूसरे लोगों को काफी दिक्कतें आने लगती हैं, तो कुछ ऐसी दवाएं हैं जो उन लक्षणों को कुछ कम कर देंगी, लेकिन ऑटिज्म हमेशा रहेगा।
0: इंदु जी, ऑटिज्म और मंदबुद्धिता में क्या अंतर है?
2: ऑटिज्म और मंदबुद्धि में काफी अंतर है। पहली चीज तो ये है कि ये कोई जरूरी नहीं है कि जिस व्यक्ति को ऑटिज्म है उसकी उसे मंद बुद्धि भी होगी। हो सकता है कि उसकी जो इंटेलिजेंस है वो उसकी उम्र के और लोगों की तरह हो। जो मुख्य दोनों चीजों में फर्क है वो ये है कि जब किसी को मंद बुद्धि होती है तो उसका जो इंटेलिजेंस होता है और यहां बोल सकते हैं उसकी जो डेवलपमेंट होती है उसका विकास हर एरिया में एक ही तरह से अफेक्टेड होगा। आपके पास एक 10 साल का बच्चा है और जिसका मानसिक विकास अभी 4 साल पर चल रहा है तो उसका सभी कुछ, उसका उठना बैठना, बात करना, अपने शरीर का इस्तेमाल करना, बोलना, उसका सामाजिक व्यवहार, सब कुछ 4 साल के लगभग होगा। परंतु ऑटिज्म में हम कहते हैं एक बहुत ही उतार चढ़ाव वाली डेवलपमेंट होती है। बच्चे के विकास में हम देखते हैं कि कई बार ये देख कि उसकी बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो उसकी उम्र के दूसरे बच्चों की तरह ही होती हैं, जैसे कि उसने उठना बैठना चलना सही एज में स्टार्ट किया है और वो अपना शरीर सही तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। कुछ उसके कौशल ऐसे भी हो सकते हैं जो उसकी उम्र से बहुत अधिक भी हो। बहुत से ऐसे ऑटिस्टिक व्यक्ति हैं कि जिनमें बहुत ही गणित के बहुत ही गुण होते हैं, वो मल्टीप्लिकेशंस और नंबर्स में बहुत स्किल होती है उनकी, तो कुछ उनके ऐसे स्पेशल स्किल भी हो सकते हैं जो उनकी एज से बढ़कर हों। और जैसे हमें मालूम ही है कि कम्युनिकेशन में और सामाजिक व्यवहार में उनके जो कौशल हैं वो बहुत कम रहते हैं अपनी एज से। तो मेन फर्क दोनों चीजों में ये है कि जहां मानसिक मंदता होने से बच्चे का विकास एक ही तरह से, हम बोलते हैं एक इवन तरह से वो अफेक्टेड है, लेकिन ऑटिज्म में उसकी डेवलपमेंट ऊपर नीचे होती है और इससे कई बार उनके साथ काम करने वाले जो लोग हैं, उनके जो माता पिता हैं, वो बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि इसका लेवल है क्या।
0: इंदु जी, ऑटिस्टिक बच्चों को जीवन की मुख्य धारा में किस हद तक शामिल किया जा सकता है और उनके लिए कौन से विशेष प्रावधान हैं?
2: कोई भी बच्चा हो जिसे किसी भी प्रकार की परेशानी हो, चाहे वो ऑटिज्म हो या कुछ और हो, हम जानते हैं कि आजकल UNCRPD और सर्व शिक्षा अभियान और इन सभी चीजों के अंतर्गत पूरी कोशिश की जा रही है कि इन्हें मुख्य धारा में जितना शामिल किया जा सके कोशिश करनी है। परंतु ये स्थिति हम लोग पूरी तरह यहाँ पहुंचने में काफी समय लगाएंगे और हर एक बच्चा जिसे ऑटिज्म है वो बहुत ज्यादा प्रोग्रेस दिखा सकता है और उसे मुख्य धारा में हम लोग शामिल कर सकते हैं, लेकिन उसे कुछ सपोर्ट जरूर चाहिए होगा इस समाज में एडजस्ट करने के लिए। हम जानते हैं कि कितना कठिन है समाज में एडजस्ट करना। जो चीजें हम लोग इतने आराम से कर लेते हैं वो बुनियादी चीजें भी इन बच्चों को सिखानी पड़ती हैं। तो उनको एक, हम जो बोलते हैं कि साथ साथ एक और प्रोग्राम चाहिए होता है जो उन्हें हेल्प करता है मुख्य धारा में बने रहने के लिए। और स्पेशल प्रावधान इन बच्चों के लिए है। ये बड़े दुख की बात है कि अभी ये खाली मेट्रोज में ही उपलब्ध है और छोटे शहरों में अभी भी ऑटिज्म की ही जानकारी नहीं है। इन बच्चों को सिखाने के तरीके अलग होते हैं। इनको हम लोग जितना ज्यादा से ज्यादा विजुअल्स की हेल्प से सिखा सके और इनकी ट्रेनिंग में जितना हम भाषा लैंग्वेज प्रोग्राम इंट्रोड्यूस कर सके उतना अच्छा होगा।
0: इंदु जी, सरकार की ओर से क्या इस दिशा में कोई प्रयास किए जा रहे हैं?
2: जी हाँ, हाल ही में ऑटिज्म से प्रभावित व्यक्तियों के लिए एक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, पहले काफी दिक्कत थी सर्टिफिकेट कोई बना नहीं पा रहे थे कि क्या क्राइटेरिया होना चाहिए असेसमेंट का, तो अब पिछले साल इनके लिए एक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी मिल रहा है और उस डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के आधार पर काफी जो ऑटिस्टिक व्यक्ति हैं उनको सुविधाएं भी मिल रही हैं, जैसे कि इनकम टैक्स में रिबेट मिलना, और दूसरी चीज है कि अगर ये कोई लाइक यात्रा पे जा रहे हैं, रेल यात्रा पे जा रहे हैं, तो उसमें कंसेशन मिल पाना। नेशनल ट्रस्ट में ऑटिज्म एक डिसेबिलिटी के रूप में इसको रिकग्निशन मिला है। रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया ऑटिज्म के लिए टीचर ट्रेनिंग का कोर्स चला रही है। तो इस प्रकार से काफी कुछ हो रहा है। कुछ संस्थाएं जो ऑटिस्टिक बच्चों के लिए स्कूल चला रहे हैं उनके प्रोग्राम्स को थोड़ी बहुत सहायता भी मिलती है सरकार से। तो इस दिशा में कार्य शुरू तो हुआ है, लेकिन क्योंकि हम देखते हैं कि नंबर्स बहुत हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्हें ऑटिज्म है, तो और भी सुविधाओं की जरूरत है, लेकिन प्रयास अभी आरंभ हुए हैं।
0: इंदु जी, ऑटिज्म के लिए कोई हेल्पलाइन है जिनसे लोग जानकारी प्राप्त कर सकें?
2: ये जो अर्थ आस्था नाम से एनजीओ है, नेशनल ट्रस्ट की हेल्पलाइन इनके संस्था से चलती है। इसका नंबर है 011-264-6650। और एक बार और दोहराती हूँ, 011-264-6650। ये है नंबर अर्थ आस्था का। इसके अलावा और भी कई संस्थाएं हैं जो ऑटिज्म के लिए काम कर रही हैं। एक्शन फॉर ऑटिज्म का नंबर लिया जा सकता है, ये दिल्ली में है, और इनका फोन नंबर है 011-40-54-0991। और इन नंबर्स पे फोन करें तो जरूर सही इन्फॉर्मेशन मिलेगी।
0: इंदु जी, जाते जाते आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे?
2: मैं ये कहना चाहूंगी कि ऑटिज्म जो है ये एक काफी, जो हम बोलते हैं कि व्यापक स्थिति है, कि बहुत हम लोग देखते हैं कि हर 150 में से एक व्यक्ति में कुछ न कुछ ऑटिज्म के लक्षण होते हैं। हालांकि ये जो आंकड़े हैं ये हिंदुस्तान से नहीं, हमारी कंट्री में नहीं मिले हैं, क्योंकि कभी कोई ऐसा सर्वे ही नहीं हुआ, कोई डेटा ही नहीं कलेक्ट हुआ, अब ये सब काम शुरू हो रहे हैं। तो जब ये कॉमन डिसऑर्डर है तो बहुत जरूरी है कि लोगों में इसकी जागरूकता हो, ताकि जिन लोगों को ऑटिज्म है वो भी हमारी सोसाइटी में आराम का जीवन व्यतीत कर सके और दूसरे लोगों की तरह इसकी इसमें हर चीज में शामिल हो सके, और जो उनकी कैपेबिलिटीज हैं, जो वो कर सकते हैं, उसका वो पूरा योगदान हमारे समाज को दें और उस समाज का एक हिस्सा बन के रहें। तो वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे के दिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जितनी अवेयरनेस, जितनी जानकारी ऑटिज्म की दे सके हम दें।
0: इंदु जी, आप हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ी, हमें और हमारे श्रोताओं को बहुत उपयोगी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद।

0: दोस्तों, इंदु जी से हमने ऑटिज्म के बारे में जाना कि है क्या है और किस तरह से ऑटिस्टिक लोग भी जिंदगी की मुख्य धारा में शामिल हो सकते हैं।
1: आशा सरकार के साथ बहुत सी गैर सरकारी संस्थाएं भी इस दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं, जैसे एक्शन फॉर ऑटिज्म, तमन्ना, राजकुमारी अमृत कौर चाइल्ड स्टडी सेंटर, स्कूल ऑफ होप, आसमान आदि। ऐसी बहुत सी संस्थाएं हैं जो इस विषय पर कार्य कर रही हैं।
0: दोस्तों, जैसा कि हमने पहले भी कहा कि ऑटिज्म एक आजीवन रहने वाली जटिल विकासात्मक असमर्थता है,
1: पर प्रारंभिक निदान और उचित प्रशिक्षण द्वारा महत्वपूर्ण प्रगति और विकास देखे जा सकते हैं।
0: ऑटिस्टिक बच्चे भी अपने आप में बहुत सारी काबिलियत रखते हैं, पर वे अपनी काबिलियत को साबित करते हैं तो इनके माता पिता के लिए इससे बड़ी खुशी की बात कुछ हो ही नहीं सकती।
1: दोस्तों, ऑटिस्टिक लोगों की काबिलियत को पहचानते हुए उनके खास गुणों को समाज के साथ जोड़ना जरूरी है। दोस्तों, इसी के साथ अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। दोस्तों, अगले कार्यक्रम में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आशा और महिपाल को दीजिए इजाजत। नमस्कार, नमस्कार।

0: नमस्कार, आप सभी का स्वागत है खेत खलिहान में। मैं हूं मुकुल शर्मा। खेत खलिहान में लगातार हम आपसे जुड़े विषय जो हैं उनको शामिल करते हैं, और हमारे आज के कार्यक्रम का जो विषय है वो भी आपसे जुड़ा है। आज हम आपको जानकारी देंगे उन्नत बकरी पालन के बारे में, किस तरीके से उन्नत बकरी पालन करके आप मुनाफा कमा सकते हैं, और यही वजह है कि बकरी पालन एक रोजगार का जरिया भी बन चुका है। यही जानकारी देने के लिए हम आ पहुंचे हैं केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा के मखदूम में। जी हाँ, और यहाँ के प्रधान वैज्ञानिक मनोज कुमार सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे ये जानकारी लेते हैं किस तरीके से हमारे जो किसान भाई हैं वो उन्नत बकरी पालन कर सकते हैं। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत आपका खेत खलिहान में।
1: धन्यवाद।
0: सबसे पहले हम जानना चाहेंगे जो हमारे जो किसान भाई हैं, जो हमारे दर्शक हैं, किस तरीके से उन्नत बकरी पालन कर सकते हैं, उसके फायदे क्या हैं?
1: देखिए कि बकरी पालन के द्वारा किसान भाई अपने आर्थिकी उन्नति कर सकते हैं, अपने कुपोषण की समस्या से निजात पा सकते हैं
0: जी।
1: और ये रोजगार का बहुत अच्छा साधन है। उसके लिए जो बकरी पालन है उसके कुछ प्रमुख बिंदु हैं, उनके ऊपर ध्यान रखना होगा। जैसे कि उन्नत बकरी प्रबंधन, उन्नत प्रजनन प्रबंधन, उन्नत पोषण प्रबंधन, उन्नत स्वास्थ्य प्रबंधन, उन्नत मार्केटिंग, स्मार्ट मार्केटिंग
0: जी।
1: अगर इन सारे बिंदुओं पर ध्यान रखा जाए तो प्रति बकरी एक किसान एक वर्ष में 6,000 से 10,000 रुपया मुनाफा कमा सकता है।
0: लेकिन इसके साथ साथ आपसे जानना चाहेंगे जो, क्योंकि उन्नत बकरी हम पालन कर रहे हैं तो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो हमारी नस्ल है उसका चयन कैसे किया जाए, तो कौन सी जो उन्नत नस्लें हैं और कैसे उनका चयन, हमारे जो दर्शक हैं अगर वो बकरी पालन करना चाहते हैं तो चयन करें वो?
1: देखिए, हिंदुस्तान में बकरी की लगभग 24 नस्लें हैं
0: जी,
1: जिनको के विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न राज्यों में हमारे पूर्वजों ने वहां की वातावरण एवं परिस्थिति के अनुरूप उनको विकसित किया
0: जी।
1: तो पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो बकरी जिस क्षेत्र की हो वहाँ वही की नस्लों पर हमें अधिक ध्यान देना चाहिए। जैसे कि अगर कोई बकरी पूर्वी भारत की है, जैसे पूर्वी भारत में ब्लैक बंगाल नस्ल पाई जाती है
0: जी,
1: तो वहाँ के किसान उसी बकरी के ऊपर ध्यान दें। और जैसे उत्तर भारत है या उत्तर प्रदेश है
0: जी,
1: तो उत्तर प्रदेश में व्यावसायिक बकरी पालन के लिए जो बर्बरी बकरी की नस्ल है
0: जी,
1: ये अति उत्तम है।
0: बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि आसानी से बकरी पालन आप कर सकते हैं, लेकिन एक कम से कम अगर हम बात करें तो कितनी जगह इसके लिए चाहिए, क्योंकि बकरी पालन हम कर रहे हैं जगह का थोड़ा सा ख्याल रखना होगा, और कम से कम कितनी बकरियों से इसकी हम शुरुआत कर सकते हैं?
1: दरअसल ये तो किसान के पास उपलब्ध उसके आर्थिक संसाधन उस पर निर्भर करता है
0: जी।
1: लेकिन जो हमारे संस्थान के द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जहां पर के 20, 25, 50, 100 बकरी रखकर लोगों ने बकरी पालन शुरू किया है
0: जी,
1: तो 50 से 100 बकरी पालन करने के लिए लगभग 1 से 1.5 एकड़ जगह चाहिए, जिसमें के बकरियों के आवास भी बनेंगे, भूसा स्टोरेज भी बनेगा, दाना स्टोरेज भी बनेगा और बकरियों के बाड़े भी बनेंगे
0: जी।
1: तो वैसे जो है बकरी को, एक बकरी को आवास के लिए 1.5 से 2 स्क्वायर मीटर जगह चाहिए बंद आवास में, और इसकी दुगनी जगह चाहिए खुले आवास में।
0: बिल्कुल, जैसा डॉक्टर मनोज ने कहा कि तमाम प्रबंधन जो है वो आपको करने होंगे, बाड़ी की व्यवस्था होती है, और आप हमारे पीछे देख भी रहे होंगे किस तरीके से यहाँ पर संस्थान द्वारा जो बकरियां हैं उनको रखा जाता है। आपको भी दिखाते हैं और भी जानकारी हम देंगे, आइए हमारे साथ। बिल्कुल डॉक्टर मनोज, जैसा आपने हमें बताया कि उन्नत नस्लें हैं और यहाँ भी हम देख पा रहे हैं, तो किस तरीके से जो हमारे किसान या दर्शक हैं किस तरीके से वो उन्नत नस्लें ले सकते हैं?
1: देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया
0: जी,
1: कि हमारे जो क्षेत्र में जो किसान भाई हैं वो बकरियों की जो उन्नत नस्ल है, जो प्योर ब्रेड है, उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे
0: जी।
1: तो किसान भाई को जब भी व्यावसायिक बकरी पालन आरम्भ करें, हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि वो शुद्ध नस्ल के जानवरों को ही रखें
0: जी।
1: अब जैसे कि अभी हम बर्बरी के बाड़े में हैं
0: जी, बिल्कुल,
1: तो अब ये बर्बरी नस्ल के कुछ लक्षणों के बारे में मैं आपको बताता हूँ
0: जी।
1: जैसे कि ये जो है इसका जो कोट कलर है वो व्हाइट होता है, उस पे ब्राउन स्पॉट होते हैं
0: जी।
1: इसके जो कान हैं वो छोटे होते हैं और इरेक्ट होते हैं
0: जी।
1: आपने देखा हुआ कि हिरण की तरह
0: पहचान इसके हम कह सकते हैं,
1: ये बर्बरी नस्ल की पहचान है।
0: बिल्कुल,
1: ऐसे जितनी भी बकरियों की नस्लें हैं
0: जी,
1: उनकी अलग अलग पहचान है
0: जी।
1: अभी आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि हम बकरियों का चुनाव कैसे करें
0: जी,
1: जो प्रजनक बकरे हैं उनका कैसे चुनाव करें।
0: बिल्कुल,
1: तो एक तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो हम बच्चा प्रजनक बकरी के रूप में चुन रहे हैं वो शुद्ध नस्ल का हो, यानी कि उसके जो माँ बाप हैं वो भी शुद्ध नस्ल के हों। दूसरी बात यह है कि उसकी जो बढ़वार है, जो विभिन्न उम्र के सोपान हैं, जैसे कि 3 महीना, 6 महीना, 9 महीने पे, तो उसकी बढ़वार तेजी से होनी चाहिए और उसकी माँ के नीचे पर्याप्त दूध भी होना चाहिए। तो ऐसा नर प्रजनक बकरे के रूप में बहुत उपयुक्त रहेगा
0: जी।
1: और हम आमतौर पर 10 या 12 महीने की उम्र में ऐसे नर का चुनाव कर लेते हैं
0: जी।
1: उसके बाद हम देखते हैं कि ये बकरियों पे माउंट करता है, उन्हें कवर करता है कि नहीं। अगर ये बकरियों पे माउंट करता है, उनको गर्भाधित करा देता है, तो ऐसा बकरा उत्तम रहता है
0: जी। बिल्कुल डॉक्टर मनोज, लेकिन इसके साथ साथ हम ये जानना चाहेंगे, जो ऐसा कि आपने बताया जो बकरा है, लेकिन क्या कुछ उम्र जो होती है वो होती है कि उसके बाद ही उसका चयन आप लोग करते हैं? और एक अगर देखा जाता है कि जिसका बकरे का चयन कर रहे हैं, एक एक एक समय जो है वो निर्धारित होता है कि इतनी उम्र के बाद उसका चयन किया जाएगा?
1: देखिए, ये जो बकरियों में जो उम्र है
0: जी,
1: तो ये उनके आकार पर भी निर्भर करती है। जैसे कि जो बड़े आकार की बकरियां हैं उनमें प्रजनक बकरों को 2 उम्र का होने पर उपयोग में लाना चाहिए, जैसे कि जमनापारी, सिरोही, झकराना। लेकिन चूंकि ये बर्बरी मध्यम आकार की है, तो जब प्रजनक बकरे की उम्र 1.5 वर्ष हो जाए तब उसे हमें उपयोग में लेना आरंभ करना चाहिए
0: जी।
1: और हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि एक बकरे से एक दिन में 2 या 3 बकरियों को ही गर्भित कराएं। अगर हम एक दिन में ज्यादा बकरियों को गर्भित कराएंगे तो उनके गर्भाधारण करने की संभावना कम रहेगी।
0: बिल्कुल डॉक्टर मनोज, जैसा कि लगातार आप हमें सावधानियां जो हैं वो आपने बताई, लेकिन प्रजनन के समय भी कुछ तरह की जो सावधानियां हैं वो रखनी होगी, क्योंकि रोग की संभावना रहती है अगर बकरा और बकरी संपर्क में आते हैं।
1: देखिए, जो बकरे से जो प्रमुख बीमारी है जो बकरियों में फैलती है, जिसके द्वारा बहुत ज्यादा एबॉर्शन होता है, मिसकैरेज होता है, वो है ब्रुसोलेसिस
0: जी।
1: तो इस बीमारी से बचाव के लिए जरूरी है कि हम प्रतिवर्ष बकरे की स्क्रीनिंग कराएं, उसका जो रक्त है उसको लेके जांच करवाएं, क्योंकि अगर कोई बकरा ब्रुसोलेसिस बीमारी से पीड़ित पाया जाता है तो उसे हमें कदापि प्रजनन में उपयोग में नहीं लाना चाहिए। दूसरी सावधानी हमें यह भी रखनी है कि एक बकरे से एक रेवड़ में केवल उसे 1 से 1.5 वर्ष तक ही उपयोग में लाया जाए, क्योंकि इससे जो बच्चियां पैदा होती हैं वो पुनः जवान हो जाती हैं
0: जी।
1: तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हमें अंतर प्रजनन से बचाव के लिए इस तरह से मेटिंग प्लान बनाना होगा कि उसकी जो बच्चियां हैं या उसकी जो माँ हैं वो इस बकरे के द्वारा गर्भाधित न हों
0: जी।
1: दूसरा, हमें यह भी सावधानी रखनी होगी कि उस बकरे का जो बच्चा पैदा होता है, नर पैदा होता है, वह भी हम उसी रेवड़ में न इस्तेमाल करें। तो इसके लिए मैं किसान भाइयों को ये सलाह देना चाहूंगा कि वो प्रत्येक 1 से 1.5 वर्ष के बाद अपने नर को बदल दें
0: जी।
1: और जो दूसरा प्रजनक बकरा है वो दूसरे किसी किसान भाई के यहाँ से लेके आए
0: जी।
1: इसकी सुगमता के लिए वो ये भी कर सकते हैं कि अपना नर, अपना जो प्रजनक बकरा है वो किसी दूसरे को दे दें
0: जी।
1: और दूसरे का जो प्रजनक बकरा है उसे स्वयं इस्तेमाल कर लें, क्योंकि अंतः प्रजनन की दर बहुत ज्यादा होने पर उनकी जो वृद्धि दर है, जो बढ़वार दर है, दूध देने की क्षमता है, बीमारी से लड़ने की क्षमता है, वो कम हो जाती है।
0: बिल्कुल, इसलिए जरूरी यही कि जो तमाम सावधानियां हैं ये हमारे किसान भाइयों को रखनी होगी जो बकरी पालन कर रहे हैं और जो बकरी पालन करना भी चाहते हैं। लेकिन उन्नत बकरी पालन से जुड़े कुछ और भी पहलू हैं वो भी जानते हैं, आइए हमारे साथ। डॉक्टर मनोज, आपसे हम ये और जानना चाहेंगे, क्योंकि अब बेड़े में हमें यहाँ पर शेड में हम देख पा रहे हैं तमाम जो बकरियां हैं वो यहाँ मौजूद हैं, लेकिन किस तरीके से यहाँ संस्थान में हमने देखा अलग अलग जो शेड हैं वो बनाई गई हैं, क्या किस वजह से क्या जरूरत पड़ती है अलग अलग शेड्स की?
1: दरअसल ये जो उन्नत बकरी पालन है इसमें इस बात का ध्यान रखा जाता है
0: जी
1: कि जो नर और मादा है उनको 3 माह के बाद अलग अलग रखा जाए
0: जी।
1: दूसरा ये है कि फिर जो है जो 3 से 6 माह की, 6 से 12 माह की या उससे जो अधिक उम्र की जो बकरियां हैं उनको फिर से अलग अलग रखा जाता है
0: जी।
1: जैसे कि कोई बकरी गर्भवती है, दूध देने वाली है, उनको भी फिर अलग अलग रखते हैं।
0: बिल्कुल, और जिस शेड में अभी हमें ये कितनी उम्र की यहाँ पर बकरियां हैं,
1: ये जो इस शेड में जो बकरी हैं ये आप देख रहे हैं ये सभी 6 से 9 माह की हैं
0: जी।
1: तो इस समय क्या है कि इनको एक अलग तरह का दाना, भूसा, चारा दिया जाता है
0: जी।
1: और जब ये बकरी 10 माह की हो जाएंगी
0: जी
1: फिर हम इनको गर्मी में आने पर गर्भाधित कराएंगे
0: जी।
1: अगर इनमें से कोई बकरी अभी गर्मी में आती है स्ट्रेस के स्ट्रेस शो करती है तो हम उसे गर्भाधान के लिए नहीं भेजते हैं, क्योंकि ऐसा करने पर बकरी के ब्याने के समय उसका जो बच्चा है वो छोटा पैदा होगा
0: जी,
1: बकरी का स्वास्थ्य भी गिर जाएगा और आगे आने वाले ब्यात में उसका उत्पादन कम हो जाएगा
0: जी।
1: इसलिए हम ये तय करते हैं कि जैसे कि बर्बरी नस्ल है
0: जी,
1: कि इसमें जब तक कि बकरी 10 माह की न हो जाए,
0: एक औसत उम्र हम मान सकते
1: औसत उम्र जो है, और उसका जो वजन है वो भी 18 किलो होना चाहिए
0: जी,
1: उसके बाद ही हम बकरी को गर्भाधित कराते हैं।
0: बिल्कुल डॉक्टर मनोज, हम यहाँ देख भी रहे हैं जो बकरियां हैं तमाम, वो आहार की आपने बात की थी, चारा प्रबंधन की, किस तरीके से एक विशेष आहार की जरूरत होती है, क्योंकि आपने कहा कि 6 से 9 माह हो चुके हैं इन बकरियों को, और उसके बाद 10 माह की जब बकरी हो जाती है तो वो गर्भ धारण कर सकती है, वहां भी एक अलग आहार की आवश्यकता पड़ती है।
1: देखिये बिल्कुल ठीक बात है कि जिस समय खासतौर से जैसे बकरी के बच्चे हैं
0: जी,
1: तो जैसे कि जन्म लेने से 3 माह की उम्र तक उनकी जो बढ़वार दर है वो सबसे ज्यादा होती है, जैसे कि बर्बरी नस्ल में 80 से 100 ग्राम वजन प्रतिदिन बढ़ता है, तो छोटे बच्चे होते हैं उस समय तो हम उनको 50 से 100 ग्राम दाना देते हैं
0: जी,
1: लेकिन जब वो 3 से 6 माह या 6 से 12 माह के हो जाते हैं तो उनकी दाने की मात्रा बढ़ती जाती है
0: जी,
1: लेकिन चूंकि 12 महीने की उम्र पे ये बकरियां परिपक्व हो जाती हैं तो इनको केवल मेंटेनेंस राशन दिया जाता है
0: जी,
1: लेकिन इससे पहले जैसे कि 6 से 9 माह की ये है तो इनको जो दाना है वो इनकी बढ़वार के लिए दिया जाता है।
0: बिल्कुल,
1: तो जैसे कि बर्बरी नस्ल में हम 6 से 9 माह या 6 से 12 माह की उम्र में इनको 300 ग्राम दाना प्रतिदिन देते हैं, अगर ये बकरी जब 10 से 11 माह की हो जाती है और ये गर्भित हो जाती है तो इनकी एडवांस प्रेगनेंसी स्टेज पे हम उनको 200-250 ग्राम दाना और बढ़ा देते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो बकरी है
0: जी,
1: ये तकरीबन 8 से 9 माह की है
0: जी,
1: ठीक है ना, और इसका जो वजन है वो तकरीबन 16-18 किलो है।
0: बिल्कुल,
1: अब ये बकरी 1-2 माह के अंदर गर्भ धारण कराने के लिए तैयार है
0: जी,
1: और ये उसकी एकदम परफेक्ट एज है, परफेक्ट अवस्था है, इसका वजन निश्चित तौर पर 18 किलो से अधिक होगा
0: जी।
1: हाँ, तो अगर ऐसी बकरी को हम प्रथम बार गर्भाधित कराते हैं
0: जी,
1: तो आगे चल के ये बहुत ज्यादा प्यांत देगी, अच्छा उत्पादन देगी, ज्यादा बच्चे देगी, ज्यादा दूध भी देगी।
0: बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये तो बात हुई जो वयस्क बकरियां हैं, जैसा कि हमने देखा अलग अलग उम्र की यहाँ पर बकरियां हैं, लेकिन जो नवजात हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उनकी कैसे देखभाल करनी है, हम चाहेंगे उनके पास भी हम चलें, उनके बेड़े में, उनके शेड में, और वहां हम जाने कि कैसे उनकी देखभाल आप कर सकते हैं जी।
2: क्या सोचते हैं वो जिन्हें चुना आपने, जो आपके हित में है उसे जाना आपने, पूछेंगे हर वो सवाल जो रखता है आपसे सरोकार, बताएंगे आपको आखिर क्या है आपके अधिकार, हर सवाल हर उलझन को सुलझाएंगे हम विशेषज्ञों के संग दूरदर्शन किसान के खास कार्यक्रम विचार विमर्श में, शुक्रवार शाम 7:30 पर

0: बिल्कुल डॉक्टर सिंह, यहाँ जैसा कि हमारे दर्शक भी देख पा रहे हैं, हम पहुंच चुके हैं जहाँ पर छोटे बच्चों को रखा जाता है। और खासतौर से यहाँ अगर डॉक्टर सिंह बात की जाए, हरियाली भी हमें नजर आ रही है, कई तरह के जो पेड़ हैं वो लगाए गए हैं, तो ये सिर्फ छाया के लिए है, इनका कुछ अलग महत्व है?
1: देखिए, जो बकरियों के छोटे बच्चे हैं
0: जी,
1: उनका प्रबंधन है वो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत सेंसिटिव विषय है
0: जी।
1: क्योंकि बकरियों में अगर छोटे बच्चों की देख रेख अच्छे से न की जाए,
0: जी
1: उनकी सफाई का ध्यान न रखा जाए,
0: जी
1: उन्हें समय पर पानी न पिलाया जाए, तो वो कमजोर हो जाते हैं, फिर उनमें बीमारी भी तरह तरह की हो जाती हैं।
0: जी
1: तो छोटे बच्चे जहाँ पे हों वहाँ हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ सफाई बहुत अच्छे से हो,
0: बिल्कुल
1: सफाई बहुत पर्याप्त हो, और उन्हें समय समय पर पीने का पानी और चारा भी मिलता रहे। जैसा कि आपने कहा कि ये जो वृक्ष आपने लगाए हुए हैं ये हरियाली के लिए हैं, ऐसा नहीं है, ये हरियाली के साथ साथ समुचित मात्रा में चारा भी उपलब्ध कराते हैं।
0: जी
1: और जो इन पेड़ों से जो चारा मिलता है वो हाई क्वालिटी का होता है, उच्च गुणवत्ता का होता है, इससे उनकी जो बढ़वार दर है वो बहुत ज्यादा होती है और उनमें बीमारियां भी कम होती हैं।
0: जी बिल्कुल, और खासतौर से क्योंकि हम देख पा रहे हैं जैसे नीम जो है उसकी पत्तियां यहाँ पर फिलहाल जो ये छोटे बच्चे हैं ये खा रहे हैं, और किस तरह की इनके लिए विशेष देखरेख की जरूरत होती है?
1: देखिए, जो छोटे बच्चे हैं वो या बकरियां की
0: जी
1: सभी अवस्थाओं में वो सभी तरह के चारों को खाती हैं।
0: जी
1: यहाँ आप देख रहे हैं कि नीम है, पीपल है, पाखर है, बरगद है, देसी बबूल है, सू बबूल है, मलबेरी है,
0: जी
1: तो बकरियां इन सबको बहुत चाव से खाती हैं। और मैं किसान भाइयों को एक जरूर कहना चाहता हूं
0: बिल्कुल
1: कि जहां कहीं पर उन्होंने अपने बकरी का बाड़ा बनाया हुआ है
0: जी,
1: कृपया आप इस मॉडल को फॉलो करें और वहां पर तरह तरह के वृक्ष लगवाएं, और जब भी चारे की कमी हो उनको चारा खिलाएं।
0: बिल्कुल, तो ये तमाम सावधानी हम कह सकते हैं हमारे जो किसान भाई हैं उनको रखनी होगी, तभी आप देखिए उन्नत बकरी पालन कर सकते हैं। जिस तरीके से यहाँ पर हमने बात की ही कि जो छोटे बच्चे उनका कैसे आप ख्याल रखेंगे, इससे ना सिर्फ जो पर्यावरण है वो हमारा अच्छा रहेगा, और एक संदेश भी जाता है कि अगर आप बकरी पालन कर रहे हैं तो आप एक पेड़ के आप कई पेड़ आप जरूर लगाएंगे, क्योंकि आपके जो बकरी पालन है, जो बच्चे हैं उनके आहार की बात है, और ये जरूरी कि उनको सही आहार मिले, तभी उसके बाद अगर आप सोचते हैं उनको मुनाफा अगर आपको मिल रहा है, क्योंकि रोजगार के अवसर यहाँ पे संभावनाएं जो है वो काफी है, वो तभी सार्थक सिद्ध हो सकती है जब आपको मुनाफा ज्यादा मिलेगा, और मुनाफा तभी होगा जब आप इनकी सेहत का ख्याल रखेंगे। और आज यहाँ पर हम पहुंचे थे मखदूम में, जैसा कि हमने आपको बताया डॉक्टर सिंह जो लगातार हमें जानकारी दे रहे थे, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमें दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।

0: केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान की अगर बात की जाए, यहाँ से लगातार जो किसान हैं वो यहाँ पहुँचते हैं और यहाँ से जानकारी लेकर जाते हैं। उसके बाद एक बड़े स्तर से लेकर छोटे स्तर की भी अगर बात की जाए, यहाँ पर हमारे जो किसान हैं वो उन्नत बकरी पालन कर रहे हैं। एक यहाँ पर और भी जो किसान हैं यहाँ पहुंचे हुए हैं जानकारी लेने के लिए, उनसे भी हम जानकारी ले लेते हैं किस तरीके से वो उन्नत बकरी पालन कर रहे हैं और यहाँ इस संस्थान से कितनी जानकारी उन्हें मिली है जिसका फायदा वो अभी तक उठा चुके हैं।
1: केंद्रीय बकरी अनुसंधान से बकरा मुझे प्राप्त हुआ और मुझे बकरियां भी कुछ प्राप्त हुई और बाहर से कुछ मैंने बकरियां परचेज करी, जिसमें मुझे जो है उनसे प्रोडक्शन हुआ और कम समय में मुझे अच्छे जो है उनसे बच्चे और उन्नत नस्ल के बच्चे प्राप्त हुए।
2: हमने संस्थान से प्रशिक्षण लिया था अपना ये अक्टूबर 2014 में, और संस्थान का एक कार्यक्रम स्टार्टअप कार्यक्रम के अंतर्गत हमें कुछ ब्रीडिंग मेल और बकरियां मिली थी, जिससे कि नस्ल सुधार में हमने उनको यूज़ किया है। कुछ बकरियां हमने बाजार से भी ली हैं जो कि इतनी प्योर नहीं थी, और जो संस्थान से बक मिला हुआ था हमें प्योर नस्ल के जानवर, उसकी वजह से हमारे यहाँ अब बहुत सारे जानवर प्योर नस्ल के पैदा हो गए हैं और जिनसे हमें जो है काफ़ी मुनाफा हो रहा है।
3: यहाँ से सही नस्ल से हमें जो है फ़ायदा काफ़ी मिला, अच्छी नस्ल पैदा करने की वजह से बाज़ार में उसका रेट काफ़ी बढ़िया मिला और 10,000 से लेके 20,000 25,000 तक के हमने बकरे बाज़ार में सेल करे। एक औसतन करीब 18 से 20,000 रुपये हमें हर बकरे के मिल जाते हैं बाज़ार में।

0: केंद्रीय भर्ती अनुसंधान संस्थान की अगर बात की जाए, यहाँ के निदेशक जो हैं मनमोहन सिंह चौहान जी, वो सब हमारे साथ मौजूद हैं। मनमोहन सिंह चौहान जी, बहुत बहुत स्वागत आपका खेत खलिहान में।
1: धन्यवाद।
0: डॉक्टर साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे, अगर संस्थान की हम बात करें, किस तरीके से लगातार जो संस्थान है ये काम कर रहा है?
1: देखो, ये हमारा जो है बकरी, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान जो हमारे यहाँ है, इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो हिंदुस्तान में जितने भी बकरियाँ हैं, जितने भी डिफरेंट ब्रीड्स की हमारे पास जो है जो बकरियाँ हैं, उन पर पहले खोज हो, उन पर हम ये करें कि किस ढंग से अच्छी जो है नस्ल को बढ़ावा दें, और जो नस्ल हमारे पास पैदा हो जाती हैं, जो होती हैं, उसको हम जो ये है कि फार्मर्स तक पहुँचाएँ। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि जो ये और भी है कि बकरियों में क्या होता है कि हर बकरी हर जगह नहीं हो सकती है, उपलब्धता नहीं होती है। तो हमारा ये है कि कोई खास जो ब्रीड है, जो एक जगह, जैसे हमारा है कि जहाँ बरसात ज़्यादा होती है वहाँ पर कोई ब्रीड होगी, जहाँ पर बरसात कम होती है वहाँ पर दूसरी ब्रीड होगी, जहाँ पर ऐसी है कि कोई जो है उसका जो टेम्परेचर अलग है वहाँ पर और कोई ब्रीड होगी। तो हमारा ये है कि कौन सी ब्रीड कहाँ पर फिट होगी, और इस ढंग से हम काम कर रहे हैं। हमारे संस्थान में डिफरेंट एरिया पर हमारे यहाँ हो रहा है काम।
0: बिल्कुल डॉक्टर चौहान, जैसा कि आपने बताया, जो तमाम नस्लें हैं वो इस संस्थान में है, और इसी की जानकारी जो है वो आप लगातार किसानों को भी देते हैं, लेकिन क्या ये पूरी प्रक्रिया है, कैसे जो किसान है वो नस्लों के बारे में जाने, यहाँ पहुंचे और इसकी जानकारी ले सकते हैं?
1: हमारे यहाँ क्या होता है कि हम हर साल जो है 4 या 5 हम मतलब किसानों के लिए ट्रेनिंग करवाते हैं। यहाँ पर किसान आते हैं, हम उनका रख रखाव का ध्यान रखते हैं, 10 से 12 दिन वो हमारे साथ रहते हैं, और उनको जो भी हमारे पास जो ब्रीड है, जो हमारे पास जमुनापारी है, बरबरी है, या जखराना है, उसके बारे में हम ब्रीड के बारे में उनको डिटेल में नॉलेज देते हैं कि कैसे उनका रख रखाव होता है, कौन कौन सी वैक्सीन उनको होगी, कैसे उनके दवाइयों का वो होता है, ताकि जो है वो सारा सीख कर जाते हैं। जब किसान वापस जाते हैं तो उसके बाद में वो अपने यहाँ देखते हुए हमारे यहाँ एक एप्लीकेशन भेजते हैं कि हमें इस ब्रीड का ये बकरी चाहिए या ये बकरा चाहिए, तो हमारे पास एक थोड़ा सा गाइडलाइंस है कि किस हिसाब से हमें उनको देना है, और हम किसानों तक वो अपने यहाँ की जो नस्ल है उनको पहुँचाते हैं।
0: बिल्कुल।
1: इसके साथ साथ हम ये ध्यान रखते हैं कि वहाँ पर वो ठीक ढंग से रख रखाव करें, तो उसको डिटेल में हम ये कूद देते हैं कि ताकि आप ये जो आपने जो ब्रीड ले गए हैं इसका रख रखाव कैसे हो सके। अगर उससे हम फोन नंबर ले लेते हैं, उससे फोन पर पूछते हैं कि तुम्हारा ठीक ठाक से हो रहा, चल रहा है कि नहीं चल रहा, कोई दिक्कत है तो हमें बताओ, ताकि हम यहाँ से अपने वैज्ञानिकों
0: समस्या का समाधान हो सके। बिल्कुल। इसके साथ ही डॉक्टर चौहान, अगर बात की जाए बकरियों की, तो गरीब की गाय कहा जाता है उसको, लेकिन अब इतने फायदे नजर आते हैं इस गाय के भी, क्योंकि प्रसंस्करण जो है वो काफी ज्यादा हम देखते हैं कि चलन में आ गया, और इसका काफी फायदा जो है वो किसानों को होता है, तो क्या प्रसंस्करण की भी यहाँ पर जानकारी दी जाती है?
1: देखो, अगर हम इसकी बात करें गरीब की गाय का, तो जो दूध इसका है, दूध में मुख्य गुण कुछ ऐसे हैं जो गाय और भैंस के दूध में नहीं है।
0: जी,
1: सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ ऐसे बायोपेप्टाइड्स हैं जो गाय और भैंस में

0: जाता है।
1: जी
0: इसके अलावा हमारे इसके दूध में ये पाया गया है कि कुछ ऐसे वो होते हैं कि जो हमारा रोगी के जो रोग के वो होती है जिसको इम्यूनिटी होती है, ये इम्यूनिटी को कहते हैं कि इनहांस करता है, बढ़ाता है,
1: बिल्कुल उसको बढ़ा सकता
0: है। हाँ, बढ़ा सकता है। तो इसकी वजह से हमारा जो है इस दूध को ये माना गया है कि ये अच्छा है।
1: साथ ही हम चाहेंगे हमारे जो दर्शक है यानी हमारे जो किसान है उनको क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से वो उन्नत बकरी पालन की ओर
0: देखो। अब सबसे पहले जो भी होता था बकरी पालन, उसमें क्या होता था कि जो बकरी ले गए वो अपने हिसाब से पालते रहते थे। अब हम ये कहते हैं कि वैज्ञानिक ढंग से इसको इस्तेमाल करें, क्योंकि हमारे यहाँ से जो शिक्षा है हम दें, हम कई बार ये है कि अपने पंपलेट हैं हमारे यहाँ से छोटी छोटी किताबें हैं जो हिंदी में हमने की हैं, संस्थान से हम डिफरेंट जगह पर दूसरे पार्ट में भेजते हैं। हमारे यहाँ एक ऑल इंडिया जो है कुछ वो है प्रोग्राम है जिसमें हम की सारे जगह जहाँ जहाँ पर जो भी फार्मर्स हैं जो भी वहाँ पर है केवी के हैं किसी जो है विज्ञान केंद्र है वहां तक हम पहुंचाते हैं, और ताकि वहां पर फार्मर्स आकर वैज्ञानिक जो ढंग से अगर इसका इस्तेमाल करते हैं और इसको वो करते हैं तो इससे एक तो ये है कि कम से कम उसमें कम से कम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट लें
1: जी,
0: और दूसरा ये है कि उनको नुकसान ना हो।
1: बिल्कुल, देखिए जो किसान है वो अच्छे से और ज्यादा अच्छे से ना सिर्फ एक आजीविका के रूप में बकरी पालन कर सकते हैं बल्कि पूरे परिवार का उससे भरण पोषण भी कर सकते हैं। डॉक्टर चौहान, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमें दी, हमारे दर्शकों को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: थैंक यू।
1: साथ ही हमारे दर्शक जो है वो और अच्छे तरीके से अब समझ पाए होंगे कि अगर वो उन्नत तरीके से बकरी पालन करते हैं और उसके साथ साथ देखिए जो वैज्ञानिक पहलू हैं उनका भी आपको ख्याल रखना होगा, तभी एक उन्नत ढंग से आप बकरी पालन कर सकते हैं और एक अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तो फिलहाल के लिए कार्यक्रम में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: गाजियाबाद भारत की राजधानी से सटे ऊपरी गंगा के मैदान के उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में स्थित है। इसी जिले के गांव चोलस से आते हैं हमारे सफल किसान शिव कुमार, जो दूसरे किसानों के सामने मिसाल पेश कर रहे हैं, जिन्होंने साधारण खेती नहीं बल्कि ऑर्गेनिक यानी कि जैविक खेती और पशु पालन दोनों को एक साथ चुना। शिव कुमार जैविक खेती से मिले फल सब्जियों का सेवन करने वाले लोगों का भी ध्यान रख रहे हैं, साथ ही साथ मोटा मुनाफा भी कमा रहे हैं। वो कैसे, तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं उन्हीं की जुबानी।
1: ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग करता हूं और नेचुरल फार्मिंग भी तो मैं अब से करने लगा हूं। पहले मैं जैविक खेती करता था। 2005-06 से मैं राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद के संपर्क में आया, जहां से ये केंचुए पालन मुझे सीखने को मिला और मैंने इनसे ट्रेनिंग लेकर के विधिवत तरीके से अपने यहां पर केंचुए पालन शुरू किया, जिससे मुझे केंचुए पालन के साथ साथ में वर्मी कंपोस्ट भी मिलता था और वर्मी वास भी मिलता था। इससे क्या हुआ कि जब मैंने अपने खेतों में विधिवत तरीके से अप्लाई किया तो मैंने वर्मी कंपोस्ट से कुछ किसानों को बेचा भी कि भाई इस विधि से हम जैविक पे आ सकते हैं, और जो हम जहरीली खेती कर रहे हैं, जो कन्वेंशनल फार्मिंग कर रहे हैं या ये केमिकल फार्मिंग से पेस्टिसाइड से जो हम खेत में लगा रहे हैं, इससे हम लोगों को निजात मिल सकता है, जिससे हम जहर मुक्त भोजन ले सकते हैं।
0: आज भले ही शिव कुमार अपने गांव और आसपास के इलाकों में चर्चा का विषय बन रहे हों, लेकिन ये सब करना उनके लिए इतना आसान नहीं था। इसके लिए उन्हें मदद मिली गाजियाबाद के राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र से, जिनकी मदद और सही सलाह अपनाने के बाद शिव कुमार आज एक सफल किसान बनने की राह पर अग्रसर है। कैसे शिव कुमार और उनके जैसे हजारों लाखों किसान खेत की मिट्टी को बेहतर बना सकते हैं, बता रहे हैं राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र के उप निदेशक जगत सिंह।
2: कुमार जी, वर्ष करीब 2005 से ही एक इनोवेटर के रूप में उभरे हैं और वर्ष 2014 से ये राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र से जुड़े। तो जब इनसे मेरी पहली बार मुलाकात हुई तो इनसे मुझे पता चला कि इनके खेत की

0: मिट्टी का पीएच हाई है और खेत में मोटे मोटे ग्रेवल्स हैं, माने कैल्शियम कार्बोनेट के पत्थर हैं, जो निशानी है ऊसर भूमि की या हाईली सैलाइन एल्किली की। तो उसी समय से हमने इनको जैविक खेती के परिपेक्ष में दो तीन चीजें बताई थी कि एक तो कंटिन्यू आपको ग्रीन मैन्योर का इस्तेमाल करना है, पकी और पची हुई खाद का इस्तेमाल करना है, जहां जहां पे सैलाइन एल्कली के पैचेज हैं वहां पे गोबर डाल के और थोड़ा मीठा डाल के उसको गलाना है, और जहां पे ज्यादा खारी सॉइल है वहां की मिट्टी उठा के उसमें मीठी मिट्टी और गोबर डालना है। तो पहले बार में इन्होंने ये काम किया। दूसरी बार में हमारे केंद्र से कुछ कल्चर दिए जाते थे जो डिकम्पोज करने का काम करते थे। शिव कुमार जी ने उस कल्चर का अपने खेतों में प्रयोग किया और उस कल्चर के प्रयोग से जो खेत का जो सैलाइन एल्कली का जो नेचर था हाई पीएच, वो लो पीएच में कन्वर्ट हो गया, और साथ ही साथ जो खेत में 1.5 से 2 इंच मोटे पत्थर थे वो भी धीरे धीरे समाप्त हो गए।
1: अब ये जैविक खेती है क्या जिससे हमारे सफल किसान अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं, जरा इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। जैविक खेती फसल उत्पादन की एक प्राचीन पद्धति है जिसमें फसलों के उत्पादन में गोबर की खाद, कंपोस्ट, जीवाणु खाद, फसलों के अवशेष और प्रकृति में उपलब्ध कई तरह के खनिज पदार्थों के जरिए पौधों को पोषक तत्व दिए जाते हैं। सबसे खास बात यह है कि ऐसी खेती में प्रकृति में पाए जाने वाले तत्वों को कीटनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैविक खेती पर्यावरण की शुद्धता बनाए रखने के साथ ही भूमि के प्राकृतिक स्वरूप को बनाए रखती है। जैविक खेती का मतलब एक ऐसी कृषि प्रणाली से है जिसमें फसलों के उत्पादन में रासायनिक खादों एवं कीटनाशक दवाओं के स्थान पर जैविक या प्राकृतिक खादों का प्रयोग किया जाता है। जैविक खेती को लेकर शायद हमारे सफल किसान शिव कुमार ये जानते हैं कि जिस तरह जैविक खेती बीते कुछ समय में लोकप्रिय हुई है, उसी हिसाब से आने वाला समय जैविक खेती का भी है, इसलिए उन्होंने जैविक खेती को चुना।
2: जैविक हर किसी को चाहिए और नेचुरल उत्पाद हर किसी किसान को, हर किसी उसको चाहिए जिनको खाना है, तो उसको लेकर के जितना मेरे पास में उत्पाद था उससे डिमांड अत्यधिक थी मेरी, तो इसलिए मैं बंसी गोल्ड पहले से लगा रहा था। बंसी गोल्ड गेहूं मैंने एमपी वाला गेहूं लगाया था, उसका उत्पादन बहुत अच्छा आया और उसकी जो हमारी पैदावार थी वो थोड़ी सी इससे कम थी, लेकिन जो हमारा खाने में बहुत अच्छी गुणवत्ता देता था HD 226 उसका विकल्प HD 3226 वैरायटी करके मुझे राष्ट्रीय नेशनल सीड कारपोरेशन से प्राप्त हुई। केवल 6 क्विंटल बीज मुझे मिल पाया था, तो मैंने विधिवत तरीके से अपने खेत में नवम्बर में यानी 17-18 नवंबर को मैंने इसको अपने खेत के अंदर लगा दिया था, और इसको मैंने विजय सुपर सीडर से की, उसका सीड ट्रीटमेंट मैंने अपने जेल खाद से वही 1 चम्मच लेकर के और थोड़ा एक उसमें 1 लीटर पानी डाल करके, और मैंने लगभग 3 क्विंटल गेहूं को पर्याप्त मात्रा में उसे बीज शोधन किया था, और थोड़ा सा उसमें मैंने हल्का सा 250 ग्राम गुड़ घोल कर भी उसको मिला लिया था। उसका मैंने विधिवत तरीके से उसका उपचार किया, और उपचार करने के बाद में जो मेरे पास में वर्मी कंपोस्ट था तो मैंने अपने उर्वरक के फर्टिलाइजर की जगह वर्मी कंपोस्ट अगले टापे में भर करके पिछले में सीड डाल करके और मैंने अपने सुपर सीडर से इन खेतों की बिजाई कर दी है, और यील्ड शायद इस बार बहुत अच्छा आएगा सर, मुझे रेट बहुत अच्छा मिल रहा है।
1: शिव कुमार का मानना है कि गांव में खेती बाड़ी आपसी सहयोग से की जाए तो काफी फायदा होता है और इससे आय में वृद्धि के साथ गांव का भी विकास होगा। तो वहीं सह फसली जैविक खेती पर सोने पर सुहागा का काम कर रही है जिससे शिव कुमार को 2 गुना लाभ हो रहा है। इस तरह सह फसली खेती करने से मेहनत मजदूरी के साथ साथ पानी, खाद, उर्वरक, बीज और कटाई का खर्चा निकल आता है।
2: पहले जैसे हम खेती कर रहे थे अभी भी और अच्छे तरह से उसको खेती को कर रहे हैं, हम फसल चक्र में लेके आए हैं। तो फसल चक्र से फायदा क्या है कि जो हमारा ये जो वीड है ये वीड अपने आप ही कंट्रोल हो जाता है फसल चक्र से। जैसे हमने अब तिलहन यानी तिलहन लगाया है, तो तिलहन के बाद में फिर हमने इसके तिलहन के बाद में जैसे मक्का लगाया है, मक्का के बाद में हम और सब्जी वर्गीय यानी कद्दू वर्गीय फसल इस तरह से घिया, तोरई, ककड़ी, खीरा ये इस तरह से ले रहे हैं, और इससे जो है किसान भाई समझे कि इससे अत्यधिक बेनिफिट है। सब्जी से जो आदमी उस किसान को जो मिलता है उससे बहुत ज्यादा कुछ मिलता है।
1: इन फसलों में धान और गन्ना जैसी फसल मुख्य है। गन्ने के साथ सह फसली करने के एक नहीं कई फायदे हैं। जहां गन्ने की फसल को पकने में 10 से 12 महीने लग जाते हैं, वहीं 60 से 90 दिनों में दूसरी फसलें पक जाती हैं। इस दौरान बीच बीच में सब्जियों और दलहनी फसलों की खेती करने से 2 से 3 महीनों में दूसरी फसलों की उपज से पैसे मिल जाते हैं। अच्छी बात ये भी है कि ऐसा कर हमारे सफल किसान अपनी जैविक खेती से दूसरे किसानों को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं।

0: धीरे के साथ बदलते भारत की शान।
1: मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिश तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। जी हाँ, हम हिंदुस्तानी दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना चले जाएं, पर ये दिल हमारा हमेशा हिंदुस्तानी ही रहता है।

नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू आर शो कृषि स्टार्टअप। हमारे देश में आज भी पशुपालन को पढ़े लिखों का काम नहीं माना जाता है, लेकिन दुष्यंत भाटी इस माइंडसेट को तोड़ रहे हैं। कौन है दुष्यंत भाटी और क्या है उनकी स्टार्टअप जर्नी, ये जानने के लिए आज हम आए हैं नोएडा के सेक्टर 61 में। तो चलिए मेरे साथ।

0: Hello and welcome to our show, Crisis Startup
1: Mission.
0: तो दुष्यंत भाटी जी अब मेरे साथ हैं यहाँ पर और मैं चाहूंगी दुष्यंत जी आप अपना इंट्रोडक्शन हमारे व्यूअर्स को खुद दें।
1: देखिए मैं मेरा नाम दुष्यंत भाटी है। मैंने अपना जो एजुकेशन करी है वो लंदन से करी है एमबीए, और वहां से आकर के हम लोगों ने 2018 में अपनी डेयरी फार्मिंग शुरू करी थी, और उसके साथ ही जो उसके साथ के और जो ब्रांचेज हैं उनको भी स्टार्ट किया है।
0: स्टार्टअप में आपने डेयरी फार्मिंग को चुना है, क्या रीजन रहा इसके पीछे?
1: वर्ल्ड में जैसे हम 2 साल लंदन में रहे तो हमने देखा कि वहां पर बड़े फार्म्स का सारा ही जितना भी मिल्क इंडस्ट्री वहां पे है वो बड़े फार्म्स के ऊपर है, तो एक ये था कि भी फार्म्स की एक शुरुआत करी जाए और उस हिसाब से जो बेस्ट प्रोडक्ट हम लोग मार्केट में ला सकते हैं विद इन आवर्स, उसकी एक सोच थी, और उसकी वजह से हम लोगों ने डेयरी फार्मिंग को चुना। और कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स हमको लेके जाने थे मार्केट के अंदर, ताकि जो आज मिलावटी प्रोडक्ट्स हैं उसको थोड़ा सा एड्रेस करना था कि भाई अच्छा काम भी हो सकता है। तो उसी हिसाब से हम लोगों ने सोचा कि भाई डेयरी फार्मिंग और फिर इंडियन रूट से जुड़ने का भी एक मन था, तो इसलिए इसको आके चुना कि भाई डेयरी फार्मिंग ही करनी है और इसी को आगे बढ़ाना है।
0: तो कभी मन में नहीं आया ऐसा कि नहीं व्हाइट कॉलर जॉब ही करना है, भाई 2 साल लंदन वाला लड़का हो जाता है तो मन में यही रहता है ना कि अगर वापस भी आना है तो कुछ ऐसा करेंगे कि ऑफिसर टाइप्स?
1: देखिए वो भी तरीके थे, बट जब करके आए वहां से मालूम चला तो ये रहा कि भाई किसी भी तरीके से किसानों की मदद करनी है और अपने को भी बढ़ाना है थ्रू एग्रीकल्चर, बिकॉज इंडियन एक एग्रीकल्चर कंट्री है और उसी के तहत सारी चीजें गवर्न होती हैं, और जो इंडस्ट्रीज भी होंगी या प्रोसेस इंडस्ट्रीज भी चलेंगी तो जब तक मेन रॉ मटेरियल ही नहीं होगा हमारे पास तो हम प्रोसेस किस चीज को करेंगे। इसलिए ये था कि भाई डेयरी फार्मिंग ही करेंगे, और बाहर से एक एक्सपीरियंस था कि भाई टेक्नोलॉजी को कैसे जोड़ा जाए उसके संग, तो जो हमारे यहाँ अभी स्कैरसिटी थी कि भाई साइंटिफिकली डेयरी फार्मिंग नहीं हो रही है, तो उसी को लेकर के हम लोगों ने कोशिश करी कि भाई हम डेयरी फार्मिंग करेंगे विद अ साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड डेयरी फार्म।
0: सच बताइएगा कि जब आप लंदन गए थे तो मन में यही था कि मैं जब लंदन से वापस आऊंगा तो डेयरी का स्टार्टअप ही खोलूंगा?
1: नहीं, एक्चुअली में मन ये नहीं था। फादर ने तो ऑप्शन दिया था कि वे लंदन में ही सेटल होने के लिए, बट मेरा थोड़ा इंडियन फूड से लगाव ज्यादा है, तो फूड की बड़ी वहाँ प्रॉब्लम है, तो मुझे ये था कि वे इंडिया ही वापस चलना है, और मैं थोड़ा सा फैमिली बेस्ड भी ज्यादा रखता हूँ मन अपना, तो मैं बिना फैमिली के भी वहां पे मुझे सेटलमेंट में टाइम लगा था, तो फिर ये था कि भाई कम से यहाँ आकर के कुछ करेंगे तो इंडिया में ही करेंगे।
0: तो बिल्कुल यही होता है एक हिंदुस्तानी मन के, कहीं भी चले जाएं दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं लेकिन जो यहाँ का जो फूड है जो यहाँ की रूट्स है उनसे हम जुड़े रहते हैं। तो आपने बताया पापा ने कहा था लंदन में सेट हो जाइए, तो जब आपने ये डेयरी वाला प्रपोजल उनके सामने रखा तो क्या रिएक्शन थी उनकी, क्या कैसा लगा
1: उनको? उनको ये था मतलब ही वॉज बिट डाइसी के भाई एजुकेशन डेयरी फार्मिंग से नहीं है, बैकग्राउंड डेयरी फार्मिंग से नहीं है, बिजनेस का बैकग्राउंड नहीं है फैमिली में, तो कैसे उसको परफॉर्म कर पाओगे, कैसे आप एफिशिएंटली डेयरी फार्म की परफॉर्मेंस बिजनेस की जितनी भी इकोनॉमिक्स है उसको प्रॉपरली प्रॉफिट्स में लाना, तो वो मैंने कहा कि भाई अब जब करना है तो फिर करना ही है, तो तब उसको प्लान किया और आज काफी अच्छी सिचुएशन में है।
0: रिलेटिव स्पेशली जो होते हैं वो कहते हैं अरे भाई लंदन से तो लड़का पढ़ के आ गया लेकिन देखो कर डेयरी रहा है, तो ऐसी रिएक्शंस मिली आपको लोगों से?
1: बहुत मतलब नेगेटिव थॉट्स मिले लोगों के कि भाई लंदन जाना था तो यही सब क्यों करना था, भाई यही कर लेते, इसके लिए तो कोई एजुकेशन चाहिए नहीं, बट मुझे ये था कि भाई कम से कम बाहर की टेक्नोलॉजी को जोड़ना और उसको प्रोफेशनली कैसे कर सकते हैं, और इट इज वी कैन रन लाइक अ इंडस्ट्री ऑल्सो, तो बहुत लोगों ने डिप्राइव किया, बहुत लोगों ने डिमोटिवेट किया कि क्या कर लिया, एजुकेशन नहीं है, वेटनेरियन आप नहीं हो, साइंटिस्ट आप नहीं हो, बाकी कोई भी आपके पास प्रॉपर डिग्रीज की नहीं है, तो मेरे पास एमबीए इन मार्केटिंग है, तो तब भी मैंने कहा कि भाई जब मुझे करना है तो करना है, तो इसीलिए मैंने उसको ध्यान रखते हुए कि काम को आगे बढ़ाया।
0: डेयरी हम मानते हैं कि कोई भी जो कम पढ़ा लिखा आदमी है या पढ़ा लिखा नहीं भी है वो भी चला सकता है, और आप फिर जब लंदन से एमबीए करके आए तो कहीं ना कहीं वो एक माइंडसेट रहा होगा कि अरे भाई जब इतनी बड़ी डिग्री हासिल करने के बाद आपको डेयरी ही चलानी है तो कोई नहीं पूछता उसमें कि आपके पास डिग्री है या नहीं है।
1: डिग्री की बात आती है कि भाई जो हमारे पुराने किसान जितने भी आजकल इंडिया में पुराने समय से करते हुए आ रहे हैं, तो उनकी आप अगर परफॉर्मेंस देखोगे, पर एनिमल मिल्क एवरेज देखोगे, तो जब वर्ल्ड से उसे कंपेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं डिफरेंस मिलेगा, तो उसमें क्या है कि आपके पास डेयरी फार्म को लेकर के नंबर ऑफ सेक्शंस हैं जिनको आपको साथ में लेके चलना है, वो उतने ही इम्पोर्टेंट है जितना आप सोचते हो कि भाई हमने गाय को एक चारा डाल दिया और हमारा काम हो गया।
0: तो बिल्कुल ये सवाल इसीलिए था क्योंकि ये जानना बेहद जरूरी है कि एग्रीकल्चर को भी पढ़ाई की जरूरत होती है, उसमें भी जो टेक्निक है उसको जानने की जरूरत होती है। तो आप जो पढ़े लिखे होते हैं तो आपको पता होता है क्या चीज कैसे करनी है। और जैसा कि दुष्यंत जी ने बताया कि जब हम वर्ल्ड के स्टैटिस्टिक्स देखते हैं दूध को लेके, तो हमें समझ में आता है कि क्या इम्प्रूवमेंट होना चाहिए देश में। तो ये आपने बेहद अच्छा काम किया है कि आपने जो डेयरी फार्मिंग है उसको छोटा नहीं समझा, लंदन से डिग्री लेने के बावजूद आपने इसे स्टार्टअप को चुना है, बेहद अच्छा आपने काम किया है। तो जब आपने ये शुरू कर दिया तो इनिशियल लेवल पे चैलेंजेस क्या थे?
1: हम लोगों ने इसको एज ए इंडस्ट्री पहले दिन से अडॉप्ट करने की कोशिश करी थी। तो इंडस्ट्री में और डेयरी फार्मिंग में क्या है कि वहां पे आप मशीन से डील कर रहे हो, वो लिविंग बींग नहीं है। और ये आपके पास अगर 100 काउज हैं तो वो सारे लिविंग बींग्स हैं। तो जिस तरीके की प्रॉब्लम्स ह्यूमन वर्किंग में आती हैं वो आपको फेस करनी पड़ती है डेयरी फार्म के अंदर, क्योंकि हर काउ का बिहेवियर अलग है, उसका वेदर को फील करने का तरीका अलग है, ईटिंग हैबिट अलग है। तो पहले तो उसको जज करना और एग्जामिन करना वो बड़ी चीज थी। और जब आप मशीन में, आपको पता है कि भाई आपने मशीन का ऑन किया बटन, वो आपको परफॉर्मेंस उसी तरीके से देगी, बट इनका हर मंथ हर डे डिफरेंट है, तो डिफरेंटली आपको प्रोडक्शन देगी। तो उस हिसाब को आपको उसके हिसाब से मैनेज करना है, क्योंकि मशीन में क्या है, आपने एक कोडिंग कर दी या एक तरीके से डिजाइंड है, वो आपको वैसे ही परफॉर्मेंस देगी। इसमें क्या है कि आपको काउस के साथ एडजस्ट होना है, उनके हैबिट्स को देख के आपको अपने डेयरी फार्म को चलाना है जिसको आप एक इंडस्ट्री का रूप देना चाह रहे हैं। तो उसमें प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी थी और धीरे धीरे उसको एड्रेस किया, सीखा, समझा। मुझे 3 साल लगे पूरे उसको एड्रेस करने में, बट आज की डेट में हम वेल सेटिस्फाइड हैं, वेल इक्विप्ड हैं और बहुत ही अच्छी हेल्थ है हमारी काउस की।
0: तो दुष्यंत जी, आपकी बातों से लग रहा है कि काफी अच्छी रिसर्च अब आपने इस पे कर ली है। आपने बताया कि काऊ का बिहेवियर भी अब आप समझने लगे हैं। और व्यूअर्स, सारी कहानी हमने जान ली है कि व्हाट मेक्स हिम चूज डेयरी फार्मिंग। अब हम यहाँ से सीधे चलेंगे इनकी हाईटेक डेयरी पर और जानेंगे क्या टेक्नोलॉजी ये यूज कर रहे हैं। जब तक हम वहां पहुंचे आप ले लीजिए एक छोटा सा ब्रेक।

0: तो ये है आपकी हाईटेक डेयरी। तो दुष्यंत जी, मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि आपने किसी भी गाय को बांध के नहीं रखा है।
1: ये एक लूज हाउसिंग कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें गाय के ऊपर हम लोग किसी भी तरीके का बांध के इसलिए नहीं रखते हैं क्योंकि उसको हम लोग चाहते हैं कि बेटर क्वालिटी उसको मिले खाने के भी, और एन नंबर ऑफ टाइम में उठ के वो खा सकती है और प्रोडक्टिविटी का फर्क पड़ता है, क्योंकि अगर बांध के रखेंगे तो वो हमारे मन से खाएगी, हमारे मन से पिएगी, और इसमें क्या है कि उसके पास अपना टाइम है कि कभी भी खाना है, कभी उठना है। हमारे यहाँ दो टाइम मिलके फीडिंग होती है, तो दो टाइम में सुबह और शाम, तो सुबह के टाइम में भी वो पूरे दिन खा सकती है और शाम को भी पूरे दिन खा सकती है। और अगर हम लोग उसको बांध के रखेंगे तो पानी हमें पिलाना पड़ेगा, जिस टाइम पे हम खाना डालेंगे उसी टाइम पे वो खाना खाएगी, तो उससे क्या होता है कि प्रोडक्शन भी डाउन जाती है और उतना बेटरमेंट भी फील नहीं होता उसको। तो आप अगर समझिए कि प्रोडक्टिविटी हमें किसी आदमी से भी चाहिए तो उसको जितनी व्यवस्था देंगे उतना ही अच्छा वो परफॉर्म करके देगा, तो उसी हिसाब से इनके ऊपर भी है।
0: जी, ये लूज हाउसिंग कॉन्सेप्ट क्या इंडिया में है या ये आपने कहीं और से अडॉप्ट किया है?
1: जी, मतलब ये है तो इंडिया में भी, और खासकर इन ब्रीड्स में ज्यादा इसको अडॉप्शन लिया गया है इंडिया के अंदर भी, काफी स्टेट्स में ये अडॉप्टेड है, और वेस्टर्न कल्चर तो इसका है ही मेन।
0: और अगर हम ब्रीड्स की बात करें तो कौन कौन सी ब्रीड्स यहाँ पर हैं?
1: यहाँ पे होलस्टीन है और जर्सीज हैं और कुछ मिक्स ब्रीड्स हैं जिसमें इंडियन और वेस्टर्न ब्लड दोनों।
0: तो इन तीनों ही अगर मैं बात करूं जो आपने ब्रीड्स बताई हैं, इनके मिल्क में क्या कुछ डिफरेंस होता है, किसका ज्यादा आपके हिसाब से बेटर होता
1: है? मैं तो इस चीज को नहीं मानता हूं कि भाई कोई भी डिफरेंस है, बिकॉज सारी चीजें इनके ईटिंग हैबिट्स में है कि आप उनको कितनी साइंटिफिक और बैलेंस डाइट दे रहे हो। अगर बैलेंस डाइट हम दे रहे हैं तो उसमें दूध का कोई भी फर्क नहीं आएगा। जो भी मैंने आसपास के फार्म के डेयरी फार्म हैं उनसे भी मैंने दूध को प्रिक्योर करके अपने टेस्टिंग कराई है, हमारे अपने दूध की भी टेस्टिंग करी है, और जो A1 A2 कॉन्सेप्ट है उसमें भी हमने देखा है कि हर काउ के अंदर अवेलेबल है, और जो हम सीमन लगाते हैं इन काउस के अंदर तो हम वही लेते हैं जिसमें A2 हो, तो इसलिए वो भी कॉन्सेप्ट इतना लागू नहीं होता है। बट लेकिन एक मार्केटिंग आजकल के ट्रेंड चल रहा है जिसको A1 A2 का बड़ा लोग मानते हैं, बट मैं इस चीज को नहीं मानता हूं कि भाई कोई भी डिफरेंस है, और अगर है भी तो हम उसको भी एड्रेस करते हैं। A2 काउस भी हमारे पास हैं जिसका सीमन हम A2 ही लगाते हैं
0: जी।
1: तो वो चीज भी है, और टोटली ऑटोमेटिक हमारा डेयरी फार्म है, तो इंडियन ब्रीड्स थोड़ा सा जो अपनी ऑटोमेटिक मशीन्स हैं उनको एक्सेप्ट नहीं करती हैं, ये इजीली उसमें अडैप्टेबल है, इसलिए हम लोगों ने इन्हीं ब्रीड्स को कॉमर्शियली अपने डेयरी फार्म में रखा है।
0: आपने बात की कि आप जैसा फोडर चारा इनको खिलाते हैं उसी तरह का आपको जो मिल्क प्रोडक्शन है इनसे मिल जाता है, तो फोडर पे आप इनको क्या दे रहे हैं और क्या देना चाहिए? जो किसान आपको आज सुन रहे हैं उनको आप क्या कहेंगे?
1: देखिए, बैलेंस डाइट होना बहुत जरूरी है अगर आपको कमर्शियल डेयरी फार्मिंग में करना है और उसको प्रॉफिटेबिलिटी मिलाना है, बिकॉज हर गाय का एक अलग कॉन्सेप्ट है, अलग ही उसका बॉडी वेट है, अलग ही उसकी मैकेनिज्म है, तो उस हिसाब से एक बैलेंस डाइट बनती है जिसमें कि कॉन्सेंट्रेट कितना है, ग्रीन फॉडर कितना है, साइलेज कितना है, विटामिंस मिनरल्स कितने हैं और अपना हे कितना है। जिस तरीके से हम लोग इनको जो भी चारा हम डालते हैं उसमें मिक्स राशन और बैलेंस डाइट, जो टोटल मिक्स राशन मशीन है हमारे पास, उसी से हम ऑटोमेटिकली इसको डालते हैं, तो उसमें क्या होता है कि पर ग्रुप वाइज जितने भी हमारे पास बॉडी वेट्स हैं, जितना भी मिल्क यील्ड है, उसको हम कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करने के बाद हम देखते हैं किस गाय को कितनी रिक्वायरमेंट है, तो उसी हिसाब से कॉन्सेंट्रेट, ग्रीन फॉडर, साइलेज और हे, जिसको हम तूड़ी बोलते हैं, और जो कॉन्सेंट्रेट को हम लोग अपनी खलचूरी चोकर बोलते हैं, तो उसकी एक हम लोग फीड लेते हैं किसी एक कंपनी की, तो वही हम बिल्कुल इसको संतुलित करके इनको डालते हैं ताकि अच्छा दूध मिल सके, नंबर ऑफ जो बीमारियां हैं वो कम हो, दूध की क्वालिटी बहुत अच्छी हो, और कहीं पे भी हम लोग ये देखते हैं कि भाई टाइम एंड टेम्परेचर मिल्क में बहुत मैटर करता है, उसको हम लोग मेंटेन करते हैं कि जितनी देर में मिल्किंग हो उतने ही देर में वो अपने चिलिंग सेंटर में पहुंच जाए, तो इसीलिए फॉडर का बहुत बड़ा रोल है डेयरी फार्मिंग में, कॉमर्शियली वायबल भी करने के लिए और इनकी हेल्थ को कंट्रोल करने के लिए।
0: तो जिस तरह से ह्यूमन बींग को एक बैलेंस डाइट की जरूरत होती है, हमारे इन कैटल्स को भी एक बैलेंस डाइट की जरूरत होती है। आपने जान लिया इनको क्या कुछ जरूरी है। अगर बात करूं दुष्यंत जी ट्रेनिंग की, तो आपने ट्रेनिंग कहाँ से ली है डेयरी की?
1: देखिए, ट्रेनिंग एसस तो मैंने एक्सपीरियंस लेके ही ली है, कोई कोर्स वगैरह इसका नहीं किया है, बट लेकिन मैं नंबर ऑफ डॉक्टर्स के साथ कनेक्टेड हूँ, नंबर ऑफ साइंटिस्ट के साथ कनेक्टेड हूँ, और नंबर ऑफ जितने भी किसान हैं, चाहे यूपी के हों, पंजाब के हों, हरियाणा के हों, उन सबसे मेरा टेलीफोनिकली भी बातचीत होती रहती है, मिलते जुलते भी रहते हैं, वर्कशॉप्स भी होती रहती है, हमारी कुछ समस्याएं होती हैं तो हम उन्हें बताते रहते हैं, तो ऐसे ही करके हम लोग सीखे हैं। NDRI में भी कई डॉक्टर्स हैं जिनके मेरे साथ कनेक्शंस हैं, उन्होंने काफी चीजें सिखाया है। बहुत सारे किसान हैं जिन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है कि गाय को कैसे पालते हैं, कैसे खाना खाती है गाय, किस तरीके की उसकी हैबिट्स हैं, तो वो सारी चीजें ये 4 साल का जो एक्सपीरियंस रहा है उसी से सीखने को मिला है।
0: और वैसे भी कहते हैं कि जो प्रैक्टिकल नॉलेज होती है वही आपको सक्षम बनाती है।
1: जी, उसको भी मैं मानूंगा कि भाई वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपके किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए। तो उसी हिसाब से हमें सारा ही डेटा, सारी ही चीजें वहीं से मिली हैं। जैसे एफी मिल्क से हम कनेक्टेड हैं इसराइल से, तो वहां के कुछ फार्म मैनेजर्स वगैरह हैं, उनकी विजिट्स हमारे यहाँ हुई हैं, उनसे हमने कंसल्ट किया है, बिकॉज वेदर बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है, समर्स में कैसे मेंटेन करना है, विंटर्स में कैसे मेंटेन करना है। तो इस तरीके से उनसे भी डेटा मिला है, नंबर ऑफ एंड यूजर्स से डेटा मिला है, कुछ डेयरी फार्मर्स जुड़े हुए हैं, तो सबकी समस्याएं सुन के अपनी समस्या बता करके इस तरीके से इसमें सुधार आता जा रहा है दिन पर दिन।
0: इसीलिए शायद आपने जो शावर्स हैं इनको लगाया हुआ है।
1: जी, ये समर्स की रिक्वायरमेंट है, तो जब ह्यूमिडिटी ज्यादा बढ़ती है तो शावर्स, फैंस, इसको कूलिंग सिस्टम बोलते हैं, तो ये इसराइल में बहुत इसका यूज किया जाता है, अपने पंजाब में बहुत यूज किया जाता है, तो वहीं से, ताकि गायों को क्या है कि इनके स्वेट ग्लैंड्स कम होते हैं या होते ही नहीं है, तो उसको पूरा करने के लिए, तो इनको हीट कंट्रोल करने के लिए हम लोग फैंस और फॉगर्स का यूज करते हैं, और इनको हर 3 घंटों में शावर भी देते हैं ताकि ये पूरी तरीके से कूल डाउन रहें और अपनी चारे को पूरा खत्म करें शाम तक।
0: हाँ, दुष्यंत जी, आपने MBA किया है, आपका स्पेशलाइजेशन मार्केटिंग में है, तो उस डिग्री को आप इस अपने स्टार्टअप में कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं?
1: देखिए, उस चीज को हम ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं कि हम लोगों ने इसको एज अ इंडस्ट्री पहले दिन से लेके चले हैं। नंबर ऑफ डिपार्टमेंट जो एक इंडस्ट्री को चलाने के लिए होते हैं वो हमने अपने यहाँ बना रखे हैं। उसके साथ साथ हमने जितने भी प्रोडक्ट्स दूध से बन सकते हैं वो सारे बनाए हैं और उसको सबको मार्केटाइज कर रहे हैं हम। तो आज हमारी नोएडा, ग्रेटर नोएडा के अंदर 400 डिलीवरीज हैं जो हम ऑनलाइन डायरेक्ट फार्म टू होम कर रहे हैं, और ये लास्ट 4 ईयर से हम लोग इस काम को कर रहे हैं। तो एंड यूजर तक हमने प्रोडक्ट को पहुंचाया है ताकि कोई भी बीच में मिडिलमैन ना हो, और जो हम कर रहे हैं वो सीधा कस्टमर तक पहुंचे, तो उस चीज को हमने वहां एप्लीकेबल किया है।
0: बिल्कुल, जो लंदन से डिग्री लेके आए हैं वो भी वेस्ट नहीं हो रही है, पूरी तरह से यूटिलाइज हो रही है इस डेयरी फार्म में।
1: जी बिल्कुल, तो उसी तरीके से आप देख सकती है कि इसका जो इंफ्रा बनाया हम लोगों ने, इनकी हैबिट्स हैं, ये टोटली ऑटोमेटिक कंट्रोल्ड हैं, इनके गले में नॉब पड़ी हुई है जिससे हमें इनका डेटा मिलता है कंप्यूटर के ऊपर कि इन्होंने मैस्टिकेशन, जिसको जुगाली बोलते हैं, वो कितनी करी है। तो इस गांव में आप देख भी सकते हैं ये गले में डला हुआ है। इस तरीके से हमें सारा कंप्यूटर पे डेटा भी मिलता है इनका कि ये कैसे परफॉर्म कर रही है, कितने घंटे इन्होंने खाया है, किस तरीके से इन्होंने परफॉर्म करा है, तो इनका हीट पे आने का सिस्टम कब है, तो वो भी इंडिकेशन हमें पहले मिलती है 12 घंटे। तो उससे हम पहले से प्रिपेयर रहते हैं कि भाई हमारे फार्म में क्या होने वाला है, तो उसको हम पहले से ही क्योर कर लेते हैं।
0: तो दुष्यंत जी यहाँ पर मिल्क प्रोडक्ट्स बना रहे हैं अपने ही ब्रांड नेम के साथ, और यहाँ पर मिल्क किस तरह से आप निकालते हैं वो भी हम जानना चाहेंगे, क्या टेक्निक यूज कर रहे हैं आप?
1: जी, तो
0: मैन्युअली होता है या
1: नहीं? मैन्युअली नहीं है, टोटली ऑटोमेटिक है, विदाउट हैंड टच है, मशीन्स लगती हैं, एक पैडॉक जोन बना हुआ है मिल्क पार्लर का, तो वहां पे गाय आती हैं, पहले वो उनका बेथिंग लगा हुआ है, स्प्रेज लगे हुए हैं ऊपर, तो बेथिंग करके फिर उनको उसमें जाती है मिल्किंग पार्लर में, वहां से दूध निकलता है और वो डायरेक्टली सीधा चिलिंग सेंटर में पहुंचता है प्रोसेसिंग के लिए विदाउट हैंड टच, पाइप्स के माध्यम से ही वो पहुंचता है, और LSA भी वहां रहता है हमारे, और जो मिल्कर्स हैं वो भी रहते हैं, तो वो प्रत्येक थन को चेक करते हैं, दूध की गुणवत्ता को देखते हैं। उस तरीके से फिर हमारे पास अपनी लैब भी है, उस लैब में हम लोग दूध की टेस्टिंग करते हैं, फिर हम उसको प्रोसेसिंग के बाद पैकेजिंग में, प्रोसेसिंग से पैकेजिंग के बाद डिलीवरीज में जाता है कस्टमर्स को।
0: तो हम जानेंगे कि किस तरह से जो दूध निकालने का प्रोसेस है मशीनों द्वारा यहाँ पे किया जाता है, लेकिन उससे पहले यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं जाएगा नहीं, बने रहे हमारे साथ डीडी किसान पर।
2: इसका जो माइंडसेट था काम के प्रति वो ये था कि भाई मुझे कुछ अलग करना है, इसीलिए उसने इस फील्ड को चुना। लोगों ने इसको बहुत कुछ बोला कि भाई ये कैसे काम है, पढ़ा लिखा के ये करा वो करा, लेकिन उसके बाद बच्चे ने अपने आप को सीधे रास्ते पे काम करते हुए, नफा नुकसान तो जिंदगी के साथ होता है, लेकिन बच्चे ने अपने आप में इतना कॉन्फिडेंस के साथ इसको आगे ले गए हैं और आज उसको इतनी कामयाबी उसमें मिली है। उसके काम से उसके नाम से आज हम बहुत खुश हैं। और ये बच्चों को प्रेरणा लेना चाहिए कि भाई इस तरह के माइंड को सेट करें और इन जमीनी चीजों से, ये हमारी इंडिया का एक कल्चर है और हम लोगों को इसे आगे ले जाना चाहिए। बच्चों को काम छोटा बड़ा नहीं है, बच्चों को ईमानदारी से और सहलगन से काम करना चाहिए।
0: तो ये एक नई जनरेशन के लिए एक इंस्पिरेशन है। जैसे वो लंदन से पढ़ के आया है, उसने एमबीए किया है और अपने रूट से आके वो जुड़ा है और सारी जो चीजें उसने की हैं ये बहुत हाईटेक लेवल पे की हैं। तो इसे देख के हमको और हम पूरे घर वालों को एक बहुत मतलब खुशी मिलती है।
3: ये हमारा प्रोसेसिंग सेक्शन है जिसमें जहाँ से मिल्किंग होती है डायरेक्टली वो ऊपर आता है और उसमें चिलर में आता है फर्स्ट, वो सेकेंड पैस्चराइजेशन में आता है। पैस्चराइजेशन होने के बाद हम लोग उसको प्रोसेस करते हैं और जैसे डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो बनने होते हैं, जैसे मिल्क जाना है अगर मार्केट में तो काव मिल्क, काव मिल्क के बैच बनेगा, बफलो मिल्क, बफलो मिल्क का बैच बनेगा, FCM है जो फुल क्रीम मिल्क के नाम से आता है, वो 6 लीटर की पैकिंग है हमारी, वो उसके हिसाब से बनेगा। तो डिफरेंट डिफरेंट मशीन्स हैं जिसमें पैस्चराइजेशन, होमोजेनाइजेशन, क्रीम सेपरेटर, जब घी बनाना होता है तो उसके लिए क्रीम सेपरेटर है, बाकी उसकी बॉइलिंग केटल्स हैं, तो और डिफरेंट जैसे स्वीट्स के लिए जाना है तो डिफरेंट डिफरेंट मिल्क का कैटेगरीज बैच बन करके वो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में अपना इन्हीं मशीनों के द्वारा चला जाता है। CIP स्टेशन है, बाकी नीचे एक पैडॉक जोन है जिससे कि जो हमारा हापुड़ वाला कलेक्शन सेंटर है वहां से भी दूध आता है तो डायरेक्टली वो यहाँ आ जाता है, उसके भी नीचे पैडॉक जोन है।
0: तो काफी सारी मशीन मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, तो क्या आपने इस सेटअप को तैयार करने के लिए गवर्नमेंट से कोई एड लिया है?
3: जी, अभी हम लोग एप्लीकेबल है उसमें और प्रोसेसिंग के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है, तो उसमें यह है कि पहले आप बैंक को अप्रोच करेंगे, उसके बाद आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपना प्रोजेक्ट DPR सबमिट करेंगे, आफ्टर दैट वो लोग उस पर टेक ऑफ करेंगे कि भाई कैसे लेना है, कि कितना आपको मिलेगा, किस कैटेगरी में आप फॉल करते हैं। तो अभी हम लोगों ने 20,000 लीटर का प्रोसेसिंग प्लांट लगाया है पर डे।
0: जी, और काफी बड़ा सेटअप यहाँ पर मैं आपका देख पा रही हूँ, तो अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो कितने लोगों को आपने एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर?
3: अभी करीबन 105 लोगों को हमने एम्प्लॉय कर रखा है जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और 20 गांव अलग हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो हमारे लिए डायरेक्टली मिल्क को हमारे लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं।
0: ये तो काफी अच्छी बात है, क्योंकि जब कोई स्टार्टअप शुरू होता है तो स्टार्टअप की अच्छी बात यही होती है कि आप दूसरों को भी रोजगार दे पाते हैं, क्योंकि जब हम जॉब में जाते हैं तो सिर्फ हम अपने लिए एक रोजगार डेवलप करते हैं अपनी काबिलियत के हिसाब से, लेकिन जब आप एक स्टार्टअप शुरू करते हैं तो आप दूसरों का भी भला कर पाते हैं।
3: जी,
0: और जैसे कि आपने बताया था कि आपके काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं यहाँ,
3: जी,
0: तो अगर मैं आपसे जानना चाहूँ तो क्या कुछ प्रोडक्ट्स हैं आपके जो यहाँ पर तैयार हैं?
3: देखिए, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स में सारे प्रोडक्ट्स हैं अपना, काउ मिल्क, बफलो मिल्क, FCM, और फिर छाछ है दो टाइप की, तड़का और प्लेन, घी है 4 टाइप के, काउ, बफेलो, देसी गाय, मिक्स मिल्क का जो घी है जैसे देसी घी हम लोग मार्केट में जानते हैं वो है, खोया है, और वर्मी कम्पोस्ट है, हम लोग जो गाय का गोबर है उससे वर्मी कम्पोस्ट भी बना रहे हैं और वो भी मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं विद अ मोबाइल ऐप, तो ऑनलाइन हमारी ऐप के थ्रू सभी लोग उसको परचेज कर पाएंगे विद इन 5 or 10 days।
0: और जो अवेलेबिलिटी रहेगी वो ऑल ओवर इंडिया रहेगी या कुछ?
3: नहीं, वो अभी 2 districts है, गौतम बुद्ध नगर एंड गाजियाबाद, बिकॉज हमारे पास उतनी ही प्रोडक्शन है जो हम 2 जिलों को केटर कर सकते हैं अभी, और प्राइमरी फोकस हमारा क्वालिटी पे है तो उसी के तहत हम लोग काम कर रहे हैं अभी।
0: जी बिल्कुल, हम तो चाहेंगे आपका प्रोडक्शन जल्दी से जल्दी बढ़े और आप और लोगों को रोजगार दें। और अगर मैं दुष्यंत जी आपसे आपके फ्यूचर विजन की बात करूं तो क्या है वो आपका?
3: तो फ्यूचर में हमारा प्लान ये है कि पहले तो 20,000 लीटर को प्रोसेसिंग करके ऑप्टिमाइज लेवल पे लेके आए प्लांट को, उसके बाद हमारा 1,00,000 लीटर का प्लान लगाने का भी है और FMCG प्रोडक्ट्स में भी हमारा आने का प्लानिंग है, कि जिससे कि जितने भी फार्मर्स हैं जो ऑयल्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, कोल्ड प्रेस ऑयल है, दाल है, मसाले हैं, चावल हैं, सीरियल्स हैं, तो नॉन पॉलिश्ड जितने भी ऑर्गेनिकली हम लोग उसको प्रिक्योर करके पैक करके कस्टमर्स को देना चाहते हैं विद द सेम नेम ऑफ धनश्री, तो इसी के तहत हम लोग फ्यूचर प्लानिंग के चल रहे हैं।
0: तो बहुत अच्छा विजन आप लेके चल रहे हैं, बड़ा विजन आप लेके चल रहे हैं। और मैं सबसे पूछती हूँ, आपसे भी जानना चाहूंगी कि इस वक्त जो हमारे व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, उनके लिए स्पेशली यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे?
3: डेयरी फार्मिंग में आए और उससे क्या है कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ईच एंड एवरी प्रोडक्ट का करें, जैसे गाय का मूत्र है तो उसको खेती में इस्तेमाल कर सकते हैं, गोबर है तो गोबर को आप वर्मी कम्पोस्ट में कर सकते हैं, वो भी एक्सपोर्ट तक जा रही है, बाकी जितने भी ठंडे प्रदेश हैं उनमें उसकी रिक्वायरमेंट है, यूरिया का अच्छा रिप्लेसमेंट है तो उसकी भी आपको कॉस्ट मिलेगी, अच्छे मिल्क प्रोडक्ट्स बनाएंगे तो उसकी भी डिमांड अच्छी है मार्केट के अंदर। देखिए, अच्छे प्रोडक्ट की हर जगह सेल्स आपको मिल जाती है, प्रॉब्लम कहाँ आती है बेचने में, जहाँ आपके क्वालिटी में दम नहीं है, आपके प्रोडक्ट में दम नहीं है, अगर आपके पास अच्छा प्रोडक्ट है तो वो आप कैसे भी करके उसको बेच लेंगे, और एक अच्छी लगन और मेहनत के साथ अगर कोई भी काम करना चाहेगा, वो किसी भी फील्ड में करना चाहेगा, तो वो सक्सेस जरूर करेगा। तो मेरा सभी युवा साथियों के लिए यही मैसेज है कि मेहनत करके और एक विजन को लेकर के और प्लानिंग के साथ चलें, जरूर कामयाब होंगे।
0: एक बेहद अच्छा जो मैसेज है वो यहाँ दुष्यंत जी ने आपको दिया है, और दुष्यंत जी की जो स्टार्टअप जर्नी आज हमने जानी है उसको पूरा सुनकर और जानकर दो लाइनें मुझे यहाँ याद आती है जो यू है कि साहिल के सुकू से कब इनकार है मुझे, साहिल के सुकू से कब इनकार है मुझे, लेकिन तूफानों से लड़ने का मजा ही कुछ और है। तो आपकी जर्नी काफी आसान थी, चाहते तो आप भी एक कोई व्हाइट कॉलर जॉब कर सकते थे, बट आपने डेयरी जैसे स्टार्टअप को चुना जो अपने आप में एक चैलेंजिंग है और मेहनत वाला काम है
3: जी।
0: तो हम तो आपको यही कहेंगे कि आपके जल्दी से सारे ड्रीम्स पूरे हों, आप अपने जल्दी से टारगेट्स को पूरा करें। वेरी ऑल द बेस्ट फ्रॉम डीडी किसान चैनल एंड फ्रॉम आवर प्रोग्राम कृषि स्टार्टअप, एंड आई एम रियली डिलाइटेड टू हैव यू इन माय शो।
3: थैंक यू सो मच। थैंक यू
0: दोस्तों, हम आपको आगे भी ऐसे ही प्रोग्रेसिव एंटरप्रेन्योर से मिलवाते रहेंगे जो कृषि जगत में नए आयाम गढ़ देश को आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रहे हैं। अगर आपको लगता है आपकी स्टार्टअप जर्नी भी दिलचस्प है और ये लोगों तक पहुंचनी चाहिए तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है digital.agrikisan@gmail.com। साथ ही हम उम्मीद करते हैं दोस्तों जो आपका फीडबैक हमें मिलता है आगे भी इसी तरह मिलता रहेगा। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगी एक नई स्टार्टअप जर्नी को लेकर, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।

मेरा नाम कोमल है, मैं शाहबाद में रहती हूँ और मैंने अभी 10th क्लास बोर्ड के एग्ज़ाम्स दिए हैं। मैं यहाँ सर्वोदय कन्या विद्यालय में पढ़ती हूँ और बचपन से ही शाहबाद के अंदर रही हूँ और मैंने यहाँ पे बहुत कुछ देखा है, लाइक लड़के लड़कियों में भेदभाव, कहीं इधर उधर ना जाने देना, यहाँ तक कि जैसे अपने रिलेशन में ही बहुत से मुसीबतों को सामना करना पड़ जाता है उन लोगों को। जैसे अपने ही पेरेंट्स, अपने ही रिलेशन में लड़कियों के साथ क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता, बट वो लड़कियाँ खुल के कह नहीं पाती हैं, किसी से बता नहीं पाती हैं, उन्हें डर लगता है, बहुत सी चीज़ें सोचती हैं क्योंकि उनके दिमाग में यही रहता है कि हर बार तो बदनामियाँ लड़कियों की ही होती है। और काफ़ी बार ये भी होता है कि लड़कों को आगे बढ़ा दिया जाता है और लड़कियों को पीछे, भले ही हम कितने भी ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्यों नहीं हो गया, भारत इंडिपेंडेंट तो हो चुका है बट भारत के लोगों की सोच अभी तक वैसी की वैसी ही है। कुछ लोग हुए हैं बट अभी भी बहुत कम लोग हुए हैं। और बहुत सी जगह, जैसे घरों में ही देख लो, लड़कियों को कहीं आने जाने की सलाह नहीं दी जाती, लड़कों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया जाता है तो लड़कियों को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाया जाता है। लड़कों के लिए बहुत सी फैसिलिटीज़ होती हैं बट लड़कियों के लिए नहीं हो पाती हैं। तो मैं यही चाहती हूँ कि मैं उन लोगों में से नहीं रहूँ, मैं खुल के जीना चाहती हूँ और मैं सब कुछ करना चाहती हूँ जो लड़के करते हैं। मैं अपने अंदर हर हॉबी रखना चाहती हूँ। और इस रीड इंडिया सेंटर पे मैं 2-2.5 महीने से आती हूँ। मैं शुरू शुरू में जब यहाँ आती थी तो मैं यहाँ सिर्फ लाइब्रेरी में बैठ के स्टडीज़ किया करती थी, बिकॉज़ लाइब्रेरी यहाँ की बहुत अच्छी है, वहाँ पे काफ़ी सारी बुक्स है, किताबें हैं और काफ़ी सारी स्टडीज़ की हैं, काफ़ी सारे लेवल्स किए, आपको जो भी जानना हो वहाँ बैठ के जान सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, बहुत सारे कोर्सेज़ हैं, इंग्लिश कोर्स और कंप्यूटर कोर्स, स्टिचिंग कोर्स, ब्यूटी पार्लर कोर्स, यहाँ तक कि स्कूल भी है यहाँ पर एक छोटे बच्चों के लिए। तो मैं पहले जब आती थी तो उस टाइम मुझे इतना कुछ फैसिलिटीज़ के बारे में पता नहीं था, सो मैं यहाँ पे सिर्फ लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ा करती थी। तो कुछ दिन पहले मुझे यहाँ पे रेडियो के बारे में पता चला कि जिन लोगों को शौक़ है गाने का, जो इंटरेस्ट रखते हैं, वो यहाँ पे गाना भी गा सकते हैं अपना। तो तब मैंने सोचा कि मैं अपनी आवाज़ को एक आगे बढ़ा सकती हूँ अगर मैं अच्छा गाती हूँ, बिकॉज़ अगर मैं मेहनत नहीं करूँगी तो मैं उस मुकाम को हासिल नहीं कर पाऊँगी, अचीव नहीं कर पाऊँगी उस चीज़ को। तो मैंने ये कोशिश की है कि मैं अपने लिए एक गाना रिकॉर्ड करूँ, बाय चांस कभी ना कभी वो आगे जाए, कोई ना कोई सुने, किसी को अच्छा लगे, इसलिए मैं एक गाना गाना चाहती हूँ।

0: रीड इंडिया के कार्यक्रम सुनने वालों को गीता का प्यार भरा नमस्कार। आज हमारे साथ हैं अंजू गौर, जिनकी एक बहुत ही सुहानी जिंदगी की कहानी है जो हम यहाँ पे आप लोगों को सुनाना चाहते हैं। अंजू, आप अपने बारे में थोड़ा बताएंगे।
1: धन्यवाद मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ पर आने के लिए प्रेरित किया। मैं अपने बारे में बताना चाहती हूँ कि मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। दिल्ली में ही मेरे पैदाइश हुई, दिल्ली में रहे हम लोग, फिर शादी भी दिल्ली में ही हो गई। शाहबाद गांव में आई मैं, हम लोग यहाँ पर, मैं आई यहाँ पर तो घर में हमारा माहौल था कि पर्दे में रहना है, हमें पर्दे से बाहर नहीं निकलना, बड़ों से बात नहीं करना, इस तरह का माहौल था। घर से बाहर निकलने के भी मना था कि घर से बाहर भी नहीं निकलना, तो घर के अंदर ही रहना सब। जो
0: तो दिल्ली में शादी से पहले कहाँ रहती थी आप?
1: दिल्ली में है गांव लाड़ोसराय नाम का गांव है।
0: अच्छा।
1: तो महरौली के पास है ये गांव, तो वहीं पर हम पांच भाई बहन है हम लोग, वहीं पे हमारे सब फैमिली रहती है हमारी।
0: तो जब शादी के बाद शाहबाद आई तो आपने क्या सोचा कि आप अपनी जिंदगी बस पर्दे के अंदर ही बिता देंगी या पर्दे के बाहर भी निकलेंगे?
1: नहीं मैम, ऐसा कभी नहीं सोचा था कि मैं इस तरह के माहौल में जाके मुझे आगे इस तरह से रहना पड़ेगा, क्योंकि मेरी बड़ी बहन भी हैं, देहरादून में रहती हैं, उनका इतना अच्छा माहौल था, मैं देखती थी शायद मुझे भी इस तरह से कुछ मिलेगा, लेकिन यहाँ आई तो कुछ अलग ही माहौल था, बिल्कुल अंदर घर में बंद होकर रहना। और मैंने बीएड किया हुआ है, ग्रेजुएशन की है, तो उम्मीद थी कि मैं जॉब करूं, मुझे एक इच्छा थी कि मैं जॉब करूं, लेकिन हस्बैंड ने कभी अलाउ नहीं किया जॉब करने के लिए।
0: तो आपका ये सपना पूरा हुआ?
1: बिल्कुल मैम, सपना पूरा हुआ। रीड इंडिया मेरे लिए तो एक जादूगर की तरह आया एकदम से। शाहबाद में जब रीड इंडिया का नाम, मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया था, ये तो है कि उन्होंने अलाउ नहीं किया था, लेकिन जब रीड इंडिया का नाम यहाँ पर आया और वो गीता मैम से मिले, तो उनको देख के उनको लगा कि शायद ये है जो मेरी वाइफ के लिए कुछ आगे हो सकता है। तो रीड इंडिया का जब नाम उन्होंने सुना और देखा कि वो लोग किस तरह से काम करते हैं और इतना अच्छा काम है, एजुकेशन के लिए काम कर रहे हैं, तो शायद मेरे लिए भी उन्होंने सोचा कि ये पढ़ के घर में बैठी हुई है तो इसको भी आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। तो इस तरह से मैं भी रीड इंडिया के परिवार में शामिल हो गई।
0: मुझे याद है अंजू, जब हमने ये शाहबाद मोहम्मदपुर में सेंटर बनाया था, तो ये जहाँ पे सेंटर है ये आपका परिवार का घर है, तो घर में परिवार कैसे एग्री हो गया कि हम ये जगह सेंटर बनाने के लिए दे देते हैं, उसके बारे में भी मैं जानना चाहूंगी।
1: बिल्कुल मैम, मेरे जो सास ससुर हैं, वो भी ससुर जो मेरे हैं वो बहुत अच्छी पोस्ट पे थे, पढ़े लिखे हैं, तो उनकी इच्छा थी कि उनकी बहू भी एक आगे बढ़े, कुछ करे, लेकिन शायद बेटे के सामने बोलने की उनकी हिम्मत नहीं हो पाती थी। तो जब वो मैम से उन्होंने सुना मैम के बारे में और इस तरह से एक रीड इंडिया है जो पढ़ाई के लिए, गांव के विकास के लिए कुछ करना चाहते हैं, और गांव में सभी ने मना भी कर दिया था कि शायद वो, उनका ये गांव में सोच है कि शायद बाहर से कुछ लोग आए हैं और पता नहीं क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, तो इस तरह से हमें यहाँ से जो है बाहर निकलने का उनका मन था कि शायद गांव में उनका मन नहीं लग पा रहा था, वो यहाँ से निकलना चाहते थे और अपने घर को एक अच्छी लोगों के लिए देना चाहते थे कि कुछ करें आगे। तो उन्होंने जब देखा कि ये लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं गांव के विकास के लिए यहाँ पर आए हैं, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम अपना घर उनको दें, जो एक अच्छा काम हो यहाँ पर लोगों के विकास में, गांव के विकास

0: निकल जाएगी। लेकिन जब यहाँ पर मैं रीड इंडिया से जुड़ी, रीड इंडिया परिवार में शामिल हुई, तो मैंने बहुत सी ट्रेनिंग्स यहाँ पर मुझे मिली। सबसे पहले लाइब्रेरी के बारे में जाना मैंने। मैं लाइब्रेरी के बारे में सिर्फ सुना था, स्कूल में देखा था, लेकिन ये नहीं पता था कि लाइब्रेरी से जुड़ के हम लोग इतना आगे बढ़ जाएंगे कि हमारे जीवन में शायद कभी इतना बदलाव नहीं आ पाता अगर ये लाइब्रेरी का स्पेस हमें यहाँ नहीं मिलता तो। दूसरा, अपने गांव के लोगों के लिए कुछ करने का मौका मिला, और आज जो है गांव में इतना बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एजुकेशन उनको मिल रही है, और गांव की औरतें हैं जो घर कुछ नहीं चाह, उनको मैं ऐसा था नहीं कि कुछ सीख के आगे बढ़े, कुछ करें, और हम उनके साथ में मिलके उनके लिए इतना अच्छा सिलाई सिखा रहे हैं, उनको कंप्यूटर एजुकेशन दे रहे हैं गांव की लड़कियों को जो जॉब भी कर रही हैं सीखने के बाद में। और मैं तो यही कहूंगी कि क्या कहते हैं कि पर्दे से बाहर निकल के, और एक जो आसमान में पंछी होता है उस तरह से हो गई हूँ कि अब खुले आसमान में मैं बाहर निकल गई हूँ बिल्कुल। तो रीड इंडिया की वजह से मुझे अपने आपको आगे बढ़ाने का मौका मिला है।
1: आपने एक बहुत अच्छी बात की कि पर्दे से बाहर निकल के आपको पंख लग गए और आप आसमान पे उड़ रही हैं।
0: बिल्कुल,
1: ये एक बहुत बड़ा बदलाव है, बहुत बड़ी बात है अंजू जी जो आपने कही, और मुझे ये लगता है कि जो भी ये कार्यक्रम सुनेंगे इस मैसेज से उनके मन में भी ये इच्छा आएगी कि वो भी अपने कैसे पंख लगा सकते हैं और उड़ सकते हैं।
0: मैं ये उम्मीद करती हूँ मैम कि गांव में जो भी सब हमें देखें कि यहाँ पर गांव की औरतें निकलकर यहाँ पर इतना आगे बढ़ गई हैं, तो वो भी सोचें कि हम भी कुछ करें अपनी लाइफ में, आगे बढ़ें। जो बाहर नहीं निकलने देते अपनी बहुओं को, वो आज हमें देखकर उनकी सोच बदलाव तो आया है कि हमारी बहुएं भी जब ये कर सकती तो वो क्यों नहीं कर सकती।
1: आपके बदलाव को देख के आपके अंदर क्या कमिटमेंट आती है कि आप कितनी औरतों के जीवन में बदलाव ला सकती हैं?
0: मेरे तो इच्छा है, और ये मैंने देखा भी है कि बहुत से लोगों ने ये कहते सुना, अगर अपने मुंह में बड़ाई वाली बात हो गई कि हम लोग अंजू मैम जैसा बनना चाहते हैं।
1: वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने आज अपने बारे में हमारे साथ चर्चा की, शुक्रिया।
2: रीड इंडिया अपने सभी केंद्रों के द्वारा विभिन्न समुदायों की युवतियों व महिलाओं में सीखने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता रहा है। तो आइए सुनते हैं इन्हीं युवतियों व महिलाओं के अनुभवों पर आधारित कार्यक्रम, सुनिए उनकी कहानी, उनकी जुबानी।
3: नमस्ते, मैं कुमारी उषा भारती, मैं बलिया जिला की रहने वाली हूँ, और मैं यहाँ रीड इंडिया में कुछ सीखती हूँ। यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलता है, हम कुछ सीख कर आगे भी बढ़ सकते हैं, अपने बच्चों को भी भविष्य बना सकते हैं, ऐसा यहाँ है। बस इतना ही कुछ कहना चाहती हूँ, और मैं आप लोगों को कुछ लड़कियों के बारे में एक दहेज गाना सुनाना चाहती हूँ, जो आप लोग भी सुनेंगी और जानेंगी कुछ कि लड़कियाँ कितनी आगे हैं और कितनी चल सकती हैं। ठीक है, मैं सुना रही हूँ। कब

छोड़ो, जिसके घर में है कन्या कुमारी, उस पिता के दिलों से तो पूछो,

क्या पता बेटी शादी से सहजी, क्या पता है कफन ओढ़े लेगी। मैं आप लोग को ये दहेज की सुनाने सुनाई, बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, दहेज को दूर करो और लड़कियों को पढ़ने के लिए आगे भेजो, आगे बन कुछ बनाओ उन्हें, क्योंकि लड़कियाँ लड़कों से कम नहीं है, एक कदम आगे हैं। थैंक यू।

आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो। रीड इंडिया समुदाय के सहयोग के द्वारा समुदाय के विकास के लिए कार्य करता है। रीड इंडिया ग्रामीण समुदायों में स्थायी सामाजिक परिवर्तन हेतु शिक्षा, उद्यम और सामाजिक विकास के क्षेत्र में कार्य करता है। आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो।

रीड इंडिया प्रस्तुत करता है विज्ञान प्रसार द्वारा निर्मित विज्ञान और तकनीकी पर आधारित कार्यक्रम। आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम।

0: वेलकम फ्रेंड्स, जीते रहो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है।
1: अरे बबलू, ये क्या कर रहे हो?
2: खुजला रहा हूँ, और क्या, तुम्हें तो दिखता रहेगा फिर भी पूछोगी।
1: नहीं नहाओगे तो ऐसे ही होगा, ये सब गंदगी का नतीजा है।
2: तुम्हें तो मौका चाहिए बस। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मेरे पैर में ये छोटे छोटे दाने निकल रहे हैं, पर इसे कोई परवाह ही नहीं। जस्सी,
1: तो तुम खुजा के उसे और क्यों बढ़ा रहे हो? और तुम्हारे नाखून, देखो अपने नेल्स। दोस्तों, आप ये गलती कतई मत कीजिएगा। अगर दाने निकल रहे हों और दाने वाली जगह पर त्वचा लाल भी हो, तो प्लीज उसे नाखून से मत खुजाइएगा। इस बुद्धू की तरह बीमारी और बढ़ जाती है।
2: तुम इतना पैरानोइड क्यों हो रही हो? छोटा सा तो है, मैं तो बस चिढ़ा रहा था।
1: मैं जानती हूं तुम क्या कर रहे हो, और हम में से ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। हम त्वचा की बीमारी को गंभीरता से नहीं लेते हैं। दोस्तों, ऐसा करना उचित नहीं है। त्वचा हमारे शरीर का सबसे संवेदनशील स्थान है।
3: हम एक दिन में न जाने कितने ही सेंसेशंस महसूस करते हैं। इन सेंसेशंस के महसूस होने में त्वचा का अहम रोल है। त्वचा हमारे शरीर का बहुत संवेदनशील अंग है। जाहिर है, ऐसा इसलिए भी है क्योंकि हमारी त्वचा हमेशा एक्सपोज रहती है। वातावरण में ऐसी कई चीजें हैं जो हमारी त्वचा को प्रभावित कर सकती हैं, जिनसे त्वचा की बीमारियां हो सकती हैं। हमारी त्वचा को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचता है प्रदूषण से। प्रदूषण और हार्मफुल केमिकल से स्किन रैशेस, डर्मेटाइटिस जैसी त्वचा की परेशानियां हो सकती हैं। और अगर इतना काफी नहीं था तो परेशान करने के लिए मौजूद हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का पूरा पारिवारिक समूह। जीवाणुओं जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई भी त्वचा की बीमारियों की एक अहम वजह है। इनसे एक्ने, रिंगवर्म इन्फेक्शन और हर्पिस जैसी त्वचा की बीमारियां होती हैं। ऐसे में बहुत जरूरी है अपनी स्किन का ध्यान रखा जाए। वैसे कुदरत ने भी कुछ हद तक त्वचा का ख्याल रखा है। त्वचा पर मौजूद बाल बाहरी तत्वों से इसको सुरक्षा प्रदान करते हैं और शरीर का सही तापमान बनाए रखने में मदद करते हैं। हमारी त्वचा स्वेट ग्लैंड्स के जरिए भी बॉडी टेम्परेचर नियंत्रित करती है। ज्यादा तापमान, शारीरिक परिश्रम और स्ट्रेस की स्थिति में ये स्वेट ग्लैंड्स पसीने का उत्पादन करते हैं। ये पसीना त्वचा में मौजूद पोर्स यानी रोम छिद्रों से बाहर निकलकर जब इवेपोरेट यानी वाष्पित होता है तो शरीर को ठंडक पहुंचती है। जाहिर है, पसीना पसीना होना महज एक मुहावरा ही नहीं बल्कि हमारे शरीर की जरूरत भी है। ग्लैंड्स और हेयर फॉलिकल्स के अलावा त्वचा में करोड़ों की संख्या में अन्य स्किन सेल्स भी मौजूद रहते हैं। ये सभी त्वचा की तीन अलग लेयर्स में बटे रहते हैं। पहला एपिडर्मिस, दूसरा डर्मिस और तीसरा सबक्यूटेनियस टिश्यू। त्वचा की सबसे ऊपरी लेयर जिसे एपिडर्मिस कहते हैं, कागज के टुकड़े जितनी मोटी होती है। एपिडर्मिस पर बाल और पोर्स यानी कि रोम छिद्र होते हैं। एपिडर्मिस की सबसे निचली लेयर में बेसल सेल्स मौजूद होते हैं। ये बेसल सेल्स टूटकर स्क्वेमस सेल्स बनते हैं जो केराटिन नामक प्रोटीन का उत्पादन करते हैं। यही केराटिन हानिकारक रसायन और इन्फेक्शन से त्वचा की रक्षा करता है। एपिडर्मिस के नीचे होती है त्वचा की सबसे मोटी परत जिसे डर्मिस कहते हैं। इसमें नर्व एंडिंग्स, स्वेट ग्लैंड्स, ऑयल ग्लैंड्स, मसल्स, ब्लड कैपिलरीज और डीप सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं। तीसरी और अंतिम लेयर को सबक्यूटेनियस टिश्यू कहते हैं। इसमें मुख्यतः वसा होती है और इसके अलावा क्यूटेनियस नर्व्स और ब्लड वेसल भी होती हैं। क्यूटेनियस नर्व्स ही स्किन से सेंसेशन लाने और ले जाने का काम करती है। सबक्यूटेनियस टिश्यू ही गर्मी कैद कर हमारे शरीर को इंसुलेशन प्रदान करता है और गर्मी को शरीर के अंदर रखता है। जहां तक त्वचा के रंग का सवाल है तो इसके पीछे मेलेनोसाइट्स नामक सेल्स का हाथ है जो कि एपिडर्मिस में पाई जाती हैं। ये सेल्स मेलानोजेनेसिस प्रक्रिया के जरिए मेलानिन नाम का एक पिगमेंट बनाते हैं। जैसे ज्यादा चाय पत्ती डालने पर चाय का रंग काला हो जाता है, वैसे ही मेलानिन के ज्यादा बनने से स्किन भी डार्क हो जाती है। मेलानिन हमें अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाता है। भारतीयों में मेलानिन की मात्रा यूरोपियन से ज्यादा होने की वजह से हम अल्ट्रावायलेट रेज से होने वाले स्किन कैंसर से काफी हद तक बचे रहते हैं। हमारे स्किन शरीर के किसी और हिस्से के मुकाबले सबसे तेज रिप्लेस होती है। त्वचा की एपिडर्मिस लेयर में ऑयल ग्लैंड्स भी पाए जाते हैं, जिनमें से एक है सिबेशियस ग्लैंड। यही सिबेशियस ग्लैंड्स एक तरल पदार्थ का उत्पादन करते हैं जिसे सीबम कहते हैं, जो बाल और त्वचा का मॉइस्चर कंटेंट बनाए रखने में मदद करता है। गंदगी, अनुवांशिक कारणों या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से कई बार सेबम ज्यादा मात्रा में बनने लगता है। यही सेबम जमा होकर मुहासे या पिंपल्स के रूप में त्वचा पर दिखाई देते हैं। सेबम के इस जमाव में बैक्टीरिया भी पैदा होने लगते हैं। जब बैक्टीरिया और सेबम त्वचा के सतह के नीचे रहते हैं तो वहाँ पर व्हाइट हेड्स दिखते हैं। त्वचा की सतह से बाहर निकल कर मेलानिन के साथ रिएक्ट कर ये जमाव ब्लैक हेड्स का रूप भी ले सकते हैं।
4: मुहासों का इलाज दो तरह से होता है, लगाने का भी है और खाने का भी है। एग्जामिनेशन जरूरी है ये देखने के लिए कि माइल्ड है या मॉडरेट है या सिवियर है। माइल्ड है जिसमें बोलते हैं सिर्फ कोमेडोन्स हैं, तो उसमें आपका लगाने का दवा जिसमें कई जेल्स आ जाते हैं, एंटीबायोटिक जेल्स हैं या बेंजोइल पेरोक्साइड जेल है या रेटिनॉइड जेल एक कैटेगरी आता है, वो जेल्स लगाएं। मॉडरेट में पस के दाने निकलते हैं जिसको पिंपल्स बोला जाता है कॉमन पार्लेंस में, उसके लिए एंटीबायोटिक्स खाने के लिए दिए जाते हैं और लगाने के लिए भी दवा दी जाती है।
3: एक्ने जैसे कॉमन डिसऑर्डर के अलावा त्वचा के कुछ और कॉमन डिसऑर्डर्स भी हैं, जैसे एक्जिमा जिसे डर्मेटाइटिस भी कहते हैं और सोरियासिस। एक्जिमा एक एलर्जिक बीमारी है जिसमें त्वचा पर रैशेज और लाल धब्बे दिखने लगते हैं। एक्जिमा की शुरुआत होती है सूजन और खुजली से। एक्जिमा के कारण त्वचा पर ब्लिस्टर्स या फफोले भी पड़ने लगते हैं। यदि एक्जिमा लंबे अरसे तक रहे तो त्वचा सूखी, बर्तीली और बदरंग भी हो सकती है। ये एलर्जी एसिड और अन्य हानिकारक रसायनों के संपर्क में आने से हो सकती है। कुछ धातुओं जैसे निकल से बने चश्मों के फ्रेम और बटन के संपर्क में आने पर भी कई लोगों को स्किन एलर्जी हो जाती है। एक्जिमा के मूल कारण और रैशेस के आकार और जगह के आधार पर एक्जिमा के प्रकार निर्धारित किए गए हैं। जैसे अटोपिक एक्जिमा, ये अमूमन उन लोगों को होता है जिनमें एलर्जी होने की जेनेटिक टेंडेंसी यानी आनुवांशिक प्रवृत्ति होती है। ये नियमित रूप से आता जाता रहता है। एक ही जगह बार बार खुजलाने और रगड़ने पर भी एक्जिमा हो सकता है। जहाँ एक्जिमा के पीछे बाहरी कारणों का हाथ है, वहीं त्वचा की एक ऐसी बीमारी भी है जिसकी मूल वजह जेनेटिक है। इस बीमारी का नाम है सोरियासिस। त्वचा की बाहरी लेयर एपिडर्मिस में कोशिकाओं के प्रोडक्शन और रिमूवल की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। जब बेसल लेयर्स द्वारा निर्मित सेल्स का उत्पादन बहुत ज्यादा हो जाता है, तब शरीर पर गठीले लाल रंग के पैचेस दिखने लगते हैं। इसी अवस्था को सोरियासिस कहते हैं। अधिकतर घुटने, कोहनी, पीठ, कूल्हे और सर, इन भागों पर सोरियासिस असर करता है। जहाँ तक ट्रीटमेंट का सवाल है तो सोरियासिस का इलाज उसकी तीव्रता पर निर्भर करता है। सोरियासिस होने पर इलाज के लिए स्किन पर मलहम या क्रीम लगाई जाती है। यदि इनसे राहत न पहुँचे तो फोटोथेरेपी भी की जाती है। इसमें ज्यादातर प्रभावित क्षेत्र पर अल्ट्रावायलेट किरणों का प्रयोग किया जाता है। सोरियासिस के काफी बढ़ जाने पर डॉक्टर्स खाने की दवाएं और इंजेक्शन भी प्रिस्क्राइब करते हैं।
0: अरे बबलू, तुम ये लंगड़ाते हुए क्यों आ रहे हो?
2: देखो ना, जहां मुझे खुजली हो रही थी वहां कैसे घाव हो गए हैं। कोई इन्फेक्शन तो नहीं है?
0: ओ, मगर आपकी माने तो ये इन्फेक्शन वगैरह तो सब किताबी बातें हैं ना?
2: प्लीज कुहू, दर्द भी हो रहा है और जलन भी, देखने में भी कितना खराब लग रहा है, रोना आ रहा है मुझे।
0: अच्छा कोई बात नहीं, मैं अभी साफ कर दूंगी, ठीक हो जाएगा।
2: नहीं, और भी ज्यादा दर्द होगा। नहीं, मुझे
0: कुछ नहीं होगा बबलू। घाव कैसा भी हो साफ तो करना ही पड़ेगा ना, और मर्ज कैसा भी हो इलाज तो जरूरी है ना।
3: स्केबीज एक पैरासाइट इन्फेक्शन है जिसमें तेज खुजली होती है। ये बीमारी फैलाने वाले माइट स्किन के अंदर अपने को छुपा लेते हैं। इनके काटने से तेज खुजली होती है जो रात में अक्सर बढ़ जाती है। ये माइट्स बहुत छोटे होते हैं और मैग्नीफाइंग ग्लास से ही दिखाई देते हैं। ये इन्फेक्शन इन्फेक्टेड व्यक्ति के कपड़ों और बिस्तर के इस्तेमाल से फैल सकता है। स्केबीज का इलाज क्रीम या लोशन से आसानी से हो जाता है, लेकिन मरीज के कपड़ों और बिस्तर के कपड़ों को उबालना जरूरी है, जिससे माइट्स मर जाते हैं। अगर ऐसा नहीं किया जाए तो माइट्स दोबारा इन्फेक्ट कर देंगे और किसी और को भी इन्फेक्शन लग सकता है। आइए अब बात करते हैं फंगल इन्फेक्शन की। हमें से काफी लोगों ने रिंगवर्म का नाम तो सुना ही होगा। दरअसल ये रिंगवर्म है क्या? इसके पीछे हाथ है टीनिया नामक फंगस का, जो हमारी त्वचा, बाल और नाखूनों में पनप सकता है। इसकी ग्रोथ गोलाकार स्वरूप लेती है, बीच में त्वचा नॉर्मल रहती है और इसके आसपास लाल, पथरीली और थोड़ी उभरी रहती है। इस कारण यह इन्फेक्शन रिंग जैसा दिखता है और यहीं से इसका नाम पड़ा रिंगवर्म। हालांकि हकीकत में त्वचा में कोई कीड़ा मौजूद नहीं रहता। ये बीमारी शरीर के किसी भी अंग में हो सकती है। पैर के अंगूठों के बीच में, छाती, बांह और पांव पर अक्सर ये बीमारी असर करती है। इस फंगल इन्फेक्शन के होने के दो प्रमुख कारण हैं। पहला, ये किसी संक्रमित व्यक्ति को छूने से हो सकता है। दूसरा, फंगाई ज्यादातर नमी वाली जगहों पर, जैसे सार्वजनिक स्नान घर या शौचालय और स्टोरेज करने की जगहों में पनपती है। ऐसी जगहों से भी संक्रमण होने का खतरा रहता है।
5: देखिए, एंटी फंगल दवाइयां जो आती हैं वो दो तरह से आती हैं, एक तो क्रीम फॉर्म में आती हैं और एक टैबलेट फॉर्म में आती हैं। क्रीम फॉर्म के साइड इफेक्ट ये हो सकते हैं कि जहां पर भी क्रीम लगाई है वहां पे खुजली मचना, जलन मचना और कुछ तरह के दाने हो जाना, ये साइड इफेक्ट्स कई बार देखे जाते हैं। तो अगर आपको ये हो जाए तो पेशेंट को दवाई को रोक के डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। ओरल जो दवाइयां आती हैं टैबलेट्स के फॉर्म में, उसके साइड इफेक्ट्स में एलर्जिक रिएक्शंस होना वो बहुत कॉमन है, जिसके कारण से इसमें लाल चकत्ते पड़ जाना शरीर के ऊपर, या फिर पेशेंट को वॉमिटिंग हो जाना, उल्टी जैसा लगना, नौजिया लगना, पेट में दर्द होना, ये सब चीजें, कई बार भूख भी कम हो जाती है पेशेंट की। अगर ये सब हो जाए तो पेशेंट को दवाई रोक के फिर डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए।
3: इलाज से बेहतर है बचाव। रिंगवर्म या टीनिया इन्फेक्शन से बचाव के लिए त्वचा को साफ रखें और नमी से बचा कर रखें। कुछ और आम बातें हैं जो हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में अपना सकते हैं। जब जरूरी ना हो तब जूते उतार दें, मसलन घर पर, ताकि पैरों को जरूरी हवा मिल सके। मोजे और अंडरवेयर रोजाना बदलना, खासकर गर्म मौसम में। नमी वाली जगहों पर जैसे सार्वजनिक स्नान घर में नंगे पाँव ना चलें। त्वचा पर होने वाले बॉयल्स या फोड़े हेयर फॉलिकल से होने वाला बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। बॉयल्स त्वचा पर पस युक्त इन्फ्लेमेशन का रूप लेते हैं। बॉयल्स के इलाज में पस को सुखाया जाता है, इसके लिए डॉक्टर्स एंटीबायोटिक का इस्तेमाल भी करते हैं।

0: ब्रेक के बाद बबलू अपने इन टैटू वाले हाथों से आप सभी दोस्तों का फिर से स्वागत करता है।
1: टैटू बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गए तो
0: ज्यादा पढ़े लिखे होने का यही नुकसान है, हर चीज में इन्फेक्शन ही दिखता है।
1: छोड़िए दोस्तों, इसको कुछ समझाना मतलब भैंस के आगे बीन बजाना। आइए अब बात करते हैं वायरल स्किन डिसऑर्डर्स की।
2: वायरल स्किन डिसऑर्डर्स की श्रेणी में आने वाले दो कॉमन डिसऑर्डर्स हैं वॉट्स यानी मस्से और हर्पीस यानी खाज या दाग। वॉट्स एक किस्म की स्किन ग्रोथ है जिसके पीछे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस या HPV का हाथ है। वॉट्स शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकते हैं, चेहरे, हाथ के पिछले भाग पर, पैरों के तलवे पर, मुंह के अंदरूनी भाग में और यहाँ तक कि जेनिटल एरिया में भी। वॉट्स कंटेजियस इन्फेक्शन है, यानी ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकते हैं। शारीरिक कॉन्टैक्ट या फिर इन्फेक्टेड व्यक्ति के तौलिए, कपड़े इत्यादि इस्तेमाल करने पर यह इन्फेक्शन फैल सकता है। काफी मामलों में वॉट्स कुछ महीनों में खुद ब खुद गायब भी हो जाते हैं, पर कई बार इनका इलाज दवाइयों या अन्य किसी ट्रीटमेंट पद्धति के जरिए ही करना पड़ता है। इलाज के कुछ कॉमन तरीके हैं रासायनिक, जैसे कि सैलिसिलिक एसिड या कैंथराइडिन वॉट्स पर लगाना, या फिर लिक्विड नाइट्रोजन के माध्यम से वॉट्स को फ्रीज कर देना। इस पद्धति को क्रायोथेरेपी भी कहते हैं। कुछ केसेस में वॉट्स को स्पेशल तरीके से जलाया जाता है, जिसे कॉटराइजेशन भी कहते हैं। जेनिटल वॉट्स बेहद कंटेजियस होते हैं और इनका ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर्स की निगरानी में करना चाहिए।
3: वॉट्स टच करने से फैलते हैं, तो पेशेंट उस वॉट को बार बार अपने हाथों से ना छुए, और दवाई लगाने के बाद अगर क्रीम्स है तो अपने हाथों को साबुन से या पानी से अच्छी तरह धोए। दूसरी बात यह है कि वॉट्स, जेनिटल वॉट्स जो है, यौन संबंध करने से फैलते हैं। मतलब अगर एक किसी आदमी को वॉट्स हैं तो वो अगर यौन संबंध बनाता है तो दूसरे उसके पार्टनर को वॉट्स हो सकते हैं।
2: वायरस से होने वाली त्वचा की एक और बीमारी है हर्पिस। ये बीमारी दो तरह के वायरस से फैलती है। पहला वायरस है हर्पिस सिंप्लेक्स, जो ओरल कैविटी और जेनिटल को इन्फेक्ट करता है। हर्पिस सिंप्लेक्स कॉन्टेजियस होता है और अधिकतर ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से फैलता है। हर्पिस फैलाने वाला दूसरा वायरस है हर्पिस जोस्टर। ये वायरस एक ही नर्व को अपनी चपेट में लेता है। जहाँ जहाँ वो नर्व निकलती है उस जगह पर दाने निकल आते हैं। इसमें बहुत दर्द होता है लेकिन ये कंटेजियस नहीं है। हर्पिस जोस्टर वायरस चिकन पॉक्स वायरस का ही एक किस्म है। इसके ट्रीटमेंट में कुछ एंटीवायरल दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन संपूर्ण रूप से ये अपने आप ही ठीक होता है, जिसकी अवधि 3 सप्ताह से लेकर 1.5 महीने तक हो सकती है। सीरियस इन्फेक्शन में दाने खत्म हो जाने के बाद भी दर्द 6 महीनों तक रह सकता है। ऐसे हालत में कुछ समय तक दर्द निवारक दवाओं का इस्तेमाल करना पड़ता है। स्कैल्प में होने वाली परेशानियां हैं डैंड्रफ। डैंड्रफ स्कैल्प की स्किन के ड्राई होने से होता है, जिसमें डेड स्किन के फ्लेक्स उतरने लगते हैं। डैंड्रफ एक हल्के फंगल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। इसका इलाज क्रीम और लोशन से किया जाता है। हेड लाइस एक पैरासाइट है जिसे जू भी कहते हैं। ये सर के बालों में रहती है। इसके स्किन के अंदर छुपने से इचिंग और इन्फ्लेमेशन होती है। एलोपीसिया में बाल उड़ जाते हैं, लेकिन ऐसा पैचेस में होता है। इसकी वजह इन्फेक्शन हो सकता है या कोई ट्रॉमा जिसमें हेयर फॉलिकल्स खत्म हो गई हो। लेकिन सबसे कॉमन एलोपीसिया, जिसे एलोपीसिया एरिएटा कहते हैं, के होने की वजह का पता नहीं चल पाया है। इलाज के लिए मेडिसिन और क्रीम के जरिए स्कैल्प के नरिशमेंट का ध्यान रखा जाता है। ज्यादातर मामलों में कुछ महीनों के बाद प्रभावित जगह पर बाल फिर से उगने लगते हैं। अब बात ल्यूकोडर्मा की। इसमें मेलेनिन की कमी से स्किन पर व्हाइट पैचेस हो जाते हैं। शुरुआत में और जब ये बीमारी शरीर के कुछ अंगों तक सीमित होती है तो इसका पूरा इलाज संभव है, लेकिन अगर ये बीमारी बहुत अधिक अंगों तक फैल जाए तो इस रोग का पूरा निवारण कई बार संभव नहीं होता। लेकिन गौरतलब है कि ये छूत की बीमारी नहीं है और इससे व्हाइट पैचेस के अलावा शरीर को कोई नुकसान नहीं होता। इसका इलाज मेडिसिन, क्रीम्स और फोटोथेरेपी से किया जा सकता है। इस इलाज के बाद मेलेनिन का बनना बढ़ जाता है और स्किन का सामान्य रंग वापस आने लगता है। एल्बिनिज्म एक जेनेटिक कंडीशन है जिसमें जन्म से ही शरीर में मेलेनिन नहीं पाया जाता, इसलिए रंग सफेद होता है। त्वचा पर मौजूद बाल शरीर का सही तापमान बनाए रखने में मदद करते हैं। त्वचा को तीन लेयर्स में बांटा गया है, एपिडर्मिस, डर्मिस, सबक्यूटेनियस टिश्यूज। त्वचा में मौजूद मेलेनिन हमें अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाता है। एक्जिमा एक एलर्जिक बीमारी है जिसमें त्वचा पर रैशेज और लाल धब्बे दिखने लगते हैं। वॉट्स कंटेजियस इन्फेक्शन है और शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकते हैं। हर्पीज की बीमारी दो तरह के वायरसेस से होती है, हर्पीज सिंप्लेक्स और हर्पीज जॉस्टर। स्कैल्प की स्किन के ड्राई होने से डैंड्रफ होता है, इसमें डेड स्किन के फ्लेक्स उतरने लगते हैं। एलोपीसिया में बाल उड़ जाते हैं, इसकी वजह इन्फेक्शन या ट्रॉमा हो सकती है जिसमें हेयर फॉलिकल्स खत्म हो गई हो। एलोपीसिया एरिएटा के होने की वजह का पता नहीं चल पाया है।
0: वाह कोकिला, क्या इलाज किया, आज मान गए तुमको, अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आगे क्या बताओगी?
1: आगे वेल बबलू, समय हो गया है।
0: क्या बात करती हो कोकिला, अभी तो शुरू ही हुआ था। कोई बात नहीं, अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे।
1: जी हाँ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।

0: रीड इंडिया अपने सभी केंद्रों के द्वारा विभिन्न समुदायों की युवतियों व महिलाओं में सीखने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता रहा है। तो आइए सुनते हैं इन्हीं युवतियों व महिलाओं के अनुभवों पर आधारित कार्यक्रम, सुनिए उनकी कहानी, उनकी जुबानी।
1: हेलो, मैं पूजा शाबाद मोहम्मदपुर से। मैं रीड इंडिया से 6 साल से जुड़ी हुई हूँ। मैंने रीड इंडिया से सबसे पहले बेसिक कंप्यूटर सीखा, उसके बाद मैंने टीचर ट्रेनिंग की, फिर मैंने सिलाई की। सिलाई करके फिर काफ़ी टाइम तक मैं अपने घर में अपने बच्चों के साथ व्यस्त रहने लगी। लेकिन मेरे एक दिन एक लेडीज़ मेरे पास आई कि बेटा मेरे को सूट सिलवाने हैं, अगर यहाँ पे कोई आसपास में सूट सिलता है तो मुझे बता दो। वो भी फर्स्ट टाइम मेरे घर आई थी, वो भी यहाँ पे नहीं जानती थी किसी को, क्योंकि वो यहाँ पे किराए पे रहने वाली थी। उसने वो मेरे पास आई, फिर मैंने उनको बोला कि आंटी मैं सिल सकती हूँ। बोले कि बेटा आप सिलना जानते हो? मैं बोले कि हाँ आंटी मैं सिल सकती हूँ, मेरे को सिलाई आती है। उन्होंने फर्स्ट टाइम ऐसे सूट सिलवाया। उन्होंने जो सूट सिलवाया था, उन्होंने मेरे को सिर्फ 2 दिन का टाइम दिया था और मैंने उनको 2 घंटे में सूट तैयार करके उनके पास फ़ोन किया कि आंटी आपका सूट कम्प्लीट है, आप ले जा सकते हो। तो वो मेरे घर आई, उन्होंने सूट देखा, उन्होंने सूट मेरा बहुत पसंद आया। उन्होंने कहा कि बेटा आप ऐसे ही सूट सिलते रहोगे तो हम आपसे और सिलवाएंगे। नेक्स्ट डे आई, फिर उन्होंने मेरे से एक ब्लाउज सिलवाया। मैंने उनका ब्लाउज सिलवाया, उन्हें वो भी अच्छा लगा कि बोला कि बेटा तुमने फिटिंग बहुत अच्छी मतलब बिठा रखी है कि सूट की और ब्लाउज की, तो मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं बोले कि थैंक यू आंटी। बोले कि नहीं बेटा आप सिलते रहो, हम आपसे जुड़े रहेंगे और आपसे ही सिलवाएंगे। मैंने कहा ठीक है आंटी, आपकी मर्जी है। उस टाइम मेरे पास हाथ की मशीन थी, वैसी पैर वाली मशीन नहीं थी। धीरे धीरे करके मैंने सिलाई की, सिलाई करके अपना पैसा जोड़ा, इकट्ठा किया। सबसे पहले मैंने अपनी एक गुल्लक खरीदी 5 रुपए वाली। मैंने उस गुल्लक में जितना मैं सिलाई करती थी सारा पैसा उस गुल्लक में डालती रहती थी। मैक्सिमम मुझे 1 साल हो गया था जब मैंने अपनी गुल्लक को फोड़ा, तो मेरे गुल्लक में मैक्सिमम 3,000 रुपए निकले। मैं यहाँ से घर से निकली, मैंने सबसे पहले अपने हस्बैंड को बोला कि मुझे सिलाई मशीन के पैर लेके आने हैं। उन्होंने मुझे सपोर्ट नहीं किया। फिर मैंने अपनी सास को बोला, वो बोली कि क्या करेगी, आंखें खराब होती हैं। फिर मैंने पापा को बोला, ससुर को, उन्होंने कहा बेटा नहीं, कोई सिलाई विलाई नहीं करनी है, अपने घर में रहो, बच्चों को देखभाल करो, उनको खाना पीना खिलाओ। किसी ने मेरा सपोर्ट नहीं किया। एक दिन मैं खुद पालम गई, फिर मैं वहां से अपनी मशीन के पैर लेके आई। आके मैंने घर पे एक मशीन वाले को बुलाया, उन्होंने मेरी मशीन उस पे रखी, उसको स्टार्ट किया। उसके बाद मैं अपनी सिलाई करना शुरू किया। सब मेरे को टोकते थे कि बेटा नहीं, तेरी आंखें खराब हो जाएंगी, मत सिल मत सिल, और फिर यही है कि तेरे को दिखना बंद हो जाएगा, चश्मा लग जाएगा। मैंने मना कर दिया कि नहीं मैं सिलूंगी, मेरा मन करता है कि मैं सिलाई करूं। उस दिन के बाद मेरे को इतना प्राउड हुआ कि मैं खुद सिलाई करती हूं, और आज है मेरे अंदर इतना प्राउड कि मैं बाहर के सिलती हूं और अपना सारा पैसा इकट्ठा करती हूं। मेरे बच्चों को जो भी जरूरत होती है, जैसे कि हस्बैंड कोई हेल्प नहीं करता, उनको किसी भी हेल्प बुक की ज़रूरत होती है, किसी भी पेन की पेंसिल की, मैं सारी चीज़ें अफोर्ड करती हूँ उनके लिए। हस्बैंड तो सुबह के ड्यूटी के लिए निकल जाते हैं, वो मेरे को कोई खर्चा भी नहीं देके जाते, लेकिन जब भी पीछे से बच्चे बीमार होते हैं या कोई भी प्रॉब्लम होती है, यहाँ तक कि सास ससुर को भी कोई भी प्रॉब्लम होती है, मैं एक बार भी ये नहीं सोचती कि उन्होंने मुझे सपोर्ट नहीं किया। मैं उनके लिए भी हर टाइम तैयार रहती हूँ, किसी भी चीज़ के लिए, चाहे बीमारी के लिए कोई पैसा हुआ, या खाने पीने की चीज़ हुई, या कि कोई भी चीज़ पसंद आए कि हमें ये सूट चाहिए, मैं वो सारी चीज़ें दिलाती हूँ। लेकिन एक बार भी उनको अब तक ये नहीं है कि हाँ वो हमारे लिए इतना कर रही है कि हम उसको सपोर्ट करें। रीड इंडिया से फिर मैं दोबारा से जुड़ी हूँ, क्योंकि रीड इंडिया में कंप्यूटर और सिलाई और ब्लॉक पेंटिंग और पार्लर का कोर्स किया जाता है। अब मैं पार्लर का कोर्स कर रही हूँ और मैंने बेसिक कंप्यूटर भी सीख लिया है। और पार्लर का कोर्स करने के बाद अब मैं घर पे जाके मेरी 2 देवरानियाँ हैं उन पे ट्राई करती हूँ, मेरी सास है उन पे ट्राई करती हूँ, यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड है, मेरे को अपने मतलब खुद मेरे हाथ से खुद अपनी हेड मसाज करवाते हैं, फुट मसाज करवाते हैं। वो बहुत बोलते हैं कि मुझे बहुत रिलीफ मिला है, लेकिन अब तक उन्हें भी मेरा 1% भी सपोर्ट नहीं किया है। लेकिन हाँ, मैं निकली हूँ घर से और मैं सीख रही हूँ कि मैं भी कुछ करूं और मेरी भी एक अलग पहचान हो। जब फर्स्ट टाइम मैंने सिलाई की थी, जो मेरे पास सबसे पहले पैसा आया था, सबसे पहले तो मैंने भगवान के मंदिर में जाके उनका प्रसाद बांटा था, और सबसे पहले मैंने अपना एक सूट लिया था। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं रीड इंडिया से भी जुड़ी हूँ, उससे मैंने सिलाई भी सीखी है, उस बेस पे मैं अपने पैरों पे स्टैंड हुई हूँ। तो मैं थैंक यू करती हूँ पूरी रीड इंडिया के टीचर्स का कि थैंक यू, आप सबने मेरे को इतना सपोर्ट किया और मुझे इस काबिल बनाया कि ठीक है मैं घर से बाहर नहीं जा सकती, लेकिन घर में एक पूरी फैमिली के सामने मैं स्टैंड हूँ कि कल को अगर मेरे पर कोई प्रॉब्लम भी आ जाए तो मैं किसी की तरफ देखूंगी नहीं, मैं खुद कर सकती हूँ अपना। तो थैंक यू।

नमस्कार बहनों, मैं दिनेश मिगलानी आपका रीड इंडिया की कार्यशाला में स्वागत करता हूं। यह कार्यशाला रीड इंडिया के द्वारा आयोजित की गई है। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य व्यापार कैसे किया जाए, स्वरोजगार पैदा करना एवं आपको आत्मनिर्भर बनाना है। इस कार्यशाला को हमने तीन भागों में बांटा है। पहले भाग के अंदर हम यह सीखेंगे कि व्यापार क्या होता है, उद्यमी कैसे बना जाता है, इसके अलावा एक सफल उद्यमी या सफल व्यापारी में क्या क्या गुण होते हैं, तथा एक व्यापार करते समय या आप जब अपना कार्य करते हैं उसको करते समय किन किन कार्य को आपने करना है। इसके अलावा हम यह भी सीखेंगे आत्मनिर्भरता का हमारे जीवन में, हमारे परिवार में क्या महत्व है। कार्यशाला के दूसरे भाग के अंदर हम यह सीखेंगे कि व्यापार की शुरुआत कैसे की जाती है और शुरुआत से लेकर व्यापार को खड़ा करने में हम कैसे छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखें ताकि हम एक सफल व्यापार की तरफ अग्रसर हो सकें। कार्यशाला के तीसरे भाग के अंदर जो व्यापार हमने स्थापित किया है उसकी वृद्धि कैसे की जा सके एवं उस व्यापार के आंतरिक चीजों को में क्या क्या आपने ध्यान रखना है, कैसे अपने व्यापार के अकाउंट्स या लेखा बनाने हैं, किन किन चीजों को आपने संभाल के रखना है ताकि भविष्य में अगर आप किसी बैंक के पास जाएं तो कैसे उस व्यापार की वृद्धि की जा सके। तो बहनों चलो हम स्टार्ट करते हैं, हम शुरुआत करते हैं हमारे कार्यशाला के पहले भाग से जिसका मुख्य उद्देश्य यह समझना है व्यापार क्या है। मैंने बोर्ड पे एक छोटा सा चार्ट भी बनाया है आपको समझाने के लिए। तो पहले मैं इसका इंट्रोडक्शन देता हूं व्यापार क्या है। बहनों आप देखते हैं आपके आसपास में कुछ लोग बैंक में नौकरी करते हैं, कुछ शिक्षक ऐसे होंगे जो किसी स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं, इसके अलावा कोई किसी कारखाने में कार्य करता है। तो यह नौकरी करना जीविका कमाने का एक साधन है। तो इस तरह के जीविका कमाने को हम कहते हैं कि नौकरी कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ लोग आपके आसपास ऐसे भी होंगे जो एक छोटी मोटी दुकान चलाते हैं या किसी ने कोई कारखाना खोला हुआ है। तो जीविका कमाने के इस साधन को हम कहते हैं स्वरोजगार या व्यापार। ये तो हम जानते हैं कि जीवन जीने के लिए पैसा बहुत जरूरी है और पैसे से ज्यादा जरूरी है हमारा आत्मनिर्भर होना। यदि आप आत्मनिर्भर हैं तो हमारे अंदर एक अलग सा विश्वास होता है। एक सफल गृहिणी या एक महिला जो आत्मनिर्भर है वह उस आत्मनिर्भरता से पूरे परिवार का पालन पोषण कर लेती है। आज के समय में सरकारी नौकरियां काफी कम हैं और हमारी बहनें जो गांव में रहती हैं कम पढ़ी लिखी हैं। यदि आप शहर में रहते हैं तो छोटी मोटी नौकरी या जीविका का कोई साधन आसानी से बनाया जा सकता है, पर गांव में रहने के कारण छोटी मोटी नौकरी भी नहीं मिल पाती। तो हमारी बहनों के पास में अपना कार्य शुरू करने के अलावा और कोई चारा नहीं रह जाता, क्योंकि गांव में आप देखेंगे काम भी नहीं मिलता आजकल। क्यों? क्योंकि गांव में कोई रोजगार का साधन तो है नहीं, तो इसके लिए हमें छोटा मोटा कार्य तो करना पड़ेगा और वो जो कार्य है वो एक तरह से हमें व्यापार करने या उद्यमी बनने की तरफ अग्रसर करता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे मन में पहली चीज अब ये आती है कि ये तो हमें समझ में आ गया कि हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा आत्मनिर्भर होने के लिए। अब वो करना जो है वो कोई ना कोई आपको व्यापार करना है या कोई ना कोई आपको आत्मनिर्भर होने के लिए स्वरोजगार शुरुआत करनी है। तो स्वरोजगार की आप जो शुरुआत करेंगे, शुरुआत करते समय सबसे पहले हम यह समझें कि जो एक सफल उद्यमी है, जो एक सफल व्यापारी है, उसमें क्या क्या ऐसे गुण होते हैं जिसके कारण वह एक व्यापारी बन पाया या एक उद्यमी बन पाया, ठीक है। तो मैंने एक पहला चार्ट बनाया यहां पर आपको ये समझाने के लिए कि एक सफल उद्यमी में क्या क्या गुण होते हैं। सबसे पहला जो गुण है, सबसे पहली जो चीज है जो हमारी बहनों में भी है, वो होती है पहल।
पहल से हमारा क्या मतलब है। जैसे ही हमारे आसपास आप देखते हो, रोजाना हमारे मन में कई तरह के नए नए विचार आते हैं, ठीक है। वो विचार आने के बाद हम उनके बारे में थोड़ा सोचते हैं और फिर हिचक के उनको कार्यान्वित नहीं करते, ठीक है। अब एक जो सफल व्यापारी है, अगर उसके सामने कोई विचार आता है तो विचार आने के बाद वह उसके बारे में चीजों को समझता है और समझने के बाद वह ये देखता है कि यदि उससे कोई बिजनेस बनाया जा सकता है, कोई व्यापार किया जा सकता है, तो वह उसके तरफ अग्रसर हो जाता है। तो सबसे पहली चीज होती है पहल। तो हमारी बहनें जो अब यहां बैठी हैं, अगर आपके मन में कोई भी विचार है, कुछ बहनों को ऐसा लगता होगा कि वो अचार बहुत अच्छा बनाती हैं, या पापड़ बहुत अच्छे बनाती हैं, ठीक है, या चटनी अच्छी बनाती हैं, इसके अलावा हमारी बहनों के पास में सिलाई कढ़ाई बुनाई या गांवों के अंदर मिट्टी के बर्तन या हम कहें मिट्टी के खिलौने या आजकल साज सज्जा की जो चीजें हैं जो गांव की महिलाओं को बचपन से सिखाई जाती हैं, जो उनको आती हैं, तो इस तरह का अगर आपको लगता है कि आपके मन में कोई ऐसा विचार है जहां आपको ये लगता है कि उसमें आप काफी अच्छे हैं, तो पहल अगर आप करेंगे तो एक सफल व्यापारी की तरफ यह आपका पहला स्टेप होगा, ठीक है। एक सफल उद्यमी का दूसरा जो सबसे गुण होता है वह होता है जोखिम उठाने की इच्छा शक्ति। अब देखो, आप कोई भी व्यापार करते हैं, सबकी इच्छा यह होती है कि व्यापार आपका सफल हो, पर ऐसा होता नहीं है, हर व्यापार सफल नहीं होता। फिर भी हमारे अंदर जोखिम उठाने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। यदि हम जोखिम ही नहीं उठाएंगे, यदि हम किसी भी कार्य में जोखिम नहीं उठाएंगे, तो वह कार्य कभी भी सफल नहीं हो सकता। तो दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वह है हमारा जोखिम उठाना, क्योंकि जोखिम उठाने से ही कार्य होगा। फिर होता है अपने अनुभव से सीखना। व्यापार करते समय, कोई भी कार्य करते समय गलतियां तो होती हैं, ठीक है। अगर उन गलतियों से हम नहीं सीखेंगे तो हमें ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि ज्यादा नुकसान जो होगा उसको हम सहन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारी जोखिम उठाने की शक्ति काफी कम है। तो इसलिए हमें अपने अनुभव से सीखना चाहिए। एक बार गलती हो जाए कोई बात नहीं, पर यदि दोबारा वह गलती फिर से होगी तो यह हमारी बहुत भारी गलती होगी। फिर प्रेरणा, हमारे अंदर एक प्रेरणा होनी चाहिए, हमें प्रेरित होना चाहिए। मान लीजिए हम बहनों के बीच में कोई एक बहन ऐसी है जो कुछ कार्य करती है, कार्य करना मतलब वो आत्मनिर्भर है, कुछ ऐसा कार्य करती है जिससे धन कमाया जाता है, पैसा कमाया जाता है, तो हमें उससे प्रेरित होना चाहिए। अगर आप उससे प्रेरित होंगे तभी आपके मन में यह इच्छा जागेगी कि मुझे भी उस बहन की तरह आत्मनिर्भर होना है। इसके अलावा आपके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए, आपको अपने पर विश्वास होना चाहिए। जीवन में वही सफल होता है जो अपने पर विश्वास करता है। यदि आप अपने पर विश्वास ही नहीं करेंगे तो आप सोच के देखिए दूसरा कोई व्यक्ति आप पर क्यों विश्वास करेगा, इसके पीछे कोई भी कारण नहीं है। तो आप अपने पर विश्वास पैदा कीजिए, आपको यह समझना चाहिए कि आप यह कार्य कर सकती हैं। व्यापार करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि एक महिला जो सुबह से लेकर शाम तक अपने पूरे घर को संभाल सकती है, अपने बच्चों को पाल सकती है, खाना बना, आप देखो, आप कार्य देखिए, एक महिला की सुबह से आप दिनचर्या की शुरुआत करें आखिर तक शाम तक देखें तो एक महिला इतना कार्य करती है कि अगर उसी कार्य को व्यापार के रूप में रूपांतरित कर दिया जाए तो एक बहुत अच्छा आत्मनिर्भरता होने का जरिया बन सकता है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है, सबसे जो महत्वपूर्ण है, वह होता है निर्णय लेने की योग्यता, ठीक है, या निर्णय लेने की क्षमता। आप देखेंगे आपके जीवन में या कोई भी कार्य करते समय काफी बार ऐसे मौके आते हैं जहां आपको कोई ना कोई निर्णय लेना पड़ता है। यदि आप उस निर्णय लेने की में क्षमता रखते हैं,
तो निर्णय लिया, आपका निर्णय गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है। देखो धरती पर कोई भी ऐसा इंसान नहीं है कि जिसके सभी निर्णय सही होंगे। निर्णय हमारे गलत भी हो सकते हैं, निर्णय हमारे सही भी हो सकते हैं, बट हमें निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए, हमें निर्णय लेने का आत्मविश्वास होना चाहिए। तो एक सफल जो व्यवसायी है उसमें यह गुण तो सबसे पहले है। और मेरे हिसाब से हमारी बहनें जो यहाँ बैठी हैं, इन सब बहनों में ये सब बातें हैं, इन सब बहनों में ये सब बातें हैं, बट उन्हें उनको बस अपने अंदर झांकना है, उनको अपने अंदर से प्रेरणा लेके आनी है, उनको यह करना है कि हमें भी कुछ करना है, हमें भी आत्मनिर्भर होना है, हमें भी स्वरोजगार पैदा करना है जिससे हम अपने परिवार का अच्छे ढंग से भरण पोषण कर सके, अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ा सके, ताकि उन बच्चों को भविष्य में इस तरह की मुसीबतों का सामना न करना पड़े जो शायद आज हमारी बहनें गांव में रहकर कर रही हैं। इसके बाद दूसरा जो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है, सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, कि अगर आप एक उद्यम शुरुआत करना जा रहे हैं तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि उसकी शुरुआत के बाद आपको किन किन कार्यों को करना पड़ेगा। ठीक है, तो जिन कार्यों को आपने करना पड़ता है मैंने चरणबद्ध उन कार्यों को लिखा है ताकि आप यह समझ सके कि आप अगर एक बिजनेस या कोई भी व्यापार या कोई भी स्वरोजगार की शुरुआत करते हैं तो यह कार्य आपको जरूर करने होंगे। सबसे पहला जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है वह होता है अवसर की पहचान करना। ठीक है, हमारे जीवन में अवसर आते जाते रहते हैं। आप कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं, घूमते घूमते आपने देखा कि फला जगह पर काफी लोग आते हैं, वहां खाने पीने का कोई भी सामान नहीं है। ठीक है, अगर आपने यह सोच लिया क्यों ना मैं हर रोज दोपहर के वक्त वहां जाकर कुछ खाने का सामान बनाकर जो घर में बनाया जा सकता है, ऐसा सामान जिसको आसानी से बनाया जा सकता है और वह खाने लायक है और आसानी से लोग खाते हैं, अगर आप वहां जाकर बेचना शुरू कर दें, हो सकता है शुरुआत में लोग ज्यादा ना खरीदे, पर अगर वह सामान आपका बिकने लग जाए तो यह अवसर होता है। इसे हम अवसर कहते हैं। अवसर कहीं भी आपको मिल सकता है, अवसर को पहचानने वाली आंखें होनी चाहिए, हर जगह पर अवसर है। ठीक है, तो सबसे पहला जो उद्यमी का कार्य है, जो आपके लिए भी है, आपके लिए पहला कार्य यह है कि आप उस अवसर की पहचान करिए। आप यह देखो कि ऐसी क्या चीज आपके पास में है, ऐसा क्या मौका आपके पास में है, यदि आप उसे उस मौके को फायदा उठा पाए, उस मौके को व्यापार में बदल पाए। तो सबसे पहला काम है हमारा है अवसर को पहचानना। अवसर को पहचानने के बाद विचारों को कार्यान्वित करना। कई बार क्या होता है कि मैंने पहले भी आपको बोला कि आपको पहल करनी है, अवसर तो मिल गया, आपको लग गया हाँ भी ये कार्य किया जा सकता है। अब उस कार्य को करने के बाद आपको यह देखना है कि उस विचार जो आपके मन में आया है उसको कैसे एक व्यापार के फॉर्म में लाया जाए, कैसे उसको जमीनी स्तर पर आप उस पर कार्य करिए। तो यह एक उद्यमी का सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो है वह होता है अपने विचारों को जमीनी स्तर पर लाकर कार्यान्वित करना ताकि कुछ शुरुआत की जा सके। इसलिए मैंने यहां सबसे पहले ही आपको बताया पहल सबसे इम्पोर्टेंट है, पहल आपकी सबसे इम्पोर्टेंट है, और पहल विचारों को कार्यान्वित करना तभी हो पाएगा जब हमारे अंदर कुछ करने की इच्छा होगी। फिर संसाधनों को उपलब्ध कराना, जब आपके मन में यह बात बिल्कुल बैठ जाए कि अब तो मुझे कुछ कार्य करना है, आपने यह फाइनल कर लिया, यह आपने निश्चित कर लिया कि यह कार्य आप करेंगे, इस तरह का व्यापार आप शुरुआत करेंगे, तो फिर आप ये देखेंगे उसको करने के लिए किन किन संसाधन आपको चाहिए, क्या क्या संसाधन आपको चाहिए। तो एक व्यापारी को इन सभी संसाधनों को इकट्ठा करना और उन संसाधनों को उपलब्ध कराना उसका कार्य होता है। जैसे मान लीजिए मैं खाने की बात, अब मैं देखो अगले भाग के अंदर मैं अलग अलग एक एक उस पे आऊंगा, अभी मैं एक जनरल बात कर रहा हूं। मान लीजिए कहीं हमने खाने का छोटा मोटा सामान बेचना शुरुआत किया, तो खाने को बनाने से लेकर उसकी पैकेजिंग तक,
बनाने से लेकर उसकी पैकेजिंग तक हर तरह का संसाधन आपने जुटाना है, और क्योंकि हमारे पास में पैसा भी कम है, जोखिम उठाने की क्षमता कम है, तो इसलिए हमें यह सोचना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि कैसे कम से कम पैसे से हम अपनी शुरुआत कर सकें। स्थापना करना, व्यापार को स्थापित करिए, शुरुआत करिए, उसके बाद प्रबंधन करना, ये सब एक व्यापारी का कार्य है। शुरुआत हो जाती है कई बार, शुरुआत में हमें रेस्पॉन्स अच्छा नहीं मिलता, बट धीरे धीरे अगर हम डटे रहेंगे, अगर हमारी पहल ठीक थी, अगर हमारा अवसर ठीक था, तो उसमें वृद्धि भी होगी और उसमें फायदा भी होगा। आप देखेंगे जीवन में कभी भी ऐसा, कई बार ऐसा मौका आ जाता है, हमें यह लगता है कि अब यह कार्य करना हमारे बस की बात नहीं है। अगर हम कुछ समय और कार्य करते रहे तो वह कार्य सफल हो जाता है, वही चीज व्यापार में होती है, ठीक है। तो यह सब चीजें हमें अपने दिमाग में बिठाकर फिर हम सोचेंगे कि क्या हमारी बहनें व्यापार करने के लिए उनमें इच्छा शक्ति है या नहीं है। अगर नहीं है तो प्रेरित होके वो अपने अंदर इच्छा शक्ति लेके आए, आत्मविश्वास पैदा करें, और उनके साथ साथ इन बातों का भी ध्यान रखें कि ये कार्य उन्हें करने पड़ेंगे। अंत में इस कार्यशाला के अंतिम भाग में मैं यह जरूर बात करूंगा कि आपको स्वरोजगार के फायदे क्या है, व्यापार का आपके जीवन में क्या फायदा है, ठीक है। देखो, व्यापार का हमारे जीवन में सबसे पहला, सबसे मुख्य फायदा जो होता है वह होता है आत्मनिर्भर होना। हम अपने जीवन में जब तक आत्मनिर्भर नहीं होंगे, जब तक हम दूसरों पर आधारित रहेंगे, तब तक हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आता, हमारे अंदर आत्मविश्वास पैदा नहीं होता, और आत्मनिर्भर होने के बाद हम अपने परिवार का भरण पोषण बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो आत्मनिर्भरता के साथ साथ जो आत्मविश्वास हमारी बहनों में आएगा, और उसके साथ जो उनके परिवार की तरक्की होगी, क्योंकि परिवार की तरक्की होगी तभी देश की तरक्की होगी। अगर परिवार ही हमारा उन्नति नहीं करेगा तो देश उन्नति नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से दो चीजों में फायदा होता है, एक तो हमारी परिवार उन्नति करता है और परिवार के साथ साथ देश भी उन्नति करता है, परिवार आगे बढ़ता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, हमारी एक विशिष्ट पहचान बनती है। अब हमारी जो बहनें बैठी हैं, मैं कहना चाहूंगा कि इसमें कुछ बहनें ऐसी होंगी जो आत्मनिर्भर हैं, जो कुछ ना कुछ कार्य करती हैं और उस कार्य करने से धन कई अर्जन होता है उन्हें, तो वो जो उनकी एक विशिष्ट पहचान बन जाती है समाज में, उनकी एक विशिष्ट पहचान होती है। तो जो विशिष्टता आपके अंदर आएगी, इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपका परिवार और देश उन्नति करेगा। तो अंत में कार्यशाला के पहले भाग के अंदर मैं यह आपको फिर से कहना चाहता हूं कि हमारी बहनें जो घर में रहती हैं, वो कृपया करके अपने मन में यह जरूर लेके आए। देखो, सबसे पहली चीज आपकी इच्छा शक्ति है। जब तक आपके मन में इच्छा शक्ति नहीं होगी, तब तक आप कोई भी कार्य नहीं कर पाएंगे। तो पहले हमें अपने मन में इच्छा शक्ति जागृत करनी पड़ेगी, आत्मविश्वास अपने अंदर लेके आना पड़ेगा, उसके बाद ही हम यह सोचेंगे कि किस तरह का व्यापार हमें करना है, कितना जोखिम हम उठा सकते हैं, और उस व्यापार को करने के लिए संसाधनों को कहां से एकत्रित करेंगे। रीड इंडिया हमारी बहनों को काफी सपोर्ट करती है, सहायता भी करती है। तो इस कार्यशाला के माध्यम से हमने व्यापार के बारे में सीखा। कार्यशाला के दूसरे भाग में हम व्यापार की स्थापना से लेकर व्यापार के बाकी भागों के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।

0: नमस्कार दोस्तों, मैं ऋतु आपका स्वागत करती हूं रेडियो रीड इंडिया में। प्रस्तुत है गांव मेहंदीपुर डाबोदा केंद्र से जुड़े युवक और युवतियों के विचार। रीड केंद्र ग्रामीण महिलाओं के विकास के लिए प्रतिबद्ध है, जिसमें महिलाओं का सशक्तिकरण एक महत्वपूर्ण कदम है।
1: नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम एकता है और मेरी सहेलियां आप सबके सामने एक कविता प्रस्तुत करना चाहती हैं। पलक, एकता, दीपिका, अंकिता, कविता और सुजाता, हम गवर्नमेंट मिडिल स्कूल की मेहंदीपुर डाबोदा कला की लड़कियां कविता सुनाना चाहती हैं और हम गांव के एक लाइब्रेरी सेंटर में आते हैं और वहां पर बुक्स पढ़ के जाते हैं, बुक्स घर पे लेके जाते हैं और कंप्यूटर सीखने आते हैं। जंजीरों में बंधी पुकारे मुझको भारत माता, माँ का स्वाभिमान बचाने फांसी चढ़ने जाता। हाँ, ये शब्द तब गूंजे थे जब गोरखपुर की जेल में बंद शहीद भगत सिंह ने लिखा अपनी माँ को पत्र।

0: धन्यवाद।
1: हेलो, हाय दोस्तों, मेरा नाम स्मृति है और मेरी शादी हो रखी है मेहंदीपुर डाबोदा में। मैं यहाँ पे लाइब्रेरी में फर्स्ट टाइम आई हूँ, वो भी मेरी ननंद ने बताया है मुझे। उन्होंने यहाँ पे सिलाई सीखा है, ब्यूटिशियन का सीख रही है वो भी। मुझे उनमें इंटरेस्ट दिखाई, इसीलिए आज मैंने भी यहाँ पे आने की सोची है। आज यहाँ पे आने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरा मन किया कि मैं यहाँ पे हर रोज आऊँ, कुछ नया सीखूँ, जिससे मुझे और भी मतलब पता चले कि यहाँ क्या क्या हो रहा है, क्या सीखने को मिलेगा, क्या मैं सबको बता सकती हूँ। मतलब इस टाइप से अगर मैं यहाँ पे रोज आऊंगी तो मैं कुछ ना कुछ नया सीखूंगी, जिससे मैं सबको बता सकती हूँ कि मैंने यहाँ पे क्या क्या सीखा है। इससे हर एक इंसान की नॉलेज बढ़ेगी, उसको भी पता चलेगा, ताकि वो आगे किसी को बता सके, उनको भी पता चले कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। इससे हम अपने बारे में या बाहर के बारे में हमें हर तरह की नॉलेज मिलेगी। घर में जैसे हमें कुछ नहीं पता चला, वो हमें बाहर आके बहुत कुछ पता चलेगा।
2: नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मुस्कान है और मैं मेहंदीपुर डाबोदा की रहने वाली हूँ। मैंने इसी साल 12th की है और मैंने यहाँ पे सिलाई सीखी है तकरीबन 3 साल पहले, और मुझे उससे बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। और अब मैं यहाँ पे करीबन एक महीना हो जाएगा ब्यूटी का सीख रही हूँ, और उससे भी मुझे बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। इसीलिए मैं अब, और रेडियो क्लास के बारे में तो मुझे पहली बार पता चला है, इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ और ये भी मुझे बहुत अच्छी लगी। यहाँ पे मैंने सिलाई सीखने के बाद बहुत सारे पैसे कमाए हैं, और मतलब यहाँ पे सिलाई सीखने के बाद मैं अलग अलग डिजाइन के सूट वगैरह सिलती हूँ, और मुझे यहाँ पर सीखने से बहुत ज्यादा फायदा हुआ है, और मैं यहीं पे और कुछ भी सीखना चाहती हूँ। धन्यवाद।
3: हाय दोस्तों, मेरा नाम दीपांशु है, मैं कक्षा 6 का छात्र हूँ।
4: मेरा नाम निखिल है, मैं 6 कक्षा का छात्र हूँ।
3: हम आपके सामने एक कविता सुनाना चाहते हैं।

0: वहाँ हमें बहुत फायदा होता है। हमारे यहाँ लाइब्रेरी में ब्यूटी पार्लर, सिलाई सेंटर और एनटीटी कोर्स, कंप्यूटर कोर्स, बहुत सारे कोर्स आते हैं। इससे मेरे को बहुत ज्यादा फायदा हुआ। पहले मेरी फैमिली, मेरी बिग फैमिली है, ये पहले ना सिलाई के पैसे बाहर जाते थे और घर में ही रह जाते, बचत होती है इससे काफी। मेरा एम है, मैं पुलिस में SI पे कर रही हूँ, साथ साथ में अब कोचिंग भी ले रही हूँ।
1: मेरा नाम सुनीता है, मैं गांव मेहंदीपुर की बहू हूँ और मैं 2014 में यहाँ लाइब्रेरी खुली हुई से जब से जुड़ी हुई हूँ मैं यहाँ पे। जब से मैंने ये पता चला कि भैया लाइब्रेरी खुली हुई है तो मैं उसी दिन से आना मैंने शुरू कर दिया। सिलाई सेंटर खुल रहा और कंप्यूटर शुरू होया और किताब सारी पढ़ने लगे, घर पर ले जाने लगे। मेरी लड़की ने यहाँ इंग्लिश सीखने आई तो यहीं पर फिर मेरी लड़की नौकरी करने लगी। फिर यहाँ से मेरी बेटी ने 3-4 साल नौकरी करी है। फिर उसके शादी होने के बाद वो अपने ससुराल से दूसरे गांव में आने लगी लाइब्रेरी में। और जब से मैं यहीं से जुड़ी हूँ सिलाई सीखती, जैसे अंडरलॉक करने लग गए और मैंने दिखने से कमज़ोर होने के कारण मैं कम, वैसे जो कोई फंक्शन होता है मैं ज़रूर आती हूँ यहाँ पे, और कुछ गाना बजाना होता है जब भी मैं शुरुआत ज़रूर करूँ।
2: नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सपना है और मेरी कुछ सहेलियाँ हैं पलक, दीपिका और भावना पायल। मैं आपके सामने एक गाना प्रस्तुत करना चाहती हूँ, कृपया मेरे गाने को ध्यान से सुनो। मेरी माँ

0: होगा।
1: धन्यवाद।
2: मेरा नाम मानसी है, मैं मेहंदीपुर डाबोदा में रहती हूँ। हमारे गांव में लाइब्रेरी है जिसमें मैं ब्यूटीशियन का कोर्स करती हूँ। इससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है और मैं भी बहुत बचता है मेरा यहाँ आने पे, क्योंकि अगर हम गांव से कहीं बाहर जाते हैं तो हमें बहुत स्मेल लग जाता है। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी सुविधा दी गई है हमें।
3: मेरा नाम तनु है, मैं मेहंदीपुर डाबोदा में रहती हूँ। मैं अपने गांव में उपस्थित लाइब्रेरी में ब्यूटिशियन का कोर्स करती हूँ और मैं आपको यहाँ रेडियो की क्लास में एक पोयम सुनाना चाहती हूँ।

0: थैंक यू।
1: अभी आप सुन रहे थे रीड इंडिया मेहंदीपुर दाबोदा केंद्र से जुड़े युवक और युवतियों के विचार। अगली बार फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे ऋतु को दे इजाजत। नमस्कार।

आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो। रीड इंडिया समुदाय के सहयोग के द्वारा समुदाय के विकास के लिए कार्य करता है। रीड इंडिया ग्रामीण समुदायों में स्थायी सामाजिक परिवर्तन हेतु शिक्षा, उद्यम और सामाजिक विकास के क्षेत्र में कार्य करता है। आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो।

0: नमस्कार बहनों, मैं रीड इंडिया द्वारा आयोजित वर्कशॉप के दूसरे भाग में आपका स्वागत करता हूं। मेरा नाम दिनेश मिगलानी है। इस वर्कशॉप के पहले भाग में हमने यह सीखा था कि हमारे जीवन में आत्मनिर्भरता की क्या उपयोगिता है, कैसे हमारी जो महिलाएं हैं, हमारे जो घर की बहनें हैं, कैसे वो आत्मनिर्भर होकर अपना एवं अपने परिवार को आगे बढ़ा सकती हैं एवं देश की उन्नति में अपना योगदान प्रदान कर सकती हैं। पहले भाग में हमने यह भी सीखा था कि व्यापार करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके अलावा व्यापार यदि आप करते हैं तो उसमें क्या क्या कार्य आपको करने पड़ सकते हैं। यह हमारा भाग दो है वर्कशॉप का। इस भाग दो के अंदर हमारा जो मेन प्वाइंट है सीखने का, वह यह है कि व्यापार की शुरुआत कैसे की जाए। व्यापार की शुरुआत कैसे की जाए। व्यापार जो होता है, व्यापार करने के लिए हमारी एक व्यापारिक मानसिकता होनी चाहिए, ठीक है। व्यापारिक मानसिकता क्या होती है? व्यापारिक मानसिकता होती है कि अपनी आर्थिक स्वतंत्रता के लिए, अपने आप को आर्थिक रूप से आजाद करने के लिए हम जोखिम उठाते हैं। तो व्यापार का पहला मूल मंत्र क्या है? जोखिम उठाना, ठीक है। इसके साथ साथ हमारे मन में यह दृढ़ इच्छा होनी चाहिए कि हमें व्यापार करना है, ठीक है। अब तक के सेशन में हमने यह तो समझ लिया था कि आत्मनिर्भरता का हमारे जीवन में क्या महत्व है, बट अब इस सेशन में हमारा ऑब्जेक्टिव है कि व्यापार का पहला कार्य क्या है। व्यापार का सबसे प्रथम कार्य होता है अवसर की तलाश करना, सबसे पहला जो कार्य है। अगर आपके पास अच्छा अवसर है, ठीक है, अगर आपको यह पता चल गया कि मैं अगर ये काम करूं तो इससे मैं आत्मनिर्भर हो सकता हूं, तो आप मान लीजिए आधा कार्य आपका हो चुका है। जैसे हम जनरल एक हिंदी में बात कहते हैं ना कि किसी कार्य की शुरुआत अगर अच्छी हो जाए तो इसका मतलब ये है कि वो आधा कार्य तो वहीं पर हो जाता है। ऐसे ही व्यापार में सबसे इम्पोर्टेंट यह होता है, सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वह यह होती है कि अवसर की तलाश हो जाए, ठीक है। अब देखो, यदि हम व्यापार करने का विचार कर रहे हैं तो हमारे मन में कई तरह की संभावनाएं आती हैं, कई तरह की बातें आती हैं, क्यों ना ऐसा कर लिया जाए, क्यों ना ऐसा कर लिया जाए, ठीक है। कई तरह के अवसर हमारे दिमाग में आते हैं, तो हमें हर जगह संभावना दिखती है, ठीक है। पर ऐसा नहीं कि अगर मुझे किसी कार्य में संभावना दिख रही है तो मात्र उत्तेजना में आकर मैं वह कार्य शुरू कर दूं। पहले हमें यह समझना होगा कि क्या जो कार्य क्षेत्र में मुझे संभावना दिख रही है, क्या उस कार्य क्षेत्र के अंदर वो कार्य क्षेत्र व्यवहारिक है या नहीं है, क्या व्यवहारिक है उसमें व्यापार करना। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा, ठीक है। तो चलिए हम यहां बात करेंगे पहले कि क्या क्या अवसर हमारे पास में, हमारी बहनों के पास में हो सकते हैं जो गांव में रहती हैं या ऐसी जगहों पर रहती हैं जो शहरों से ज्यादा दूर नहीं है, शहरों के आसपास है, ठीक है। या हमारी बहनें जो कम पढ़ी लिखी हैं, जो वैसे नौकरी नहीं कर सकती बट कुछ अपनी ओर से कुछ कार्य करके पैसा कमाना चाहती हैं, तो इसमें देखिए, वैसे आजकल के समय में सबसे ज्यादा जो लोग इन्वॉल्व है, सबसे ज्यादा जो लोग शामिल है, वह खाने पीने की चीजों से रिलेटेड व्यापार में है। क्यों? क्योंकि आज के समय में हर आदमी अपना कुछ पैसा खाने पर खर्च करता है। आप देखिए, अगर आप दिल्ली के पास किसी गांव में रहती हैं, या आप चंडीगढ़ के पास कहीं रहती हैं, या कोई बहुत बड़ा शहर या छोटा शहर भी आपके पास में है, तो अगर शाम को मार्केट में घूमने भी चले जाएं तो आप यह देखेंगे कि जगह जगह पर लोगों ने अपने ठेले लगा रखे हैं, ठीक है, और उन ठेलों पर वह वो सामान बेच रहे हैं, वो खाने पीने की चीजें बेच रहे हैं जो घर में बड़े आसानी से बनाई जा सकती हैं। जैसे कि मैं बहुत छोटे छोटे एग्जांपल दूंगा आपको, क्योंकि देखो हमारी जो महिलाएं हैं उनके साथ जो पुरुष उनके घर में है या उनके कुछ बच्चे जो एज में उनकी काफी एज है, तो वो उनकी सहायता कर सकते हैं बाहर जाके खाने पीने चीजों को बेचने में। जैसे कि गोलगप्पे हैं, पानीपुरी जिसे हम कहते हैं, ठीक है। आप देखिए, पानी पूरी को बनाना कितना आसान है, कुछ भी नहीं लगता उसके अंदर, ठीक है। और एक पानी पूरी 2 या 3 रुपए की ज्यादा की आपकी बिकती है, और अगर आप किसी बड़े शहर में उसे बेच रहे हैं तो वो ज्यादा की आपकी बिकने वाली है। पानी तो बेचना आपने, ठीक है, तो चीजें आसान है तो आपको अवसर तलाशता है। तो खाने पीने की चीजों में आप और बहुत कुछ देख सकते हैं, ऐसी ऐसी सूखी चीजें होती हैं जो खाई जाती हैं, ठीक है, जो लोग पसंद करते हैं खाना, तो उनको बेचा जा सकता है। इसके अलावा कढ़ाई बुनाई और सिलाई से रिलेटेड बातें हैं, जैसे कि हमारी गांव की महिलाएं कढ़ाई और सिलाई में काफी तेज होती हैं, मतलब क्योंकि यह प्रशिक्षण उन्हें अपने परिवार से ही मिलता है, ठीक है। तो आज के समय में सभी महिलाएं शहर में आप देखेंगे या सभी लोग अपने घरों को चमकाना चाहते हैं, सभी लोग चाहते हैं कि उनके घर में साज सज्जा हो, तो जो हाथ से बुनाई हुई चीजें काफी ज्यादा अच्छी होती हैं, काफी ज्यादा आकर्षित करती हैं। तो यदि आप में हाथ की कला है जिसमें आप सिलाई कर सकती हैं, कढ़ाई कर सकती हैं, तो आप छोटी छोटी कपड़ों पर कढ़ाई करके उसको एक डिजाइनिंग पीस में बना के शहर में बेच सकती हैं, ठीक है। इसके अलावा स्वेटर एवं डिजाइनदार कपड़े, आज के युग में, आज के समय में जो महिलाएं शहरों में रहती हैं, नौकरियां करती हैं, तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वे अपने बच्चों के लिए स्वेटर बना सकें। तो जनरली वो महिलाएं क्या करती हैं, दुकानों पर जाकर स्वेटर खरीदती हैं। तो अगर आप किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र के अंदर, जैसे मान लीजिए आप जहां रहते हैं आपसे पास कोई शहर या गांव है, आप उस गांव में अगर आप थोड़ी सी कोशिश करके देखें तो आपको स्वेटर बनाने के ऑर्डर मिल सकते हैं। तो आप एक बच्चे का नाप लेके उसकी स्वेटर बना सकती हैं। तो यह एक तरीके से आपका आत्मनिर्भर होने का जरिया हो सकता है। इसमें आपको फायदा क्या होगा, क्योंकि ऊन जो है वह तो जिस परिवार ने बनवानी है अपने हिसाब से आपको देगा, ठीक है। तो आपको तो ओनली जो आप अपने हाथों से काम कर रही हैं उसी की ही मेहनताना आपको मिलना है। इसके अलावा साज सज्जा का सामान है, मैंने पहले ही आपको बताया कि सभी लोग अपने घरों को ऐसा चाहते हैं कि उनका घर चमका चमका रहे, घर उनका शानदार सा दिखे, ठीक है। तो घर को शानदार दिखाने के लिए हम साज सज्जा का सामान बनाते हैं। तो यदि हमारी कुछ महिलाएं, अगर आप में कुछ ऐसा हुनर है जो आप ऐसे डिजाइन बना सकती हैं मिट्टी के उससे कपड़े के ऊपर जो घरों में यूज किए जा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा सौंदर्य से आधारित, हर महिला अपने आप में सुंदर दिखना चाहती है, चाहे कोई भी महिला, मैं कहता हूं चाहे गांव हो चाहे शहर हो, हर महिला यह चाहती है कि वह सुंदर दिखे। अगर वह कहीं से जाए तो लोग माने कि हाँ वो सुंदर है, ठीक है। तो आज के समय में चाहे आपके पास पैसा है चाहे पैसा नहीं है, चाहे आपके आमदनी के साधन है चाहे आमदनी के साधन हमारे कम है, फिर भी हमारी महिलाएं जो भी उनके पास में चीजें अवेलेबल हैं उनको यूज करके सुंदर दिखना चाहती है। तो यदि आप सौंदर्य से आधारित कार्य कर सकते हैं जिसमें छोटा मोटा आपका ब्यूटी पार्लर हो सकता है, मैं एक ब्यूटी पार्लर नहीं कहूंगा, मैं ये कहूंगा कि आप अपने घर से ही जिसमें छोटी छोटी महिलाओं की जो जरूरतें हैं वह कार्य सीख के आप अपना कार्य शुरुआत कर सकती हैं। जैसे कि हमारी जो संस्था है रीड इंडिया है, यह हम अपनी लाइब्रेरीज या अपने सेंटर्स के माध्यम से आपको ब्यूटिशियन कोर्स की ट्रेनिंग देती है, ठीक है। और यदि आप हमारी संस्था के थ्रू जुड़े हैं और आप अगर आप ब्यूटिशियन की ट्रेनिंग लेते हैं तो इतना तो आप सीख ही जाते हैं कि कैसे महिला को सुंदर दिखाया जाए, ठीक है। तो यह एक आपका अच्छा कार्य हो सकता है। इसके अलावा आप बच्चों के खिलौने बना सकते हैं, लकड़ी से खिलौने बनाए जाते हैं, मिट्टी के खिलौने बनाए जाते हैं, यह वो चीज है जो हमेशा चलती है। देखो कोई भी इंसान है जब उसका बच्चा कुछ भी मांगे उससे, ठीक है, जब छोटा बच्चा है तो खेलने के लिए इंसान, आप चाहे उसका इनकम सोर्स है या नहीं है, फिर भी वह बच्चों के लिए काफी पैसा खर्च करता है। तो आप कोई भी, जैसे आप देखेंगे शहरों के अंदर शाम को या सुबह में जो गुब्बारे वाले होते हैं वह भी एक अच्छी कमाई कर जाते हैं, क्यों, क्योंकि अगर आपका बच्चा गुब्बारे की डिमांड कर रहा है, गुब्बारा मांग रहा है, तो आप उसे गुब्बारा लेके देंगे। और आप सोच के देखिए, एक गुब्बारे को फुलाकर और उसको एक डोर से बांधने में आपका कुल खर्च कितना है और कुल कितना पैसा उसके लिए लिया जाता है। 10 रुपए से कम गुब्बारा नहीं बिकता, ठीक है। और यदि आप उस गुब्बारे पे खर्चे की बात करें तो आपका 1 से 2 रुपए का गुब्बारा आता है, 1-2 रुपए आप यह मान लीजिए उससे जो आपने डोर बांधी है, तो 3 से 4 रुपए के खर्च को आप 10 रुपए तक बेच सकते हैं, ठीक है। ये एक सोच की बात है, अभी देखने में हमें लगता है कि यह बेचना बहुत मुश्किल होगा, पर आप देखिए हजारों लोग ये कार्य करते हैं, ठीक है। इसके अलावा मिट्टी के डिजाइनदार बर्तन आप सकते हैं बना। देखो गांव में हम बहुत तरह की कलाएं सीखते हैं, अगर हमारे हाथ में हुनर है, अगर हमारे हाथ में हुनर है तो हम ऐसी कोई भी चीज बनानी सीख सकते हैं, और यह सब चीजें शहरों में बड़ी आसानी से बेची जा सकती हैं। आप देखिए किसी भी बाजार के अंदर, कोई जो बड़े बड़े शहर है वहां तो सड़कों पर बाजार लगता है, ठीक है, सड़कों पर बाजार लगता है, तो लोग आते हैं अपने से जो भी सामान होने चाहिए उन्हें खरीदते हैं। तो यदि आप कोई ऐसी चीज बनाने में अगर आप में हुनर है तो यह भी आपके आत्मनिर्भर होने का रास्ता खोल सकती है। इसके अलावा पापड़, अचार, जो ऐसी सूखी चीजें हैं, देखो अचार है, जो लोग बहुत साफ सुथरा ढंग से अचार बनाते हैं, यदि वह शहर में जाकर उसका विपणन करें, उसकी मार्केटिंग करें, तो अचार बिकना शुरुआत हो जाती है, ठीक है। इसी तरह से ताजी चटनी, कटी हुई सब्जियां, देखो आजकल के युग में जो महिलाएं कार्य कर रही हैं, जो महिलाएं जॉब करती हैं, चाहे वह सरकारी नौकरी है चाहे वह प्राइवेट नौकरी है, तो वो महिलाएं चाहती हैं कि उनके घर के छोटे मोटे कार्य जो हैं वह उन्हें किए मिले। तो आजकल आप देखोगे पहले मार्केट में जाते थे तो वहां सब्जी खरीदी जाती थी, ठीक है, बट आज जमाना ऐसा आ गया है कि मार्केट में कटी हुई सब्जियां खरीदी जाती हैं। अब आप जब आलू वाले भैया को बोलोगे कि भैया मुझे 1 किलो आलू देना, अब आप ये नहीं कहोगे 1 किलो आलू देना, आप उसे ये कहेंगे मुझे आलू की सब्जी बनानी है तो 1 किलो कटे आलू देना, ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि यह वो सारी बातें हैं जिनको जिनमें से आप यह देख सकते हैं कि व्यापार की, इन सब चीजों में व्यापार की अपार संभावनाएं हैं। इसके अलावा भी बहुत चीजें ऐसी हो सकती हैं, क्योंकि जब आप अवसर के बारे में सोचती हैं, अवसर के बारे में तलाश शुरू करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि हमें क्या आता है, ठीक है। और कई बार ऐसी चीज होती है जो हमें आती नहीं है, बट हमारे मन में आता है कि इस चीज से कोई ना कोई व्यापार किया जा सकता है। तो इस तरह से इन सभी अवसरों को कुछ मैंने यहाँ पर बताए हैं, या इसके अलावा बहनें हमारी इतनी सारी यहाँ बैठी हैं, और मैं तो ये मानता हूँ कि हमारे बहनों की जो सोचने की शक्ति है वह सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि वो बहनें आपस में एक समूह में होती हैं। जब आप किसी समूह में बैठे होते हो तो इतने सारे दिमाग एक साथ कार्य करते हैं, तो आप आपस में शेयर कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं भी यह आइडिया आपके मन में है। तो जो भी आइडिया आपके मन में आए, जो भी व्यापार करने की बात आपके मन में आए, आप यह उस व्यापार करने के मुद्दे को अपने सहेलियों के साथ में उनसे बात करिए, क्योंकि जब आप किसी आइडिया को दूसरे के साथ में शेयर करते हैं, उससे बात करते हैं, तो हो सकता है दूसरा व्यक्ति आपको उसमें से कुछ और अच्छी बात सुझा सकता है। तो पहला जो हमारा मुद्दा है वह है अवसर को तलाश करना। मैं फिर बार बार इस बात पे जोर डाल रहा हूं, यहाँ पर हमारी महिलाएं जो यहाँ पर बैठी हैं, यदि उनके मन में कोई भी अवसर है, यदि उन्होंने किसी अवसर को अगर तलाश लिया, ठीक है, और उत्तेजना में आकर व्यापार शुरू कर दिया, उत्तेजना मैं नहीं कहूंगा, पहले सोच समझकर, अगर उन्होंने सारी बातें सोच समझकर कार्य करना शुरू करा, तो 100% उनका कार्य यह है सफल होगा, ठीक है। अब अवसर तो तलाश लिया, ये मैं मान के चल रहा हूं, ठीक है, मैं मान रहा हूं, कुछ बातें मैंने बताई हैं, कुछ आप लोग भी आपस में बात करेंगे, तो यह मैं मान के चल रहा हूं कि अवसर तो हमने तलाश लिया। अब अवसर तलाशने के बाद में यह नहीं है कि जैसे ही आपने अवसर तलाशा तो मतलब आपका व्यापार चल पड़ा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अवसर तलाशने के बाद में हमारी जंग शुरू हो जाती है, हमारी जंग शुरू हो जाती है किसके साथ में, हमारी जंग शुरू हो जाती है भाग्य के साथ में। हमारी जंग की शुरुआत हो जाती है जो मार्केट में दूसरे लोग हैं जो उसी तरह के सामान को बेचते हैं, ठीक है। तो उसके बाद दूसरा जो कार्य हमारे करना होता है वह होता है विपणन अनुसंधान। विपणन अनुसंधान, अब आपको लगेगा कि विपणन क्या होता है और अनुसंधान क्या चीज होती है, तो विपणन अनुसंधान से हमारा मतलब यह होता है कि आइडिया या जो हमने अवसर के बारे में बात करी है, अब हम यह देखेंगे कि उस अवसर में कितना दम है, क्या जो हमारा ग्राहक है क्या वह उसे पसंद करेगा कि नहीं करेगा, क्या हमारा ग्राहक जो हमारा जिसको हमें सामान बेचना है वो उसमें अलग क्या चाहता है। तो विपणन अनुसंधान के अंदर सबसे पहले हम ग्राहक की बात करते हैं, सबसे पहला हम क्या बात करते हैं, ग्राहक की, क्योंकि अंत में पैसा तो आपको ग्राहक नहीं देना है, मतलब सारी बातें अपनी जगह, कोई भी अगर हम इसमें से सामान को चुनाव करते हैं, कोई भी व्यापार करने की शुरुआत करने की बात करते हैं, तो अंत में जो पैसा है, जो सामान बेचा जाएगा, वह तो किसको बेचा जाएगा, ग्राहक को ही बेचा जाएगा। तो इसका मतलब सबसे पहले हमें ग्राहक के बारे में सोचना होता है कि ग्राहक क्या हमारी वस्तुओं को पसंद करेगा या नहीं करेगा, और क्या ग्राहक हमारी चीजों के बारे में खरीदेगा या नहीं खरीदेगा। ठीक है, तो ग्राहक को समझने के लिए हम क्या करते हैं, ग्राहक को समझने के लिए हम पहली चीज यह देखते हैं कि हमारी चीजों में क्या क्या विशेषता है, ठीक है, और ग्राहक की क्या क्या आवश्यकता है। दोनों में हमें एक एक तरह से बांध बनाना होता है, ग्राहक की आवश्यकता क्या है, क्या हमारी जो वस्तु जो हमने बनाई है क्या उसकी आवश्यकता को पूर्ण करता है या नहीं करता है। ठीक है, जैसे कि हम छोटा सा एग्जांपल लें, मान लो खाने पीने की चीजें हैं, ठीक है, अब देखो हर तरह के ग्राहक है, कुछ ग्राहक ऐसे हैं जो स्वास्थ्य के प्रति काफी जागरूक है, ठीक है, तो वो ऐसी वस्तुएं खाना पसंद करते हैं जो काफी साफ सफाई से बनाई गई हों, इसके अलावा ज्यादा मसालेदार न हो, ठीक है, तो हमें उन ग्राहकों को हमें देखना होगा कि हम किन ग्राहकों को टारगेट करके अपना कार्य कर रहे हैं, क्योंकि अंत में पैसा तो ग्राहक ने ही देना है। इसके अलावा मार्केट में जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, जो सामान हम बना रहे हैं, उससे दूसरे सामान और क्या क्या अवेलेबल है, ये हमें जरूर देखना होता है। ऐसा नहीं कि उत्तेजना में आकर हम अपना कार्य शुरुआत कर दें और जब हम मार्केट में सामान बेचने जाएं तो हमें यह पता चले कि हमारे सामान के अलावा जो दूसरे सामान मार्केट में उपस्थित है वह क्वालिटी वाइज या उनमें गुणता हमसे ज्यादा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें दूसरों के प्रोडक्ट्स को भी देखना है, उनको समझना है कि उनके प्रोडक्ट्स में क्या है और हम अपना जो सामान बनाएंगे हम उनसे कैसे बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि यदि हमारा सामान दूसरों के सामान से बेहतर होगा तभी उसका मार्केट में बिकने के चांसेस ज्यादा है, तभी हम एक अच्छी बाजार में अपने आप को अच्छा शो कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें दूसरों के सामान को भी देखना होगा। सामान को देखने के बाद फिर हम यह देखेंगे कि हम अपने सामान को दूसरों के सामान से कैसे अच्छा बना सकते हैं। ठीक है, और फिर यह भी आपको समझना है कि क्या हमारा सामान जो हमने बनाया है क्या वह ग्राहक की इच्छाओं को पूरा करता है, क्या वह ग्राहक की आवश्यकताओं को पूरा करता है। यदि हमारा सामान ग्राहक की आवश्यकताओं को दूसरों के सामान से ज्यादा पूरा करता है तो इसका मतलब हमारे सामान को मार्केट में चलने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। इसके अलावा एक मैंने एक वर्ड लिखा है यहां पर इंग्लिश के अंदर, पायलट टेस्टिंग, पायलट टेस्टिंग। अब हमारी कुछ बहनें हैं वह नहीं समझ पाएंगी कि पायलट क्या होता है, अब ये तो आपको पता ही है बहनों कि पायलट का मतलब होता है जो जहाज उड़ाता है। ठीक है, अब देखिए ऐसा तो नहीं है कि किसी को हम जहाज दे रहे हैं तो पहले ही उसे कहें जा बेटा जहाज उड़ा, हजार सवारी ले जा साथ में, ऐसा तो नहीं है। पहले हम कुछ थोड़े से पोर्शन पे ट्राई करके देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप बाजार में नमक खरीदने चले, और हमने जो सड़क के किनारे नमक बेच रहे हैं उनसे बात करनी शुरुआत करी, वहां दो ढेरियां लगी हुई थी, ठीक है, एक ढेरी में नमक था और दूसरी डेयरी में भी नमक था। हमें यह देखना था किस डेयरी का नमक हम लें। तो हम क्या करते हैं, चुटकी भर लेते हैं, अपनी जीभ पर लगाते हैं और टेस्ट करके देखते हैं, ठीक है, और उसके बाद हमें जो नमक पसंद आता है उसको हम लेते हैं। सेम यहां पर है, यदि आपके मन में कोई अवसर आ गया और आपका मन पूरा बन गया कि मुझे इस अवसर पे व्यापार करना है, तो अपने ज्यादा पैसा खर्च करने की बजाय पहले हम थोड़ा सामान बनाकर देखेंगे। पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा सामान बनाकर देखेंगे और उसे उस थोड़े से सामान को मार्केट में बेचने का प्रयास करेंगे, यह समझने के लिए कि क्या हमारा सामान मार्केट में बिकने लायक है या नहीं है, ठीक है। क्योंकि यदि हमारा सामान मार्केट में बिकने लायक नहीं है और हम काफी ज्यादा सामान बना लेते हैं तो इसमें हमारा जोखिम ज्यादा होगा, ठीक है। तो पहले कुछ सामान बनाकर हम मार्केट में बेचने की ट्राई करें, बेचने की कोशिश करें, और यदि हम अपनी कोशिश में सफल हो जाते हैं और ग्राहकों के फीडबैक से, जो ग्राहक हमें बताते हैं कि इसमें क्या क्या और चीज, इसमें क्या सुधार किया जा सकता है, तो हम आगे नए से नई चीजें बना सकते हैं। तो ओवर कॉन्फिडेंस में आगे हम ज्यादा सामान नहीं बनाना चाहिए, पहले हमें उस सामान की मार्केट में पायलट टेस्टिंग करनी चाहिए, हमें देखना चाहिए कि क्या वह हमारा सामान जो है मार्केट में बिकने लायक है या नहीं है। इसके अलावा साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना चाहिए। आज के युग में, आज के समय में साफ सफाई सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। कोई भी ग्राहक, कोई भी, मान लीजिए मैं ही हूं, मुझे अगर कुछ भी खरीदना है तो पहली बात मैं सामान को देखूंगा क्या साफ सफाई है, या जहां पर वह बनाया जा रहा है या जहां पर बैठ के आप उसे बेच रहे हो, क्या वह साफ सुथरी जगह है या नहीं है। तो सामान को बनाने से लेकर उसको बेचने तक, किसी भी सामान को बनाने से लेकर और उसे बेचने तक साफ सफाई का ध्यान जरूर रखा जाना चाहिए, क्योंकि साफ सफाई हमारे देश की पहचान है। मोदी जी का नारा है ना स्वच्छ भारत, तो ये जो स्वच्छ भारत की बात है वो इसी बात से निकली हुई है, साफ सफाई का ध्यान होना चाहिए, ठीक है। खाने पीने की चीजें हैं, बच्चों के खिलौने हैं, जितनी ज्यादा साफ सफाई होगी उतना ही आपके लिए अच्छा है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है पैकेजिंग। सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होती है, पैकेजिंग। पैकेजिंग आकर्षित होनी चाहिए। देखो आप मान लीजिए आप बाजार में जाते हैं, आप कुछ भी खरीदना चाहते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले आप सामान को देखते हैं, जो सामान सबसे ज्यादा आकर्षित ढंग से जिसको पैक किया जाता है, हमारा मन पहला उसी पे टिकता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि उसकी क्या उपयोगिता है, उसमें क्या चीजें हैं, ठीक है। और देखो सामान तो जब आप यूज करते हैं उसके बाद ही समझ में आता है कि वो कितना आपके लिए कारगर होगा, बट सबसे पहली चीज जो ग्राहकों को अपनी तरफ आकर्षित करती है वह होती है सामान की पैकिंग। तो पैकिंग आपको सीखना बहुत जरूरी है। जैसे कि अगर हम एक छोटे बच्चों के गिफ्ट की बात भी करें तो हर चीज को पैक किया जाता है, पैक करने का एक उपयुक्त तरीका होता है। तो रीड इंडिया के सेंटर्स के माध्यम से पैकेजिंग कोर्स भी चलाए जाते हैं, जिसमें यह बताया जाता है कि सामान को कैसे पैक किया जाए, कैसे रैप किया जाए अच्छे रैपर्स के अंदर। तो पैकेजिंग हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मान लीजिए आप अचार बेच रहे हैं, आप चटनी बेच रहे हैं, तो उसको किस ढंग से पैक किया जाए, ठीक है। पैक करने के बाद उसके ऊपर क्या क्या लिखा होना चाहिए ताकि ग्राहक उसको देखते ही समझ जाए कि इसके अंदर क्या चीज है, ठीक है। और अंत में हम बात करेंगे मूल्य निर्धारण की। अब यह काफी ज्यादा कठिन प्रश्न हो जाता है कि सामान का मूल्य क्या रखा जाए, सामान का मूल्य क्या रखा जाए, ठीक है। तो जो सामान हाथ से बनाया जाता है वैसे तो उसकी कोई कीमत नहीं होती। हम तो एक चीज कहते हैं कि जो हाथ से बनाई जाती है वह अतुलनीय चीज है, वह मतलब बेशुमार कीमती है, पर ऐसा नहीं है। ग्राहक तो कीमत के हिसाब से ही, अपने सामान उपयोगिता के हिसाब से ही सामान खरीदेगा, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, ऐसा नहीं कि हम यह चाहें कि इतना मुनाफा कमा लें कि एक ही सामान को बेचकर मुनाफा कमाएं। देखो मुनाफा कमाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए दो तरीके हैं, या तो हम अपने सामान की कीमत को ज्यादा रखें, ठीक है, दूसरा, हम अपने सामान की कीमत में हमने मन में सोच लिया कि यदि मेरी 100 रुपए लागत है और 100 रुपए की लागत के ऊपर मैं कम से कम 15-20% का लाभ चाहता हूं, ठीक है, तो मैंने एक परसेंटेज अपने मन में फिक्स कर ली, तो मैं सामान की कीमत को इस तरह से रखूंगा कि लागत के बाद जितना मुझे लाभ चाहिए उतना मैं लाभ उसमें जोड़ दूंगा, ठीक है। या हम क्या करें कि अपने सामान की सेल को बढ़ाएं, यदि ज्यादा सेल होगी तो ज्यादा सामान बिकेगा, तो ज्यादा सामान बिकेगा तो कम, अगर कीमत कम भी है, कीमत अगर कम भी है तो भी हमें लाभ उतना ही होगा। तो हमें यह सोचना चाहिए कि एक बार में लाभ न कमा लिया जाए, लाभ कमाएं, मुनाफा कमाएं, बट ऐसा ना हो कि इतना ज्यादा मुनाफा कमाएं कि ग्राहक दूसरी बार हमारे पास आए ना। तो हमारे सामान में क्वालिटी के हिसाब से, सामान की उपयोगिता के हिसाब से हमें उसका मूल्य निर्धारण करना होता है। मूल्य निर्धारण करते समय हमें यह भी देखना चाहिए कि मार्केट में जो दूसरे प्रोडक्ट बिल्कुल सेम जो हैं उनका मूल्य कितना है। ऐसा ना हो कि हमारे सामान का मूल्य उनके मूल्य से काफी ज्यादा हो, जिससे कि हमारे सामान के बिकने के जो चांसेस हैं वह कम हो जाए। तो हमें मूल्य निर्धारण पे भी काफी ध्यान देना चाहिए। तो इस भाग के अंदर हमने कई बातों पर बात करी, तो मैं आशा है मुझे कि हमारी जो बहनें यहां बैठी हैं उनको यह समझ में आया होगा कि व्यापार करना जितना बाहर से आकर्षित करता है अंदर से उतना आसान नहीं, हमें मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है हर हिस्से में, व्यापार के हर भाग में। ये नहीं कि हमने सामान बना लिया और हम यह सोचें कि हमारे घर से बिक जाएगा, बिल्कुल नहीं, ठीक है। इसके अलावा सामान तो हमने बना लिया अपनी सोच के हिसाब से, अपनी सोच के हिसाब से बनाया गया सामान ग्राहक की सोच से यदि मैच नहीं करता तो वह सामान हमारा बिकने वाला नहीं है, ठीक है। तो ग्राहक हमारे लिए देवता है, जैसा ग्राहक चाहेगा सामान तो हमें वैसा बनाना पड़ेगा। इसके अलावा उत्तेजना में आकर बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पर, बड़े स्केल पर सामान बना दिया जाए और फिर हम उसे बेचने जाए मार्केट के अंदर, तो यह भी मूर्खता होगी। पहले हमें यह देखना चाहिए, थोड़ा बहुत सामान बनाकर बेचने की ट्राई करनी चाहिए और यह पता करना चाहिए कि किन किन मुश्किलों का हमें सामना करना पड़ सकता है या हमारे सामान में किन किन बातों, किन किन चीजों से सुधार किया जा सकता है। इसके अलावा पैकेजिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। जो चीज जितनी अच्छी पैक्ड होगी, जितनी अच्छी पैकेजिंग होगी उसकी उतनी ही उपयोगिता ज्यादा है, उतने ही वह ग्राहकों को आकर्षित करती है और उसके बिकने के चांसेस उतने ज्यादा हो जाते हैं। और मूल्य तो एक बहुत बड़ा कारण है ही है कि ग्राहक आपका सामान तभी खरीदता है जब वह सामान उसकी उपयोगिता के हिसाब से, जो मूल्य आप उसे बता रहे हैं उसके साथ यदि वह मैच कर जाता है तो ग्राहक आपका सामान जरूर खरीदेगा। आशा है इस भाग को, वर्कशॉप के इस दूसरे भाग को समझने के बाद आपको यह जरूर समझ में आया होगा कि व्यापार करने की शुरुआत कैसे की जाती है और कैसे कैसे हम अपने व्यापार को आगे बढ़ाते हैं। इसी वर्कशॉप के भाग 3 के अंदर हम यह सीखेंगे कि मार्केटिंग कैसे की जानी चाहिए। सामान तो आपने बना लिया, मूल्य भी निर्धारण कर लिया, कंपेयर भी कर लिया, कैसे मार्केटिंग करी जाए। और इसके अलावा, मार्केटिंग के अलावा हम यह भी देखेंगे कि कैसे अपने खाते बनाए जाए। मतलब आप कुछ ना कुछ खाता बना जरूर होना चाहिए ताकि आप यह देख पाए कि कितनी हमारी लागत लग रही है, कितना हमारा खर्चा आ रहा है और महीने या 2 महीने के अंत में हमें कितने का लाभ होगा। तो वह हम इस वर्कशॉप के भाग 3 में सीखेंगे। आशा करता हूं आपको यह सेशन पसंद आया होगा। धन्यवाद।
1: रीड इंडिया अपने सभी केंद्रों के द्वारा विभिन्न समुदायों की युवतियों व महिलाओं में सीखने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता रहा है। तो आइए सुनते हैं इन्हीं युवतियों व महिलाओं के अनुभवों पर आधारित कार्यक्रम, सुनिए उनकी कहानी, उनकी जुबानी।
2: माय नेम इज नौशाबा अंसारी, मैं आगरा से बिलोंग करती हूँ। मेरी क्वालिफिकेशन 10th है और मैंने हॉस्पिटल में जॉब किया। उसके बाद मेरी पढ़ाई बीच में रुक गई थी, मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई थी उसकी वजह से मेरी पढ़ाई बीच में रुक गई थी। फिर मैंने जॉब की 2 साल आगरा में ही हॉस्पिटल में। उसके बाद मेरी शादी हो गई थी, मेरा 1.5 साल का बेटा है। उसके बाद मुझे रीड इंडिया के बारे में पता चला, तो यहाँ पर मैंने TG का एंड NTT का कोर्स किया, कर रही हूँ मैं यहाँ से। हाँ, मुझे अच्छा लगता है यहाँ आकर के, मुझे लगता है कि मैं कुछ कर सकती हूँ, अपना फ्यूचर बना सकती हूँ, अपने बेटे का भी फ्यूचर बना सकती हूँ। मेरे इन-लॉज भी एग्री हैं, मेरे हस्बैंड भी एग्री हैं यहाँ के लिए। यहाँ पर अभी तक भी कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है NGO के सिवा, और हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पर और भी खुलने चाहिए ऐसे, जो उससे सभी लेडीज़ को, लड़कियों को बाहर निकलने का मौका मिले, जिनके फादर मदर निकलने नहीं देते घर से। यहाँ अच्छा लगता है, टीचर्स भी अच्छे हैं यहाँ के सारे।
3: हेलो, मेरा नाम दीपा है, मेरी उम्र 23 साल है और मैं मैरिड हूँ। मेरा एक बेटा है और मेरी शादी को 3 साल हो चुके हैं। मैंने 12th तक की पढ़ाई की है, उसके बाद मैंने कंप्यूटर हार्डवेयर के फॉर्म भी भरे थे, पर मैं 6 महीने का ही कोर्स कर पाई कि बीच में मेरी शादी आ गई, जिसके कारण मैं आगे की पढ़ाई अपनी पूरी नहीं कर पाई। शादी के 1.5 साल बाद मेरा बेटा हुआ। जैसे बेटे होने के बाद तो जैसे मैं डिप्रेशन में रहने लगी। उसके बाद मुझे रीड इंडिया के बारे में पता चला, तो मैंने अपने इन लॉज को कन्वेंस करने की कोशिश की, पर वो राजी नहीं हो पा रहे थे। लेकिन काफ़ी समझाने के बाद उन्होंने मुझे परमिशन दे दी। उन्होंने तो परमिशन दे दी, उसके बाद मुझे अपने हस्बैंड को मनाने में भी काफ़ी कोशिश करनी पड़ी, क्योंकि मेरा बेटा अभी 1.5 साल का ही हुआ था। लेकिन धीरे धीरे वो भी मान गए। उसके बाद मैं यहाँ आई तो मैंने NTT का कोर्स किया। उसके साथ साथ ही मुझे वहाँ पे सर्वे करने आए, तो मुझे यहाँ पे कंप्यूटर कोर्स के बारे में भी पता चला। फिर मैंने यहाँ पे कंप्यूटर कोर्स में भी एडमिशन ले लिया, कंप्यूटर का कोर्स भी किया। उससे मुझे बहुत अच्छा फील होने लगा। उसके रीड इंडिया आकर मुझे काफ़ी अच्छा लगने लगा, मुझे काफ़ी कम महसूस होता था और मैं अपने आप को काफ़ी आज़ाद महसूस करती थी। मैं अपने लिए कुछ कर रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा था। मैं शादी के बाद और बच्चों के बाद काफ़ी डिप्रेशन में चली गई थी। उसमें भी मुझे काफ़ी ये लगा कि मेरा डिप्रेशन दूर हो रहा है, खुल के सांस ले पा रही थी मैं। अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने सारे काम अपने आप से खुद कर सकती हूँ, मैं इंडिपेंडेंट हूँ और मैं अपने बच्चों को एक अच्छा फ्यूचर दे सकती हूँ, मैं अपने आप को अच्छा फ्यूचर दे सकती हूँ, मैं अपने लिए कुछ कर रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है। मुझे कंप्यूटर सीखने के बाद तो मुझे काफ़ी कुछ ऐसा लगता है कि हाँ भाई, मैं कुछ कर रही हूँ। मेरे काफ़ी काम बहुत ही आसानी से हो जाते हैं, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग या फिर बिल पे करना, टिकट करना और भी काफ़ी बैंक में के काम सभी घर पे हो जाते हैं। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है खुद से अपना काम करके, या फिर भाई पहले बहुत बहुत देर तक धूप में लाइन में जाना पड़ता था, अब मैं घर बैठे ही अपना सब कुछ कर सकती हूँ। थैंक यू रीड इंडिया।
4: मेरा नाम रिया है, मैं 10th में स्टडी करती हूँ और मेरी क्लास बीच में अभी कुछ दिनों से बंद हो गई थी, क्लास आना बंद हो गया था मेरा, और मेरे घर वाले एग्री नहीं थे, लेकिन मैम ने कॉल करके समझाया, फिर मेरे घर वाले एग्री हुए, मेरे को भेजा। मैम भी बहुत अच्छी है यहाँ की, और जो भी कोर्स आता है, मैं पहले टीचर ट्रेनिंग भी कर रही थी, फिर उसके बाद अब मैंने कंप्यूटर क्लास ज्वाइन किया है। ये महसूस किया मैंने कि हाँ, जो मैं चाहती हूँ फ्यूचर में बनना, अपने करियर में कुछ करना, उससे ये हुआ है कि हाँ, मैं बिल्कुल, मेरे को वो हो गया है, घर वालों का सपोर्ट हो गया है। टीचर्स ने समझाया था, कॉल की थी कि हाँ, ये कर सकती है कुछ।

नमस्कार बहनों, रीट इंडिया द्वारा आयोजित व्यापार को कैसे स्थापित किया जाए एवं आत्मनिर्भर कैसे बना जाए की वर्कशॉप के भाग तीन में मैं दिनेश मिगलानी आपका स्वागत करता हूं। अभी तक के दो चरणों में या दो भागों में हमने यह सीखा था कि आत्मनिर्भरता की हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है एवं भाग दो के अंदर हमने यह सीखा कि व्यापार कैसे किया जाए, व्यापार की शुरुआत कैसे की जाए, शुरुआत करने के बाद हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे ग्राहकों की आवश्यकताओं को हमें देखना है और कैसे मूल्य निर्धारण करना है। भाग तीन के अंदर हम दो महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे, जिसमें पहला भाग हमारा जो है कि सामान को कैसे बेचा जाए, सामान की मार्केटिंग कैसे करी जाए, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। देखो, वैसे तो मार्केटिंग जो सामान को बेचना है यह एक तरह की कला है, यह एक तरह की कला है और कला ऐसी होती है जो इंसान में आंतरिक तौर पर होती है, वंशागुणत होती है। मैं तो ये कहता हूं कि वह जन्मजाति होती है। हम देखते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ महिलाएं बहनें हमारी ऐसी हैं जो बातों को बहुत अच्छे ढंग से बताती है और इतने अच्छे या रोचक ढंग से बताती हैं कि सामने वाला उनकी बातों पर विश्वास कर लेता है और सारा जो बाजार का खेल है वह केवल विश्वास का खेल है। यदि ग्राहक आपकी बातों पर विश्वास कर रहा है वह आपसे सामान खरीदेगा, उसके बाद सामान का उपयोग करेगा और यदि वह आप सामान का उपयोग और आपकी की गई बातें अगर आपस में मेल खाती हैं तो ग्राहक संतुष्ट ग्राहक माना जाता है, जो एक व्यापार अच्छे व्यापार का सूचक है। ठीक है, तो इस भाग के अंदर हम दो भागों में बात कर रहे हैं। पहला भाग जो है सामान को कैसे बेचा जाए। देखिए, सामान बेचने के लिए सबसे पहले हमारी अपनी सकारात्मक सोच होनी चाहिए, हमारी सकारात्मक सोच होनी चाहिए अपने सामान के बारे में। हमें यह लगना चाहिए कि हमारा सामान औरों से क्यों अच्छा है, हमारा सामान औरों से क्यों अच्छा है। यदि हमें यह लगेगा कि मेरा सामान बहुत अच्छा है तभी मैं अपने ग्राहक को यह बता पाऊंगी कि मेरा सामान औरों से क्यों अच्छा है। तो पहली जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, हमारे चीजों के तरफ एक सकारात्मक सी सोच होनी चाहिए, हमारे मन में यह कॉन्फिडेंस होना चाहिए या हमारे मन में यह आत्मविश्वास होना चाहिए कि जो सामान हम बेच रहे हैं यह मार्केट में उस दाम पर सबसे अच्छा मिलने वाला सामान है। ठीक है, सकारात्मक सोच के साथ साथ आपको अपने सामान के बारे में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आप देखिए, सिंपल सी बात है, एक साधारण सी बात है, मैं अपने सामान के बारे में तभी बता सकता हूं जब मुझे अपने सामान की हर बात के बारे में जानकारी होगी। मैंने सामान कैसे बनाया, किस किस कच्चे माल का उसमें प्रयोग करा, बनाते टाइम मेरी विधि क्या थी, क्या मैंने साफ सफाई का ध्यान रखा या नहीं रखा, हर चीज के बारे में आपको पूरा पता होना चाहिए। क्योंकि आप जब किसी दूसरे व्यक्ति को अपने सामान के बारे में बताते हैं तो आप तभी बता सकते हैं जब आपको उसके बारे में एक पूर्ण रूप से जानकारी होगी। ठीक है, तो सामान की जानकारी होना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है एक अच्छे मार्केटिंग के लिए। हम ये कहें अच्छे जो सामान बेचने वाला होता है उसके लिए महत्वपूर्ण बात यही होती है कि सामान की जानकारी और उसका सामान दूसरे सामान से कैसे अच्छा है। क्योंकि जब हमें अपने सामान की जानकारी होगी तो हम अपने ग्राहक को यह बता पाएंगे कि हमारा जो सामान, अगर जो सामान हम बेच रहे हैं वह दूसरे सामान से कैसे अच्छा है, कितना अच्छा है। ठीक है, क्योंकि तभी ग्राहक हमारा सामान खरीदेगा। तो सामान की विशेषताएं, जानकारी एवं दूसरे जो मार्केट में सामान अवेलेबल है उससे कंपैरिजन करना, या हम कहें कि उससे हम नाप पाएं कि हमारा सामान उनसे कितना अच्छा है। इसके बाद हमारी वाक्पटुता होनी चाहिए। देखो, वाक्पटुता बोलने की कला है। बोलने की कला मतलब यदि कोई ग्राहक हमारे पास में आता है तो हमें बात करनी है उससे, ग्राहक से। ठीक है, क्योंकि हम यदि ग्राहक ने मान लीजिए मुझसे किसी सामान के बारे में पूछा और मैं उसे एक रूखा सा जवाब दे दूं तो सिंपल सी बात है, साधारण सी बात है कि ग्राहक मेरा सामान नहीं खरीदेगा। और यही यदि मैं एक बहुत अच्छे ढंग से उसे जवाब दूं, अच्छे ढंग से अपने सामान की विशेषताओं के बारे में बताऊं तो ग्राहक उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस होता है और ग्राहक हमारा सामान खरीदता है। तो आपकी बातचीत की कला सामान बेचने के अंदर बहुत महत्वपूर्ण होती है। एक अच्छे बातचीत कला व्यक्ति या महिला
अपने सामान को बहुत अच्छे तरीके से बेच सकती है। और कुछ कार्य हमारे ऐसे हैं, मैंने शुरुआती लेक्चर में आपको बताया था कि कुछ कार्य हमारे ऐसे होते हैं जिन कार्यों में हमारा व्यापार जो है वह सारा जो आधारित होता है, जैसे कि एक ब्यूटिशियन का कार्य है, जो ब्यूटी पार्लर वाली महिला है जो साज सज्जा का सामान या सौंदर्य से आधारित जो काम करती है, तो उसको बातचीत में पारंगत होना चाहिए। यदि वह जिस महिला के सौंदर्य पे कार्य कर रही है, यदि वह उससे बातचीत करती है बहुत अच्छे ढंग से, उसे हर चीज को समझाती है, हर चीज की उपयोगिता बताती है, हर चीज का महत्व बताती है, तो जो दूसरी महिला है जो उसके पास एज ए ग्राहक आई है, अगली बार उसी के पास ही आएगी। ठीक है, जैसे मैं छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, मैं अपनी बात करूं, देखो मैं बाल कटवाता हूं, ठीक है, बाल कटवाता हूं तो मैं उसी नाई के पास जाना पसंद करता हूं जो बड़े प्यार से बोलता है। बोल तो मेरे घर के आसपास काफी नाइयों की दुकानें हैं, ठीक है, बट फिर भी हम हर बार एक ही नाई के पास जाते हैं। या मान लीजिए आप कहीं से सामान खरीदते हैं, तो ज्यादातर आप देखोगे, ज्यादातर आप एक ही दुकान पे जाएंगे, बार बार उसी दुकान पे जाएंगे। यदि वह दुकानदार आपसे कुछ पैसा ज्यादा भी लेगा तो भी आपको यह लगेगा कि उसी दुकान पर जाना ही आपके लिए लाभदायक है। क्यों? क्योंकि हम यह देखते हैं कि सामान खरीदने के साथ साथ हम जिससे सामान खरीद रहे हैं क्या वह हमसे अच्छे ढंग से बातचीत करता है या नहीं करता है, क्योंकि उसकी जो बातचीत है, जो उसकी बात करने की कला है, वह हमें सम्मोहित कर लेती है। तो हमारी बहनें जो यहाँ बैठी हैं, वह बातचीत करने में काफी अच्छी हैं। मैं पर्सनली जानता हूं, बहुत लोगों से हम बात करते हैं तो महिलाओं की जो वाक्पटुता होती है, महिलाओं की जो बात करने की कला होती है, वह पुरुषों के मुकाबले काफी अच्छी होती है। तो उनकी जो बातचीत करने की कला है वह आपको अपना सामान बेचने में काफी ज्यादा सहायता करती है। इसके साथ साथ हमें कभी संकोच नहीं करना चाहिए। देखिए, मार्केटिंग का पहला नियम यही है कि अपने सामान के बारे में बताते समय कभी संकोच ना करें, मन में कभी संशय ना लाएं, ठीक है, ना ही कभी आपको ऐसा लगे कि मैं बार बार वही चीज बता रहा हूं, हर ग्राहक को बताता हूं और ग्राहक मेरे सामान को पसंद नहीं कर रहा है। कई बार ऐसा होता है कि कोई ग्राहक सामान खरीदना ही नहीं चाहता, तो यदि आप उसे विशेषताएं बताएंगे, उपयोगिता बताएंगे, तो आपकी बातों पर ध्यान न दे। तो हमें निरंतर बिना संकोच किए एक अच्छे तरीके से अपनी चीजों के बारे में ग्राहकों को बताना चाहिए। साफ सुथरा रहें, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, सबसे महत्वपूर्ण बात है। यदि आप मार्केट में जाके सामान बेचते हैं, जिसे हम कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं, तो वहां पर कोई भी ग्राहक अगर आपके पास आता है तो ग्राहक पहले ये देखता है कि जो व्यक्ति सामान बेच रहा है वो किस वेशभूषा में है, कैसे बैठा है। यदि आप देखिए, मुझे कुछ खाने का सामान खरीदना, मान ली छोटा सा मैं आपको उदाहरण देता हूं, मुझे पानी पूरी खानी है, ठीक है, अब मेरे सामने तीन पानी पूरी वाले ठेले हैं, ठीक है, मैं किसी उस ठेले पर जाना ज्यादा पसंद करूंगा जहां जिस ठेले पर जो पानी पूरी खिला रहा है वह साफ सुथरा व्यक्ति होना चाहिए, हाथ साफ हो, कपड़े साफ हो, क्योंकि तभी देखो आज के युग में कोई भी ग्राहक है वह आपसे तभी बात करना पसंद करेगा, तभी आपकी दुकान पर आना चाहेगा जब आप एक साफ सुथरे होंगे, ठीक है। तो हमें अपने ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा मेहनत तो देखो पहली चीज है, मेहनत के बिना कोई भी व्यापार नहीं चल सकता, ठीक है, और ऐसा भी नहीं कि आपने एक बार मेहनत कर दी फिर आप मेहनत करना बंद कर दें, तो ऐसा नहीं होता। किसी भी व्यापार को चलाने के लिए मेहनत कश होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बिना मेहनत के आप कोई भी व्यापार नहीं चला सकते। इसके साथ साथ हमारा जो उद्देश्य व्यापार का है, लाभ कमाना तो है ही है, लाभ कमाने के साथ साथ ग्राहक की संतुष्टि लक्ष्य है। तो मार्केटिंग में या सामान बेचने में आप जो आपने ज्यादा ध्यान रखना है, एक तो ग्राहक की संतुष्टि, क्योंकि एक संतुष्ट ग्राहक मार्केटिंग से एक संतुष्ट ग्राहक उस पैसे खर्चने से ज्यादा अच्छा है, क्योंकि एक संतुष्ट ग्राहक जब दूसरे ग्राहकों को आपके सामान के बारे में बताएगा तो दूसरे ग्राहक भी आपके सामान के लिए आकर्षित होंगे। तो हमें यह हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हम जो भी सामान बेचें, जिस तरह का सामान बेचें, जिस ग्राहक को हम बेचें, वह ग्राहक हमसे संतुष्ट होकर जाए, वह हमारे सामान से संतुष्ट हो, क्योंकि एक संतुष्ट ग्राहक आपका बेस्ट मार्केटिंग वाला पर्सन होता है, क्योंकि वह हर जगह जाकर आपकी बात को बताएगा। इसके अलावा अगर हम कुछ पैसा खर्च करके मार्केटिंग करना चाहें तो हम कुछ पैम्पलेट छपवा सकते हैं अपने सामान के बारे में,
हमें पता है भी इस पर्टिकुलर एरिया के लोग हमारे सामान को खरीद सकते हैं, तो हम उनके घरों पे जाकर एक एक पर्चा फेंक सकते हैं। तो ये कई सारे माध्यम हो सकते हैं। आप देखो वैसे तो क्योंकि हम बात कर रहे हैं बिल्कुल छोटे स्केल पर, मतलब उन महिलाओं की बात कर रहे हैं जिनके पास ना तो काफी ज्यादा पैसा है, वह जो उनके पास साधन उनके पास है उन्हीं को ही यूज करके, उन्हीं का ही उपयोग करके आत्मनिर्भर होने की ट्राई कर रही हैं। तो यदि कुछ पैसा आ जाता है, यदि हमारा कार्य चलने लग जाता है, तो हम फिर अपनी मार्केटिंग के तरीकों को उसमें बदलाव कर सकते हैं। हम पर्चे छपवा सकते हैं, हम एक बैनर बनवा सकते हैं जिसपे जो भी सामान हम बेच रहे हैं उस सामान से, उससे सामान में क्या क्या है, उस सामान में क्या क्या विशेषता है, जो मार्केट में दूसरा सामान अवेलेबल है वह सामान उनसे कितना अच्छा है, उस सब के बारे में उस पर बता सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप सामान बेचने की ट्राई करिए, सामान बेचने की कोशिश करनी चाहिए, और जो एक मेहनत कश कार्य है जिसमें काफी मेहनत लगती है, और संतुष्ट ग्राहक को करना हमारा पहला उद्देश्य है। ये हुआ हमारा पहला पार्ट। भाग तीन के दूसरे पॉइंट्स, जो दूसरी बात हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण जो होती है, खातों में हिसाब रखना। देखिए हम व्यापार तो शुरू कर देते हैं, ठीक है, और व्यापार शुरुआत करने के बाद शुरुआती दौर पर जब हमारे पास में कुछ जमा पूंजी होती है तो हम उसे खर्च करते हैं। ठीक है, कई बार हमारी बहनें या काफी लोग ऐसे होते हैं जो हिसाब किताब नहीं रखते, और कुछ समय के बाद में उनको यह नहीं समझ में आता कि उनका कितना पैसा किस चीज पर खर्च हुआ और उन्होंने कुल कितना पैसा खर्च किया, और जो अब वह लाभ कमा रहे हैं क्या वह उस उनकी कॉस्ट या उसके खर्चे के अनुरूप है या नहीं है। तो इसमें बहुत ज्यादा न जाते हुए मैं इतना जरूर कहूंगा आपको कि अगर आप कोई भी व्यापार करते हैं तो आप एक अपनी डायरी जरूर बनाइए, एक डायरी अपनी जरूर बनाइए। ठीक है, उस डायरी में कुछ भागों में आप उसे बांट सकते हैं। ठीक है, क्या क्या भाग बना सकते हैं? एक भाग के अंदर तो आप यह देखो, मान लीजिए मेरा पहला पेज है, आपने आगे तो लिखना था लिख दिया ओम नमः शिवाय, भगवान जी का नमस्कार करके अपना स्वास्तिक का चिन्ह बना दिया जो लक्ष्मी माता का प्रतीक है। उसके बाद पहले पेज पर आप ये देखिए, हमने इसके दो भाग कर दिए। ठीक है, एक भाग हुआ हमारा खर्चे का और एक भाग हो गया हमारा आय का। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहां लिखेंगे सारा खर्चा, जो भी खर्चा होता है आपको एक एक करके रोज का खर्चा लिखना है, और यहां हमने लिखनी है आय, मतलब उससे हमें कितने का सामान बिका। मान लीजिए अगर मैं एक महीने की बात करूं तो एक महीने में मैं उस महीने में मैंने जितना भी खर्चा किया वह मैं सारा एक तरफ लिखता जाऊंगा। ठीक है, और जितनी भी मुझे आय हुई सामान बेचने से, जहां जहां से पैसा आया वह मैं सारा यहां पे लिखता जाऊंगा। ठीक है, और महीने के अंत में हम जोड़ कर लेंगे दोनों तरफ का और यह देखेंगे हमें लाभ कितना हुआ। ठीक है, ऐसी अगले महीने आपने करना है। मतलब आपको यह जरूर पता होना चाहिए कि यदि आपने 100 रुपए व्यापार में लगाए हैं तो 100 रुपए किस किस जगह पे आपने खर्च किए हैं। ठीक है, और यदि महीने के अंत में हमारी जेब में 500 रुपया है तो हमें यह जरूर पता हो कि वह कहां से हमारे पास में आया है। तो इससे हमें दो बातों में फायदा होता है, एक तो हम यह कंपेयर कर सकते हैं, यह हम आपस में तुलना कर सकते हैं कि मान लीजिए जो कच्चा माल मैंने आज खरीदा, अगले महीने अगर मैं वह कच्चा माल खरीदने दोबारा जा रहा हूं तो क्या उसकी लागत में कुछ बदलाव हुआ है या नहीं, उसकी मूल्य बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है। यदि मैं कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करूंगा, यदि मैं कोई खाता नहीं बनाऊंगा, तो मैं इस चीज को ढूंढ नहीं पाऊंगा कि पिछले महीने मैंने जो सामान खरीदा था उसकी लागत क्या थी, उसका मूल्य क्या था, और इस महीने जो मैं सामान खरीदने वाला हूं उसका मूल्य क्या होगा। क्योंकि यदि सामान का मूल्य बढ़ रहा है तो हम उसी के हिसाब से अपनी जो वस्तु है, अपना जो सामान है, उसका भी मूल्य बढ़ा सकते हैं। ठीक है, यदि अगर आपकी लागत बढ़ेगी तो हम अपनी वस्तुओं का मूल्य भी बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से आप इस चीज को जरूर बनाइए, खर्चा सारा लिखो, आय सारी लिखो। ठीक है, इसके अलावा आप यह देखो कि व्यापार चलाने के लिए अपने किन किन चीजों खरीदा है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे एसेट हैं, एसेट का मतलब होता है कि जो लंबे समय तक हमारे साथ रहेंगे, वह भी उस डायरी में आप एक जगह पर लिखिए क्या क्या सामान आपने व्यापार के लिए खरीदा है। इसके अलावा आप जब ग्राहकों से मिलते हैं तो जो आपके संतुष्ट ग्राहक है, आप ट्राई करिए, कोशिश करिए उन संतुष्ट ग्राहकों के पते भी आपके पास में हो। यदि ग्राहकों के पते आपके पास में होंगे
तो किसी कारणवश अगर कोई ग्राहक आप तक सामान लेने नहीं आ रहा है तो आप अपने सामान को वहां तक जाकर बेच सकते हैं। जैसे जैसे आपका व्यापार आगे बढ़ता है फिर हम और चीजों पर ध्यान देते हैं। मान लीजिए शुरुआती दौर पर हमने एक छोटा सा व्यापार शुरू किया, ठीक है, और 6-8 महीने की मेहनत के बाद में वह व्यापार में काफी वृद्धि हो गई। अब मुझे ये लगता है कि मैं अकेला उस व्यापार को नहीं संभाल सकता क्योंकि ऑर्डर ज्यादा आ रहे हैं और लागत बढ़ रही है, तो मैं अकेला उस व्यापार को नहीं संभाल सकता। तो फिर हम यह सोचते हैं क्यों ना किसी को साझेदार बना लिया जाए, तो फिर हम साझेदारी में आ जाते हैं। तो इस तरह से समय की मांग के साथ साथ, देखो मैं तो अंत में फिर यही कहूंगा, समय की मांग के साथ साथ हमें किस तरह के व्यापार के स्वामित्व पे जाना चाहिए, एकल व्यापार करना चाहिए या साझेदारी का व्यापार करना चाहिए, वह सब बात जो आती है वह बात आती है कि हमारे व्यापार का स्केल कितना है, क्या हमारे व्यापार में वृद्धि हो रही है या नहीं हो रही है। और जैसे जैसे आपका व्यापार बढ़ता जाएगा फिर आप बैंक में खाता खुलवा सकते हैं, जो पैसा हमारे पास में एक्स्ट्रा होता है, मान लीजिए मुझे पता है कि अगले 6 महीने मेरे पास में इतना पैसा ज्यादा आएगा, फिर पैसा नहीं आएगा, तो वो पैसा मैं अपने बैंक में डाल सकता हूँ जिसपे मुझे कम से कम ब्याज तो मिलेगा ही, ठीक है। उसमें आप अपना फिक्स डिपॉजिट करा सकते हैं, यदि आपका सेविंग खाता है या आपका बचत खाता है तो कुछ ब्याज गवर्नमेंट आपको देती है, सरकार की तरफ आपसे मिलता है, तो इस तरह से आप बैंक खाता खुलवाइए। तो धीरे धीरे एक अच्छे व्यापार की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। और यदि इसके बाद भी व्यापार और ज्यादा बढ़ रहा है तो हम बैंक से लोन ले सकते हैं, क्योंकि यदि बैंक में हमारा पैसा जमा होगा, हमारी साख होगी, तभी बैंक हमें फ्यूचर में हमारे व्यापार को बढ़ाने के लिए लोन प्रदान करेगा। अंत में फिर मैं एक बात को दोबारा दोहराना चाहूंगा, जो बहनें हमारी यहां पर बैठी हैं, इन वर्कशॉप के माध्यम से मैंने आपको एक कागजी तौर पर समझाया है कि व्यापार क्या होता है, व्यापार कैसे किया जाता है, व्यापार के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उसके बाद अवसर कैसे तलाशते हैं, अवसर तलाशने के बाद हमें अपना सामान बनाना होता है, सामान बनाते समय किन किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए, उसकी पैकेजिंग कैसी होनी चाहिए, साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, इसके अलावा उसका मूल्य निर्धारण कैसे करना चाहिए, और उसके बाद सामान बनाने के बाद उसको कैसे बाजार में बेचा जाए, और बेचते समय हमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, इसके अलावा जो हमने सामान बेचा है या जो हमने खर्चा किया है या जो हमारी आय हुई है, उस आय को कैसे एक लेखा के तौर पर एक उसके खाते बनाए जाने चाहिए, एक कॉपी में जरूर, आप एक डायरी में जरूर उसको एंट्री करिए, और धीरे धीरे जब आपका व्यापार बढ़ जाता है तो किन किन बातों का आपने आगे ध्यान रखना है। आशा करता हूं मैं कि इन वर्कशॉप के 3 भाग जो मैंने आपको, आपने जो मेरे 3 भाग देखे, इनको सुनने के बाद आपके मन में यह इच्छा तो जरूर पैदा होगी कि आत्मनिर्भर होना चाहिए आपको, और आत्मनिर्भर हुआ जा सकता है। हमारी बहनें, हमारी महिलाएं जो घरों में रहती हैं, जो कम पढ़ी लिखी हैं, जिनके पास आय का कोई साधन नहीं है और परिवार की जिम्मेवारी भी उनके ऊपर है, तो उन महिलाओं को उन महिलाओं में सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास जरूर आना चाहिए कि वह भी आत्मनिर्भर होकर अपने परिवार को पाल सकती हैं और अपना गुजारा कर सकती है। अंत में रीड इंडिया के माध्यम से मैं दिनेश मिगलानी आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आपने

0: कि हम टीबी के बारे में बात कर रहे हैं, तो टीबी के बारे में हमें बताएं कि ये क्या कैसी बीमारी है।
1: टीबी एक इन्फेक्शियस डिजीज है, मतलब संक्रामक रोग जो कि हवा से एक बैक्टीरिया द्वारा होता है और खांसी और हवा से बैक्टीरिया फैल के एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में चले जाता है। इसलिए टीबी एक काफी खतरनाक बीमारियों में जाना जाता है, क्योंकि एक टीबी का पेशेंट अगर एक घर में हो तो बाकी के जो सदस्य घर में रह रहे हैं, या अगर वो कहीं काम करने जा रहा है, जो बाकी के मेंबर्स हैं उसके ऑफिस में आसपास, उनको भी टीबी होने का खतरा होता है। इसी वजह से टीबी काफी तेजी से जो है हमारी सोसाइटी में फैलने का डर रहता है।
0: तो टीबी का रोकथाम किस प्रकार से की जा सकती है?
1: टीबी की रोकथाम के जो उपाय हैं उसमें सबसे पहला है जल्दी से जल्दी टीबी का डायग्नोसिस करना। किसी भी व्यक्ति को अगर खांसी 3 हफ्ते से ज्यादा चलती है, या बुखार रह रहा है साथ में खांसी है, या खांसी के संग बलगम में खून आने लगा है, तो ऐसे व्यक्ति को टीबी होने के चांसेस काफी ज्यादा हैं और ऐसे व्यक्ति की तुरंत जांच शुरू कर देनी चाहिए। जांच की सुविधाएं हमारे कम्युनिटी में डॉट सेंटर में टीबी सेंटर्स में उपलब्ध हैं। ये सारी सुविधाएं मुफ्त हैं। इन सुविधाओं में बलगम की जांच ये सबसे पहले की जाती है। मरीज को 3 दिन तक सुबह का बलगम लाने को कहा जाता है, उसको उसकी डब्बी दी जाती है, डब्बी में वो बलगम लेके आता है और उस बलगम की जांच के द्वारा हमें पता चलता है कि इस मरीज को कहीं टीबी का रोग तो नहीं हो गया।
0: अगर किसी को टीबी हो गई हो तो उसका देखभाल और इलाज किस तरह से किया जा सकता है?
1: टीबी एक पूरी तरह से ठीक होने वाला रोग है, परंतु टीबी का जो इलाज है वो अन्य इन्फेक्शंस की तरह छोटा नहीं है। अन्य इन्फेक्शंस का इलाज 7 से 14 दिन 20 दिन तक चल के होता है, परंतु टीबी के मरीज का इलाज कम से कम 6 महीने डॉक्टरी निगरानी में करना बहुत जरूरी है। इसका पूरा इलाज सरकार द्वारा फ्री किया जाता है डॉट सुविधा के तहत, जिसमें पेशेंट को अपनी निगरानी में दवा खिलाई जाती है। टीबी के मरीज को अगर अच्छी तरह से खुराक दी जाए, टीबी के मरीज को एक बंद कमरे में ना रखा जाए, सैर पे भेजा जाए और खुराक में हाई प्रोटीन दिया जाए, तो टीबी तकरीबन सभी केस 95% केस पूरी तरह ठीक हो जाते हैं और एक बार पूरा इलाज देने के बाद उनको दोबारा इलाज की जरूरत नहीं पड़ती।
0: टीबी के इलाज क्या बहुत महंगा है?
1: टीबी का इलाज महंगा नहीं है, बल्कि सरकारी संस्थानों में जो डॉट सेंटर है वहाँ टीबी का इलाज मुफ्त में किया जाता है, पेशेंट से कोई चार्जेस नहीं लिए जाते हैं, तो एक तरीके से फ्री भी है। अगर प्राइवेटली भी पेशेंट अपना इलाज कराता है तो ये इलाज कोई महंगा नहीं है। दिन की 15 रुपए की दवाई से इसमें ट्रीटमेंट शुरू होता है और 2 महीने के बाद ये 15 रुपए से भी दवाई जो है 7-8 रुपए की रह जाती है।
0: और इनकी जो दवाइयां हैं वो क्या आसानी से उपलब्ध हैं?
1: टीबी की दवाइयां सरकारी संस्थानों में आसानी से उपलब्ध हैं, पेशेंट को दी जाती है, बल्कि पेशेंट्स के लिए एक डेडिकेटेड डब्बा बना दिया जाता है हर मरीज के नाम का और दवाई उसमें हमेशा अवेलेबल रहती है। टीबी की दवाइयां हर केमिस्ट के पास उपलब्ध हैं, क्योंकि मैंने बताया हमारे देश में टीबी इतनी ज्यादा है कि तकरीबन बोला जाता है कि हर दिन 5,000 लोगों को टीबी का डायग्नोसिस किया जाता है देश भर में। तकरीबन 1,000 लोग एवरी डे उनका ध्यान तो जाता है टीबी की वजह से, मतलब 2 व्यक्ति हर 3 मिनट टीबी के रोग के कारण मारे जा रहे हैं। तो इतना ज्यादा टीबी फैला हुआ है, तो दवाइयों की उपलब्धता की समस्या नहीं है। समस्या ये है कि मरीज कई बार ये दवाई समझता है कि मुझे इन्फेक्शन थी, 1-2 महीने में मुझे आराम आ गया, मुझे आगे दवा की जरूरत नहीं है, वो दवाई बंद कर देता है और बंद करने की वजह से इन्फेक्शन 3-4 महीने में दोबारा लौट के अधिक मात्रा में और खतरनाक रूप से सामने आ जाता है। टीबी की इस समय सबसे ज्यादा समस्या है कि हमारी को कम्युनिटी तक ये अवेयरनेस पहुंचाएं कि टीबी का इलाज कम से कम 6 महीने करें और लग के करें, ये कम्प्लीटली क्योरेबल इन्फेक्शन है।
0: डॉक्टर साहब, किस किस तरह की टीबी होती है और उनके इलाज में क्या कोई खास डिफरेंस है क्या?
1: ये बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा। टीबी छाती की चेस्ट की ही नहीं होती, पल्मोनरी टीबी जिसे हम बोलते हैं, चेस्ट की टीबी जो खांसी से फैलती है, वो टीबी के मरीज अगर हम 100 देखेंगे तो 80 लोगों को छाती की ही टीबी होती है, परंतु 20 लोगों को छाती के बाहर की टीबी भी होती है। टीबी शरीर के किसी भी अंग को, हड्डी, लिम्फ नोड, लिवर, इंटेस्टाइन, किसी भी अंग को प्रभावित करके वहां रोग पैदा कर सकती है। उसका इलाज तकरीबन सेम दवाइयों द्वारा किया जाता है। जो इलाज की ड्यूरेशन है, जो इलाज का समय है, वो डॉक्टर डिसाइड कर लेते हैं कि ये इलाज 6 महीने चाहिए, 9 महीने चाहिए या

0: एक साल का चाहिए, परंतु दवाइयां सेम रहती हैं और डॉट्स के तहत ज्यादातर एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस का भी अच्छा इलाज होता है।
1: डॉक्टर साहब, हर साल 24 मार्च को, यानी कि 24 मार्च को टीबी डे मनाया जाता है। इस दिन को सुनिश्चित करने की क्या जरूरत थी और इसका क्या उद्देश्य है?
0: टीबी के लिए भी एक दिन साल में हम लोग को सुनिश्चित करना पड़ा, क्योंकि हमारे देश में या ग्लोबली टीबी की रोग एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। विश्व भर में 8.8 मिलियन टीबी के केसेस हैं और हमारे देश में 1/5 जो केसेस हैं वो हमारे देश से हैं। तो एक दिन निश्चित करके इस दिन द्वारा हम आपको मीडिया द्वारा, गेट टुगेदर्स द्वारा, कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम्स के द्वारा मिलकर डॉक्टर लोग अगर सब जगह ये अपने विचारों को फैलाएं कि टीबी एक कम्प्लीटली क्योरेबल डिजीज है, ये इन्फेक्शियस डिजीज है जिसका इलाज कराना पेशेंट के लिए जरूरी नहीं है, पूरी परिवार के लिए जरूरी है, नहीं तो ये परिवार में हर व्यक्ति को हो सकती है। इस अवेयरनेस को फैलाने के लिए जो दिन है ये सुनिश्चित किया गया है, जिसमें सब लोग जो है इस अवेयरनेस को स्प्रेड करें और जो रिजल्ट हमने पूरे साल मेहनत करके एक्वायर किए हैं उनको भी एनालाइज कर सकें।
1: इस दिशा में सरकार की तरफ से क्या प्रयास रहे हैं और ये प्रयास कहाँ तक सफल हो रहे हैं?
0: सरकार की तरफ से बहुत अच्छे डॉट सेंटर पूरी दिल्ली में बनाए गए हैं और उस सेंटर में ट्रीटमेंट मुफ्त उपलब्ध है, डायग्नोसिस की सारी सुविधाएं अवेलेबल होती हैं और पेशेंट्स को वहाँ पर अंडर सुपरविजन दवाई दी जाती है। इन प्रोग्राम्स के द्वारा दिल्ली में टीबी के पेशेंट्स को बहुत राहत मिली है और जितनी मेरी समझ है ये पॉजिटिव इफेक्ट है हमारी कम्युनिटी में।
1: डॉक्टर साहब, जैसे आप कह रहे थे कि जब किसी व्यक्ति को टीबी होता है तो उसके परिवार वालों को भी ये होता है कि इन्फेक्शस हो सकता है। पहले तो ऐसे होता था कि टीबी सैनिटोरियम्स में छोड़े जाते थे ये लोग और इनके साथ एक छुआछूत का जैसे बर्ताव किया जाता था, तो अब आपका क्या एडवाइस रहेगा कि कैसे इनका इलाज करना चाहिए परिवार वालों को?
0: जब तक टीबी के रोग का ये नहीं मालूम चला कि ये एक इन्फेक्शन है, जब तक इसके दवाइयाँ 1940 तक नहीं आई दुनिया में, इसकी ट्रीटमेंट नहीं बनी, तब तक टीबी से तकरीबन 100% लोग जो है वो मर जाते थे। मगर इफेक्टिव ट्रीटमेंट के साथ ये ट्रीटमेंट 100% सक्सेसफुल हो गया, अच्छी से अच्छी सेफ दवाइयाँ आ गई। जब तक पूरा इलाज नहीं था तब तक सैनिटोरियम का इलाज किया जाता था ताकि आसपास के लोगों को बीमारी ना फैले और मरीज को ताजी हवा में पहाड़ में अच्छी तरह से खुराक दी जाए और धीरे धीरे वो नेचुरली अगर हील हो सकता है तो हो जाए, अदरवाइज कम से कम वो पूरे शहर में बीमारी ना फैलाए। परंतु टीबी के अच्छे इफेक्टिव ट्रीटमेंट की डिस्कवरी के बाद इस तरह के सैनिटोरियम ट्रीटमेंट बंद हो गए, तकरीबन सारे सैनिटोरियम बंद हो गए हैं और घर पे रह के आप डोमिसिलरी ट्रीटमेंट जिसे हम बोलते हैं आप अच्छी से करवा सकते हैं। इस इलाज से तकरीबन 100% लोग ठीक हो जाते हैं। टीबी के पेशेंट के संग रहने से टीबी होने का खतरा होता है, परंतु जैसे ही आप इलाज शुरू करते हैं 7 से 10 दिन में पेशेंट टोटली नॉन इन्फेक्शियस मतलब बिल्कुल सेफ हो जाता है, आपको बीमारी नहीं दे सकता। 7 से 10 दिन में जो टीबी के कीटाणु हैं वो इतने क्षीण हो जाते हैं कि वो आपको बीमारी नहीं दे पाते हैं। टीबी के पेशेंट के संग रहने से, खाना खाने से कोई भी टीबी नहीं फैलती है। सिर्फ आपको एक प्रिकॉशन लेनी होगी कि वो जो अपनी स्पूटम या थूक है उसको किसी कंटेनर में जिसमें एंटीसेप्टिक है उसमें डिस्पोज करे, घर में इधर उधर ना फेंके, और अपनी बलगम से बने जो क्लोथ्स होते हैं, जो रुमाल है या कोई तौलिया है, उसको भी अच्छी तरह से गर्म पानी में धोए। तो टीबी के पेशेंट्स को घर पे डोमिसिलरी ट्रीटमेंट से बहुत अच्छा इलाज हो सकता है।
1: वैसे कहा जाता है कि टीबी एक गरीब तबके के समाज के लोगों को ज्यादा असर करता है, क्या यह सही है?
0: टीबी सोसाइटी के हर प्रकार के आदमी को इफेक्ट करता है, इसमें गरीब और अमीर का फर्क नहीं है। आपको अपनी हाइजीन लेवल को मेंटेन रखना है, अगर आप स्वस्थ वातावरण में ताजी हवा में रहते हैं, अपनी खुराक का पूरा ध्यान रखते हैं, अपने शरीर की जो इम्यूनिटी है उसको मेंटेन रखते हैं, तो टीबी आपको होने के चांसेस कम है। तो इसमें ऐसी कोई लाइन नहीं है कि गरीब को होगा टीबी जिसके पास अमीर है या पैसे वाले हैं, हर प्रकार के पेशेंट को, इट्स ए इन्फेक्शन, किसी को भी हो सकती है।
1: डॉक्टर बॉबी, जाते जाते आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: सब बहनों भाइयों को यही एडवाइस करूंगा कि अगर किसी को भी 3 हफ्ते से ज्यादा खांसी हो तो तुरंत डॉट केंद्र में जाके अपना जांच करवाएं। जांच करने के बाद अगर टीबी निकलती है तो मेडिकल अथॉरिटीज के साथ कोऑपरेट करके अपना कोर्स कंप्लीट करें। ये कंप्लीटली क्योरेबल डिजीज है, तो इसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। अपना हिम्मत मत हारें और पूरा डट के इलाज करवाएं।

0: रीडिनिया अपने सभी केंद्रों के द्वारा विभिन्न समुदायों की युवतियों व महिलाओं में सीखने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता रहा है। तो आइए सुनते हैं इन्हीं युवतियों व महिलाओं के अनुभवों पर आधारित कार्यक्रम, सुनिए उनकी कहानी, उनकी जुबानी।
1: हेलो, मेरा नाम नीलम है। मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मैं घर में रहती हूँ। मुझे यहाँ पे एक बार रीड इंडिया वाले हमारे उधर सर्वे करने आए थे, उनके थ्रू मुझे रीड इंडिया के बारे में पता लगा, फिर मैं इधर आने लग गई, मैं रीड इंडिया से जुड़ गई। यहाँ आने के बाद मैंने यहाँ से पार्लर भी सीखा है और कंप्यूटर भी। इस टैग के कोर्स में मैंने IT बनाना और किसी की लोकेशन सेंड करना, और पहले मैं घंटों उसकी लाइन में, बैंक की लाइन में खड़ी रहती थी, बट जब से फ़ोन, मतलब इसकी नॉलेज मुझे हुई है कंप्यूटर की, तब से मैं अपने फ़ोन में ये डाउनलोड करके कहीं भी पैसे सेंड कर सकती हूँ, पैसे भेज सकती हूँ, और उससे मतलब कैब करके मैं कहीं भी आ जा सकती हूँ। अब मुझे किसी पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता। और सबसे बड़ी बात जो रीड इंडिया से जुड़ने के बाद मेरे साथ हुई है वो ये कि मैं घर में रह के डिप्रेशन में रहने लग गई थी, अब मैं फ्री माइंड हो गई हूँ, मैं मतलब आज़ाद होकर सोच सकती हूँ, और थोड़ा मेरा दिमाग भी मतलब सही रहने लग गया है। पहले मैं बहुत परेशान रहती थी घर में रह के, मैं बाहर भी कहीं नहीं जाती थी, और घर में रह के यही रहने लग गया था, बस डिप्रेशन ही रहने लग गया था। अब यहाँ आके मैं बिल्कुल ठीक रहने लग गई हूँ। हाँ, मैं हाउसवाइफ के लिए ये कहना चाहूँगी कि आप लोग बाहर आइए, आपको नहीं सीखना नहीं है वो ठीक है, बट आप आइए, सीखने के बहाने से ही आइए, ताकि आप मतलब मेंटली तौर पर सही रह सकें, और आपको एक दूसरे से बात करके कुछ नया पता लगे। मतलब किसी चीज़ की नॉलेज ना हो तो कुछ अच्छा ही पता लगे, अपने परिवार के बारे में, बच्चों के बारे में, उनकी परवरिश के बारे में, बहुत कुछ आप यहाँ आके जान सकते हैं। थैंक यू रेड इंडिया।
2: हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ लेंसी एंड आई पास 10th क्लास। देन आई थिंक टू जॉइन रीड इंडिया एकेडमी टू इम्प्रूव माय कंडीशन। मैंने एकेडमी ज्वाइन की रीड इंडिया, और उसमें हमारा कोर्स स्टार्ट हुआ TEG, टेक्नोलॉजी एम्पावरिंग गर्ल्स। ये एक कोर्स है जो वुमेन और गर्ल्स के लिए है। ये वुमेन और गर्ल्स की बैड कंडीशन को इम्प्रूव करता है। जैसे पहले घरों में महिलाएं निकलती नहीं थी और कोई निकलने नहीं देता था, भाई और उनके पिता, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज ये प्रोग्राम चला है तो इसके लिए सब यहाँ पे वुमेन और गर्ल्स आती हैं, कंप्यूटर कोर्स करती हैं और सिलाई करती हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी करती हैं जिनसे वो इंडिपेंडेंट हो चुकी हैं, और आगे भी एक प्रोग्राम चल रहा है। मैंने एक कंप्यूटर कोर्स किया है 21 डेज का भी, और मैं बेसिक कंप्यूटर भी कर रही हूँ, और मैंने इंटरनेट के थ्रू मेलिंग सीखी है, वेबसाइट से लिंक बनाना सीखा है, और मैंने बहुत सी ऐसी चीज़ें सीखी है। पहले मतलब मुझे कुछ नहीं करना आता था, मुझे किस सबकी ज़रूरत होती थी, लेकिन आज कल मैं खुद कर रही हूँ ये सब, और मुझे किसी की ज़रूरत नहीं होती, बस मैं बहुत इंडिपेंडेंट फील करती हूँ। थैंक यू रीड इंडिया एकेडमी।
3: गुड आफ्टरनून, माय नेम इज़ तनु तनवर। आई पास 10th क्लास एंड आई जॉइन रीड इंडिया एकेडमी इन शाहबाद मोहम्मदपुर। दिस इज़ ओनली वन एकेडमी हु टीच अस कंप्यूटर। दिस एकेडमी हेल्प्स टू बी अ वुमेन इंडिपेंडेंट। रीड इंडिया स्टार्ट्स टैग प्रोग्राम फॉर गर्ल्स एंड वुमेन्स ओनली टू इम्प्रूव द बैड कंडीशन फॉर वुमेन्स, and it helps us in form filling, and also we helps our parents, then we also reserve tickets. Thank you.
4: I'm Shweta. I study in IGNU University, or I done NPTT course for Polytechnic Institute Rajouri Garden. और हमारे जो यहाँ पे शाहबाद में ये है ना NGO, मैं यहाँ से क्लासेस ले रही हूँ टैग की, तो इससे मेरे को काफ़ी चेंजेस आए हैं, और थोड़ा सा लगा के भाई यहाँ पे आके हाँ बाकी को भी करना चाहिए, क्योंकि एक तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और काफ़ी हेल्प है, मतलब टीचर्स अच्छे से समझाते हैं, कोई दबाव नहीं, किसी का कोई प्रेशर नहीं है, और दूसरा फिर इससे ये है कि नॉलेज बढ़ती है यहाँ पे आके एक दूसरे को, मतलब हम जाके जैसे हम आ रहे हैं किसी को बता रहे हैं, डिटेल दे रहे हैं, तो इससे काफ़ी चेंजेस आते हैं, मतलब किसी को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि एक तो पास में है, और ऊपर से यहाँ पे कोई ऐसे प्रेशर वाली बात नहीं, ऐसे कोई मतलब फोर्स कर रहा है किसी चीज़ के लिए, कोई बता नहीं रहा, इसमें ये होता है। और मतलब होना चाहिए कि हर घर से कोई एक भी आए ना, तो ये नहीं मतलब कि सिर्फ घर में या एक फैमिली में, इसमें पूरे एरिया में चेंजेस आ सकते हैं अगर हम लाना चाहें तो। और उसके बाद जैसे होती है ना फैमिली, टाइम से पहले मतलब लड़कियों को मतलब घर बिठा लेते, या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो, फाइनेंशियल कंडीशन लगा लो, कुछ भी हो, जिससे लड़कियां घर बैठ जाती हैं, पढ़ाई कर नहीं पाती, तो उससे भी काफ़ी हेल्प मिल जाती है इससे, इसमें लाइन में आने से, क्योंकि इनमें मतलब इतना कोई ज़्यादा हाई फाई फीस वगैरह भी नहीं लगती कि जिससे भाई कोई अफोर्ड नहीं कर पाए। इसमें नॉर्मली होता है फाइनली, मतलब ये कि जैसे नॉर्मली फैमिली होती है वो भी कर सकती है, और जो मतलब बिल्कुल लो होती हैं वो भी कर सकती हैं। और जैसे मतलब भाई होती है कुछ फैमिली जो लड़कियों को सपोर्ट नहीं करती, सिर्फ लड़कों को करती हैं कि भाई लड़के ही आगे बढ़ सकते हैं, लड़कियां नहीं बढ़ सकती, और शादी वादी कर देते हैं, उनकी पढ़ाना नहीं चाहते उनका आगे, तो उनके लिए भी मतलब है कि भाई वो कर सकती हैं आके, तो उनको लगेगा, खुद ही लगेगा, मतलब चेंजेस आ जाते हैं। और इससे मतलब इतना कुछ सिखाते हैं हमें यहाँ पे ये कि मतलब हमें खुद लगता है कि हम अपने पेरेंट्स की भी हेल्प कर सकते हैं, जैसे बैंकिंग वर्क में, और हमें ऑनलाइन शॉपिंग करना या ऑनलाइन मतलब कुछ भी वर्क है वो हम कर सकते हैं। तो इससे हमें हमारे लाइफ में भी चेंजेस आते हैं और घर वालों के में भी आते हैं, और इससे ये आगे हमारा जो फ्यूचर होता है ना वो सेव हो जाता है, क्योंकि अगर हम आज अपने पैरों पर खड़े तो तभी तो अपने बच्चों को हम बना सकते हैं मतलब इंडिपेंडेंट। अगर बच्चों को कुछ सिखाना तो उसके लिए पहले खुद स्टैंड लेना पड़ेगा, इससे बच्चे इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, क्योंकि उससे पहले हमें कुछ जानकारी होगी, हमें कुछ डिटेल्स होंगी, तभी हम किसी के सामने मतलब रख सकते हैं। एक शादी करना और मतलब लाइफ को घर में दबा के रखना, ख़त्म कर देना, सब कुछ नहीं होता आज के टाइम में। मतलब जितना बढ़ो आगे उतना कम है, और हर किसी को बढ़ना चाहिए, किसी एक को नहीं, हर किसी को, जहाँ से जैसी हेल्प मिलती है, जो मिलती है वो करनी चाहिए। इसमें कोई वो नहीं है कि सिर्फ यही कर सकता है, यही बोल सकता है, मैं नहीं कर सकती, ऐसा कुछ नहीं है। सबको है मतलब एक फ्रीडम होती है अपने आप में, लाइफ अपनी है, किसी का प्रेशर नहीं होता कोई के मतलब हम किसी के प्रेशर में आके अपनी लाइफ ख़राब कर दें, या मतलब बोल ले नहीं, कुछ नहीं करें, आगे नहीं बढ़े। एक दो बार मतलब होता है भाई, डर होता है एक, लेकिन बार बार निकलने से ना सब डर खत्म होने लग जाता है धीरे धीरे, क्योंकि डर एक ऐसी चीज़ है ख़त्म करने से ख़त्म होएगा, ऐसे डरने से तो डर बढ़ता ही है, कोई मतलब दूसरा उसको ख़त्म नहीं कर सकता आके। अब हम हैं जैसे कुछ होती हैं लड़कियाँ, ज़रूरी नहीं है कि हर लड़की को फ्रीडम होता है, फैमिली का सपोर्ट होता है, जैसे कि मैं हूँ, मेरे सिर्फ पेरेंट्स ने मेरे को सपोर्ट किया है, बाकी फैमिली वाले नहीं चाहते थे कि मतलब मैं आगे बढ़ूँ, क्योंकि सबको ये था ट्वेल्थ कर लिया, पास आउट हो गया, स्कूल शादी कर दो, ये वो, लेकिन मेरे पेरेंट्स शुरू से वर्किंग है, तो वो चाहते हैं, उनको पता है पैसे की कीमत क्या है, तो वो चाहते हैं मतलब तो बच्चे कुछ अच्छा करें, ताकि उनको इस लाइन में ना जाना पड़े, और वो अपने पैरों पे खड़े हो, मतलब अच्छे से अच्छा काम करें, और दुनिया में मतलब उनकी एक अलग पहचान हो। तो इसलिए उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया, मतलब मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि मेरे पेरेंट्स ने मेरा साथ दिया और आज मैं यहाँ हूँ। और एक शादी की तो एक लास्ट में एक वो होता है कि भाई अब तो करनी है, वो तो एक लास्ट मोमेंट होता है कि अब तो भाई स्टेप लेना ही है, उससे पहले ना सिर्फ स्टडी के बारे में सोचना चाहिए, कैसे लाइफ को इंडिपेंडेंट बनाया जाए। ज़रूरी नहीं होता कि मतलब घर वालों ने बोल दिया आप सुन के बैठ गए, चलो भाई कोई नहीं, उनको समझाना चाहिए अपने तरीके से, ऐसे भी नहीं कि लड़ लो, ये कर दो, वो कर दो, नहीं, प्यार से समझाओ, पढ़ाई की इंपॉर्टेंस बताओ, क्या चल रहा है लाइफ में, क्या दुनिया में क्या हो रहा है, कितनी इंपॉर्टेंस है। और वैसे भी आजकल तो हर कोई लड़का भी अच्छा नहीं मिलता, हर कोई फैमिली भी अच्छी नहीं मिलती, वो तो किस्मत की बात है, सुख दुख तो किस्मत का होता है। तो इसलिए हमें जितना हो सके अपने पैरों पर खड़ा होकर इंडिपेंडेंट होकर मतलब सोचना चाहिए, लास्ट एक मोमेंट होता है जो स्टेप लेना है, उससे पहले अपनी लाइफ बनाओ, जो करना है वो करो, बाकी करो सिर्फ ऐसा ही कि घर वालों को भी अच्छा लगे और खुद का भी एक स्टैंड और दुनिया में अपनी पहचान हो।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो। रीड इंडिया समुदाय के सहयोग के द्वारा समुदाय के विकास के लिए कार्य करता है। रीड इंडिया ग्रामीण समुदायों में स्थायी सामाजिक परिवर्तन हेतु शिक्षा, उद्यम और सामाजिक विकास के क्षेत्र में कार्य करता है। आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो।
5: दोस्तों, मैं हूँ शीला, मैं कुम्हार बीघा से आती हूँ, और हम यहाँ महिला संसाधन केंद्र के द्वारा यहाँ पढ़ी हैं। और यहाँ जब हम लोग यहाँ आए तो हम लोग को मुनि दी बताई थी कि यहाँ पर एक सर आने वाले हैं जो हम लोग को रेडियो को बताने के लिए कुछ बताएंगे और वीडियो बनाने के लिए बताएंगे, तो हम लोग यहाँ आए, हम लोग को सिखाया जा रहा है यहाँ पर ये प्रोग्राम बनाना और कोई भी बड़ा चीज को छोटा करके लिखना, लिखकर उस बात को रिकॉर्ड करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुनाना। हम अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए इस काम को कर रहे हैं और फोटो खींचना हम लोग को सिखाया गया है और इससे हम लोग को बहुत लाभ है। हमें तो लाभ है ही, बहुत सारे लोगों को भी लाभ है। हमारे गांव में जैसे गंदगी अधिक फैल जाती है तो हम उसको गांव से अधिक लोगों को बताने के लिए हम पहले कुछ लोगों का इंटरव्यू लेकर उनका आवाज रिकॉर्ड करके हम दूर दूर के लोगों तक पहुंचा सकते हैं, सरकार के पास भी पहुंचा सकते हैं, जिससे हमारी समस्या का हल हो। और इसे वीडियो में बनाकर हम बता सकते हैं, लोगों तक पहुंचा सकते हैं, मोबाइल के और मोबाइल में भी रिकॉर्ड करके लोगों को सुना सकते हैं, लोगों को जागरूक बना सकते हैं। जो औरतें पढ़ाई करने के बाद अपने घर में बेरोजगार हैं, जब हमारे गांव में एक रेडियो का कार्य खुल जाएगा तो यहां पर बेरोजगार महिलाओं को कार्य भी मिल सकता है। जो महिलाएं अधिक पढ़ लिख चुकी हैं, जिनके पास कोई काम नहीं है, वो यहां काम कर सकती हैं, इसमें जुड़ सकती हैं और वो कुछ आगे भी बढ़ सकती हैं। ये ट्रेनिंग बहुत ही अच्छा हुआ, हम चाहते हैं ट्रेनिंग आगे भी हो, क्योंकि इससे हम लोगों को अब जो आवाज़ हमारे ही पास सीमित थी वो आवाज़ बहुत सारे लोगों के बीच जा रही है। हम जागरूक हो रहे हैं, हम जागरूक होंगे तो हमारा देश भी जागरूक होगा, समाज के लोग भी जागरूक होंगे।
6: मेरा नाम उत्तम कुमारी है, मैं कुम्हार विकास आई हूँ और यहाँ हम कंप्यूटर क्लास करते हैं। और यहाँ जब करते करते मुन्नी जी बोले कि यहाँ मतलब सर आने वाले हैं, वो कुछ सिखलाएंगे, तो हमें कहा कि ठीक है हम सीखेंगे और साथ में कहें कि और लड़कियों को कह भी देना, तो उन लोग को भी कहे और साथ में आए तो सर आए और वो बोले कि मतलब सिखाने के लिए बोले, ट्रेनिंग देने के लिए बोले। हम लोग यहाँ आकर रेडियो प्रोग्राम बनाने के लिए लिखना सीखे हैं और रिकॉर्डिंग करना सीखे हैं, फोटो खींचना सीखे हैं, वो हम रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और फोटो और दूसरे को भी मतलब बता सकते हैं और बात कर सकते हैं, अपने मोबाइल द्वारा रेडियो प्रोग्राम को सुना भी सकते हैं। ये ट्रेनिंग आगे होना भी चाहिए जिससे हम मतलब आगे कुछ और सीख ले, टाइम मिल गया है।
7: नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आरती है, मेरा घर कुम्हार बीघा है, मैं कुम्हार बीघा से यहाँ आती हूँ। इस ट्रेनिंग से मुझ पर बहुत प्रभाव पड़ा है। हम लोग घर में ऐसे ही बैठे रहते थे, एग्जाम देने के बाद तो कोई काम नहीं था तो हम लोग बैठे रहते थे, पर यहाँ आने से हम लोग का एक टाइम भी बन गया है कि यहाँ पे आना है और कुछ सीख भी रहे हैं हम लोग यहाँ सीखने से माइंड का भी विकास हो रहा है और यहाँ पे कुछ जो बोलने वाली जो मंत्र जैसा है वो सिखाया जाता है, उससे हम लोग को बोलने की ताकत हो रही है, जिससे हम किसी लोग के सामने भी और ऊंची आवाज में कुछ बातें कर सकते हैं और रिकॉर्ड और किसी और गांव में भी जा करके दो महिला कुछ अच्छी बातें कर रही है तो उनकी बातों को अच्छे लोगों के पास सुनाने के लिए हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं बातों को।
8: ठीक, बोलो।
9: मेरा नाम अलका कुमारी है, जिला औरंगाबाद हल्दे एवं बिहार से हूँ। मैं यहाँ पास पहले टीचर ट्रेनिंग करती थी, लेकिन यहाँ पास एक प्रोग्राम आया रेडियो ट्रेनिंग का, इसमें मैं पार्टिसिपेट की हूँ और इस ट्रेनिंग के माध्यम से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला और नेपाल सर ने हमें बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी और सब लाइव रेडियो की कैमरा चलाना एवं उन्होंने हमारी आवाज़ को आगे बढ़ाया और उन्होंने हमें पहले हमारी आवाज़ बहुत ज़्यादा फंसती थी लेकिन उन्होंने हमें रियाज कराया कि अपने आवाज़ को साफ करने के लिए आप एक ट्रेनिंग दी जिसमें माँ बाप इसको रियाज करने से आपकी गला साफ हो जाएगी और आप आगे बढ़ सकते हैं, गा सकते हैं, अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। इसलिए मैं पास सर को बहुत बहुत धन्यवाद और मैं चाहूंगी कि वो आगे आए, ट्रेनिंग दें हम लोग को। इस ट्रेनिंग के माध्यम से पहले मैं कैमरा चलाना नहीं जानती थी, इसके कैमरा चलाना सीखी, स्टेप लिखना सीखी और दूसरे जगहों पर जाके उनके जगहों के बारे में जानने की कोशिश की और उसके बारे में लिखी, उसको रिकॉर्ड किया और उसे एक वीडियो बनाया और वीडियो बनाकर हमने लैपटॉप या कंप्यूटर में उसे ऐड किया, उसे एडिटिंग की और उसे मूवी मेकर द्वारा वीडियो बनाया, इसे लोगों को दिखाया और जो लोगों को काफ़ी पसंद आया। और मैं यही चाहती हूँ कि यहाँ पास भवानीपुर में महिला संशोधन केंद्र में और भी सुविधाएं आएँ, इससे महिलाओं को काफ़ी फायदा हो और महिलाएँ आगे बढ़ें। हमारे भवानीपुर कंपस केंद्र में महिलाओं को काफ़ी सुविधा मिली है और मैं चाहती हूँ कि इस सुविधा को सब लाभ उठाएं, सजा से लाभ उठाएं और आगे बढ़ें। मैं चाहती हूँ कि यहाँ कंपस से वानीपुर में ट्रेनिंग हो इंग्लिश स्पोकन के, जिसमें महिलाएं और भी लोगों को इंग्लिश सीखने का मौका मिले, वो अपनी आवाज़ को दूसरे के सामने इंग्लिश में रख पाएं और वो हिंदी के साथ साथ इंग्लिश बोलना भी सीखें।
10: नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती, मैं कुम्हार विवाह से आती हूँ। ऑडियो रिकॉर्डर करना, लिखना और एक दूसरे का बात रिकॉर्ड करके सुनना, फोटो खींचना, ऑडियो प्रोग्राम बनाना, बहुत सारा ऐसी चीज़ें सीखे हम लोग और हमको बहुत अच्छा लगा। और मैं चाहती हूँ कि ये ट्रेनिंग हो और इससे हमको बहुत हम लोगों का लाभ भी मिले और लाभ भी मिल भी रहा है।
11: मेरा नाम संगीता कुमारी है, मैं कुम्हार विहार से आई हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संगीता कुमारी है मैं कुम्हार विहार से आई हूँ। इस ट्रेनिंग से हमें बहुत फायदा हुआ है, जो हम लोग को रिकॉर्ड करने नहीं आता था और रिकॉर्ड करना सीख गए, और बहुत बड़ा प्रोग्राम रहता था उसको छोटा मतलब कर रिकॉर्ड करना और सभी लोग को मतलब सुनाना।
12: मैं अंजू कुमारी गुप्ता बोल रही हूँ, मेरा ग्राम है चट्टी। सामुदायिक रेडियो द्वारा मैं मेरा उपस्थित किया गया है और नेपाल सर ने उन लोग को बहुत शिक्षा दिए हैं और इसके बारे में जानकारी दी है। वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए मैं सीखी और ऑडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए।
7: मेरा नाम आरती है, मैं कुमार बिहार की रहने वाली हूँ और यहाँ पे वैसे खुद रेडियो समुदाय के से जुड़ी हुई हूँ और हम लोग यहाँ आते थे क्षेत्र में बहुत कुछ सीखे और इससे हम लोगों को बहुत लाभ है। यहाँ पे आने से सबसे पहले तो हम एक दूसरे के बारे में या अपने फ्रेंड या अपने अगल बगल की या किसी के बारे में कुछ प्रोग्राम बनाना सीखें और फिर उसे मोबाइल रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करना, फिर जिसके बाद हम लोग सीखे हैं कि आपस में 4 या 5 लड़के मिलकर एक समूह बनाकर और कोई एक अच्छा सा प्रोग्राम बनाकर उसे रिकॉर्डिंग करना। रिकॉर्डिंग करना तो सीखा ही और फिर उसे कंप्यूटर पे एडिट करना भी सीख लिया है और कैमरा से फोटो खींचना भी सीखा हम लोगों ने, तो हमें इससे बहुत लाभ है। अगर हम चाहेंगे तो कुछ आगे भी बढ़ सकते हैं और यहाँ पे हम लोगों को बहुत ऐसी ऐसी चीजें हैं जिसकी जरूरत हम लोगों को आगे पड़ेगी और कुछ ऐसी जरूरत भी है जिसकी हम लोगों के पास नहीं है। तो हमारे पास 3-4 कंप्यूटर है और जिसमें हमारे हम लोग 20 लड़कियाँ हैं, तो हम लोग को 1-2 कंप्यूटर और होने चाहिए जिससे कि हम लोग आसानी से कंप्यूटर पे एडिट करना, जो हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं उसको कंप्यूटर पे एडिट करना सीख ले। और यही सब मतलब चाहिए। बिजली उजली की व्यवस्था यहाँ पे बहुत लाइट बहुत कम रहती है।
13: मेरा नाम सरिता कुमारी है, मैं देव की रहने वाली हूँ, मैं यहाँ की दुर्ग हूँ और मैं 5वीं ट्रेनिंग यहाँ की हूँ। और देखिए दोस्तों, महिपाल सर ने यहाँ हम लोग का बहुत कुछ सिखाए हैं, इसलिए महिपाल सर को बहुत बहुत नमस्कार धन्यवाद। हर बहुत चीज नजर आया, जो हम लोग का बोलने में झिझकाहट लगता है वो हम लोग का गला साफ हो गया। जो आपने सिखाए जो माँ और पा ये सब कर वो हम लोग को बहुत अच्छा लगा। इस चलते कि जो जिसका गला जैसे बैठा हुआ वो गला जो साफ हो जाए तो हम लोग वो बहुत अच्छा लगा। जिसके माँ है कहीं रेडियो पर या कहीं भी या स्कूल में गाने के लिए अगर मिलता है माँ, तो कितना आदमी जो है से झुकझुकाहट हो जाता है कि हम नहीं गा पाएंगे या ऐसे वैसे बहुत तरह तरह की होता है। तो इसी चलते आप जो माई सबके बारे में सिखाएं तो बहुत अच्छा सिखाएं तो बहुत अच्छा लगा, ताकि जिसका गला नहीं हो वो भी गला हो जाए, कि ताकि जो नहीं गाने के लिए पा रही है वो भी गाना अपना स्टार्ट कर दे। हमको बहुत अच्छा लगा। और आप जो सिखाएं रेडियो के बारे में, जो फोटो खींचना और किसी दूसरे से अपने आप को बात करवाना, जो पहले बार आपने सिखाएं कि से जो अपने आप में कुछ लेटर लिखें और अपने आप से बात करके मुझे सुनावे, वो भी बहुत अच्छा लगा। हम लोग आपस में दोनों वो मेरे बारे में लिखी, उनके बारे में हम लिखी। सेंटर में तो सर भी बहुत कुछ हम लोग सोच रहे हैं कि टीचर ट्रेनिंग करें, लेकिन हम लोग का मिला है प्रिया स्कूल का, लेकिन हम लोग का सोच रहे हैं कि सर्टिफिकेट हम लोग का प्राइमरी में स्कूल का मिले और उसके बाद हम लोग टीचर ट्रेनिंग करने के बाद ये सर्टिफिकेट मिलने के बाद हम लोग कुछ और भी करना चाहती हैं। उसके बाद फिर कंप्यूटर में आने के लिए चाहते हैं, कोशिश करें कि कंप्यूटर में हम लोग का आप मेरे तरफ से बहुत बहुत आपको शुक्रिया है कि आप
14: कहे गीता दिए आर एस मिधि जो भी हैं उनके आप कह के आगे बढ़ावे कि जो टीचर ट्रेनिंग का लड़की हैं उनको कंप्यूटर का चांस दिया जाए एक बार। इस चलते कि हम लोग का बहुत शौक है कि हम लोग भी कंप्यूटर सीखे। आजकल का ऐसा जमाना है कि बिना कंप्यूटर का बिना कुछ नहीं होता है। कंप्यूटर सीखना लड़कियों या अति का बहुत जरूरी होता है। आजकल जो भी है वो कंप्यूटर का वजह से चल रहा है। आईए बीए लाख आदमी पढ़ रहा है लेकिन बिना कंप्यूटर बिना कुछ भी नहीं होगा। इसी चलते हम लोग सोच रहे हैं कि टीचर ट्रेनिंग करने के बाद एक बार हम लोग का कंप्यूटर का साथ जरूर मिले। महिपाल सर आपके लिए मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।
15: मेरा नाम है अंजू कुमारी, मैं कुम्हार विभाग में रहने वाली हूँ। मैं यहाँ रेडियो समुदाय के भाग ली हूँ। अपने यहाँ फोटो खींचने के लिए मैं सीखा हूँ। मैं चाहती हूँ कि यहाँ लाइट आए और हम लोग भी चाहती हूँ कि आप कुछ भी सीखे, सिलाई भी सीखे, ब्यूटिशियन सीखे, कंप्यूटर भी सीखे। 7 दिन यहाँ ट्रेनिंग हुआ, मैं 7 दिन भी आई हूँ यहाँ। मैं फोटो खींचने के लिए सीखे, लिखने के लिए सीखे और आवाज बढ़ाने के लिए सीखे और गल्ला साफ करने के लिए सीखे।
16: मेरा नाम आरती कुमारी है, मैं कुम्हार विभाग से आई हूँ। मैं यहाँ रेडियो सामुदायिक रेडियो की तरफ से आई हूँ और यहाँ पर रेडियो समुदायिक में ट्रेनिंग किया जा रहा है, जिसमें 7 दिन से ट्रेनिंग चल रहा है, जिसमें मैंने सीखी है एक दूसरे का बारे में लिख कर उसे रिकॉर्ड करना और सुनना और फोटो खींचना और डिजिटल स्टोरी बनाना और
17: आगे इनको सीख करके आप क्या करोगे?
16: मैं ये सीख कर मैं अपने अपने गांव वालों को और बगल के पड़ोसियों को मैं अपने ये सिखाऊंगी कि आप भी इसमें जुड़े और इसका लाभ।
18: मेरा नाम उत्तम कुमारी है, मैं कुम्हार भैया से आती हूँ। मैं कंप्यूटर क्लास की छात्रा हूँ और मैं रेडियो समुदाय में भाग लिए हैं, जिसमें 5-6 दिन से ट्रेनिंग हो रही है, जिसमें फोटो खींचना, प्रोग्राम बनाना और ऑडियो रिकॉर्डिंग करना इत्यादि सीखे। और इससे मैं सीखने के बाद कंप्यूटर में भी इससे मतलब साफ करने के लिए सीखूंगी और इस प्रोग्राम को और अच्छे तरह से बना सकूंगी। सबसे पहले तो कंप्यूटर बनाने के लिए मुझे यहाँ लाइन की व्यवस्था नहीं है। आज भी देख रहे हैं दिन भर भी लाइट नहीं आया, कुछ नहीं काम लोग कंप्यूटर में कर पाए। इसके लिए लाइन की व्यवस्था पहले करवा दी जाए।
17: और डिजिटल स्टोरी के बारे में बताओ।
18: क्या सर?
17: वीडियो फिल्म बनाने के बारे में कुछ बताओ। फिल्म फोटो खींच करके जो फिल्म बनाई
18: और फोटो खींच कर उसका फिल्म बनाऊंगी और वो मतलब कि वो आगे उसको दिखलाऊंगी कंप्यूटर में साफ करके।
19: मेरा नाम आरती कुमारी है, मैं बेलसारा में रहती हूँ। मैं यहाँ टीचर ट्रेनिंग की छात्रा हूँ। मैं आज 1 सप्ताह से रेडियो समुदाय के बारे में सीख रही हूँ, वह मुझे बहुत अच्छा लगा। इसमें मैंने बहुत कुछ सीखी, जैसे फोटो खींचना, प्रोग्राम बनाना, कंप्यूटर में प्रोग्राम को एडिट करना। इसी प्रकार मैंने बहुत कुछ सीखी। मैं चाहती हूँ कि मैं यह सीख कर आगे भी रेडियो चैनल पर आए।
17: ठीक है, और
19: मुझे भी मेरा प्रोग्राम भी लोग सुने, मेरी आवाज़ लोगों तक जाए। मैं प्रीति, घर बलसारा, थाना देव, जिला औरंगाबाद, बिहार। मैं यहाँ भवानीपुर सामुदायिक रेडियो सीख रही हूँ। इसमें बहुत कुछ सीखी, जैसे कि कैमरा चलाना, आवाज़ रिकॉर्ड करना, स्टेप लिखना, गला को रिवाइज करना। ये महिपाल सर सिखाए जो हम लोगों को बहुत अच्छा लगा, इसलिए महिपाल सर जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा करती हूँ कि महिपाल सर फिर से हम लोगों के बीच में आए और ट्रेनिंग देने की कृपा करें। और हम सब एक बात और बताना चाहते हैं कि टीचर ट्रेनिंग के साथ साथ कंप्यूटर का ज्ञान भी दिया जाए।
20: मेरा नाम पूजा है, मैं कुम्हार विभाग से आती हूँ। मैं यहाँ कंप्यूटर क्लास की छात्रा हूँ। मेरा एजुकेशन मैं ग्रेजुएशन कर चुकी हूँ और मैं 7 दिन की ट्रेनिंग में फोटो खींचना सीखी,
17: रेडियो कार्यक्रम बनाना सीखी
20: और
17: इसके लिए लिखना उसके लिए
20: स्क्रिप्ट लिखना सीखी, रिकॉर्डिंग करना सीखी और
1: एडिट करना सीखे।
17: इसको कहा, इसको करने के बाद आप क्या करोगे रेडियो प्रोग्राम को सीखने के बाद?
20: मैं चाहती हूँ कि हमारे भवानीपुर में एक रेडियो स्टेशन खुले और जिसमें मैं कार्यकर्ता के रूप में कार्य करूं और पूरे देव को अपना कार्यक्रम सुनाऊं। जब तक ये हमारे भवानीपुर में रेडियो चैनल नहीं खुलता है तब तक हम ये प्रोग्राम बनाते रहेंगे और अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करके हम समूह में सुनाएंगे जिससे वो जागरूक होंगे। फोटो खींचना सीखिए, स्क्रिप्ट लिखना सीखिए, रिकॉर्ड करना।
17: आपको व्यक्तिगत क्या लगा स्ट्रीमिंग में, पर्सनली मतलब होता ना, निजी तौर पे क्या लगा?
20: मुझे बहुत अच्छा लगा।
17: इस ट्रेनिंग के बारे में बताना, इस वर्कशॉप से निजी तौर पे आपको क्या लगा, अच्छा लगा?
20: मुझे अच्छा लगा कि हमारे देव में जो भी हाईलाइट में जो भी चीजें होंगे मैं उसे उसके बारे में लिखूंगी और उसका फोटो खींच के और मूवी सब बनाऊंगी।
17: वर्कशॉप के बारे में और चाहिए या नहीं चाहिए?
20: और चाहिए।
17: बोलो, इस टाइप की वर्कशॉप होनी चाहिए। आपको इंग्लिश की भी चाहिए, आपको कंप्यूटर के साथ में टीचर की ट्रेनिंग के साथ कंप्यूटर क्लास भी चाहिए, सब
20: इंग्लिश में चाहिए
17: जी। बोलो
20: इनको फिर आपको ये करना है जी। कंप्यूटर के साथ में इंग्लिश स्पोकन भी चाहिए और
17: ICT बेस और वर्कशॉप चाहिए आपको?
20: यस।
17: इस टाइप की और वर्कशॉप चाहिए आपको? और हाँ। और की मदद की आवश्यकता है कि आप परफेक्ट हो गए?
20: नहीं, अभी परफेक्ट नहीं हुए हैं, अभी हमें इसकी और आवश्यकता है, अभी तो शुरुआत है, हमें अभी और अभी हमें और जानकारी की जरूरत है,
17: प्रैक्टिस की जरूरत है।
20: प्रैक्टिस की जरूरत है।
17: चलो अंत में कोई संदेश हमारे लिए, ब्रीव इंडिया के लिए और किसके लिए कुछ कहना चाहोगे?
20: हाँ, हमारे भवानीपुर में इस महिला संसाधन केंद्र को उन्होंने खोला और हमें जागरूक किया, आगे बढ़ने की रास्ता दिखाए, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि हमें और आगे बढ़ने के लिए और सुविधाएं देती जाएं।

0: रीड इंडिया अपने सभी केंद्रों के द्वारा विभिन्न समुदायों की युवतियों व महिलाओं में सीखने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता रहा है। तो आइए सुनते हैं इन्हीं युवतियों व महिलाओं के अनुभवों पर आधारित कार्यक्रम, सुनिए उनकी कहानी, उनकी जुबानी।
1: माय नेम इज प्रियंका चंदेलिया। बाय प्रोफेशनली मैं मॉडलिंग करती हूँ, मैगजीन शूट्स करती हूँ ग्रह शोभा के, एंड रीड इंडिया से मैं कोर्स कर रही हूँ, हॉस्पिटैलिटी ट्रेनिंग ले रही हूँ, जहाँ मैं दीक्षा मैम से मिली हूँ। दीक्षा मैम बहुत अच्छी है, इनका नेचर बहुत अच्छा है, सिलेबस भी काफ़ी अच्छे से रीड करा रही हैं मैम, एंड प्रैक्टिकल्स भी काफ़ी अच्छे से समझा रही हैं मैम। मुझे बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके। एक्चुअली सर मेरी स्कूलिंग यहीं से हुई है, शाहबाद मोहम्मदपुर विलेज गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल से, एंड मेरे फादर गवर्नमेंट जॉब पे है, एमसीडी डिपार्टमेंट में क्लर्क है। मैं मदर भी एमसीडी डिपार्टमेंट में ही है, गवर्नमेंट सर्वेंट है। सर मुझे मॉडल बनना था बट मैं अभी उस लेवल तक जा नहीं पाई, बट मुझे लगा अब काफ़ी टाइम हो गया, मुझे 4-5 ईयर्स हो चुके हैं मॉडलिंग लाइन में, बट मुझे इतना उसमें कुछ नहीं लग रहा। मैंने सोचा क्यों ना मैं कुछ हॉस्पिटैलिटी ट्रेनिंग से कुछ सीख सकूं, अच्छा कर सकूं। बट यहाँ पे आने के बाद मेरी पर्सनैलिटी भी डेवलप हुई है, एंड दीक्षा मैम ने बताया है मुझे कैसे क्या होगा, और एक्चुअली मैं यहाँ पे आने के बाद जॉब के लिए भी अप्लाई कर चुकी हूँ, पासवर्ड रेस्टोरेंट द्वारका सेक्टर 23। कुछ टाइम बाद मेरी ज्वाइनिंग है वहाँ पे। एक्चुअली सर रीड इंडिया से मैंने एक ब्यूटी पार्लर का कोर्स भी किया था, कुछ टाइम आई थी मैं यहाँ पे 4-5 ईयर्स से पहले, तब से ही मैं रीड इंडिया को जानती हूँ, एंड रीड इंडिया बहुत बेस्ट है। रीड इंडिया से सीखने को काफ़ी कुछ है, अगर हमें उस लायक बनना है तो हम किसी को, मैं बाहर जाके किसी को बता भी सकती हूँ रीड इंडिया से मुझे क्या क्या मिल रहा है, एंड मुझे क्या क्या सिखाया जा रहा है। जॉब के लिए, अच्छी जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं हम लोग, एंड रीड इंडिया की जो कोर्सेज है वोकेशनल्स वगैरह के, वो बहुत बेस्ट है, ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए।
2: मैं पूनम तनवर, शाहबाद गांव में रहने वाली, दिल्ली में, मेरा जन्म दिल्ली में हुआ। मुझे अपने पेरेंट्स पे इतना प्राउड है, उन्होंने मेरे लिए आज तक जो किया, सीरियसली उन्होंने जो भी किया सिर्फ मेरे लिए किया, और मैं अब उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ, उनके लिए कुछ बन के दिखाना चाहती हूँ, जो लोग बोले कि ये उनकी बेटी है। मैं अपनी पहचान अपने पेरेंट्स के साथ बनाना चाहती हूँ, उनके लिए इतना कुछ करना चाहती हूँ कि लोग देख के बोले कि यहाँ इन्होंने इनके लिए कुछ किया, बहुत अच्छा किया। उन्होंने मेरा एडमिशन पूर्णिमा स्कूल, इशावाद गांव के पूर्णिमा स्कूल में कराया, वहाँ यहाँ पर मैं बचपन से पढ़ी 5th क्लास तक, फिर उन्हीं के साथ मैं हर काम, ऐसा एक काम नहीं था जो मैंने उनके बिना आज तक किया, हर चीज़, स्कूल भी, यहाँ तक कि स्कूल लेने जाना, मुझे छोड़ने जाना, मेरे स्कूल सुबह सुबह मॉर्निंग में मेरा मिल्क शेक भी वही बनाते थे, मतलब स्टडीज़ करना, अपने स्कूल से आके जो स्कूल में मैं पूरे दिन मस्ती करती थी, पढ़ाई करती थी, टीचर के साथ, फ्रेंड्स के साथ हर बात आके उनसे शेयर करती थी, कोई प्रॉब्लम होती थी सबसे पहले अपने पा के पास जाके अपनी शेयर करती थी। आज भी अगर वो थोड़ी देर के लिए भी कहीं चले जाते हैं तो मन उदास हो जाता है। मुझे अपनी मम्मी से भी बहुत लगाव है, बट लेकिन पा से थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि वो अपने, मतलब सारा दिन मैं अपने पापा के साथ ज़्यादा रहती हूँ। मम्मी मतलब स्कूल में, स्कूल के लिए अगर ट्यूशन छोड़ाना है या फिर और कुछ कर देना, बट लेकिन मैं पा के साथ जो मैं करती हूँ, सीरियसली वो बेस्ट मोमेंट मेरे पापा के साथ जो है, बहुत अच्छे मोमेंट है। मैं अपने लाइफ टाइम अपने पापा के साथ रहना चाहती हूँ, लाइफ टाइम, उनके लिए जितना करूँ मैं, जितना करूँ उतना ही कम है। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं कि गर्ल्स कुछ नहीं कर सकती है, गर्ल पावर जो होती है, वुमेन पावर, वो एक सबसे बेस्ट पावर होती है, वो गॉड ही उनको पावर देके भेजता है। अगर गर्ल्स बनाई है, वुमेन बनाई, तो उनके लिए भी एक स्पेशल पावर भी उनको दी है। ऐसा कुछ नहीं कि गर्ल्स कुछ नहीं कर सकती है, बाहर जाके पढ़ नहीं सकती है, कॉलेज नहीं जा सकती, या फिर ये वाला काम उनके लिए नहीं बनाए, हर काम गर्ल्स के लिए बनाए। अगर भगवान ने गर्ल्स को, वुमेन्स को बनाया है, तो उनके लिए भी हर काम बनाया, वो पावर उनके लिए उनको दी है। ऐसी कोई बात नहीं है कि गाँव की लड़कियाँ ये नहीं कर सकती है, शहर की लड़कियाँ ये कर सकती है, हर काम लड़कियाँ कर सकती है, हर चीज़ पॉसिबल है। हाँ, रीड इंडिया सेंटर पे आके मुझे अच्छा लगता है। यहाँ पे फ्रेंड्स बनाए मैंने, टीचर्स के साथ बहुत मस्ती की। यहाँ पे आके मेरा कोई एम नहीं था कि मैं ये सीखे जाऊँगी, बस मस्ती के लिए आ गई थी। बट लेकिन यहाँ पे आने के बाद कुछ सीखने को भी मिला, इतनी अच्छी टीचर्स मिली। उनके साथ जब मतलब वो डांटती भी है तो भी अच्छा लगता है। एक दिन बात ना करो तो टीचर भी परेशान हो जाती है, जिसको क्या हो गया। मतलब हर चीज़ यहाँ की है, हर चीज़ अच्छी है।
3: I am Priyanka Jaiswal. I belong UP, Allahabad and living Sahabad, Mohammadpur. मैं यहाँ पे दिल्ली में कोर्स करने के लिए आई, फैशन डिजाइनर कोर्स। एंड वहाँ पे यूपी में अप्लाई नहीं था जॉब, मतलब कोर्स करने के लिए। हमारे पापा यहाँ गवर्नमेंट जॉब करते हैं, मैं उसके उन्हीं के साथ रहती हूँ यहाँ पे। मैं यहाँ पे सिलाई इसलिए सीख रही हूँ क्योंकि मैं अपने गाँव वाली लड़कियों को जो घर से बाहर नहीं निकल सकती ना, मैं उनको घर के बाहर निकालने के लिए सिलाई सेंटर खोलना चाहती थी, और भी फ्री कोर्सेज के लिए। मैं इतना ही कहूँगी अपने हर लड़की माँ बाप को कि प्लीज उन्हें बाहर भेजें, कुछ करने के लिए उनको भेजें। अधिकतर यहाँ पे उसके हस्बैंड यही सोचते हैं कि ये बोझ है, तो ऐसे ना करें, उसे मतलब समझे कि ये बोझ है। कम से कम अगर वो कुछ करेगी बाहर जाके तो कम से कम उसके घर में हेल्प ही होगा, अच्छा ही होगा जो होगा। मेरी बचपन से यही हॉबी थी कि मैं पुलिस बनूँ, लेकिन मेरी लंबाई छोटी होने के कारण मैं पुलिस नहीं बन सकी। इसलिए मैं ऐसे ही अपने गांव में ही हेल्प करना चाहती हूँ छोटा मोटा। और मेरी स्कूल लाइफ तो बहुत अच्छी थी, बहुत ज़्यादा, जो अभी तक नहीं मिली ना, शायद न मिल पाएगी कभी। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी अपनी लाइफ अच्छे बनाने के लिए, कोर्स करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए यही अच्छा मौका है। अपने माँ बाप से कहें हमें घर से बाहर करने के लिए, कोर्सेज के लिए जारी रखें। दिल्ली में पहले हमारे पापा लोग रहते हैं, हम तो बचपन से गांव में थे। तो इंटर मतलब 12th क्लास पास होने के बाद हम दिल्ली आए। जब दिल्ली यहाँ पे आए तो यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज थे, अच्छे अच्छे भी थे, तो इसलिए मैंने फैशन डिजाइनर का कोर्सेज अप्लाई कर लिया।
0: रीड इंडिया प्रस्तुत करता है विज्ञान प्रसार द्वारा निर्मित विज्ञान और तकनीकी पर आधारित कार्यक्रम। आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम।

0: भगवान ने अगर बड़ी बड़ी आंखें दी हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे और बड़ा करके तुम सामने वाले को घूरते रहो।
1: क्या क्या कह रहे हो तुम?
0: मैं कह रहा हूँ कि अपनी इन बड़ी बड़ी आंखों को थोड़ा छोटा कीजिए और प्रोग्राम शुरू कीजिए।
1: राइट, फिर आज किस बारे में जानना चाहोगे तुम बबलू?
0: ये आंखें, उफ युम्मा।
2: खूबसूरती देखने वाले की आंखों में होती है, मगर आंखें खोलते ही देखने की प्रक्रिया जितनी सरल प्रतीत होती है उतनी है नहीं। इसके पीछे विज्ञान है। किसी भी व्यक्ति, वस्तु या जीव से लाइट रिफ्लेक्ट या अपवर्तित होकर कॉर्निया पर पड़ती है। कॉर्निया के बाद लाइट एंटीरियर चेंबर से होकर गुजरती है, जिसमें एक तरल पदार्थ होता है जिसे एक्वस ह्यूमर कहते हैं। ये तरल पदार्थ इंट्रा ऑक्युलर प्रेशर पैदा करता है, जिससे आई बॉल्स की शेप बनी रहती है। कॉर्निया के बाद लाइट आयरिस पर पड़ती है, जो लाइट की तीव्रता के हिसाब से कम या ज्यादा खुलता है। कैमरे का अपर्चर कुछ ऐसे ही काम करता है। अगर रोशनी ज्यादा होती है तो कैमरे का अपर्चर और हमारी आंख का आयरिस कुछ बंद हो जाता है, और कम रोशनी में अपर्चर और आयरिस ज्यादा खुल जाते हैं। आयरिस से होकर लाइट प्यूपिल और लेंस से होती हुई रेटिना पर पड़ती है, और इससे रेटिना पर जो इमेज बनती है वो उल्टी होती है। इन इमेजेस को आंखों से ब्रेन तक पहुंचाने का काम करती है ऑप्टिक नर्व्स। ब्रेन में कुछ कोशिकाएं होती हैं जिनकी मदद से रेटिना पर बनने वाले इमेज को ब्रेन पढ़ता है। ब्रेन इमेज को सीधा करके देखता है। इसके अलावा महत्वपूर्ण ये है कि आंखें सामने देखते वक्त अपने दोनों तरफ भी देख पाती हैं, और इसे आंखों का फील्ड ऑफ विजन कहते हैं। अक्सर जब आंखों के देखने की क्षमता कम हो जाती है तब फील्ड विजन कम हो जाता है। कई बार आंखों में डिफेक्ट आ जाते हैं, जिससे देखने की प्रक्रिया में मुश्किल होने लगती है। कभी लेंस में दिक्कत आने से रेटिना तक रोशनी पूरी नहीं पहुंचती और धुंधला दिखने लगता है। कई बार इमेज रेटिना पर ना बनकर उसके आगे और पीछे बनने लगती है, जिससे हमें चीजें साफ नहीं दिखती और चश्मा लगवाना पड़ता है। कई बार आंखों के इन्फेक्शन या आंख में चोट लगने से भी हमारी दृष्टि पर असर पड़ता है। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है। इस बीमारी में धीमी लाइट में और अंधेरे में दिखना बहुत कम हो जाता है। इसके इलाज के लिए जरूरी है कि मरीज को विटामिन ए से भरपूर भोजन दिया जाए। इन बीमारियों का इलाज तो हो सकता है, लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनमें लापरवाही करने से आंखों की रोशनी हमेशा के लिए जा सकती है। वजह कुछ भी हो, पर आंखों की बीमारी यदि गंभीरता से ना ली जाए तो नतीजा एक ही निकलता है, दृष्टिहीनता। गंभीरता से ना लेने की एक बहुत बड़ी वजह होती है इन बीमारियों का धीरे धीरे बढ़ना।
1: ये तो हम जानते हैं कि हमारे शरीर में एक चमत्कारिक शक्ति है सेल रिपेयर करने की, यानी किसी भी अंग द्वारा क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को रिपेयर या रिप्लेस करने की क्षमता। मगर आंखों की स्थिति जरा भिन्न है। इसके लेंस की कोशिकाओं को ना तो रिपेयर किया जा सकता है और ना ही रिप्लेस। इसलिए अगर लेंस को कोई भी नुकसान पहुंचता है तो ये धीरे धीरे जमा होकर बीमारी का रूप धारण कर लेता है। ये बीमारी है कैटरैक्ट, यानी मोतियाबिंद। इस बीमारी में आंखों से धुंधला दिखाई देता है। आइए देखते हैं ये बीमारी होती कैसे।
2: मोतियाबिंद की बीमारी में लेंस की पारदर्शिता कम होती जाती है और लेंस क्लाउडी यानी कि धुंधला होता जाता है। इसकी वजह से लेंस से होकर जाने वाली रोशनी रेटिना तक पूरी नहीं पहुंचती और धुंधला दिखने लगता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ लेंस के प्रोटीन में बदलाव आता है, जो लेंस को अपारदर्शी बना देता है। इसे अंडे के उबलने और ऑमलेट के बनने जैसी साधारण प्रक्रिया से समझा जा सकता है। अंडे की सफेद जर्दी प्रोटीन से बनी होती है और सेमी ट्रांसपेरेंट होती है, लेकिन जब अंडे को उबाला जाता है या पकाया जाता है तो अंडे के प्रोटीन में बदलाव आ जाता है जिससे वो अपारदर्शी हो जाता है। कैटरेक्ट में भी लेंस के प्रोटीन में आया बदलाव उसे अपारदर्शी बना देता है। कैटरेक्ट के बहुत अधिक बढ़ जाने पर आंखों की रोशनी हमेशा के लिए जा सकती है। मोतियाबिंद के सामान्य लक्षण हैं धुंधला दिखना, और ये धुंधलापन बीमारी के साथ बढ़ता जाता है। अगर इलाज न किया जाए तो पूरी तरह दिखना बंद भी हो सकता है। रात में रोशनी वाली जगह पर चमकीले स्पॉट्स दिखना, चश्मे के नंबर में बार बार बदलाव आना और डबल विजन यानी हर चीज दो दिखना। बढ़ती उम्र के साथ होने वाला मोतिया सिनाइल कैटरेक्ट कहलाता है। इसमें दो स्थितियां हो सकती हैं। पहली स्थिति में लेंस के प्रोटीन में बदलाव के कारण प्रोटीन के क्लंप यानी थक्के रेटिना तक पहुंचने वाली इमेज की शार्पनेस को कम कर देते हैं। प्रोटीन के क्लंप के कारण लेंस की पारदर्शिता खत्म हो जाती है जिससे रेटिना तक समुचित मात्रा में रोशनी नहीं पहुंच पाती। दूसरी स्थिति में पूरे लेंस की पारदर्शिता धीरे धीरे खत्म होने लगती है जिससे दृष्टि में धुंधलापन आने लगता है। जैसे जैसे लेंस की पारदर्शिता कम होती जाती है वैसे वैसे धुंधलापन बढ़ता जाता है। जब आंख की किसी दूसरी बीमारी की वजह से आंख के लेंस में होने वाले इन्फेक्शन से कैटरेक्ट होता है तो इसे सेकेंडरी कैटरेक्ट कहते हैं। अगर कैटरेक्ट की सर्जरी के बाद हुए इन्फेक्शन से दोबारा कैटरेक्ट हो जाता है तो इसे भी सेकेंडरी कैटरेक्ट कहते हैं। आंख में किसी चोट जैसे फायर क्रैकर के स्प्लिंटर्स या चिंगारियों से हुआ घाव और बिजली के झटकों से होने वाले कैटरेक्ट को ट्रॉमेटिक कैटरेक्ट कहते हैं। आंख में गहरी चोट जो कॉर्निया से होते हुए लेंस को भी नुकसान पहुंचा दे उससे ट्रॉमेटिक कैटरेक्ट हो सकता है।
0: ब्रेक के बाद एक बार फिर मैं और कुहू आपका स्वागत करते हैं। ये आंखें उफ यम्मा। अरे कोकिला, तुम मुझे दो क्यों दिख रही हो?
1: पता नहीं एपिसोड के अंत तक दिखूंगी भी कि नहीं। जाओ जाकर अपना इलाज करा लो, वरना आंखों की एक ऐसी बीमारी भी है जिसमें शुरुआत में इलाज ना कराने पर आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चली जाती है।
0: वो तो मैं करा लूंगा, मगर आपने तो सिर्फ बीमारी के बारे में बताकर छोड़ दिया मैडम कुहू MBBS। इलाज नहीं है क्या?
1: बबलू, मैं इलाज के बारे में ही बताने जा रही थी। जानते हैं फ्रेंड्स, पुराने जमाने में मोतियाबिंद का इलाज करने के लिए उसके पूरे पकने का इंतजार करते थे, मगर आज किसी भी स्टेज में उसका इलाज किया जा सकता है। असल में इसे तीन स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। शुरुआती दौर में इसे ट्रेस कैटरेक्ट कहते हैं, फिर माइल्ड या मॉडरेट, और जब मोतियाबिंद पूर्ण रूप से बढ़ जाता है तो उसे पक्का मोतिया कहते हैं।
0: अब इलाज की बात करें।
2: मोतियाबिंद का डिटेक्शन व्यापक जांच के बाद होता है। इनमें आते हैं विजुअल एक्यूटी टेस्ट, डायलेटेड आई एग्जाम और अल्ट्रासाउंड। विजुअल एक्यूटी टेस्ट में एक चार्ट का इस्तेमाल किया जाता है। टेस्ट के दौरान व्यक्ति 6 मीटर की दूरी से चार्ट के अक्षरों को पढ़ता है। इसकी रीडिंग फ्रैक्शन में लेते हैं। फ्रैक्शंस के आधार पर आंखों के पावर का निर्धारण ऑप्टोमेट्रिस्ट करता है। ये टेस्ट आंखों की दूसरी बीमारियों की जांच के लिए भी किया जाता है।
3: जांच के दौरान डायलेशन में आंखों में ऐसे आई ड्रॉप्स दिए जाते हैं जो प्यूपिल को बड़ा कर देते हैं। इससे प्यूपिल के पीछे का हिस्सा जांचना आसान हो जाता है। पिछला हिस्सा देखने के लिए ऑप्थेल्मोस्कोप नामक इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं। इससे किसी भी प्रकार की आंख की बीमारी पकड़ में आ जाती है।
4: ओपेक लेंस को सर्जिकली रिमूव करके ही कैटरेक्ट का पूरा इलाज किया जाता है। कैटरेक्ट के शुरुआती दिनों में डॉक्टर कई बार चश्मा लगाने की सलाह देते हैं। इसके पश्चात सर्जरी की जाती है, जिसके जरिए लेंस को हटाकर उसकी जगह कृत्रिम लेंस लगा दिया जाता है। ये सर्जरी दो तरह की होती है, एक्स्ट्रा कैप्सुलर सर्जरी और फैको इबल्सिफिकेशन सर्जरी।
3: एक्स्ट्रा कैप्सुलर सर्जरी में कॉर्निया में चीरा लगाकर खराब हो चुके लेंस को बाहर निकाल लिया जाता है। इसके बाद निकाले गए लेंस की जगह कृत्रिम लेंस लगा दिया जाता है। जहां लेंस नहीं लगाया जाता, वहां मरीज को सर्जरी के बाद चश्मा लगाया जाता है। दूसरी सर्जरी है फैको इमल्सिफिकेशन सर्जरी, जो एक मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी है। इसमें कॉर्निया में एक बहुत छोटा सा सुराख किया जाता है, फिर इस सुराख के जरिए अल्ट्रासाउंड वेव्स प्रवाहित की जाती हैं। इन अल्ट्रासाउंड वेव्स के कारण मोतिया यानी कि अपारदर्शी लेंस मुलायम होकर टूट जाता है और उस जगह पर कृत्रिम लेंस लगा दिया जाता है। अल्ट्रासाउंड टेस्ट की मदद से लेंस लगाने से पहले लेंस का पावर और साइज तय किया जाता है। कैटरेक्ट सर्जरी आजकल लगभग आधे घंटे का मामूली ऑपरेशन है, जिसमें मरीज को लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है।

0: यानी काला मोतियाबिंद। ये आंखों की एक ऐसी बीमारी है जिसमें आंखों के अंदर का प्रेशर बढ़ जाने से ऑप्टिक नर्व्स के क्षतिग्रस्त होने का खतरा बढ़ जाता है। ऑप्टिक नर्व ही इमेज को आंखों से ब्रेन तक पहुंचाती है। दरअसल कॉर्निया और लेंस के बीच एक्वस ह्यूमर नामक एक तरल पदार्थ मौजूद होता है, जो कि आई बॉल का आकार मेंटेन रखने के लिए एक दबाव आंखों में पैदा करता है, जिसे इंट्रा ऑक्युलर प्रेशर कहते हैं। प्राकृतिक रूप से एक्वस ह्यूमर आंख के एक हिस्से में लगातार बनते रहते हैं और दूसरे हिस्से से लगातार निकलते भी रहते हैं। इससे आई प्रेशर संतुलित रहता है, लेकिन कभी कभी एक्वस ह्यूमर का निर्माण जरूरत से ज्यादा होने लगता है या इनका निकलना बाधित होने लगता है। ऐसी स्थिति में आई प्रेशर बढ़ जाता है। एक्वस ह्यूमर के बहाव में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर ग्लूकोमा दो तरह का होता है। पहला ओपन एंगल ग्लूकोमा, ट्राबेक्युलर मेशवर्क जिससे होकर एक्वस ह्यूमर बाहर निकलता है उसमें धीरे धीरे आने वाली रुकावट से ओपन एंगल ग्लूकोमा होता है तथा दोनों आंखों को प्रभावित करता है। दरअसल ट्राबेक्युलर मेशवर्क टिश्यूज कॉर्निया के पास होते हैं और इंट्रा ऑक्युलर प्रेशर मेंटेन करने के लिए एक्वस ह्यूमर को बाहर निकालते हैं। अगर इनमें कोई रुकावट आ जाती है तो एक्वस ह्यूमर का लेवल बढ़ने लगता है और इससे इंट्रा ऑक्युलर प्रेशर भी बढ़ जाता है, जो आंख को बुरी तरह नुकसान पहुंचा सकता है और आंखों की रोशनी भी जा सकती है। दूसरी तरह का ग्लूकोमा है क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा, जिसमें आयरिस एक्वस ह्यूमर के फ्लो में रुकावट पैदा करता है। नतीजतन एक्वस ह्यूमर के बाहर निकलने का रास्ता बंद हो जाता है और इससे इंट्रा ऑक्युलर प्रेशर भी बढ़ जाता है, जो आंख को बुरी तरह नुकसान पहुंचा सकता है और आंखों की रोशनी भी जा सकती है।
1: क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा में आंख का प्रेशर बढ़ने के कारण आंख की नस को नुकसान पहुंच जाता है, जिसके कारण आपकी आंख की रोशनी जा सकती है। इसमें एक तो आंख में दर्द होता है, रेडनेस हो जाता है, सिर में दर्द होता है, जब आप लाइट को देखोगे कलर्ड हेलोस दिखेंगे, कभी कभी उल्टी भी हो जाती है। अगर आपको ये सब सिम्टम्स हैं, तो आपको जल्द से जल्द आई स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए।
0: ये एक इमरजेंसी की अवस्था है और अगर मरीज के इलाज में 24 से 48 घंटे की देरी हो जाए तो आंखों की रोशनी हमेशा के लिए भी जा सकती है। कोई भी इसका शिकार हो सकता है, बेशक वो अपने आंखों के डॉक्टर से नियमित रूप से जांच करवा रहा हो और आंख इससे पहले बिल्कुल ठीक हो। और अब बात सेकेंडरी ग्लूकोमा की। इन्फ्लेमेशन, आंखों का ट्यूमर और वेनस प्रेशर के बढ़ने से होने वाले ग्लूकोमा को सेकेंडरी ग्लूकोमा कहते हैं। आमतौर पर क्रॉनिक ग्लूकोमा में कोई निश्चित लक्षण नहीं दिखाई पड़ते और ये किसी को भी अपनी चपेट में ले सकता है, लेकिन कुछ लोगों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, जैसे जिनकी उम्र 50 वर्ष से ऊपर हो, जिनके परिवार में ग्लूकोमा की फैमिली हिस्ट्री हो, डायबिटीज, माइग्रेन या हाइपरटेंशन के मरीज हों, लंबे समय से स्टेरॉइड्स का सेवन कर रहे लोग या जिनकी आंखों में चोट लगी हो। ग्लूकोमा के डायग्नोसिस के लिए जो टेस्ट किए जाते हैं उनमें प्रमुख है टोनोमेट्री। इसमें मोतियाबिंद के टेस्ट की ही तरह एक विशेष इंस्ट्रूमेंट द्वारा आंखों के प्रेशर को नापा जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण टेस्ट है ऑप्थैल्मोस्कोप टेस्ट, जिसके जरिए आंखों के पीछे ऑप्टिक नर्व की जांच की जाती है। तीसरा टेस्ट है विजुअल फील्ड असेसमेंट। इस टेस्ट में एक स्क्रीन पर रोशनी की छोटी छोटी स्पॉट्स डाली जाती है और मरीज को रोशनी वाले स्थान को पहचानने के लिए कहा जाता है। इससे पता चलता है कि मरीज के विजन पर कितना असर पड़ा है। ग्लूकोमा का इलाज उसके वर्ग पर निर्भर करता है। ओपन एंगल ग्लूकोमा का आई ड्रॉप्स या खाने वाली दवाओं से इलाज किया जाता है। यदि दवाओं से इलाज न हो सके तब सर्जरी से इसे कंट्रोल करते हैं। सर्जरी में एक्वस ह्यूमर के आउटफ्लो के लिए एक नया रूट बनाया जाता है, इसको ट्राबेक्युलोक्टोमी कहते हैं। क्लोज एंगल ग्लूकोमा का इलाज कारगर रूप से सर्जरी के द्वारा होता है। सर्जरी में आयरिस की बाहरी सीमा पर एक छोटा छेद करते हैं, इससे एक्वस ह्यूमर बाहर निकल जाता है। इसके लिए ज्यादातर लेसिक सर्जरी

0: या फिर मामूली ऑपरेशन किया जाता है और एक्वस ह्यूमर के निकलने के लिए दूसरा रास्ता बना दिया जाता है।
1: यो फ्रेंड्स, ब्रेक के बाद हम लाए हैं कुछ खट्टी मीठी बातें। चलिए बताइए कि हम एक मिनट में कितनी बार पलकें झपकाते हैं। कोकिला, तुम शुरू करो।
2: यही कोई 15 बार।
1: क्या आप जानते हैं कि आंसू क्यों बहते हैं?
2: बबलू, तुम वही बताओगे जो सबको पता है, कुछ नया नहीं बता सकते।
0: विजन लॉस का एक और कारण है कॉर्नियल अल्सर या कॉर्नियल डैमेज। दरअसल कॉर्निया शीशे जैसा एक पारदर्शी टिश्यू है। इसका व्यास लगभग 11 से 12 मिलीमीटर होता है। ये आंख के काले हिस्से का आवरण है। किसी भी प्रकार की चोट, इन्फेक्शन या अधिक ताप से कॉर्निया डैमेज हो जाने पर कॉर्नियल ट्रांसप्लांट ही एकमात्र उपाय है। अगर कॉर्निया के उस हिस्से में डैमेज हुआ है जहां से विजन पर असर नहीं पड़ता तो कॉर्नियल ट्रांसप्लांट नहीं किया जाता। चूंकि कॉर्निया का पोषण रक्त से नहीं होता है बल्कि आंख के गोले के भीतर द्रव से होता है, इसलिए मृत्यु के पश्चात भी इसे ट्रांसप्लांट के लिए निकाला जा सकता है। आई डोनर की मृत्यु के 3 से 4 घंटों के भीतर कॉर्निया को निकाल लिया जाता है। सर्जन केवल कॉर्निया बदलता है, न कि आंख का पूरा गोला।
3: नेत्रदान महादान है। अगर आप नेत्रदान के इच्छुक हैं तो अपने पास के आई बैंक से संपर्क करें।
0: आंखों का एक और गंभीर इन्फेक्शन है जिसे पैन ऑप्थल्माइटिस कहते हैं। इसमें लेंस, कॉर्निया, आयरिस और रेटिना पर असर पड़ सकता है। अगर समय पर इसका इलाज न हो तो आंखों की रोशनी हमेशा के लिए जा सकती है और कई मामलों में पूरी आंख को ही निकालना पड़ सकता है। ट्रैकोमा आंखों का एक और इन्फेक्शन है जो एक इन्फेक्टेड व्यक्ति से दूसरे में एक दूसरे के सामान के इस्तेमाल से फैल सकता है। एक बच्चे से दूसरे बच्चे में और माँ से बच्चे में ट्रैकोमा का इन्फेक्शन ज्यादा फैलता है। ये इन्फेक्शन अक्सर वहाँ होता है जहाँ गंदगी फैली होती है और साफ सफाई के लिए पानी की कमी होती है। ड्रायर क्लाइमेट्स यानी अति शुष्क जलवायु वाले इलाकों में ये इन्फेक्शन ज्यादा होता है। अगर इस बीमारी का इलाज नहीं किया जाए तो आंखों की रोशनी हमेशा के लिए जा सकती है।
1: So, कैसा रहा? खूब सारी बातें बता दी, नहीं?
2: अब बातें ही करते रहोगे या कुछ कंक्लूजन भी होगा?
1: ओहो, मेरे डायलॉग की चोरी। खैर, बच्चों को भी कभी कभी छूट दे देनी चाहिए।
2: बबलू,
1: बाय फ्रेंड्स,
2: तुमसे मैंने
1: नेक्स्ट वीक मिलेंगे, बाय।
2: सॉरी फ्रेंड्स, मुझे ना इसके बड़बोलेपन पर रोक लगानी पड़ेगी, इसलिए आपसे इजाजत चाहूंगी। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।
1: बबलू,
0: आइए अब एक नजर इस एपिसोड की कुछ खास बातों पर। आंख में लाइट कई जगह पर फोकस होती है। किसी भी व्यक्ति, वस्तु या जीव से लाइट रिफ्लेक्ट होकर कॉर्निया पर पड़ती है। रेटिना के ऊपर उल्टी इमेज बनती है। मस्तिष्क में हमें सीधा दिखाई देता है। मोतियाबिंद में धुंधला दिखने लगता है। ऐसा आंखों के लेंस में मौजूद प्रोटीन के आकार में परिवर्तन के कारण होता है। मोतियाबिंद का इलाज एक छोटे से ऑपरेशन से किया जाता है। ग्लूकोमा में आंखों की ऑप्टिक नर्व्स क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। ग्लूकोमा काफी खतरनाक हो सकता है, इसलिए इसका तुरंत इलाज कराना जरूरी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि स्टीरॉयड आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर की सलाह पर ही करना चाहिए।

आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो। रीड इंडिया समुदाय के सहयोग के द्वारा समुदाय के विकास के लिए कार्य करता है। रीड इंडिया ग्रामीण समुदायों में स्थायी सामाजिक परिवर्तन हेतु शिक्षा, उद्यम और सामाजिक विकास के क्षेत्र में कार्य करता है। आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो।

0: रीड इंडिया अपने सभी केंद्रों के द्वारा विभिन्न समुदायों की युवतियों व महिलाओं में सीखने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता रहा है। तो आइए सुनते हैं इन्हीं युवतियों व महिलाओं के अनुभवों पर आधारित कार्यक्रम, सुनिए उनकी कहानी, उनकी जुबानी।
1: मेरा नाम प्रियंका है, मैं शाबान मोहम्मदपुर में रहती हूँ। मेरा जन्म यहीं हुआ है। हम परिवार में 5 सदस्य हैं, मैं, मेरी मम्मी, मेरे पापा और 3 बहन भाई। मेरा भाई 9th क्लास में है, बहन मेरी जॉब करती है, पापा टूरिज्म में है और मम्मी ने यहाँ से रीड इंडिया सेंटर से नर्सिंग का कोर्स किया था। आज वो जॉब कर रही हैं हॉस्पिटल में। मैंने 5 साल पहले रीड इंडिया सेंटर से कंप्यूटर कोर्स किया था, उसके बाद मैंने एनटीटी किया और आज मैं एज अ लाइब्रेरियन रीड इंडिया सेंटर में जॉब कर रही हूँ। मेरा जो एम था वो सेल्फ इंडिपेंडेंट होना था। अब मैं रीड इंडिया सेंटर की मदद से यहाँ से कोर्स करने के बाद मैं सेल्फ इंडिपेंडेंट हो गई हूँ। मुझे रीड इंडिया सेंटर के साथ काम करना बहुत अच्छा लगता है। यहाँ काम करने के साथ साथ मैं अपने घर पे भी बहुत सारे काम करती हूँ। जैसे मैं अपनी जिम्मेवारी घर पे निभाती हूँ, वैसे ही मैं अपनी जिम्मेवारी यहाँ रीड इंडिया सेंटर के साथ निभाती हूँ। अपनी ड्यूटी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे तरीके से, पूर्ण तरीके से करती हूँ। मेरे परिवार में सभी वर्किंग है, तो भाई की, छोटे भाई की जिम्मेवारी सारी मेरे ऊपर है, तो मैं अपनी जिम्मेवारी अच्छे से निभाती हूँ। मैं उसको स्कूल छोड़ के आती हूँ, स्कूल से लेके आती हूँ। उसके अलावा मैं उसकी स्टडी में हेल्प करती हूँ, उसको अच्छी अच्छी बातें सिखाती हूँ और उसके अलावा उसकी सारी जिम्मेवारियां मैं निभाती हूँ और मुझे अच्छा लगता है। उसके अलावा मैं अपने पेरेंट्स का भी बहुत ध्यान रखती हूँ, उनकी केयर करती हूँ, उनके काम भी करती हूँ।
2: हेलो, मेरा नाम निशा सैनी है। मैं जब छोटी थी, 10 साल की थी और 6th क्लास में थी, तो मैं शुरू से ही यहीं पे आना शुरू किया है। एनजीओ के लोग बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, शुरू से पसंद रहा है मेरे लिए, अच्छा लगता है मुझे। हाँ, मैं ना पिछले 7 साल से आती रही हूँ, मुझे अच्छा लगता है। मैं अपने करियर में बहुत कुछ करना चाहती हूँ, मतलब एनजीओ में बहुत सारे कोर्सेज हैं, मैं कर लूँगी, अगर कर सकी तो कर लूँगी, अगर जो मुझे इंटरेस्ट रहा जिस चीज़ में, मैं वो करूँगी और एनजीओ में आऊँगी। शुरू से आती रहूँगी। यहाँ के लोग भी अच्छे हैं, लाइब्रेरी में बुक्स वगैरह है, बहुत अच्छी अच्छी बुक्स हैं, मैंने पढ़ा भी है, लेके भी गई हूँ घर, बहुत अच्छी बुक्स हैं और टीचर्स भी अच्छे हैं, यहाँ के मैम सब अच्छे हैं। अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहती हूँ। अब जो बॉयज़ होते हैं ना, पेरेंट्स ना सिर्फ बॉयज़ की मानते हैं, आजकल के ना बॉयज़ की बहुत डिमांड वगैरह है और गर्ल्स से जो कुछ कर दे, जैसे बॉयज़ के तरह जॉब करना चाहती हैं या कुछ आगे बढ़ना चाहती हैं, तो उनके पेरेंट्स पता नहीं क्यों पीछे रोकते हैं, क्यों मना करना चाहते हैं। आखिर लड़की भी तो है, करके दिखा सकती है वो लड़की, जो लड़के काम कर सकते हैं ना वो करके दिखा सकते हैं। लड़की को सब लोग कमज़ोर पता नहीं क्यों समझते हैं आज के देश में, नहीं समझना चाहिए। और वो लड़की ताकतवर होती है, वो अच्छी भी होती हैं और वो समझ सकती हैं, वो पेरेंट्स को खुद अच्छे से कमा के खिला सकती है, जितने बॉयज़ कमा के नहीं खिला सकते। और बॉयज़ है ना बहुत मतलबी होते हैं, बड़े होते होते ना अपने पेरेंट्स को उल्टा सीधा बोलते हैं और घर से बाहर निकाल देते हैं। मुझे बॉयज़ बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए बॉयज़ ना पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करना नहीं जानते और ना ही गर्ल्स को रिस्पेक्ट करना जानते। जो अच्छे से बात करते हैं पता नहीं कैसी नज़रों से देखते हैं, बिल्कुल पसंद नहीं है मेरे को। वो बॉयज़ है ना बहुत गंदे होते हैं, बॉयज़ की तरफ तो बहुत ही कमी, जितना होता है उतना ही तक बात रखें, फ्रेंड है तो फ्रेंड ही तक रहे, उससे आगे बढ़ने की कोशिश बिल्कुल ना करें। बॉयज़ से ना एकदम जैसे आगे आगे अपना करियर करते हैं वैसे वैसे ना लोग नए नए मिलते हैं और पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करना तो बिल्कुल ही भूल जाते हैं कि उन्होंने पाल पोस के इतना बड़ा किया, खिलाया पिलाया। शादी हो जाती है तो उसके बाद अपनी वाइफ की ही सुनते हैं, पता नहीं क्यों सुनते हैं। मेरा मानना है कि जो हमें पढ़ाया लिखाया हमारे पेरेंट्स ही है, जो कुछ है उनकी रिस्पेक्ट करें और उनकी अच्छे से देखभाल करें, जैसे हमें बचपन से पेरेंट्स ने रखा हम उनकी तरह बड़े होके अच्छे से रखें। मैं एक महिला और लड़की के ऊपर एक कविता है मैं सुनाने जा रही हूँ। मैं चाहती थी कि जींस पहनूँ, मैं चाहती थी कि मैं जो सूट पहनूँ, मैं चाहती थी कि मैं सब सारी ज़िंदगी जीऊँ, पर पेरेंट्स ने मेरे को ये सब करने नहीं दिया। जो बॉयस होते हैं उन सबको आज़ादी दी। शादी होने के बाद ससुराल में गई, शादी होने के बाद मैं ससुराल में गई, सास ने बोला ये करो वो करो, लेकिन कुछ भी करने ना दिया। जो कुछ था सब उसके नाम का था, सिंदूर उसके नाम का, चूड़ी उसके नाम की, पायल उसके नाम का, साड़ी उसके नाम की, बिछिया उसके नाम का, नाम प्लेट भी उसके नाम का, नेम भी उसके नाम का, आखिर मेरा क्या है मेरे नाम का। थैंक यू।

0: खुलदी के साथ बदलते भारत की शान।
1: नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि विशेष में। आपके साथ मैं हूं अंचल सिंह। जब भी बात होती है किसी सफर की या फिर फैमिली पिकनिक की, तो ऐसे में मूंगफली की चर्चा ना हो ये बात अधूरी रह जाती है। सोंधी सोंधी मूंगफली का जब एक एक दाना मुंह में पड़ता है तो सफर का आनंद कई गुना बढ़ जाता है। वही पिकनिक के रोमांच की बात करें तो इसमें भी वृद्धि हो जाती है। सर्दियों में तो मूंगफली को काफी पसंद किया जाता है। किसी को सफर में कच्ची मूंगफली पसंद होती है, किसी को भुनी हुई, किसी को रोस्टेड, किसी को गुड़ वाली पट्टी पसंद होती है। यानी मूंगफली एक, जायके अनेक। आज के कृषि विशेष में इसी के बारे में हम बात करेंगे कि आखिर मूंगफली को लेकर क्यों है इतना क्रेज, कैसे इसकी खेती की जा सकती है, हमारे देश में लगातार कैसे इसकी खेती बढ़ रही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कृषि विशेष की।

0: मूंगफली भारत की प्रमुख तिलहनी फसलों में से एक है। इसकी खेती देश के तकरीबन सभी राज्यों में होती है, लेकिन जहां उपयुक्त जलवायु होती है वहां मूंगफली की फसल बेहतर और दाने पुष्ट होते हैं। देश में आज बहुत से किसान अपनी परंपरागत खेती को छोड़ नकदी फसलों की खेती करने में लगे हैं, और होना भी चाहिए क्योंकि पारंपरिक खेती में आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया जो होने लगा था। कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि किसानों को अगर अपनी आमदनी बढ़ानी है तो मूंगफली की खेती एक मुनाफे की खेती जरूर साबित हो सकती है, क्योंकि ये रबी और खरीफ के बीच कम समय की फसल होती है, लेकिन अब इसकी खेती साल भर की जा सकती है। मूंगफली की खेती के लिए मिट्टी दोमट या बलुई हो तो सोने पर सुहागा माना जाता है। अगर ऐसा नहीं है तो खेत की 4 से 5 बार की जोत करा लेनी चाहिए।
1: तो किसान की मूंगफली खेती जो है वो बलुई दोमट भूमि में अच्छी खेती होती है। इसके साथ साथ किसान हमारा अच्छा बीज TG37A और प्रजाति GG2 ICV11 तो ये प्रजातियों का चयन करता है और अच्छा उत्पादन ले रहा है। ये सारी प्रजातियां समर की हैं, समर ग्राउंडनट की हैं। मूंगफली हमारे इस क्षेत्र में धीरे धीरे अपना जो है क्षेत्र पर बढ़ा रही है। हमारे किसान भी खुश हैं कि मूंगफली की पैदावार 3.5 से 4 क्विंटल प्रति बीघे के करीब हमारे किसान भाई कर रहा है। तो निश्चित है कि 25 से 30 हजार रुपये प्रति बीघे मूंगफली हमारा किसान बेच रहा है। इसके बाद उसमें लागत बीज की अलाका आती है, बहुत ज्यादा नहीं आती है।
2: कृषि विज्ञान केंद्र पर हमारे मृदा वैज्ञानिक हैं, कृषि विज्ञान केंद्र मैनपुरी पर मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर आर एन सिंह की नियुक्ति है और वो सॉयल टेस्टिंग लैब को संभालते हैं और जिले के काफी लोगों जागरूक करते हैं, जिससे वो सॉयल का टेस्ट करा के उसी आधार पर फर्टिलाइजर मैनेजमेंट करते हैं और उर्वरकों का सही संतुलन प्रयोग करते हैं। उनका बड़ा रोल है।
0: सूर्य की अधिक रोशनी और उच्च तापमान मूंगफली के पौधे की बढ़त के लिए अनुकूल माने जाते हैं। अच्छी फसल के लिए कम से कम 30 डिग्री सेल्सियस तापमान आवश्यक माना गया है। यहाँ महत्वपूर्ण ये है कि खरीफ सीजन की फसल जून महीने के दूसरे पखवाड़े से लेकर जुलाई के दूसरे पखवाड़े तक मूंगफली की बुआई की जा सकती है। आइए जानते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान कैसे करते हैं मूंगफली की खेती।
3: मूंगफली जो है खेती हमारे पूर्वज लोग करते थे, लेकिन उतनी अच्छी पैदावार नहीं होती थी जो आज इस वक्त पैदावार हो रही है। ये सब कृषि विज्ञान की देन है। हमारा कृषि विज्ञान केंद्र जाजपुर बंजारा में है। डॉक्टर लोग यहाँ आते हैं, बतलाते हैं कि ये फसल बो ये वो, उसी के आधार पर मैंने यहाँ मूंगफली लगाई और हर साल की अपेक्षा इस साल जो है प्रोडक्शन अच्छा दिखाई दे रहा है।
4: मूंगफली एक ऐसी फसल है जिसमें कम लागत लगती है लेकिन किसानों को अच्छी उपज मिलती है, यानी मुनाफा भरपूर होता है। सरकार भी इसकी खेती को काफी प्रोत्साहित कर रही है और प्रशिक्षण केंद्र भी खोले जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं इसके बारे में हमारी इस रिपोर्ट में।
0: कम समय और कम लागत में भरपूर पैदावार होने के कारण यहाँ के किसान काफी खुशहाल हैं। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार भी बड़े ही शिद्दत से काम कर रही है। देश के हर जिले में किसान सहायता केंद्र खोले गए हैं और वहाँ कृषि विशेषज्ञों की तैनाती भी की गई है, जो समय समय पर किसानों को महत्वपूर्ण सलाह देते रहते हैं। आइए जानते हैं यहाँ के किसान सरकार की व्यवस्था से कैसे लाभान्वित हो रहे हैं।
5: हम ग्राम हरियरपुर में, हमारे यहाँ मूंगफली का क्षेत्रफल लगभग 35,000 के हेक्टेयर के लगभग यहाँ पर मूंगफली का क्षेत्र होता है बहुत बड़े स्तर से। इसमें हम लोग जो मूंगफली करते हैं, इसमें हमारे जो है पानी 5-4-5 पानी में मूंगफली पककर तैयार होती है, जिसमें जो है लागत हमारी जो है बहुत कम है और इसका रेट बहुत अच्छा मिलता है। सुखाने के बाद हम लोग जो है मार्केट में ले जाते हैं, इसका जो उचित रेट मिलता है, जिससे हम लोगों को बहुत अच्छी फायदा होती है मूंगफली के।
6: खरीफ सीजन की भी उन्नतशील प्रजातियों को रिलीज करके गांव-गांव पहुंचाने की, जिले-जिले पहुंचाने की हम लोग प्रयास करते हैं। हमारा कृषि विज्ञान केंद्र मैनपुरी में स्थापित है, यहां के भी वैज्ञानिक प्रचार प्रसार करने में हमारी इन प्रजातियों का काफी सहयोग प्रदान करते हैं।
7: जो हमारी सरकार की योजनाएं हैं वो जन जन तक सहभागिता के साथ पहुंचे, इसके लिए सबसे पहले तो ये प्रयास किया गया कि जैसे पहले किसान जागरूक नहीं था, चूंकि ये धान की बेल्ट है तो पोस्टली किसान यहाँ धान गेहूं दो ही चीजें किया करता था। धीमे धीमे हम लोगों ने किसानों को जागरूक करना शुरू किया। प्रत्येक न्याय पंचायत स्तर पर जाकर के जो हमारे कर्मचारी थे उन्होंने जाकर वहाँ कार्यशालाएं की, किसानों को प्रशिक्षित किया।
4: इसी के साथ ही यहाँ वक्त है छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जानेंगे कि मूंगफली का क्या है इतिहास, कहाँ से हुई इसकी शुरुआत और कैसे आज के समय में पूरे विश्व में इसका व्यापार हो रहा है। साथ ही आपको जानकारी देंगे मूंगफली के पोषक तत्वों के बारे में। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहे कृषि विशेष।

0: कहां होगी बारिश, किस जगह पड़ेगी बर्फ, कहां रहेगा कोहरा, कैसा रहेगा तापमान, पर्यटन स्थलों पर क्या रहेगी मौसम की स्थिति, जानने के लिए देखिए मौसम खबर रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर।
1: ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि विशेष। आज कृषि विशेष में हम बात कर रहे हैं मूंगफली की। मूंगफली एक तिलहन है, लेकिन इसके तेल का जायके के लिए इस्तेमाल आम आदमी की पॉकेट पर काफी भारी पड़ता है। विश्व भर में मूंगफली के उत्पाद काफी लोकप्रिय हैं और इसका व्यापार भी होता है। आइए अब आपको बताते हैं कि मूंगफली की शुरुआत कहां से हुई, क्या है इसका इतिहास, और साथ ही ये भी जानेंगे कि क्यों इसे कहा जाता है आम आदमी का मेवा, यानी क्यों है ये पोषक तत्वों से भरपूर। तो आइए नजर डालते हैं इस रिपोर्ट पर।
2: मूंगफली का अंग्रेजी नाम पीनट है और इसका वैज्ञानिक नाम है आर्चीज हाइपोगिया। ये मिट्टी में नाइट्रोजन की वृद्धि करने वाली लेग्यूमिनोसी कुल की फसल मानी जाती है। मूंगफली की उत्पत्ति ईसा से करीब 1500 वर्ष पूर्व दक्षिण अमेरिका में बताई जाती है। फूड इतिहासकारों की माने तो मूंगफली को विश्व में सबसे पहले ब्राजील में उगाया गया। आज विश्व के 113 देशों में मूंगफली की खेती होती है। जिन देशों में मूंगफली की प्रमुखता से खेती होती है उनमें चीन और भारत के अलावा प्रमुख हैं नाइजीरिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, सूडान, म्यांमार, चाड और अर्जेंटीना। चीन के बाद भारत मूंगफली की खेती में दूसरा स्थान रखता है और सर्वोत्तम क्वालिटी की पैदावार देता है। आंकड़े भी इस बात के गवाह हैं कि विश्व में मूंगफली की कुल पैदावार का 50% हिस्सा भारत और चीन पैदा करता है। दुनिया में मूंगफली की कुल उपज 4,40,41,913 टन के करीब है। इसमें अकेले भारत 68,57,000 टन मूंगफली की भागीदारी करता है। भारत में गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक राज्यों में सबसे अधिक इसकी फसल उगाई जाती है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान तथा पंजाब की फसलें भी उम्दा होती हैं।
3: देखिए, इस समय अगर मूंगफली के बाजार को खास फोकस किया जाए तो खास तौर से यूपी की मंडी और गुजरात की मंडी पे यहाँ पर ज्यादा जो है वो अट्रैक्शन देखने को मिलता है और ज्यादातर इन मंडियों को देख करके ही बाहर की जगह और सभी मंडियों के रेट डिसाइड होते हैं। फिलहाल अभी अगर इस समय देखते हैं तो यूपी की मंडियों में काफी डोमेस्टिक लेवल पे जो छोटी छोटी मंडियां हैं उनमें भी काफी दामों में तेजी का दौर देखने को मिल रहा है और आगे आने वाले समय में चूंकि निर्यात की डिमांड यहां पर ज्यादा निकल कर देखने को मिल रही है तो उसका फायदा भी आगे आने वाले समय में किसान भाई बहनों को मिलता हुआ नजर आएगा।
4: और मूंगफली की खेती जो हमारे किसान भाई कर रहे हैं तो उनका मैंने अनुभव शेयर किया। मैंने कहा भाई मूंगफली की खेती, तो किसानों का भी ये जवाब आया और हमने भी यही बताया कि मूंगफली की खेती के दो फायदे हैं। एक तो इसकी पैदावार जो है बहुत अच्छी है और इसके मार्केट में इस समय रेट भी बहुत अच्छे मिल रहे हैं। मक्का की तुलना में ये करीब जो है 2-3 गुने रेट से जाती है, करीब 6,000 से 7,000 रुपए प्रति क्विंटल हिसाब से मूंगफली हमारे मार्केट में इस समय चल रही है।
2: अगर हम इसकी पौष्टिकता की बात करें तो मूंगफली में भी बड़े बड़े गुण हैं। पीनट का तेल अगर आप खाने में इस्तेमाल करते हैं तो स्वास्थ्य में लाभकारी होता है और ऊर्जा में वृद्धि करता है, शरीर में पोषक तत्वों की कमी नहीं होने देता। वहीं विटामिन B6, B9, बी कॉम्प्लेक्स, पेंटोथेनिक एसिड के अलावा एंटीऑक्सीडेंट का बहुत अच्छा सोर्स भी है जो कई तरह की बीमारियों में लाभदायक होता है।
4: मूंगफली एक ऐसी फसल है जिसमें प्रोटीन और इसमें ऑयल कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, अच्छी मात्रा में होता है, तो बहुत सारे इसमें फील्ड में इसका प्रयोग करते हैं और किसान हमारा जो है अच्छा मार्केट इसको आसपास मिल जाता है, इसको किसी प्रकार से इसमें बेचने की कोई समस्या नहीं हमारे किसानों को आती है।
3: मूंगफली और साथ में अगर आप ऑयल प्रोड्यूस करके उसको आप अगर निर्यात करते हैं तो दोनों में अच्छा खासा मार्जिन मिलता है और मार्जिन की बात की जाए तो लगभग 20% से ज्यादा का मार्जिन किसानों को यहाँ पर मिल सकता है। तो इस समय किसान भाई बहनों के पास दो ऑप्शंस मिलते हैं। पहला कि जो अपनी पैदावार को सीधे मंडी में बेच करके या फिर बाहर के निर्यात को यहाँ पर देखते हुए सरकार चूंकि निर्यात पे कई पॉलिसीज को बड़े ईज किया है जिसका फायदा जो है वो इस समय किसान भाई बहनों को मिल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसान भाई बहन यहाँ से प्रोसेस करके जो है वो ऑयल को अगर प्रोड्यूस करके और उसको निर्यात करते हैं तो उसमें ज्यादा फायदा मिलता है। फिलहाल मूंगफली का तेल के दाम जो हैं वो काफी तेजी से बढ़े हैं। भारत में भी इसकी डिमांड बढ़ी है, जिसकी वजह से मूंगफली जो है वो इस समय एक अट्रैक्शन दे रहा है। आगे आने वाले समय में एक्सपोर्ट बढ़ने के और चांसेस हैं, तो ऐसे हालात में भारत के निर्यात को यहां पर सीधा सीधा फायदा किसान भाई बहनों को मिल पाएगा।
1: कृषि विशेष में अभी आपने जाना मूंगफली के पोषक तत्वों के बारे में। फिलहाल यहाँ वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी मूंगफली से जुड़ी हुई कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप तक पहुँचाएंगे। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें कृषि विशेष।

0: ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि विशेष। आज के कृषि विशेष में हम आपको बता रहे हैं मूंगफली के बारे में। चलिए बढ़ते आगे और अब आपको बताते हैं इसकी खेती से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में। जी हाँ, अगर हमारे किसान मूंगफली की अच्छी उपज प्राप्त करना चाहते हैं तो ऐसे में कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। यानी कौन से किस्मों का चुनाव करें, खेत की तैयारी कैसे हो, कीट और बीमारियों से फसल को कैसे सुरक्षित रखें। तो आइए देखते हैं मूंगफली की खेती पर हमारी अगली रिपोर्ट।
1: मूंगफली की उत्तम खेती के लिए जिन बातों का विशेष ध्यान रखना जरूरी होता है, इनमें प्रमुख हैं भूमि एवं उसकी तैयारी, बीज की बुआई, खाद्य एवं उर्वरक, नीम की खली का सही इस्तेमाल, समुचित सिंचाई, निराई गुड़ाई एवं खरपतवार का नियंत्रण, फसल का सही चक्र, पौधों में लगने वाले रोगों का नियंत्रण, कीट नियंत्रण, सफेद लट की देखभाल, बीज का सही उत्पादन, कटाई एवं गहाई, और अंतिम है उपज से लिया जाने वाला आर्थिक लाभ।
2: सुड़ी की बीमारी लगती है और इसमें मूंगफली में भी छेदक, जैसे कोई बीमारी लग जात तो उसमें छेद कर दे तो उस वो अंदर मिट्टी जो है भर जाती है, वो बेकार हो जाती मूंगफली। तो उसके लिए जो है कृषि विज्ञान केंद्र के डॉक्टर लोग आते हैं, बताते हैं कि ये दवाई डालो, इससे शोधन करके ये लगाओ तो उसमें जो है बीमारी नहीं लगेगी।
3: दो सिंचाइयों की बहुत आवश्यकता होती है, एक तो पेक बनने के समय और फलियां बनने समय। उस समय जो है फ्लावरिंग स्टेज पे भी बहुत सिंचाई की आवश्यकता होती है। इसके साथ साथ किसान भाई हमारे जो है खरपतवार नाशक समस्या आती उसके लिए मैजा थाइफर का प्रयोग भी किसान हमारा करता है, 10SL की जो वीडिसाइड है उसका भी प्रयोग करता है। तो इससे जो है खरपतवार की समस्या पे काफी रुकावट आई है और किसान हमारा खुश है।
0: अभी आपने जाना कि कैसे करें मूंगफली की खेती। चलिए बढ़ते आगे और अब आपको जानकारी देते हैं कि मूंगफली की और कौन कौन सी उन्नत किस्में हैं। साथ ही ये भी आपको बताते हैं कि हमारे देश में किन किन क्षेत्रों में इसकी खेती होती है और विश्व पटल पर कैसे हमारा देश इसे निर्यात कर रहा है, कौन कौन से वो देश है जहाँ पर मूंगफली निर्यात की जाती है, जानते हैं इस रिपोर्ट में।
1: मूंगफली की अच्छी और उन्नत किस्मों में RG 425 की 120 और 130, MA 10 की 125 130, M 548 की 120 126, TG 37 A की 120 130 और G 201 की 110 120 किस्में शामिल हैं। देश में मूंगफली की खेती करने वाले किसानों के लिए ये गर्व की बात है कि साल 2020-21 के दौरान भारत ने 6.38 लाख टन मूंगफली का निर्यात किया और 5381 करोड़ रुपयों की अर्जन की। जिन देशों में भारत मूंगफली का निर्यात करता है इनमें इंडोनेशिया, वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया, थाईलैंड, चीन, रूस, यूक्रेन, संयुक्त अरब अमीरात और नेपाल जैसे देश शामिल हैं। अगर आप कृषि विशेषज्ञों की राय लेकर मूंगफली की खेती करते हैं तो किसान भाइयों को तकरीबन 40,000 रुपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आमदनी हो सकती है और किसानों की आय दोगुने से भी अधिक हो सकती है।
4: अगर देखा जाए तो भारत और चाइना सिर्फ दो ही ऐसी कंट्रीज हैं जो कि सबसे ज्यादा मूंगफली का उत्पाद करती हैं और जिसमें कि यहाँ पर भारत का निर्यात पिछले कंपैरिजन में अगर करें तो काफी तेजी से बढ़ा है। इस साल भारत जो है वो 6 लाख टन से कहीं ज्यादा का निर्यात कर चुका है और आने वाले समय में भारत की पैठ काफी अधिक बढ़ती जा रही है। खास तौर से यूपी या फिर गुजरात की मंडियों की बात करें तो वहां पर भी काफी तेजी से पैदावार के जो आंकड़े थे वो भी बढ़े हैं और इस समय अगर देखा जाए तो ओपेक कंट्रीज जो हैं उनसे काफी डिमांड इंडिया से निकलकर देखने को मिल रही है। इसीलिए यहां पर इंडोनेशिया, वियतनाम, ये कंट्रीज सबसे ज्यादा मूंगफली का इम्पोर्ट भारत से कर रहे हैं।
0: तो ये था हमारा आज का कृषि।

पता नोट कर ले। हमारा पता है कृषि विशेष, कमरा नंबर 59A, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आपके ईमेल्स और आपके पत्रों का हमें इंतजार रहेगा। यहाँ लेंगे आपसे इजाजत, कृषि विशेष के नए अंक में एक नए विषय के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। पता नोट कर ले। हमारा पता है कृषि विशेष, कमरा नंबर 59A, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आपके ईमेल्स और आपके पत्रों का हमें इंतजार रहेगा। यहाँ लेंगे आपसे इजाजत, कृषि विशेष के नए अंक में एक नए विषय के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।

गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, कैसे हैं सभी लोग? मेरा नाम स्मिता है. लास्ट टाइम हमने ये डिसाइड किया था कि जो हमारे लाइफ स्किल के सेशंस होंगे वो लीडरशिप सेशंस के पैरेलल चलेंगे. जो जो टॉपिक्स मैम कवर करेंगे, हम उसको एक एक टॉपिक को और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि एज अ लीडर तो ठीक है कि हमें वो चीजें समझनी, एज एन इंडिविजुअल भी हम उससे कैसे शुरुआत कर सकते हैं. मैम की प्री कमिटमेंट की वजह से इस बारी जो हमारा सेशन है वो अभी अगले वीक पोस्टपोन हो गया है. सो आई थॉट कि एक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है टीम वर्क का, हमने पहले भी ये वाला सेशन लिया था, बट कुछ नए यूजर्स हमारे साथ जुड़े हैं, नए बेनिफिशरीज जुड़े हैं. सो मे बी वी कैन स्टार्ट विथ टीम वर्क, कि टीम वर्क की क्या इम्पोर्टेंस होती है, कि हमें एक साथ जुड़ के काम करना क्यों जरूरी है. सो आई होप जिनको ये रेपिटेटिव लग रहा होगा, इसका मतलब है आपने टीम वर्क में काम करना शुरू कर दिया है. और कुछ अगर अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहते हैं तो टुवर्ड्स द एंड, छोटा सेशन है ये, वी विल हैव अराउंड 30 मिनट्स ऑफ माई स्पीकिंग एंड देन वी कैन शेयर योर व्यूज. तो टीम वर्क से क्या समझ में आता है, किसी को कुछ पता है ये टर्म टीम वर्क क्या होती है? टीम वर्क इंग्लिश की टर्म है. इसका मतलब है कि एक साथ जुड़ के, एक होता है कि अकेला चलता है, एक इंसान अकेला काम करता है, और दूसरा होता है कि हम आते दुनिया में अकेले हैं लेकिन रहना तो हमें सबके साथ है. और घर में हो गया, प्रोफेशनली हो गया, पर्सनली हो गया, हम कोई भी काम अलग से नहीं करते, अकेले नहीं करते, कुछ लोगों के साथ जुड़ के, कुछ लोगों की मदद से करते हैं, कुछ लोगों के साथ जुड़ के करते हैं, उसको हम टीम वर्क कह सकते हैं. रीडनिया में जो काम करते हैं लोग, उनके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टीम वर्क है, क्योंकि हम समुदाय के साथ काम करते हैं, समुदाय के लिए काम करते हैं और समुदाय में रह के काम करते हैं. हमारे जितने भी सेंटर्स हैं वो कम्युनिटी के अंदर हैं, कम्युनिटी के लिए हैं, और कम्युनिटी ही उनसे हमारे हम उनसे सेंटर्स के थ्रू इसीलिए जुड़े हैं क्योंकि वो, अगर हमारे सेंटर्स पे कोई आता नहीं है तो हमारे सेंटर की कोई वैल्यू नहीं है. वो मशीनें, वो किताबें, वो जितनी हमने आपको रिसोर्सेज दिए हैं, चाहे वो मशीनें हैं, चाहे ब्यूटी का सामान है, इसीलिए हमारे सेंटर्स आज, जो जो 15-15 साल पुराने सेंटर्स भी हैं, आज भी वो लोग क्यों काम कर पा रहे हैं, क्योंकि नया नया समुदाय जुड़ रहा है और जो पुराना समुदाय है, जो पुराने बेनिफिशरीज हैं, जो पुराने बच्चे हैं जो सीख के गए हैं, वो आज भी आते हैं. शायद कुछ बच्चे किताबें पढ़ना शुरू किया था उन्होंने और आज वो कोई ना कोई लघु उद्योग की ट्रेनिंग लेके आगे बढ़ रहे हैं. ऐसे भी बच्चे होंगे जो हमारे साथ पिछले 5-10 सालों से जुड़े हैं. तो उनको हम क्यों जोड़ के रख पा रहे हैं, क्योंकि हमारा काम जो है वो समुदाय का है. और हम अपनी सर्विसेज अगर सोशली रिस्पॉन्सिबल नहीं देंगे तो कोई हमारे सेंटर पे नहीं आएगा. कभी कभी

0: हम ऐसा भी सुनते हैं कि अब एनजीओ तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो बेनिफिशरीज हैं वो हमारे सेंटर पे आके सीखना चाहते हैं। कोई बता सकता है ऐसा क्यों होता है? ऐसी क्या क्वालिटीज हैं हमारे सेंटर में, स्पेशली लड़कियां क्यों आके सीखना चाहती हैं? आप सभी लोग करीबन 10 साल, 8 साल, 5 साल, 2 साल से सेंटर चला रहे हैं। कोई मुझे बता सकता है कि जब हम टीम वर्क की बात करते हैं या टीम की बात करते हैं, टीम वर्क तो छोड़ दीजिए, टीम वर्क से हमें सिर्फ यही समझ में आता है कि वो 4 लोग जिनके साथ हम रीड में जुड़े हैं, यानी कि आप हो गए, लाइब्रेरियन हो गया, ट्रेनर हो गया, लेकिन हम अपने बेनिफिशरीज को नहीं भूल सकते। वो लोग जो हमारे साथ आके हमारे लिए जुड़ के काम कर रहे हैं, उनको हम नहीं भूल सकते। मैं एक रिसेंट एग्जाम्पल दूंगी, जो हम रामपुर में विजिट किया था उसका मैं अभी अभी आपको एग्जाम्पल दूंगी, बट बिफोर दैट आई वॉन्ट टू हियर फ्रॉम यू कि आपको क्यों लगता है कि समुदाय हमारे साथ जुड़ के क्यों रहता है, बार बार क्यों आता है, साल दर साल, 10 साल, 15 साल तक क्यों आता है हमारे पास, हमारे सेंटर्स में? फ्री दे रहे हैं क्या, इसलिए आता है या कोई और रीजन है?
1: मैम, हमारा कमिटमेंट, जो हमारी कम्युनिटी के साथ कमिटमेंट है, जिस
0: क्या
1: तरह से हम
0: कमिटमेंट?
1: कम्युनिटी को लेकर चलते हैं अपने साथ, मैम, जो कनेक्शन हमने उनके साथ बिल्डअप किया है, जो कॉन्फिडेंस कम्युनिटी को हमारे ऊपर है, हमारे साथ सीखने में है, वो चीज उन्हें अलग जगह नहीं मिल रही, इसलिए वो हमारे साथ कनेक्टेड है। 5 साल से हम
0: ओके
1: उन्हें रिटेन कर पा रहे हैं, जस्ट बिकॉज वी आर डूइंग इट फॉर द गुड कॉज। और उन्हें भी पता है कि वी आर डूइंग इट, मतलब नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि वी आर डूइंग इट विदाउट एनी प्रॉफिट। तो दिस इज आर डेडिकेशन टुवर्ड्स अ वर्क विच इज कनेक्टिंग द कम्युनिटीज।
0: तो आवर डेडिकेशन को हम एक पॉइंट रखते हैं कि हम जो एज ए टीम काम कर रहे हैं, हमारी पूरी टीम डेडिकेटेड है, यानी कि वो 4-5 लोग जो सना के सेंटर में हैं, और सना के पास 2 सैटेलाइट सेंटर्स भी थे, जो इनकी टीम है वो एक क्वालिटी सर्विस दे पा रही है अपनी कम्युनिटी को, इसीलिए उनकी जो कम्युनिटी है वो लगातार साल दर साल इनसे जुड़ी हुई है। सिंस वी प्रोवाइड क्वालिटी ट्रेनिंग एंड ट्रस्ट फैक्टर, दीक्षा ने मैसेज में लिखा है, थैंक यू दीक्षा। और कोई बताना चाहेगा? इसमें कुछ भी सही या गलत नहीं है, हम ये समझने की कोशिश करें कि हमारी एज ए टीम, एज ए रीड इंडिया, आज यहाँ पे 80 लोग जुड़े हैं, क्या 80 लोग एक टीम है या हम अलग अलग सेंटर से जुड़े हैं? अगर हम एक हैं तो हमारी एक कॉमन क्वालिटी क्या है एज ए टीम? अगर हम अलग अलग हैं तो हमारे अलग अलग क्या क्वालिटीज हैं, उसको जानने की कोशिश करते हैं। एनीबडी एल्स, कोई कोशिश करना चाहेगा, कुछ बोलना चाहेगा? गुड
2: गुड आफ्टरनून
0: आफ्टरनून स्वाति जी।
2: मैम। एक तो सेफ इन्वायरमेंट है फॉर गर्ल्स गर्ल्स स्टूडेंट्स एंड बॉय स्टूडेंट्स आल्सो, एंड सेकंड ये है कि हमारा जो इमोशनल अटैचमेंट होता है उनके साथ वो भी काफी अच्छा होता है, क्योंकि वो हमारे एरिया के होते हैं, उसके साथ साथ ही जो 3 महीने वो हमारे पास सीखते हैं, तो उन 3 महीनों में हम भी उनको ज्यादा अच्छे से मतलब पहचान सकते हैं और वो भी हमें अच्छे से जानते हैं, तो एक अटैचमेंट बन जाती है। छोटे बच्चे जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं, तो हमारे पास 3 टू 6 ईयर एज ग्रुप से लेकर मतलब अडल्ट तक के सारे लेवल का कुछ ना कुछ सबको सीखने का चांस है, सीखने के लिए साधन है हमारे पास, तो इसलिए वो हमारे पास मतलब सालों तक अटैच रहते हैं।
0: राइट राइट, थैंक यू स्वाति। और कोई कुछ बताना चाहेगा? बिल्कुल ठीक बोला है स्वाति ने कि जो क्वालिटी सर्विस है, जो डेडिकेशन है, और जो हम उनको जानने की कोशिश करते हैं, एक एक रिलेशनशिप बना के रखते हैं उनसे, उनकी तकलीफें जो हैं या उनके जो चैलेंजेस हैं उसको समझने की
1: लाइट
0: कोशिश करते हैं।
1: ऑफ हो जाएगी, मतलब देखिए लाइट्स आ गई है ना, ये यूपीएससी का
0: तो
1: कितना जरूरत है।
0: वी आर गोइंग अ स्टेप अहेड, ये हमारी जॉब डिस्क्रिप्शन में कहीं नहीं लिखा हुआ है, लेकिन जैसे कि सना हो गई, स्वाति हो गई, एवरी ईच वन ऑफ अस, जितने भी लोग हमारे यहाँ कोऑर्डिनेटर्स हैं सालों से जो जुड़े हुए हैं, हम लोग एक स्टेप फर्दर जा रहे हैं, फर्दर जा रहे हैं एज इन हम लोगों के घर में जा जा के उनको निकाल के लेके आते हैं कि नहीं आप आइए हमारे सेंटर पे सीखिए। सो दिस इज अ क्वालिटी ऑफ अ वेरी गुड टीम, जहाँ पे हम बियॉन्ड आवर कमिटमेंट जो है वो जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वी बिलीव इन आवर मिशन। हम बिलीव करते हैं कि कोई हमारे सेंटर पे आएगा तो वो हमारे सेंटर से कुछ सीख के ही जाएगा, कुछ लेके ही जाएगा, और ऐसी चीज लेके जाएगा जो हमेशा साल दर साल उसके साथ रहेगी, क्योंकि अगर हमने किसी को कोई स्किल दे दिया तो वो स्किल हम वापस तो नहीं ले सकते ना। आपने किसी को 100 रुपए दे दिए तो वो 100 रुपए तो खत्म हो जाएंगे, वो शायद खाना खरीद लेगा उसका, या कपड़ा खरीद लेगा, या अपनी कोई भी जरूरत की चीज खरीद लेगा। लेकिन जिसको हमने कला दे दी एक बार, चाहे वो स्टिचिंग की स्किल है, ब्यूटी की स्किल है, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर की स्किल है, या फिर सॉफ्ट स्किल है यानी कि बातचीत करने का तरीका, या अपना आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो सॉफ्ट स्किल हो गई, टेक्नोलॉजी स्किल हो गई, तो वो स्किल तो कोई वापस नहीं ले सकता। बट वी आर गोइंग अ स्टेप अहेड, हम लोग एज ए टीम काम करके एक और दरिया जो है वो पार करते हैं, जो कि है सोशली, सोशली जो दबाया जाता है कि नहीं आपको नहीं जाना है, सेंटर पे नहीं जाना है, बाहर नहीं निकलना है, उसको भी हम कोशिश करते हैं कि उस बांध को भी हम तोड़ें। दिस इज वन ऑफ द कोर क्वालिटी ऑफ आवर टीम, जो रीट की जो टीम है ये कोर क्वालिटी बन गई है। एनीबडी एल्स, कोई और कुछ, किसी ने कमेंट में लिखा है कुछ, लेट मी जस्ट रीड दैट। पॉजिटिव एनवायरमेंट, ज्योत्सना जी लिख रहे हैं पॉजिटिव एनवायरमेंट, वेरी गुड। कैन यू डिफाइन पॉजिटिव एनवायरमेंट?
2: गुड आफ्टरनून मैम,
0: गुड आफ्टरनून,
2: गुड आफ्टरनून
0: गुड आफ्टरनून।
2: मैम। हाँ जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि लोग यहाँ पे आते हैं क्योंकि एक उनको ट्रस्ट होता है न्यू इंडिया के नाम से, इसलिए लोग हमारे पास आते हैं। और लड़कियों को भेजते हैं हमारे यहाँ पे कि उनको पता है कि यहाँ पे बच्चियां जा रही है या लेडीज, हमारे घर से कोई भी लेडीज जा रही है तो यहाँ पे सेफ है इस चीज के लिए। और जो भी सिखाया जाएगा, जो भी चीज होगी यहाँ पे अच्छे से ही सिखाया जाएगा, उनकी ग्रोथ ही होगी, कभी वो डाउन नहीं होगी किसी चीज के लिए। तो कुछ
0: बिल्कुल
2: बेनिफिशियरीज मेरे साथ यहाँ पे बैठे हैं, उनसे आपसे बात भी करना चाहते हैं। डायरेक्ट आप उन्हीं से बात करिए, वो लोग क्यों आते हैं यहाँ पे, क्या उनको आने से फायदा है, वो क्यों सीखते हैं यहाँ पे आने के बाद, बताओ
0: राइट
2: बेटा, आप बता
0: राइट,
2: सकते हो? कोई भी
0: गुड आफ्टरनून।
2: पढ़ाई के साथ साथ काम भी करते हैं, हमें यहाँ पर आना बहुत अच्छा लगता है और इसके साथ हम आगे भी बढ़े और इससे हेल्प मिले उसके लिए हम आते हैं। जानिए
0: ऑल राइट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो
2: आप
0: मच,
2: बोलना, बहुत कुछ बोलो। गुड आफ्टरनून मैम,
0: गुड आफ्टरनून।
2: हाँ मुझे ना सिलाई करना बहुत पसंद है इसलिए मैं आती हूँ।
0: तो रीट के सेंटर पे क्यों आते? सिलाई सेंटर तो बहुत सारे खुले हुए हैं,
2: हाँ
0: बहुत सारे
2: सीख
0: खुले।
2: भी रहे हैं उसके साथ, नए नए डिजाइन में मतलब सीख रहे हैं, जो बन रहा है वो सीख रहे हैं, मैम अच्छे से बताती हूँ इसके साथ।
0: अच्छा
2: बताओ प्रोडक्शन में आप काम करके पैसे भी कमा रहे हैं उस टाइम? हाँ काम
0: अच्छा
2: करके पैसे भी मिलते हैं।
0: अच्छा पैसे भी मिलते हैं, इसलिए आप आपको यहाँ आना अच्छा लगता है कि सीख भी रहे हैं और प्रोडक्शन का काम भी आ रहा है।
2: हाँ
0: वेरी
2: जी,
0: गुड वेरी गुड, थैंक यू। ज्योत्सना जी, यू वर ट्राइंग टू से समथिंग पॉजिटिव एनवायरनमेंट के बारे में, शायद आप कुछ कहना चाह रहे थे। हेलो
2: हाँ जी मैम, हेलो मैम,
0: हेलो,
2: हेलो मैम,
0: आप
2: बोलिए
0: बोलिए।
2: बोलो बोलिए। डर भी नहीं कहा जाए, जो
0: सुमन
2: स्टूडेंट्स जब यहाँ आते हैं वो
0: जी, सुमन जी आप म्यूट। हाँ
2: हम जब आते हैं यहाँ पे वो थोड़ा सा प्रॉपर क्लियर नहीं होता उनके माइंड में, बहुत कुछ चीजें होती हैं, और थोड़ा सा ऐसे एनवायरनमेंट से आता है जो वो बहुत पॉजिटिव साइड पे सोचते नहीं है। तो यहाँ पे आके जब उन लोगों को हर चीज पॉजिटिवली सोचने के लिए, आगे बढ़ने के लिए और इम्प्लीमेंट करने के लिए कहा जाता है तो उनके माइंड्स काफी क्लियर हो जाते हैं और पॉजिटिव होता है। और सबसे अच्छी चीज है कि हम जो एनवायरमेंट है सिर्फ स्टडी वाला रखते हैं, और चीजों पे बातें करना, डिस्कस करना या कुछ ऐसी चीजें करना, उसमें हम लोग बच्चों को इंटरेस्ट लेने ही नहीं देते, जिससे क्या होता है वो लोग पॉजिटिव सीखते भी हैं और साथ साथ बात भी पॉजिटिव करते हैं। और एक
0: राइट
2: ही जगह उन्हें 3 दिन 4 चीजें सीखने के लिए यहाँ पे मौका भी मिलता है। जैसे मैम कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो मेकअप सीख रहे हैं या वो कंप्यूटर सीख रहे हैं, लेकिन उनका बाद में इंटरेस्ट डेवलप होता है कि हम थोड़ा सा और भी कुछ सीख लें और आगे सीखें, तो ऐसे भी वो सीख सकते हैं।
0: वेरी नाइस वेरी नाइस, थैंक यू जोशना जी। सो मैंने कहा था मैं एक एग्जांपल दूंगी कि किस तरीके से हमारी टीम एक कदम आगे ही चल के काम करती है। अभी हम रिसेंटली रामपुर में गए थे और करीबन मेरे को लगता है 50, बहुत गर्मी थी, बहुत ज्यादा गर्मी थी उस दिन, और 50 से भी ज्यादा लड़कियां उस सेंटर में बैठी हुई थी। नया सेंटर जो रिलोकेट किया है हमने, हमारा रामपुर में जो सेंटर है, बहुत गर्मी थी एकदम, लेकिन एक एक बच्चा जो था, एक एक स्टूडेंट्स जो था, वो कुछ ना कुछ बोलना चाह रहा था, कुछ ना कुछ एक उमंग थी उनके अंदर कि हाँ हम रीड सेंटर पे आए हैं तो रीड सेंटर से कुछ सीख के जाएंगे, कुछ लेके जाएंगे, इतना एनर्जी था। पहले शुरुआत में वो बहुत घबरा रहे थे बोलने में, बहुत ज्यादा, पहली बारी मिले थे, मैम थी हमारे साथ, तो बहुत ज्यादा उनको हिचकिचाहट हो रही थी बोलने के लिए, लेकिन 5-10 मिनट के बाद वो लोग कंफर्टेबल हुए, और फिर जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी कोई भी लड़कियां, इतना उनके पास था शेयर करने के लिए। तो ये एनर्जी कहाँ से आई? ये एनर्जी आई जब हमारी टीम ने उनको ये कॉन्फिडेंस दिखाया कि नहीं, आप आइए सेंटर पे, आइए सीखिए, यहाँ पे सीखने के साथ साथ आपको सॉफ्ट स्किल, यानी कि आपस में जब आता है लोग, इंसान मिलते हैं तो उनको लगता है कि हम और भी कुछ सीख सकते हैं। देखो सिलाई तो कोई भी सिखा देगा, कोई भी सेंटर पे जाएंगे आप सीख जाएंगे, ब्यूटी भी आप कहीं ना कहीं सीख जाएंगे, आप हेल्थ वर्कर की ट्रेनिंग भी सीख जाएंगे, लेकिन एक माहौल जो हम क्रिएट करके रखते हैं अपने सेंटर में, जिसमें जो आप ही ने मुझे बताया कि हम पॉजिटिव एनवायरमेंट क्रिएट करके रखते हैं, हम एक अच्छे तरीके से सिखाते हैं, जो सना ने बोला कि जो भी हम सिखाते हैं हम बहुत अच्छी क्वालिटी ट्रेनिंग देते हैं, हम सेफ एनवायरमेंट रखते हैं कि ताकि अगर लड़कियां आ रही हैं या उनके पेरेंट्स को कोई ऐसा हिचकिचाहट ना हो। ज्योत्सना जी ने बोला कि हम फोकस करते हैं जिस काम के लिए आए हैं, पहले हम वो काम करें, उस पे फोकस रहें, इधर उधर गॉसिप नहीं करें, नेगेटिव एनवायरनमेंट नहीं फैलाएं। तो ये सारी चीजें जो कंपोनेंट्स है ना, ये मिलके ही किसी टीम को सक्सेस करा पाती है। तो यही कुछ चीजें आज मैं एक छोटी सी मैंने पीपीटी बनाई है, आई जस्ट ट्राई एंड शेयर विद यू। ऑल राइट, सो टीम वर्क यानी कि एक ग्रुप में एक साथ होके हमें जो एक कॉमन गोल, अब हमारे केस में कॉमन गोल क्या है कि हमारे सेंटर को इसी तरीके से ग्रोथ मिलती रहे, हमारा सेंटर कभी भी ऐसा ना हो कि हमारा सेंटर तो खुला है लेकिन कोई वहां सीखने ही नहीं आना चाहता। तो एक कॉमन गोल जो है, हम आज जितने 89 पीपल जुड़े हुए हैं, हम सबका एक कॉमन गोल है कि आपका छोटे दर पे गोल ये है कि आपका सेंटर जो है वो साल दर साल चलता रहे, उसमें बढ़ोतरी होती रहे और थोड़ा थोड़ा करके हम उसको सेल्फ सस्टेन कर सकें। ऐसे ही अगर हम सारे सेंटर्स को ले लेंगे और इन सबका जो एक कॉमन गोल होगा वो यही होगा कि हमारे सेंटर्स चलते रहे, इनमें कोई रुकावट नहीं आए, और जो हम मिशन है जो हमारा, जो कि कम्युनिटी को सर्विस देने का हमारा गोल है, वो हम एक साथ अचीव करें। अगर आप में से कोई भी एक सेंटर वो गोल अचीव करने में नाकाम हो जाता है, किसी एक सेंटर पे कोई प्रॉब्लम आती है, तो उंगली किसके ऊपर उठेगी? सीधा रीड इंडिया के ऊपर। तो जो टीम है हमारी, जो हम टीम वर्क की आज बात कर रहे हैं, तो अगर एक भी पुर्जा उस टीम का कमजोर हो जाता है या उसकी वैल्यूज मैच नहीं होती या वो किसी और रास्ते पे निकल जाता है, तो जो हमारी टीम है, जो एक माला है, अगर उसमें से एक मोती निकल जाता है तो माला टूट जाएगी। इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि लगातार हम सेंटर से जुड़े रहें, हम सेंटर्स को अपनी कोर वैल्यूज से जोड़ के रखें, क्योंकि हम टीम वर्क की इंपॉर्टेंस समझते हैं। और इसीलिए रीड जो है, मैम भी है, हम सबको नर्चर करती हैं कि हम सबका जो कॉमन गोल है वो हमेशा एक ही रहे और लाइव रहे, यानी कि हम उसे चेंज कर सकते हैं ग्रोथ की तरह, लेकिन ऐसा ना हो कि अलग ही दिशा में चला जाए। मान लीजिए कोई सेंटर बोलता है ठीक है अब तो मुझे ये करना ही नहीं है, अब मैं इसमें जिम खोलना चाह रहा हूँ, अब मैं अपना सेंटर में जिम खोलूंगा, जी अब तो ये सेंटर हमारे को दे दिया गया, मैं इसमें जिम खोलूंगा, जिम की बहुत डिमांड है। क्या ये हमारा गोल है? नहीं, हमारा गोल है स्किलिंग का, हमारा गोल है एजुकेशन का, हमारा गोल है सॉफ्ट स्किलिंग का, हमारा गोल है कि हम महिलाओं को या लड़कियों को या जो कम्युनिटी है ऐसे एक ऑल्टरनेट लाइवलीहुड प्रोवाइड कर सके, जिससे कि उनकी ऑल्टरनेट इनकम हो सके, जिससे हम सेंटर भी सेल्फ सस्टेन कर सके। यही 5-6 गोल हैं, इसके अलावा तो और कोई गोल नहीं है हमारा। तो ये कॉमन गोल को डिफाइन करना और सभी पूरी टीम जो है, जो जितने भी लोग एक टीम में जुड़े हैं उसकी तरफ काम करने से ही वो हमारा गोल अचीव हो सकता है। कभी भी टीम में हम ये नहीं कह सकते अच्छा मैं तो अच्छा कर रही हूँ। कभी कभी हम क्वेश्चन करते हैं कि ठीक है आपका टारगेट पूरा नहीं हुआ, या आपके फाइनेंशियल डेटा नहीं आया, या आपकी रिपोर्ट्स टाइम पे नहीं आ रही। बोले नहीं मैंने तो दे दिया था, आगे उन्होंने नहीं दिया, या आधी ही आई या आधी रिपोर्ट ही आई, बट हमारा अचीव तो नहीं हुआ ना। तो टीम में जो लीडर होता है या जो अपने आप को कहता है कि मैं ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हूँ, या चलिए मुझे ज्यादा तजुर्बा है, या कभी कभी लीडर जो होता है हम चुनते नहीं है लेकिन वो इतना रिस्पेक्ट कमांड करता है कि उसको मान लेते हैं कि हाँ ये लीडर है, तो ये एज ए लीडर या एज ए कोर मेंबर ऑफ एनी टीम, आप हम सबका ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि हम कभी भी आई विन यू लूज, मतलब मैं तो जीतूं और तुम हार जाओ, कि दूसरे को नीचे खींच के हम ऊपर नहीं बढ़ सकते। ये टीम अच्छी टीम के कॉम्पोनेंट नहीं है, अच्छी टीम की कॉम्पोनेंट है कि मैं भी जीतूं तुम भी जीतो, यानी कि हम दोनों मिलके प्रोग्रेस करें, मेरी प्रोग्रेस थोड़ी ज्यादा हो सकती है, तुम्हारी कम हो सकती है, कि तुम्हारी कभी ज्यादा हो सकती है, मेरी कम हो सकती है, राइट? सो टीम में सबका मिल बांट के काम करना, सबके रोल्स डिफाइन होना, अगर रोल्स सही से डिफाइन नहीं होंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा, और कंफ्यूजन में कोई भी ढंग से काम नहीं कर सकता। घड़ी जो होती है, घड़ी में पीछे हमको सिर्फ 3 सुइयां दिखती हैं, राइट? लेकिन कभी अगर हम उसको पलट के खोल के देखें तो पीछे बहुत सारे छोटे छोटे छोटे छोटे पुर्जे हैं जो काम करते हैं। अगर उनमें से एक भी पुर्जा काम करना बंद कर देता है तो घड़ी सही टाइम नहीं दिखाएगी, या टाइम दिखाएगी ही नहीं, राइट? वो 3ों सुइयां शायद मूव नहीं करेंगी या गलत मूव करेंगी। तो हम जो पीछे हैं, पर्दे के पीछे हैं, पर्दे के आगे हमारी लीडरशिप है, हमारी ट्रस्टीज हैं, हमारी रिपोर्ट्स हैं, हमारी वेबसाइट है, लेकिन इसको बनाता कौन है? बनाते तो हम लोग हैं। तो जब हम आपसे रिपोर्ट्स लेते हैं, इंफॉर्मेशन लेते हैं, फोटोज लेते हैं, आप ये सोचिए, आप वो घड़ी का वो छोटा पुर्जा है जिसको टाइम तो देखेगा कोई, कोई होगा कॉर्पोरेट, उसने देखना है कि हाँ ये लोग क्या काम कर रहे हैं, तो वो टाइम दिखाना हो गया, लेकिन पीछे का काम तो हम सब मिलके कर रहे हैं ना। तो अपने काम को हम कभी भी छोटा नहीं सोचेंगे। कुछ भी अगर रीड में कुछ काम चल रहा है तो आप ये सोचिए कि ये काम सबसे इम्पोर्टेंट है, तभी तो मुझे दिया गया है। दैट इज वन वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट, कि कभी भी मत सोचिए कि आई एम अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ बिग टीम, अगर मैं ये नहीं भी करूंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर मैं 100% नहीं दूंगा इसका या नहीं दूंगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो फॉर अ गुड टीम, सारे कॉम्पोनेंट्स का एक साथ जुड़ के अच्छे से काम करना बहुत जरूरी है। अभी हमने बात करी कि रोल्स डिफाइन होने बहुत जरूरी होते हैं एक टीम में। अगर रोल्स डिफाइन नहीं होंगे कि भाई किसने सुबह सफाई करनी है, किसने स्विंग की क्लासेस लेनी है, किसने रिपोर्ट भेजनी है, किसने फाइनेंस का हिसाब रखना है, किसने देखना है कि भाई चाय पत्ती दूध चीनी सेंटर में है कि नहीं, किसने देखना है कि किताबें सही से लगी हुई हैं, मशीनें ठीक से काम कर रही हैं, अगर ये रोल्स ठीक से डिफाइंड नहीं होंगे तो हमारा जो लाइब्रेरी है, हमारा जो सेंटर है, वो नहीं चलेगा, वो सही से नहीं चलेगा। देर इज सम जोक गोइंग ऑन, जो हमारा ये सेंटर है जूम यूजर वाला, आई वुड ऑल्सो वॉन्ट टू हियर दैट जोक। आप याद रखिएगा, वी विल कम बैक टू यू एंड वील हियर योर जोक। सो इस जो जो टीम वर्क होता है उसमें ऑनेस्टी बहुत जरूरी है। अभी सना ने और जो 2-3 लोगों ने बोला, उन्होंने बताया कि किस तरीके से हम फुल डेडिकेशन के साथ अपनी कम्युनिटी में काम करते हैं, उसी तरीके से एक अच्छी टीम का काम करने के लिए टीम में आपस में ऑनेस्टी होना बहुत जरूरी है। हम समय समय पे आपको पूरे आई वुड रिक्वेस्ट जूम यूजर, इधर आप चले जाएं बिकॉज देर इज सम गॉसिप गोइंग ऑन, या फिर आप अपनी स्क्रीन बंद कर दीजिए बिकॉज मेरे लिए बहुत अटेंशन डाइवर्शन हो जाता है, बिकॉज आई एम नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट। आई कैन हियर यू लाफिंग एंड आई कैन हियर यू यू नो, इट इज वेरी इरिटेटिंग। आई एम श्योर आपके पास ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है, आप स्क्रीन बंद कर लीजिए, सिर्फ नाम वास्ते आप ऑनलाइन रह सकते हैं, आई हैव नो इश्यूज विद यू, राइट? प्लीज स्विच ऑन योर स्विच ऑफ योर स्क्रीन, आप अपने जोक्स कंटिन्यू करिए, आई विश यू ऑल द बेस्ट, राइट? ऑनेस्टी के साथ काम करना बहुत जरूरी है एक टीम में, बिकॉज अगर हम ऑनेस्ट नहीं होंगे तो दैट मीन्स हम टीम में इक्वली ट्रांसपेरेंसी नहीं लेके आ रहे, तो कहीं ना कहीं हम चीजों को छुपा रहे हैं, और ये हमारी टीम की हेल्थ के लिए और हमारी टीम की ग्रोथ के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है। आज आप यहाँ पे हैं, हो सकता है आप आगे जाके किसी और कंपनी में जाएंगे या किसी बड़ी संस्था के साथ काम कर सकते हैं, तो एज ए लीडर, क्योंकि हम लीडरशिप के भी सेशन लेते हैं, एज ए लीडर और एज ए मेंबर ऑफ द टीम बहुत जरूरी है कि हम कोई चीज अगर हमें पता चली है और हमें लगता है कि वो इम्पोर्टेंट है तो हमें सब मेंबर्स के साथ वो शेयर करना चाहिए। सो ऑनेस्टी इज वन ऑफ द कोर कॉम्पोनेंट ऑफ अ गुड टीम, ऑलराइट? आई विन यू विन आई विन हमने बात कर ली है, इसके इसके लिए कोई एग्जाम्पल्स अगर किसी के पास हैं तो वी विल बी हैप्पी टू नो अबाउट दैट। टीम में ना तीन, जो हम जितनी भी किताबें पढ़ते हैं, आपकी लाइब्रेरीज में बहुत किताबें होंगी टीम वर्क के ऊपर, हाउ टू विन पीपल, अच्छे जो टुगेदरनेस के ऊपर जो किताबें हैं, उसमें 3 चीजें बहुत जरूरी हैं कि ट्रस्ट, टॉलरेंस एंड टुगेदरनेस। यानी कि ट्रस्ट मतलब हमें पूरा ट्रस्ट होना चाहिए अपनी टीम के ऊपर, बट ट्रस्ट आएगा कैसे? वो ट्रांसपेरेंसी से आएगा, जिसकी बात हमने पहले वाली स्लाइड में करी। टॉलरेंस, अब टॉलरेंस सबसे ज्यादा मुश्किल है क्योंकि हर इंसान अलग है, हर इंसान को अलग चीज मोटिवेट करती है, हर इंसान के लिए अलग चीज जो है वो अच्छी है या बुरी है। तो हम एक टीम में एक जैसे तो नहीं होते, हर टीम में अगर 5 लोग हैं, 10 लोग हैं, 50 लोग हैं, 90 लोग हैं, तो हर कोई अलग अलग होगा। तो टॉलरेंस बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल अभी जो जनाब यहाँ बैठे हुए थे 3-4 लोग, उनके लिए कुछ और इम्पोर्टेंस था, बट हमें हमें उनके लिए भी टॉलरेंट होना है। मे बी आज वो सुन रहे हैं ये चीज, हो सकता है कल उनके काम पे आए, आज नहीं इम्पोर्टेंट लग रहे, बट वो आगे जाएंगे किसी कंपनी में काम के लिए जाएंगे, तब शायद ये बात मेरी उनको याद रहे या याद आ जाए जब उनको कहा जाएगा कि टीम वर्क कितना इम्पोर्टेंट है। सो हमें हर किसी को टॉलरेट करना सीखना पड़ता है, और जिनके पॉजिटिव्स हैं, जो नेगेटिव्स हैं, उस पे काम करना चाहिए एज ए गुड टीम। अगर एक टीम में किसी की राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं तो और लेकिन अगर उनकी स्पीकिंग स्किल्स अच्छी नहीं है, तो एज ए टीम लीडर हम ये नहीं कह सकते कि ठीक है तुम्हारी राइटिंग स्किल्स अच्छी हैं लेकिन स्पीकिंग स्किल्स तो अच्छी नहीं है, तो हम यू नो वी वोंट गिव यू अ रोल। हम स्वॉट एनालिसिस की बात करते हैं, तो हमें स्ट्रेंथ्स देखनी है कि हमारे टीम में जो अलग अलग लोग काम कर रहे हैं उनकी अलग अलग स्ट्रेंथ्स क्या है। किसी की फाइनेंस में स्ट्रेंथ बहुत अच्छी हो सकती है, किसी की क्रिएटिविटी में बहुत अच्छी हो सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरी फाइनेंस में अच्छी है, लेकिन अगर मुझे कोई बोले कि कुछ बोर्ड पे लिख दो या ड्रॉ कर दो, तो मेरी हैंडराइटिंग बहुत बुरी है और ड्रॉइंग तो उससे भी बुरी है। लेकिन कोई बोले कि इसका फटाफट एक्सेल में कुछ बना दो, इसका जोड़ तोड़ कर दो, इसको बताओ कि इसका क्या, इसकी एक रिपोर्ट बनानी है जो फाइनेंस से रिलेटेड है, वो मेरे लिए बहुत आसान है। तो मुझे ये पता है, तो मैं अपने जो मेरे लीडर हैं, मैंने उनको पहले ही बताया कि अगर इस तरीके का काम करेंगे तो मैं ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगी, और अगर इस तरीके का काम मुझे दिया जाएगा तो शायद मेरी

0: होना चाहिए। अगर कोई रिपोर्ट आज जानी है, अगर कोई इन्फॉर्मेशन आज जानी है, तो एज ए लीडर हमें ये देखना है कि टीम में टॉलरेंस की जगह तो है, लेकिन कॉम्प्लेसेंसी यानी कि काम ना हो इस चीज की जगह नहीं है, क्योंकि फिर हमारी टीम फेल हो जाएगी। ट्रस्ट टॉलरेंस टुगेदरनेस तो होगी, लेकिन टीम फेल हो जाएगी, है ना। सबसे ऊपर गोल है, गोल के अंदर जो कॉम्पोनेंट्स है वो हम पहला कंपोनेंट था कि टीम में सबका एक साथ मिलके चलना बहुत जरूरी है फॉर अ सक्सेसफुल टीम। टीम में एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है, एक दूसरे की कमियों को टॉलरेट करना कुछ हद तक हमें सीखना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि कोई कुछ आके भी बोल जाए तो हम बोले नहीं नहीं ये तो हमारा टीम मेंबर है और ये नहीं नहीं हम तो इसको कुछ कहेंगे ही नहीं, ऐसा भी नहीं है। टॉलरेंस एज फार एज इट इज एडिंग टू आवर गोल, राइट, एंड टुगेदरनेस। हम अकेले तो कुछ, अकेले तो टीम है ही नहीं, अकेले तो फिर हम इंडिविजुअल है, राइट। एक ये खरगोश और कछुए की कहानी हम सबने सुनी है बचपन में, हमने ये कहानी छोटे बचपन से सुनते आए हैं कि एक खरगोश था और एक कछुआ था, और ये दोनों ही रेस लगाते हैं, और खरगोश सो जाता है क्योंकि उसे लगता है अरे मैं तो इतना तेज भाग रहा हूँ और इतनी तेजी से मैं फटाफट कर लूंगा और मैं सो जाता हूँ, थोड़ी देर सो भी जाऊंगा। उसने पेड़, एक पेड़ ढूंढा और उस पेड़ के नीचे सो गया। इतने में जो कछुआ था वो अपने गोल पे कायम रहा, धीरे धीरे धीरे धीरे करके वो गोल की तरफ बढ़ता रहा, और उसने देखा कि कछुआ तो उसने देखा कि खरगोश तो सो रहा है, तो उसने कहा चलो ठीक है मैं इसको जगाता नहीं हूँ, ये तो सो ही रहा है, इन एनी केस मुझे जीतना है, ये रेस जीतने के लिए है, मैं आगे बढ़ता हूँ। तो कछुआ जो था धीरे धीरे धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और अंत में वो रेस जीत गया। जब खरगोश उठा तो उसने देखा अरे मैं तो सो गया था और मैं ये रेस हार गया। ये स्टोरी सुनी है किसी ने पहले, या इससे अलग कोई स्टोरी सुनी है किसी ने कछुए और खरगोश की? आप
1: हाँ जी
0: किसी सुनी
1: सुनी है हम सबने,
0: है? सबने सुनी है। इस स्टोरी में एक ट्विस्ट लेके आते हैं। इस स्टोरी को अगर एज ए टीम सुनाना है हमको तो हम कैसे सुनाएंगे? अगर खरगोश और कछुए की टीम है, अभी क्या था कि कछुआ अलग भाग रहा था, खरगोश अलग भाग रहा था, वो एज ए टीम नहीं भाग रहे थे। कछुए की अपनी कुछ स्ट्रेंथ थी और खरगोश की अपनी कुछ स्ट्रेंथ थी। अभी वो तो जंगल में रहते हैं लेकिन हम लोग तो इंसान है, हमें तो एक साथ जुट के काम करना है, और हमारी क्वालिटीज कछुए और खरगोश जैसी ही है क्योंकि हर ह्यूमन बीइंग अलग है। हाँ, हम सबकी जो शक्तियां हैं या सबकी जो वीकनेसेस हैं वो सबकी अलग अलग हैं। अगर ये स्टोरी थोड़ी सी टीम वर्क में सुनाई जाए तो उसमें हम ये डाल सकते हैं कि कछुआ और खरगोश एक रेस में थे। उस रेस में कई रुकावटें थी। पहले तो बहुत रास्ता जो था वो पथरीला था, बहुत उबड़ खाबड़ पथरीला रास्ता था, और आगे जाके नदी आती है और फिर पहाड़ आता है, ये रेस उनको पार करनी थी। तो जब कछुए और खरगोश ने देखा कि ये रेस तो इम्पॉसिबल है पार करना, अलग अलग अगर हम करेंगे तो एक पड़ाव तक जाके हम रुक जाएंगे, हम ये रेस नहीं पार कर सकते। तो फिर कछुए और खरगोश ने बोला कि ठीक है क्यों ना हम टीम वर्क में काम करें। जब हम टीम वर्क में काम करेंगे तो जो पथरीला रास्ता है वो खरगोश फटाफट पार कर लेगा और मैं खरगोश के ऊपर चढ़ जाऊंगा, और जो पानी का रास्ता है वो कछुआ फटाफट पार कर लेगा और खरगोश उसके ऊपर चढ़ जाएगा, जो पहाड़ का रास्ता है वो फिर खरगोश कवर करके ऊपर पहुंच जाएगा और कछुआ उसके साथ चला जाएगा। तो अगर रेस पार करनी थी तीनों दोनों को तो ये तीनों पड़ाव पार करने थे। अब अकेले तो वो शायद नहीं कर पाते, खरगोश पानी में डूब जाता और ये दोनों ही हार जाते, लेकिन उन्होंने कहा कि ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, ये हमारी इज्जत का सवाल है और हम एज ए टीम काम करेंगे। सो एज ए टीम हमें ये देखना है कि हमारी जो कमियां हैं, हमारी जो इश्यूज हैं, जो प्रॉब्लम एरियाज हैं, क्या हमारे टीम वर्क करने से वो इश्यूज पार हो सकते हैं, क्योंकि हमारा गोल क्या था कि वो रेस को पार करना, गोल ये नहीं था कि जीतेगा कौन, राइट। अगर गोल रीडिफाइन कर दिया जाए, अगर गोल कॉमन हो, जो कि रीट का गोल है, कॉमन गोल है, हम कोई कंपनी नहीं है कि मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं, हम एक संस्था है जो समाज समुदाय के साथ काम कर रहे हैं, समुदाय के लिए काम कर रहे हैं, तो क्या हमारे गोल में इंडिविजुअल का जीतना जरूरी है या एक टीम का एक कॉमन गोल की तरफ बढ़ना ज्यादा जरूरी है? कठिनाइयां उसमें भी आएंगी, हो सकता है कछुआ जो है खरगोश का भार ना सहन कर पाए,

0: धीरे धीरे धीरे धीरे करके वो एज अ टीम शायद वो रेस पार कर लेंगे, क्योंकि ये तो कंफर्म्ड है कि अकेले वो नहीं पार कर सकते। हम ये बात ऑलरेडी कर चुके हैं कि एक टीम में बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्लियर रोल्स हो, क्लियर कम्युनिकेशन हो। आप देखेंगे बार बार मैम हमें कम्युनिकेट खुद से करती हैं, जहां भी चैलेंज आता है वो खुद से फोन उठाती हैं, हर एक से बात करती हैं, और जो प्रॉब्लम एरियाज है उसको वहीं के वहीं खत्म करने की कोशिश करते हैं। तो एज ए लीडर हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि कहीं भी कम्युनिकेशन गैप नहीं आना चाहिए। जो कम्युनिकेशन है वो लगातार सही तरीके से चलती रहे इन इन अ ग्रुप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये एग्जाम्पल्स हम आसपास अपने, जैसे कि यहाँ इस फोटो में दिखाया गया है, चींटियां जो हैं बड़े से बड़ा पहाड़ उठा लेती हैं, अपने भार से कई गुना ज्यादा भार वो उठा लेती हैं एज ए टीम जब काम करती हैं। इसका एक और बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, अगर आप देखें हनी बीज, हनी बीज जैसे काम करती है ना, उनका रोल्स बहुत डिफाइंड होता है। रानी मक्खी कौन सी है और वर्कर बी कौन सी है, शहद कौन इकट्ठा करके लाएंगी, और रानी मक्खी की जो क्या कहते हैं सोल्जर बीज होती है वो कौन सी है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिफाइन क्लियरली कि किसका क्या रोल है एक टीम में, क्योंकि जो कॉमन गोल है हमें वो अचीव करना है, राइट? और ज्यादातर टीम्स, बड़ी बड़ी जितनी भी कंपनियां आप देखोगे, ज्यादातर टीम्स जो है ना वो फेल इसलिए करती हैं क्योंकि शायद उनकी लीडरशिप अच्छी नहीं होती। शायद लीडर अच्छा है लेकिन लीडर अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा। शायद कम्युनिकेशन अच्छे से हो रही है लेकिन उनके गोल्स ही डिफाइन नहीं है, भाई बहुत अच्छे से किया लेकिन पता ही नहीं जाना कहाँ है, पता ही नहीं है करना क्या है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपनी कम्युनिकेशन अच्छे रखें, अपने लीडर को इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है, गोल्स क्लियर होने चाहिए कि टीम किस लिए काम कर रही है। ये जो सेंटर हमने खोला है, इतनी जगह पे जो हमारा सेंटर है, किस लिए क्यों काम कर रहा है। हेलो, और
1: हेलो,
0: हर,
1: मैं स्मिता
0: हाँ जी बिल्कुल।
1: जी। मैं आई वुड लाइक टू ऐड वन स्टोरी। अभी मैंने फुल टाइम फैमिली
0: मैं एक मिनट अपना
1: अल्टरली
0: कैमरा ऑफ करती हूँ क्योंकि मेरे को ना आवाज थोड़ी कम आ रही है, एक सेकेंड, सॉरी। हाँ जी आप बोलिए, आप कंटिन्यू करिए।
1: आई हर्ड कि समबडी वाज सेइंग कि हम शुड वर्क लाइक सनफ्लावर्स। तो व्हाई सनफ्लावर? सनफ्लावर हमेशा सन की तरफ देखता है टू गेट एनर्जी, और वो पूरा दिन सन की तरफ देखता है, सन की तरफ ही जिस साइड पे सन हमारा जाता है सनफ्लावर उधर ही मुड़ जाता है एनर्जी के लिए, ताकि वो अपना बाकी का जो उसका प्रोसेस है वो पूरा कर सके। एंड एट द टाइम्स जब सन नहीं होता है वेदर की वजह से या कोई और रीजन की वजह से, तो सन के ना होने पे सनफ्लावर का, मैंने सुना कि वो सनफ्लावर्स एक दूसरे की तरफ फेस कर लेते हैं टू एक्सचेंज एनर्जी। तो जब हम अपनी टीम के साथ काम करते हैं, हमारा है, हमारे मेंटर्स हैं, वो लोग हमारी हेल्प करते हैं जहाँ तक वो कर सकते हैं वो करते हैं। जब वो लोग अपने किसी और काम में हैं तो वी शुड ऑल्सो वर्क लाइक सनफ्लावर्स, एक दूसरे को सपोर्ट करके अपनी टीम को हमें हर तरह से, हर हर सिचुएशन हम लोगों को आगे लेके जाने के लिए वी शुड वर्क। आई जस्ट वॉन्ट टू ऐड।
0: इट इज अ ब्यूटिफुल रिप्रेजेंटेशन सीमा जी। अगर आप अलाउ करेंगी तो मैं ये स्लाइड अपने पैक, जो हमारा पीपीटी है, इसमें ऐड करना चाहूंगी। आई हैव नेवर हर्ड सच अ ब्यूटिफुल थिंग, मतलब डेफिनेटली ये वर्थ ऐड करने का है कि जब जब सूरज चमकता है, यानी कि जब पॉसिबिलिटीज बहुत अच्छी हैं, तब तो हम एज ए टीम काम कर रहे हैं, बट जब कठिनाइयां आ जाती हैं तो हमें एक दूसरे की तरफ देखना है, एक दूसरे का साथ जो है वो एज सनफ्लावर, एज ए गुड टीम मेंबर हमें वी शुड नॉट यू नो लेट गो कि अगर आज कठिनाइयां हैं तो आज हम टीम नहीं है, अब हम अलग अलग काम करेंगे। जब तक कि सब कुछ अच्छा था तब तक हम एक अच्छी टीम की तरह काम कर रहे थे, आज क्योंकि प्रॉब्लम आ गई, सन नहीं है, अब हमें रोशनी नहीं मिल सकती, तो रोशनी हमें एक दूसरे से लेनी है। वेरी गुड, थैंक यू सीमा मैम। सो दैट वॉज अ शॉर्ट प्रेजेंटेशन आई हैड क्रिएटेड जस्ट ऑन टीम वर्क, वो हम आपसे शेयर कर देंगे। बट ये बहुत इम्पोर्टेंट कॉम्पोनेंट है, चाहे आज यहाँ पे हैं आप, चाहे कल बड़े हो किसी कंपनी में जाएंगे, चाहे हम ये प्रोफेशनली बात करें तो ज्यादा मतलब ये स्लाइड्स रहेंगी, पर्सनली भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि पर्सनली भी हम घर में अकेले नहीं होते, हमारे माता पिता होंगे, भाई बहन होंगे, और जब अगर शादी हो जाती है स्पेशली फॉर लेडीज, महिलाओं के लिए हम दूसरे घर जाते हैं, तो सास ससुर हो सकते हैं, वहां पे पूरी एक एक्सटेंडेड फैमिली हो सकती है, तो उनको भी हम कैसे एक परिवार को एक टीम की तरह देखें, ये भी शायद सोचने की हमें जरूरत है, क्योंकि आजकल इतने मनमुटाव हैं, इतनी प्रॉब्लम है, क्योंकि वही वाला एटीट्यूड है ना कि मैं सही हूँ और तुम गलत हो, लेकिन हम सबको तो ये नहीं समझा सकते, सिर्फ खुद को ये समझा सकते हैं। इन छोटी छोटी चीजों को हम आप तक इसलिए लेके आते हैं क्योंकि हो सकता है ये छोटी सी चीज किसी की लाइफ में कोई बदलाव लेके आ सके। मुझे मेरे काम का ये पार्ट नहीं है, लेकिन मुझे करने में मजा आता है आपसे सीख, जैसे आज मैंने नई चीज सीखी है सीमा मैम से, ऐसे ही मैं चाहूंगी जो लोग लगातार जुड़ रहे हैं वो कोई ना कोई नई चीज, कोई एक नई सीख हम सबके साथ शेयर करें, बिकॉज सिर्फ मेरा बोलना अच्छा नहीं है, सब सबके पास वो नॉलेज है, सभी पढ़ रहे हैं, सभी के पास वो एग्जाम्पल्स हैं, और कुछ भी एग्जाम्पल सही या गलत नहीं होता, क्योंकि हम सब लाइफ से सीख रहे हैं, अगर हम सभी शेयर करने शुरू करेंगे तो आप सोचिए कितना कुछ हम सीखने को मिलेगा। इस सेशन में आना कोई जबरदस्ती नहीं है, जिनको लग रहा है कि कोई इम्पोर्टेंट काम है या कुछ और प्रायोरिटी है, आप प्लीज मत आइए इस सेशन में, ये सेशन इन एनी केस आपसे शेयर कर दिया जाएगा जब आपको लगेगा कि आपके पास वक्त है और आपका दिमाग इस रास्ते पे चलने के लिए तैयार है, आप तभी भी सुन सकते हैं। सो देर इज नो मैंडेटरी, यहाँ कोई अटेंडेंस नहीं है, रिकॉर्ड किया जाता है जस्ट क्योंकि ये सेशन हम आपसे शेयर करेंगे ताकि वो आप जब चाहें सुन सकते हैं। ये जूम जूम यूजर का जोक तो हम सबको सुनना है राइट, वो क्या जोक चल रहा था, फतेहपुर सेंटर, फतेहपुर राइट।
1: सॉरी मैम, आई एम सो सॉरी। जो ये चला था कि आपने वहां पे एक पॉइंट रखा था कि सब जो लीडर होता है वो ये चेक करता है कि जो किचन में चीनी है या नहीं, या फिर चाय की पत्ती है या नहीं। या मैम, बट आई लीडर, मैं ऐसा कुछ मैंने गलती की तो सो मुझे हंसी आई अपने ऊपर कि हाँ मैं ये कर रहा हूँ। आज मैम जो बात कह रही है वो रियलिटी में मेरे साथ ऐसा हो रहा है,
0: राइट,
1: इसलिए
0: हमने
1: मुझे
0: खेल,
1: मैम,
0: बहुत
1: या मैम डर नॉट
0: अच्छा
1: जोक मैम,
0: पॉइंट,
1: या मैम
0: बहुत
1: ये
0: अच्छा
1: जोक मुझे
0: पॉइंट।
1: ना, यस सर, क्योंकि
0: नहीं
1: मैंने
0: मैंने
1: ये
0: ये
1: गलती फील
0: नहीं
1: की कि मुझे
0: ना,
1: इन्हें किया है, सो मुझे थोड़ी सी हंसी आई अपने ऊपर आई इस बात को लेकर के, और मेरे
0: नो
1: जो
0: प्रॉब्लम,
1: मेंबर्स हैं उनको भी लगा कि हाँ, तो सो सॉरी मैम, मैंने ऐसा कोई
0: नो नो
1: रॉन्ग
0: सॉरी की
1: वर्ड था
0: बात ही नहीं है, मुझे
1: जिसको,
0: लगा कोई अच्छी बात चल रही है तो
1: नो
0: हमें भी
1: नो
0: बोला
1: नो
0: जाए, तो
1: नहीं
0: मैंने ये
1: मैम,
0: नहीं बोला था कि लीडर जो है वो ये देखेगा चाय पत्ती है कि नहीं, मैंने बोला था,
1: या मैम
0: मैंने ये
1: बिल्कुल
0: कहा था कि रोल्स बहुत जरूरी है डिफाइंड होना, हमारे सेंटर में या हमारी टीम में किसका क्या रोल है, ये मैंने सिर्फ एग्जाम्पल दिया था, जैसे हमारे ऑफिस में ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये कुछ चीजों का हिसाब रखना वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऐसे जो और 10 लोग हैं उनकी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन अगर वो मान लीजिए कोई 2 लोग उसमें से उस दिन नहीं आए, तो एज ए टीम मैं ये नहीं कह सकती ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं, एज ए गुड टीम मुझे थोड़ा सा आइडिया है अगर, तो मैं कह सकती हूँ ठीक है आज वो नहीं आए तो मैं उसका उसकी जगह ये काम करने को तैयार हूँ, तो दैट वॉज जस्ट एन एग्जाम्पल ऑफ अ गुड टीम वर्क राइट। और कोई कुछ शेयर करना चाहता है, वेरी
1: गुड आफ्टरनून मैम, सुनीता
0: गुड
1: फ्रॉम।
0: आफ्टरनून,
1: मैम जैसा कि आपने आज सारे पॉइंट इतने अच्छे से बताया, तो उसी का एग्जांपल मैं देना चाहूंगी कि जो स्प्रिंगवुड स्कूल शीतला कॉलोनी का है, इतना प्रोग्रेस कर रहा है, टीम वर्क की वजह से ही कर रहा है। कहाँ लास्ट सेशन जुलाई में मेरे पास 11 एनरोलमेंट थे और अभी मेरे पास 75 स्टूडेंट्स एनरोल हो चुके हैं
0: वेरी गुड वेरी गुड,
1: और पेरेंट्स आ रहे हैं, और इसके लिए मुझे और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना पड़ रहा है, और ये रिजल्ट है हमारे टीम वर्क का और आपके सेशंस का, और जो भी मेरी हेल्पर्स हैं, मेड हैं, और जो भी मेरी टीचर्स हैं वो मुझे पूरा सपोर्ट करती है, अगर टीम वर्क ना होता तो हम कुछ भी अचीव नहीं कर पाते। थैंक
0: नहीं
1: यू
0: कर
1: सो मच।
0: पाते, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जहाँ पे टीम्स अच्छी नहीं थी और वो नहीं कर पाई, क्योंकि वो सिर्फ ये देख रहे थे कि भाई हमारी सैलरी आई कि नहीं आई, फोकस यही था कि इस मंथ हमारी सैलरी आई नहीं तो अब हम काम नहीं करेंगे, ऐसे भी एग्जाम्पल्स हमारे पिछले कुछ दिनों में हमारे सामने आए। सैलरी इज नॉट एन इश्यू, बट अगर हमारे स्कूल चल ही नहीं रहा है, अगर हमारे बच्चे आ ही नहीं रहे, तो कहीं ना कहीं तो कमी हमारे अंदर है ना, उस कमी को तो हम समझेंगे ना, तभी तो आगे बढ़ेंगे, वरना अगर बच्चे ही नहीं है, बच्चे हम मोबिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, बच्चे हैं ही नहीं, तो फिर स्कूल सिर्फ किताबें चेयर टेबल रखने से तो कोई फायदा ही नहीं है ना, अगर 10 ही बच्चे हैं. सो वेरी गुड एग्जाम्पल सुनीता जी, आपकी टीम इतने अच्छे से 75 बच्चों को मोबिलाइज कर पाई, अपनी अपने आप को आप सेल्फ सस्टेन कर पा रहे हैं. दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ अ टीम, क्योंकि उसके बिना पॉसिबल नहीं था.
1: यस मैम, यस मैम। हेलो मैम,
0: हेलो हेलो, हाउ आर यू?
1: आई एम फाइन मैम।
0: गुड दैट आपने ज्वाइन किया है.
1: क्या मैम?
0: अच्छा लगा आपका देख के कि आपने ज्वाइन किया है.
1: मैम, हमारे सेंटर में बहुत सारी लेडीज ऐसी थी कि उनके घर वाले मतलब उनको यहाँ भेजते नहीं थे। तो जब नई नई लेडीज आती थी तो बोलती थी हमारे घर वाले नहीं भेज रहे। तो हमने घर वालों के साथ बात की तो अब खुद घर वाले आके यहाँ छोड़ देते हैं लेडीज को। देखते हैं कि खुद लेडीज इतना अच्छा टीम बना के सीख रही है तो उनको बहुत अच्छा लगता है मैडम। और लेडीज को भी बहुत अच्छा लगता है कि हम एक जगह पे आके इतना अच्छा सीख रहे हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट भी जुड़े हुए हैं मैम, आप उनके साथ भी बात कर लीजिए। देखो बहुत
0: हेलो
1: सारे
0: मैम,
1: स्टूडेंट्स हैं।
0: हेलो हेलो एवरीबॉडी,
1: हमें
0: आपको कैसे?
1: अच्छा लगता है, वही हम बता रहे कि हमें इधर रीड इंडिया में आके बहुत अच्छा लगता है। रीड इंडिया, रीड मीन्स पढ़ना सीखना। यहाँ पे आके हम जो पढ़ते सीखते, मतलब पार्लर हुआ, जो जो इधर है वो सब हम पढ़ते हैं, हमें अच्छा लगता है। हमारे घर वाले हमें ना इनक्रीज करते कि लेडीज है, सिर्फ लेडीज है इधर, कि आप जाओ पढ़ो, आपको जो अच्छा लगता है वो पढ़ो, आगे पढ़ो ऐसा। और फिर इधर सोना मैडम भी हमें इंक्रीज करते कि ना आप आइए, और लेडीज होंगे, स्टूडेंट होंगे, कॉलेज स्टूडेंट या स्कूल स्टूडेंट है, वो भी इधर आते हैं, स्कूल से पढ़ते हैं, लाइब्रेरी में, हमें अच्छा लगता है। थैंक
0: अच्छा
1: यू
0: ठीक है,
1: सर।
0: आपको सबको मैं देखती हूँ काफी सारे यंग बच्चे हैं. सो
1: हाँ
0: अगला सेशन अगर हम इंटरव्यू स्किल्स पे रखें या फिर रेज्यूमे राइटिंग पे रखें, सो विल अगर जो जो लीडरशिप से लिंक्ड होगा वो तो हम करेंगे ही, बट आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ यूथ हियर. तो यूथ के लिए अगर एक सेशन आप चाहेंगे तो हम रख सकते हैं. ये काफी इम्पैक्टफुल रहेगा मुझे ऐसा लगता है, बट आप बता सकते हैं इफ यू नीड. हम रेज्यूमे राइटिंग या इंटरव्यू स्किल्स पे एक सेशन कर सकते हैं नेक्स्ट सेशन. ठीक है जी, ऑल राइट. सो सभी अगर किसी को और कुछ इनपुट देना है, कुछ शेयर करना है तो प्लीज करिए, अदरवाइज वी कैन क्लोज द सेशन.
1: जी मैम, सुमन
0: हाँ जी सुमन जी.
1: मैम, सबसे पहले आपका थैंक यू, रीड का थैंक यू कि हम लोग इतना कुछ सीखते हैं रीड से। और टीम वर्क में आप लोगों से सीखा है, टीम वर्क में कैसे काम होता है, कैसे क्या होता है। और शीतला बलून जैसे भी स्कूल हमारा टीम वर्क में बहुत अच्छा चल रहा है, उसी तरह से सेंटर में भी हम लोग टीम वर्क में ही काम कर रहे हैं। जो टीम है यहाँ की बहुत कोऑपरेटिव है, जैसे स्वाति जी है, मास्टर जी हैं, और सभी लोग जो जितने भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं, पुराने भी आ रहे हैं और नए भी आ रहे हैं, टीम वर्क हुआ तभी हम लोग जो लेडीजों को रोजगार देने का एक मिशन है इसको हम लोग चला पाए और इसको हम लोग आगे लेके जाना चाह रहे हैं इसीलिए। और आज वाले सेशन से भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, तो थैंक यू मैम इस चीज के लिए। थैंक यू।
0: थैंक यू, मुझे भी सीखने को मिला, क्योंकि मुझे सीमा मैम ने एक बहुत अच्छे से स्टोरी सुनाई है, और डेफिनेटली जब स्लाइड्स आपके पास पहुंचेंगी ये स्टोरी उसका पार्ट होगी. सो थैंक यू मेरी नॉलेज भी बढ़ाने के लिए, एंड आई होप ऐसे एग्जाम्पल्स और भी आए आगे. सो आप लोग सब सेफ रहेगा, स्पेशली जहाँ बहुत बारिश हो रही है. सीमा मैम आप कुछ कहना चाह रहे हैं?
1: स्मिता जी, मैं आप सबको शायद पता भी है, मैंने कॉर्पोरेट के साथ भी बहुत साल तक काम किया है, तो एक बहुत ही मैं नाम नहीं लूंगी, बहुत रिनाउंड कंपनी, उसके सीईओ, उनके साथ मेरी मीटिंग थी रिगार्डिंग माय कैफेटेरिया सॉर्ट ऑफ. तो उन्होंने मुझे एक बात बोली थी, वो मेरे लिए बहुत डिप्रेसिंग, वो मैं मेरे को इतना अजीब लगा. मैंने बहुत बहुत बार बहुत लोगों से सुना था कि कॉर्पोरेट सेक्टर इज लाइक एक दूसरे को क्रश करके ही आप ऊपर जा सकते है ना, टीम वर्क का तो कोई सवाल ही नहीं होता होगा. वो
0: बिल्कुल
1: इतनी बड़ी कंपनी के सीईओ से मेरी बात हो रही थी, एंड ही स्ट्रेट अवे सेड ऑन माय फेस, ही सेड कि 10 में से आपको आगे बढ़ना है तो 9 को यू हैव टू क्रश देयर हेड्स, यू हैव टू क्रश देयर हेड्स, उसके बाद ही आप नंबर 1 पे आ सकती है मैम. बहुत कंपटीशन है, बहुत कंपटीशन है, तो कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड में आपने आपको सर्वाइव करना है, तो आप अपने आप को यूनिक रखिए, 9 को हटाइए, तब आप पहले नंबर पे आए. वो मेरे लिए बहुत खराब था सुनना, बिकॉज मैंने ऐसा सुना था, लेकिन अपने सामने मैंने ये देखा कि वो खुद मुझे कह रहे हैं कि आप अपने आप को सबसे अलग रखिए, सबको पीछे छोड़ के ही आपकी तरक्की है. लेकिन आज मैं रीड इंडिया के साथ काम कर रही हूँ एंड वी आर टेकिंग सेशंस ऑन लीडरशिप ऑन टीम वर्क एंड सबको मैं कॉन्ग्रेचुलेट सो लकी कि हम लोग टीम वर्क के बारे में सेशंस ले रहे हैं, टीम वर्क में और कैसे बेटर कर सकते हैं, अपने अपने सेंटर्स पे हम टीम बना के काम कर रहे हैं और एक बिग फैमिली, बिग इंडिया की फैमिली जो कि महाराष्ट्र और कहाँ कहाँ तक पूरे इंडिया में पहुंची हुई है उस पे हम लोग सब काम कर रहे हैं। वी आर नॉट टचिंग एनीबडीज हेड, वी ऑल आर टुगेदर, वी ऑल आर ग्रोइंग टुगेदर। थैंक यू सो मच इंडिया, थैंक यू सो मच।
0: थैंक यू सीमा मैम, इट इज अ रियल थिंग। ऐसा ऐसा कॉरपोरेट में ऐसा ऐसा हर रोज हर घड़ी होता है कि हम किसी को दबा के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हर जगह पे ही हम देखेंगे कि हमें आगे बढ़ना है तो किसी को तो दबाना ही पड़ेगा, किसी को साथ लेके। सिर्फ हमारे पेरेंट्स जो हैं वो ही चाहते हैं कि शायद मतलब माँ बाप ही हैं जो एक एक तरीके से चाहते हैं कि मतलब बच्चे हमसे भी आगे बढ़ जाएं। शायद और कोई इस दुनिया में नहीं चाहेगा कि कोई और मुझसे आगे बढ़ जाए, बट एज ए टीम जब हमें काम करना है, मैम ने मुझे कभी आगे बढ़ने से नहीं रोका। वो हमेशा बोलेंगी अच्छा तुम ये भी कर लो, अच्छा वो ये भी कर लो, अच्छा ये भी कर लो। अब वो करना है नहीं करना है वो मेरे ऊपर है, राइट? सो हमने मैम से सीखा है कि एज ए लीडर किस मुकाम तक हम पहुंच सकते हैं विद आवर टीम। अकेले तो वो शायद मेरे को लगता है यूएन की भी हेड, मतलब यूएन में, यूनाइटेड नेशन में किसी हो सकता है, किसी कंपनी, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी सब पार्ट में वो किसी लीडरशिप रोल पे होती है। बट उन्होंने ये अपने ऊपर रखा है कि मुझे सबको साथ लेके चलना है, रीड में काम करना है। अगर वो अकेले निकल जाए तो मुझे नहीं लगता कि वो किसी किसी मतलब सबसे आगे ही निकल जाएंगी। बट हम 5 लाख लोगों से जुड़ के हम कहते हैं कि हम आज यहाँ पे 80 लोग जुड़े हुए हैं, 80 लोगों के साथ शायद 10-10 लोग बैठे होंगे तो हम 800 लोग हो गए, 800 लोगों की भी फैमिली हो गई तो आप उसको अगर 10 से गुणा करते हैं तो 8,000 लोग हो गए। ऐसे करते करते हम कहते हैं कि रीड सेंटर पे पिछले 17 साल से करीबन 5 लाख लोग आए हैं। अब वो 5 लाख लोग कुछ तो कर रहे हैं, कुछ तो सीख के गए होंगे, चाहे वो यही सीख के गए होंगे कि किताब खोल के पढ़ना कैसे है, 2 शब्द पढ़ के गए होंगे, कुछ सीख के गए होंगे। तो रीड का गोल यही है और रीड का ये गोल हम इकट्ठे ही उसको अचीव कर सकते हैं, एक साथ ही अचीव कर सकते हैं, अकेले नहीं अचीव कर सकते। सो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ टीम, स्पेशली इन आवर केस। और कहीं बाहर भी जाते हैं आप लोग, जो बच्चे सीख रहे हैं, जो बच्चे कुछ ना कुछ करेंगे आगे लाइफ में, आप ये देखेंगे कि हर कोई इसमें बिलीव नहीं करता। दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आई विन यू लूज एटीट्यूड पे ही काम करते हैं। हमें कैसा होना है ये हमारी चॉइस है। जैसे सीमा मैम ने बोला शायद वो उस कंपनी में काम नहीं करना चाहती थी, बट वो कंपनी में कोई ना कोई तो काम कर रहा होगा, और वो अगर लीडर कह रहा है कि यू हैव टू विन तो ही और शी हैज टू विन अगर उस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। तो हमें अपने अंदर कौन सी वैल्यूज लानी है, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ये चॉइस हमारे हाथ में है। तो जो लोग रीड में जुड़े हैं उनको तो हम यही कहेंगे कि प्लीज आप टीम वर्क में काम करिए, आई विन यू विन, मतलब हो सकता है विन थोड़ी छोटी हो लेकिन सबकी विन हो, इसी में ही हमारा यही हमारा कॉमन गोल। सो थैंक यू मुझे बर्दाश्त करने के लिए 1 घंटे के लिए एंड लिसनिंग टू मी एंड शेयरिंग सो मेनी नाइस थिंग्स। सो कोई कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ जी
2: मैम,
0: हाँ जी
2: मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे आपने टीम वर्क के बारे में मुझे बताया, हम लोगों को अच्छा लगा और कि ये नॉलेज बढ़ती है कि हम कैसे टीम वर्क करेंगे, कैसे लोगों के साथ मेंटेन होकर के अपने वर्क को आगे बढ़ाएंगे। बट मैम, एक इन्फ्लुएंस करना होता है, किसी को बताना होता है कि कई बार हम ऐसी जगह पे स्टे करते हैं, रहते हैं, जहाँ पे हमने अपना सेंटर ओपन कर रखा है, कुछ करना चाहते हैं। वहां के जो आसपास के लोग हैं ना, वो कंजर्वेटिव टाइप के हैं। अब वो कंजर्वेटिव टाइप के हैं तो वो निकल ही नहीं रहे उससे, तो उन्हें कैसे, किस प्रकार से इन्फ्लुएंस करें? मैम ये तो समझ, हम लोग क्या है कि अभी कम एज के हैं, कुछ इतनी नॉलेज नहीं होती है, अभी जस्ट है, प्रो में यूथ है,
0: तो
2: तो इतना समझ।
0: इसका, हाँ इसका जवाब तो मैं नहीं दूंगी, मेरे पास तो महारथी है इसका जवाब देने के लिए, मेरे पास सीमा जी
2: मैम
0: है,
2: आई
0: फरा
2: मीन
0: है।
2: क्या
0: नहीं
2: बोले,
0: नहीं एक मिनट आप रुकिए। सो आई वुड रिक्वेस्ट फरा, सीमा जी, मीना, सना,
2: हाँ
0: ये
2: जी,
0: तो आप कंजर्वेटिव कम्युनिटी की बात कर रहे हैं।
2: हाँ जी मैम,
0: सो
2: कंजर्वेटिव के
0: बिल्कुल बिल्कुल आपको जवाब यहीं पे मिलेगा। सो प्लीज प्लीज बी माय सपोर्ट, मैं इसमें वीक हूँ, मेरी टीम मुझे सपोर्ट करेगी।
1: लिए। यस मैम, एक्चुअली मैम आदित्य इज फ्रॉम माय सेंटर ओनली फतेहपुर।
0: यस
1: तो मैम अभी न्यूली लॉन्च सेंटर है तो इट विल टेक अ बिट ऑफ टाइम. ये मैंने अदिता को भी बोला था कि थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है, बिकॉज इतनी जल्दी कम्युनिटी बाहर नहीं आती है. वी रियली नीड टू वर्क हार्ड फॉर दिस.
0: राइट. सो फरा, आप कुछ टिप्स देना चाहेंगी फतेहपुर सेंटर को? आप बताएं कि कंजर्वेटिव कम्युनिटी में कैसे लोगों को बाहर निकालते हैं.
1: पहले तो मैं थोड़ा सा हिंदी में जानना चाहूंगी क्योंकि इंग्लिश मेरे इतनी जल्दी समझ में नहीं
0: तो वो
1: आता.
0: ये कह रहे हैं फरा कि उनकी कम्युनिटी में लड़कियों, उनकी जो समुदाय है वो इतना खुले दिमाग का नहीं है. अगर मैं कुछ गलत बोल दूं तो प्लीज मुझे माफ करिएगा, बट आई थिंक दैट इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू से, कि वो लड़कियों को नहीं निकलने दे रहे हैं. वो नहीं चाह रहे हैं कि सेंटर पे लड़कियां आएं या महिलाएं आएं या कोई भी आए सेंटर पे सीखने के लिए.
1: जैसे कि इन्होंने बताया कि अभी इनका नया सेंटर खुला है, और अगर इनका नया सेंटर खुला है तो इतनी जल्दी वो लोग बाहर नहीं आएंगे, धीरे धीरे करके आएंगे. इनको थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा, उन लोगों को समझाना पड़ेगा. और अगर इन्होंने एक दो लड़कियां या पांच लड़कियों को भी बहुत अच्छे से सिखाया, बहुत अच्छी वहां पर सेंटर की बातें पहुंची, तो ज्यादा से ज्यादा लड़कियां खुद आना शुरू हो जाएगी, इनको जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी. बट ये है कि हम समझा कैसे रहे उन्हें, हम किस तरीके से बता रहे हैं, क्या चीज उन तक पहुंच रही है, कि सिर्फ हम सिखा रहे हैं. एक मिनट, सॉरी, ऐसा लग रहा है मैं खुद से बात कर रही हूँ. तो हम
0: एक्चुअली
1: वहां पर क्या चीज पहुंचा रहे हैं, पहले हम उनको बताएंगे कि हमारा सेंटर किस लिए खुला है. लाइब्रेरी है, सिलाई है, पार्लर है, कंप्यूटर है, बट खुला है लेकिन लड़कियों के लिए क्यों खुला है, लड़कियां आगे इससे सीख के क्या करेंगी, उनके लिए ये किस तरीके का प्रॉफिट हो सकता है, किस तरीके से वो सक्षम बन सकती है, तो वो थोड़ा सा आप उनको समझाइएगा. और अगर वो आपकी बात नहीं समझे तो दो तीन टीचर्स को लड़कियों को लेके जाइए, उनसे थोड़ा सा बात करवाइए. जब तक आप अच्छे से नहीं समझाएंगे तब तक वहां के लोग नहीं निकल पाएंगे.
0: थैंक यू फरा.
1: जी नमस्ते स्मिता जी.
0: नमस्ते नमस्ते. थोड़े आप हेल्प करेंगे हमारे दोस्त को यहाँ पे, इनका
1: जी
0: नया
1: जी
0: सेंटर खुला है.
1: जी मैम. देखो, सबसे पहले हमने जिस गांव में भी आज सेंटर निकालते हैं, नई कम्युनिटी होती है, तो सबसे पहले लोगों के साथ हमें रिश्ता बनाए, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है. कभी कभी जैसे हम लोग किसी गांव में जाते हैं और हमारी मीटिंग लेके जाते हैं कि हम रीड इंडिया में ये एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो कई बार क्या होता है कि उसके घर पर कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कभी किसी का कोई बीमार है या उसके बच्चे को कोई स्कूल में एडमिशन नहीं मिल रहा, तो सबसे पहले हम उसकी बात सुने. हो सकता है कि जो उसकी प्रॉब्लम है उसको हम हल कर दें. कभी कभी स्कूल में अपनी पहचान होती है कि चलो तुम्हारे बच्चे का एडमिशन हम करवा देते हैं, कोई बीमार है उसको हॉस्पिटल तक ले गए, तो एक बार हमने जिस बंदे का काम कर दिया तो वो हमेशा हमारा फ्रेंड बन जाता. फिर उसको आप कहीं कहीं पे भी बोलो कि तुम इस सेंटर में आ जाओ तो वो तुरंत आने को तैयार है. और उसी गांव में जो हमारे सेंटर से जो लड़कियां सीख के गई हैं, देखो जब 10 लड़कियां दूसरी होती हैं और 5 लड़कियां हमारे जो सेंटर से निकल के जाती हैं उनमें एक अलग ही चेंज होता है, तो उन्हीं के माध्यम से वहां पे जाके कम्युनिटी में उनकी मीटिंग करवाएं कि देखो ये आपके यहाँ से लड़कियां नहीं थी और इनमें इनसे पूछो इन्होंने वहां पे क्या क्या देखा, तो उससे भी बहुत फर्क पड़ता है. तो शुरुआत में ये चीजें अगर हम करते हैं तो धीरे धीरे कम्युनिटी का एक रिश्ता बन जाता है हम लोगों के साथ, तो वो बहुत हेल्प करता है. जैसे अभी भी हम लोग नए नए और गांव को जोड़ रहे हैं, तो उसमें भी हम यही प्रोसेस कर रहे हैं. 5-7 लड़कियों को जिन्होंने ट्रेनिंग ली है, मैं उनको लेके जाते हैं, उनसे बात कराते हैं, तो ऑटोमेटिक 10-10, 20-20 रजिस्ट्रेशन डेली होते हैं.
0: थैंक यू मीना
1: पता
0: जी.
1: लगाइए सर कि वहां लड़कियां निकलना क्यों नहीं चाह रही है, क्या वो स्कूल नहीं जाती, या फिर वो पेरेंट्स मना कर रहे हैं, या वो कुछ कुछ से खुद से कुछ सीखना नहीं चाहती, कैसा माहौल है वहां का, क्योंकि हमने तो नहीं
2: एक्चुअली
1: देखा ना.
2: एक्चुअली मैम, टाउन एरियाज में क्या है कि जब थोड़ा जो पिछले होते हैं ना, जब थोड़ा सा ग्रो करते हैं, तो आजकल आपको पता है ना, सोशल मीडिया जो बहुत बच्चों को टाइम जो है वो खराब करवा रहा है, सोशल मीडिया पे लगे रहते हैं, तो उनका मन ही नहीं करता है कि कुछ स्किल डेवलपमेंट करें, कुछ सीखें, या आते भी हैं तो कुछ नए तरीके से, या फिर लोग जॉब के लिए करते हैं कि हाँ ये ऑप्शन है तो मुझे सिर्फ जॉब सीधे मिल जानी चाहिए, वो स्किल डेवलपमेंट के लिए बढ़ ही नहीं रहे हैं, कोशिश ही नहीं कर रहे हैं. आते हैं क्लास में बैठे, कोई कॉलेज भी जा रहा है, पढ़ रहा है, फिर वहां से निकल रहा है, उनको मार्क्स की चिंता भी नहीं है, उनके पेरेंट्स को उनकी जो बिहेवियर है या जो उनकी आजकल जो टाइम का चल रहा है उसकी भी कोई चिंता नहीं है, कोई गेम खेल रहा है तो कोई इंस्टाग्राम पे रील्स बना रहा है, तो ये सारी चीजें लोगों के अंदर बनती जा रही है. एक्चुअली वो कंजर्वेटिव है लेकिन सिर्फ दिखाने के लिए, अंदर से वो एकदम शांत है क्योंकि वो बच्चों को कुछ कहते ही नहीं है कि यहाँ पे ये सेंटर ओपन हुआ है, यहाँ पे आप स्किल डेवलपमेंट कर लो. तो इसके लिए मैम कोशिश की जा रही है, तो मैं यही जानना चाहता हूँ कि इन्फ्लुएंस करने का क्या और भी रीजन हो सकता है, जब मैंने अच्छे अच्छे सारे उनको चीजें बताई कि ऐसे ऐसे आप कर सकते हैं, एजुकेशन की तरफ आप बढ़ सकते हैं, एजुकेशन आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी तरीके से आप बैठ के, ढेर सारी बुक्स हैं आपके पास, कोई भी बुक आप बैठ के पढ़ सकते हैं, हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं, तो लोग आते हैं, लोग विजिट करते हैं, फिर चले जाते हैं, उसके बाद बात ही नहीं करते, भूल जाते हैं, तो ये चीज करने के लिए मैंने एक क्वेश्चन
1: आप
2: रखा।
1: एक चीज कर सकते हैं, आप देखिए कि किस तरह की स्किल्स की जरूरत है उस वाले एरिया में, आपके क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, कौन सी स्किल्स के लिए आप ज्यादा उनसे बात करेंगे तो उनके लिए बेहतर रहेगा। जैसे हम लोग बिल्कुल एकदम टिपिकल गांव में बैठे हुए हैं जहाँ पे इलिटरेट लोग चलते हैं, तो उनको तो हम ऐसी चीजें सिखाते हैं जैसे स्टिचिंग हो गया या और कोई स्किल्स जो जो अनपढ़ औरतें भी कर सकती हैं उसमें फोकस करते हैं। आपके वहां देखिए कि किस टाइप की स्किल्स पे वो लोग थोड़ा इंटरेस्ट दिखाएंगे, उसी के फोटोग्राफ्स आप दिखाइए उनको, अपने सेंटर के फोटोग्राफ दिखाइए और
2: जी
1: लेडीज
2: मैम,
1: को, लेडीज स्टाफ को लेके जाइए उनके साथ,
2: और
1: दैट विल बी
2: आपकी
1: मोर
2: किटी
1: इम्पोर्टेंट।
2: ज्यादा डेवलप है तो फिर आप एडवांस कोर्स वहां स्टार्ट करिए, जैसे कि अगर बच्चे बेसिक कंप्यूटर नहीं सीखना चाह रहे कि बेसिक तो हमें आता ही है, तो थोड़ा टेली सी टेट मतलब ये चीजें स्टार्ट करिए, ट्रिपल सी का कोर्स वगैरह, कि जिससे बच्चों को सीखने में ज्यादा इंटरेस्ट आए, वो लगे कि हाँ हमारे लिए सेंटर खुला, ये नहीं कि हमने बेसिक चीजें रख दी है, बेसिक कंप्यूटर सिखा रहे हैं, बेसिक सिलाई सिखा रहे हैं, बेसिक पार्लर सिखा रहे हैं, इसके अलावा हम कुछ भी नहीं सिखा सकते, तो बच्चों को लगता है कि ज्यादा जहाँ एरिया डेवलप होता है कि ये चीजें तो हमें बेसिकली घर में आती है, हमारी किस काम आने वाली चीजें, तो एक्चुअली
1: थोड़ा सा
2: मैम
1: एडवांस भी रखिए।
2: मैंने ये भी बताया कि मैं एक प्राइवेट टीचर हूँ, मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ
1: फ्रेंडली
2: बच्चों को, तो मैंने ये
1: माहौल
2: भी कहा
1: चाहिए।
2: कि 10th और 12th तक के बच्चों को मैं एजुकेशन भी दे सकता हूँ, आपकी कोई इंग्लिश लैंग्वेज प्रॉब्लम आ रही है या आपके कुछ ऐसे ही आपके अंदर कुछ फीलिंग्स टाइप की प्रॉब्लम्स है तो मुझे बताइए, शेयर कीजिए, मैं आपकी हेल्प करूंगा। मैं ट्यूशन के लिए भी कह रहा हूँ, स्पेशली बताने के लिए कि हाँ मैं
1: हाँ,
2: अलग से
1: आप म्यूट हो गए, आप म्यूट हो गए हैं।
2: ओके, थैंक यू सो मच मैम, आपने काफी हेल्प किया, हम लोग ट्राई करेंगे और बेटर करेंगे। ओके मैम,
1: तो
2: या
1: थैंक
2: मैम,
1: यू, ये टीम वर्क का
2: थैंक
1: बहुत अच्छा एग्जाम्पल था मेरे सामने सामने, सभी लोग चाह रहे थे कि इनका सेंटर जो है वो किसी तरीके से चल चल पड़े, और शायद हम लोग कभी मिले भी नहीं हैं और शायद हमने अभी आपका सेंटर देखा भी नहीं है, बट एवरीबडी वांटेड कि ये टीम, ये रीड का सेंटर है और ये चल नहीं रहा है। सो मतलब कितने पैशन के साथ सबने अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करा, तो आई थिंक इससे ज्यादा लाइव एग्जाम्पल नहीं हो सकता था टीम वर्क का। आई एम सॉरी, मैं आपका नाम नहीं जान पा रही, फतेहपुर से जो है,
2: आदित्य श्रीवास्तव,
1: आदित्य,
2: आदित्य,
1: आदित्य आपके ना ये जो सना का सेंटर है यहाँ पे कुछ बच्चों ने, आपका जो सना का ये जो सेंटर है यहाँ पे कुछ बच्चों ने बहुत अच्छे से सीख के अभी वो कुछ कर रहे हैं, तो आप उनको भी बुला सकते हैं अपने सेंटर पे ताकि वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। और वो बच्चे भी शुरुआत में शायद उतना ध्यान नहीं देते थे और शायद वो इतने सीरियस नहीं थे, लेकिन आज 5 साल के बाद वो जहाँ पे है, मैंने, हमने खुद सुना है उनके मुंह से कि कितना फायदा हुआ है सेंटर को। सना, प्लीज हेल्प हिम टू मोबिलाइज, एंड आप कोशिश करिए कि जो आपका
2: हाँ
1: जो जो स्टोरीज थी, जो जो बच्चे वो पीछे बोल रहे थे हम जब आए थे ज्ञानेश सर के साथ,
2: जी
1: दोज
2: मैम,
1: पीपल गो टू हिज सेंटर एंड वो मोबिलाइज करने में थोड़ा मदद करें, ये बताते हुए कि उनको कैसे फायदा हुआ है, शायद किसी को देख के हम सीख जाएं कि हाँ, यू नो, दिस सेंटर कैन बी एड वैल्यू टू अस।
2: लोग
1: गुड आफ्टरनून,
2: वर्क कर रहे हैं उस पर।
1: ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट, थैंक यू। हाँ जी ऋतु
2: मैम,
1: जी, हाँ
2: मैं भी एक एग्जांपल शेयर करना चाहती हूँ।
1: जी
2: अभी मैम हमें जब टारगेट मिला था तो हमने लूना माजरा, जो यहाँ से 4 किलोमीटर दूर पड़ता है मैम, तो वो लोकेशन हमने ली थी। वहाँ के सरपंच इतने हठी थे कि मतलब वो मान ही नहीं रहे थे कि भाई आप लोग एनजीओ चला रहे हो, क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। तो हमने उनको मतलब अपना पूरा डिटेल दिखाया, ऑनलाइन भी दिखाया उनको सारा, तो वो उनको डाउट्स थे जो उनके वो क्लियर हो गए। पैम्पलेट्स भी हमने दिखाई, फिर हमने सर को कहा कि आप हमारे सेंटर पे विजिट करिए और
1: जी
2: आइए कि हम क्या क्या कर रहे हैं। तो सर आए यहाँ पे, सर ने देखा कि हमें जो एक्स डीजीपी सर हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं,
3: तो वो रेडी हो गए और फिर उन्होंने खुद ही आशा वर्कर हैं और आंगनवाड़ी वर्कर हैं उनके साथ हम लोगों की मीटिंग करवाई, क्योंकि पहले वो हमें गांव में जाने ही नहीं दे रहे थे, बात ही नहीं करने दे रहे थे, क्योंकि फर्स्ट जो हमारा विजिट था वो सरपंच के साथ था कि हम सरपंच से बात करें कि वहां का कैसा माहौल है, हमें कहाँ बिल्डिंग लेनी चाहिए। तो उन्होंने सीधा मना कर दिया था कि, तो हम भी इतने हताश हो गए थे कि भाई पता नहीं यहाँ पे सेंटर चलेगा या नहीं चलेगा, लेकिन सर के विजिट से, क्योंकि हमने इतना उनको पूरा प्रूफ दिखाया कि हमारे कितने सारे सेंटर्स हैं, सारा उनको डिटेल दिखाया, तो वो एग्री हो गए। फिर अब वो इतना हमें सपोर्ट कर रहे हैं कि पानी की हेल्प कर रहे हैं, उन्होंने हमें फ्री जो जो गांव में पंचायत घर होते हैं वो हमें दिलाया है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी सपोर्ट करवाया उन्होंने, और बहुत सारा सपोर्ट करवाया है, क्योंकि जो ये हमारा कम्युनिकेट है वो देख के कि मतलब कम्युनिटी में हम कैसे काम कर रहे हैं, यहाँ के लोगों से मिले, बात की उन्होंने, तो मैम ऐसे भी उनके डाउट्स क्लियर होते हैं लोगों के। तो जब हम विजिट करवाते हैं, कम्युनिटी से मिलवाते हैं, तो जो डाउट होते हैं जिस बंदे के वो क्लियर हो जाते हैं यहाँ पे
0: बिल्कुल
3: आके। तो हमें
0: बिल्कुल
3: अपने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही वर्क अगले बंदे को दिखाने पड़ते हैं कि हमारे आगे कैसे सपोर्ट मिल रहे हैं हमें और हम लोग क्या कर रहे हैं। थैंक
0: बिल्कुल
3: यू।
0: ठीक बिल्कुल, क्योंकि एनजीओ बहुत सारे चल रहे हैं और शायद सभी एनजीओ का अपना अपना कोई ना कोई स्ट्रेंथ होगा। हमारा स्ट्रेंथ जो शुरुआत में बताया था कि हम जो कमिट करते हैं वो कम्युनिटी को डिलीवर करते हैं, वो हमारी स्ट्रेंथ है। सो थैंक यू वंस अगेन, टाइम बहुत हो गया है, लोग छोड़ के मतलब बैठे हैं अपना काम। सो आई विश एवरीबडी सेफ, बहुत
3: हेलो,
0: बातचीत कहीं हो रही है। सो कौन बोलना चाह रहा है? फरजाना, फरजाना।
3: नमस्ते
0: हाँ जी नमस्ते।
3: मैम। मैं सर के लिए एक थोड़ी सी बात मैं भी बोलना चाहूंगी, क्योंकि मैं भी ऐसे ही एरिया से बिलोंग करती हूँ। वो सर से, सर आप ना टेंशन ना लीजिए, क्योंकि हमको पता है अभी आपका सेंटर नया नया है, और क्योंकि ऐसे एरिया में बहुत से लोग ऐसे भी रहते हैं जो एक दूसरे को कामयाब होते देखते हैं ना, तो उनके उनको देखा देख तो वो खुद को उनके मन में एक एहसास उठता है कि हाँ मैं भी ऐसा कुछ करूँ, क्योंकि बहुत से लोग देखा देख भी आते हैं। तो आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, रीड इंडिया हमेशा बड़ा है और बढ़ता रहेगा, देखना एक दिन बहुत
0: वेरी
3: अच्छा
0: गुड,
3: से बढ़ेगा।
0: थैंक यू
3: जी
0: फरजाना,
3: थैंक
0: थैंक यू। राइट,
3: यू मैम।
0: ऑल राइट, थैंक यू एवरीबडी, स्टे सेफ, एंजॉय, बाय बाय।

आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो। रीड इंडिया समुदाय के सहयोग के द्वारा समुदाय के विकास के लिए कार्य करता है। रीड इंडिया ग्रामीण समुदायों में स्थायी सामाजिक परिवर्तन हेतु शिक्षा, उद्यम और सामाजिक विकास के क्षेत्र में कार्य करता है। आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो।

0: नमस्कार। आज हम मेवात की बात करने जा रहे हैं और मेवात में जो रीड इंडिया का प्रयोग है उसका बात करने जा रहे हैं। और बात करने के लिए हमारे साथ हैं रीड इंडिया की कंट्री डायरेक्टर डॉक्टर गीता मल्होत्रा जी। फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मेवात। मेवात इज ए लोकेलिटी वेयर मेवातीज मोस्टली मुस्लिम्स आर लिविंग। This locality is just 35 kilometers away from Gurgaon, the mega city, and 50 kilometers away from Delhi, in the most developed, growing industrial state of Haryana. And if you go to that state, people are in a pathetic conditions. Most of the truck drivers, the maximum truck drivers that we have, are from Mewat. The rate of illiteracy is very high. Women are not allowed to go to the school and do the proper schooling. The situation of male literacy is also not very prominent. There is a complete sense of ignorance. People don't know how to do, what to do. And there is an inherent history of Mewat. They were the warriors. They fought against the Mughals. And Mughals didn't take care of them. They thought that they are the warriors, they are the looters, they are the nefarious people, they are not the good people, so they were always sidelined by the Mughals. Then came the British. They were the real freedom fighters. You can find many villages in Mewat where in one mound 30-35 men were buried because they were the freedom fighters. In 1857 and also in the later phase of Indian freedom movement, if the Mewat is being properly studied, explored, if the historians are taking interest into it, then you will realize the role of Mewat in the freedom struggles. There are many people in Mewat who often call me and say, Misra Sahab, बहुत सारी चीजें खत्म हो रही है, आप उनके बारे में कुछ कर लो, गीता मैम कुछ कर ले, नहीं तो सारे चीजें खत्म हो जाएंगी, फिर आप क्या करोगे। एंड बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस वी डू व्हाट एवर मैक्सिमम वी कैन डू इन दैट मेवात। रीड इंडिया अंडर द एबल लीडरशिप ऑफ डॉक्टर गीता मल्होत्रा इंटर्ड into that locality where women were not even allowed to talk with the women. The every person outsider was kind of alien for them. They were not allowed, even the male were not allowed to have, you know, proper interactions with them. And with this situation, Dr. Gita Malhotra with her team went there, and they have two things to convince them. Culture matters, number one, and understand that, respect that nativity, the native cultures. With these two things, they motivated the people. They said, we are not outsiders. They ate together. They talked together. They could somehow manage to convince them that we are not alien. We are an insiders. We have come here with the message to improve your lifestyle, the way you want to improve yourself. And that was the power of Dr. Gita Malhotra and the entire team of Reed India and the Reed Global. They changed the world. How do they change the world? That is also a very interesting, Dr. Gita ji will tell you. But I must tell you, after 1 year and so, they happily agreed to donate the land, and they themselves constructed the library. Reed India paid the cost of the library, not the land. And some of them also contributed significantly, nominal, but that contribution was significant. And then the library was made, women started reading. Now the women which were motivated by Read India, they are the representatives of the Gram Panchayat, and they are powerful women. And the new beginning was made, and prevalence of Read India can easily be found in the locality of Mewat. Mewat is now divided into two districts. Initially, it was a Mewat district. That was Firozpur, Jhirka, Nuh, Tavru, Punahana, Hathin, and Nagina. Now, the Hathin part is in Palwal district, and remaining is in the Mewat district. So before I go to invite Dr. Geeta Malhotra ji to talk about her experience and the experience of Read India, her innovations and everything that she did. Now, without any delay, I would request Dr. Geeta Malhotra, the country director of Read India, the visionary, the leader, the master. She is a proper leader who works 24/7. And this is, remember one thing, I am not exaggerating. I have been feeling her commitment. I am the witness from last 12 years, what she has been doing and how she has been motivating, energizing, emotionally evaporating the people who have been working with her. So Geeta ji, aapka bahut bahut swagat hai. Humne chaha tha ki log jo hai wo dekh le ki aap kaise karti hai. Aapka presence, I have seen people is teaching their vision, decision and future. I have seen women reading and writing. I have seen women, you know, using the library. I have seen people using the computer. I have seen women reading. So, you know, this is a new discovery that you have created. Please.
1: Thank you. Thank you, Dr. Mishra, for such a elaborate description, which I don't need at all. But I am so thankful to you for giving this gesture to me. You know that I am very simple, very introvert person, but I do believe in doing. I do believe in action. That's what you have narrated. Thank you so much. मेरा जो सोच है, आप मुझे अपने 5 मिनट की एक्सप्लेनेशन में 2012 में ले गए मुझे. 2012 में जब मैं रीड ग्लोबल की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और रीड ग्लोबल के साथ बात कर रही थी, 2012-14 कुछ ऐसे ही है, मुझे पक्का याद नहीं है, बट हाँ 7 साल पहले की बात है. मुझसे टीना श्याबिका हमारी उस समय एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थी. शी वॉज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर दैट टाइम एंड द ईयर शी जॉइंड शी केम टू चाइसा विलेज टू डू द स्टोन लिंग सेरेमनी ऑफ द कम्युनिटी लाइब्रेरी एंड रिसोर्स सेंटर. शी केम इन मे. इट वॉज वेरी हॉट एंड आई टुक हर टू चाइसा फॉर स्टोन लिंग सेरेमनी. But before stone laying ceremony, she asked me that, Geeta, one of my very close friend settled in Singapore would like to dedicate one of the library in her mother's name. Her mother was live. She's live now also. But she said, ki, I would like to build a community library, but let me know the area, the geography, who need the most. That time back home, I was interacting with Mewat people, the stakeholders there, and Asif Ali, who was the sarpanch that time, came to my house in Gurgaon and said that, Geeta ji, we need the most. Hamari community ko bahut zarurat hai. Agar aap wahan aake study karein, जो डॉक्टर मिश्रा ने स्टडी करी, तो आपको पता चलेगा कि कितनी जरूरत है. तो आई वॉज कन्विंस्ड. आई विजिटेड द एरिया. आई सैट विद हिम. आई सैट विद अदर मेवाती स्टेक होल्डर्स ऑन द ग्राउंड ऑफ हिज हाउस, द लैंड. आई वॉज द ओनली वुमेन. ऑल वर मैन. बट आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट that I have to come back again in this area. I have to work in that area. Mujhe wahi kaam karna hai. Mujhe unhi logon ke saath kaam karna hai. Because one thing which I experienced, because I am a great observer for culture and attitude of the people, they gave me lot of respect. Lot of respect. First time, the woman came in one room, they gathered. They did not come out where I was sitting with the stakeholders. They told me later on that the women are waiting inside the room. When I went inside, there were more than 100 women sitting in just in each other's on each other's lap, and they welcomed me. They said, "Hum aapko dil se swagat karte hain aur aapka bahut bahut welcome hai. Aap hamare liye, hamare bachiyon ke liye, hamare bachchon ke liye, hamare samuday ke liye kuch kariye." That changed my mind 100%. I said, whatever challenging it would be, but I have selected a community. Next very day, I called my executive director in US and said, I have found a community where I would like to set up a community library and resource center. Then I started working there. And that Singapore friend of my executive director committed that she will come on the inauguration of the building, which was great, great emotional attachment with the building, which I'm going to show you the inauguration also. Then we did the stone laying ceremony. Asif Ali had a house on the main road of Hathin block in Chansa village. He said, ma'am, the whole land, whole building is for you. You decide what you want to take. Then I said, okay, main road part I will not take because the children will come. It will be risky for them to cross the road and come through the main road because it was part of the highway. I said, give me the backyard. And he divided completely half of his land. उन्होंने वो प्रोग्राम देख भी रहे होंगे जरूरी, मैंने उनको लिंक भेजा है. एंड ही वो इतने जेनरस थे, मैं ये एक्नॉलेजमेंट हिंदी में बोलना चाह रही हूँ उनके लिए. वो इतने जेनरस थे, उन्होंने अपने प्लॉट की जो लंबाई थी उसको बिल्कुल आधा करके उसमें दीवार बना दी और बोला, ये पीछे वाला लैंड आपका, आप जो मर्जी करिए, आप बिल्डिंग आप सेंटर बनाइए, मेरी 100% सपोर्ट आपके साथ है. तो दैट वाज द कमिटमेंट ही गेव मी एंड आई वाज सो कॉन्फिडेंट एंड ही स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन एरिया. मैं मिस्टर आर एस दलाल का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी इस फोरम पे, क्योंकि ही वॉज द वन हु एनकरेज्ड. ही इज द रिटायर्ड पुलिस कमिश्नर ऑफ हरियाणा. व्हेन बिफोर द बिल्डिंग वॉज यू नो इनॉग्रेटेड, आई वेंट टू हिम एंड आई सेड, सर आपके एरिया में हमने एक कम्युनिटी लाइब्रेरी एंड रिसोर्स सेंटर बनाया है और मैं आपको इन्वाइट करने आई हूँ कि आप उस बिल्डिंग का इनॉग्रेशन करिए. एंड ही वेलकम दिस अपॉर्चुनिटी और उन्होंने बिल्डिंग का इनॉग्रेशन किया और दैट वॉज द जर्नी वी स्टार्टेड फ्रॉम देयर एंड दैट वॉज ग्रेट ग्रेट स्टेप फॉरवर्ड फॉर अस बिकॉज एट द बैक ऑफ अस उनका हाथ था, उनका आशीर्वाद था, उनकी सपोर्ट थी और आज तक हर रोज जो एक मैसेज वो नहीं भेज लेते हमें एनकरेजमेंट का, वो आराम से नहीं बैठते हैं. तो मैं उनकी एसोसिएशन को यहाँ पे एक्नॉलेज करना चाहती हूँ. और उन्होंने खाली हथीन ब्लॉक में हमारे सेंटर को इनॉग्रेट नहीं किया, हरियाणा में हमने जितने भी सेंटर बनाए हैं उन्होंने उनको इनॉग्रेट किया है, क्योंकि वो दिल से बोलते हैं, दिल से वो रीड को अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि ग्रास रूट्स की के साथ जुड़ी हुई एक संस्था है जो काम करती है और लोगों को साथ लेके चलती है, लोगों के दिलों तक पहुंचती है अपने कार्यक्रम से, ये वो बहुत अच्छे से जान गए हैं. तो डॉक्टर मिश्रा, अलोंग विद यू आई वुड लाइक टू एक्नॉलेज मिस्टर आर एस दलाल ऑन दिस प्लेटफॉर्म बिकॉज ही सपोर्टेड अस अ लॉट एंड टिल टुडे ही इज सपोर्टिंग अस. तो आपने लॉन्च में
0: He is a bubbling star, an energized, you know, he is an energizer. He is emotionally charged. He makes you work and work for the community. That is the power that we have learned from him. He has donated his entire Haveli for the Reed activities, you know.
1: तो झज्जर उन्होंने कैसे हमें अपनी पूरी हवेली दे दी कि गीता जी एक सेक्टर मेरी कम्युनिटी के लिए भी बना दीजिए. तो दैट इज जेस्टर ही एक्सटेंडेड टू अस अंटिल नाउ ही इज वर्किंग टुवर्ड्स मेकिंग दैट झज्जर विलेज, मेहंदीपुर विलेज, दबोदा विलेज अ ब्यूटिफुल विलेज वेयर वन कैन गो एंड इवन यू नो स्पेंड डेज टुगेदर. The community is so, welcoming, and the plants, the gardens he has created there, it's worth visiting that place also. So, मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूँगी कि Reed India के जितने भी सेंटर हैं, वो community tourism को भी support कर रहे हैं, because homestays are welcomed there by the communities, and we always make it a point that people come there and होमस्टे तो है ही है, पर जो खाना वो लोग हमें परोसते हैं, जो खाना हमें वो खिलाते हैं घर में बिठा के, घर में फ्रेश खाना कुक करके, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी वेलकमिंग आई शुड से दैट. और आसिफ अली जी के घर में तो मैंने कम से कम 100 बार ही खाना खाया होगा. उनके घर में उनकी वाइफ को मैं नहीं मिल पाती थी, पर उनके ड्रॉइंग रूम में बैठ के खाना जरूर खाती थी. इतना तो मैं कह सकती. और मैं वेजिटेरियन थी, और उनके घर में तो नॉन वेज इट्स अ कल्चर देयर, आई शुड से दैट इट्स अ पार्ट ऑफ द कल्चर. बट व्हेन आई यूज्ड टू गो विद माय टीम, स्मिता राय, नाहिद जुबेर एंड अदर्स, ही मेड इट अ पॉइंट कि दो डिशेस तो वेजिटेरियन होनी ही है, क्योंकि स्मिता और मैं दोनों ही वेजिटेरियन थे. तो ये हमारी बिगनिंग थी मेवात में चाइसा के सेंटर के साथ. और अभी डॉक्टर मिश्रा, यू कैन से समथिंग अबाउट द बेसलाइन.
0: जब आपने मुझे बोला कि डॉक्टर मिश्रा हमें मेवात में काम करना है, तो मेरी एक आईएएस फ्रेंड हुआ करती थी डॉक्टर निरुपमा, अनुपमा. तो जो डॉक्टर अनुपमा थी, शी वाज एन आईएएस ऑफिसर और शी वाज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ मेवात डेवलपमेंट एजेंसी, व्हाट यू कॉल इट, एमडीए. और उस समय बाद में जो भारत के उपराष्ट्रपति बने अंसारी साहब, उनकी पत्नी भी मेवात में कुछ काम करना चाह रही थी. सी ऑल्सो टोल्ड मी डॉक्टर मिश्रा लेट अस गो टू मेवात एंड डू समथिंग देयर. मैं दोनों के साथ मेवात गया और मैं आपको और अपने दर्शकों को बहुत ही विनम्रता और निष्ठा पूर्वक, ईमानदारी पूर्वक कहना चाहता हूं कि मुझे हिम्मत नहीं हुआ मेवात में काम करने का. लेकिन जब डॉक्टर गीता जी हमको बोली कि डॉक्टर मिश्रा हमें मेवात में काम करना है, तो पता नहीं मुझे कहाँ से एनर्जी मिली और मैंने कहा कि मैम लेट अस वर्क देयर. और हम वहां गए. जब हम वहां गए तो मैं एक महिला से मिला और वो महिला अनाज को फैला रही थी. उस महिला के साथ उसके 17 बच्चे थे, जो फोटोग्राफ मेरे पास है. तो और And she was expecting one more baby. उसके बाद मैंने देखा वहां का सिचुएशन, वहां की गंदगी देखी, वहां का बहुत सारी चीजों को हमने देखा. Then I realized कि ये एरिया है जहां पर काम करने की जरूरत है. हमने उनके नमाज में भाग लिया, उनसे दोस्ती की और हम वहां पे काम करने लगे. शुरू में थोड़ा सा हुआ, लेकिन बाद में वो हमें इतने प्यार करने लगे, खास करके अशरफ जी, आसिफ जी और सारे लोग, पूरे गांव के लोग, महिलाओं को, वहां के लोगों को, वहां के बच्चों को, स्कूल के शिक्षकों को, उनको लगा कि ये लोग अपने लोग हैं. और हमने उनकी सारी जानकारी ली. वहां पे हर एक घर में 2-4 भैंस है और एक जो दूध वाला होता है जिसको दूधिया कहते हैं, उनसे भी उनका एक्सप्लॉयटेशन होता था. उनके दूध को बहुत ही थ्रो अवे प्राइसेस में खरीदते थे. हमने सारा रिपोर्ट इसमें क्या किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता है. उसके बाद जो गीता जी ने कहा कि एक प्रपोजल आया, और वो प्रपोजल 2011 में ही आ गया था मैं, और 12 में वो बन गया था. तो वो प्रपोजल आया और गीता जी वर्क डे एंड नाइट वो एक विजन ही कह सकता है कि अगर कोई दूसरा कंट्री डायरेक्टर होता तो रोड के साइड का ही जगह ले लेता। लेकिन गीता जी एक बहुत बड़ी बात इन्होंने कहा कि ये इन्होंने कहा कि हमें रोड के साइड का जमीन नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? मदर वॉज हिडन इन साइड हर एंड द मदर से लुक, बच्चे एक्सीडेंट में कुछ हो सकता है, बच्चे सुरक्षित नहीं रहेंगे, तो पीछे का वहां भी रास्ता है, पक्की रास्ता हो गया है लिया और वहां पे काम शुरू करने लगे। बाद में धीरे धीरे लोगों का सपोर्ट मिला और लोगों ने ये महसूस किया कि रीड जो है ये रीड कोई राजनीतिक संस्था नहीं है, कोई धर्मांतरण की संस्था नहीं है, कोई पॉकेट की संस्था नहीं है, यह कमिटमेंट की संस्था है। इस संस्था में ज्यादातर महिलाएं हैं जो बहुत मातृस्नेह के भाव से काम करना चाहती है। और वैसा ही जिस तरह से ये कहने की तो जरूरत है कि गीता जी ने बहुत ही मातृभाव से अपनत्व को लगाते हुए वहां पर काम करना शुरू किया, लेकिन उनका जो रिस्पॉन्स था उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। और उससे हमें ये लगता है कि इफ यू वर्क ऑनेस्टली नो मैटर, आप दुनिया के किसी भाग में काम करें, लोग आपको उसी समर्पण से आपको रिस्पॉन्स करेंगे, आपको गिव बैक आपको मिलेगा, आपको रिटर्न मिलेगा। वो जो कंसेप्ट था वो गजब कंसेप्ट था और वो आपने देखा।
1: Over to Smita. Thank you, ma'am. Thank you, Dr. Mishra. As rightly said, it's a very, very rich culture in this community. Very, very warm, welcoming community.

0: Skills to Succeed program in this area, and skilling women on enhancing their livelihood skills. We are having programs for mother and girl child literacy in this community. So each household have one mother and her girl child get coming to the center and walking towards a more literate future. So this is beautiful Mewat for us as far as culture is concerned. They have very beautiful crafts such as they make changeris, the baskets made out of moong grass. This grass is eco-friendly and it helps in keeping. They normally use it to store food. Like, we have covered more than 12 villages as Kamlesh is rightly.
1: Thank you, Smita. जैसा कि स्मिता ने कहा, literacy से लेके बच्चों की पढ़ाई से लेके महिलाओं की पढ़ाई तक हमने काम किया. महिलाओं को हमने सक्षम बनाया, उनकी जो कल्चरल स्किल्स थी उसको एनहांस किया. और कल्चरल स्किल्स को एनहांस करने के लिए अब रीड तो बहुत छोटी सी संस्था है, तो हमने सृष्टि स्कूल ऑफ डिजाइन से ग्रेजुएट्स मंगवाए जो डिजाइनिंग ग्रेजुएट्स थे, और उन्होंने मेवात में लाइब्रेरी में रह के रात को वहीं बिस्तर बिछा के सोना और महिलाओं के साथ चर्चा करनी, और महिलाओं के जो हुनर था, जो छिपा हुआ हुनर था, उसको उभारा. और उन्होंने इतने सुंदर प्रोडक्ट्स बनाए, जो दरी था और तापर से उन्होंने बास्केट्स और बहुत सारे हमारे गिफ्ट आइटम्स बनाए जो हमने कॉर्पोरेट्स को गिफ्ट दिए, बिकॉज हमें फंड रेज भी करना था. और मेवात के लिए फंडिंग लेना एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे लिए. पर मैं उन डोनर्स का भी शुक्रगुजार करती हूँ जिन्होंने हमारे कॉन्ट्रीब्यूशंस को, हमारे कमिटमेंट को रिकग्नाइज किया. और सीरीज ऑफ डोनर्स आए जिन्होंने हमें अभी तक सपोर्ट कर रहे हैं मेवात में काम करने के लिए. तो ये एक मैं ये भी शेयर करना चाहूंगी, बिकॉज वर्क स्पीक्स वॉल्यूम. जब हमने काम किया, डोनर्स ने अप्रिशिएट किया, और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंडर एक साल का एमओयू साइन होता है, और कुछ ऐसे डोनर्स हैं जो हमारे साथ पिछले 5 साल से काम कर रहे हैं उस एरिया में. बहुत सारी संस्थाएं काम करती हैं मेवात में. मैं सबका बहुत ही मतलब कि आई नो देम वेरी वेल, दे आर डूइंग एंड आई एम अप्रिशिएबल ऑफ देयर वर्क ऑल्सो. बट एट द सेम टाइम गोइंग टू द ग्रास रूट्स, catching their culture, understanding their attitudes and bringing value to their lives was what Reed has done. These are the 3 major achievements we have done in this area. Dr. Mishra, would you like to add something here, what I have said?
2: Without any political motive, Reed has gone there as an organization to work. Without any political motivation, without any political inclination, without any interest. The only interest was to see that people are raising their social economic status, their livelihood. They are well respected people, well educated people, well cultured people. Their culture glory is restored. So these the women are well respected. There is a continuous harmony, visible harmony between men and women, between husband and wife. So these are the things that are clearly visible, tangibly see. People can go and view. That is the USP of working Reed in the Mewat, area. That is really very, very great.
1: Memory goes back when we saw. पावर तो है ही नहीं, तो कंप्यूटर कैसे सीखेंगे बच्चे?
2: Yes.
1: Oh, power, how they will read the books. Then we requested Bill and Melinda Gates Foundation. They gave us a special grant to put solar panels in the areas where we are facing problems with regard to the power. So you could see in the film also, we put solar panels on top of the building so that

0: 24/7 there is a power in the library, and there is no power cuts, and the children can come, enjoy, sit there, talk to each other, learn from each other, study the books, and 50% of the books are in their own language. Because we did not want to put the book they cannot touch, they cannot read.
1: बिगावली की रहने वाली हूँ और ताराक्षर में मैं जुड़ी हुई हूँ। मेरे को पढ़ने लिखने में बड़ा मन लग रहा है, अच्छा लगता है। ऐसा है कि हमारे पास में ताराक्षर का अध्यक्ष लेके आए थे सुनील कुमार, तो इन्होंने कहा कि अब पढ़ाई कर लो। हमने कहा ऐसे बुढ़ापे में क्या कौन पढ़ावेगो, कौन पढ़ पावेगो। उसने कहा नहीं जी, कोशिश करके देखो एक बार। तो हमने कोशिश करी तो हमको अच्छा लग रहा है, पढ़ने में लिखने में हमारा मन भी लग रहा है। प्रयोग हम तो हर जगह पे कर लेंगे, कोई हिसाब है, किताब है, घर का धंधा है, घर के बच्चे हैं, है, घर की पढ़ाई है, काम है, कोई भी दूसरा सब में काम आती है पढ़ाई, मतलब ठीक है क्या ना, हर चीज में आती है। अब छोटे छोटे बच्चे भी रहते हैं, उनको भी बैठा के पढ़ा सकते हैं, बच्चे ये है हर को इसे पढ़ो, ये पढ़ो, ये करो, वो करो।
2: पहले भैया हमने इसलिए पढ़ा, मान पढ़ते तो हमने आवाज दी कि भैया हम पढ़ लिख जाएंगे तो हम बैंक में भी काम करते हैं, चाहे घर पर करते हैं, आदमी का नाम भी लिखने सीख जाते हैं, अपनों भी सीख जाते हैं, बैंक में जाते अपने पैसा निकाले तो अपने हिसाब करे आते हैं बैंक में जाके। इसीलिए हम भैया के विश्वास पड़े थे, यही बारे हम अनपढ़ते थे, भैया पढ़ा देंगे तब इससे सीख जाएंगे।
1: मेरा नाम गजना है और हमारे ये भैया आए पढ़ाने के सुखवीर सिंह, और इनने पढ़ाई पूछी कि तुम पढ़ सको। एक बार आए, दो बार आए, तीसरा के हम बोले अब तो हम पढ़ेंगे। जब ये भैया पढ़ाने लगे यहाँ स्कूल खोल दी हो तो आगे पढ़ाने।
3: आपको क्या फायदा हुआ इससे?
1: अब हम सीखने लग गए, जो भी हम पे आ गए यहाँ पे देख देख के चैट में, पहले हम पे आ गई ना हो कुछ तो हम नाम भी लिख लें, अब हम अपने काम कर ही ले जाइए। भैया बताऊं सर्वे और पढ़ से पढ़ना चाहते, अपने बच्चे ने पढ़ा ले, घर का काम कर ले, कोई काम काज आ जाए उसे कर ले, और सेंटर आ जाए कोई काम आ जाए, इसलिए सीख लूंगी कुछ तो कुछ काम कर बैठूंगी। परेशान आदमी आंगनबाड़ी लग जाए या कुछ सिलाई में लग जाए, कुछ भी काम जो तुम खिलाओगे वो करने पे जाने।
4: ये सरदार सुखवीर पढ़ाने आवे, हम लोग हम न पढ़े पर दो बार आए तीन बार आए, हम बोले हम पढ़ेंगे, हमको पहले कुछ नहीं आवे, हम नाम भी लिख ले और जो काम दे पूरा काम कर ले।
5: हम पता एन आर भी ना आवे अब तो एन आर ने भी सीख ले। अरे बेचारा आया पढ़ने सुखवीर, कहने लगो ना भाई लाली पढ़ लियो, माता जी पढ़ लियो, हम बोले हम ना पढ़े, हम बुढ़ाते में कहा पढ़ेंगे। तो बेचार कई बार आया, फिर हम पढ़ने लग गए, कई सीखो हमने पढ़ना, हम पे अनार भी ना आवे, तो या भी सीख गए, नाम भी सीख गए अपना।
6: मेरा नाम अंता है, आप सभी को मेरा नमस्कार, और मैं ताराक्षर में पढ़ती हूँ। पहले इन लोगों ने आकर हमारे गांव में सर्वे करी थी, हमने जाने क्यों कर रहे हैं, और जब हमारे सब आई थी तो हम पढ़ाई करने लगे, पहले हम पढ़ाई नहीं जानते थे, और अब इससे पढ़ते नहीं हम पढ़ना सीखे हैं, और इससे पढ़ने से हमें बहुत कुछ आने लगा है। और हमारे गांव के अंदर तीन ताराक्षर एक ज्ञान चौपाली खुली हुई है, और हम बचत पढ़ते हैं सभी, और उसके बारे में भी जानते हैं, पहले जानते नहीं है कुछ।
7: मेरा नाम भगवती है, मैं स्वामी की रहने वाली, मुंह पे कुछ भी नहीं आता है, मैं अक्षर समाज जान गई नाम हाँ अक्षर जान गई हूँ, मैं अक्षर समझ गई, नाम लिख लेती हूँ।
8: मेरा नाम रजनी है, मैं स्वामी के की रहने वाली हूँ, मैं पहले से कुछ नहीं जानती थी और यहाँ पे बैठ के बहुत कुछ पढ़ चुकी हूँ और बहुत कुछ जान सकती हूँ।
9: मेरा नाम आशा है, मैं स्वामी के में रहने वाली हूँ, मुझे तारा अक्षर से जुड़कर बहुत अच्छा लगा, हम पर पहले अपने साइन भी करने नहीं आते थे, हम पर साइन कर सकते हैं, अक्षरन की पहचान कर सकते हैं।
10: मेरा नाम सरस्वती है, गाँव रिहौली में तारा अक्षर का स्कूल खुला है, ये लोग आए तो कहने लगे हम पढ़ाएंगे, हमें अपनी गाँव की बात समझ में आई और पढ़ाई लिखना शुरू कर दिया, ये इनसे पढ़ के हमें बहुत नॉलेज मिली और बहुत ही ज्ञान प्राप्त हुआ, हम कुछ भी नहीं जानते थे, और ये गांव के अंदर जो समूह खुली रहती है
3: उनके बारे में कुछ नहीं जानते, बैंक में जाते थे पैसे भरना निकालना कुछ नहीं जानते थे। अब हम खूब पैसे भी निकाल लेते हैं, फार्म वार्म भर देते हैं। पढ़ाई से ये फायदा है कि अपने बच्चे जहाँ भी कहीं पढ़ने जाते पहले कुछ नहीं जानते, उसकी किताब कापी वगैरह देख सकते हैं क्या लिखा है। कहीं हम भी काम करते हैं तो हमारे लिए पैसे वैसे मिलते हैं तो हमें पता नहीं लगता था कितने दे रहे हैं कितने नहीं दे रहे हैं, तो अब हम उसे पढ़ के बता सकते हैं।
11: अपना नाम कांति।
12: कौन से गाँव से हैं?
11: छाए से।
12: तो आपको पहले और अब में क्या फर्क नजर आ रहा है?
11: इतना फर्क है, पहले 100-200 रुपया का हिसाब लगा सके, अब हम 500 रुपए तक हिसाब लगा लें। पढ़ाई इतने जब थोड़ी बहुत पढ़े, अब थोड़ी बहुत अक्षर हम मिला के मात्रा मिला के सब कुछ अब हम कर लें, मात्रा लगा दें, डंडा लगा दें।
13: मेरा नाम मीना है, छह से रहने वाले। पहले कुछ ना बनाओ, अब हम लिखना पढ़ना थोड़ा बहुत आन लगो, हिसाब जोड़ 100-200 रुपया है 500 है उन्हें भी जोड़ सके।
14: मेरा नाम बबीता जी है, छह से रहने वाली। पहले कुछ नहीं आता था, अब बहुत कुछ सीख गई, बहुत अच्छा लगा पढ़े के। इन्होंने नीतू जी ने बहुत अच्छा सिखाया हमें, लोग किसी की बात अच्छा पढ़ा लिखना।
15: हम चार तारा सर में ट्रेनिंग ली थी हमने, जो कि मतलब अनपढ़ लोगों को पढ़ाना जन अक्षर होते हैं, अब वो पढ़ लिख थोड़ा बहुत पढ़ने लिखने जान गई है और अपना नाम लिखना सीख गई है, अपने गाँव का नाम कहीं भी आ जा सकती है, हिसाब किताब लगा लेती है। इस प्रोग्राम से जुड़कर बहुत अच्छा लग रहा है इनको भी और हमको भी।
16: तो सबसे पहले हमने औरतों को मोटिवेट किया पढ़ने के क्या क्या फायदे होते हैं, उनको मैंने फिर क्लास में बुलाया। बिगाड़ी में मेरी ड्यूटी है, वहाँ पे मैं 3 बैच चलाता, वहाँ पर 10-10 महिला आती है, प्रत्येक बैच में 10 महिला होती है, बहुत ही अच्छी तरह के वो पढ़ रही है और उनसे मैं बातें करता हूँ। अगर किसी को प्रॉब्लम होती है मैं उनके घर जा करके, अगर कोई मना करता है तो उनके घर जा करके परिवार वालों से मिलता हूँ और उनसे समझाता हूँ पढ़ाई के फायदे क्या होते हैं, तो वो भी क्लास में आ जाती हैं। ऐसी कोई परेशानी नहीं है, हम तो बहुत खुश हैं इसमें आकर।
17: ताराक्षर जो कार्यक्रम है बहुत अच्छा कार्यक्रम, क्योंकि हम इसमें जो निरक्षर महिलाएं उसको साक्षर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। ये कार्यक्रम अभी अम्बेवात इलाके के 3 गाँव में चला हुआ है, छायसा, बिघावली और स्वामी का। इसमें लगभग 90 से 100 महिलाएं इसका लाभ उठा रही है इस कार्यक्रम का, और ये तीनों गाँवों में कार्यक्रम चल रहा है। प्रत्येक गाँव में 3 बैचेस चलते हैं, इसे कुल मिला के 9 बैचेस चलते हैं और ये कार्यक्रम बहुत अच्छा है। पहले जो महिलाएं बोल नहीं पाती थी किसी के सामने, आज अब वो महिलाएं बोलने लगी हैं और अपने आप पे आत्मनिर्भर हो गई हैं और वो किसी के सामने भी खुलकर उनको जवाब देने लगी, अच्छे से बोलने लगी है। और वो पहले उनपे कुछ भी नहीं, लिखना पढ़ना कुछ नहीं आता था, अब वो क्या नाम है पढ़ने लगी हैं, लिखने लगी हैं, अपना खुद का नाम लिख सकती है, पति का नाम, अपने बच्चे का नाम और अखबार भी पढ़ने लगी हैं। इस कार्यक्रम से महिलाएं बहुत ज्यादा खुश हैं और हम सभी खुश हैं कि ये कार्यक्रम हमारे इस पिछड़े इलाके मेवात में चलाया जा रहा है।
18: मैं पूरे अपने गाँव की औरतों से, बड़े बूढ़ों से ये एक मैसेज देना चाहता हूँ, जो भी ये स्कीम है, जो भी संस्थाएं यहाँ आ रही हैं, वो हमारे गांव के विकास के लिए, हमारे गांव के हित में, हमारे गांव को अच्छा समझ के इस गांव में वो काम कर रही हैं। इसमें हर एक जन जन को इसमें जुड़ना चाहिए और इनका सहयोग करना चाहिए। मैं गीता मल्होत्रा जी का और मैडम मई जी का तह दिल से अपने गांव की तरफ से, अपने तीनों चारों गांव की तरफ से बहुत बहुत दिल से, तह दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और इनका एहसान मंद हूं कि इन्होंने इस कार्यक्रम के लिए हमारे गांव और हमारे अड़ोस पड़ोस को चुना।

0: Wonderful, wonderful. So much to be shown. We have so much of content to be shown to the audience, but the time is so short that we have to move further also. इसके अलावा आप कमेंट्स में भी पढ़ रहे हैं कि मेरी टीम लिखती जा रही है कि हमने क्या क्या और काम किया है. तारा अक्षर के अलावा हमने स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एक कार्यक्रम किया यहाँ पे मैजिक बस के साथ मिलके, क्योंकि हमें उनके एटीट्यूड को बदलना था कि हमें लाइफ स्किल्स सिखाने थे. अगर हम लाइफ स्किल्स की बात करें तो वो डायरेक्टली ट्रेनिंग लेने नहीं आते थे. हमने स्पोर्ट्स के माध्यम से यूथ को लाइफ स्किल्स सिखाए कि कैसे एक लड़की लड़के की इज्जत करती है और लड़का लड़के की इज्जत करता है, कैसे फैमिली में हम एक एल्डर्स की रिस्पेक्ट करते हैं, बच्चों की देखभाल करते हैं. तो ये हमने स्पोर्ट्स के माध्यम से अपनी कम्युनिटी को सिखाया था. और इन सब कार्यक्रम को बंद करने का दिल नहीं करता है क्योंकि बहुत बहुत जरूरत है. मैं कहती हूँ जितनी भी पॉपुलेशन है मैं बात की, उन सबको इन सब प्रोग्राम्स की बहुत बहुत जरूरत है. इसके आगे की जर्नी में हमने औरतों को स्पिनिंग सिखाई, धागा लेके कैसे धागा बुनते हैं ये उनको सिखाया, चरखा कैसे चलाते हैं, उस धागे से कपड़ा कैसे बनता है, उस कपड़े की सिलाई कैसे करते हैं, ये पूरी जर्नी हमने कंप्लीट करी. यहाँ पे ब्लॉक प्रिंटिंग कैसे करते हैं, यही सोच के सब कुछ किया कि कभी औरत को काम करने की जरूरत पड़े तो वो अपने हुनर को निखार सके और अपने हुनर को पहचान सके और अपने बुरे टाइम पे इस हुनर को यूज करके अपनी आमदनी को इंक्रीज कर सके. यही हमारा सोच थी और कॉन्ट्रीब्यूशन था. अभी हम छायसा से आगे तारू में जाएंगे. तारू में हमने एक और सेंटर लॉन्च किया था तो हमें Amazon ने सपोर्ट किया था. आई वुड लाइक टू शो दैट फिल्म डॉक्टर मिश्रा रीड इन तारू.
1: इस फिल्म के में जो अभी हमने दिखाया उसके बारे में एक चीज मैं गीता मैम ये कहना चाह रहा हूँ कि जो परिवर्तन आपने देखा वो तो हुआ. सबसे बड़ी बात है कि जो समाज को ये भी, जिस महिलाओं को ये भी नहीं मालूम था कि हम अपने पैसे को कैसे रखें, क्या करें, कहाँ रखें, उनको न्यूमरेसी लिटरेसी का ज्ञान हो गया. इतना ही नहीं, आपने देखा होगा उनके कपड़े साफ हो गए, उनमें हाइजीन का सेंस आया, उनमें हेल्थ और क्लीनिनेस के प्रति एक बहुत बड़ी जवाबदेही का है ना निर्माण हुआ. तो ये जो छोटे छोटे विजिबल चेंज है, तो कहते हैं स्मॉल इज ब्यूटीफुल, ये चेंज अगर आप डे वन से उस दिन तक को देखें तो महिलाओं में जो स्वच्छता, निर्मलता, लिटरेसी न्यूमरेसी, काउंटिंग करना, ये सब चीज में, और एकाएक सारे महिलाओं के चेहरे पे एक गजब ही नैसर्गिक हंसी, उल्लास का भाव था जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है.
2: Partnered with Read India in 2015 to set up Amazon Care Community Outreach Centers in Taulu in the villages Chamwar, Dingaveri and Gujarat. Through these centers, we are covering 5 villages, including Nihalgarh and Sheikhpura. The center focuses on education, women empowerment and livelihood, skill development and entrepreneurship, and health awareness and advocacy. We do focus on education by designing programs on improving reading and writing habits of children, studying in government schools, training Anganwadi teachers on teaching small children through playful activities, and the same activities are repeated at the Reach Center. We have a library with more than 1,000 books where children, youth and other community members come and have access to books for reading and reference. We conduct classes to enable youth for competitive examination and do career counseling. Solar panels for regular and uninterrupted supply of power. We have special workshops with women on women empowerment and provide them a safe space to learn, teaching and feeding to start with and enable them to learn how they can start their small enterprise and also collectively join the group for working together to reach center. We have also designed the programs to make them learn financial and adult literacy. Women have started moving out from their villages to other read centers and also to other organizations to learn from other women how they are involved in these programs and enhance their networks. Job-oriented workshops are organized for youth, girls and boys, to focus on their future careers and learn specific skills for suitable jobs. Farmers' meetings are conducted on a regular basis with planned visits to other parts of Haryana, including meeting with government officials so that they themselves realize where they are and where they have to reach in relation to profit-making agribusiness they can do. Health intervention is the important component. We do regular workshops on best practices and also partner with other organizations to organize health camps. Audio workshops are being organized at the center to enable youth one voice modulation, and exposure visits are done at community radio stations. Various visuals are displayed at the centers, Anganwaris and the villages to constantly remind the villagers about best practices. Women and men are understanding the gaps in their lives and uniting together for the progress of their villages, and also focusing on their children's growth by creating positive environment at the Reed centers and at their homes. Reed India and Amazon Care work closely with local government, completing the collective efforts. Within 1 year, this partnership was extended to another village, Tamaspur in Sonipat. The center is repeating the same activities through effective community mobilization, effective involvement of the school teachers and other stakeholders.
3: एक दिन ज्योति ने बताया कि यहाँ सिलाई सेंटर गांव में आया हुआ है जो रीड इंडिया एंड अमेजोन मिलकर चला रहे हैं, तो मैंने आके देखा कि यहाँ सिलाई हो रही है और सिलाई का काम ज्योति सिखाएगी। तब मैंने ज्योति से बात की कि मुझे भी सिलाई सीखनी है, तब ज्योति ने सिलाई सिखाई मुझे, तो मैंने 3 महीने तक सीखी। और फिर मैंने देखा कि यहाँ पे कार्यशाला भी होती है, जो फार्मर भी की भी मीटिंग्स हुई, हेल्थ वर्कशॉप भी हुए और पढ़ाई के बारे में बताया, आगे कैसे बढ़ते हैं, सरकारी नौकरियों के बारे में भी बताया। तब मैंने 10वीं के ओपन पेपर फॉर्म भरे और अपनी पढ़ाई चालू की फिर से, और फिर आगे मैं पढ़ना चाहती हूँ।
4: मैंने सिलाई सीखना मुझे बहुत फायदा हुआ और मैंने देखा कि मैं अपने भी कपड़े सिल सकती हूँ और दूसरों के भी, और इससे मुझे बहुत फायदा हुआ है।
5: मैं रीड अमेजोन सेंटर में लाइब्रेरी कम कंप्यूटर की जॉब कर रहा हूँ। मेरे को इस बात की खुशी है कि मैं यहाँ बच्चों को सिखा पा रहा हूँ और उनके साथ कुछ सीख भी पा रहा हूँ। यहाँ पे रीड की तरफ से बहुत सारे प्रोग्राम कार्यशाला की जाती है, जैसे इस्लामी सर ने कैरियर गाइडेंस के बारे में बताया, उस प्रोग्राम से बच्चों ने कुछ सीखा और साथ में मैंने भी बहुत कुछ सीखा है।
6: रीड इंडिया अमेजोन की तरफ से जो सेंटर चल रहा है, इसमें मैं जो छोटे बच्चों का ईसीडी का सेक्शन है वो देती हूँ। यहाँ सेंटर पे नई नई एक्टिविटी होती है, जैसे हेल्थ की भी हुई है या खेलों के बारे में भी होती है, तो उसमें भी क्योंकि मैंने खुद भी बीए करके बीएड की हुई है, तो उससे मेरे को भी बेनिफिट मिल रहा है कि यहाँ को क्या करके कोई मीटिंग हो रही है तो उसमें मैं भाग ले रही हूँ, तो उससे मेरे को भी कुछ बेनिफिट मिलेगा।
7: मैंने परंतु करने के बाद जेबीटी किया है और सरकारी नौकरी के लिए स्टेट हरियाणा का एक टेस्ट होता है, वो क्लियर करना जरूरी है। वो क्लियर करने के लिए किताबों की आवश्यकता थी। मैंने रीड इंडिया एंड अमेजोन के सामुदायिक लाइब्रेरी है, वहां से मैंने मुबारक सर से संपर्क कर 2 बुक्स प्राप्त की और वहां 2 बुक्स लेकर मैंने उनकी पढ़ाई की और टेस्ट आने पर मैंने टेस्ट दिया, जिससे मेरा पहली बार में टेस्ट क्लियर हो गया।
8: यहाँ पर पहले मैंने सिलाई सीखी थी, उसके बाद मैं कंप्यूटर के मेरे बच्चों को कंप्यूटर सिखाते, जिस तरह से सिखाने में मुझे भी बहुत फायदा हुआ है क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस बढ़ा है उसे सिखाते सिखाते, बहुत अच्छा है वैसे यहाँ पे सब चीज, क्योंकि यहाँ पे सिलाई सेंटर कंप्यूटर का भी है, लाइब्रेरी भी है, ईसीडी का भी है, यहाँ पे बच्चों के लिए भी बहुत सारी चीजें सुधार की गई है। मैं आंगनवाड़ी में भी जाती हूँ और रीड एंड राइटिंग का कोर्स चल रहा है, बच्चों को कराती हूँ और इससे इधर मीटिंग होती है, इससे किसानों की मीटिंग होती है, इधर डॉक्टर आते हैं और इधर हमने सिलाई भी सीखी है, इससे हमें बहुत फायदा हुआ है। मैं रीड इंडिया अमेजोन को धन्यवाद बोलना चाहती हूँ।
9: रीड इंडिया अमेजोन सेंटर में सिलाई सिखाती हूँ, अब तक मैं 10 लड़कियों को सिलाई सिखा चुकी हूँ, जो कि वो अपना काम आराम से कर लेती है और घर में दिन महीने में 2-4 हजार रुपए भी कमा लेती है, अब उनको बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, वो हर कार्य को अच्छे से कर लेती है।
10: मेरा नाम राम बाबू, आठ जिला में पढ़ता हूँ, अब मैं जब छुट्टी हो जाए सेंटर में आता हूँ, बुक पढ़ता हूँ, फिर खिलौना से खेलता हूँ, फिर कंप्यूटर पे बैठ जाता हूँ।
11: पहले ये सिलाई सेंटर यही नहीं था, तो अब इसके आने से हमारी जितनी लड़कियाँ हैं औरत है जो यहाँ पे सब सिलाई सीखने के लिए आ जाती है, इससे काफी सुविधा है क्योंकि हमें बाहर नहीं जाना पड़ता, यही कपड़े सी जाते हैं तो अपना काम हल हो जाता है, पैसे की भी बचत है।

0: నా పేరు సరిత. మా గ్రామం పేరు కలుగుట్ట గ్రామం. నేను కడతెట్లపల్లి గ్రామంలో రీడ్ ఇండియా ఫౌండేషన్ ద్వారా సైబర్ సెక్యూరిటీ కోర్స్ నేర్చుకున్నాను. దానివల్ల నాకు చాలా లాభం జరిగింది. ఎందుకంటే ఫేక్ కాల్స్ నమ్మకూడదని, ఈమెయిల్ ఐడి, గూగుల్ పే, బ్యాంక్ అకౌంట్ లాంటివి చాలా జాగ్రత్తగా కాపాడుకోవచ్చు. ఇంకా దీనిని నేను మా ఫ్రెండ్స్ కి, మా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కి, మా చుట్టుపక్కల వాళ్లకు నేర్చుకోవాలని చెప్పాను. దీనివల్ల మనకు చాలా లాభం జరుగుతుంది. థ్యాంక్ యూ ఫర్ రీడ్ ఇండియా.
1: పేరు ధనశ్రీ. మా ఊరు పేరు వెంగళపల్లి. మా ఊరు నుంచి నేను 5 కిలోమీటర్స్ వరకు నడిచి కడపనకంకి వెళ్లి చదువుకునేదాన్ని. అప్పుడు మా కడపనకం పక్కనే కడతెట్లపల్లి ఉంది. మా ఊరు నుంచి 2 కిలోమీటర్లు. అక్కడికి వెళ్లి నేను కంప్యూటర్ నేర్చుకున్నాను. అంతకుముందు అయితే అసలు నాకు ఓపెన్ చేయడం అసలు టైపింగ్ చేయడం అసలు ఏమీ రాదు. మా స్కూల్లో ఉంది కానీ అది ఎక్కువగా యూజ్ చేయరు, అసలు నేర్పిరు. నేను అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత చాలా నాలెడ్జ్ పెరిగింది. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ 9th లో ఉన్నప్పుడు నేను నేర్చుకున్నాను. ఇప్పుడు 10th క్లాస్ కాబట్టి మాకు ఆన్లైన్ క్లాసెస్ లో కూడా చాలా యూజ్ అవుతా ఉంది. నా ఫ్రెండ్స్ కూడా చాలా మంది వెళ్లారు, వాళ్ళకు కూడా నేను అర్థమయ్యేలా చెప్పాను. కాబట్టి కంప్యూటర్ క్లాసెస్ వెళ్ళినందుకు చాలా యూజ్ అవుతూ ఉంది నాకు. ఎంఎస్ ఆఫీస్ ద్వారా పెయింటర్, పవర్ పాయింట్ ఇంకా చాలా నేర్చుకున్నాను. నాకు కంప్యూటర్ నేర్చుకున్న ద్వారా చాలా యూజే ఉంది, కానీ ఏమీ నష్టం లేదు. కాబట్టి నా ఫ్రెండ్స్ కూడా చాలా మంది చెప్పాను. చెప్పి వాళ్ళని కూడా అక్కడికి తీసుకెళ్లి ఇంకా చాలా రేడ్ ఇండియా సెంటర్ మాకు పక్కనే ఉంది కాబట్టి మాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది. దానివల్ల మాకు చాలా యూజ్ ఉంది కాబట్టి మా ఫ్రెండ్స్ తో పాటు మేము అందరూ వెళ్ళి కంప్యూటర్ యూజ్ చేసుకుంటున్నాము. థ్యాంక్స్ ఫర్ రేడ్ ఇండియా.
2: హలో ఎవ్రీవన్, దిస్ ఈజ్ షాన్వి ఫ్రమ్ బారెట్పల్లి. డ్యూరింగ్ కోవిడ్ పీరియడ్ ఐ అటెండెడ్ ది సైబర్ సెక్యూరిటీ క్లాస్ కండక్టెడ్ బై రీడ్ ఇండియా. Before this class, we had no idea about such thoughts. This class helped me and surrounding people a lot. We got to know that we should not share the OTP and passwords with others. Before this class, one of my friend lost 2000 rupees, but now we all are aware of such thoughts. This class was really very helpful. We all are thankful to Read India. Thank you very much.
3: मेरा नाम रेखा सिंह है. हम कटहरी गांव में रहते हैं. हमारी उम्र 40 साल है. हम हाई स्कूल तक पढ़े हैं. जी, हमारे यहाँ रीड इंडिया का सेंटर खुला है. वहाँ पर कंप्यूटर सिलाई सबसे जुड़ा है. हम लोगों को पता चला तो हम लोग अपना भी रजिस्ट्रेशन कराए और पढ़े सीखने भी आते थे. वैसे हम लोगों को बहुत सारा चीज सिलने और काटने का आ गया है. हम लोग कुछ नहीं जानते थे तो इतना सब बहुत कुछ आ गया है. मास्क वगैरह, फ्राक, कुछ बेबी मेकर और बहुत से सलवार, कुर्ता, कुर्ती, ब्लाउज, पेटीकोट बताया गया. सब कुछ काटे, अच्छे से सिले, अपना भी सिले, अपने घर वालों का सिले. थोड़ा सा हम लोगों का बचत भी हुआ.
4: मेरा नाम आकांक्षा शुक्ला है. मेरी उम्र 20 साल है. हमने यहाँ रीड इंडिया के सेंटर समराइज से सिलाई सीखी है. पहले हमें थोड़ी बहुत सिलाई आती थी. उसके बाद हम जब यहाँ सीखने आए तो हमें पूरी तरह से सिलाई आने लगी है. और पहले अपने कपड़े कहीं टेलर के यहाँ सिलवाते थे, अब हम अपने आप सिल सकते हैं. इससे मेरी आर्थिक स्थिति में सुधार आया. जब हम यहाँ सिलाई सीखने आए तो हमें कई सारी ट्रेनिंगें मिली और उससे मेरे जीवन में व्यक्तित्व में सुधार भी आया. और हम अब अपने जैसी लड़कियों को ट्रेनिंग देना चाहती हूँ.
5: मेरा नाम नैन्सी गुप्ता है. मैं क्लास 11 में पढ़ती हूँ. मेरी उम्र 16 साल है. रीड इंडिया सेंटर जो कटहरी में खुला है उससे मुझे पर्चे के द्वारा पता चला. जो रीड इंडिया सेंटर के पर्चे छपे थे वो मेरे तक पहुँचे तो मैं यहाँ पर आई और इससे जुड़ी. मेरा एडमिशन हो गया और फिर मैं कंप्यूटर सीख रही हूँ, जिससे मुझे फ्यूचर में कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलने पर मैं इससे जुड़कर काम कर सकती हूँ. पहले मुझे कंप्यूटर बहुत डिफिकल्ट लगता था क्योंकि मेरे आसपास कहीं भी कंप्यूटर सेंटर नहीं थे. लेकिन जब यहाँ रीड इंडिया सेंटर खुला तो मैं कंप्यूटर में सीखी और मुझे लगा कंप्यूटर बहुत आसान होता है और मुझे कंप्यूटर के सारे डर खत्म हो गए। और मैं रीड इंडिया सेंटर का बहुत बहुत थैंक यू सो मच करती हूँ और यहाँ पर जो मैम है और टीचर है उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ।
6: मैं विनीता मौर्य है, मैं ग्राम कटहरी में रहती हूँ, मेरी उम्र 35 साल है, एक अच्छा तक पढ़ी हूँ। मेरे गांव में रीड इंडिया सेंटर खुला है, जब मुझे पता चला तो मैं यहाँ आई, अपना एडमिशन कराया और फिर सिलाई सीखना शुरू कर दिया। मुझे सिलाई करना लगभग आ चुका है, जैसे कि मास्क बनाना, बच्चों के कपड़े सिलना, औरतों के ब्लाउज सिलना, ये सब मैं कर लेती हूँ। अगर अवसर आया तो ये सब मैं सिलकर बाहर को निर्यात कर सकती हूँ।
7: कोमल पाल है, मेरी उम्र 17 साल है, मैंने रीड इंडिया सेंटर सिमराई बाराबंकी ट्रेनिंग ली है। पहले मुझे मतलब सिलाई के बारे में कुछ नॉलेज नहीं था, उसके बाद मैंने मतलब अपने कपड़े स्वयं सिल सकते हैं, अपने पूरे घर परिवार के, और जो मतलब जो पहले था जो पैसे दूसरे को देते थे, अब वो पैसे मतलब खुद मतलब बचत कर सकते हैं। और मेरे ट्रेनिंग लेने के बाद मेरी आर्थिक स्थिति में बहुत सुधार आया।
8: मेरा नाम विमलेश सिंह है। हमें अनेक प्रकार के हमारे जीवन में बदलाव आए हैं इस सिलाई को लेकर, और जब मैं जो भी चाहती हूँ सिलाई से संबंधित जो ग्रुप बनाकर वो आगे काम भी कर सकती हूँ, अपना सिलाई का कोई सेंटर खोल सकती हूँ या समूह बनाकर मैं इकट्ठे कपड़े सिल सकती हूँ, सिलकर मार्केट में भेज सकती हूँ, जो भी चाहती हूँ सिलाई संबंधित कार्य कर सकती हूँ।
9: असम है, मेरी उम्र 21 ईयर है, मैं बी ए द्वितीय वर्ष में पढ़ती हूँ। मेरे ग्राम का नाम कटारी चंदार है। जैसा कि मुझे पता चला कि मेरे गांव में रीड इंडिया का सेंटर खुला, उसके बाद हमने इसमें एडमिशन लिया और आज हम अच्छे से कंप्यूटर का अध्ययन कर रहे हैं। इसके पहले हम लोगों को कंप्यूटर सीखने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि हम लोगों के घर से 10-10, 15-15 किलोमीटर दूर सेंटर है और वहाँ पे हम लोगों को जाना पड़ता था, इसलिए घर के पेरेंट्स भी इसकी इजाज़त नहीं देते थे। उसके बाद जब से ये सेंटर खुला तब से हम लड़कियाँ आत्मनिर्भर हुए और कंप्यूटर के बारे में सब कुछ जान सके, और आज स्थिति ये है कि हम लोग कंप्यूटर को बहुत अच्छे से जान चुके हैं, अच्छे से चला भी रहे हैं, और ऐसा रीड इंडिया सेंटर की वजह से हुआ। कंप्यूटर को सीख कर हम आगे में रोजगार के अवसर अच्छे से खोज सकते हैं।
10: आई एम राखी फ्रॉम केलवाड़ा। मैंने हेल्थ वर्कर की ट्रेनिंग ली है और इसे लेकर मुझे बहुत अच्छा लगा। निधि मैम ने हमें बहुत कुछ सिखाया इस ट्रेनिंग में, जैसे कि हेल्थ वर्कर क्या होते हैं, वह समूह जो हेल्थ की जानकारी रखता है उसे हेल्थ वर्कर कहते हैं। इसमें हेल्थ वर्कर का कार्य रहता है कम्युनिटी डेटा इकट्ठा करना, उसमें मतलब जन्म और डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब जानकारियाँ ली जाती हैं। हमारे आसपास की सफाई भी जरूरी होती है, शारीरिक हाइजीन में होता ही है। और मैम ने बताया था कि हमें हैंड वॉश कैसे करना चाहिए, तो हैंड वॉश के मैम ने 5 चरण बताए थे जिसका हमें रेगुलर यूज करना चाहिए। यदि हम रेगुलर हाथ धोएंगे तो हमें कोई बीमारी भी नहीं होगी, हम स्वच्छ रहेंगे। तो मैम ने बताया कि हमें वो हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर के बारे में, हाई ब्लड प्रेशर होता है तो हमें क्या लेना चाहिए, लो ब्लड प्रेशर होता है तो हमें क्या लेना चाहिए। लो ब्लड प्रेशर में हमें कॉफ़ी की मात्रा लेनी चाहिए क्योंकि इसमें कैफीन की मात्रा पाई जाती है जो हमारे लिए अच्छी होती है। मैम ने बताया शारीरिक क्रियाएं वगैरह जो होती हैं हमारे शरीर में, उसके बारे में बहुत कुछ बताया है, जो हमने अच्छे समझाए, सबको समझाया भी है। हमारे आसपास जो व्यक्ति थे हमने उनको हमारे मतलब संपर्क में उनको बताया कि मैम ने हमें ये बताया है, आप भी इसका उपयोग करें, समय पर एंटीबायोटिक दवाएँ लें। मैम ने हमें ये जल्द से होने वाली बीमारियों के बारे में भी बताया है, जैसे कि हैजा, टाइफाइड, ORS घोल हैजा में लिया जाता है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, इसे हमें लेना चाहिए, ये अच्छा होता है। और मैम ने COVID-19 के बारे में भी बताया था जो चल रहा है, इसे हमें बचना चाहिए, ये खांसी और छींक के माध्यम से फैल रहा है, इसलिए हमें मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करना चाहिए जो हमारे लिए अच्छा होगा। मैम ने अस्थमा के बारे में बताया था कि ये सांस की बीमारी होती है जिससे मतलब हमारी जो सांस नली होती है वो उसमें सूजन आ जाती है, तो हमें सांस लेने में दिक्कत होती है और मतलब सांस लेने में दिक्कत होती है और बलगम आता है तो मतलब सांस लेने में मतलब सीटी जैसी आवाज़ आती है, तो इसके उपचार डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए और एंटीबायोटिक दवाओं का यूज करना चाहिए। और बस मैम ने बहुत कुछ बताया है कि हमें बहुत अच्छा लगा और मैं इस संस्था को थैंक यू कहना चाहती हूँ क्योंकि हमें बहुत अच्छा लगा है और हमें बहुत कुछ सीखा है। थैंक यू।
11: आई एम पूनम कश्यप फ्रॉम जेलवाड़ा। मैंने रीड इंडिया संस्था से हेल्थ वर्कर की ट्रेनिंग ली है और हमें इस ट्रेनिंग में कई प्रकार की बीमारियों के बारे में बताया गया है और उनकी रोकथाम के बारे में और हमें किस प्रकार से उनका उपचार करना चाहिए वो भी बताया गया है। रीड इंडिया संस्था द्वारा हमें ऑनलाइन ट्रेनिंग दी गई है। इसमें हमें मीना दीदी ने कई प्रकार की बातें समझाई हैं। उन्होंने हमें संस्था पर बुला करके कई प्रकार से बीमारियां जो चल रही हैं कई प्रकार की उनके बारे में जानकारी दी है। मेरे को इतनी नॉलेज नहीं थी बट हमें ऑनलाइन ट्रेनिंग से बहुत कुछ सीखने को मिला है। थैंक यू। मैं रीड इंडिया का धन्यवाद करती हूँ।
12: मेरा नाम सरोज सुमन है, मैं खाकरा की रहने वाली हूँ। मैंने हेल्थ वर्कर की ट्रेनिंग ली जिसमें मैंने बहुत कुछ सीखा। इसमें दीदी ने बताया कि हमें किस प्रकार से अपने स्वास्थ्य की देखभाल करनी चाहिए और कैसे हमें बीमारियों से लड़ना है और कोरोना के बारे में भी बताया और हमें ब्लड प्रेशर हाई व लो के बारे में बताया। कोरोना काल में हमें किस प्रकार से अपनी सावधानी बरतनी है, साबुन से हाथ धोना है, मास्क लगाना है, इस प्रकार हमें बताया। इससे हमें बहुत कुछ लाभ हुआ है और हमने गांव में जो लोग जानते नहीं थे उन्हें जाकर घर घर जाकर उन्हें बताया समझाया किस प्रकार हमें रहना है। धन्यवाद।
13: मेरा नाम मीना पांचाल है, मैं खाकरा गांव से रहने वाली हूँ। मैंने रीड इंडिया संस्था से हेल्थ वर्कर की ट्रेनिंग ली है। इसमें दीदी ने कोरोना के बारे में जानकारी दी है, कोरोना काल में कैसे हमें अपना सावधानियां रखनी चाहिए, अपना ध्यान रखना चाहिए, उसके बारे में बताया है कि हमें मास्क पहनना चाहिए, 2 गज की दूरी रखनी चाहिए, हाथों को सैनिटाइज करना चाहिए, उसके बारे में बताया दीदी ने। और हमें ब्लड प्रेशर में बीपी लो हाई कैसे चेक करना चाहिए उसके बारे में, पल्स रेट के बारे में भी बताया कि हमें कैसे नापनी चाहिए, पल्स रेट का पता कैसे लगता है वो बताया। और उन्होंने पानी से होने वाली बीमारियां, हवा से होने वाली बीमारियां, घर की सफाई आदि के बारे में हमें बताया है, शारीरिक स्वच्छता के बारे में भी जानकारी दी है और हमें बहुत अच्छे से समझ में आया और इससे हमें बहुत लाभ हुआ है। धन्यवाद।
14: हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रियांशी ठाकुर है, विलेज कांकरा राजस्थान से हूँ। मैंने रीन इंडिया के द्वारा कम्युनिटी हेल्थ वर्कर की ट्रेनिंग ली है जो डॉक्टर निधि गुलाटी द्वारा ली गई थी। निधि गुलाटी मैम ने हमें सबसे पहले कम्युनिटी हेल्थ वर्कर क्या होता है और कम्युनिटी से कैसे जुड़ना होता है इसके बारे में हमें बताया। साथ ही मैम ने हमें कोरोना काल में स्टे सेफ के बारे में बताया। फिर मैम ने हमें हाउ टू हैंड वॉश के बारे में बताया और फर्स्ट एड इसके हमें अच्छे से डिटेल्स में समझाए और हमें पर्सनल हाइजीन के बारे में बताया और अगर हम पर्सनल हाइजीन नहीं करेंगे तो इसके साइड इफेक्ट्स बढ़ाए। शारीरिक क्लीनिंग एंड हाइजीनिंग के बारे में हमें डिटेल में समझाया और ह्यूमन बॉडी के बारे में बताया। उसके बाद मैम ने हमें पल्स कैसे चेक करते हैं इसके बारे में समझाया। मैम ने हमें अच्छे से बताया कि हमें 2 फिंगर्स को थंब के नीचे रखकर कैसे हमारी 1 मिनट तक हमें हमारी पल्स चेक करनी चाहिए। साथ ही अपना बीपी बढ़ने पर हमें ज़रूरी पल्स चेक कराने के बाद ही अपना बीपी के बारे में श्योर होना चाहिए और नॉर्मल बीपी कितना होता है, हाई बीपी कितना होता है इसके बारे में बताया। साथ ही उन्होंने हमारे बॉडी टेम्परेचर के बारे में बताया और बॉडी टेम्परेचर हमारा 2 तरीके से नापे जाता है, सेंटीग्रेड और फारेनहाइट से। इसके बारे में हमें मैम ने बहुत डिटेल से बताया और इसके बाद मैम ने हमें ब्लड प्रेशर के बारे में बताया कि ब्लड प्रेशर क्या होता है, कब होता है। मैम ने हमें बताया कि ब्लड प्रेशर हमें 1 मिनट तक चेक करवाना चाहिए और हमारा दिल 1 मिनट में 60 से 80 बार धड़कता है। साथ ही वर्कआउट या कॉफ़ी टी पीने पर हमारा ब्लड प्रेशर हमें नहीं चेक कराना चाहिए क्योंकि ये एज यूजली सही नहीं आएगा, ये गलत ही आएगा। और साथ ही हमें बताया कि ब्लड प्रेशर 2 तरीकों का होता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। इसके साथ ही मैम ने हमें बताया कि ग्रामीणों में नॉर्मल क्या क्या बीमारियां होती है और उनके बारे में डिटेल से समझाया, जैसे टीवी, शुगर, पीलिया, चिकन पॉक्स, निमोनिया, मलेरिया, टाइफाइड, डायरिया, ऐसी कैंसर जैसी और भी कई बीमारियों के बारे में बताया। उसके बाद मैम ने हमें ह्यूमन बॉडी के बारे में बताया, हमारा ब्रेन किस तरह से काम करता है, हमारा हार्ट किस तरह से काम करता है, लीवर किडनी इसके बारे में मैम ने हमें बताया, साथ ही हमारी बोन्स किस तरह से काम करती है और ये कैसे हमारी बॉडी में जुड़ी हुई है और भी काफ़ी सारी जानकारी मैम ने हमें डीपली समझाई। ये बहुत ही अच्छी जनरेशन थी, अच्छे से मैम ने हमें समझाया एंड थैंक यू वेरी मच हमें इतनी सारी डिटेल्स।

0: ट्रेनिंग कराई गई थी, उसमें हम लोगों ने भी भाग लिया था और हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली है। हमें टैली के बारे में पहले कुछ भी मालूम नहीं था कि टैली क्या होती है, इसमें क्या सिखाया जाता है, क्या नहीं सिखाया जाता है, ऐसी कोई बात नहीं थी, कोई सूचना मतलब कोई जानकारी नहीं थी हमें। लेकिन उस ट्रेनिंग में हमें बहुत सारी जानकारी मिली है और हमने बहुत कुछ सीखा है, ऐसे बहुत कुछ सीखा है। और मैंने बीए कर रखी है और जैसे कि इसमें लागत मूल्य के बारे में सिखाया गया, लागत मूल्य वह होता है जिसमें कोई माल अथवा सेवा ऐसे जो करे वह प्राप्त किया जाता है, उसको लागत मूल्य कहा जाता है। वसूली मूल्य वह होता है वसूली मूल्य जिसे बाजार में कोई चीज या कोई संपत्ति को बेचकर जो राशि प्राप्त होती है, धन प्राप्त होता है, उसको वसूली मूल्य कहा जाता है। और जैसे कि संपत्तियां के बारे में बताया गया था, संपत्ति तीन चार प्रकार की होती है जैसे कि चल अचल धरस्य अधरस्य। धरस्य संपत्ति वह होती है जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो धरस्य संपत्ति होती है। अधरस्य संपत्ति उसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, एहसास नहीं कर सकते, तो वह अधरस्य संपत्ति होती है। बहुत सारी चीजें की जानकारी दी गई मैम ने और बाद में हमें सभी प्रकार के जो अकाउंट होते हैं उनकी एंट्री करना सिखाया है मैम ने।
1: हेलो, मेरा नाम रिंकू कुमारी है, मैं बारा जिले के मुसिन माता गांव की रहने वाली हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि लॉकडाउन के चलते ना तो कोई कहीं जा सकता है और ना ही कहीं से आ सकता है, तो इस माहौल में रीड इंडिया के द्वारा टेली हमें जूम ऐप पर घर बैठे ऑनलाइन ट्रेनिंग उपलब्ध करवाई गई और उसमें हमें खाता खोलने के बारे में, लेन देन के बारे में, डेबिट और क्रेडिट क्या होता है, इन सब के बारे में बताया गया। और मान लो जैसे कोई बिजनेस करना हो या फिर दुकान खोलनी हो तो उसका हिसाब किताब कैसे रखते हैं, और साथ ही ये भी बताया गया कि डेली डायरी मेंटेन करनी चाहिए। और भी टेली के बारे में जैसे हमें पहले कुछ नहीं आता था और कुछ समझ में नहीं आता था, फिर हमसे पहले जो लड़कियां थी उन्होंने इसके बारे में सीखा और हमें इसके बारे में बताया विस्तार से सब कुछ, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप कि परचेज कैसे करते हैं, माल खरीदा कैसे जाता है, बेचा कैसे जाता है, और लेन देन के बारे में बताया और उसकी एंट्री कैसे करते हैं, इन सब के बारे में हमें बहुत विस्तार से और बहुत बढ़िया तरीके से बताया। और हमने उनसे क्वेश्चन भी किए और उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से हमें सब कुछ बताया। तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगी रीड इंडिया को, टेली को और मैम्स को जिन्होंने हमें घर बैठे ही कोरोना काल में भी ऑनलाइन ट्रेनिंग उपलब्ध करवाई। थैंक यू।
2: हेलो, आप सभी को मेरा नमस्ते और रीड इंडिया को मेरा धन्यवाद। मेरा नाम वर्षा है और बारा जिले के पास ही के गांव की मैं रहने वाली हूँ, समरानिया से। रीड इंडिया को मेरा धन्यवाद इसलिए क्योंकि ऐसे लॉकडाउन में टेली की ट्रेनिंग घर पर ले पाना बहुत मुश्किल था, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था, लेकिन फिर भी हमने टेली की ट्रेनिंग करी रीड इंडिया की तरफ से, जो कि बहुत अच्छे से कर पाए हम लोग। इतना सब कुछ सीखने को मिला हमें घर रहकर, कैसे क्या खरीदना है, कैसे क्या बेचना है, क्रय विक्रय परचेज करना, लेन देन कैसे करना चाहिए, कैसा क्या देखना चाहिए, जो कि हम पहले नहीं सीख पाए थे। मैंने बहुत कोशिश करी थी सीखने की लेकिन मैं नहीं सीख पाई थी, लेकिन इसमें रीड इंडिया की तरफ से जो ट्रेनर थे हमारे मैडम, उन्होंने हमको बहुत अच्छे से सिखाया, जो हम भूल जाते थे वो भी बार बार उन्होंने हमें बताया, उनकी मदद से हम बहुत अच्छे से ट्रेनिंग कर पाए। पता भी नहीं चला कि इतना टाइम कैसे निकल गया। मैडम सर सभी ने बहुत अच्छे से सिखाया। रीड इंडिया को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने पूछे सवाल, जिनके ट्यूशन जो कि हम नहीं कर पाते थे वो ट्यूशन उन्होंने पूछकर हमारी कमियां भी दूर करी हैं, जिससे हमें बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रेनिंग मिली है।
3: हेलो, मेरा नाम मुस्कान मलर्जी है। मैं कक्षा 12वीं में पढ़ रही हूँ। और मैंने जब रीड इंडिया के बारे में सुना, मेरे पापा ने आके मुझसे बोला कि वहाँ पर रीड इंडिया की ट्रेनिंग हो रही है, कंप्यूटर की ट्रेनिंग करवा रहे हैं। तो मैं यहाँ पे आई, यहाँ पे आके मैंने फॉर्म भरा और एडमिशन किया। एडमिशन करने के बाद मुझे पहले से कंप्यूटर की कुछ बेसिक जानकारी थी, फिर भी मैंने यहाँ पे फोटोशॉप और भी कई चीज़ें सीखी है। सीखने के बाद मैं यहाँ से लैपटॉप लेके गई थी। मुझे बोला गया कि यहाँ से लैपटॉप ले जाओ और तुम और भी बच्चे, रिश्तेदार, तुम्हारी मम्मी, इनकी जो भी महिलाएं हैं उनको तुम सिखाओ। तो मैं यहाँ से ले गई और उनको मैंने सिखाया। मैंने भी उनको वही सिखाया जो मैंने सीखा था, जैसे कि यहाँ से फोटोशॉप के अंदर जैसे

0: हम यहाँ पर आए और हमने यहाँ पर कुछ सीखा है, हमने जानकारी ली है यहाँ पर, हमने यहाँ पर फोटोशॉप वगैरह सीखा है हमें, और मुझे राजीव का वालों ने CSC ID बनाकर दे दी है, तो हम मैं पैसे की लेन देन कर रही हूँ। थैंक यू रीड इंडिया
1: मंडल है। रीड इंडिया माध्यम से मैं जुड़ी हुई थी और ऑनलाइन ट्रेनिंग लिया था, जो उसमें मुझे बहुत जानकारी मिली है, जैसे कि मोबाइल के बारे में, फेसबुक चलाना, व्हाट्सएप चलाना और बैंक का जो है, जो उसमें खाता नंबर, आधार कार्ड का नंबर किसी को नहीं देना चाहिए, उसमें नुकसान हमको ही होगा, इसलिए इसका जानकारी हमको मिला है। हम पहले से, मान लो किसी ने फोन कर दिया कि जे तुम्हारा मोबाइल में इतना पैसा है, लॉटरी लग गया तुमको, जो नंबर दे दो बैंक का या आधार कार्ड का नंबर, इसे नहीं देना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। जैसे मोबाइल में फोन आए कि तुम्हारा फोटो भेजो या कुछ और भी भेजो, नहीं भेजना चाहिए, उसमें हमारा ही खराब होगा, इसलिए हम नहीं भेजते, हम इसमें सतर्क रहते हैं। और भी है बहुत सारे, जो अभी मीटिंग में हम मिला हुए थे, जो ट्रेनिंग में, जो उसमें अभी हम बढ़िया तरह से सीख गए, और मोबाइल में ऐसा करना चाहिए, उसमें इसको पासपोर्ट लगाना चाहिए, जो कोई लेके छेड़छाड़ी ना करे, और कहीं पे भी जाओ फिर भी नेट मतलब कुछ भी, थोड़ा बहुत खांसी भी आए लेकिन उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ज़्यादा कम करो और अपने मोबाइल को सुरक्षित रखो। ट्रेनिंग से हमें बहुत सारी जानकारी मिला है, जो इसलिए आप सबको धन्यवाद।
2: नमस्ते, मेरा नाम काजल बाला, गांव नाटे से, मैं रीड इंडिया संस्था साइबर सेफ्टी से मैंने ऑनलाइन ट्रेनिंग ली है, जिसमें मैंने बहुत कुछ सीखा है, जैसे हमें हमारे जैसे पर्सनल नंबर, मैसेज, OTP, ये सब किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए, ना ही हमें सार्वजनिक वाईफाई का उपयोग नहीं करनी चाहिए, हमें बैंक संबंधी ऐसे कोई मैसेज आए उस पर हमें क्लिक नहीं करनी चाहिए, हमें जैसे और भी बहुत कुछ हमें सीखने को मिले जो भविष्य में हमारे काम आएंगे। और इसके अंतर्गत हमने जैसे हम जैसे शॉपिंग करते हैं, उसके लिए अलग अलग वेबसाइट का हमें प्रयोग नहीं करनी चाहिए जो हमें पता ना हो, और ना ही हमें इंटरनेट पे ज़्यादा कुछ जानकारी ऐसी, मतलब जो ज़रूरत ना हो ऐसी चीज़ की जानकारी भी नहीं लेनी चाहिए। ये बहुत ही काम की चीज़ हमने इस संस्था में सीखी है, और ये खुद मैंने भी, मतलब ये चीज़ मैंने भी नोटिस की है, और मैं इसके बारे में जैसे अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड सभी को मैं इसके बारे में जागरूक करूँगी कि कैसे सेव रखा जा सकता है हमारे बैंक अकाउंट, हमारी OTP, ये सब मैं उनको भी इस सब करके जागरूक करवाऊँगी।
3: मेरा नाम अंकिता बंसल है, मैं भवरगढ़ 12 राजस्थान से हूँ। मैंने अपनी एजुकेशन में अभी तक BSc किया है। मैंने रीड इंडिया से साइबर सिक्योरिटी की ट्रेनिंग ली है। इस ट्रेनिंग में मुझे साइबर क्राइम से कैसे बचे के बारे में बताया गया था, और हम किस तरह से अपने मोबाइल के डाटा को सुरक्षित रख सकते हैं इसके बारे में बताया था। हमें किसी भी फर्जी ईमेल को नहीं खोलना चाहिए। आजकल व्हाट्सएप पे बहुत सारे लिंक्स आते हैं जिनमें होता है कि तुम इस लिंक पे क्लिक करो तो तुम्हें वाउचर मिलेगा, कोई गिफ्ट फ्री मिलेगा, लेकिन वो सब कुछ फर्जी होता है। वो कुछ हैकर्स होते हैं जो कि साइबर सिक्योरिटी को हार्म पहुंचाना चाहते हैं। उन लोगों के द्वारा बनाई गई साइट होती है जो कि आपके फोन में आपके डाटा को चुरा सकती है, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को उनके पास पहुंचा के वो आपको एक साइबर क्राइम के थ्रू ब्लैकमेल कर सकते हैं, आपसे किसी भी तरह का कुछ भी कर सकते हैं। इस वजह से आपको कोई भी लिंक या फिर ईमेल जो भी है उन्हें नहीं खोलना चाहिए। ये लिंक से कभी कभी हमारे फोन में एंटीवायरस भी ला देते हैं। इसके अलावा जो हमारा पासवर्ड होता है वो लंबी डिजिट का होना चाहिए, लाइक तुम्हारा नाम हमें भी छोटा मोटा नहीं होना चाहिए, उसमें #@ ऐसे वर्ड्स यूज किए जाने चाहिए ताकि कोई उन्हें हैक ना कर सके। और इसके अलावा हमें सोशल मीडिया के सभी जो भी एप्स होते हैं उनमें प्राइवेसी रखनी चाहिए ताकि आपके बारे में ज्यादा लोगों को पता ना चले। इस तरह से हम हमारे मोबाइल डाटा को सुरक्षित कर सकते हैं। थैंक यू।
4: मैं भवरगढ़ की रहने वाली हूँ।

0: तरह से हमें होम मेकिंग प्रोडक्ट की ट्रेनिंग दी गई थी और इस पे हम घर पर बैठकर इस ट्रेनिंग से बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं और इससे हमें रीड इंडिया पर हमें बॉडी बैग्स और बॉडी बटर ये चीज़ें हमको सिखाई गई थी और इनमें वो शहद घी और वो ग्रीसलीन और डिबाम ये चीज़ों से हमने वो प्रोडक्ट बनाया था। इसको पैकिंग किया था और इसको तीन तरीके से हमने पैकिंग किया था, लिपस्टिक के शेप में और डिब्बी में और वो पोटली वाले में और रीड इंडिया में। यह सब चीज़ हमको रिया दीदी ने सिखाया था और इसमें मीना दीदी भी थी और हम 8-10 लड़कियों ने यह चीज़ सीखी थी। थैंक यू रीड इंडिया।
1: मेरा नाम लीना यादव है, ग्राम हरिद्वार पोस्ट भोयल तहसील सावर डिस्ट्रिक्ट 12 से बिलोंग करती हूँ। मैंने रीड इंडिया ऑनलाइन सेलिंग से ट्रेनिंग ली थी जिसमें हमें बहुत सारे प्रोडक्ट शेयर करना, प्रोडक्ट सेलिंग करना, उन सारी चीजों के बारे में बताया गया था। हमको प्रोडक्ट कैसे सेल करना चाहिए ये हमें आना चाहिए, हम ज्यादा से ज्यादा कैसे शेयर कर सकते हैं, इन सब चीजों को लेके हमको उस ट्रेनिंग के बारे में बताया गया था। जैसा कि हमको सीखने को मिला, बहुत सारे एप्स होते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, कई सारे वेबसाइटें होती हैं जिनसे हमको ये सब कुछ शेयर करना होता है। फेसबुक व्हाट्सएप के जरिए हम अपने प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं, फेसबुक पर डालकर हम उसको शेयर कर सकते हैं, किसी भी जानी मानी वेबसाइट से हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो हम अनजानी वेबसाइटों से ऑनलाइन शॉपिंग ना करें और सार्वजनिक वाईफाई से बचें। और भी कई सारी चीजें थी उसमें, पेज बनाना ये सब कुछ था उसी में, और अपना ऑनलाइन अपना मोबाइल लैपटॉप वगैरह सब अप टू डेट रखें और ओटीपी वगैरह किसी के साथ शेयर ना करें। ये कई सारी चीजें हम लोगों को उसी के अंतर्गत सीखने को मिली। मैं बताना चाहूंगी कि ऑनलाइन सेलिंग के बारे में हमको बहुत कुछ जानकारियां मिली हैं। थैंक यू।
2: मेरा नाम जया बंसल है और मैंने रीड इंडिया से सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखा है। उसमें मैं फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम इन सब पर किस तरह से मार्केटिंग की जाती है वो सब सीखी है और फेसबुक पर पेज बना कैसे बनाया जाता है ये सब सीखा है, किस तरह से फेसबुक पर मार्केटिंग की जाती है और व्हाट्सएप पर किस तरह से प्रोडक्ट डाले जाते हैं, किस तरह से सेलिंग की जाती है और इस तरह से, और मैं करती भी हूँ, प्रोडक्ट्स डालती भी हूँ, इससे मेरी इनकम भी बढ़ी है और इस तरह से मैंने अभी अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया है। थैंक यू रीड इंडिया।
3: मेरा नाम सुनीता, मैं ग्रेटर नोएडा से आती हूँ। मैंने सीखा है यहाँ पे तुड़पाई करना सीख लिया, प्लाजो बनाना सीख लिया और पेंटिंग बनाने के लिए बेबी पेंटिंग ये बना ली मैंने और अब वो बना के आई हूँ वाले बाद वो प्लाजो।
4: अभी जो यहाँ पे रीड के माध्यम से राशन डिस्ट्रीब्यूट हुआ था वो भी उसमें भी आप थे?
3: हाँ, मैं दो बार ले गई थी।
4: दो बार आप लेके गए?
5: मेरा नाम मीसा सिंह गौतम है और मैं तुगलपुर की रहने वाली हूँ और हमें मैं सिलाई मशीन सीखना चाहती थी पर वहाँ की दुकान भी नहीं थी, अब ही तो बहुत महंगे होंगे उसमें सिखाते थे। आसपास की लड़कियाँ सिलाई मशीन सीखने के लिए जाती थी और मैंने उनसे पूछा भी कि आप कहाँ जाती है तो उन्होंने बताया कि एक केंद्र खुला पड़ा है विनटेक केंद्र, तो मैं भी उनके साथ जाने लगी हाँ के सीखने लगी और मुझे आता भी कुछ नहीं था, मैंने तुरपाई से स्टार्ट किया था और मुझे अब सूट सलवार में बना देती हूँ और यहाँ मैंने बहुत कुछ सीखा है कि अनजान इंसान मतलब अनजान जो लड़कियाँ बढ़ती आती हैं वहाँ कैसे रहा जाता है और कोई भी मतलब बुरा बुरा नहीं होता, सब अच्छे होते हैं और यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है, मतलब सही है। जब लॉकडाउन लगा था तो यहाँ से हमें मतलब बहुत काम वाम मिल रहा था और मैं जब भी सीखने आती थी क्योंकि यहाँ मतलब बहुत कम उसमें सिखाया था और हमें अच्छी बातें सिखाई जाती हैं कि बाहर जाके क्या करना है। और यहाँ से मैंने सोचा है कि मैं जब यहाँ से पूरी मशीन सीख लूंगी, जब मुझे वो डिप्लोमा मिल जाएगा तो मैं एक दुकान भी खोलूंगी अपनी जिसमें मैं औरों को भी सिखा सकूँ और अपना काम भी वो कर सकूँ।
6: नमस्ते आप सभी को, मेरी तरफ से मैं तनु से, मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मैंने यहाँ के बहुत कुछ सीखा है। पहले मुझे कुछ नहीं आता था और यहाँ सभी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं कि यहाँ मतलब बहुत अच्छे सिलाई सिखाते हैं और यहाँ सबकी केयर भी बहुत अच्छे से होती है, सबकी हैप्पीनेस का भी ध्यान रखा जाता है। बहुत सारी चीज़ें सीख ली बनाने में, कपड़े में बहुत सारे कपड़े सीख लिए, जैसे सूट सलवार प्लाजो पैंट बहुत सारे।
4: खुद कटिंग कर लेती हूँ? पहले आपको कटिंग आती थी या पहले सिलाई आती थी?
6: कैंची भी चलाने नहीं आती थी।
4: कैंची भी चलाने नहीं आती थी। अच्छा, तो अभी सीखने के बाद आपका क्या है कि मैं क्या करना चाहती हूँ आप लाइफ में?
6: मैं ये दूसरों की हेल्प पहले तो,
4: हाँ,
6: और फिर अपनी एक छोटी सी शॉप,
4: बुटीक, बुटीक टाइप। अच्छा, बुटीक खोलना चाहती हैं आप यहाँ सीखने के बाद?
7: मेरा नाम गीता है और मैं यही पास से तुगलपुर गांव से आती हूँ। पहले मैं यहाँ पढ़ने के लिए आती थी और लेडीजों के साथ, बहुत लेडीज पढ़ती थी, मैं भी पढ़ती थी यहाँ। और फिर पढ़ते पढ़ते एक साल सा हो गया, उसके बाद फिर मुझे यहाँ पे, मुझे सिलाई का शौक था, थोड़ा थोड़ा घर में ही मतलब करती रहती थी और मैंने सीखा भी था कहीं थोड़ा बहुत। रीड इंडिया की तरफ से मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ, मुझे काम भी यहाँ रीड इंडिया की तरफ से ही मिला है। पहले घर में रहती थी ना, मन नहीं लगता था बिल्कुल भी, ऐसे लगता था कहाँ कैद में रहती हूँ, और यहाँ आके तो एक नई जिंदगी सी मिली है। बस यही है कि उन्होंने हमें काम दिया, यहाँ बच्चों के लिए सेंटर खोला और फ्री चल रहा है यहाँ पे बच्चों के लिए। बड़े खुशी से आते हैं बच्चे, कौन सिखाता है, नहीं तो हजार हजार रुपए देते हैं मंथ के यहाँ पे। तो बच्चे, गरीब बच्चे नहीं सीख पाते, बहुत ऐसे गरीब बच्चे हैं जो मतलब टाइम से पहले आ जाते हैं सीखने के लिए, मतलब उनको लगन है सीखने,
4: लगन है सीखने की।
8: उनको फायदा मैं महसूस में रहती हूँ। मेरे गांव, मुझे कुछ लोगों से पता चला कि हमारे गांव में रीड इंडिया सेंटर है, वहाँ पे अलग अलग प्रकार की कोर्सेज होते हैं, जिसमें से कि मैंने ऑनलाइन सेविंग के बारे में सीखा है। इसके बारे में पहले मुझे कुछ नहीं पता था, बट अब बहुत कुछ पता है, मैं इसके बारे में सीख रही हूँ, सीख चुकी हूँ और जानकारियाँ मैं देती रहूंगी। और इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, इन सब पे कैसे हम ऑनलाइन सेविंग कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में मुझे पता चल रहा है।
9: नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ज्योति है और मैं दिल्ली से हूँ। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ पूना मैम का, जिन्होंने मुझे थ्री डेंटल सेंटर से जुड़ने का मौका दिया। फिर मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ महिपाल सर का, जिन्होंने मुझे रीडीडा फैमिली का हिस्सा बनाया और उससे जोड़ा, सभी को जानने का एक मौका दिया। रीडीडा के बारे में मैं नहीं जानती थी, बट जब यहाँ पे जोड़ी मुझे बहुत सारी चीजें सीखने को मिली और जो जो मैंने सीखा वो एक्सपीरियंस मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। जैसा कि फोटोज वगैरह, एडिटिंग वगैरह, वीडियोस, शॉर्ट्स, फोटोज, ये सब लेना मुझे नहीं मालूम था। जब मैं रेडिटर सेंटर से जुड़ी मुझे मालूम हुआ, इन सब चीजों से मैं अनजान थी, बट जुड़ी तो मैंने एडिटिंग सीखी, वॉइस स्किल। जरूरी नहीं कि हमारे बोलने का तरीका कैसा है, हमारी वॉइस स्किल कैसे, ये मायने रखता है, हम कैसे बोलते हैं, कितना उतार चढ़ाव हमारी आवाज में है, किस तरीके से हम बोल रहे हैं, जरूरी ये है। जैसा कि अब वॉइस स्किल में मुझे नहीं मालूम था कि कहाँ कितना ठहराव रखना है, लेकिन जब महिपाल सर ने हमें इतना सब कुछ सिखाया, हमने सीखा भी और बहुत कुछ किया भी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना पैंडेमिक में हम सभी के जीवन में कितने उतार चढ़ाव आए हैं, हम सभी ने आज से पहले ऐसा जीवन कभी नहीं देखा था, बट इस दौर में हम सभी को कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला। जैसे कि सब अपने घर में हैं, हम भी हैं, हमने इस समय में हम खाली नहीं बैठे, रीड इंडिया सेंटर से हम लोग जुड़े, फिर हमने सीखा कि ऐसे दौर में हर इंसान जब घर में बैठता है तो हर इंसान बोर होता है, दम घुटने लगता है लोगों का घर में बैठ के, लेकिन इस दौर में हमने घर में बैठ के नहीं बल्कि हमने सीखा, ऑनलाइन क्लास ली, सर से हमने बहुत कुछ सीखा। अब जैसा कि हमने बहुत सारे FM रेडियोज को सुना होगा, बट हमने सुना ही था लेकिन कभी उन्हें करीब से नहीं जाना था, लेकिन रीडीडा सेंटर के जुड़ने के कारण हमने इसे करीब से जाना और उसे देखा और किया। और जैसा कि हम जानते लोगों की आवाजों को सुनते हैं पर ये नहीं जानते कि वो लोग कितनी मेहनत करते हैं, जब हम इससे जुड़े तो हमने किया तो हमें पता चला कि लोग कितनी मेहनत करते हैं। हम लोगों को सिर्फ वॉइस के थ्रू हम सुनते हैं बट कभी जाना नहीं, जब किया तो लगता है कि हाँ कितनी मुश्किल है ये चीजें। बहुत अच्छा लगा ये सब चीजें जानकर, करने के बाद बहुत मतलब कि हमने किया तो बहुत एक्सपीरियंस मिला। अब जो मैं आपके सामने जो बोल पा रही हूँ ये सब महिपाल सर, पूना मैम की, इन सभी की बदौलत है कि मैं इतना कॉन्फिडेंस अपने अंदर बोलने का ला पा रही हूँ सभी के सामने। इससे पहले मैं बहुत नर्वस हुआ करती थी, बोलने मेरी आवाज भी नहीं निकलती थी। इसी के साथ मैं आप सभी से धन्यवाद लेना चाहती हूँ और रीड इंडिया सेंटर का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि मुझे इतना सब कुछ सीखने का मौका मिला।
10: हेलो, मेरा नाम तनु है, मैं शाहबाद में रीड इंडिया सेंटर से बोल रही हूँ। यहाँ पे मैंने वीडियो और ऑडियो एडिटिंग का कोर्स किया है। पहले हमें नॉलेज थी बट इतनी नॉलेज नहीं थी जितनी अभी हमारी डेवलप हो गई है। अभी हमें यहाँ से बहुत अच्छी अच्छी स्किल्स सीखने को मिली है जिससे हमें बहुत सारी चीज़ें आई हैं। अब हम यहाँ से वीडियो खुद बना सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें खुद कर सकते हैं, तो हमें यहाँ पे आकर बहुत फ़ायदा हुआ है, सीखने को मिला है। थैंक यू।
11: मेरा नाम रितिका है, मैं 16 साल की हूँ और मैं शाहबाद मोहम्मदपुर की हूँ। मैंने रीड इंडिया से एडिटिंग का कोर्स किया है। ये कोर्स करने के बाद मैंने इसको अपनी स्कूल लाइफ में यूज किया है। जितनी हमारी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं और जितनी भी वीडियोस एडिटिंग होती हैं क्लास की, वो सब मैं ही करती हूँ। इससे मुझे बहुत हेल्प मिली है। अब मैं कोई भी काम आसानी से कर लेती हूँ। हमारी स्कूल असेंबलीज होती हैं, हमारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, वो सब मैं ही देखती हूँ एडिटिंग करने के लिए। और फ्यूचर में मैं इसको अपनी करियर में यूज करना चाहूंगी। थैंक यू।
12: मेरा नाम माया श्री है, मैं 32 साल की हूँ। मैं रीड इंडिया सेंटर द्वारका सेंटर से टैली का कोर्स कर रही हूँ। मुझे टैली के बारे में पहले कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, कोई नॉलेज नहीं थी, लेकिन यहाँ रीड इंडिया सेंटर पर आने के बाद टैली के बारे में मेरी नॉलेज इम्प्रूवमेंट हुई है। इसलिए मैं अब अपनी नॉलेज को और ज्यादा इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए आती हूँ।
13: मेरा नाम रंजिता जैन है, मैं 17 साल की हूँ। मैं यहाँ रीड इंडिया द्वारका सेंटर में ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स सीखती हूँ। मैंने यहाँ बहुत सारी ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में सीखा और मैं फोटोज एडिटिंग आसानी से कर सकती हूँ। और मैंने पोस्टर डिजाइन करना सीखा और पैम्पलेट्स बनाना सीखा। मैं इसको अपनी डेली लाइफ में यूज कर रही हूँ और मैं अपना करियर ग्राफिक डिजाइन में बनाना चाहती हूँ और मैं ग्राफिक डिजाइन में बनाना चाहती हूँ।
14: मेरा नाम उपासना है, मैं शाहबाद मोहम्मदपुर में रहती हूँ। मैंने रीड इंडिया सेंटर के बारे में अपनी एक फ्रेंड से सुना। यहाँ पे ऑनलाइन सेलिंग का कोर्स मैंने किया, जहाँ पे मुझे सिखाया गया कि यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इन सब के थ्रू अपना प्रोडक्ट कैसे सेल किया जाए, वो भी सेफली। थैंक यू।
15: मेरा नाम रेशमा वर्मा है, मैं शाहबाद मोहम्मदपुर में रहती हूँ। जब पहले मैं यहाँ रीड इंडिया सेंटर में एडवांस्ड कोर्स कर रही हूँ। पहले जब मैं यहाँ आई थी तो मुझे थोड़ी बहुत सिलाई आती थी, पर मेरे हाथ में सफाई नहीं थी और ना मुझे इतनी ज्यादा चीजें आती थी जो आजकल चल रही है। अब मेरे हाथ में सफाई भी आ गई है, जैसे जिप लगाना और चैन वगैरह लगाना, सब प्लाजो में जेब लगाना, इन सब चीजों में। और अब मैं चैन वगैरह लगाना सब प्लाजो में जेब लगाना इन सब चीजों में और अब मैं मुझे यहाँ आके बहुत सारा कुछ नया सीखने को मिला है, जैसे पैंट, प्लाजो, फ्रॉक सूट, ये सब। और अब मैं बहुत खुश हुई सीखने के बाद। मैं अपने सूट अपने आप सिलती हूँ और मैं अपने दोस्तों को और अपने फ्रेंड सर्कल में सबको बताती हूँ कि मैं हमारे इंडिया सेंटर से सिलाई सीखी है। और वहाँ के मैडम और बाकी स्टाफ सब बहुत अच्छा है, सब बहुत अच्छे से बिहेवियर करते हैं और बहुत अच्छे से सिखाते हैं, चाहे कितनी बार भी पूछो बहुत अच्छे से बताते हैं। और अब मैं बहुत खुश हूँ, आगे जब मुझे कहीं जॉब मिलेगी तो मैं जॉब करूंगी और नहीं तो मैं अपना घर बैठ के सिलाई भी करूंगी, अपने भी, बाहर के भी। और आगे कभी फ्यूचर में मिला तो कहीं और अप्लाई जरूर करती रहूंगी, जहाँ नौकरी मिले वहाँ मैं करूंगी। धन्यवाद।
16: मेरा नाम गरमा है, मैं शाहबाद मोहम्मदपुर में रहती हूँ। मैंने रीड इंडिया सेंटर से एडवांस स्टिचिंग का कोर्स किया है। मुझे पहले थोड़ा बहुत आता था और अब यहाँ पे आने के बाद मुझे सब कुछ आ गया है लगभग। अभी बस फिनिशिंग थोड़ी बहुत बाकी है, वो भी मेरी कंप्लीट हो जाएगी और इसके बाद मैं अपना एक बुटीक खोलना चाहूंगी, जिसमें मेरे पास थोड़े बहुत पैसे या कुछ भी होगा, जिससे मैं अपना कुछ कर सकूंगी, अपना काम निकाल पाऊंगी और अपना कुछ करियर कर पाऊंगी। जॉब भी करना चाहूंगी, अगर मेरे को फैसिलिटी मिलेगी आगे चल के तो मैं उसको जरूर अप्लाई करूंगी।
17: मेरा नाम अर्चना तिवारी है, मैं शाहबाद मोहम्मदपुर गांव में रहने वाली हूँ। मैंने रेड इंडिया से स्टिचिंग, एडवांस स्टिचिंग का कोर्स किया है। पहले मुझे फिनिशिंग नहीं आती थी, अब मैंने सब कुछ सूट वगैरह, गले की डिजाइन, बाजू, सब कुछ करना सीख लिया है। अब मैं खुद से अपना कुछ करना चाहती हूँ।
18: मेरा नाम बेबी श्वेता है, मैं शाहबाद मोहम्मदपुर में रहती हूँ। मैंने रेड इंडिया सेंटर से एडवांस स्टिचिंग का कोर्स किया है। पहले भी मुझे सिलाई आती थी, लेकिन जब से मैंने एडवांस स्टिचिंग का कोर्स किया है, जब से मेरे कपड़ों में और अच्छी फिनिशिंग आती है, मुझे बहुत

0: नया नया सीखने के लिए मिला, जैसे कि चोली कट ब्लाउज, सिंपल ब्लाउज, अम्ब्रेला कट बाजू, बोट नेक। और पहले मुझे गले की डिजाइन वगैरह, सूटों के डिजाइन, ये सब अच्छी तरीके से सिलना नहीं आता था। जब से मैंने ये एडवांस स्टिचिंग का कोर्स किया है, मुझे बहुत अच्छे से सिलना आता है। मेरे कपड़े में बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। अब मैं अपने फैमिली मेंबर्स के कपड़े खुद ही सिलती हूँ। मेरे पास बाहर से भी कुछ कपड़े सिलने के लिए आते हैं, जिससे मेरे अपने खुद की जरूरतें पूरी हो जाती है। इस एडवांस स्टिचिंग करने से मेरे अंदर बहुत बदलाव आया है। थैंक यू।
1: मेरा नाम मंजू है, मेरी उम्र 28 साल है। रीड इंडिया से मैंने एडवांस स्टिचिंग का कोर्स किया है। ट्रेनिंग लेने के बाद मेरी निजी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा परिवर्तन हुआ है। पहले मेरे पास स्टिचिंग के लिए कपड़े आते थे, लेकिन उनमें अच्छे से फिनिशिंग नहीं हो पाती थी। लेकिन रीड इंडिया में आने के बाद मैंने फिनिशिंग के साथ साथ बहुत सारे नए नए डिज़ाइन बनाने सीखे। हाँ, मुझे नए नए डिज़ाइन सीखने को मिले जो मुझे पहले नहीं आते थे। लेकिन ये कोर्स करने के बाद मेरे पास बाहर से कपड़े सिलने के लिए भी आने लगे। रेड इंडिया में आने से पहले मुझे पैसों के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन स्टिचिंग सीखने के बाद मुझे दूसरों की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि अब मैं अपने निर्णय खुद ले सकती हूँ और खुद ही अपना पैसे कमा सकती हूँ। और अब मैं बाहर से गारमेंट स्टिचिंग करके अपने इनकम पा रही हूँ। रेड इंडिया में आने के बाद मुझे बहुत खुशी और सफलता मिली है।
2: मेरा नाम मीनू है। मैंने रीड इंडिया सेंटर से ऑनलाइन सेलिंग का कोर्स किया है। पहले मैं इतनी कैपेबल नहीं थी, जो मैं किसी के पास बोल नहीं पाती थी, बट मैं बोलती भी हूँ और मैं एक रिसेप्शन की जॉब भी करती हूँ सावाद मोहम्मद को। थैंक यू सो मच।
3: मेरा नाम किरण राजपूत है। मैं 49 ईयर्स ओल्ड हूँ और मैंने रीड इंडिया से मार्केटिंग ऑनलाइन का कोर्स किया था, जिसका बेनिफिट ये हुआ है मुझे कि मैं अपने जो काम मैं कर रही थी उसको मैं अच्छी तरह से और प्रेजेंट कर पाई हूँ और मार्केटिंग स्केल को और अच्छे से समझ पाई हूँ कि किस तरह से हम लोग मार्केटिंग को ऑनलाइन के साथ क्रिएट कर सकते हैं और अपने प्रोडक्ट्स और अपनी क्वालिटीज़ को किस तरह से हम और ज़्यादा अधिक से अधिक लोगों के आगे प्रेजेंट करने में हमें मुझे आसानी हुई है। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ रीड इंडिया का, जिन्होंने ऑलरेडी ये कोर्स चलाया, जिससे कि हम मुझे बहुत बहुत बेनिफिट फ़ायदा हुआ है। थैंक यू फॉर द रीड इंडिया।
4: हेलो, मेरा नाम आशु है। मैं शाहबाद की रहने वाली हूँ। मुझे रीड इंडिया सेंटर के बारे में मेरे फ्रेंड से पता लगा। मैं यहाँ आई, फिर मेरी सुमन मैम से बात हुई। सुमन मैम ने मुझे बताया यहाँ पर मैक पार्लर एंड सिलाई सेंटर का भी काम सिखाया जाता है। फिर मैंने हर्बल के प्रोडक्ट बनाना सीखा। मैंने हर्बल के प्रोडक्ट में लिप स्क्रब, लिप बाम एंड बॉडी लोशन, फेस क्रीम और साबुन बनाना सीखा। मैंने उसको खुद घर पे यूज़ किया और मेरी फैमिली में भी यूज़ किया। उसके बहुत ही बेटर रिजल्ट आया। एंड थैंक यू सुमन मैम एंड थैंक यू रीड इंडिया सेंटर। थैंक यू सो मच।
5: नमस्कार, मेरा नाम सरिता सुबेदी। मैं शाहबाद के रहने वाली हूँ। मुझे अपने फ्रेंड से पता चला रीड इंडिया के बारे में। जैसे मैं वहाँ जाके पता करी तो वहाँ मुझे पता चला कि हर्बल प्रोडक्ट के अलावा वहाँ पर सिलाई, कंप्यूटर और पार्लर के कोर्स भी सिखाई जाती है। जैसे मैं सुमन मैम से मिली और सुमन मैम से जानकारी ली कि यहाँ पर हर्बल प्रोडक्ट बनाने सिखाई जाती है, तो मैंने ज्वाइनिंग किया और हर्बल प्रोडक्ट बनाना सीखा। मैम ने मुझे बहुत अच्छी तरीके से नेचुरल, बिल्कुल बिना केमिकल के प्रोडक्ट बनाना सिखाया, हर्बल प्रोडक्ट, जिसमें से बॉडी सोप, बॉडी वाटर, लिप बैम, लिप स्क्रब, बहुत अच्छे प्रोडक्ट बनाना सिखाया और मुझे बहुत अच्छा लगा। कुछ बॉडी लिप बाम, बॉडी स्क्रब एंड फेस क्रीम मैंने बनाया भी खुद और यूज किया, मेरी फैमिली को भी यूज कराया। सबको बहुत अच्छा लगा और सब ने मतलब बहुत तारीफ किया। इसलिए थैंक यू सो मच सुमन मैम एंड थैंक यू सो मच रीड इंडिया इतने अच्छे प्रोडक्ट सिखाने के लिए। थैंक यू सो मच।
6: मेरा नाम सोनिया है और मैं शाहबाद मोहम्मदपुर में रहती हूँ। मुझे ब्यूटिशियन का कोर्स करना था, तो मैं ब्यूटिशियन के कोर्स के लिए पूछने गई, तो मुझे वहाँ फीस बहुत महंगी बताई, जो कि मैं अफोर्ड नहीं कर पाती। तो मुझे किसी से रीड इंडिया सेंटर के बारे में पता चला, तो मैं रीड इंडिया सेंटर में गई और मैंने वहाँ जाके मैम से पूछा कि मैम मुझे ब्यूटिशियन का कोर्स करना है। तो मैम ने मुझे ब्यूटिशियन के कोर्स के बारे में बताया और साथ में वहाँ स्टिचिंग, कंप्यूटर हर्बल प्रोडक्ट बनाना सिखाया जाता है, तो मैंने वहाँ पे ब्यूटिशन का कोर्स करना स्टार्ट कर दिया और मुझे 3 मंथ्स हो गए हैं ब्यूटिशन का कोर्स करते करते और मुझे बेसिक पार्लर पूरा आ चुका है। तो मैं रीड इंडिया सेंटर को और सुमन मैम को थैंक यू बोलना चाहूँगी जिसके वजह से मुझे मेरा ब्यूटिशन का कोर्स पॉसिबल हुआ हो पाया है, क्योंकि महंगी फीस की वजह से मैं अफोर्ड नहीं कर पा रही थी। तो थैंक यू सो मच सुमन मैम एंड थैंक यू सो मच रीड इंडिया सेंटर।
7: हाय, माझं नाव सामी, मी जोगेश्वर आहे, माझं शिक्षण 11वीपर्यंत झालेलं आहे। मी रीड इंडियामध्ये 3 महिन्यामध्ये कोर्स करते, त्यामध्ये मी ब्लाऊज, साधा ब्लाऊज, कटोरी ब्लाऊज,
8: हाय, मेरा नाम है रेशमा अग्रवाल जोगिनकर, मैंने 12वीं की हूँ साइंस से गोरेगांव से और मैं 3 महीने से रीड इंडिया से कोर्स कर रही हूँ बेसिक टेलर कोर्स का। और उसके बाद मैंने उसमें सीखी हूँ झबला, बिनबाही का, सादी चड्डी, फैंसी बॉनेट, उसके बाद प्रिंस कटोरी ब्लाउज, फ्रॉक और पंजाबी सूट। थैंक यू।
9: हाय, माझे नाव अक्षता अशोक कांबळे, मी ऍग्रीकल्चर डिग्री करत आहे आणि इथे खामगाव मंडी इंडियामध्ये मशीन शिवण क्लास करत आहे। त्याच्यामध्ये जे दररोजच्या लागण्यासाठी जे कपडे आहेत त्याच्यामध्ये शिकवलं जात आहे आणि इथे खूप काही गोष्टी शिकण्यासारख्या, रेड इंडियामध्ये खूप काही गोष्टी शिकण्यासारख्या मिळाल्या, त्यामुळे त्यांचे आम्ही आभार व्यक्त करते। थँक्यू।
10: नमस्कार, माझं नाव मनवा जीवन अडवीलकर, माझं शिक्षण टीवाय बी ए मधून झालेलं आहे। मी इथे रेड इंडिया सेंटरमध्ये 3 महिन्यापासून कोर्स करत आहे। त्या कोर्समध्ये मी बिनबाईचा झबला, कटोरी ब्लाऊज, प्रिन्स कटोरी, साधा ब्लाऊज, ड्रेस हे सगळं शिकली आहे। थँक यू रीड इंडिया।
11: माझं नाव नौशीन वजीर जोगिरकर, माझा शिक्षण 12वी, मी रीड इंडिया सेंटरमध्ये कोर्स केला आहे शिवण क्लास, 3 महिन्याचा कोर्स आहे। त्याच्यामध्ये बिनभाईचा झबला, चड्डी, सलवार कमीज, ब्लाऊज हे सर्व शिकवले गेलं आहे। हा कोर्स भेटण्यामधून तुमचे आम्ही आभारी आहोत।
12: आपकी उम्र
13: 22।
12: रीड इंडिया सेंटर से आपने कौन सी ट्रेनिंग ली?
13: कंप्यूटर की और पार्लर की।
12: ट्रेनिंग लेने के बाद आर्थिक स्थिति के बदलाव के बारे में बताएं।
13: ट्रेनिंग लेने से हमें ये फायदा हुआ है कि हम सेल्फ डिपेंडेंट सकते हैं, उससे हमारी इनकम बढ़ सकती है, ट्रेनिंग बच्चों को दे सकते हैं, कोचिंग ले सकते हैं।
12: आप आगे क्या करना चाहती हैं?
13: कंप्यूटर ही कोचिंग दे रही हूँ, कंप्यूटर में स्कोप है, कंप्यूटर से ही जॉब कर रही हूँ
12: यहाँ पे। आपका नाम क्या है?
13: स्वाति।
12: आपकी उम्र?
13: 24।
12: रीड इंडिया सेंटर से आपने कोई ट्रेनिंग ली?
13: यस मैम, हमने 2 ट्रेनिंग ली थी, पार्लर का और कंप्यूटर का।
12: तो आपने कंप्यूटर में क्या क्या सीखा?
13: कंप्यूटर में एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, नेटवर्किंग
12: बेसिक सीखा आपने। और पार्लर में?
13: पार्लर में मैम कटिंग, फेशियल, ब्लीच, वैक्सिंग।
12: ट्रेनिंग लेने के बाद आर्थिक स्थिति के बदलाव के बारे में क्या आप कुछ बता सकते हैं?
13: मैम कंप्यूटर सीखने के बाद घर पर बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, कोचिंग पढ़ाते हैं कंप्यूटर के बारे में, उससे अच्छी खासी इनकम होने लगी।
12: और पार्लर का?
13: पार्लर में मैम बस साइड में चल रहा है मुझे।
12: अच्छा, जीवन के निर्णय और पारिवारिक निर्णय लेने की आपकी क्षमता में कोई सुधार हुआ?
13: यस मैम, पहले से ज्यादा इनकम होने लगी है, सेल्फ डिपेंडेंट हो गया।
12: गुड। आप आगे क्या करना चाहती हैं?
13: मैम पार्लर में कर रहा है, पार्लर खोल रहे हैं,
12: अपना पार्लर खोल रहे हैं। अच्छा, तो पार्लर की पूरी ट्रेनिंग लेने के बाद मतलब आप चाहते हो अपना पार्लर?
13: जी।
14: माझं नाव आदिती संजय वाळंदकर, माझ्या गटाचे नाव महालक्ष्मी गट, गाव विनेरे, आम्ही रीड इंडिया सेंटर विनेरे येथे पापड मेणबत्ती बनविण्याचे प्रशिक्षण घेतले। तेथे टाटरे मॅडम यांनी आम्हाला खूप चांगल्या प्रकारे मेणबत्ती बनवण्याची माहिती दिली व त्यातून पुढे व्यवसाय कसा करायचा याचे मार्गदर्शन केले, मार्केटिंगचे आश्वासन दिले, त्यामुळे बचत गटाच्या वतीने व्यवसाय सुरू करण्याची नवी उमेद मिळाली। रीड इंडिया सेंटर विनेरे व टाटरे मॅडम यांचे आम्ही आभार मानतो।
15: जय बजरंग महिला बचत गट, गाव विनेरे। आम्ही रीड इंडिया सेंटर विनेरे येथे पापड व मेणबत्ती बनवण्याचे प्रशिक्षण घेतले. तेथे तात्रे मॅडमनी आम्हाला खूप चांगल्या प्रकारे मेणबत्ती बनवण्याची माहिती दिली व त्यातून पुढे व्यवसाय कसा करायचा याचे सुद्धा मार्गदर्शन केले. मार्केटिंगचे आश्वासन मॅडमने आम्हाला दिले, त्यामुळे बचत गटाच्या वतीने व्यवसाय सुरू करण्यासाठी आम्हाला नवीन उमेद मिळाली आहे. त्यामुळे आम्ही तात्रे मॅडम आणि रीड इंडिया संस्थेचे विनेरेकडून आभार मानत आहोत.
16: माझे नाव शर्मिला मंगेश विसापूरकर. माझ्या गटाचे नाव जय बजरंग महिला बचत गट गाव विनेरे. आम्ही रीड इंडिया सेंटर विनेरे येथे पापड व मेणबत्ती बनवण्याचे प्रशिक्षण घेतले. तेथे टाटरे मॅडम यांनी आम्हाला खूप चांगल्या प्रकारे मेणबत्ती बनवण्याची माहिती दिली व त्यातून पुढे व्यवसाय कसा करायचा याचे मार्गदर्शन केले. मार्केटिंगचे आश्वासन दिले, त्यामुळे बचत गटाच्या वतीने व्यवसाय सुरू करण्याची नवीन उमेद मिळाली. या वतीने टाटरे मॅडम रीड इंडिया व टाटरे मॅडम यांचे मी आभार मानतो.
17: माझे नाव श्वेता संतोष सकपाळ, वय 24 वर्ष, रेड इंडिया सेंटर विनेरे येथून मी ग्राफिक डिझाईनचा कोर्स केला. यामध्ये मला फोटो एडिटिंग, बॅनर डिझाईन आणि व्हिडिओ बनवायला शिकवलं. त्याचा आम्ही नक्कीच भविष्यात उपयोग करू व रेड इंडिया सेंटरने आम्हाला जे फ्रीमध्ये कोर्स प्रोव्हाइड केले त्याबद्दल त्यांचे धन्यवाद.
18: माझं नाव श्वेता रोशन सप्पा, वय 29 वर्ष, रेड इंडिया सेंटर विनेरेकडून आम्हाला ग्राफिक डिझायनिंगचा कोर्स शिकवण्यात आला. या कोर्समध्ये आम्ही फोटो एडिटिंग, बॅनर डिझायनिंग आणि व्हिडिओ कशा बनवायचा हे शिकलो. या शिक्षणाचा उपयोग आम्ही भवितव्यात नक्कीच करू. रेड इंडिया सेंटरने आम्हाला हा जो कोर्स फ्रीमध्ये प्रोव्हाइड केला त्याबद्दल त्यांचे मनापासून धन्यवाद.
19: मेरा नाम लक्षा है, मैं रीड इंडिया पडवाई सेंटर सिलाई सीखी है. मैं पडवाई में रहती हूँ और मैं इस सेंटर में आती जाती रहती हूँ. इस सेंटर से मैंने अच्छी सिलाई सीखी है. अपने घर के कपड़े सिलती हूँ और मोहल्ले के भी कपड़े सिलती हूँ. इस रीड इंडिया का धन्यवाद करना चाहती हूँ. मैं इस रीड इंडिया में सिलाई सीख कर और सिलाई करती हूँ मैं और कपड़े सिलती हूँ. उससे जो पैसा आता है मैं अपने कॉलेज की फीस करती हूँ, जमा करती हूँ. मेरा नाम निशा है, मैं पढ़वाई रीड इंडिया से सिलाई सीखी है. मैं एक फैशन डिजाइनर बनना चाहती हूँ और तरह तरह के डिजाइन के कपड़े सीना चाहती हूँ. और मेरा एक सपना ये है कि मैं एक सेंटर खोल सकूँ जिससे बच्चों को अच्छे से डिजाइन के कपड़े सिखा सकूँ. मेरे तरफ से सेंटर को धन्यवाद.
20: मेरी एज 21 है. मैं लास्ट डे पर रहती हूँ. मैं रीड इंडिया सेंटर में एडवांस स्टिचिंग का कोर्स किया है. मुझसे काफी कपड़े सिलाई के आ गए हैं, जैसे कि डिजाइनिंग कुर्ती, डिजाइनिंग पैंट, प्लाजो, गरारा, फरारा, लहंगा, चोली वगैरह वगैरह काफी सिलाई आ चुकी है. और मेरे डिजाइनिंग मैं अपने डिजाइन खुद करती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है अपने डिजाइन सिलाई करना. और मेरे डिजाइन सिलाई के लोग भी मतलब कहते हैं मेरे भी सीधे, इस वजह से मेरे मतलब काफी सिलाई आती है घर पर. और मैं सिलाई की वजह से अपने घर में काफी हेल्प कर सकती हूँ. और मैं पहले मतलब अपनी कुछ नहीं कह सकती थी अपने बारे में, पर अब मैं सबसे कुछ भी कह सकती हूँ और मैं अपना खर्च खुद ही उठा सकती हूँ. पढ़ाई वगैरह का भी काफी कुछ अपने लिए कर सकती हूँ. मैं एडवांस सिलाई सीख के मुझे काफी लाभ हुआ है.
21: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फिजा है. मैं कलघर में घोसियान मोहल्ले में रहती हूँ. रीड इंडिया कलघर सेंटर हर्बल कॉस्मेटिक का कोर्स कर रही हूँ, जिससे मुझे बहुत फायदा हुआ है. जैसे कि लिप बाम, बॉडी वैक्स, बॉडी बटर और वगैरह काफी कुछ सीखने मिला है और इसमें मुझे बहुत इंटरेस्ट है. मैं रीड इंडिया कलघर सेंटर को धन्यवाद कहना चाहती हूँ.
22: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अनम है और मेरी एज 18 ईयर्स है. और मैं एक बहुत मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ. यहाँ पर रीड इंडिया सेंटर आने से पहले मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी यहाँ आने के लिए भी बहुत ज़्यादा. और मेरी फैमिली में भी बहुत ज़्यादा इनकम की प्रॉब्लम थी. मेरे पापा प्लम्बरिंग का काम करते हैं, मम्मी सिलाई करती हैं. तो मैं सोचती थी कि शायद मैं कुछ कर सकूँ अपने मम्मी पापा के लिए या अपने खुद के लिए, कि मैं अपना खुद खर्च अपना खुद लूँ, मम्मी पापा से नहीं लूँ. इस वजह से मैंने सोचा कि मैं अपने खुद काम करूँ, खुद कुछ भी करके अपना खुद ही निकालूँ खुद भी. फिर मैंने मुझे यहाँ पर रीड इंडिया सेंटर के बारे में पता चला तो मैं यहाँ पर आई. मैंने यहाँ पर आके बेसिक सिलाई का भी कोर्स किया है और ऑनलाइन सेलिंग का कोर्स किया है. इसके जिसमें मैंने बिजनेस कम्युनिकेशन और लाइफ स्किल्स और मेंटल हेल्थ का कोर्स है और ये सब लेने के बाद मेरा माइंड बहुत फ्री रहता है। पहले मैं किसी के सामने बोल नहीं पाती थी, बिल्कुल ही बात नहीं कर पाती थी और अब अच्छे से मैं सबसे बोल पाती हूँ, बात कर पाती हूँ। मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस जागा है, दूसरों के सामने बोलने का, कुछ करने का एक हिम्मत आई है। पहले मुझे कुछ नहीं आता था बिल्कुल, यहाँ आने के बाद बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है मुझे, बहुत अच्छा लगता था यहाँ आके। और अब भी मैं पूरी कम्प्लीट स्टिचिंग कर चुकी हूँ और इससे मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है। इससे मैं अपनी इनकम भी अच्छे से काम कर लेती हूँ और मैं अपने खर्च खुद निकालती हूँ, किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती। और पहले मैं मेरी पढ़ाई रुक चुकी थी इस काम पैसों की वजह से ही और पापा की मजदूरी के काम की वजह से ही, मगर जब से मैंने अपना काम शुरू किया है या मैंने स्टिचिंग का कोर्स किया है उसके बाद मैं अपने खर्च और स्कूल की कॉलेज की पढ़ाई खुद में करती हूँ, खुद अपना खर्च निकालती हूँ। और यहाँ पर आने के बाद मैंने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक से मैंने अपने डिज़ाइन अपलोड किए और मैं उसको अब सेल करती हूँ इस पर, उससे मुझे बहुत अच्छी इनकम हो जाती है और अपने मैं इस वजह से अपने घर में भी पूरी हेल्प देती हूँ और मैं अपनी पढ़ाई वगैरह भी खुद कर लेती हूँ। और मेरे रीडिया सेंटर आने के बाद बहुत ज़्यादा मुझे फ़ायदा हुआ है और मेरी रीडिया सेंटर को बहुत ज़्यादा शुक्रिया करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच रीडिया सेंटर।

आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो। रीड इंडिया समुदाय के सहयोग के द्वारा समुदाय के विकास के लिए कार्य करता है। रीड इंडिया ग्रामीण समुदायों में स्थायी सामाजिक परिवर्तन हेतु शिक्षा, उद्यम और सामाजिक विकास के क्षेत्र में कार्य करता है। आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो।

0: रीड इंडिया अपने सभी केंद्रों के द्वारा विभिन्न समुदायों की युवतियों व महिलाओं में सीखने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता रहा है। तो आइए सुनते हैं इन्हीं युवतियों व महिलाओं के अनुभवों पर आधारित कार्यक्रम, सुनिए उनकी कहानी, उनकी जुबानी।
1: माय नेम इज प्रियंका चंदेलिया। बाय प्रोफेशनली मैं मॉडलिंग करती हूँ, मैगजीन शूट्स करती हूँ ग्रह शोभा के, एंड रीड इंडिया से मैं कोर्स कर रही हूँ, हॉस्पिटैलिटी ट्रेनिंग ले रही हूँ, जहाँ मैं दीक्षा मैम से मिली हूँ। दीक्षा मैम बहुत अच्छी है, इनका नेचर बहुत अच्छा है, सिलेबस भी काफ़ी अच्छे से रीड करा रही हैं मैम, एंड प्रैक्टिकल्स भी काफ़ी अच्छे से समझा रही हैं मैम। मुझे बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके। एक्चुअली सर मेरी स्कूलिंग यहीं से हुई है, शाहबाद मोहम्मदपुर विलेज गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल से, एंड मेरे फादर गवर्नमेंट जॉब पे है, एमसीडी डिपार्टमेंट में क्लर्क है। मैं मदर भी एमसीडी डिपार्टमेंट में ही है, गवर्नमेंट सर्वेंट है। सर मुझे मॉडल बनना था बट मैं अभी उस लेवल तक जा नहीं पाई, बट मुझे लगा अब काफ़ी टाइम हो गया, मुझे 4-5 ईयर्स हो चुके हैं मॉडलिंग लाइन में, बट मुझे इतना उसमें कुछ नहीं लग रहा। मैंने सोचा क्यों ना मैं कुछ हॉस्पिटैलिटी ट्रेनिंग से कुछ सीख सकूं, अच्छा कर सकूं। बट यहाँ पे आने के बाद मेरी पर्सनैलिटी भी डेवलप हुई है, एंड दीक्षा मैम ने बताया है मुझे कैसे क्या होगा, और एक्चुअली मैं यहाँ पे आने के बाद जॉब के लिए भी अप्लाई कर चुकी हूँ, पासवर्ड रेस्टोरेंट द्वारका सेक्टर 23, कुछ टाइम बाद मेरी ज्वाइनिंग है वहाँ पे। एक्चुअली सर रीड इंडिया से मैंने एक ब्यूटी पार्लर का कोर्स भी किया था, कुछ टाइम आई थी मैं यहाँ पे 4-5 ईयर्स से पहले, तब से ही मैं रीड इंडिया को जानती हूँ, एंड रीड इंडिया बहुत बेस्ट है। रीड इंडिया से सीखने को काफ़ी कुछ है, अगर हमें उस लायक बनना है तो हम किसी को, मैं बाहर जाके किसी को बता भी सकती हूँ रीड इंडिया से मुझे क्या क्या मिल रहा है एंड मुझे क्या क्या सिखाया जा रहा है। जॉब के लिए, अच्छी जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं हम लोग, एंड रीड इंडिया की जो कोर्सेज है वोकेशनल्स वगैरह के, वो बहुत बेस्ट है, ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए।
2: मैं पूनम तनवर, शाहबाद गांव में रहने वाली, दिल्ली में, मेरा जन्म दिल्ली में हुआ। मुझे अपने पेरेंट्स पे इतना प्राउड है, उन्होंने मेरे लिए आज तक जो किया, सीरियसली उन्होंने जो भी किया सिर्फ मेरे लिए किया, और मैं अब उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ, उनके लिए कुछ बन के दिखाना चाहती हूँ, जो लोग बोले कि ये उनकी बेटी है। मैं अपनी पहचान अपने पेरेंट्स के साथ बनाना चाहती हूँ, उनके लिए इतना कुछ करना चाहती हूँ कि लोग देख के बोले कि यहाँ इन्होंने के लिए कुछ किया, बहुत अच्छा किया। उन्होंने मेरा एडमिशन पूर्णिमा स्कूल, इशावाद गांव के पूर्णिमा स्कूल में कराया, वहाँ यहाँ पर मैं बचपन से पढ़ी 5th क्लास तक, फिर उन्हीं के साथ मैं हर काम, ऐसा एक काम नहीं था जो मैंने उनके बिना आज तक किया, हर चीज़, स्कूल भी, यहाँ तक कि स्कूल लेने जाना, मुझे छोड़ने जाना, मेरे स्कूल सुबह सुबह मॉर्निंग में मेरा मिल्क शेक भी वही बनाते थे, मतलब स्टडीज करना, अपने स्कूल से आके जो स्कूल में मैं पूरे दिन मस्ती करती थी, पढ़ाई करती थी, टीचर के साथ, फ्रेंड्स के साथ हर बात आके उनसे शेयर करती थी, कोई प्रॉब्लम होती थी सबसे पहले अपने पा के पास जाके अपनी शेयर करती थी। आज भी अगर वो थोड़ी देर के लिए भी कहीं चले जाते हैं तो मन उदास हो जाता है। मुझे अपनी मम्मी से भी बहुत लगाव है, बट लेकिन पा से थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि वो अपने, मतलब सारा दिन मैं अपने पापा के साथ ज़्यादा रहती हूँ, मम्मी मतलब स्कूल में, स्कूल के लिए अगर ट्यूशन छोड़ाना या फिर और कुछ कर देना, बट लेकिन मैं पा के साथ जो मैं करती हूँ, सीरियसली वो बेस्ट मोमेंट मेरे पापा के साथ जो है, बहुत अच्छे मोमेंट है। मैं अपने लाइफ टाइम अपने पापा के साथ रहना चाहती हूँ, लाइफ टाइम उनके लिए जितना करूँ, मैं जितना करूँ उतना ही कम है। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं कि गर्ल्स कुछ नहीं कर सकती है, गर्ल पावर जो होती है, वुमेन पावर, वो एक सबसे बेस्ट पावर होती है, वो गॉड ही उनको पावर देके भेजता है। अगर गर्ल्स बनाई है, वुमेन बनाई, तो उनके लिए भी एक स्पेशल पावर भी उनको दी है। ऐसा कुछ नहीं कि गर्ल्स कुछ नहीं कर सकती है, बाहर जाके पढ़ नहीं सकती है, कॉलेज नहीं जा सकती, या फिर ये वाला काम उनके लिए नहीं बना है, हर काम गर्ल्स के लिए बना है। अगर भगवान ने गर्ल्स को, वुमेन्स को बनाया है, तो उनके लिए भी हर काम बनाया है, वो पावर उनके लिए उनको दी है। ऐसी कोई बात नहीं है कि गाँव की लड़कियाँ ये नहीं कर सकती है, शहर की लड़कियाँ ये कर सकती है, हर काम लड़कियाँ कर सकती है, हर चीज़ पॉसिबल है। हाँ, रीड इंडिया सेंटर पे आके मुझे अच्छा लगता है। यहाँ पे फ्रेंड्स बनाए मैंने, टीचर्स के साथ बहुत मस्ती की। यहाँ पे आके मेरा कोई एम नहीं था कि मैं ये सीख के जाऊँगी, बस मस्ती के लिए आ गई थी। बट लेकिन यहाँ पे आने के बाद कुछ सीखने को भी मिला, इतनी अच्छी टीचर्स मिली। उनके साथ जब मतलब वो डांटती भी है तो भी अच्छा लगता है। एक दिन बात ना करो तो टीचर भी परेशान हो जाती है, जिसको क्या हो गया। मतलब हर चीज़ यहाँ की, हर चीज़ अच्छी है।
3: आई एम प्रियंका जायसवाल, आई बिलोंग यूपी इलाहाबाद एंड लिविंग साहबाबाद मोहम्मदपुर। मैं यहाँ पे दिल्ली में कोर्स करने के लिए आई हूँ, फैशन डिजाइनर कोर्स। एंड वहाँ पे यूपी में अप्लाई नहीं था जॉब, मतलब कोर्स करने के लिए। हमारे पापा यहाँ गवर्नमेंट जॉब करते हैं, मैं उसके उन्हीं के साथ रहती हूँ यहाँ पे। मैं यहाँ पे सिलाई इसलिए सीख रही हूँ क्योंकि मैं अपने गाँव वाली लड़कियों को जो घर से बाहर नहीं निकल सकती ना, मैं उनको घर के बाहर निकालने के लिए सिलाई सेंटर खोलना चाहती थी, और भी फ्री कोर्सेज के लिए। मैं इतना ही कहूँगी अपने हर लड़की माँ बाप को कि प्लीज़ उन्हें बाहर भेजें, कुछ करने के लिए उनको भेजें। अधिकतर यहाँ पे उसके हस्बैंड यही सोचते हैं कि ये बोझ है, तो ऐसे ना करें, उसे मतलब समझे कि ये बोझ है। कम से कम अगर वो कुछ करेगी बाहर जाके तो कम से कम उसके घर में हेल्प ही होगा, अच्छा ही होगा जो होगा। मेरी बचपन से यही हॉबी थी कि मैं पुलिस बनूँ, लेकिन मेरी लंबाई छोटी होने के कारण मैं पुलिस नहीं बन सकी। इसलिए मैं ऐसे ही अपने गांव में ही हेल्प करना चाहती हूँ छोटा मोटा। और मेरी स्कूल लाइफ तो बहुत अच्छी थी, बहुत ज़्यादा, जो अभी तक नहीं मिली ना, शायद न मिल पाएगी कभी। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी अपनी लाइफ अच्छे बनाने के लिए, कोर्स करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए यही अच्छा मौका है। अपने माँ बाप से कहें हमें घर से बाहर करने के लिए, कोर्सेज के लिए जारी रखें। दिल्ली में पहले हमारे पापा लोग रहते हैं, हम तो बचपन से गांव में थे। तो इंटर मतलब 12th क्लास पास होने के बाद हम दिल्ली आए। जब दिल्ली यहाँ पे आए तो यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज थे, अच्छे अच्छे भी थे, तो इसलिए मैंने फैशन डिजाइनर का कोर्सेज अप्लाई कर लिया।

एवरीबॉडी इज वेलकम ऑन दिस सेशन। तो आज हम सेशन जो है, आप सबको पता है, लीडरशिप पे ही मैं सेशन लेती हूँ। और सबसे पहला पॉइंट मैं यहाँ पे हाईलाइट करूंगी कि सबके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज हैं। एवरीबॉडी शुड एक्नॉलेज कि हाँ, मैं एक लीडर हूँ, किसी ना किसी रूप में मैं लीडर हूँ। तो ये सब एग्री करते हैं इस बात पे कि लीडरशिप तो है, हम उसको इनवोक करते हैं कि नहीं करते, वो हमारा डिफरेंट कंसर्न है, बट एवरी बॉडी हैज अ लीडरशिप क्वालिटी इन दैम। एग्री करते हैं आप सब मेरे से? तो चैट में थोड़ा यस लिख दीजिए या हैंड रेस कर दीजिए, तो मुझे पता चलेगा कि हाँ, एवरीबॉडी एग्रीज दैट एवरीबॉडी हैज द लीडरशिप क्वालिटीज। किसी में परसेंटेज वेरी कर ज्यादा है, किसी में कम होता है, किसी में ज्यादा होता है, बट एवरीबॉडी हैज दैट, राइट? तो मुझे लगता है कि आप सब लोग मेरी इस बात से सहमत करते हैं कि हर एक में लीडरशिप क्वालिटीज होती है, पर हमें क्या करना होता है, उस लीडरशिप क्वालिटीज को इनवोक करना होता है। इनवोक मतलब कि पहचानना होता है और उसको जागरूक करना होता है, जो हम नहीं कर पाते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम। मे बी कोई भी सरकमस्टांसेस ऐसे होते हैं, कोई चैलेंजेस ऐसे होते हैं, या हम अनइंटेंशनली भी नहीं कर सकते। इंटेंशंस तो सब में होती है कि हमें लीडर बनना है, पर हम अनइंटेंशनली भी उसको इनवोक नहीं कर सकते। इनवोक मतलब कि उनको पहचानना, उनको रिकग्नाइज करना, और उनको एवरी टाइम वी हैव अ फीलिंग इन आवर माइंड, यस वी आर लीडर्स विद इन आवर सेल्व्स। सबकी कम्युनिकेशन स्किल्स अलग अलग होती है। कोई बहुत इफेक्टिव कम्युनिकेशन करता है, कोई डरता है कि मैं बात बोलूं तो मेरी बात पता नहीं पहचानी जाएगी कि नहीं पहचानी जाएगी, शायद मैं ठीक बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ, क्या मैं ठीक लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ या नहीं कर रहा। तो ये एक डिफरेंट एस्पेक्ट है जो स्मिता उसके ऊपर लाइफ स्किल्स का सेशन लेती है, और वो कल इस बात को भी हाईलाइट करेगी कि हाउ कम्युनिकेशन स्किल हेल्प अस इन डेवलपिंग आर लीडरशिप स्टाइल, आर लीडरशिप विद इन आवर सेल्स। इफ वी हैव लीडरशिप, हाउ टू इनवोक दैट थ्रू इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स ऑल्सो, दैट इज वन ऑफ द एस्पेक्ट विच स्मिता विल हाईलाइट टूमोरो। द सेकेंड पॉइंट इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट कि हम जो कहना चाहते हैं अपने, जब हम लीडरशिप का रोल प्ले करते हैं, कम्युनिकेशन प्लेज अ वेरी इम्पोर्टेंट रोल। सबको पता है कि बातचीत के दौरान कम्युनिकेशन के तीन प्रकार के हम यूज करते हैं टूल्स। एक तो हम वर्बली बोलते हैं, दूसरा हम लिख के बताते हैं, और तीसरा 80% ऑफ आर बॉडी लैंग्वेज ऑल्सो स्पीक्स अबाउट आर लीडरशिप क्वालिटीज। कि हम किसी के सामने अगर टिमिड बन के बैठ जाते हैं, टिमिड मीन्स कि हम अपने आप को कमजोर साबित करते हैं कि हम कमजोर हैं, हम कॉन्फिडेंट नहीं हैं, हम वी आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस फुली व्हाट वी वांट टू से, दैट इज द बॉडी लैंग्वेज। बट यस, रिटन एंड ओरल आर द टू टूल्स नॉर्मली वी यूज फॉर शोइंग आर लीडरशिप क्वालिटीज एंड ऑल्सो कम्युनिकेटिंग विथ ईच अदर। दो साइलेंटली ऑल्सो, जो बहुत सारे लोगों का ये भी विचार है और मैं भी सहमत करती हूँ उससे, कि साइलेंट कम्युनिकेशन ऑल्सो प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, एंड दैट साइलेंट कम्युनिकेशन इज कन्वेड थ्रू योर बॉडी लैंग्वेज ऑल्सो। सो जब हम लीडरशिप की बात करते हैं तो हमें इन सब बातों का भी ध्यान रखना पड़ता है। दूसरा बात, हम ये होते हैं सोचते हैं कि क्या हम ठीक है या गलत है। ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है, कि क्या मैं जो कम्युनिकेट कर रही हूँ, वेदर आई एम राइट और रॉन्ग, ये एक्सपीरियंस से, पढ़ने से, सुनने से और
अपने आप को एक्सपोजर देने से इन राइट सोसाइटी, मेरे वर्ड्स अंडरलाइन करिए, इन राइट सोसाइटी अगर हम बैठ के कुछ भी बात बोलते हैं या कुछ सुनते हैं या सीखते हैं, तो हमारे अंदर का जो लीडरशिप सैंक्टिटी है, मैं इसको सैंक्टिटी बोलती हूँ, मैं भी पहले ऐसे नहीं थी जो आज जो आपके सामने हूँ, तो इसलिए मैं बहुत क्लियरली आपको समझा पा रही हूँ कि लीडरशिप हर एक में होती है क्वालिटी, पर उसको उसको पॉलिश करना, उसके ऊपर जो धूल मिट्टी पड़ी है उसको हटाना और अपनी बाकी के स्किल्स को एनहांस करना ही हमें हेल्प करता है अपनी लीडरशिप क्वालिटीज को एनहांस करने में। तो एक तो हमें कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि जो हम बोल रहे हैं, जो हम कह रहे हैं, वो हम कॉन्फिडेंट हो कि हम राइट बोल रहे हैं, राइट वे में कन्वे कर रहे हैं, जो हमारी लैंग्वेज है वो भी ठीक है, और जो हम बोल रहे हैं जिसको हम कंटेंट बोलते हैं वो भी ठीक है। तो ये कैसे आता है? पढ़ने से, सुनने से, आंखों से देखने से, कानों से सुनने से, और सोसाइटी में क्या हो रहा है, समाज में क्या हो रहा है, घर में क्या हो रहा है, उसको जानने से हमारा कॉन्फिडेंस, हमें क्लैरिटी भी आती है, हमें करेज भी मिलता है और हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। जो थर्ड पॉइंट है, इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम अपनी लाइफ में बहुत सारे डिसीजंस लेते हैं, सब लेते हैं, सुबह उठते ही चाहे छोटा डिसीजन हो और रात के सोने तक चाहे छोटा डिसीजन हो, चाहे बड़ा डिसीजन हो, चाहे घर के बारे में हो, चाहे समाज के बारे में हो, चाहे बच्चों के बारे में हो, चाहे ऑफिस के बारे में हो, चाहे लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं उनके बारे में हो, या हम कुछ ना कुछ डिसीजन जरूर लेते हैं, डिसीजन लेते हैं, सोचते हैं पहले कि ठीक है या नहीं, वो प्रैक्टिस से हमें आता है जब हम उसको एनालाइज करते हैं कि वेदर वी आर राइट और रॉन्ग, और फिर हम डिसीजन अपना कन्वे करते हैं। और बहुत बारी हमें एक्सपीरियंस ये होता है कि हम डिसीजन शायद इमोशनली ले रहे हैं या हम अपना दिमाग इस्तेमाल करके डिसीजन ले रहे हैं। तो ये जो कश्मकश है हमारे दिल में, जो हम ये इसके बारे में सोचते रहते हैं, वो एक आर्ट है, उसको हमें प्रैक्टिस से ही आता है और उसको हमें प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है कि हम क्या डिसीजन ले रहे हैं, क्योंकि हम वैरायटी ऑफ पीपल के साथ डील करते हैं और हमारा डिसीजन डिपेंड करता है कि हम उसको एनालाइज कैसे कर रहे हैं, उसके रिपरकशंस क्या होंगे, उसको हम ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट डिसीजन अपना कन्वे करें या नहीं करें। ये बहुत सारी चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी होती हैं, और अगर हम इनको ध्यान में नहीं रखते हैं तो शायद हम कहीं ना कहीं अपने डिसीजन गलत भी ले सकते हैं। हम जब अपनी बात किसी के सामने रखते हैं, कोई उसको एक्सेप्ट करता है, कोई उसको क्रिटिसाइज कर देता है, या कोई उसको डिस्कार्ड कर देता है। सिमिलरली मैं आज अगर सेशन ले रही हूँ, तो अगर यहाँ पे जितने भी लोग जुड़े हैं, 29-30 लोग लाइन पे हैं, उनमें से हर कोई 100% एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। ये हर एक के साथ होता है, मेरे साथ भी होता है। जब भी मैं किसी को सोचती हूँ तो मैं एक कुछ हद तक, मे बी 90%, मे बी 80%, मे बी 70% मेरी एब्जॉर्प्शन लेवल होता है। क्यों होता है, ऐसे वेरिएशन क्यों आता है? क्योंकि हमारे स्टेट ऑफ माइंड पे बहुत डिपेंड करता है कि हम कितने अलर्ट हैं। हमारे माइंड में कुछ और चल रहा है, शायद घर की टेंशन है, चाहे ऑफिस की टेंशन है, चाहे मैं आई रास्ते में मुझे बस नहीं टाइम से मिली, या मुझे ट्रांसपोर्ट नहीं मिला, या मेरे बच्चे के स्कूल का कुछ है, या हस्बैंड के साथ कोई बात है, एनी रीजन जो हमारे दिमाग में ऑलरेडी चल रहा है, वो हमारे एब्जॉर्प्शन लेवल को
उसका असर होता है, राइट? तो हम तभी कहते हैं कि हमें अपनी सोच को उस हद तक ही एक्सटेंड करना चाहिए, स्ट्रेच करना चाहिए कि हम उसका उसका असर हमारी दिनचर्या पे नहीं हो। प्रॉब्लम सबके साथ है, चैलेंजेस सबके साथ हैं, पर ये प्रैक्टिस के साथ आता है। अगर हमारे अंदर कुछ लीडरशिप की शक्तियां हैं या कुछ लीडरशिप के भावना है अपने अंदर लीडरशिप को डेवलप करने की, तो विद प्रैक्टिस हम ये जो एक्सटर्नल प्रेशर्स हैं हमारे ऊपर जो डे टू डे लाइफ में आते हैं, हम किसी हद तक उनको कंट्रोल कर सकते हैं। जो लीडरशिप क्वालिटीज हैं, लीडरशिप क्वालिटीज हमें ये हमेशा ये लेसन हमें मिलता है कि हम अपने पास्ट को एनालाइज करें, अपने प्रेजेंट को उसी तरीके से एक्शन लें और अपने फ्यूचर को एनविजन करें। ये लीडरशिप की क्वालिटीज होती है, क्योंकि लीडरशिप थोड़ा हटके होता है, वो दिनचर्या के साथ हम रोजमर्रा की जिंदगी के साथ उसको नहीं जोड़ सकते हैं। और मैं क्यों बार बार इस पे एम्फसाइज कर रही हूँ कि हमें अपनी लीडरशिप की जो क्वालिटीज हैं, जो सो रही हैं, उनको जगाने की जरूरत है। तो मैं यहाँ पे आपको ये भी कहना चाहूंगी कि आज मैं आपको 10 E's की फिलॉसफी समझाऊंगी कि 10 E's क्या है। E मतलब कि कैपिटल E। एक तो हम बहुत ज्यादा, मैं जिस भी गांव में जाती हूँ, जिस सेंटर में जाती हूँ, हम बहुत ज्यादा इमोशनली एंटैंगल होते हैं, और हम अपनी पर्सनल लाइफ में भी बहुत ज्यादा इमोशनली एंटैंगल होते हैं किसी भी सिचुएशन के साथ। तो जब हम बहुत ज्यादा इमोशनली एंटैंगल होते हैं, तो हम अपने ब्रेन का इस्तेमाल कम करते हैं। दिस इज अ नेचुरल इंस्टिंक्ट कि अगर हम इमोशनली बह जाएंगे तो हमें अपने दिमाग से जो सोचना है वो शक्ति हमारी कम हो जाएगी। तो सबसे पहले हमें इमोशनली स्ट्रांग बनना है। वी आर वर्किंग विद वुमेन फ्रॉम द पास्ट 2 डेज। आई वॉज ट्रैवलिंग, आई वॉज इन रामपुर, आई वॉज इन उधम सिंह नगर। आई मेट हंड्रेड्स ऑफ वुमेन जिनको मैं बार बार यही कहती हूँ कि देर इज अ नीड टू ड्रॉ अ बैलेंस बिटवीन इमोशंस एंड योर ब्रेन, दिमाग के साथ। तो ये आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, पर ये प्रैक्टिस से आती है। अगर हम प्रैक्टिस करेंगे और ये प्रैक्टिस के जो स्टेप्स हैं, मैं आज आपको समझाऊंगी कि क्या स्टेप्स हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है कि ऑलवेज अगर कोई हमारे पास सेंटर में आ रही है कोई इश्यू लेके, अपना पर्सनल इश्यू है विच इज वेरी स्ट्रॉन्ग, और हम उसको सुनते नहीं हैं, हम अपना बिना सुने, बहुत 90% लोग क्या होते हैं, सुनने की क्षमता कम रखते हैं और अपना डिसीजन करने हम बहुत जल्दी करते हैं। इट्स अ नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी कि हम बिना सोचे समझे, बिना सुने, बिना उसको एनालाइज करे, हम अपनी बात पहले रखने की कोशिश करते हैं, और ये घर में भी होता है। हमें सिंपैथी से ज्यादा एम्पैथी अपनानी चाहिए। एम्पैथी मींस, एम्पैथी का मतलब ये होता है कि हम अपने आप को उस सिचुएशन में रख के उस इंसान की प्रॉब्लम को रियलाइज करें। शायद आप उस प्रॉब्लम से ना गुजरे हो और दूसरा इंसान उस प्रॉब्लम से गुजर रहा हो, और वो उसके पास एक ही उम्मीद है कि मैं सेंटर में जाऊंगी, मैं अपनी टीचर से ये बात करूंगी, या अपने पीयर ग्रुप में ये बात करूंगी, या मैं अपने कोऑर्डिनेटर के सामने ये बात रखूंगी, और हम लोग इतने बिजी होते हैं कि हम उनको टाइम नहीं दे पाते। पर हमेशा हमें उनकी सिचुएशन में अपने आप को रख के अगर हम वो प्रॉब्लम को एनालाइज करें, उस
प्रॉब्लम को इमोशनली ना देख के जो हमारे अंदर स्ट्रेंथ्स हैं लीडरशिप की या लाइक किसी की सिचुएशन को समझने की, उसको सामने रख के अगर हम उसको हेल्प करें तो हम बहुत ही रियलिस्टिक वे में उसकी मदद कर रहे हैं, उसकी हेल्प कर रहे हैं। तो मैंने दो चीजों को यहाँ पे एम्फेसाइज किया, जो भी मैंने अभी बोला है, कि इमोशंस को कंट्रोल में रख के और एम्पैथी के साथ अगर हम दूसरे की प्रॉब्लम को सुनते हैं, समझते हैं और उसको हम ठीक ढंग की सलाह देते हैं, तो वो इंसान भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ेगा और हमको भी एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन होगी कि हमने किसी के लिए कुछ किया। तो यहाँ तक सब

मैंने कम्युनिकेशन की पहले बात करी थी आपके साथ कि विदाउट विदाउट एनालाइजिंग व्हाट वी आर कन्वेइंग, हाउ वी आर कन्वेइंग, व्हाई वी आर सेइंग दिस, इन सब चीजों को भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, बिकॉज वी आर नॉट मैनेजर्स, वी आर लीडर्स। हम यहाँ पे लीडर्स की बात कर रहे हैं। मैनेजर तो ये बोलते ना कि मुझे नहीं पता तेरे घर में जितनी भी प्रॉब्लम्स हो, इट्स योर कंसर्न, मुझे तो ये काम चाहिए चाहिए, मुझे आज ही करके दो, नहीं तो कल से जॉब पे नहीं आना। ऐसे कभी सेंटर्स में बात हुई है? नेवर एवर। मुझे नहीं पता कि आज तक हमने कभी इस लहजे में किसी से बात की है, हम कभी भी नहीं करते हैं। दैट इज द वन ऑफ द मेजर वैल्यू ऑफ रीड इंडिया विच वी पास ऑन टू आर कोऑर्डिनेटर्स, आर टीम, आर स्टेक होल्डर्स, एवरीबॉडी। एम आई राइट? तो रथलेस बिल्कुल नहीं होना। एम्पैथी इज द आंसर, पुटिंग योर सेल्फ इन टू देयर शूज एंड एनालाइज व्हाई शी इज सफरिंग, व्हाई शी इज हैविंग दिस प्रॉब्लम टुडे, और उसको पूरा टाइम देना है उसकी प्रॉब्लम सुनने का। और ये मैं बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करती हूँ। मैं जब भी सेंटर में जाती हूँ, कोई भी लेडी मेरे पास आती है कि मुझे ये प्रॉब्लम है, तो मैं उसको टाइम देती हूँ, उसकी बात सुनती हूँ। बट हाँ, बहुत सारे ऐसे सेंटर्स हैं जिसमें मैं नहीं जा पाई हूँ, जैसे बिहार के सेंटर्स हैं, मैं नहीं जा पाई। बैंगलोर का सेंटर है, कोविड की वजह से मैं नहीं जा पाई। बागेपल्ली मैं पहले बहुत बार गई हूँ, आंध्रा भी गई हूँ, श्री सिटी भी गई हूँ, पर जितना फ्रिक्वेंटली मुझे जाना चाहिए उतना फ्रिक्वेंटली मैं नहीं ट्रेवल कर पाती हूँ। अर्लियर बिकॉज ऑफ द कोविड, एंड सेकेंडली अभी इतने सारे सेंटर्स बढ़ गए हैं कि वो ट्रैवल करना ही थोड़ा सा टफ हो जाता है। नाउ जब हम एम्पैथी की बात कर रहे हैं, तो हमारे हमें अपनी एक प्रैक्टिस ये भी शार्प करनी चाहिए कि हम उस सिचुएशन को एनालाइज करें, इवैल्यूएट करें कि व्हाई दिस हैज हैपेंड टू हर। ऑल ऑफ अ सडन तो नहीं होता है, उसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं। उन रीजंस को हम नजरअंदाज कर देते हैं, हम उनको एनालाइज नहीं करते हैं, हम उनके बारे में सोचते नहीं है, और हम जल्दी से अपना डिसीजन लेके हम अपनी लाइफ को आगे ले जाते हैं। जब हम इस तरीके से अपनी लाइफ को आगे ले जाते हैं, या अगर हम इस तरीके से दूसरों को सलाह देते हैं, तो ये इसका इम्पैक्ट बहुत शॉर्ट टर्म होता है, बहुत लॉन्ग टर्म नहीं होता। हम उस प्रॉब्लम को नजरअंदाज करके उस दिन के लिए अपना सोल्यूशन निकाल रहे हैं, पर वो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। हमें हमेशा लॉन्ग टर्म सोल्यूशन के बारे में सोचने की आदत डालनी चाहिए अपने आप को। जितना हम इस चीज की प्रैक्टिस करेंगे, उतना हम अपने आप को ये जो वेब है चैलेंजेस का, प्रॉब्लम्स का, डे टू डे लाइफ का, वेब का मतलब क्या होता है, जाला, उससे हम अपने आप को आस्ता आस्ता बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। तो मैंने चौथा ई यहाँ पे क्या बोला, इवैल्यूएट करना, उस सिचुएशन को परखना, उस सिचुएशन को जांचना। और ये हम अगर आदत डाल लेंगे अपने, तो ये हमारी एक रूटीन बन जाएगी कि व्हाई व्हाई आई एम सीइंग लाइक दिस, व्हाई आई एम एक्टिंग लाइक दिस, व्हाई व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ व्हाट एक्शन आई एम टेकिंग। ये हमें आदत पड़ जाएगी, और कोई ना कोई नेचुरल फिनोमिना हमें आके स्टॉप करेगा कि लेट अस नॉट बी वेरी एग्रेसिव इन कन्वेइंग आवर डिसीजंस, इन यूजिंग द रथलेस लैंग्वेज, इन यूजिंग द वर्ड्स विच आर नॉट रिक्वायर्ड टू से। तो ये हमें क्या है, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स को पॉलिश भी करता है, और ये डे टू डे लाइफ में हमारे रिलेशनशिप बिल्डिंग में बहुत असर करती है ये चीज। तो ये प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है।

0: है हमारे लिए। फिर अगर हमारे में लीडरशिप का स्पार्क है तो हम उस दूसरे पर्सन जो हमारे पास आया है अपनी प्रॉब्लम को लेके, हम उसको एनेबल करते हैं कि अपनी सिचुएशंस को खुद ही एनालाइज करो। हम अपना डिसीजन उनपे नहीं थोपे, हम अपना डिसीजन नहीं कन्वे करें कि यस आप तो लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, राइट? तो अगर हम उनके अंदर एक आदत डालते हैं कि हम उनको एनेबल करते हैं कि आप अपनी सिचुएशन को खुद एनालाइज करो, और उनको बहुत ही हलीमी से हम उनको समझाते हैं, तो शायद हम उनको हेल्प कर रहे हैं कि वो अपनी जिंदगी के डिसीजंस खुद एनालाइज करे, खुद अपने जीवन में आगे बढ़े, और अपनी प्रॉब्लम्स को उलझाना की बजाय उनको रिजॉल्व करने की आदत डालें। नेक्स्ट स्टेप है कि हम इस प्रोसेस से अगर हम चलते हैं, हम उसको एनेबल करते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? उनको एम्पावर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उनके अंदर जो छुपी हुई शक्ति है उसको किसी ना किसी तरीके से बातचीत करके, समझा के, उसको हेल्प करके उस शक्ति को भी हम उभारने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम उसको एम्पावर भी कर रहे हैं। एम्पावर किसके लिए कर रहे हैं? जो सिचुएशन में वो फंसी हुई है, जो सिचुएशन से वो आगे नहीं बढ़ पा रही है, उस सिचुएशन को एनालाइज करके कामली कंपोज मैनर में वो अपने सॉल्यूशंस खुद ही ढूंढ रही है, और हम उसको हेल्प कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। दैट इज द मीनिंग ऑफ एम्पावरिंग। हम भी ऐसे ही करते हैं। रीड इंडिया क्या करती है? एंगेज करती है, एनकरेज करती है, एम्पावर करती है, और आपको आगे बढ़ने का खुद ही आप अपना रास्ता ढूंढते हो। मैं खाली जो आप लोग करते हो उसी को आपके सामने रख रही हूँ, मैं कोई नई चीज आपके सामने नहीं रख रही हूँ, ठीक है? जब हम एम्पावर करते हैं तो व्हाट यू आर डूइंग, यू आर इनकलकेटिंग द हैबिट ऑफ टेकिंग राइट डिसीजंस फॉर राइट एक्शन एट राइट टाइम। आप तीन चीजों को नोट करिए कि जब आप उसको एम्पावर एनेबल कर रहे हो, उसको एम्पावर कर रहे हो, तो आप उसमें एक आदत इनकलकेट कर रहे हो। इनकलकेट का मतलब उसको एक आदत उसमें ये बहुत अच्छे से डाल रहे हो कि वो राइट डिसीजन ले, राइट एक्शन ले उस डिसीजन के ऊपर, और राइट टाइम पे ले, ठीक है? ये तीनों चीजें बहुत जरूरी है। तो वो कैसे आती है? जब हम पिछले जो पांच स्टेप्स मैंने बताए हैं उनपे हम रेगुलर प्रैक्टिस करने की आदत डालें, उसको रोज प्रैक्टिस करें, अपने दिनचर्या को, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को उसके साथ हम जोड़ें। तो मैंने आपसे अभी तक जो बात की है वो इमोशंस की बात की है, एम्पैथी की बात की है, इवैल्यूएट करने की बात की है, एनेबलिंग करने की बात की है, एनकरेज करने की बात की है, और उनको एम्पावर करने की बात की है। तो ये पॉइंट्स आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, नहीं तो मैं सबको मेल भी कर दूंगी, ठीक है? सो विद दीज फाइव ईज यू आर एनेबलिंग द अदर पर्सन टू एनलाइटन हिज और हर ओन पाथ ऑफ ग्रोथ। तो उसको एक रोशनी की किरण मिलती है कि हाँ, अरे ये तो ठीक ही है, इन्होंने मुझे बताया कि मैं इस सिचुएशन से कैसे निकल सकती हूँ, मुझे इन्होंने रास्ता दिखाया, डिसीजन मेरा है, उन्होंने खाली मुझे रास्ता दिखाया है कि आप इस रास्ते पे भी चल सकती हैं, सेकंड लेन में भी जा सकती हैं, थर्ड में भी जा सकती हैं, फोर्थ में भी जा सकती हैं। चॉइस आपकी है, क्योंकि आपने उसको डिस्कस किया है, उसको एनालाइज किया है, उसको इवैल्यूएट किया है, और आपने अपना राइट डिसीजन राइट टाइम पे लिया है आगे बढ़ने के लिए। अगर हम इसी बात को आगे लेके चलें, तो मैं यही कहूंगी कि इतना आसान नहीं है। चैलेंजेस आते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, जो कभी तो वो विजिबल हैं सरफेस पे, और कभी वो इनविजिबल भी हैं। विजिबल ये है कि हाँ, सामने सिचुएशन खड़ी है, सामने पहाड़ गिर गया है और मुझे सड़क पार करनी है, और जब तक मैं उस पहाड़ को, पत्थर को अपने रास्ते से नहीं निकालूंगी, नहीं आगे धकेलूंगी, तो मैं सड़क पार नहीं कर सकती। कुछ ऐसी सिचुएशंस हमारी लाइफ में होती हैं जो बिल्कुल इनविजिबल है, जो हमें दिखाई नहीं पड़ती हैं, बट प्रॉब्लम्स तो हैं। उन प्रॉब्लम्स के लिए भी हमारे को रास्ता ढूंढना है। उन प्रॉब्लम से हम कैसे निकलेंगे, उन चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए हम ही रिस्पॉन्सिबल हैं अपनी लाइफ का व्हीकल आगे बढ़ाने के लिए। और वो कैसे बढ़ेगा, कि हमें अपने आप को सेल्फ एनकरेज भी करना है आगे बढ़ने के लिए। जब तक हम अपने आप को सेल्फ एनकरेज नहीं करेंगे, हम अपने आप को वीक ही समझेंगे, और हम कहेंगे कि वी विल गिव अप, नहीं, दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, आई कैन नॉट डू दिस, आई शुड नॉट डू दिस। जब ये थॉट्स हमारे माइंड में आने शुरू हो जाएंगे, तो हम वेवरिंग माइंड हो जाएगा हमारा, हम फिर भी डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तो शुरू में मैंने क्या बोला, कि हम अपने आप को इमोशनली वीक करें, या हम अपने आप को, अपने थॉट प्रोसेस को दिमाग से सोच के हम अपने आप को स्ट्रांग करें। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दिस टू। और उसको किसने करना है, आप लोगों ने करना है। कोई भी लीडर आपके दिमाग में घुस के आपकी सोच नहीं बदल सकता है, कोई भी लीडर आपके इमोशंस को नहीं बदल सकता है, कोई भी लीडर आपको उंगली पकड़ के चलाना नहीं सिखाएगा। लीडर खाली आपको रास्ता दिखा सकता है, उस रास्ते पे चलना किसने है, आपने चलना है। ठोकरें भी आएंगी, चैलेंजेस भी आएंगे, इमोशनली वीकनेस भी आएगी, बट लीडरशिप सेज दैट यू हैव टू ब्रेक द बैरियर्स। ब्रेक द बैरियर्स मीन्स जो भी रास्ते में उलझने आ रही हैं, उनको सही दिमाग से, बहुत हलीमी से, पेशेंस से, परसिवरेंस से, उनके सॉल्यूशंस निकाल के आगे बढ़ना है। बिकॉज देयर इज अ सेइंग दैट एवरी प्रॉब्लम हैज अ सॉल्यूशन, बट बिकॉज हमारा माइंड इतना वेवरिंग होता है, हमारे पे इतने प्रेशर्स होते हैं माइंड पे, हम राइट डिसीजन एट राइट टाइम नहीं ले पाते हैं, इसलिए हम कंफ्यूजिंग स्टेट में आ जाते हैं। अनलेस वी हैव क्लैरिटी इन आर माइंड, वी कैन नॉट डेवलप द करेज फॉर शेपिंग आर ओन लाइफ टू द बेस्ट एक्सटेंट पॉसिबल। इज इट राइट? अगर हम हमेशा कंफ्यूज ही हैं, हमें क्लैरिटी नहीं है माइंड में, और क्लैरिटी प्रैक्टिस से आती है। अगर आप अपनी दो सिचुएशंस को एनालाइज करके उसका ठीक टाइम पे उसका सलूशन निकाल लेंगे, तो आपकी क्लैरिटी अपने आप ही शार्प हो जाएगी। ये मैं अपनी लाइफ एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पर अगर हम हमेशा रट में ही रहेंगे, हम अपने आप को वीक ही समझेंगे, हमारे माइंड में थॉट प्रोसेस भी नहीं आए। अगर हम नेगेटिव ही सोचते रहेंगे अपने बारे में, दूसरों के बारे में, समाज के बारे में, कि मुझे समाज ने दिया क्या है, मेरे परिवार ने मुझे क्या दिया है, मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए क्या किया है, मेरे बच्चों ने मेरे लिए क्या किया है, मेरे परिवार ने मेरे लिए क्या किया है, अगर हम ये क्वेश्चन मार्क की जिंदगी जिएंगे तो हमें क्लैरिटी नहीं आएगी। हमें इस क्वेश्चन मार्क की जिंदगी से एफर्मेशन की जिंदगी में आना है कि हाँ ये चैलेंजेस हैं मेरे सामने, इन चैलेंजेस को मुझे रिजॉल्व करना है और इन चैलेंजेस की प्रायोरिटी भी आपने तय करनी। कई बार हम क्या करते हैं, एक बहुत प्रायोरिटी सिचुएशन हमारे सामने है, हम उससे आंखें छुपा के हम दूसरी प्रायोरिटीज को रिजॉल्व करना शुरू कर देते हैं। ये ह्यूमन टेंडेंसी है, ये हम लोग सब करते हैं इंक्लूडिंग मी। आज मैं ये सेशन आपको पढ़ा नहीं रही हूँ, मैं एक लाइफ सिचुएशन आपके सामने डिस्कस कर रही हूँ। पर हमें प्रायोरिटीज भी अपने आप ही तय करनी है कि ये 100% प्रायोरिटी है, ये 80% है, ये 60% है, ये 40%। ये हमारे दिनचर्या ऑफिस में भी यही होता है कि हम अपने पूरे 8 घंटे ऐसे ही पास कर देते हैं, हम मोस्ट प्रायोरिटी वाली चीजों को छोड़ के लेस प्रायोरिटी वाली चीजों के ऊपर फोकस कर देते हैं और मोस्ट प्रायोरिटी वाली चीजें हमारी लाइफ में नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर देती हैं। उनको रिजॉल्व करने के लिए हमारा बहुत सारा टाइम चला जाता है जो हम बाकी चीजों को हैंडल नहीं कर सकते। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है जो मैं आपके सामने बोल रही हूँ और इसको आप इग्नोर मत कीजिएगा। और अब हम बात कर रहे हैं कि हमने अपने आप को एनकरेज भी किया और हमने अपनी लाइफ में एनविजन भी किया। जो मैंने आपको बोला था ना, मोस्टली स्टेटमेंट ये होती है कि यू लिव इन योर प्रेजेंट, राइट, इन अ मैनर दैट योर पास्ट गिव्स यू द हैप्पीनेस। आज का पल जो प्रेजेंट है वो पल अगले मोमेंट में वो पास्ट बन जाएगा, बनेगा। जब वो पास्ट बन जाएगा, प्रेजेंट को इस तरीके से जिया है कि आपका पास्ट आपको खुशी नहीं देगा तो आप दुख को ही लेकर आगे बढ़ेंगे। तो आपने अपनी लीडरशिप क्वालिटीज को यूज नहीं किया, आपने अपने प्रेजेंट को इस तरीके से नहीं जिया कि जब वो पास्ट बने तो आपको उसमें सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन मिले, आपको उसमें खुशी मिले। और खुशी अगर हम खाली अपने लिए ढूंढेंगे तो बहुत छोटी सी खुशी होगी, वो एक बिंदु होगा। तो ये बात भी ध्यान में रखनी है कि यू लिव योर प्रेजेंट इन अ मैनर, व्हेन इट बिकम्स पास्ट यू फील हैप्पी अबाउट दैट। ये बहुत 4 अक्षर की स्टेटमेंट है पर बहुत पावरफुल है। इस स्टेटमेंट को अगर हम इग्नोर करते हैं, इस स्टेटमेंट को अगर हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो हम अपनी लाइफ में चैलेंजेस क्रिएट कर रहे हैं और हमारा फ्यूचर तो कभी एनलाइटन फिर हो ही नहीं सकता, बिकॉज उसमें तो पास्ट का भी इफेक्ट आएगा, प्रेजेंट का भी आएगा और वो हमारा फ्यूचर बनेगा। सो वी हैव टू एनालाइज व्हाट वी आर डूइंग। हम एक समाज में रहते हैं, हमें हमेशा अपने दुख का गाना नहीं गाना है। वी लिव इन अ सोसाइटी, वी कैन नॉट जस्ट सिंग आवर ओन सॉन्ग्स, चाहे हमारी दुख हो चाहे हमारी खुशी हो। वी ऑल्सो हैव टू लेंड आवर इयर्स टू लिसन टू द सॉन्ग्स ऑफ अदर्स। हमें अपने कान जरूर दूसरों के लिए रखने हैं कि हम उनका भी गाना सुन सके, चाहे वो दुख सैड सॉन्ग हो, चाहे वो खुशी का सॉन्ग हो, चाहे वो स्ट्रगल्स का सॉन्ग हो, चाहे वो ग्लोरी का सॉन्ग हो। हमें दूसरों को भी स्पेस देनी चाहिए उनके बारे में सुनने की, विच इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स में वी जस्ट रिएक्ट, दूसरे इंसान की बात ही खत्म नहीं होती है और हमारा सोचने का स्केल इतना हाई हो जाता है, वो हमें रिएक्ट करने के लिए इतना मजबूर कर देता है कि दूसरे इंसान की बात वो किस लहजे में कह रहा है, क्यों कह रहा है, क्या चीज उसको अंदर से प्रोत्साहित कर रही है ये बात कहने की, हम बिल्कुल उसके ऊपर क्रॉस मार देते हैं। तो ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। तो ये जो जर्नी है ये लाइफ की हमारे हाथ में है, अब हमने डिसाइड करना है कि हम किस रास्ते पे चलें, कौन सा रास्ता अपनाएं और अपनी लाइफ की डायरेक्शन हम कौन सी रखें। वी शुड ऑलवेज बी फोकस्ड ऑन आर अचीवमेंट्स एंड कीप ऑन रिड्यूसिंग द लिस्ट ऑफ चैलेंजेस, ये हमारा मिशन होना चाहिए। ये आसान नहीं है, प्रैक्टिस से आता है। जितना हम दूसरों की मदद करेंगे उतना जो सुपर पावर है वो हमारे प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने में हेल्प करेगा। अगर हम अपना ही दुख को इतना बड़ा और इतना एनहेंस कर देंगे तो जो हमारी क्षमता है दूसरों की प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने की वो खत्म हो जाएगी। तो इस बात को भी बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। सो अगर हम ये आदत डाल लेते हैं, आप अगर मैं कल भी परसों रामपुर में मैं लड़कियों को बोलकर आई थी कि आप अपनी एक डायरी बनाएं और जो भी अच्छी चीज आपने सीखी, आपने समझी और आपने करी उसको अपनी डायरी में लिखें, और मैं जब नेक्स्ट टाइम आऊंगी मैं वो डायरी देखना चाहूंगी। एंड दैट डायरी इज ए बाइबल फॉर यू, दैट डायरी इज ए कुरान फॉर यू, बिकॉज हमें स्पिरिचुअल बुक्स भी क्या कहती हैं, हम अपने आप को सुधारें, हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ें, हम अपना सुख भी लोगों के साथ बांटे, खाली दुख नहीं बांटे, और दूसरों के दुख में शामिल होके उनके चैलेंजेस में शामिल होके उनको भी हेल्प करें उसमें से बाहर आने की। यही कहते हैं हमारी स्पिरिचुअल होली बुक्स। और अगर हम अपनी एक होली बुक लिखना शुरू कर दें तो कितना वंडरफुल एक्सपीरियंस होगा आपका, जब एक साल के बाद आप उसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप में कितनी अच्छाइयां हैं, है ना, कितना अच्छा लगेगा आपको वो पढ़ के। तो आप ये प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, ये आपको हेल्प करेगा जब आप पेपर पे लिखेंगे, ये आपको हेल्प करेगा अपने अंदर की नेगेटिविटी को भगाने के लिए और पॉजिटिव चीजों को इनवाइट करने के लिए। जो आपकी नेगेटिव चीजें हैं वो आपसे आस्ता आस्ता दूर जाना शुरू कर देंगी और पॉजिटिव चीजें आपके आसपास रहेंगी और आपको हमेशा एक सुकून मिलेगा, एक खुशी मिलेगी, एक आत्मविश्वास मिलेगा जिससे आप अपनी जिंदगी जी सकते हैं। बस मैं आज इतना ही कहना चाह रही थी। अगर किसी के कोई प्रश्न हो, कोई कुछ कहना चाहता हो तो हमारे पास 10 मिनट हैं, हम डिस्कस कर सकते हैं। तो जो मैंने इतने सारे ईज की आपके साथ आज बात करी है वो मैं शिवानी को दे दूंगी या मैं इसी मेल पे लिख दूंगी सबको। मैंने बात करी है इमोशंस की, एम्पैथी की, इवैल्यूएशन की, एनकरेजमेंट की, एम्पावरमेंट की, एनेबलमेंट की, एनलाइटनमेंट की, एनविजन करने की, लाइफ्स को एनरिच करने की, और लास्टली जब आप अपनी डायरी लिखना शुरू करेंगे तो आप एम्फेसाइज करेंगे दूसरों के सामने में कि इफ आई कैन डू यू कैन ऑल्सो डू, बिकॉज यू हैव जस्टिफिकेशन, यू हैव प्रूफ विद यू दैट यू हैव डन दिस। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। किसी का कोई प्रश्न, किसी का कोई कोई कमेंट और कोई शेयर करना चाहता है कुछ तो प्लेटफॉर्म आपके पास है। हमारे पास 10 मिनट हैं और हम 10 मिनट में फिर इस सेशन को कंक्लूड करेंगे। थैंक यू सो मच।
1: थैंक यू मैम, अपना इतना कीमती वक्त देने के लिए, थैंक यू सो मच, हमें इंकरेज करने के लिए, इतनी अच्छी बातें बताने के लिए, थैंक यू सो मच।
0: थैंक यू सो मच।
2: मैं सुवर्णा बोल रही हूँ मैम, पूना सेंटर से। बहुत अच्छा सेशन लिया मैम आपने, जैसा मोटिवेट किया, मतलब हम भी आपके सेशन से हम भी बहुत अच्छा मतलब स्ट्रांग बन जाते हैं आपका सेशन अगर सुना तो।
0: बहुत अच्छी बात है। और एक पॉइंट, आप एक वर्ड शेयर कर दीजिए सबके साथ, जिस जो वर्ड ने आपको मोटिवेट किया है।
2: इमोशनली हम भी स्ट्रांग बन जाते हैं मैम आपका सेशन अगर सुना ना।
0: हाँ,
2: यस
0: वेरी गुड,
2: मैम,
0: वेरी
2: थैंक यू मैम।
0: गुड,
3: मैम अंजू द्वारका सेंटर से।
0: थैंक यू। हाँ जी अंजू,
3: आज का सेशन बहुत अच्छा लगा मैम आपका, लीडरशिप की क्वालिटी जो आपने बताई है।
0: वेरी नाइस, वेरी नाइस। प्रैक्टिस करिए उसको, स्लोली स्लोली प्रैक्टिस करेंगे तो यू कैन सरपास एवरीबॉडी।
3: जी मैम,
0: ये बहुत जरूरी है, इसको खाली सुनने से तो समझ में आता है, पर प्रैक्टिस करने से और भी ज्यादा अच्छे से। थैंक
3: थैंक यू मैम।
0: यू, थैंक यू अंजू।
4: मैम इस पे चलने के लिए भी हमें पावर चाहिए, थोड़ा थोड़ा हम धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे जरूर इम्प्लीमेंट करने की, क्योंकि
0: हाँ,
4: बहुत कुछ है जिसपे प्रैक्टिस करना है। ऐसा लगता है कुछ चीज टूट जाती है, कुछ चलती रहती है, लेकिन बहुत अच्छा लगता है कि इसके बाद हमें लगता है कि हमें किस किस जगह चीज को इम्प्लीमेंट करना है। इससे हमें पता चलता है कि हमें अभी और क्या क्या इम्प्लीमेंट करना है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
4: जी मैम,
0: पहले अपनी लाइफ को स्ट्रांग बनाना है, फिर दूसरों की लाइफ को भी स्ट्रांग बनाना है। दोनों
4: जी मैम, जी मैम,
0: चीजों का दारोमदार आपके कंधों पे है।
4: जी मैम, जी मैम, थैंक यू मैम। गुड
5: आफ्टरनून मैम, फरहा बोल रही हूँ, रामपुर से हैं।
0: फरा, कैसी हो आप?
5: ठीक है मैम। आपने बताया कि हमें कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है करना, कभी भी अगर हम सेंटर पे बेनिफिशियरीज को सिखाते हैं तो यही नहीं होना चाहिए कि उसका एडमिशन किया और सिर्फ हमारा मतलब है उसको सिखाने से, कि आज उसने क्या सीखा, कल क्या सीखा, वो क्या सीख रहा है, बट उसके साथ हमारा एक अंदर से बर्ताव भी अच्छा होना चाहिए कि वो फैमिली में कैसा चल रहा है उसका, उसके अंदर की क्या प्रॉब्लम है वो हमसे शेयर कर सके। अभी मैंने लाइब्रेरी के सेशन में भी ये शेयर किया था और यहाँ भी शेयर करना चाहती हूँ। एक बेनिफिशियरी मेरे पास आ रही थी और वो आती थी, कंप्यूटर सीखती थी और चली जाती थी। काफी लड़कियां थी जो हंसती भी थी, बोलती भी थी, बट उसको किसी से कोई मतलब नहीं, आई और उसने सीखा और वो चली गई। तो मैंने नोट किया 15 दिन, 20 दिन, एक दिन मैंने उसे याद करने के लिए कुछ दिया कि आपको ये याद करके लाना है, तो वो अगले दिन याद नहीं करके लाई और बहुत रोने लगी। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कि मैम आप हमें डांटेंगी। मैंने कहा आपने मतलब देखने से पहले ही सोच लिया कि हमें मैं डांटूंगी। मैंने कहा डांटूंगी नहीं, आप मुझे बताओ कि आप रो क्यों रही हो, कि मैंने ये स्पेलिंग याद नहीं की। तो मैंने कहा आपने याद क्यों नहीं की कि वो मेरी ना मम्मी मुझे बहुत परेशान करती है। मैंने उससे ऐसी धीरे धीरे बात निकलवाई, मम्मी क्यों परेशान करती कि मेरे पापा ने दूसरी शादी कर ली, मेरी मम्मी की डेथ हो गई थी और वो कहती है अब तुम्हें कहीं पढ़ने नहीं जाना है, घर का काम करना है और भैंसों को देखना है, दूध वूध बेचना है और तुम्हें कुछ नहीं करना है और मुझे पढ़ना है मैम। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आपकी मम्मी से बात करने आऊंगी घर पे और उनको समझाऊंगी और आप सेंटर पर आओ, आपको जो सीखना है वो सीखो, बट ऐसे परेशान रहने से कुछ नहीं होगा, आपको भी बात करनी होगी खुद के लिए घर पर। तो उसको ये बात काफी समझ में आई, उसने अपने मम्मी तो नहीं सुन रही थी उसकी बात, लेकिन उन्होंने अपने पापा से वो बात की और हम उसके गाँव गए, हमने उसकी मम्मी से जब फेस टू फेस बात की तो वो बहुत तेज किस्म की थी, वो यही बोल रही थी कि नहीं अब ये क्या करेगी पढ़ के, नहीं पढ़ना है, इसकी शादी करनी है हमें और ये है और वो, और वो जो उनकी सगी बेटी थी उनको पढ़ा रही थी। मतलब गाँव में ये होता है कि वहां पर सगा सौतेले का थोड़ा सा रखते हैं कि इनको नहीं करना है, तो वहां उनको हमने बहुत इनकरेज किया और बोला कि शादी से पहले अगर आप 1-2 महीने हमारे सेंटर पे भेज दो, पूरी हमारी जिम्मेदारी रहेगी, आप सीखने दो जो वो सीखने के लिए बोल रही है, आप फीस मत देना, आपको लगता है कि मेरी बेटी के लिए वहाँ फीस जा रही है और मैं नहीं दे सकती, आप फीस मत दीजिएगा लेकिन इसको भेजो क्योंकि ये सीखना चाहती है। तो वो उस चीज से बहुत खुश हुई और उसकी मम्मी ने ठीक है आधे पौन घंटे के लिए सेंटर पे भेजना शुरू किया। तो वो जो उसकी बातें दिमाग से थी और जो वो सोचती थी, डरती थी, वो टेंशन में रहती थी, तो वो धीरे धीरे दूर हुई। तो वो सारी चीजें आपने हमें बताई कि हमें कम्युनिकेशन करना बहुत जरूरी है सेंटर पे, अगर हमारे पास एक एक बेनिफिशियरी आ रहा है तो हमें उससे हर एक बेनिफिशियरी से बात करना चाहिए, क्या पता हम अपनी बात समझा के उसको कुछ इनकरेज करें, उसकी लाइफ के लिए, क्या पता उसकी सोच चेंज करें, उसके जितने भी दिमाग में निगेटिव पॉइंट है उसको दूर करके उसको पॉजिटिव सोच में बदले। तो ये बात आपका ये पॉइंट हमेशा हम नोट भी करते हैं, करते भी आगे, और आज आपने जो बताया वो काफी हमारे लिए काम आता है। थैंक यू
0: फरह, थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। और मैं सबको सबको ये बोलना चाहूंगी जितने भी लोग ऑनलाइन हैं, मैं परसों मैं कब थे हम फरह के सेशन में, ऑन ट्यूसडे मैं स्मिता डिंपल मैम फरह और अकबर के सेशन में सेंटर में थे और इट वाज अमेज्ड। 50 से ऊपर लड़कियां थी जो इनके सेंटर में बैठी थी और सबने बुर्का पहना हुआ था। बहुत गर्मी थी, मेरी हालत एकदम खराब थी बिकॉज मुझे बहुत पसीना आता है वहां पे, तो आई वॉज स्वेटिंग लाइक एनीथिंग। पर वो माहौल देख के ना मैं अपने आप को रोक पाई, ना स्मिता अपने आप को रोक पाई, ना डिम्पल अपने आप को रोक पाई, ना फरह रोक पाई और ना ही अकबर रोक पाया। हम पांचों ने इतना उन लोगों के साथ बातचीत की, इतना उन लोगों को समझाया और वो ना वर्ड्स अपने आप आते हैं उनसे बात करने के लिए। एंड फरह, अकबर इज नॉट हियर टुडे, थैंक यू फॉर कमिंग टुडे ऑनलाइन। आज आपका फेस्टिवल है पर फिर भी आप सेशन मिस नहीं कर रही हैं। और उस दिन मेरे सामने से वो आंखों के आगे से वो सीन ही नहीं जा रहा है कि इतनी सारी लड़कियां वहां पे हमें सुनने के लिए आई हुई थी और पीछे की लड़कियां स्टूल्स पे खड़े होके हमारी शक्ल देख के हमें सुनना चाह रही। दैट वाज अमेजिंग फरह, यू आर अ रियल लीडर एंड यू आर वर्किंग इन द कम्युनिटी वेरी वेल।
5: ये सब आपसे ही सीखा है मैम, जो आप सिखाते हैं वो हम आगे करते हैं।
0: बहुत अच्छा लगा उस दिन मुझे। डिंपल ने अपने सेंटर के, स्मिता ने अपने एक्सपीरियंसेस, फरह ने अपने एक्सपीरियंसेस, जो मैं हमेशा फरह को कोट करती हूँ कि फरह को मैं जब फर्स्ट टाइम मिली थी तो दरवाजे की एक पार्टीशन थी, फरह उधर से बोल रही थी और मैं इधर से बोल रही थी। आज फरह सबके सामने इतनी कॉन्फिडेंटली बात करती है, दैट इज द ट्रांसफॉर्मेशन वी आर लुकिंग फॉरवर्ड। और अगर हमने ऐसे 10,000 या 20,000 भी लड़कियों को तैयार कर दिया तो वो लड़कियां कभी भी पीछे मुड़ के अपनी लाइफ को नहीं देखेंगी। और आप लोगों की भी गारंटी है बिकॉज यू पीपल हैव एक्सपीरियंस्ड दैट, राइट? ठीक है, थैंक यू फॉर दैट।
6: गुड आफ्टरनून मैम।
0: गुड आफ्टरनून
6: मैम। मैं गरिमा गृह से शशि।
0: हाँ जी शशि।
6: यस मैम, लड़कियां आपसे बात करना चाहती मैम, वो आपका सेशन सभी सुन रही हैं और मैम सभी लड़कियां अभी आपके सामने हैं लाइव में, वे कुछ बात करना चाहती हैं मैम।
0: हाँ जी बोलिए।
7: गरिमा गृह सेंटर से बोल रहे हैं मैम। मैम हम जो ट्यूशन सीख रहे हैं ना मैम, बहुत अच्छा सीख रहे हैं शशि मैम, हमें बहुत अच्छा सिखा रही है और हम चाहते हैं कि हमें और भी बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें सीखने को मिले। आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैम। हमने कभी सोचा नहीं था कि यहाँ ट्यूशन भी सिखाया जा सकता है, लेकिन हमें यहाँ गरिमा गृह सेंटर में ट्यूशन आगे बहुत अच्छा काम हुआ है मैम। एक और तो कहना था ना सुनता, हमें वो पहचानने के लिए मिला है मैम से, शशि मैम से, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत दिल से बहुत खुशी आ रही है मैम।
0: वेरी नाइस, थैंक यू फॉर शेयरिंग। बहुत अच्छा लगा आपकी आवाज सुन के। गरिमा गृह एक ऐसा सेंटर है, मैं सबको बताना चाहूंगी कि कीर्ति नगर में एक एमसीटी का टॉयलेट कॉम्प्लेक्स था जिसको पीवीआर नेस्ट ने बिल्कुल रेनोवेट कर दिया और उसमें दो कमरे हमें दिए हैं जिसमें हमने लाइब्रेरी, कंप्यूटर सेक्शन और स्टिचिंग सेक्शन और ब्यूटी एंड वेलनेस का सेक्शन बनाया है। और पैर रखने की जगह नहीं होती है, ये सब औरतें इतने उत्साह से उस सेंटर में आती हैं, कोई इनहिबिशन नहीं है कि वो टॉयलेट कॉम्प्लेक्स है, वहां पे हमें नहीं बैठना, वहां पे हमने नहीं सीखना। जहाँ सीखने की इच्छा होती है वहां पे राह भी निकल आती है, ये मेरा विश्वास था। तभी हमने पीवीआर नेस्ट के साथ पार्टनरशिप करके यहाँ पे सेंटर खोला था। थैंक यू सो मच, मेरा बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फरजाना, आप कैमरे में आई और फिर चली गई, आप कुछ कहना चाहती हूँ?
8: थैंक यू मैम,
0: बोलिए।
8: थैंक यू सो मच, आपका सेशन लेकर हमें ये महसूस होता है कि लीडरशिप सबके अंदर होती है, लेकिन आपका जब हम सेशन लेते हैं ना, हम अपने अंदर से उसे जगा पाते हैं। तो बात है तो सिर्फ उसे जगाने की है मैम, और फिर आपकी बातों से, आपके समझाने के तरीके से, आपके सेशन से हमें इतना अच्छा लगता है कि हमको ये अपने ऊपर कर पाते हैं कि हाँ हम भी कुछ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम, आपकी वजह से मैं भी बहुत कुछ हूँ।
0: फरजाना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये शेयर करने का, और ईद मुबारक, आज आपका त्योहार है और फिर भी आप सेशन अटेंड कर रही हैं। और फरजाना एक ऐसी लड़की है जो इतने रिमोट एरिया से और आगे इतनी बढ़ गई है, और इसका थॉट प्रोसेस इतना चेंज हो गया, और ये इतनी औरतों को एम्पावर करती है। तो अभी ये अपनी लाइफ में पीछे मुड़ के कभी नहीं देख सकती है, ये मेरे को पूरा विश्वास है ना फरजाना?
8: जी मैम, मुझे तो ना हर बार और अच्छा लगता है मैम, ऐसा लगता है ऐसा लगता है मैं वो फरजाना हुई नहीं, पता नहीं कैसे ऐसा हो गई। मैं बात करने का तरीका, मतलब जो भी पहले था, तो मैं ये कहना चाहती हूँ मैम, सिर्फ जो भी है आपकी वजह से है और हम बहुत अच्छा कर पाए, और आगे भी इंशाल्लाह आगे बहुत अच्छा करेंगे रीड इंडिया के।
0: थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया फरजाना। सना, यू ऑल्सो केम ऑनलाइन एंड देन यू क्लोज्ड। यस,
9: गुड आफ्टरनून मैम।
0: गुड आफ्टरनून,
9: हाउ आर यू मैम? हैप्पी ईद।
0: हैप्पी ईद टू यू ऑल, सबके परिवार को बहुत बहुत मुबारक, और सबने बहुत अच्छी खीर भी बनाई होगी आज, मुझे पता
9: है। यस मैम, थैंक यू मैम फॉर द सेशन, फॉर टेकिंग आउट टाइम हम लोगों के लिए, इतना टाइम निकालने के लिए, थैंक यू।
0: नहीं नहीं, ये तो मेरा फर्ज है और मेरा काम है
9: मैम। एक्चुअली ये सेशन होता है, इसकी वजह से हम लोग इंटरेक्ट भी कर पाते हैं, ऐसे हमारी बात हो, वीडियो कॉल पर हम दूसरे से बात भी कर पाते हैं, सारे सेंटर्स के लोग इकट्ठा होते हैं, सबके एक्सपीरियंसेस शेयर होते हैं, तो हमें भी लगता है बहुत कुछ चीजें ऐसी होती है जो अदर सेंटर से भी सीखने को मिलती रहती है कि हम अपने अंदर क्या इम्प्रूव कर सकते हैं, हमारी लर्निंग्स बढ़ती है, तो ये सारे सेशन बहुत बेनिफिशियल होते हैं हमारे लिए। और मैम कल का सेशन पता मैम का है, वो भी बहुत अवेटेड सेशन है।
0: और बहुत अवेटेड सेशन है, और मैं आपको बताऊं, स्मिता और मैं इसके लिए प्रिपेयर करते हैं। इट्स नॉट दैट आई स्पीक एक्सटेम्पोर, मैं पहले अपनी थॉट्स को कोलेट कर लेती हूँ, एक पेपर पे लिख लेती हूँ और स्मिता के साथ डिस्कस करती हूँ, क्योंकि हम कैसे यू नो एम्पावरमेंट जो है या लीडरशिप है, हम हवा में बात नहीं कर सकते, हमें बहुत ही पॉइंट बाय पॉइंट आप लोगों के साथ डिस्कस करके, उसको समझा के, उसको कैसे हम अपनी डे टू डे लाइफ में ला सकते हैं, वो डिस्कस करने में हमें भी एम्पावरमेंट मिलती है, हमें भी एनकरेजमेंट मिलती है। प्रॉब्लम्स सबकी लाइफ में है, पर उन प्रॉब्लम्स को कैसे रिजॉल्व करना है, कैसे एड्रेस करना है, कैसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, इट्स ए कलेक्टिव सेशन फॉर एवरीवन। हम सारे इकट्ठे तो एक ही प्लेटफॉर्म पे, थैंक्स टू टेक्नोलॉजी की हम आ सकते हैं, अदरवाइज फिजिकली मिलना तो बहुत मुश्किल है। जैसे मैंने बोला कि मैं फरा के सेंटर पे हम लोग गए थे, इट वॉज इतनी गर्मी थी, इतनी गर्मी थी मैं आपको बता नहीं सकती, एंड थैंक्स टू ऑल द गर्ल्स हु केम देयर, मोर देन 50 to 60 गर्ल्स वर देयर, एंड दे वर बबलिंग विद एनर्जी कि हमें अपनी लाइफ में कुछ करना है, हमें अपनी लाइफ में कुछ करना है। तो वो प्रोत्साहन देख के हमें भी एनर्जी मिलती है, हमें भी खुशी होती है, और फिर हमारा और करने का दिल करता है। ठीक है,
9: वेरी गुड,
0: थैंक यू सर,
9: थैंक यू मैम।
10: मैम, मैं सेशन आपका पूरा सुना है, फिलहाल मैं बस में ट्रैवलिंग पे हूँ, और आपसे बहुत कुछ सीखा सभी लोगों ने, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस चीज के लिए। और आपसे सीख के कुछ आगे बढ़ने की कोशिश है लाइफ में, जो हम अपने टारगेट को अचीव करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू मैम।
0: सुमन इज अनदर एग्जाम्पल, जो मैंने आज एक पिक्चर आपकी आंखों के आगे दिखाने की कोशिश की है। सुमन इज एन एग्जाम्पल फॉर दैट, फरा इज एन एग्जाम्पल फॉर दैट, सना इज एन एग्जाम्पल फॉर दैट, फरजाना इज एन एग्जाम्पल फॉर दैट। तो ये हमारे सामने इतने बड़े बड़े एग्जाम्पल्स हैं, और शायद ये लोग ही मुझे इनकरेज करते हैं ये सब बातें करने के लिए, क्योंकि ये सारी बातें अगर हम सब तक पहुंच जाए तो एक्चुअली रियल माने में हम एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, बस में सेशन सुनने का। थैंक यू सो मच।
10: थैंक यू मैम। थैंक यू।
0: थैंक यू।
6: थैंक यू मैम।
0: थैंक यू जी। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। सबको फिर से ईद मुबारक, और सब लोग अपना ध्यान रखें। थैंक यू। थैंक यू सो मच।
11: रीड इंडिया अपने सभी केंद्रों के द्वारा विभिन्न समुदायों की युवतियों व महिलाओं में सीखने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता रहा है। तो आइए सुनते हैं इन्हीं युवतियों व महिलाओं के अनुभवों पर आधारित कार्यक्रम, सुनिए उनकी कहानी उनकी जुबानी।
12: हेलो, मेरा नाम रजनेश देवी है और मैं सावाद मोहम्मदपुर में रहती हूँ, और मैं यहाँ की सरकारी डिस्पेंसरी में आशा वर्कर का काम करती हूँ। मुझे ये काम करके बहुत अच्छा लगता, और इस काम से अलावा अब मैं थोड़ा अपना टाइम बचा के मैं अभी इसमें रीड इंडिया में आती हूँ। सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, और मुझे यहाँ सीखने में बहुत अच्छा लगता है। यहाँ का स्टाफ भी बहुत अच्छा और हमारे साथ बहुत कोऑपरेट करता है। यहाँ पे लाइब्रेरी है, कंप्यूटर क्लासेस लगती है, सिलाई सेंटर है, और यहाँ पे पार्लर का काम भी सिखाया जाता है, जो कि बहुत ईमानदारी से और लगन से सिखाया जाता है। यहाँ का स्टाफ हमें सिखाने में हमारी बहुत मदद करता है, और मैं थोड़ा बहुत समय निकलता है तो मैं यहाँ पे आती हूँ और मैं अपने एरिया में काम करती हूँ। मुझे वो काम करके बहुत अच्छा लगता है। पहले मैं कुछ नहीं करती थी, घर में ही बस बच्चों के साथ रहना अपना करना, लेकिन अब मैं जब से मैं डिस्पेंसरी में जाती हूँ वहाँ पे मैं लोगों की मदद भी करती हूँ, और हमें वहाँ पे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है, और हम सीखते हैं और हम फील्ड में उसको बताते हैं। जिससे कि प्रेग्नेंट लेडीज है जो हॉस्पिटल में रूटीन चेकअप नहीं कराती है, हमारी मदद से वो लेडीज हॉस्पिटल में जाती हैं और अपना रूटीन चेकअप कराती हैं। बच्चों को इम्यूनाइजेशन कराते हैं हम 0 से 5 साल तक के बच्चों को, क्योंकि एक भी बच्चा टीके से छूटना नहीं चाहिए। और इसके अलावा हम फैमिली प्लानिंग पर भी ध्यान देते हैं, जिनकी फैमिली कम्प्लीट हो चुकी है उनके लिए हम NSV जो कि पुरुष नसबंदी है, इसमें बिना चीरे बिना टाके के नसबंदी होती है, जिसे गवर्नमेंट उसको 1100 रुपए प्रोत्साहन राशि देती है। और महिला के लिए नलबंदी है जिसमें गवर्नमेंट उसको 250 रुपए देती है। ये एक दूरबीन द्वारा किया जाता है, एक टाका आता है, इसमें कोई परेशानी नहीं होती है, और महिला अपना आराम से रहती है। जिनकी फैमिली कम्प्लीट हो चुकी है वो ये है कि बार बार अबॉर्शन ना कराए, अपना ये मेथड अपनाए और अपने सुखी जीवन, कहते हैं ना छोटा परिवार सुखी परिवार। और पहले हम करते नहीं थे तो हमें भी अजीब सा लगता था, लेकिन जैसे जैसे हमने सीखा है हमें बहुत अच्छा फील होता है, और हम दूसरों की मदद करते हैं तो इसमें हमें अपने ऊपर भी गर्व होता है कि हम भी कुछ लायक हैं। जब उस टाइम पे जब हम पहली बार घर से बाहर निकले थे तो हमें डर सा लगता था कि हम कैसे पब्लिक से बोलेंगे, कैसे बातें करेंगे, हमें ऐसा डर लगता था क्या पता ये बंदा हमको क्या कह दे, क्या पता ये बंदा हमको क्या कह दे, ये डर था। लेकिन अब जैसे जैसे हमें, मुझे यहाँ पे 6 साल हो गए काम करते करते, अब मुझे किसी से कोई भय नहीं है, मैं अपनी बात रख सकती हूँ और दूसरों की बात भी मैं पूछ सकती हूँ, उनको पूछती हूँ अपना बताती हूँ, तो उससे लोगों को मेरे पर विश्वास है और मुझे अब लोगों के ऊपर विश्वास हुआ है, तो मैं बेहिचक घर से बाहर जा सकती हूँ। इसमें मेरे हस्बैंड मुझे बहुत कोऑपरेट करते हैं, मेरा साथ देते हैं। हम अगर कोई मदद कर रहे हैं तो दिन में भी कर रहे हैं तो ठीक है, अगर रात है तो मेरे हस्बैंड मेरे साथ मेरी मदद करते हैं। इससे महिलाओं को भी फायदा होता है और हमें भी ये महसूस होता है कि हम भी किसी के लिए कुछ कर सकते हैं। पहले जब हम नहीं करते थे तो हमें ऐसा लगता था क्या है, अब ऐसा है कि थोड़ा मैं भी कमाती हूँ, थोड़ा मेरे हस्बैंड भी कमाते हैं, तो मुझे खर्चने में कोई दिक्कत नहीं आती है, मैं अपने फैसले अपने आप भी ले सकती हूँ। और मैं महिला को ये ही समझाती हूँ कि वो भी अपने पैरों पे खड़ी होए और अपने लिए लड़े, अपने लिए तो कम से कम लड़े ही, कि क्या अच्छा है क्या बुरा, उसमें ये होना चाहिए।

एज ए पार्ट ऑफ द करियर काउंसलिंग में. आज के सेशन में हम टीचिंग जॉब से रिलेटेड अलग अलग जो एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो आपके स्कूल लेवल पे हैं या कॉलेज लेवल पे हैं, तो आज हम सब के बारे में इन डिटेल डिस्कस करेंगे. इसके साथ साथ टीचिंग स्किल्स क्या क्या होती हैं, क्या चीजें आपके अंदर ऐसी होनी चाहिए कि जो आपको एक यू कैन बिकम ए गुड टीचर, तो ये सारे इश्यूज पे आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो जैसे अभी तक पिछले सेशंस में हमने सिविल सर्विसेज के बारे में, फिर हमने गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में किया था डिस्कस, तो आज का जो सारा सेशन है वो टीचिंग जॉब से रिलेटेड है. फिर लास्ट में आपकी जो क्वेरीज होंगी डिफरेंट एग्जाम्स के बारे में, वो भी हम इस सेशन में सारी सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो देखिए सबसे पहली चीज क्या है, देखिए टीचिंग जो है ना वो एक नोबल प्रोफेशन, और ऐसा नहीं कि मतलब आप को अगर अच्छा टीचर बनना है तो अच्छा टीचर आप किसी भी स्टैंडर्ड की क्लास के लिए बन सकते हैं. चाहिए क्या कि आपके अंदर हो, जोश हो पढ़ाने का, यू मस्ट हैव पैशन फॉर द टीचिंग, टैलेंट, नॉलेज धीरे धीरे इंप्रूव की जा सकती है. ठीक है, तो ये अगर आपका टीचिंग में इंटरेस्ट है तो उसमें आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है, और विद द पैसेज ऑफ की आप एक बहुत अच्छे टीचर बन जाते हैं. तो हमारा जो मेजर पॉइंट है कि जब हम टीचिंग के बारे में बात करते हैं तो ये सारी चीजें हमारे सामने आती हैं. सीटेट है, एसटेट है, रीट है, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट है, जेआरएफ है, डीएसएसबी, केवीएस, लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर, आर्मी स्कूल्स. तो मतलब इस तरह की सारी टर्म्स जो है वो जब भी कोई पर्सन एक गवर्नमेंट टीचिंग के टुवार्ड्स प्लानिंग करता है तो इस सारी चीजों के बारे में उसे पता होना चाहिए. उससे क्या रहता है कि अगर आपको स्टार्टिंग से ही क्लियर है कि हमें टीचिंग प्रोफेशन में जाना है तो आप उसी तरीके से अपने करियर को शेप अप कर सकते हैं. क्योंकि टीचिंग में जाने के लिए अगर आपको गवर्नमेंट टीचर बनना है तो उसके लिए कुछ असेंशियल क्वालिफिकेशंस भी है, कुछ आपको टेस्ट भी क्वालिफाई करने रहते हैं, तो उसके लिए इट्स बेटर कि आप यू कैन प्लान अर्ली. जितना जल्दी आप प्लान करेंगे उतना ही फिर आप एक अपने राइट ट्रैक पे जा सकते हैं. तो आज के सेशन में आपको मैं इन सब टर्म्स के बारे में एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा, किस एग्जाम में क्या क्या आपसे पूछा जाता है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और कैसे आप उस एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं. तो ये सारा आपको मैं आज के सेशन में बताऊंगा. तो सबसे पहली चीज क्या है बेटे कि हाँ अभी मैं सारा एक्सप्लेन करूंगा, अभी तो जस्ट एक मैंने एक वो दिया है, परव्यू दिया है, अभी हम आगे एक एक फुल फॉर्म के बारे में बात करेंगे. तो देखिए जब आप टीचर की बात करते हैं तो ये कुछ जनरल सी वैकेंसीज होती है हमारे पास में. या तो आप प्राइवेट टीचर बन सकते हैं, उसके लिए तो आपको एक मिनिमम क्वालिफिकेशन हो आपकी, आपने बीएड किया हुआ है, बीकॉम किया हुआ है, तो आप एक प्राइवेट स्कूल में टीचिंग स्टार्ट कर सकते हैं. बट अगर आपको गवर्नमेंट में टीचर बनना है तो उसमें ये अलग अलग आपके लेवल्स होते हैं. सबसे जो एलिमेंट्री लेवल होता है वो प्राइमरी लेवल होता है, प्राइमरी टीचर जिसे हम कहते हैं. फिर आपके 9th से 12th स्टैंडर्ड तक के टीचर होते हैं. ठीक है, कॉलेज कैडर में भी टीचर रहते हैं. फिर आपके डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर और ये सारी वैकेंसी आती है. तो ये एक स्किल होता है. तो मतलब स्टार्टिंग से प्राइमरी टीचर से लेकर असिस्टेंट प्रोफेसर तक का, और इसमें एंट्री के लिए अलग अलग लेवल पे अलग अलग क्वालिफिकेशंस हैं. तो आज अब हम समझेंगे कि करके कि सबसे एलिमेंट्री पर क्या क्वालिफिकेशन होती है और कैसे आप टीचर बनते हैं. तो सबसे पहले बात मैं करूंगा यहाँ पर सी टेट और एस टेट के बारे में, जो स्कूल लेवल टीचिंग से रिलेटेड एग्जाम्स हैं हमारे. जो सी टेट होता है इसमें आपके क्लास 1 से लेकर 8th क्लास तक के टीचर आप बनते हैं, और उसके बाद में जो पीजीटी की वैकेंसीज होती है वो स्टेट वाइज आती है. तो सबसे पहले तो बेटा आपको ये क्लियर हो कि प्राइमरी टीचर होता है फर्स्ट क्लास से लेकर 5th क्लास तक के जो क्लासेज है उनको जो टीचर टीच करता है उसे हम प्राइमरी स्कूल टीचर भी कहते हैं, पीआरटी भी कह देते हैं, एलिमेंट्री टीचर भी कहते हैं. ठीक है, उसके बाद में होता है 6th क्लास से लेकर 8th क्लास तक. तो 6th क्लास से लेकर 8th क्लास तक जो टीचर होते हैं वो टीजीटी टीचर उन्हें बोला जाता है, और ऐसे ही जो 9th से लेकर 12th तक होते हैं उन्हें पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कह देते हैं. तो 9th से 12th तक आपके पीजीटी टीचर्स कहा जाता है, 6 to 8 में टीजीटी,
और क्लास फर्स्ट से लेकर फिफ्थ क्लास तक प्राइमरी टीचर होते हैं। अब इनके लिए अलग अलग पैटर्न है, अलग अलग क्वालिफिकेशन है। सबसे पहले हम यहाँ पे आज अभी हम डिस्कस करेंगे सी टेट के बारे में। क्लास वन से लेकर क्लास एट तक अगर आपको टीचर बनना है, मतलब प्राइमरी टीचर बनना है या टीजीटी टीचर अगर आपने बनना है, तो उसके लिए आपके लिए सी टेट क्वालिफाई करना मस्ट है। मतलब दिल्ली में, यूपी में, हरियाणा में, कहीं भी जहां भी वैकेंसीज निकलती है, या आपकी केवीएस में निकलती है केंद्रीय विद्यालय के अंदर, या आर्मी स्कूल्स के अंदर, जवाहर नवोदय के अंदर, जहां भी वैकेंसीज निकलती है, तो सी टेट आपके लिए एक असेंशियल क्वालिफिकेशन होती है। अब हम सबसे पहले ये समझें कि सी टेट की फुल फॉर्म क्या है। सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये इसकी फुल फॉर्म है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। और सी टेट जो है वो साल में दो बार कंडक्ट होता है। अभी इस साल कोविड 19 के कारण अभी एग्जाम अभी था सितंबर के मंथ में, तो उसे एक्सटेंड कर दिया गया है। बट जनरली सी टेट का जो एग्जामिनेशन है साल में दो बार आपका होता है, ठीक है, और क्लास वन से लेकर क्लास एट तक के लिए, मतलब प्राइमरी टीचर के लिए, उसके साथ साथ टीजीटी टीचर के लिए, दोनों के लिए सी टेट का एग्जाम होता है। इसमें दो पेपर आपके होते हैं, फर्स्ट इज पेपर वन, सेकेंड इज पेपर टू। पेपर वन जो आपका होता है वो होता है क्लास वन से फाइव के लिए, और पेपर टू होता है सिक्स टू एट के लिए। इसका मतलब अगर आप क्लास वन से लेकर क्लास एट तक कोई भी क्लास के लिए टीच करना चाहते हैं, तो आपको दोनों पेपर क्वालिफाई करने होते हैं। तो ऑलमोस्ट सभी बच्चे पेपर वन और पेपर ऑलमोस्ट मैंने अनम्यूट कर दिया है। तो ऑलमोस्ट सभी बच्चे क्या है, पेपर वन और पेपर टू अपीयर करते हैं। दोनों की क्वालिफिकेशंस भी अलग अलग हैं। जैसे आपको क्या होना चाहिए, ट्वेल्थ में अगर आपको प्राइमरी लेवल का टीचर बनना है तो ट्वेल्थ में 45% आपके मार्क्स होने चाहिए, ठीक है, या आपके पास में कैंडिडेट शुड क्लियर ग्रेजुएशन विद 45% और ट्वेल्थ विद 50%। सी टेट के लिए जैसे एक तो जो आपका एलिमेंट्री टीचर्स के लिए है तो ट्वेल्थ में 45% मार्क्स आपके होने चाहिए। जेबीटी या आपने एनटीटी का कोई भी ट्रेनिंग किया हुआ है वो आपके लिए एक रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो अब इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, क्या एग्जामिनेशन होता है, जैसे पेपर वन जो है, पेपर वन मतलब एलिमेंट्री क्लासेस के लिए क्लास वन से लेकर क्लास फाइव तक के लिए, तो उसमें आपका ये 150 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ठीक है, लैंग्वेज वन एंड टू, ये दो लैंग्वेजेस में आपको देना है, मतलब टू लैंग्वेजेस आपकी होती है, जनरली हम इंग्लिश और हिंदी लेते हैं, इसके साथ साथ आपको मैथमेटिक्स और एनवायरमेंटल स्टडीज, तो ये मतलब फाइव सब्जेक्ट्स आपने प्रिपेयर करने होते हैं। 30-30 मार्क्स के फाइव सब्जेक्ट आते हैं, 150 मार्क्स का आपका पेपर होता है, जो पेपर वन होता है, जिसके थ्रू अगर आप पेपर वन क्वालिफाई करते हैं तो एलिमेंट्री टीचर, जिसको हम क्लास वन से क्लास फाइव तक की जो टीचिंग है, वो आप हर गवर्नमेंट जॉब में एंटाइटल हो जाते हैं। आप देखते हैं कई बार दिल्ली में काफी वैकेंसीज आती हैं, जब भी आती हैं, या आजकल तो अगर एज ए गेस्ट टीचर भी लगाना है वहां भी आपको सी टेट क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। तो क्वालिफाई करने के लिए आपको पहले पेपर वन जो देना है वो आपका ये रहता है 1-5 के लिए, और सिमिलरली पेपर टू होता है, पेपर टू स्कीम है, उसमें क्या है कि बाकी सब चीजें सेम है, जैसे आपके फर्स्ट सब्जेक्ट आपका सेम है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, लैंग्वेज भी आपको टू लैंग्वेजेस आपको लेनी होती है, इंग्लिश और हिंदी, उसके साथ साथ फिर आपको या तो मैथमेटिक्स और साइंस का कॉम्बिनेशन होता है, या आपका सोशल स्टडीज और सोशल साइंस का कॉम्बिनेशन होता है, मतलब आप जैसे मैथ्स के टीचर रहेंगे या साइंस के टीचर रहेंगे, उसके अकॉर्डिंगली आपको कॉम्बिनेशन ऑप्ट करना रहता है, और 60 मार्क्स का आपका पेपर रहता है वो, तो टोटल 150 मार्क्स का पेपर हो जाता है। तो एक तरह से अगर आपको टीचिंग में जाना है तो सबसे फर्स्ट स्टेप आपका ये है कि सी टेट आपने क्वालिफाई करना है। और अब मैं आपको बताऊं भी कैसे आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। वैसे तो इसमें जो सब्जेक्ट है वो इतने डेप्थ नहीं होते, मतलब जैसे आपकी लैंग्वेज है जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज है या हिंदी लैंग्वेज है, या इसके साथ साथ आप जो मैथमेटिक्स साइंस या एसएस पढ़ते हैं, तो वो 8th स्टैंडर्ड तक का आपको क्लियर होना चाहिए। और उसमें भी बेटर यही है कि आप एनसीईआरटी बुक्स को अपना फॉलो करिए
और एनसीईआरटी में से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जनरली। तो अगर आप टीचिंग में जाना चाह रहे हैं तो फर्स्ट से लेकर एट्थ क्लास तक का एनसीईआरटी, आपने मैथमेटिक्स का, साइंस का और एसएस का, आप उसको स्टडी करिए। उसके साथ साथ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के लिए आप बीएड के लेवल में चाइल्ड डेवलपमेंट की बुक्स आती हैं, तो कोई एक अच्छी सी बुक आप परचेज कर सकते हैं। या मार्केट में भी एक नंबर ऑफ बुक्स आर अवेलेबल जिसमें अरिहंत पब्लिकेशन की बुक्स आती हैं चाइल्ड डेवलपमेंट की, पेडागोजी की, तो आप उन बुक्स को फॉलो करके अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर्स भी मार्केट में अवेलेबल रहते हैं सीटेट के, क्योंकि हर साल में दो बार होता है और पेपर पेंसिल बेस्ड होता है, तो उसके पेपर्स भी अवेलेबल रहते हैं। तो अगर आप चार पांच प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर लेंगे, एक वहां से आपको एक क्लियर आइडिया हो जाता है किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये आपका सीटेट के बारे में है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है सीटेट के अंदर। हाँ, आप चाइल्ड देखिए, उसमें क्या है कि अरिहंत पब्लिकेशन बुक आती है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की, ठीक है, तो आप अरिहंत पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं। इसके साथ साथ आपका प्रतियोगिता किरण पब्लिकेशन की भी बुक आती है, या बीएड में चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी की बुक्स होती है। अगर आप मतलब अगर आपने जेबीटी किया है, बीएड आपने किया है, तो बीएड में चाइल्ड डेवलपमेंट की बुक्स होती है, तो आप कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि जनरली सीटेट में देखा गया है कि बहुत ही इंटरेस्ट है, ठीक है। तो ये भी अच्छी बुक है, ये जो ध्रोवर की बुक है, प्रतियोगिता ध्रोवर है, ये एक तरह का पब्लिकेशन है, तो इनकी भी अच्छी बुक्स है, ठीक है। बट उसमें वही सेम चीज है जैसे आपको मैंने प्रीवियस क्लासेस में बताया, तो पहले एक स्टैंडर्ड बुक आप फॉलो करिए, एक बुक को जब आप देखते हैं उसके बाद फिर आप जो प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करते हैं तो आपको ये आइडिया हो जाता है कि किस लेवल के क्वेश्चंस हैं, और जो बुक आप पर्टिकुलर फॉलो कर रहे हैं क्या उस बुक में उस लेवल के क्वेश्चंस कवर्ड है या नहीं है। तो ये थोड़ा सा आपने ध्यान रखना होता है। मैं आपको बीएड की जो बुक्स आती है उसमें नेम ऑथर आपको मैं कंफर्म करके एक्सप्लेन कर दूंगा। बाकी अरिहंत पब्लिकेशन की बुक आप ले सकते हैं सीडीपी की, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या होती है सीटेट के एग्जाम में कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होता आपका, तो आप सारा पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं, कोई किसी भी तरह का नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होता है, ठीक है। तो इस टाइप से आप अपना सीटेट का प्रिपरेशन करिए। हाँ, ये एक चीज मैं फिर ऐड कर रहा हूँ यहाँ पर दोबारा से कि प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करो, क्योंकि साल में दो बार होता है और सारे पेपर्स अवेलेबल है, तो आप अगर 5-7 पेपर्स उनको अटेम्प्ट करेंगे, देखेंगे, तो आपको अपने आप आइडिया हो जाएगा, क्योंकि जो सब्जेक्ट्स है वो सारे स्टैटिक है। स्टैटिक मतलब उसमें कोई चेंज होने का नहीं है, कोई आपका जो करंट का क्वेश्चन तो आता नहीं उसमें, तो सारे हैं जो आपके फिक्स ही हैं। तो पिछले कुछ सालों के पेपर जब आप चेक करते हैं तो उससे आपको एक बहुत अच्छा आइडिया हो जाता है, और फिर आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ये एक पहला स्टेप है आपके लिए, अगर आपको प्राइमरी या टीजीटी टीचर में जाना है तो आपको सीटेट का एग्जाम क्वालिफाई करना। आजकल तो प्राइवेट स्कूल्स में भी सीटेट के एग्जाम की मतलब दे ऑल्सो आस्क फॉर क्वालिफिकेशन इन सीटेट। तो मतलब ये आपको पहला स्टेप आता है। अभी आता हूं बेटा एनटीटी के बारे में भी आता हूं। अब इसके बाद सेकंड होता है हमारा जेबीटी। मतलब अब मैं आपको बताऊंगा कुछ हमारे जो अलग अलग चीजें हैं, जैसे जेबीटी कह लीजिए, या आपका एनटीटी का प्रोग्राम होता है 2 ईयर का, या इसके अलावा आपका डीएलईडी होता है।

है वो 12th में 45% की है, राइट। ये एक तरह से जो DELD होता है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के इक्वल होता है। ये प्राइमरी टीचर्स के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशंस है। ऐसी एंटिटी का आपका होता है, उसमें भी आपको 2 ईयर का डिप्लोमा रहता है एंटिटी का। बट इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या रहती है कि आपको जहां से भी आप ये JBT करें, चाहे आप अपना DELD करें, चाहे आप एंटिटी करें, वो रिकॉग्नाइज होना चाहिए। कई बार मार्केट में कुछ ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो रिकॉग्नाइज नहीं होते, तो वो फिर बाद में आपके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, तो आज से 4-5 साल पहले, व्हाट हैपेंड, आज से 4-5 साल पहले जम्मू से JBT करने का ट्रेंड हुआ था, ठीक है। तो जम्मू से JBT करने का ट्रेंड हुआ तो बहुत लोगों ने जम्मू से JBT किया, ठीक है, और बाद में फिर पता चला कि वो तो आपका वैलिड नहीं है। तो ये इस तरह से कई बार प्रॉब्लम ऐसी हो जाती है कि जिसमें हम ऐसा अपना कोर्स डिप्लोमा कर लेते हैं और जो बाद में वैलिड नहीं होता। तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना होता है इसमें कि आप जहां से भी करिए वो आपका वैलिड होना चाहिए। तो JBT है, चाहे आपका एंटिटी है, ये आपको एक टाइप से मतलब एक टाइप से एलिमेंट्री जो टीचर्स होते हैं, जो हमारे प्राइमरी टीचर्स होते हैं, उनके लिए ये मस्ट होती है ये क्वालिफिकेशंस। आप अब इसमें स्टैंडर्ड मतलब क्या पैटर्न क्या है, पैटर्न कैसी है, देखिए कैसे वैकेंसीज आती हैं और कैसे आप उनमें अप्लाई करते हैं। जैसे अलग अलग स्टेट का अपना पैटर्न है। जैसे मैं पहले हरियाणा की आपको बताऊं, हरियाणा में क्या है कि HTET का फॉर्म निकाला जाता है। वैसे तो जो CTET है वो पूरे इंडिया में वैलिड है, ठीक है, बट हरियाणा में क्या है कि हरियाणा में एज ए टीचर लगाने के लिए HTET का फॉर्म निकाला जाता है, जो हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ठीक है। तो जो TET का मतलब यही होता है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। अब हरियाणा में क्या है कि 3 स्टेजेस में वैकेंसीज आती है, मतलब उसमें आपके प्राइमरी टीचर्स की वैकेंसीज आती है, आपके TGT की वैकेंसी आती है जिसको हम ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर कहते हैं, और ऐसे ही आपकी PGT की वैकेंसी आती है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। मैंने आपको पहले ही बताया कि प्राइमरी टीचर जो होते हैं वो Class 1 से लेकर Class 5 तक के लिए हैं, जो TGT टीचर होते हैं वो Class 6 से लेकर 8 तक के लिए हैं, और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर होते हैं 8 से अबो। अब इनके लिए जो क्वालिफिकेशंस भी अलग अलग है। जैसे जो PGT आपकी जो प्राइमरी टीचर की वैकेंसी आती है उसमें आपकी 12th होनी चाहिए, और 12th के साथ साथ आपने JBT किया हो, एंटिटी का कोर्स किया हो, या आपने डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन किया हो, ठीक है, तो उसमें आप प्राइमरी टीचर के लिए एंटाइटल होते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए जाना है, जिसको हम TGT कहते हैं, तो TGT के लिए आपको बैचलर डिग्री के साथ साथ BEd करनी है। अब देखिए BEd क्यों इंपॉर्टेंट है, आप ये मान के चलिएगा, अगर आपको प्राइमरी टीचर से ऊपर किसी भी पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए अप्लाई करना है, चाहे वो TGT है और चाहे वो PGT है, तो दोनों के लिए BEd होना आपके लिए मस्ट है, ठीक है। और ऐसे ही पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में क्या होता है कि मास्टर डिग्री के साथ साथ BEd होना चाहिए। तो देखिए क्वालिफिकेशन का स्टैंडर्ड क्या है कि प्राइमरी टीचर के लिए तो 12th इज द मिनिमम क्वालिफिकेशन, साथ में आपने JBT NTT कुछ भी किया हो। अगर आपने TGT टीचर बनना है तो ग्रेजुएशन के बाद आपको BEd करनी है, और उसके बाद अगर आपने PGT के लिए जाना है तो मास्टर डिग्री भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये HTET की एक मिनिमम क्वालिफिकेशन है। तो इसलिए जनरली बच्चों को टीचिंग के लिए जो इंटरेस्टेड होते हैं उनको एडवाइस किया जाता है कि बेटे आप पहले अपनी ग्रेजुएशन करिए सबसे पहले, तो क्योंकि जब आप ग्रेजुएशन करते हैं और ग्रेजुएशन होने के बाद आप BEd करो, ठीक है। नहीं, इसमें केवल आर्ट से या साइंस नहीं, इसमें आप बेटे किसी भी बैकग्राउंड से हो सकते हैं। जैसे क्या होता है कि जो आपका प्राइमरी टीचर है वो तो किसी भी स्ट्रीम का हो सकता है, आपके पास चाहे मेडिकल है, चाहे नॉन मेडिकल है, चाहे आपके पास में कॉमर्स है, चाहे आर्ट्स है, आपने उसके बाद में JBT किया हुआ है, ठीक है। अगर आप TGT के लिए जाते हैं तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपकी, वो भी आपकी किसी भी स्ट्रीम में हो सकती है, आपने BA किया हुआ है, BSc किया हुआ है, उसके बाद आपको BEd करना होता है। बट अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में जाते हैं फिर सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। जैसे मान लीजिए आपको मैथमेटिक्स का टीचर बनना है तो ग्रेजुएशन में भी एज ए मैथमेटिक्स आपका सब्जेक्ट होना चाहिए,

0: इसके साथ साथ मास्टर्स में भी आपका मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए, और आपका जो एस्टेट क्वालिफाइड है वो भी मैथमेटिक्स में ही क्वालिफाइड होना चाहिए। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में थोड़ा सा क्वालिफिकेशन ज्यादा रहती है, अदरवाइज हम जो टीजीटी है या जो आपके प्राइमरी टीचर्स हैं उसमें कॉमन क्वालिफिकेशन है, ठीक है। अब इन सब का अलग अलग एग्जाम है, तो जनरली क्या होता है कि अगर आपकी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की क्वालिफिकेशन पूरी है तो आप बाकी सबके लिए भी एग्जाम अपियर कर सकते हैं। हरियाणा में जो एस्टेट 2020-20 की जो एज आई है 18 से लेकर 38 इयर्स तक है, बट कुछ कैटेगरीज में एज का रिलैक्सेशन भी है, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या पैटर्न रहता है, एक बार मैं एस्टेट का आपको पैटर्न बताऊं। एस्टेट का तीनों लेवल के जो पेपर होते हैं, पेपर वन है, चाहे पेपर टू है, चाहे पेपर थ्री है, 150 मार्क्स का आपका पेपर होता है। 150 क्वेश्चंस उसमें आते हैं, 2.5 आवर के अंदर आपने करने होते हैं, और ऑब्जेक्टिव टाइप आपके क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। और तीन अलग अलग पेपर हैं। अगर आपको प्राइमरी का देना है तो आप पेपर वन देंगे, ऐसे ही अगर आपको टीजीटी के लिए देना है तो आप पेपर टू देंगे, और अगर आपको पीजीटी के लिए देना है तो आप पेपर थ्री देंगे। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, ना ही सेक्शनल कट ऑफ होता है। जो सब्जेक्ट्स रहते हैं वो बिल्कुल सेम, जो सब्जेक्ट का पैटर्न है कि हरियाणा में अब पीछे इन्होंने सब्जेक्ट्स में चेंज किया था, जैसे क्वांटिटेटिव एबिलिटी, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस, ये आपके 30 क्वेश्चन आते हैं। जनरली जो सीटेट में है उसमें ये चीज नहीं आती। आपने देखा होगा अभी मैंने पीछे आपको सीटेट का पैटर्न बताया जिसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी थी, वहां दो लैंग्वेजेस थी, ठीक है। अब हरियाणा में क्या पैटर्न है, आपका मैथमेटिक्स आएगा, रीजनिंग आएगी और जनरल अवेयरनेस, तो 30 क्वेश्चन आएंगे। ये एक तरह के बहुत ही जनरल से क्वेश्चन होते हैं। रीजनिंग में सभी टॉपिक से आपके जो कवर हो जाते हैं, जिसमें नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, डायरेक्शंस, ब्लड रिलेशन, ये सारे टॉपिक आते हैं, एक एक क्वेश्चन आपको मिल जाता है। ऐसे जो मैथमेटिक्स होता है वो भी बहुत ही स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स, जैसे एक जनरल आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हैं जिसमें अब बेसिक अर्थमेटिक है, ज्योमेट्री मेंसुरेशन है, और उसके साथ साथ कुछ क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के भी होते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी 30 मार्क्स का, फिर हिंदी इंग्लिश के 15 15 क्वेश्चन है, फिर आपका मैथमेटिक्स है 30 मार्क्स का, और एनवायरमेंटल स्टडीज जिसको हम ईवीएस कह देते हैं। तो ये हमारा पेपर वन है एलिमेंट्री टीचर के लिए हरियाणा के अंदर। इसके साथ साथ आप अगर टीजीटी के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको पेपर टू अपियर करना पड़ेगा, ठीक है। तो पेपर टू किस टाइप का है, क्या पैटर्न है पेपर टू के अंदर, तो इसमें आपकी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस 30 मार्क्स के हैं, फिर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, हिंदी इंग्लिश यहां तक कॉमन है, फिर आपके 60 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको एसे, साइंस या कुछ भी सब्जेक्ट आपने ऑप्ट किया हुआ है, क्योंकि उसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली फिर आप वैकेंसीज जो निकलती हैं उसमें आप अप्लाई करते हैं। और अगर आपको पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जाना है तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए फिर आपको जिस सब्जेक्ट में आपने जैसे आपको साइंस में जाना है या अगर आपको मैथमेटिक्स में जाना है तो उसी सब्जेक्ट का पेपर आप उसमें अपियर करते हैं, ठीक है। तो एस्टेट का जो पेपर जनरली होता है, आपने अगर एक बार क्वालिफाई कर लिया तो 5 ईयर तक वैलिड होता है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि हर साल आपको देना है, ऐसे ही आपका सीटेट का पेपर है कि आपने एक बार क्वालिफाई कर लिया तो कुछ सालों तक वो पेपर आपका चलेगा, ठीक है। तो ये एक तरह की मिनिमम क्वालिफिकेशंस है। अब हरियाणा में वैकेंसीज का पैटर्न कैसे होता है कि पहले तो आपका एस्टेट का पेपर होता है, एस्टेट का पेपर आप क्वालिफाई करेंगे, फिर अलग अलग वैकेंसीज आएंगी, फिर वो अपना स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं, और उसके बाद फिर उसमें से जो बच्चे निकलते हैं उनकी फिर फाइनल जाके ज्वाइनिंग होती है। हाँ, ये हरियाणा में 5 साल का ना बेटे एस्टेट जो है, ये अभी शायद कुछ चेंज करने की इसमें बात चल रही है 7 साल के लिए, क्योंकि पीछे जो एस्टेट सीटेट एस्टेट हुआ था उसके बाद में फिर वो तब उसके बाद की वैकेंसी ही नहीं आई बहुत सालों से, तो ये कुछ उसमें चल रहा है भी इसको 7 साल के लिए कर दें, तो ये पीछे दैट वाज इनटू द न्यूज ऑल्सो, ठीक है। अब ऐसे ही जैसे राजस्थान है वहां पे रीट का पेपर होता है, जैसे हरियाणा में आपका एस्टेट का पेपर है, ऐसे ही राजस्थान के अंदर रीट का पेपर होता है, तो वो भी बेसिकली इसीलिए है। जैसे आपकी वैकेंसी अभी जैसे पीछे इट वाज इनटू द न्यूज कि री 2020 में अराउंड, हाँ यूपी का भी होता है बेटे, यूपी का टेट होता है, तो उसमें हर स्टेट अपना पेपर कंडक्ट कराता है, बट मोर और लेस जो इनके सिलेबस है वो ऑलमोस्ट सेम है, मतलब इसमें कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। सभी स्टेट्स में चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी एज ए सब्जेक्ट आता है। सभी स्टेट्स में आपका लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज है, उसके साथ साथ फिर आपका सोशल साइंस, साइंस और मैथ्स एज ए ऑप्शनल, जैसे भी आपने जिस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो वो आपके क्वेश्चंस उसमें पूछे जाते हैं। तो अभी जैसे रिसेंट में राजस्थान में री 2020 का, हाँ मतलब अप्लाई आप कर सकते हो बेटे, क्या होता है ना देखिए, क्या जैसे हरियाणा में भी आप अप्लाई कर सकते हो, अगर कोई यूपी का बच्चा उसे एसटेट देना तो वो यहाँ भी अपीयर कर सकता है, क्योंकि जो टीचिंग जॉब में कोई ये तो फिक्स नहीं होता कि हरियाणा का ही होना चाहिए, आप कहीं भी किसी भी स्टेट के टेस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। ये एक तरह के उनके टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट है, मतलब वैकेंसी से पहले आपको फॉर्म फिलअप करने से पहले ये टेस्ट आपका क्वालिफाइड होना चाहिए। हाँ इसमें बेटे जो आपका जीके का पैटर्न होता है, बस वही थोड़ा डिफरेंस है कि उसमें जैसे हरियाणा में क्या है कि आपका अभी पहले उसमें जीके का सेक्शन नहीं आया करता था, तो लास्ट ईयर से उसमें जैसे 30 क्वेश्चन में 10 मार्क्स आपके मैथमेटिक्स के, 10 मार्क्स रीजनिंग के और 10 मार्क्स जो है वो जनरल अवेयरनेस के उसमें ऐड कर दिए हैं, तो वो जो 10 मार्क्स जनरल अवेयरनेस के हैं उसमें फिर वो हरियाणा जीके के क्वेश्चन आ जाते हैं। ऐसे ही और स्टेट्स में भी ऐसा ही होता है कि जैसे आप हम रीट की बात करें तो रीट का जो एग्जाम पैटर्न है वो इस तरह से है, जैसे उसमें भी रीट में भी 2 लेवल के पेपर्स रहते हैं, लेवल 1 है और लेवल 2 है। तो लेवल 1 जो है वो आपका एलिमेंट्री टीचर के लिए है, तो उसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, एनवायरमेंटल स्टडीज रहता है। नहीं एक्चुअली देखिए क्या है बेटे कि प्राइमली ये जो टीचिंग के टेस्ट है ना, देखो ज्यादातर मैं आपको वैसे पर्सनल ओपिनियन दूं, इसमें हरियाणा में, यूपी में, राजस्थान में टीचर्स की जो सैलरीज है ठीक है, या अगर हम ये कहें कि गवर्नमेंट टीचर्स की जो वैकेंसीज है वो कंपैरेटिवली अदर स्टेट के मुकाबले में ज्यादा आती है। महाराष्ट्र के अंदर जो गवर्नमेंट टीचर्स की वैकेंसी काफी कम आती है, क्योंकि वहां पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ज्यादा टीचर लगाए जाते हैं, तो वो अपना इस तरह का उनका भी एग्जाम होता है, वैसे होता है मतलब वो भी अपना टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट लेते हैं, या कई बार क्या करते हैं कि जो सीटेट का एग्जाम है उसी के मार्क्स के बेसिस पे, मतलब अगर आपने सीटेट क्वालिफाई किया हुआ है तो उसके बेसिस पे वो करते हैं। पर एज ए जनरल नॉर्थ इंडिया में टीचर्स की सैलरी ज्यादा है एज कंपेयर टू द महाराष्ट्र और वेन यू गो इन टू द साउथ, तभी हम देखते हैं कि नॉर्थ में बहुत बच्चे ऐसे हैं बेटे जो एक टाइप से टीचिंग के लिए स्पेसिफिकली प्रिपरेशन करते हैं ठीक है। तो ये रीट का ये पेपर 1 है, ऐसे ही आपका पेपर 2 होता है, हाँ ऐसे ही आपका पेपर 2 होता है जिसमें आपका अगर आप टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं ठीक है, तो ये एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे हरियाणा में है, चाहे आपका राजस्थान में है, चाहे यूपी में है, तो ये रेगुलर अफेयर है, हर साल 2 साल के बाद में कुछ ना कुछ वैकेंसी आती है, कोई ना कोई एलिजिबिलिटी टेस्ट आपका होता रहता है ठीक है। तो इसलिए बच्चे यहाँ पे टीचिंग जॉब्स के लिए काफी बच्चे जाते हैं। तो स्कूल लेवल में टीचर बनने के लिए आप 2-3 चीजें बेटे आप अपना ध्यान रख लीजिए, ये मैं इसलिए यहाँ पर थोड़ा ऐड कर दूं। एक तो आप बेटे ये लेवल्स इनको समझो ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, कि अगर आपको प्राइमरी टीचर्स में जाना है तो 12th के बाद आप कुछ ना कुछ अपना जेबीटी करिए, चाहे आप बेटे एनटीटी का कोर्स करिए ठीक है, चाहे आप डीएलडी करिए ठीक है, मतलब एक तरह से कुछ ना कुछ आपने, चाहे आप डीएड करो। रीट में क्या है कि नहीं, इसमें रीट में यहां पर आपका लेवल 3 की वैकेंसी नहीं है, जैसे लेवल 2 में तो वो साइंस और एसएसटी में च्वाइस नहीं देके कुछ क्वेश्चन साइंस के होते हैं, मतलब उसमें एक तरह से जो कॉम्बिनेशन में किया हुआ है साइंस और मैथ का कॉम्बिनेशन हो गया, तो कुछ क्वेश्चन साइंस के हैं, कुछ क्वेश्चन मैथ के हैं, एसएसटी का भी कॉम्बिनेशन ऐड कर दिया उसमें। पर मैं एक जनरल अपना वो बताऊं आपको बेटे कि अगर आप टीचिंग के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं टीजीटी लेवल के लिए, तो टीजीटी लेवल में तो आप ये मान के चलो बेटे आपको मैथमेटिक्स, साइंस और एसएसटी तीनों सब्जेक्ट्स में ही आप अपनी कमांड लेके चलिए, क्योंकि पीजीटी में फिर भी कुछ स्पेसिफिक आपका वो हो जाता है कि आप मैथ्स के टीचर हैं या साइंस के आप टीचर हैं, पर जनरली टीजीटी में ये देखा गया है कि सेम टीचर जो है वही मैथ्स भी ले रहा है, साइंस भी ले रहा है, एसएसटी भी ले रहा है। तो आप थोड़ा सा मतलब अगर स्टार्टिंग से अपना परव्यू ऐसा लेके चलिए कि तीनों, क्योंकि देखिए आपको ओनली 8th क्लास तक का मैथ्स करना है, 8th क्लास तक की आपको साइंस करनी है, 8th क्लास तक का आपको एसएसटी पढ़ना है, तो वो तीनों सब्जेक्ट्स को अगर आप कमांड लेके चलेंगे तो आगे फिर आपको हर तरह का एग्जाम क्वालिफाई करना इजी हो जाता है। तो मेन थिंग आपने अब ये ध्यान रखना है बेटे कि अगर आप प्राइमरी टीचर के लिए जा रहे हैं तो 12th करने के बाद से ही अपना जेबीटी कर लीजिए, एनटीटी कर लीजिए, कोई भी एक आधा कोर्स करिए, डिप्लोमा करिए टीचिंग के अंदर, और फिर आप प्राइमरी के लिए एंटाइटल है और सीटेट का पेपर क्वालिफाई करिए। सिमिलरली अगर आप अपना लेवल इंप्रूव करना चाहते हैं तो 12th के बाद आपने ग्रेजुएशन किया और ग्रेजुएशन के बाद फिर आप बीएड करिए। अब देखिए दिक्कत क्या है, आजकल की बीएड भी आपकी 2 ईयर्स की है, जैसे आपने ग्रेजुएशन किया और ग्रेजुएशन के बाद फिर आपको 2 साल बीएड में स्पेंड करने पड़ते हैं, ठीक है, तो वो 5 साल 12th के बाद कम से कम आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर बीएड में कुछ चेंज किया गया है, अब देखो जब अप्लाई होगा तभी वो चीजें क्लियर हो पाएंगी, बट अभी जो एट प्रेजेंट जो पैटर्न यही है कि आपको 12th के बाद कम से कम 5 ईयर्स लगाने पड़ेंगे, 3 साल का ग्रेजुएशन और 2 ईयर का बीएड। और वहीं अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बनना चाहते हैं तो फिर आपको मास्टर डिग्री भी करनी है, तो कम से कम 7 ईयर 12th के बाद आपको स्टडी करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद आप अपना टेस्ट क्वालिफाई करिए जो अलग अलग होते हैं, और फिर आप कहीं जाके अप्लाई कर पाएंगे। रीट की बेटे आपकी राजस्थान में लोकल लेवल की काफी किताबें आती हैं, मतलब जैसे आप राजस्थान में किसी भी जहां भी आप स्टे करते हैं कोई ऐसे कुछ स्पेसिफिक तो एक तरह से जो पब्लिकेशन नहीं है, बट कई सारी जो बुक्स अवेलेबल है उपकार पब्लिकेशन की भी आती है रीट की, या आपके लोकल में भी कई इंस्टीट्यूट्स भी हैं जो काफी टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं जिनकी अपने स्टडी मटेरियल भी आते हैं। तो ऐसे तो क्योंकि मैं राजस्थान से बिलोंग नहीं करता तो मुझे वहां की बुक्स के बारे में ज्यादा आइडिया नहीं है, अब जैसे हरियाणा में है तो हरियाणा में तो अरिहंत पब्लिकेशन की बुक चलती है, ठीक है, या यहाँ पर विद्यापीठ टाइम्स है, और भी कई सारे लोकल पब्लिकेशंस हैं जिनकी काफी बुक्स आती हैं। तो अब सेकंड पॉइंट क्या बेटे कि ये जो वैकेंसीज कहाँ कहाँ निकलती है, टीचर की वैकेंसीज कहाँ कहाँ आती है, एक तो आपकी स्टेट वाइज वैकेंसीज आती है, ठीक है, जैसे नहीं महाराष्ट्र में इस तरह का एग्जाम नहीं है बेटे, महाराष्ट्र में क्या है कि वो एक तो आपका जो सीटेट का एग्जाम एक तो लेते हैं मतलब प्राइमरी टीचर के लिए, या आपका जो टीजीटी के लिए, ठीक है, हम मेडिकल तो वो तो बेटे बाद की स्टेज है ना, वो तो क्या होता है कि वो तो जैसे पहले आपने ये टेस्ट क्वालिफाई किया जो भी आपने एसटेट सीटेट या रीट जो भी आपने दिया, उसके बाद फिर वैकेंसीज आती है, स्टेट वाइज वैकेंसीज होती है, जैसे हरियाणा अपनी वैकेंसी अलग निकालता है, यूपी की वैकेंसीज आती है, राजस्थान में वैकेंसीज आती है, दिल्ली में डीएसएसबी की वैकेंसीज आती है, ठीक है, तो उसमें भी कई बार काफी टीचर्स की जॉब्स आती हैं। आपका केवीएस है, केंद्रीय विद्यालय है, तो केवीएस में सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए आपका, तो केवीएस की भी काफी वैकेंसीज आती है, हर साल एक तरह का फिक्स पैटर्न है, ठीक है। तो ऐसी आर्मी स्कूल्स हैं इंडिया में, नंबर ऑफ आर्मी स्कूल्स आर देयर, आर्मी स्कूल्स भी अपनी वैकेंसीज निकालते हैं टीचर की, इसके साथ साथ जवाहर नवोदय विद्यालय है इनकी भी वैकेंसीज आती है, तो उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी सीटेट होती है, तो अगर आपने सीटेट क्वालिफाई किया हुआ है और उसके बाद आप वहाँ फॉर्म फिलअप करते हैं, फिर फॉर्म फिलअप करने के बाद वो अपना टेस्ट कंडक्ट कराते हैं, अब टेस्ट कंडक्ट होता है उसमें फिर जैसे जैसे आपका स्कोर आता है फिर उसके बाद में इंटरव्यू होता है, फिर आपका मेडिकल टेस्ट होता है, ये एक सारी चीजें इस तरह का रहता है। हाँ एक्चुअली क्या है कि देखो इसमें क्या है कि मैक्सिमम तो आपकी गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी आती है, बट कई बार कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में भी आपको सीटेट मांगते हैं। एक्चुअली इंडिया में क्या पैटर्न हो गया अब कि कि आपको अगर टीचर बनना है, अगर चाहे आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं, चाहे आप एक्चुअल गवर्नमेंट जॉब पे है, तो उसमें सीटेट तो आपसे मांगेंगे मांगेंगे। तो मतलब आपके लिए ये पहली चीज है कि अगर आपको टीचिंग में जाना है तो सीटेट मस्ट बी क्वालिफाइड, क्योंकि तभी आप फिर कहीं एंटाइटल हो पाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए कि सीटेट का पेपर तो आपका पास होना ही चाहिए, ठीक है। तो स्कूल लेवल में इस तरह से अलग अलग एरियाज में वैकेंसीज आपकी आती है, ठीक है। तो बाकी फिर भी ये है कि देखिए, अगर आप मेहनती हैं, आप पढ़ने वाले हैं, टाइम तो लगता है, क्योंकि अभी पिछले, जैसे मैं आपको बताऊं, आज से 3-4 साल पहले हरियाणा में हजारों में वैकेंसीज आई थी। मतलब हालात ये थी कि जिस पर्सन की क्वालिफिकेशन पूरी है, अगर उसने अपना एमए एमएससी जो भी किया हुआ है और उसने एसटेट का पेपर क्वालिफाइड है, तो वो जॉब पे लग गया था। फिर उसके बाद में वैकेंसी आनी कम हो गई, या पिछले 3-4 सालों से वैकेंसी काफी कम है, ठीक है। तो फिर भी क्योंकि जो टीचिंग की वैकेंसीज है, अगर आपकी स्पेयर होती है तो उसके बाद वैकेंसीज निकालनी पड़ती है। चाहे स्टेट, अभी जैसे मैं पढ़ रहा था, आज ही चेक कर रहा था कि राजस्थान में री 2020 के अंदर 30,000 के अप्रोक्सीमेट वैकेंसीज आएंगी। तो 30,000 वैकेंसीज बहुत ज्यादा होती है। अब 30,000 वैकेंसीज आएंगी, चाहे वो अलग अलग सब्जेक्ट्स की है, तो अगर क्वालिफिकेशन पूरी है, हमने मेहनत कर रखी है, तो उनको कहीं ना कहीं हम अपना वे आउट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। फिर ऐसा होता है, जनरली क्या होता है कि देखिए, आप अपना अपने क्वालिफिकेशन पूरा किया, अपना आपने स्टार्टिंग में प्राइवेट स्कूल में टीच करना स्टार्ट कर दिया, धीरे धीरे एक्सपीरियंस एड ऑन होता जाता है, और जब भी आपकी एक टाइम से गवर्नमेंट सेक्टर में जो वैकेंसीज निकलती है, तो आप वहां अप्लाई करते हैं और कहीं ना कहीं आपकी सेटलमेंट हो जाती है, जॉब कहीं ना कहीं आपको लग जाता है, ठीक है। तो ये हमारी स्कूल लेवल की टीचिंग जॉब्स होती है, ये सारी टाइप की आपकी वैकेंसीज है। हर साल फॉर्म निकलते हैं, जैसे आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि जो सीटेट का है वो तो साल में 2 बार एग्जाम होता है, एसटेट भी ऑलमोस्ट साल में 1 बार तो कंडक्ट होता ही है, ठीक है। सिमिलरली अगर आप रीट की, मतलब अगर आप राजस्थान की बात करें, तो साल 1.5 साल में 1 बार एग्जाम जरूर होता है, यूपी टेट का भी एग्जाम होता है, ठीक है। तो जो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स है, तो वहां तो टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वो एक रेगुलर उस पर होते ही है। डीएसएसपी की भी वैकेंसीज आती रहती है, मतलब हर साल 2 साल में वैकेंसीज आती है। केवीएस की ऑलमोस्ट हर साल वैकेंसी आती है, आर्मी स्कूल्स की है, चाहे जवाहर नवोदय की है, तो ये वैकेंसी तो रेगुलर बेसिस पे आती है। तो अगर हमारी क्वालिफिकेशन पूरी है, और इनमें सबसे बड़ा फायदा क्या है कि कोई ऐसा वो नहीं कि हम ये गए कि पेपर आउट हो गया, सिफारिश चल गई, आपने अपनी प्रिपरेशन करनी है। एक क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं, वो क्वालिफाइंग मार्क्स आपने अचीव करना है, और उसके बाद आपका टेट क्वालिफाई हो जाता है, फिर आप वैकेंसीज के अकॉर्डिंगली अप्लाई करते रहते हैं। मार्क्स की वेटेज रहती है, आपके 12th में कितने मार्क्स हैं, ग्रेजुएशन में कितने हैं। देखिए, अगर आप टीचिंग जॉब के लिए जा रहे हैं, तो एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि हमारा एजुकेशनल रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए, ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो, पढ़ने में हम अच्छे हो, तभी आगे हम एक वी कैन बिकम ए गुड टीचर। तो ये तो सारा मैंने आपको स्कूल, वहीं फिर हम पास में ऐसा नहीं कि हम स्कूल लेवल पे, हम कॉलेज लेवल पे भी जा सकते हैं एज ए टीचर। तो कॉलेज लेवल में जैसे हरियाणा में है या और स्टेट्स में है, तो आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर्स की वैकेंसीज होती है, मतलब जो कॉलेज जो कैडर की वैकेंसीज आती है, जिनको हम असिस्टेंट प्रोफेसर्स कहते हैं। और ऐसे ही जो यूनिवर्सिटी है, उसमें डिपार्टमेंट्स होते हैं अलग अलग, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, लॉ डिपार्टमेंट है, तो उनमें भी असिस्टेंट प्रोफेसर्स की वैकेंसीज आती है। तो स्कूल लेवल और कॉलेज लेवल के टीचिंग में एंट्री में थोड़ा डिफरेंट है। कैसे? आप जैसे मैंने आपको बताया, अभी स्कूल लेवल में अगर आपने टीजीटी या पीजीटी में आपने जाना है, तो आपको बीएड करना मस्त है। वही कॉलेज के लिए आपको बीएड करने की नीड नहीं है, आपने सिंपल मास्टर डिग्री होना चाहिए आपका। जैसे आपने ग्रेजुएशन किया और ग्रेजुएशन के बाद फिर आपने मास्टर डिग्री कर लिया, मास्टर डिग्री के जब आप फाइनल ईयर में होते हैं मास्टर डिग्री के, तो आपको फिर नेट का पेपर क्वालिफाई करना रहता है, ठीक है। जो प्राइमरी आपका नेट का एग्जाम होता है, एनटीए कंडक्ट करा रहा है, पहले यूजीसी कराता था, उसके बाद सर कुछ साल सीबीएसई बोर्ड में कंडक्ट कराया, तो नाउ दिस नेट एग्जाम इज कंडक्टेड बाय एनटीए, ठीक है। तो उसमें क्या रहता है, जो नेट का एग्जाम है वो हमारे लिए मस्ट है, ठीक है, उसमें भी दो तरह के आपके नेट होते हैं। एक तो जो नेट के सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, इंग्लिश है, इकोनॉमिक्स है, कॉमर्स है, ये तो आपका एनटीए कंडक्ट कराता है। और साइंस से रिलेटेड जिसमें आपका मैथमेटिक्स है, फिजिक्स केमिस्ट्री है, वो सीएसआईआर कंडक्ट कराता है। तो इस तरह से दो आपके नेट के एग्जाम्स होते हैं। तो जिस भी स्ट्रीम के आप है, जिस भी स्ट्रीम में आपने मास्टर डिग्री किया हुआ है, उसी स्ट्रीम का आपको नेट का एग्जाम क्वालिफाई करना रहता है। जो नेट में भी आपका एक जेआरएफ होता है, जिसको हम जूनियर रिसर्च फेलोशिप कहते हैं। जैसे आपने मास्टर डिग्री करने के बाद नेट का पेपर दिया, उसी नेट के एग्जाम में जो मिनिमम क्वालिफिकेशंस क्या है, 55% है आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में होना चाहिए, और जेआरएफ के लिए 30 ईयर्स की एज होती है। जेआरएफ का मतलब क्या है कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप आपको मिलता है, अराउंड 25,000 रुपीज पर मंथ का स्टाइफंड आपको मिलता है पीएचडी करने के लिए। तो इसमें क्या रहता है कि उसी नेट एग्जाम में कुछ टॉप के स्टूडेंट लिए जाते हैं, उनको जेआरएफ लगता है, और फिर वो जब स्टडी करते हैं तो उस स्टडी टाइम में उन्हें स्कॉलरशिप्स मिलते हैं। अब नेट का पेपर जो है, एनटीए का जो नेट का पेपर है, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। दो पेपर होते हैं इसमें। फर्स्ट पेपर जो है वो आपका कॉमन है सभी सब्जेक्ट्स के लिए, उसमें जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स, रीजनिंग एबिलिटी या कॉम्प्रीहेंशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, जिसको हम एनटीए पेपर वन कहते हैं। और सेकंड होता है एनटीए पेपर टू, वो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, जिस सब्जेक्ट में आपने नेट क्वालिफाई करना है उसी सब्जेक्ट का आपका एग्जाम होगा। जैसे मैं पैटर्न बताऊं आपको, जो एनटीए का पैटर्न है, जैसे पेपर वन है, पेपर वन में 50 क्वेश्चंस आते हैं। पहले पैटर्न अलग था, पिछले कुछ टाइम से पैटर्न चेंज हुआ है। तो पेपर वन में 50 क्वेश्चंस आते हैं 100 मार्क्स के, और पेपर टू आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। जैसे सपोज आपने एमए इकोनॉमिक्स किया हुआ है, तो आप नेट इकोनॉमिक्स में पास करना चाह रहे हैं, तो आपको फिर 100 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करने हैं जो इकोनॉमिक्स के होंगे। आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 3 आवर का आपका पेपर होता है, जिसमें कोई ब्रेक आपको नहीं मिलेगा। तो ये एक आपका स्कीम होती है जो एनटीए नेट का एग्जाम है, ठीक है। तो अगर आप ये क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर कॉलेज वाइज वैकेंसीज निकलती है, जैसे प्रोसेस मैंने आपको बताया। उसके बाद फिर वो अपना अलग से पेपर कंडक्ट कराते हैं, उसमें जिस सब्जेक्ट की वैकेंसीज आई है आपने उसी सब्जेक्ट में अप्लाई किया है। और अगर आप डिपार्टमेंट वाइज वर्क करना चाहते हैं किसी यूनिवर्सिटी के अंदर, तो वहां भी मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है दैट इज द नेट, कि अगर आपका नेट क्वालिफाइड है तो आप वहां पर जॉब के लिए एंटाइटल है। वैकेंसीज निकलती है, इंटरव्यू कंडक्ट होता है, और इंटरव्यू कंडक्ट होने के बाद में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो यू कैन बी असिस्टेंट प्रोफेसर। तो ये एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है हमारे कॉलेजेस में जाने के लिए, कि नेट का पेपर आपको उसी सब्जेक्ट में जरूर क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आप टीचर बन सकते हैं। मतलब स्कूल लेवल में थोड़ा ये डिफरेंस है कि वैकेंसी ज्यादा आती है। अगर हम कॉलेज लेवल की बात करें तो कॉलेज लेवल में जो नंबर ऑफ वैकेंसी है कंपैरेटिवली कम है, बट फिर भी एडवांटेज क्या है कि अगर आप किसी भी लेवल पे एंटर करना चाहो, अगर स्टार्टिंग में सपोज आपने क्वालिफिकेशंस पूरी है बट हमें जॉब नहीं मिलता, बट इंडिया में प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस काफी ज्यादा है। आप देखेंगे, चाहे आप बेटे किसी भी लेवल पे देखिए, चाहे आपके ग्रेजुएशन के अंदर है, चाहे मास्टर डिग्री के अंदर है, चाहे प्रोफेशनल कोर्सेज में है, चाहे हम स्कूल्स की बात करें, तो काफी ज्यादा प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है। तो फिर क्या रहता है कि आप अपनी कहीं ना कहीं जॉब स्टार्ट कर सकते हैं। एक बार आपने अपनी अर्निंग स्टार्ट कर दिया तो धीरे धीरे आप अप्लाई करते रहिए, और विद द पैसेज ऑफ टाइम कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाता है। बट अगर क्वालिफिकेशन पूरी है तो हाँ, अब सपोज आपने बीएड नहीं कर रखा, अगर आपने बीएड नहीं किया हुआ तो फिर दिक्कत है। तो क्वालिफिकेशन को कंप्लीट करना सबसे पहला काम है, और एक बार आपकी क्वालिफिकेशन पूरी हो जाएंगी तो उसके बाद फिर आप अपना टेस्ट पास करिए। तो आज नहीं कल नहीं परसों, विद द पैसेज ऑफ टाइम जॉब्स लगती हैं, वैकेंसीज काफी ज्यादा आती है टीचिंग में, काफी वैकेंसीज आती है, तो उसमें जॉब लगने का स्कोप रहता है, ठीक है। तो इस तरह से बेटे ये हमारे सारे एग्जाम्स होते हैं जो टीचिंग से रिलेटेड है, राइट। तो ये बेटे दैट इज फ्रॉम माई साइड। अब आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं किसी भी टाइप से रिलेटेड, तो अब मैं आपकी क्वेरीज का आंसर करूंगा। मैंने अपनी ओर से एक बार आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया कि किस किस टाइप के एग्जाम्स है, किस किस टाइप की जॉब्स है, क्या रहता है इसके अंदर। हाँ, सैलरीज काफी अच्छी है, मतलब अगर हम आज के टाइम में गवर्नमेंट टीचर्स की बात करें तो स्टार्टिंग सैलरी 40,000 प्लस स्टार्टिंग सैलरी है, चाहे आप एलिमेंट्री टीचर भी है, और उसके बाद में एवरी ईयर इंक्रीमेंट्स आर देयर, तो आपकी सैलरी मतलब 15 से 20 साल अगर आप गवर्नमेंट जॉब में एज ए टीचर रहते हैं तो 80,000 प्लस आपकी सैलरी कम से कम रहती है, और असिस्टेंट प्रोफेसर में तो स्टार्टिंग सैलरी आपकी 60-70,000 प्लस रहती है। तो सैलरीज अच्छी है, वर्कलोड कम है इंडिया में, ज्यादा पढ़ाने का इतना बड़ा प्रेशर नहीं होता है, बस एक बार एंटर करना इंपॉर्टेंट है, वो आपके लिए, उसके लिए आपको रेगुलर एफर्ट करना रहता है। तो अब आप कुछ भी पूछना चाहें तो हम आंसर करेंगे एक एक करके।
1: दिनेश जी, एक मेरे पास क्वेश्चन है, ये सभी के लिए शायद कॉमन होगा, ये शायद इन लोग के पास भी कुछ आइडिया हो जाए। ये सीटीटी के बारे में जो आपने बताया है, जो ऑलरेडी आप प्राइमरी टीचर के लिए जो आप जो है 1 से 10th क्लास तक के आप जो अप्लाई करेंगे, उसको करने के बाद बहुत सारे होते हैं जो जो गवर्नमेंट का जो निकलता है स्कूल वाइज या फिर सेंट्रल स्कूल का या अदरवाइज लेकर के प्राइवेट स्कूल वाले भी आजकल एंट्रेंस, इससे कोई एंट्रेंस का तो कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि काफी लोग पैटर्न भी स्टेट वाइज अपना रखते हैं कि चलो भाई
0: प्राइवेट स्कूल्स जो है वो कई बार एलिजिबिलिटी टेस्ट जरूर मांग लेते हैं कि आपका सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए, वो कई बार या आपसे बीएड मांग लेते हैं कि बीएड होना चाहिए आपका, अदरवाइज तो प्राइवेट स्कूल का तो सिंपल सा पैटर्न है कि वो तो इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं और एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं, उसमें तो वो तो उनके अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको टीचर चाहिए होता है, तो उनका पैटर्न अलग है, ऐसे कोई हम नहीं कह सकते पर्टिकुलर टेस्ट आपको अपीयर करना है फॉर द प्राइवेट स्कूल टीचर, उसके लिए ऐसे कुछ क्वालिफिकेशंस भी नहीं है।
1: नहीं है okay.
2: जैसे वो ये बता देते हैं कि पेपर है ये, अगर आप सर्टिफिकेट हैं तो पेपर है और कुछ नहीं होते।
0: हाँ,
3: गुड आफ्टरनून सर, फरा बोल रही हूँ रामपुर से। सर मुझे ये पूछना था सी टेट या यूपी टेट में से हमें एक ही क्वालिफाई करना है या फिर दोनों क्वालिफाई करना है?
0: एक्चुअली क्या रहता है, देखिए जो सी टेट का एग्जाम है ना, वो आपका एक टाइप से जो सेंट्रल लेवल का एग्जाम है, जैसे आपने दिल्ली की कोई वैकेंसी आई, ठीक है, कहीं भी वैकेंसी आएगी वो आपसे मतलब जो क्वालिफिकेशन एक्सपेक्ट करेगा वो सी टेट करेगा। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी स्कूल में वैकेंसी आएगी तो वहां पर आपको सी टेट पास करना पड़ेगा, बट जब स्टेट वाइज वैकेंसी आती है ना तो फिर वो अपने स्टेट का ही वो मांगते हैं, एग्जाम मांगते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप यूपी से बिलोंग करते हैं, यूपी में अगर प्राइमरी टीचर की वैकेंसी आई है तो वहां पर जो मिनिमम क्वालिफिकेशन लिखेगा ना वहां पर वो यूपी टेट लिखेगा, तो फिर आपको यूपी का टेट वो करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा। तो आप ये मान के चलिए कि अगर आपको टीचिंग में जाना है तो दोनों ही पास करना है आपको।
3: जैसे अभी हमने बीटीसी कर ली है तो सी टेट का भी एग्जाम दिया था तो अभी 3 नंबर से रह गए थे हम।
0: हाँ जी,
3: तो
0: हाँ जी,
3: पूछ रही हूँ कि सी टेट या यूपी टेट से अगर हमारा एक ही क्वालिफाई होता है तो क्या उसके बाद सुपर टेट फिर आएगा?
0: नहीं नहीं, ये क्या करते हैं, ये जो स्टेट वाइज वैकेंसीज निकालते हैं ना तो उसमें वो सी टेट को नहीं मानेंगे, वो अपना पेपर मानेंगे जो यूपी टेट का होगा, वो थोड़ी सी प्रॉब्लम करते हैं। बट ये है कि अगर आप जो सी टेट का क्वालिफाई करते हैं तो बाहर कहीं भी आप अप्लाई कर सकते हैं।
3: अच्छा, यूपी में नहीं हो सकता ये, यूपी कहीं
0: चल जाता है, मतलब क्या रहता है ना कि वो उसमें अब जैसे क्या है कि अगर आपकी पीजीटी की वो आएंगी, अगर आपकी पीजीटी की आती है वैकेंसी तो अप्लाई नहीं हो पाएगा, फिर पेपर वन है पेपर टू है, तो मतलब आपका चल जाता है पर वो उसमें लिखा होता है, मतलब जैसे जब फॉर्म निकलते हैं ना तो उसमें, क्योंकि
3: हाँ,
0: देखिए क्या है कि इसका क्या, इसका प्रोसीजर क्या होता है कि जो टेट का पेपर है वो ओनली एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जब आपकी वैकेंसी आती है ना तो उसमें फिर लिखा होता है भी आपने आपका या तो टेट क्वालिफाई हो या आपका सी टेट क्वालिफाई हो या उसके अलावा कोई और भी कोई एग्जाम अगर है तो वो लिखा हो तो वहां आपका चल जाता है।
3: अच्छा सर, जो सुपर टेट है, यूपी टेट हमारा जैसे क्लियर हो गया, उसके बाद अपने सुपर टेट भी क्लियर कर लिया, तो उसके बाद भी हमारा इंटरव्यू या कोई एग्जाम वगैरह होता है या डायरेक्टली हम डाल सकते हैं फिर?
0: नहीं, उसमें ये क्या करते हैं, देखिए अभी जैसे पहले तो क्या होता था कि जो टेट क्वालिफाई होता था उसी के बेसिस पे होता था, जॉब लग जाती थी,
3: जी
0: अभी उन्होंने क्या किया हुआ है कि अभी ये जैसे टेट को कर रखा है अलग, ये तो एक टाइप का ये हो गया कि आपकी एलिजिबिलिटी टेस्ट हो गया। फिर जब वैकेंसीज निकालते हैं तो वैकेंसीज निकालेंगे तो उसमें ये लिखेंगे कि मिनिमम वही पर्सन अप्लाई कर सकता है जिसका टेट क्वालिफाई है। फिर वो अपना अलग से पेपर लेते हैं एट द टाइम ऑफ अजवाइनिंग। जैसे हरियाणा में क्या है कि आपने एस्टेट क्वालिफाई कर लिया, एस्टेट पास करने से जॉब नहीं मिलेगी आपको, जब वैकेंसी आएगी वो फिर से पेपर लेगी आपका। तो इस तरह से चलता है इसमें। एक ये क्वेश्चन है सीमा सिंह जैसे पूछ रहे हैं कि बीएड करने का क्या प्रोसेस है। जो बीएड करने का प्रोसीजर है कि आपको ग्रेजुएशन के बाद आप बीएड कर सकते हैं, डिस्टेंस से बीएड नहीं होती है। पहली चीज, ओनली इग्नू ऑफर करता है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ऑफर करती है, बट उसमें भी उसमें आप किसी ना किसी स्कूल में एज ए टीचर वर्क कर रहे हो, तो उसमें जो लोग एज ए टीचर जॉब कर रहे होते हैं उनके लिए एक उनके लिए प्रोसेस है कि वो बीएड जो है डिस्टेंस से कर सकते हैं, बट इन जनरली जो बीएड है वो आपको एज ए रेगुलर कोर्स ही करना पड़ता है। तो आपने बीए बीकॉम बीएससी जो भी आपने किया है तो उसके बाद आपको 2 ईयर का बीएड करना पड़ेगा। ये आपका जैसे सर मैंने डीएलडी किया है, टेट क्लियर है, इंटर कॉलेज जॉब्स का क्या स्कोप है? क्योंकि इंटर कॉलेज जैसे ये मेरे हिसाब से यूपी से बिलोंग करते हैं ना आप, यूपी में इंटर कॉलेज होता है। हाँ, वैसे तो इन जनरली क्या होता है, जैसे मैं अपनी हरियाणा या और जगह की बात करें तो वहां पर जो कॉलेज की वैकेंसी तो आपकी अलग से आती है। यूपी में क्या है कि इंटर कॉलेज मतलब जो ट्वेल्थ को करता है टीच, मतलब आपका 8 to 12 एक पीजीटी कहते हैं ना उसे हम बोलते हैं, तो उसमें तो आपको बीएड करनी पड़ेगी। देखिए क्या रहता है कि पीजीटी के लिए बीएड क्वालिफिकेशन आपकी मस्ट है पूरे इंडिया में, ठीक है। और अगर आपको एलिमेंट्री टीचर का करना है तो आपने जैसे डीएलडी किया हुआ है तो आप उसमें टाइटल है, तो आपको ये थोड़ा सा इसमें देखना पड़ेगा। हाँ, सीमा सिंह आस्किंग वन हैज टू गो टू कॉलेज एवरी डे। देखिए नहीं, उसमें क्या है कि बीएड में देखिए आपके दो तरह के कॉलेजेस है, एक जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है एक प्राइवेट कॉलेज है। तो प्राइवेट कॉलेजेस तो फीस ही चार्ज करते हैं बस, मतलब आपको कॉलेज जाने की नीड नहीं है। मैक्सिमम जो बीएड है वो आपकी इसी तरह से होती है, बट रेगुलर कोर्स है, मतलब उसके साथ आप कुछ और नहीं कर सकते। बीएड एक तरह का रेगुलर कोर्स है। अगर आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज से बीएड कर रहे हैं तो आपको कॉलेज आने की उम्मीद नहीं है, एग्जाम्स होंगे बस आपके, ठीक है। बट उन 2 सालों के अंदर अंदर आप उसके साथ कोई और डिग्री नहीं हो पाएगी आपकी, आप केवल बीएड ही करेंगे, क्योंकि काफी प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो बीएड करवाते हैं। तो आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज से बीएड कर सकते हैं, वो किसी ना किसी यूनिवर्सिटी के साथ में एफिलिएट होगा। अकबर जी पूछ रहे हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी में टीचिंग जॉब के लिए नेट की आवश्यकता होती है। देखिए क्या है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अगर वो पूरे स्केल की सैलरी देंगे तो नेट आपसे मांगेंगे जरूर। देखिए क्या होता है ना, प्राइवेट में भी मतलब जितनी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है वो 2 टाइप के टीचर रखती है। एक तो वो टीचर रखती है जो वो अपने रोल्स पे दिखाती है, मतलब जिनको एक नंबर में सैलरी पे दिखाती है, तो वहां तो नेट क्वालिफाइड होना कंपल्सरी है, क्योंकि आप कॉलेज लेवल पे टीचर तभी बन सकते हो जब आपने नेट क्वालिफाई किया हुआ है। तो कुछ टीचर्स को वो एडहॉक पे दिखाती है तो वहां पर आपका चल जाता है, मतलब। तो ये है कि स्टार्टिंग की जा सकती है, बाकी अगर आपको कॉलेज लेवल पे या यूनिवर्सिटी लेवल पे टीचिंग करनी है तो नेट क्वालिफाई करना मस्ट है आपके लिए, उसके बिना आपको सैलरी कभी पूरी नहीं मिल पाती। सुनील जी पूछ रहे हैं एस्टेट का सिलेबस क्या रहेगा, बीएड एसएसटी इंग्लिश से है, बीएड एसएसटी उसमें देखिए अगर आप टीजीटी का दे रहे हैं पेपर तो उनकी तो आपके टॉपिक वाइज आपको बुक्स मिल जाती है उसमें। जैसे जो टीजीटी का पेपर है, हाँ, उसमें जैसे मैंने आपको पहले बताया भी, जैसे 150 नंबर का पेपर आता है तो 30 questions तो आपके हरियाणा में जैसे मैथ्स रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस के हो गए, 30 questions चाइल्ड पेडागोजी के हैं, और उसके बाद जो 30 questions हैं वो आपके इंग्लिश और हिंदी के हो गए, और फिर बच्चे 60 questions आपके बच्चे, उन 60 questions में आपका एसएसटी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे आपके टीजीटी में। जितने आस्किंग कॉलेज रेगुलर करना चाहिए वो नहीं, देखिए क्या क्या रहता है कि आप कॉलेज कैसे भी कर सकते हैं, आपने बीए चाहे कॉरेस्पॉन्डेंस से किया हुआ है चाहे आपने रेगुलर किया हुआ है, वो मैटर नहीं करता, बट हाँ उसमें मार्क्स आपके मैटर करते हैं, क्योंकि जब भी वैकेंसीज आती है ना तो उसमें कुछ ना कुछ जो वेटेज है कुछ आपके मार्क्स को होता है वेटेज, तो आपने कहीं से कोर्स किया हो वो आपका चाहे कॉरेस्पॉन्डेंस है चाहे आपका रेगुलर कोर्स है वो इक्विवेलेंट ही ग्राउंड पे होता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता एज ए जॉब के लिए। देखिए कॉलेज रेगुलर करना ही बेनिफिशियल होता है, वो बिल्कुल ठीक बात है आपकी, मतलब जनरली आप बीए बीकॉम जो भी करिए मतलब आप हर कोर्स को रेगुलर से ही करिए तभी बात बन पाएगी, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डेंस से एक तो ना तो मार्क्स आपके अच्छे आते पहली चीज और ना ही आपकी सब्जेक्ट में इनडेप्थनेस हो पाती है, तो ये तो एडवाइजेबल होता है कि करना तो रेगुलर ही चाहिए।
4: आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो। रीड इंडिया समुदाय के सहयोग के द्वारा समुदाय के विकास के लिए कार्य करता है। रीड इंडिया ग्रामीण समुदायों में स्थायी सामाजिक परिवर्तन हेतु शिक्षा उद्यम और सामाजिक विकास के क्षेत्र में कार्य करता है। आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो।

0: कैसे हैं सभी लोग?
1: गुड मैम, गुड
0: गुड
1: है मैम।
0: आफ्टरनून मैम।
1: मैम बहुत गर्मी के बाद बहुत अच्छी बारिश हो रही है। ठीक
0: और सब कैसे हैं? ठीक
1: है मैम। गुड
0: है। कोई और कैसे हैं? सब
1: आफ्टरनून मैम, सब ठीक है? आप कैसी हैं मैम? गुड
0: ठीक है जी। और कैसे हैं सब?
2: आफ्टरनून मैम। हम
1: मैम
2: अच्छे
1: अच्छे, गुड
0: अच्छे हैं। और
1: मैम
0: कैसे हैं?
1: अच्छे हैं। आपको देख के थोड़ी एनर्जी फील होने लगी अब।
0: एनर्जी है। और कैसे हैं सब?
1: ठीक है मैम, कुछ
0: ठीक हैं। और कैसे हैं सब? क्या इमोशन है इस
1: है
0: वक्त?
1: मैम, बहुत बढ़िया।
0: बढ़िया है। और कैसे हैं?
1: मैम को आज सबकी वॉइस सुननी है।
0: मुझे ये जानना है सब हैं कैसे। अभी तक मुझे ये पता है कि पांच छह लोग अच्छे हैं, बढ़िया हैं। ठीक
1: मैम सब कुछ ठीक है, बट मौसम खराब है तो गला खराब हो जाता है मैम
0: है,
1: सबका।
0: लेकिन गला खराब है, थोड़ी तबीयत खराब है, लेकिन वैसे ठीक है ना?
1: मैम
0: आपको सिर्फ सुनना है, ज्यादा बोलना तो है ही नहीं, तो कम से कम वीडियो ऑन कर सकते हैं, है ना? कैसे हैं? मेरे को अभी भी जवाब नहीं मिला है, सिर्फ ठीक है, अच्छे हैं। चार पांच लोगों ने बोला है यहाँ पे, तो 30 से ज्यादा लोग हैं। कुछ तो और महसूस कर रहे होंगे, कुछ कोई तो होगा जो अच्छा नहीं फील कर रहा है कि सब अच्छे हैं।
2: सब अच्छे हैं मैम।
0: सब अच्छे हैं। यहाँ कुछ प्यारे प्यारे बच्चे बैठे हैं, स्वर्णा जी आपके साथ, मेरे ख्याल से आपका ही आंखें दिख रही है शायद, है ना?
2: हाँ
0: हाँ जी। बच्चे कैसे हैं आप लोग?
2: सांगले अच्छे हैं, मराठी
0: सांगले, सांगले का क्या
2: में बात
0: मतलब?
2: करते हैं मैम। वो
0: हाँ, तो सांगले का क्या मतलब होता है?
2: अच्छे हैं हम सब।
0: अच्छे हैं, सब अच्छे हैं। और कैसे हैं? अरे,
2: तुम्हें
0: आपके पीछे मुझे
2: बोला
0: है तो सब अच्छे हैं, ठीक है। अच्छे के अलावा और किसी को नहीं पता कि वो कैसे हैं, उनका फीलिंग कैसा है, आज मन में क्या है। जब हम किसी से मिलते हैं, पूछते हैं अच्छा और कैसे हो, तो हम बोलते हैं सब ठीक है, या फिर जैसा ऋतु जी ने बताया सब ठीक है लेकिन मौसम खराब है तो थोड़ी तकलीफ हो रही है, देर से पहुंचे कि जहां पहुंचना था, खांसी जुकाम हो गया। बट हम कैसे फील कर रहे हैं ज्यादातर हमें पता ही नहीं होता, या तो अच्छे हम बोलते हैं कि हम अच्छा ही फील कर रहे हैं, है ना? अभी ये सवाल मैंने कम से कम 15 से 20 बार ही पूछा और सिर्फ यही जवाब मिला कि हम अच्छे हैं। सब मानते हैं यही जवाब मिला हमको, यस।
1: यस मैम,
2: यस मैम,
0: तो
2: यस
0: आज
2: मैम।
0: इसी चीज पे बात करेंगे जिस पे मैम ने कल छोड़ा था। मैम ने कल अपने सेशन में 10 ईज की बात करी थी। जो लोग इस सेशन में थे कल, हम वहीं से आगे इसको कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि जैसा मैम ने बताया था कि हम किसी चीज को अधूरा नहीं छोड़ना चाहेंगे, इन डेप्थ हम जानना चाहेंगे हर एक चीज का मतलब क्या है हमारी जिंदगी से। ये जो सेशंस हैं इसमें हम कुछ सिखा नहीं रहे, कुछ सीख नहीं रहे, बस कोशिश ये है कि अपने आप को थोड़ा बेहतर हम पहचान सके और थोड़ी जो हमारी शक्तियां हैं, जो स्किल्स हैं, जो स्ट्रेंथ्स हैं, हम उसको और पॉलिश कर सकें, ताकि हम एक बेहतर ह्यूमन बीइंग बन सकें, सोशली, इमोशनली एंड प्रोफेशनली। क्योंकि सभी यहाँ पे जो हमारे साथ जुड़े हैं वो कुछ ना कुछ आगे जिंदगी में या तो कुछ कर रहे हैं या तो कुछ करना चाहते हैं। जो कर रहे हैं वो आगे बढ़ना चाहते हैं और जो कुछ करना चाहते हैं वो अपनी राह ढूंढ रहे हैं। सही बात है या कोई और भी जुड़े हैं किसी और रीजन से? सही
1: सही बात है मैम, बिल्कुल।
0: बात। चुप तो रह नहीं सकते ना, मैं पांच बार बार पूछती रहूंगी ताकि को देखूं सो तो नहीं गया कोई, है ना? तो आज का हमारा ये 40-45 मिनट होंगे, हम उस चीज पे बात करेंगे जो पहला ई था। पहला ई क्या था? किसी ने सुना था ना कल, सबने 10 ई नोट किए होंगे। पहला ई क्या था बता सकता है कोई?
1: एम्पावर
0: पावर ऑफ वॉट? एब्सोल्युटली।
1: मैम, इमोशनल स्ट्रेंथ।
0: मैं तब से यही बात कर रही हूँ कि इमोशनल स्ट्रेंथ हमारी क्या है, हम कैसा फील करते हैं, हमारी जिंदगी में इमोशंस क्या रोल फील करते हैं, क्या रोल प्ले करते हैं। हम सुबह उठने से लेके जब तक सोने जाते हैं और सोने के बाद भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, यानी कि हमारे सपनों में भी हमारे इमोशंस प्ले करते हैं, हाँ कि ना? अगर आप उदास हैं, अगर आप दुखी हैं और उस फॉर्म में हम सो जाते हैं, तो हमारे सपने भी हमें उसी तरीके के आते हैं। ऐसा होता है क्या कभी? अगर हम खुश हैं, हमारा दिन अच्छा बीता है, हमने जो चाहा था हमें मिला है, या जो हम अचीव करना चाहते थे, अच्छा सा परिवार भी सुखी है, तो हम अच्छी नींद अगर सोते हैं तो हमें सपने भी अच्छे आते हैं, ऐसा होता है? तो इसका ये मतलब है कि इमोशंस का रोल हमारी जिंदगी में सबसे बढ़ के है। जितना जरूरी खाना पीना, अपने कपड़े, हमारे रहन सहन, हमें अपने फिजिकल नीड्स, जो हमारी फिजिकल नीड्स हैं उनको पहचानना है, उतना ही या शायद कभी कभी उनसे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है हमें हमारी इमोशनल नीड्स को पहचानना। मुझे कोई बता सकता है कि कितने इमोशंस हैं ह्यूमन, एक इंसान में कितने इमोशंस हैं? आपको क्या पता है इस बारे में? कोई गूगल नहीं करेगा इस वक्त? ये नहीं कि जो लोग स्क्रीन पे नहीं है आप गूगल करना शुरू करें, गूगल में सबसे पहले सबसे ऊपर आ जाएगा। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप सच्चे हैं तो प्लीज गूगल मत करिए, क्योंकि सबकी स्क्रीन ऑन नहीं है। आप, ये कोई टेस्ट नहीं है, इसमें कोई मार्क्स नहीं मिलने हैं, बस आप अपनी समझ से, जितना हम पढ़े हैं, कोई यहाँ पे 20 साल का है, कोई 25, कोई 30, कोई 40, कोई 50 साल का है, इन 50, 20, 30 सालों में आपने कितने इमोशंस महसूस करे होंगे, कोई भी बोल सकता है। और जो नहीं बोल रहे, मैं इनकरेज करूंगी वो भी बोले, क्योंकि यहाँ कोई गलत और सही जवाब नहीं है। कितने
2: मैम बहुत सारे इमोशंस होते हैं, लाइक
0: होते
2: खुशी,
0: हैं? 5, 6। खुशी होती है, और बताइए। हेलो,
2: हम जैसा फील कर रहे हैं वैसा इमोशनल हो जाते हैं हम,
0: जैसे कि दुखी हो गए, खुश हो
2: जैसे
0: गया, गुस्सा
2: मैम
0: हो
2: गुस्सा आ
0: गया।
2: जाते हैं, कभी कभी अंदर से
0: पांच,
2: नाराजगी होती है, बोल नहीं पाते हैं तो
0: छह,
2: वो फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, कभी कभी
0: सात,
2: कभी
0: खुश,
2: रिक्वेस्ट भी होता है।
0: आठ, आठ इमोशंस हो गए, तो बिल्कुल ठीक। 7 या 8 कोर इमोशंस होते हैं जो हमारी जिंदगी में हमें रूल करते हैं। मैं एक बार स्क्रीन शेयर करती हूँ, मैंने एक छोटी सी प्रेजेंटेशन भी बनाई है, होस्ट को रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज मुझे अलाउ करेंगे स्क्रीन शेयर करने के लिए। आई रिक्वेस्ट द होस्ट टू अलाउ मी टू शेयर द स्क्रीन प्लीज। तो अब कायदे से तो मुझे गुस्सा आना चाहिए ना, क्योंकि मेरी स्क्रीन ही नहीं अलाउ हो रही आज शेयर करने के लिए, है ना? मेरा इमोशन इस वक्त क्या होना चाहिए? मेरे को घबराहट हो जानी चाहिए, मैंने इतनी मेहनत करके प्रेजेंटेशन बनाई और होस्ट मुझे अलाउ नहीं कर रहे स्क्रीन शेयर करने को, या मेरे को घबराहट हो जानी चाहिए कि अब मैं आगे क्या बोलूंगी, मैंने तो स्क्रीन से देख के पढ़ना था और अब तो मेरे को डर लग रहा है, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं मैं आगे क्या बोलूंगी, लेकिन मैं फोन करके स्क्रीन शेयर के लिए बोलती हूँ। सो राहुल ने मुझे अलाउ करा है स्क्रीन शेयर करने के। आप लोग मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं?
2: यस मैम, यस
0: फुल स्क्रीन
2: मैम,
0: दिख रहा है। सो आज हम पहले ई पे बात करेंगे, जो मैम ने बताया था, इमोशनल इंटेलिजेंस, जिसको कि हम ई क्यू भी बोलते हैं, जो फॉर्मल लैंग्वेज होती है। ये एक प्रॉपर स्टडी है साइकोलॉजी में, इमोशनल क्वोशेंट इसको बोलते हैं, लेकिन हम इस पे बहुत ही बेसिक लेवल पे बातचीत करने जा रहे हैं। ये कोई साइकोलॉजी का सेशन नहीं है, मैं कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, बट प्रैक्टिकली इस चीज के क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ में, हम इस पे आपस में बात करेंगे। मैं कुछ आपको सिखा नहीं सकती, क्योंकि आपके इमोशंस आपके हैं, मेरे इमोशंस मेरे हैं, बट मैं ये बता सकती हूँ कि इमोशंस का रोल क्या है, और इसको पहचानना और इसको मैनेज करना। हम इमोशंस चेंज तो कर नहीं सकते, गुस्सा आ रहा है तो आ रहा है, लेकिन गुस्से में क्या मैं किसी को थप्पड़ मार रही हूँ, क्या मैं किसी पे चीख चिल्ला के बात कर रही हूँ, या मैं समझ बूझ के, समझ से सिचुएशन को हैंडल करके बातचीत कर रहे हैं। और हर बार ही जरूरी नहीं है कि एक ही रिएक्शन होता है, हर एक सिचुएशन में हमारे इमोशन अलग होते हैं। तो हम बोलते हैं कि अच्छा, हम ये सेशंस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कोई ना कोई हमारे एक ख्वाब है, हमारा एक गोल है लाइफ में, उसको हमें अटेन करना है, बट उस गोल को अचीव कैसे करना है। तो हमने सोचा चलो हम वो ईज की बात कर रहे हैं, तो इमोशनल इंटेलिजेंस से बात करते हैं। जैसा कि सना ने बताया, हमारे कुछ 8 या 9 जो कोर इमोशंस हैं वो हमारी लाइफ में रोल प्ले करते हैं, जिसमें कि हो गया हैप्पी हूँ, सैड हूँ, वरिड हूँ, नर्वस हूँ, गुस्से में आ गई मैं। ये सारे इंग्लिश के, मैंने जो यहाँ पे आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये कुछ 12-14 अलग अलग इमोशंस हैं। ये इंग्लिश लैंग्वेज के वर्ड्स हैं, एडजेक्टिव्स हैं, लेकिन इसके हमारे को हर भाषा में कोई ना कोई इसका एक वर्ड जरूर मिल जाएगा। तो हम आमतौर पे, हमें लगता है कि हमारे करीबन 12 या 13 अलग अलग इमोशंस होते हैं जो हमारी लाइफ। कुछ इमोशंस नेगेटिव होते हैं और कुछ इमोशंस पॉजिटिव होते हैं। दोनों ही हमारे लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बिहेवियर को दर्शाते हैं। अगर मुझे जल्दी गुस्सा आ जाता है, इसको कहते हैं ना, अरे इसको तो बहुत जल्दी गुस्सा आता है, इससे ज्यादा बात मत करो, ये तो एकदम बिगड़ जाएगा या बिगड़ जाएगी, इससे ज्यादा ज्यादा इससे कुछ बात करने की जरूरत नहीं है, तो वो क्या होता है, वो हमारा बिहेवियर हो गया है। क्योंकि जो नेगेटिव इमोशंस हैं वो हमारे बिहेवियर को बहुत उसपे, हमारे हमारे जो एक्शन है उसको हमारे को गाइड करता है। कुछ लोग होते हैं, इसे कितना भी बात कर लो ना, इसे गुस्सा नहीं आता, अब ये तो कहना गलत है कि गुस्से वाला इंसान ठीक नहीं है और जो प्यार से बात कर रहा है वो ही ठीक है, ऐसा तो नहीं है ना। हो सकता है जो गुस्से वाला इंसान है वो ज्यादा समझदारी की बात कर रहा हो, लेकिन उसका बताने का तरीका ऐसा है कि वो सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इसलिए हम लोगों ने इमोशंस को दो भागों में बांटा है, आमतौर पे नेगेटिव इमोशंस और पॉजिटिव इमोशंस बोला जाता है। नेगेटिव इमोशंस में गुस्सा आ गया, शर्मिंदा हूँ, उदास हूँ, मुझे डर लग रहा है, मुझे नफरत है किसी से, मुझे अफसोस है, इन सब शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। पॉजिटिव इमोशन में मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे अपने ऊपर मुझे प्राइड है, यानी कि मुझे गुरूर है अपने काम पे, मुझे गर्व है अपने काम पे, मुझे आशा है, होप है, खुशी है, जॉय है, लव है, ये हमारे अच्छे इमोशंस होते हैं। लेकिन एक साइकोलॉजिस्ट हैं जिनका यहाँ मैंने नाम दिया है रॉबर्ट, इन्होंने जब स्टडी किया, ये साइकोलॉजिस्ट माननीय साइकोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने कई किताबें भी लिखी हैं, इन्होंने ये प्रूव किया अपनी थ्योरी से कि जो ये 7 या 8 इमोशंस होते हैं ये करीबन 34,000 इमोशंस ह्यूमन बीइंग में कॉम्बिनेशन में पैदा कर सकते हैं। हमें ये सब जानने की जरूरत इस वक्त पे नहीं है, हम कोई स्टडी नहीं कर रहे, हम कोई एनालिसिस नहीं कर रहे, बट मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि इमोशंस का इतना इम्पोर्टेंट रोल है हमारी जिंदगी में, हमें पता भी नहीं चलता, लेकिन हमारे एक्शंस इन्हीं से दर्शाए जाते हैं। इसलिए हमें इनको मैनेज करना आना बहुत जरूरी है। मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि मैं आपको बताऊंगी और आप अपने इमोशंस मैनेज करना शुरू करोगे, लेकिन हम सबको ये आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है कि मेरा प्राइम इमोशन क्या है। कोई भी चीज अगर खराब होती है दिन भर में तो क्या मुझे गुस्सा आ जाता है, क्या मैं उदास रहती हूँ, या मैं उसको कोशिश करती हूँ कि मैं उसका सॉल्यूशन निकाल सकूँ उस सिचुएशन के, मैं कोशिश करके उसको पॉजिटिविटी की तरफ ले जा सकूँ। मकसद यही है कि हम अपने इमोशंस को पहचाने, इसको हम इमोशनल क्वोशेंट कहते हैं प्रोफेशनल लैंग्वेज में या फॉर्मल लैंग्वेज में, लेकिन जब हम उठते हैं उठने से सोने तक, सोने के बाद भी हम इसी 34,000 के जो चक्र है इसमें फंसे रहते हैं। कोई कुछ ऐड करना चाहता है या किसी को कुछ लग रहा है कि गलत है या सही है? हम 1 मिनट के लिए रुक सकते हैं। जब नेगेटिव इमोशंस होते हैं तो उसकी फीलिंग कैसी होती है? हम इरिटेटेड रहते हैं, फ्रस्ट्रेशन होती है, नर्वसनेस होती है हमें, जैसे एग्जाम देने जाना है और नेगेटिव इमोशन है, डर है हमारे अंदर, तो डर से क्या होगा? वरी होगी, नर्वसनेस होगी, तो क्या कोई फायदा होगा हमें एग्जाम देने में? नहीं। लेकिन अगर हम तैयारी अच्छे से कर रहे हैं, हमने बार बार अपना रिविजन किया है, तो उस नेगेटिव इमोशन को हम पॉजिटिव में कैसे बदल सकते हैं? वरी को हम कॉन्फिडेंस में लेके आ सकते हैं, हम वरी जो है हमारी उसको बदल के हम कॉन्फिडेंस में डाल सकते हैं। क्यों? हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते हैं पहले से तैयारी करो, आखिरी मोमेंट पे कुछ मत छोड़ो, लिखित में प्रैक्टिस करो, बार बार उसका रिविजन करो, ताकि जो डर है, जो नर्वसनेस है, वो हमारा एक्शन क्या होगा कि हम आधा पेपर भूल जाएंगे, पेपर देख के डर जाएंगे, हमें समझ नहीं आएगा आंसर क्या लिखना है, हो सकता है गलत मलत लिखा है। लेकिन अगर हमने उस नेगेटिव इमोशन को पॉजिटिव में अपने एक्शन से बदला हो तो हम कॉन्फिडेंट होंगे, हम रिस्पॉन्ड करेंगे। ऐसा भी कोई क्वेश्चन आ गया कि मान लीजिए उसकी तैयारी हमने नहीं करी तो भी चैप्टर्स तो हमने सारे पढ़े हैं, तो अपनी समझ बूझ से हम रिस्पॉन्ड करेंगे ना कि रिएक्ट करेंगे। घर से निकलने से पहले किसी ने कुछ बोल दिया तो उस पे भी हम नाराज हो जाते हैं, कभी कभी हमारे मन मुताबिक बात नहीं होती, पूरा दिन खराब हो जाता है, या रास्ते में जा रहे हैं, आजकल बारिश का मौसम है, गाड़ी तेज निकली, कपड़े खराब हो गए, कीचड़ कीचड़ हो गया, गुस्सा आ गया, बस इतना अच्छे से मैं बन ठन के जा रही थी और सारा खराब हो गया, मेरी तो मीटिंग थी, मेरा मेरा तो अच्छा काम होने जा रहा था, बट मैं क्या कर सकती हूँ, ये तो हो गया, ये तो सिचुएशन सामने आ गई, अब ये मेरे ऊपर है, मैं अपना इमोशन कैसे संभालूंगी? गाड़ी वाला तो निकल गया, हो सकता है उसकी भी कोई इमरजेंसी हो, तो हम एम्पैथी में बदल सकते हैं अपने इमोशन को, क्योंकि भाई अब तो ये हो गया ना, अब मैं इसका क्या कर सकती हूँ, अब अगर मेरे को अच्छे मीटिंग में जाना है तो मुझे सॉल्यूशन निकालना है ना उसका, हो सकता है मैं रुक के धो लूँ उसको, मेरे चलते चलते तक शायद वो सूख जाए, लेकिन उससे जो मैंने अपना इम्पोर्टेंट काम करना है उस पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इसको हम इमोशनल क्वोशन्ट बोलेंगे कि सिचुएशन आने के बावजूद हम उसको मैनेज कर पाए। ये कोई गुट्टी नहीं है कि हमने घोली पानी में डाली और पी गए, ये प्रैक्टिस से आता है, बार बार प्रैक्टिस से ही आएगा। और अगर हम चाहेंगे तभी ये होगा, अगर हमें लगेगा कि इसके कोई फायदे हैं हमारी जिंदगी में, अगर हमें लगेगा कि नहीं जैसे हम हैं हम वैसे ही ठीक है तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है। जैसे हम आज तक रिएक्ट करते आए हैं ऐसे भी हम कर सकते हैं, लेकिन अगर हम लीडरशिप के सेशंस ले रहे हैं और अगर हम इमोशनल इंटेलिजेंस को वैल्यू दे रहे हैं तो इमोशनल इंटेलिजेंस को समझना बहुत जरूरी है और उस पर फोकस करना बहुत जरूरी है कि प्रॉब्लम को ना समझ के, प्रॉब्लम को पर्सनलाइज ना करके, सिचुएशनलाइज करके हमें उसके कैसे आंसर्स ढूंढने चाहिए। कई बार बहुत गुस्सा आता है तो हम कहते हैं कि अच्छा आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए। किसी ने तेरे नाम पिक्चर देखी होगी तो देखा होगा ना सलमान खान उसमें वो 10 तक गिनती करता है, किसी ने देखी है वो मूवी? उसमें उस पिक्चर में सलमान खान को बहुत गुस्सा आता है, वो मार मारता रहता है सबको, लेकिन बाद में शायद जो हीरोइन होती है वो बोलती है कि तुम 10 तक गिनती करो तो शायद तुम्हारा गुस्सा कम हो जाएगा। देखिए किसी ने ये मूवी, या मैं ही सबसे पुरानी हूँ यहाँ पे? देखिए
2: मैंने देखी है मैम, मैम
0: सबने देखी है। तो वो क्यों करता है, उसको उसने एक मैनेजमेंट टेक्निक बना ली कि मेरे को गुस्सा आता है तो मैं गुस्से में रिएक्ट कर जाता हूँ, तो रिएक्ट ना करके मैं कैसे उसे कंट्रोल करूँ और उसको मैं पॉजिटिव, मैंने ये एज ए एग्जाम्पल ही दिया है, लेकिन ये कोई सिंगल तरीका नहीं है। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, ऐसी बहुत सारी किताबें हैं, हमारी लाइब्रेरी में भी बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जो इमोशनल क्वोशंट के ऊपर हैं। ऑनलाइन भी बहुत सारा मेटीरियल अवेलेबल है, जिनको कि लगता है उनकी जिंदगी में नेगेटिव इमोशन बहुत ज्यादा है, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जाएं और कुछ कुछ स्पीकर्स हैं या कुछ कुछ किताबें ऐसी हैं आप पढ़ने की कोशिश करिए उनको, वो आपको शायद एक बेहतर सोशली एंड पर्सनली वो आपको हेल्प करेगा। और जहां तक लीडरशिप की बात हो रही है, ये बहुत जरूरी है। आपने मैम को कभी रेयरली गुस्से में देखा होगा, आपने हमेशा देखा है कि वो कितनी बारीकी से इमोशंस को, सिचुएशंस को सिचुएशन पे रखती हैं, पर्सनलाइज नहीं करती। ये बहुत मेहनत से आता है, बहुत एक्सपीरियंस से आता है, ओवरनाइट नहीं आ सकता, बट एज ए लीडर ये हमें करना पड़ेगा क्योंकि हमें गोल पे फोकस करना है, इमोशन पे नहीं। मेरे को कैसे बोल दिया इसने, अरे मैं तो ये हूं मैं तो वो हूं, मुझे बोल कैसे दिया इसने। बट वो आप उसे पर्सनलाइज ना लीजिए। अगर कोई फीडबैक दे रहा है तो आप उसे एक्सेप्ट करिए, अपनी गलतियां अपनी वीकनेस को पहचानिए एज ए लीडर और उस पर वर्क करिए। अगेन आई वुड से इट इज अप टू अस कि हम इसकी वैल्यू पहचानना चाहते हैं कि नहीं पहचानना चाहते। इस स्लाइड में हम ये बोल रहे हैं, इसकी फॉर्मल डेफिनेशन है, इसके ऊपर हम कई चीजें बात कर चुके हैं। कई बार क्या होता है कि हम ये सोचते हैं कि नेगेटिव इमोशंस खराब होते हैं, लेकिन साइकोलॉजिस्ट ने ऐसा भी स्टडी किया है कि जरूरी नहीं है हर

डर को उन्होंने पॉजिटिव इमोशन बनाया और दिन रात पढ़ाई करके अच्छे रिजल्ट लेके पास हो गए, है ना। और कुछ लोग हैं पॉजिटिव चीज को भी नेगेटिव बना लेते हैं, हाय मतलब प्रैक्टिस करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे, इतना प्रैक्टिस कर लिया है कि डर आ गया है कि यार मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो इसी को बैलेंस करने की जो कला है उसको इमोशनल क्वोशेंट हम कहते हैं। तो हमें हर बार नहीं सोचना कि हमें पॉजिटिव ही रहना है, कई बार नेगेटिव इमोशंस बहुत जरूरी होते हैं लाइफ में हमें सीख देने के लिए, ये समझाने के लिए कि शायद हम कहीं गलत जा रहे हैं, शायद हमें जरूरत है अपने कोर्स करेक्शन की। कभी कभी फेलियर बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब फेलियर ही नहीं है तो हमें ये पता ही नहीं है कि हम राह पे किसी राह पे चल भी रहे हैं कि नहीं, ऐसे अंधाधुन चले जा रहे हैं। एक रैट रेस में सब सब चल रहे हैं तो हम भी चल रहे हैं। तो हमने EQ समझा, इमोशनल क्वेश्चन समझा। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो जो पजल है जो हम 10 E's की बात कर रहे हैं वो हमें हेल्प करेगा हमारा गोल डिफाइन करने में, हमारी लाइफ के गोल्स क्या हैं। तो इमोशनल क्वेश्चन को अब हम लिंक करेंगे कि हम गोल्स कैसे डिफाइन करेंगे, क्योंकि हम हमने बात करी कि यहाँ सभी लोग किसी ना किसी गोल से या किसी ड्रीम को अचीव करने के लिए ही यहाँ पे जुड़े हैं। किसी को 12th में अच्छे मार्क्स लाने हैं, किसी को ग्रेजुएशन करना है, किसी को कोई स्पेसिफिक कोर्स करना है, नर्सिंग का करना है, पार्लर का करना है, स्टिचिंग का करना है, कोई एम्ब्रॉयडरी करके कुछ करना चाहता है, सब कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। लेकिन वो कुछ क्या है वो भी तो हमें डिफाइन करना है ना। लेकिन अगर हम नेगेटिव इमोशंस में ही घिरे रहेंगे, मेरे घर में तो बहुत परेशानी है, मेरे को तो निकलने नहीं दिया जाता, मेरे पास तो वक्त नहीं है, मैं सुबह 4 बजे उठती हूँ, अरे जाके भी मुझे काम करना पड़ता है, मुश्किल से 1 घंटा निकालती हूँ, अगर हम इन सब चीजों में फंसे रहेंगे तो हम लाइफ में गोल ही सेट नहीं कर पाएंगे, और अगर गोल ही सेट नहीं होगा तो हम उस राह पे चलेंगे कैसे। किसी को कुछ क्वेरी है, कुछ सजेशन, कोई पॉइंट शेयर करना चाहता है? ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि हम अपना गोल डिफाइन कर कैसे सकते हैं। ये 10 क्वेश्चन है, ये स्लाइड हम आपसे शेयर कर देंगे। अगर हम इन 10 क्वेश्चन के आंसर करने शुरू करें तो हो सकता है हम लाइफ में क्या करना चाहते हैं ये हम खुद से पहचान पाए। ये मैं आपके लिए नहीं कर सकती, आप किसी और के लिए नहीं कर सकते, आप अपने बच्चों के लिए भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो क्या करना चाहते हैं ये वो ही डिफाइन करे, तभी वो लाइफ में खुश रहेंगे, सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि गोल उनका होना चाहिए। हम गाइड कर सकते हैं, हम हेल्प कर सकते हैं उस राह पे चलने के लिए, लेकिन इन क्वेश्चंस का आंसर तो हमें ही पता है ना, क्योंकि हम सच्चाई से आंसर देंगे इन इन सब क्वेश्चंस का। मैं लाइफ में क्या करना चाहती हूँ, तो मुझे खुश क्या करता है? किसी को सिलाई खुशी देती है। अभी हम पीछे किसी कुछ बच्चों से बात कर रहे थे तो उन्होंने बोला मुझे, मैं सीख तो स्विंग रही हूँ लेकिन मुझे बनना पार्लर का काम करने में बहुत मजा आता है, तो मैं स्विंग सीख के पार्लर भी करूंगी। ठीक है, आप स्विंग सीख लो, बट वो बहुत क्लियर थी कि मुझे ब्यूटी का काम करने में बहुत मजा आता है, बट हो सकता है उनके परिवार वाले इस वक्त अलाउ ना कर रहे हो या सीट खाली ना हो ब्यूटी और वेलनेस में, तो इसलिए उन्होंने अभी अपना ब्यूटी का बाद में रखा। तो उनको बहुत क्लियर था कि उनको मजा किस चीज में आता है, मेरी स्ट्रेंथ्स क्या है, मेरी वीकनेसेस क्या है, मैं अपनी स्ट्रेंथ्स को एडवांटेजेस में कैसे बदल सकती हूँ, मुझे अपना गोल अचीव करने के लिए फाइनेंसेस क्या क्या चाहिए होंगे और इन फाइनेंसेस को मैं अरेंज कैसे कर सकती हूँ। क्या कभी कभी हमारा गोल ऐसा होता है कि हमें लगता है ये फुलफिल नहीं हो सकता, कि मैं डॉक्टर की पढ़ाई करना चाहती हूँ लेकिन वो तो महंगी होती है, मैं पायलट बनना चाहती हूँ लेकिन वो तो बहुत महंगी होती है। उसको आप पहले डिफाइन करेंगे तभी तो, आप पहले पहचानेंगे तभी तो आप उसको ब्रेक डाउन करके उस लेवल तक लेके आएंगे कि उसे पूरा किया जाए। तो पहला ऑब्जेक्टिव है उसको पहचानना कि वो ऐसा काम क्या है जो आप रोज उठ के करीबन 30, 40, 50 साल तक आगे करना चाहते हैं। जो बच्चे आज 20 साल के हैं वो कम से कम 60 साल तक काम करेंगे, तो 20 से 60 साल की जो जर्नी, यानी कि 40 साल अगर आपको काम करना है, मैं मिनिमम की बात कर रही हूँ, आजकल तो 80-90 साल के भी जो हमारे मेंटर्स हैं वो भी हमें गाइड करते हैं अभी तक। तो आप सोचिए, काम करने की तो कोई उम्र ही नहीं होती। तो अगर आपको 40, 50, 60 साल तक आगे काम करना है तो ऐसा क्या काम है कि रोज सुबह उठेंगे तो उतने ही खुशी से आगे बढ़ेंगे, चैलेंजेस रोज आएंगे। ऐसा नहीं है कि मेरी मर्जी का काम होगा तो चैलेंज नहीं आएगा, चैलेंज तो रोज आएंगे, क्योंकि चैलेंज के बिना तो आई थिंक लाइफ का सर्कल पूरा नहीं है। लेकिन उन चैलेंजेस को हम तभी एंजॉय करेंगे अगर काम हमारी पसंद का है।